0: माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम ये निकला कि सात परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा पक्का है।
1: वर्तमान का युग कलयुग से ज्यादा छल युग चल रहा है, इस छल युग में सावधान रहना। वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने

0: बहरहाल एसआईटी की जांच जारी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या बड़े चेहरों की भी जिम्मेदारी तय होगी। आज तक ब्यूरो।
1: राम मंदिर न सिर्फ राम भक्तों की आस्था से जुड़ा मुद्दा है, बल्कि इसका सीधा असर यूपी चुनाव पर भी पड़ सकता है। ऐसे में 2027 को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जहां बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन अब यूपी के दौरे पर जा रहे हैं।

0: राम मंदिर को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन यूपी के दौरे पर जा रहे हैं। नितिन नवीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला ऐसा दौरा है जिसमें संगठन और सरकार के बीच चुनावी तैयारी को लेकर लखनऊ में मंथन होगा, जहां यूपी के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम के अलावा संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी। वहीं बीजेपी के विधायकों और सांसदों के साथ मीटिंग का भी कार्यक्रम है। यूं तो लखनऊ में यूपी के चुनाव की रणनीति का बुनियादी ताना-बाना बुना जाना है, लेकिन खबर है कि जल्द ही अमित शाह यूपी के सभी 6 क्षेत्रीय इकाइयों का दौरा शुरू करने वाले हैं। इसमें पश्चिम यूपी से लेकर ब्रज और कानपुर बुंदेलखंड से लेकर अवध, काशी, गोरखपुर क्षेत्र के दौरे तय किए गए हैं। इसकी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा नितिन नवीन के लिए बनाई जा रही नई टीम में यूपी के नए और युवा चेहरों की तलाश भी चल रही है। दिल्ली में कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बीएल संतोष की जो बैठक हुई है उसका बड़ा हिस्सा यूपी चुनाव से जुड़ा था। खबर है कि इसमें सरकार से कुछ नेताओं को संगठन में लाने और यूपी संगठन से कुछ नेताओं को सरकार में जगह देने पर भी चर्चा हुई है, जहां अखिलेश के पीडीए की काट निकालने की रणनीति का खाका तैयार हो रहा है। अखिलेश के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले पीडीए फॉर्मूले का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने प्रदेश संगठन में ओबीसी पदाधिकारियों की संख्या 16 से बढ़ाकर 25 कर दी है। इसके अलावा बीजेपी के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के खासकर गंगा, घाघरा, दुआब की 15 लोकसभा सीटों वाले इलाकों का प्रदर्शन चिंताजनक है। बड़ी फिक्र के तौर पर यूपी की वो 61 विधानसभा सीटें भी हैं जहां 15 साल में बीजेपी एक बार भी नहीं जीत पाई है। इसके अलावा 10 साल के योगी राज में पैदा हुई एंटी इनकम्बेंसी से निपटना भी बीजेपी के लिए आसान नहीं है। ऐसे में चर्चा है कि बीजेपी करीब 100 मौजूदा विधायकों के टिकट पर गंभीरता से विचार कर सकती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
1: पिछले कुछ चुनाव से एसआईआर का मुद्दा भी गर्म है, जिसे विपक्ष छोड़ता नहीं दिख रहा। अब एसआईआर को लेकर इंडिया ब्लॉक की ओर से एक चिट्ठी सीजेआई को लिखी गई, जिसकी भाषा पर अब बीजेपी प्रश्न खड़े कर रही है।
2: एक ओर एसआईआर की प्रक्रिया कई राज्यों में चल रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। इंडिया ब्लॉक ने सीजेआई सूर्यकांत को पत्र लिखकर ईसीआई और सीईसी के खुले तौर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। 28 जून को लिखे इस खत पर टीएमसी, आप और डीएमके समेत 25 राजनीतिक दलों ने हस्ताक्षर किए हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने खत में लिखा है, विधानसभा चुनावों के एन पहले एसआईआर करना गलत था और इसे गलत तरीके से लागू करना एक बहुत बड़ी विफलता थी। जबकि इलेक्टोरल रोल्स 2002 में डिजिटलाइज होने के बाद से लगातार रिवाइज और अपडेट किए जाते रहे हैं।
3: एसआईआर को लेकर जितनी अनियमितताएं देखने को मिली हैं और खासतौर से एसआईआर के बाद जिस तरह से लोगों के और जिस तादाद में लोगों के नाम कटे हैं, जिस तादाद में लोगों ने इस पर एक नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, तो उसके बाद तो विपक्ष एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ेगा।
4: क्या आपने जिस भाषा शैली में सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखा है, ये वही अहंकारी भाषा शैली नजर आती है जो आपातकाल के समय में दिखाई पड़ती थी।
2: बिहार और बंगाल में बीजेपी विरोधियों के हार के बाद आने वाले यूपी चुनाव के मद्देनजर ये चिट्ठी अहम सियासी मुद्दा बन सकती है। हालांकि जहां चुनाव की निष्पक्षता पर इंडिया अलायंस के ऐसे सवाल हैं, वहीं यूपी में अखिलेश यादव समय से पहले ही चुनाव के लिए तैयार होने का दम भर रहे हैं।
5: अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करेंगे। जो लोग चुनाव नवंबर में कराना चाहते थे, सितंबर में करा दें, हम लोग तैयार हैं।
2: साफ है एसआईआर पर जारी घमासान के बीच अगला चुनाव यूपी में होना है। ऐसे में विपक्ष अब बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरने की हर कोशिश कर रहा है। आज तक ब्यूरो।
1: खबर पुणे मर्डर की, जहां सवाल यह है कि आखिर सिया गोयल ने केतन अग्रवाल को क्यों मारा, क्यों सिया

0: कोर्ट में पेशी के दौरान कैमरे पर दिखाई गई सिया की ये मिडिल फिंगर इस बात की गवाह है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और न ही कानून का डर। आखिर हो भी क्यों, जिस सोनम रघुवंशी की राह पर वो चली है उसे कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मेघालय सरकार की अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले हम देखेंगे कि ट्रायल कैसे चल रहा है। उधर राजा रघुवंशी के परिवार को इंसाफ का इंतजार है, जो कि सीबीआई जांच की मांग कर रहा है।
1: हमको न्याय अभी तक मिला नहीं, तो मतलब इसमें इतनी ढीलपोल क्यों चल रही है? और ढीलपोल चल रही है तो हमको वापिस से जांच चाहते हम, और हमारी सीबीआई जांच की मांग है तो हमारी सीबीआई जांच की मांग पूरी रखें।
0: अब सवाल यह है कि क्या मेघालय पुलिस की तरह पुणे पुलिस के सबूत भी कोर्ट में कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि पैटर्न से लेकर सबूतों की पड़ताल सब कुछ वैसी ही नजर आ रही है। आज तक की टीम उस जगह पहुंची जहां केतन के पुतले को खाई से फेंक कर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था।
2: जिस डमी को धक्का दिया था वो डमी अभी हमारे सामने है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये डमी है। और ऊपर से धक्का देने के बाद दो चोटियों पर केतन हो या फिर ये डमी हो उसको मार पड़ी थी, और उसके बाद ये नीचे आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस डमी की क्या अवस्था हुई है, और उसी तरह मतलब आप सोच लीजिए केतन अग्रवाल की क्या हालत हुई होगी।
0: केतन केस की जांच में अब एक युवक की एंट्री हुई है जो कि केतन चौधरी का क्लासमेट था। सूत्रों की माने तो आईटी कंपनी में काम करने वाले शख्स को सिया और चेतन ने साजिश की जानकारी दी थी। इसे भी लोहगढ़ किले में साथ में जाने को कहा था, लेकिन वो आखिरी वक्त में नहीं गया। हत्या के बाद भी चेतन और सिया ने इससे बातचीत की थी। पुलिस अब इस शख्स से पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो इस शख्स ने दोनों को हत्या न करने की सलाह दी थी। आज तक ब्यूरो
3: खबर। बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। श्रद्धालुओं के पहले जत्थे ने बाबा के दर्शन भी कर लिए हैं और बहुत से श्रद्धालु बेस कैंप पर वापस भी आ गए हैं। इस बार की यात्रा बहुत विशेष है क्योंकि यात्रा बड़ी होने वाली है। भोले बाबा के भक्तों को बाबा के दर्शन के लिए इस वर्ष 57 दिनों का समय मिला। अभी तक 4,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। आज तक की कई टीमें यात्रा पर मौजूद हैं। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट।

0: बम बम भोले के नारों से कश्मीर की वादियां गूंज रही। आज पहले जत्थे के दर्शन भी हो चुके हैं।
1: हम अपार मध्य प्रदेश
0: यात्रा इस बार खास इसलिए है क्योंकि ये लंबी चलेगी। अमरनाथ यात्रा इस बार 57 दिन की होगी। 3 जुलाई से 28 अगस्त तक यात्रा चलेगी। इस वक्त अलग अलग यात्रा मार्गों से करीब 20,000 लोग दर्शन करने जा रहे हैं। यात्रा में आज तक की कई टीमें मौजूद हैं। हमारी पहली टीम के जितेंद्र सिंह भी इस पहले जत्थे के साथ थे।
2: बाबा बर्फानी की गुफा के सबसे नजदीक पहुंचने वाला अकेला चैनल आज तक है। तस्वीरों में हम आपको सीधे लाइव दिखा रहे हैं कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु किस तरीके से यहां ऊपर की तरफ सीढ़ियों से होते हुए पहुंच रहे हैं। ये पवित्र गुफा बाबा बर्फानी की है और आज पहला जत्था यहां पर दर्शन कर चुका है। इसके साथ ही आज से जो ये शुरुआत हुई है दर्शन करने की, वो 28 अगस्त तक चलेगा। आप तस्वीरों में देखिए कि पूरा किस तरीके से यहां जो बाबा बर्फानी की गुफा के पास तैयारियां की गई हैं और यहां पर लोगों के लिए सुविधाएं भी अलग अलग तरीके की दी गई हैं। ये जो जल यहां से गुफा से आगे की ओर निकलता है, यहां पर भी लोग जल का आचमन करते हैं। लोग यहां पर यहां मिलते हैं और इसके साथ साथ स्नान करने के बाद बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन करने के लिए जाते हैं।
0: अमरनाथ यात्रा दो रास्तों से की जाती है। पारंपरिक रास्ता 48 किलोमीटर लंबा नुनमान पहलगाम से, दूसरा रास्ता गांदेरबल जिले में 13 किलोमीटर लंबे बालटाल से। हिंदुओं की यह सबसे बड़ी यात्रा है। सर्दियों में ये पूरा इलाका बर्फ से ढका होता है। मार्च में जब बर्फ गलती है तो यहाँ यात्रा का मार्ग साफ किया जाता है। यात्रियों के रुकने के लिए इंतजाम किए जाते हैं। इतना इंतजाम करते करते 3 महीने से ज्यादा का वक्त लगता है, इसीलिए अब जाकर यात्रा शुरू हुई है।
2: तस्वीरों में जो आप यहां पर देख रहे हैं, टेंट्स वगैरह जो लगे हुए हैं, ये श्रद्धालुओं के लिए यहां पर इंतजाम किए गए हैं कि उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। साथ ही बेस कैंप भी, हॉस्पिटल भी यहां पर बनाया गया है कि अगर श्रद्धालु किसी की इस 14,000 फीट की हाइट पर उनको परेशानी होती है या किसी भी तरीके से बीमार होते हैं तो उनके लिए इस तरीके की व्यवस्था यहां पर की गई है। तो ये पूरी तैयारी यहां पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा किया गया है। मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं, इसकी हाइट 14,000 फीट के आसपास है और बालटाल से होते हुए सीधा पूरा करीब 12 से 13 किलोमीटर का ये रास्ता है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इन सब के बीच होते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आज तक की टीम यहां पर पहुंची हुई है और आप पहले दर्शन यहां पर कर सकते हैं क्योंकि पहला जत्था जो है वो आज ही यहां पर पहुंचा हुआ है और सभी लोग लगातार यहां पर आ करके जयकारे लगा रहे हैं बाबा बर्फानी के और कोशिश उनकी यही है कि एक झलक बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद वो यहां से नीचे की तरफ रवाना हो।

0: बालटाल यात्रा का प्रमुख बेस कैंप है। यहाँ से आगे 13 से 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। यहीं पर 15 से 20 हजार श्रद्धालु होते हैं। आमतौर पर श्रद्धालु यहाँ से सुबह सुबह यात्रा शुरू करते हैं और पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के बाद शाम तक वापस भी लौट आते हैं। बालटाल में आज तक की दूसरी टीम मौजूद है।
1: अभी फिलहाल हम देखें तो करीब 20 हजार श्रद्धालु अलग अलग रास्तों में अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ लोग वहां सुबह पहली आरती करके जो हमने तस्वीरें दिखाई वहां से करके जो है वापस उतर रहे हैं और उनका पहुंचना अब धीरे धीरे शुरू हो गया है कि पहले जत्थे के जो श्रद्धालु थे वो धीरे धीरे करके जो हैं अब आप तस्वीर में देख सकते हैं धीरे धीरे करके वापस लौट रहे हैं। ये करीब सुबह 4 बजे बालटाल के रास्ते से गए थे, उससे पहले भी कुछ लोग निकले थे और अब जो है क्योंकि मौसम संभला है, रात भर बारिश हुई थी, सुबह भी करीब 9 बजे तक बारिश हो रही थी लेकिन 9 बजे के बाद खुली धूप निकली है, रास्ते सूख गए हैं तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है अमरनाथ यात्रा के लिए मिजाज जो है वो पूरी तरह से बन गया है।
0: लेकिन श्रद्धालु किस वक्त जाएंगे और कब लौटेंगे ये सब मौसम पर निर्भर करता है, जैसा कि आज हुआ। आज सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ था लेकिन जब दूसरे जत्थे की बारी आई तो बारिश बहुत तेज होने लगी। पता चला कि श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, इसीलिए प्रशासन को यात्रा रोकनी पड़ी।
1: दिन ही इस अमरनाथ यात्रा में कल रात से जमकर यहां बारिशें हुई, पूरे अमरनाथ के जितने भी रास्ते हैं वहां पर बारिशें हुई और अब मौसम संभला है लेकिन यहां पर अनुमान से भी ज्यादा भीड़ इस पहले दिन के दर्शन के लिए न सिर्फ बालटाल पहलगाम बल्कि अलग अलग पड़ावों पर जमा है। आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा, यहाँ पर एक परिस्थिति ऐसी बन गई है, ये करीब कई सौ श्रद्धालु हैं जो रोक दिए गए हैं अब क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है आगे अमरनाथ यात्रा के रास्तों पर। अब चूंकि नियम होते हैं दिन में 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु नहीं छोड़े जा सकते हैं, सुबह 4 बजे से ये यात्रा शुरू हो गई और अब 11 बजे को ये बंद कर दी गई है यहां से क्योंकि अब जो दर्शन करके लौट रहे हैं वो काफिला वहां से लौट रहा है। काफी तंग रास्ते हैं पहाड़ों के बीच में से तो किसी यात्री को कोई क्षति न पहुंचे उसके लिए फिलहाल अब आज जो है आज पहले जत्थे की यात्रा रोक दी गई है, कल सुबह दोबारा शुरू होगी।
0: प्रशासन की कोशिश थी कि 10 बजे तक दूसरे जत्थे को रवाना कर दिया जाए लेकिन पीछे से और श्रद्धालु भी आ गए। अब अगर प्रशासन एक साथ इन श्रद्धालुओं को छोड़ देगा तो रास्ते में भीड़ हो जाएगी, धक्का मुक्की हो सकती है, इसीलिए जब भोले के भक्तों को रोका गया तो वो आक्रोशित भी होने लगे।
2: और हम यात्रा करने के लिए आए, ये 11 बजे का टाइम था, उससे पहले ही रास्ता बंद कर दिया इन्होंने, बंद कर दिया, अब यहाँ पे रोक रखे। अब इससे लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, एक दिन ज्यादा रुकना पड़ेगा और कई जैसे लोग हैं जिन्होंने घोड़े पाल की कर लिए अब वो उनके पैसे लग गए।
3: वो 7 बजे आए थे, सुबह 7 बजे बारिश के कारण यात्रा रोक दी थी, फिर कहा आप थोड़ी देर बाद आइए, जब हम 10:15 पर यहाँ आए तो यात्रा रोक दी गई, कहा कि 10 बजे का आखिरी समय है, इसके बाद आप यात्रा नहीं कर सकते। हम पिछले 1 घंटे से यहाँ पर पूरे खड़े हैं और ना हमें यहाँ से आगे जाने दिया जा रहा ना किसी तरह का जवाब दिया जा रहा है।
4: 11 बजे का टाइम दिया था इन्होंने, कोई पहले इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए थी, अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी, इतने बजे तक गेट बंद होगा आप आ जाओ यहाँ पे रोकने को, तो अभी 11 अभी बजे हैं, 10 बजे यहाँ से खड़े हैं, 10 बजे यहाँ से खड़े हैं, 11:15 हो गए, ये देख लो आप कितना टाइम हो गया यहाँ पे खड़े।
0: अभी तो यात्रा सुचारू रूप से चल रही है लेकिन जैसे जैसे बरसात बढ़ेगी, बारिश तेज होगी, हालात और खराब होंगे लेकिन भोले के भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। बालटाल से अशरफ वानी के साथ जितेंद्र सिंह, अमरनाथ।
5: और आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस समय मिडिल ईस्ट के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे भावुक, सबसे तनावपूर्ण घटनाक्रम ईरान की धरती पर चल रहा है। युद्ध के पहले ही दिन अमेरिका और इसराइली हमले में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई का पार्थिव शरीर विदाई समारोह के लिए रख दिया गया। तेहरान की सड़कों पर रोती बिलकती जनता का समुद्र उमड़ पड़ा है।

0: नम आंखें, गगन भेदी नारे और अपने सबसे बड़े रहबर को खोने का बेइंतहा दर्द। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामिनेई का ताबूत आधिकारिक समारोह से दो दिन पहले ही आवाम के सामने रख दिया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने देश की जनता से अपील की है कि वो हर राजनीतिक और धार्मिक मतभेद को भुलाकर इस ऐतिहासिक विदाई का हिस्सा बने और राष्ट्रीय एकता की मिसाल पेश करें। ईरान के सबसे बड़े संकट के समय भारत ने भी अपनी मजबूत कूटनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई है। आज तक की टीम जिस स्पेशल विमान से तेहरान पहुंची, उसी में भारत का हाई प्रोफाइल प्रतिनिधि मंडल भी सवार था। भारत सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा तेहरान में होने वाले समारोह में हिस्सा लेंगे। उनके साथ देश के जाने माने सैन्य रणनीतिकार और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन भी इस दुखद मौके पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कूटनीति के इस मंच पर भारत की एकजुटता तब और साफ दिखी जब विपक्ष की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी इस डेलीगेशन का हिस्सा बने। आज तक संवाददाता सुमित चौधरी से खास बातचीत में सलमान खुर्शीद ने भारत और ईरान के पुराने रिश्तों को याद किया।
1: बुरे वक्त में अपने दोस्त का साथ देना एक फर्ज है इंसान का, किसी भी मुल्क का एक फर्ज है। जब हमारे इतने गहरे और पुराने रिश्ते हैं और ईरान ने हर मौके पर हमारा साथ दिया है और हमारे साथ खड़ा रहा है।
0: आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि 4 जुलाई से 9 जुलाई तक चलने वाले इस राजकीय अंतिम संस्कार का पूरा रूट और शेड्यूल क्या है, क्योंकि ये सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। 4 और 5 जुलाई तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में विदाई समारोह होगा, जहां जनता और विदेशी मेहमान श्रद्धांजलि देंगे। 6 जुलाई तेहरान की सड़कों पर एक विशाल पैदल शोक जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद पार्थिव शरीर को शिया शिक्षा के मुख्य केंद्र कोम शहर ले जाया जाएगा। 7 जुलाई कोम के पवित्र धर्म स्थल की ओर एक बड़ा धार्मिक जुलूस निकाला जाएगा। 8 जुलाई ये अंतिम यात्रा पड़ोसी देश इराक पहुंचेगी। नजफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद शिया समुदाय के सबसे पवित्र स्थलों नजफ और कर्बला में सार्वजनिक शोक जुलूस निकलेंगे। 9 जुलाई अंतिम दिन पार्थिव शरीर वापस ईरान के मशहद शहर लाया जाएगा, जो खामिनेई का जन्म स्थान है। यह देश के दूसरे सबसे बड़े शहर में आखिरी जुलूस के बाद उन्हें इमाम रजा श्राइन परिसर में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। एक तरफ जहां सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच इस विदाई की तैयारी चल रही है, वहीं ईरान की मीडिया खामिनेई की सादगी और उनके राष्ट्रवाद को सलाम कर रही है। ईरान के टीवी चैनल उनके उस आत्मनिर्भर ईरान के संदेश को दोहरा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर चुनौती का समाधान सीमाओं के भीतर ही है।
2: قوی شدن نظامی لازمه، قوی شدن علمی لازمه، قوی شدن دولتی و ساختاری و سازمانی لازمه. باید بنشینند افراد هوشمند ما، صاحب نظران دلسوز ما، راه های تقویت کشور رو پیدا کنند.
0: कड़े प्रतिबंधों, मंडराते युद्ध के खतरों और बंद होते एयर स्पेस के बीच ईरान का ये घटनाक्रम पूरी दुनिया की भू राजनीति को बदलने वाला है। भारत से लेकर इराक तक की निगाहें इस 6 दिवसीय अंतिम यात्रा पर टिकी हैं। तेहरान के इस बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक माहौल में आज तक की टीम पल पल की सीधी और सटीक रिपोर्ट आप तक पहुँचाती रहेगी। गीता मोहन के साथ सुमित चौधरी, तेहरान आज तक।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: कि हम इस समय तेहरान में मौजूद है और हर बदलते घटनाक्रम की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।
1: मैं गीता मोहन सीधे तेहरान से आज तक के लिए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

चढ़ावा चोरी पर आरएसएस ने तोड़ी चुप्पी, दत्तात्रेय होश बोले बोले। राम भक्तों की भावनाएं आहत करने वालों को मिले कठोर सजा, कांग्रेस का पलटवार, सिर्फ दिखावे के लिए निंदा। पंजाब कांग्रेस में घमासान तेज, पूर्व सीएम चन्नी के समर्थन में कई विधायक और नेता। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए बने पहली पसंद, खड़गे बोल करेंगे फैसला। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अहम बैठक। अल नीनो की वजह से देश के कुछ इलाकों में कम बारिश और उसके असर की स्थिति पर समीक्षा। बिहार सरकार ने बहाल की लालू यादव और राबड़ी की जेड श्रेणी सुरक्षा, दोनों को मिली बुलेट प्रूफ गाड़ी। कुछ दिनों पहले जेड प्लस सिक्योरिटी हटाने पर हुआ था सियासी बवाल। और तेहरान में अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में ईरानी राष्ट्रपति समेत सभी वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, मौके पर आज तक भी मौजूद। पल पल की जानकारी।

0: हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। ओडिशा के मयूरभंज जिले के बारीपदा में बड़ा सड़क हादसा हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 पर तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे मौजूद लोगों को कुचल दिया। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 3 मीडिया कर्मी भी शामिल हैं जिनकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। अब खबर के मुताबिक पहले पलटे हुए एक लकड़ी से लदे वाहन को हटाने का काम चल रहा था तभी बेकाबू डंपर लोगों पर चढ़ गया। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है जबकि पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई है। डंपर बेकाबू हुआ, 7 लोगों को रौंदा, 2 की मौत हो गई है, 3 मीडिया कर्मी भी शामिल हैं, हालत गंभीर है उनकी और भी कई लोग घायल यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ओडिशा के मयूरभंज में ये सड़क हादसा हुआ। लकड़ी से भरा एक वाहन को हटाने का काम चल रहा था क्रेन की मदद से तभी एक बेकाबू डंपर लोगों पर चढ़ गया। 2 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हैं, 3 मीडिया कर्मी भी इसमें शामिल हैं। एक और बड़ी खबर आपको सोनीपत से बताते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक कपड़ा गोदाम में भीषण आग लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे इलाके में धुआं और लपटें फैल गईं। घटना के समय गोदाम की पहली मंजिल पर एक श्रमिक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ फंस गया। दमकल और पुलिस की टीम ने हाइड्रा मशीन की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। आग पर काबू पाने के लिए सोनीपत सहित आसपास के कई जिलों से दमकल वाहनों को मौके पर बुलाया गया और देखिए कितना जोरदार यह हादसा कहा जा सकता है। आग बहुत तेजी के साथ फैलती जा रही थी। आग के कारणों की जांच की जा रही है। घटना ने फैक्ट्री की फायर सेफ्टी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। हालांकि वो जांच का विषय है लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता होती है कहीं पर भी आग को बुझाने की, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की। सोनीपत में कपड़ा गोदाम में ये भीषण आग लगी और बहुत तेजी के साथ फैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बालोतरा जिले में देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। करीब 79,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से पेट्रोकेमिकल उत्पादन, औद्योगिक विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार को नई गति मिलने की उम्मीद है। इस ऐतिहासिक मौके को लेकर पूरे राजस्थान में तैयारियां की गई और भीषण गर्मी को देखते हुए कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रदेश भर में LED स्क्रीन के जरिए करीब 57 लाख लोगों तक पहुंचाया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जोधपुर एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का भी उद्घाटन करेंगे और 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के विदेश दौरे पर रहेंगे। अब बात राम मंदिर पर जारी घमासान की करते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर SIT की जांच पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं लेकिन इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा सियासत बड़े चेहरों को लेकर हो रही है। सवाल यह कि क्या ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर भी एक्शन होगा, क्योंकि सूत्रों की माने तो SIT चंपत राय समेत ट्रस्ट से जुड़े कई लोगों से सवालों से और जो जवाब मिले उनसे संतुष्ट नहीं है।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जिस चंपत राय को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं अब जांच की आंच उन्हीं चंपत तक पहुंच रही है। SIT टीम ने फिर ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। टीम ने चढ़ावे के ऑडिट से जुड़े दस्तावेज कब्जे में लिए और पदाधिकारियों से इससे जुड़े सवाल पूछे। सूत्रों के अनुसार पूछताछ में कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले जिससे आने वाले दिनों में पूछताछ का दायरा और बढ़ेगा। इस बीच 6 जुलाई को होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक अहम होगी। ट्रस्ट सूत्रों के अनुसार महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। दोनों पदाधिकारियों से मामले में लिखित और मौखिक स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। ट्रस्ट उनके अपना पक्ष रखने के बाद आगे की बड़ी कार्रवाई करेगा। उधर विनय कटियार भी इन्हीं राम मंदिर से जुड़े बड़े चेहरों की भूमिका पर सवाल कर रहे हैं।
2: गोपाल राय करते हैं साउथ से आकर के यहाँ क्या कर रहा है, इसकी क्या जरूरत थी, जमीन की खरीदने की क्या जरूरत थी। ऐसे लोगों को वहां पर रखने की जरूरत नहीं।
1: हालांकि राम मंदिर मामले के खुलासे के करीब 1 महीने बाद संघ ने चुप्पी तोड़ी है।
3: श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। जय श्री राम।
1: अब साधु संतों और कथावाचकों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है।
4: माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम ये निकला कि सात परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा पक्का है।
5: वर्तमान का युग कलयुग से ज्यादा छल युग चल रहा है, इस छल युग में सावधान रहना। वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। हमें उनसे सावधान रहना होगा, हमें उनसे सजग रहना होगा।
1: बहरहाल एसआईटी की जांच जारी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या बड़े चेहरों की भी जिम्मेदारी तय होगी। आज तक ब्यूरो।
0: देखिए, राम मंदिर न सिर्फ राम भक्तों की आस्था से जुड़ा मुद्दा है, बल्कि इसका सीधा असर यूपी चुनाव पर भी पड़ सकता है। ऐसे में 2027 को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जहां बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन अब यूपी के दौरे पर जा रहे हैं।

0: राम मंदिर को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन यूपी के दौरे पर जा रहे हैं। नितिन नवीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला ऐसा दौरा है जिसमें संगठन और सरकार के बीच चुनावी तैयारी को लेकर लखनऊ में मंथन होगा, जहां यूपी के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम के अलावा संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी। वहीं बीजेपी के विधायकों और सांसदों के साथ मीटिंग का भी कार्यक्रम है। यूं तो लखनऊ में यूपी के चुनाव की रणनीति का बुनियादी तानाबाना बुना जाना है, लेकिन खबर है कि जल्द ही अमित शाह यूपी के सभी 6 क्षेत्रीय इकाइयों का दौरा शुरू करने वाले हैं। इसमें पश्चिम यूपी से लेकर ब्रज और कानपुर बुंदेलखंड से लेकर अवध, काशी, गोरखपुर क्षेत्र के दौरे तय किए गए हैं। इसकी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा नितिन नवीन के लिए बनाई जा रही नई टीम में यूपी के नए और युवा चेहरों की तलाश भी चल रही है। दिल्ली में कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बीएल संतोष की जो बैठक हुई है उसका बड़ा हिस्सा यूपी चुनाव से जुड़ा था। खबर है कि इसमें सरकार से कुछ नेताओं को संगठन में लाने और यूपी संगठन से कुछ नेताओं को सरकार में जगह देने पर भी चर्चा हुई है, जहां अखिलेश के पीडीए की काट निकालने की रणनीति का खाका तैयार हो रहा है। अखिलेश के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले पीडीए फॉर्मूले का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने प्रदेश संगठन में ओबीसी पदाधिकारियों की संख्या 16 से बढ़ाकर 25 कर दी है। इसके अलावा बीजेपी के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के खासकर गंगा, घाघरा, दुआब की 15 लोकसभा सीटों वाले इलाकों का प्रदर्शन चिंताजनक है। बड़ी फिक्र के तौर पर यूपी की वो 61 विधानसभा सीटें भी हैं जहां 15 साल में बीजेपी एक बार भी नहीं जीत पाई है। इसके अलावा 10 साल के योगी राज में पैदा हुई एंटी इनकम्बेंसी से निपटना भी बीजेपी के लिए आसान नहीं है। ऐसे में चर्चा है कि बीजेपी करीब 100 मौजूदा विधायकों के टिकट पर गंभीरता से विचार कर सकती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
1: और देखिए, पिछले कुछ चुनाव से एसआईआर का मुद्दा भी गर्म है, जिसे विपक्ष छोड़ता नहीं दिख रहा। अब एसआईआर को लेकर इंडिया ब्लॉक की ओर से एक चिट्ठी सीजेआई को लिखी गई, जिसकी भाषा पर अब बीजेपी सवाल खड़े कर रही है।
2: एक ओर एसआईआर की प्रक्रिया कई राज्यों में चल रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। इंडिया ब्लॉक ने सीजेआई सूर्यकांत को पत्र लिखकर ईसीआई और सीईसी के खुले तौर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। 28 जून को लिखे इस खत पर टीएमसी, आप और डीएमके समेत 25 राजनीतिक दलों ने हस्ताक्षर किए हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने खत में लिखा है, विधानसभा चुनावों के एन पहले एसआईआर करना गलत था और इसे गलत तरीके से लागू करना एक बहुत बड़ी विफलता थी, जबकि इलेक्टोरल रोल्स 2002 में डिजिटलाइज होने के बाद से लगातार रिवाइज और अपडेट किए जाते रहे हैं।
3: एसआईआर को लेकर जितनी अनियमितताएं देखने को मिली हैं और खासतौर से एसआईआर के बाद जिस तरह से लोगों के और जिस तादाद में लोगों के नाम कटे हैं, जिस तादाद में लोगों ने इस पर एक नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, तो उसके बाद तो विपक्ष एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ेगा।
4: क्या आपने जिस भाषा शैली में सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखा है, ये वही अहंकारी भाषा शैली नजर आती है जो आपातकाल के समय में दिखाई पड़ती थी।
2: बिहार और बंगाल में बीजेपी विरोधियों के हार के बाद आने वाले यूपी चुनाव के मद्देनजर ये चिट्ठी अहम सियासी मुद्दा बन सकती है। हालांकि जहां चुनाव की निष्पक्षता पर इंडिया अलायंस के ऐसे सवाल हैं, वहीं यूपी में अखिलेश यादव समय से पहले ही चुनाव के लिए तैयार होने का दम भर रहे हैं।
5: अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करेंगे। जो लोग चुनाव नवंबर में कराना चाहते थे, सितंबर में करा दें, हम लोग तैयार हैं।
2: साफ है, एसआईआर पर जारी घमासान के बीच अगला चुनाव यूपी में होना है। ऐसे में विपक्ष अब बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरने की हर कोशिश कर रहा है। आज तक ब्यूरो।
1: बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब सम्राट चौधरी के सहयोगी दल ही सवाल खड़े कर रहे हैं। चिराग पासवान ने भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात की और सिस्टम पर सवाल खड़े किए, जबकि इसे पहले ये देखा गया कि जीतन राम मांझी भरत तिवारी एनकाउंटर को सही बता चुके हैं। ऐसे में चिराग और मांझी के बीच एक बार फिर एनकाउंटर को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है।
6: भरत तिवारी जी के साथ उन्होंने भक्षक बनने का काम किया। ऐसे में पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उनकी बात को उचित मंच तक पहुंचाया जा सके, इस सोच के साथ आज मैंने परिवार से मुलाकात की है। उनकी तमाम बातों को हर उस मंच पे रखा जाएगा ताकि परिवार को न्याय मिले।
7: चिराग पासवान जो करते हैं वही हम करेंगे, इस मामले में हमने बहुत पहले कर दिया है।
1: और बात एक चौंकाने वाली खबर की। देश में ई रिक्शा ऐप को हैक करने के बड़े स्कैम का खुलासा हो रहा है, जहां एक ऐप के जरिए ई रिक्शा को बंद कर दिया जाता है और फिर उनसे वसूली की जाती है। अब सरकार बढ़ते मामलों को देखते हुए एक्शन में आई है।

0: जो ई रिक्शा शहरों में सफर का सबसे अहम हिस्सा बन चुके हैं, उन्हें ऐप के जरिए हैक करके वसूली का खेल शुरू हो गया है। चलते चलते शरारती तत्व ई रिक्शा बंद कर देते हैं और मैकेनिक बनकर पहुंच जाते हैं।
1: ये गाड़ी चालू करी खड़े था तो गाड़ी एकदम बंद हो जाती है टोटल। तो मैंने देखा चालू करके वो चालू नहीं हो रही, चालू नहीं होती। फिर अपन दुकान पे जाते हैं, वे 200 रुपए लेते हैं, चालू कर देते हैं मोबाइल से।
2: अरे बंद हो गई थी हमारी गाड़ी और हमने चालू करवा ली है।
3: कितने में चालू करवाई?
2: 150 रुपए लगे थे।
0: ये किसी एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि दिल्ली से लेकर एमपी और यूपी तक के शहरों में ये खेल धड़ल्ले से चल रहा है, जिसकी लगातार शिकायतें की जा रही हैं।
4: उसी से वो बराबर में लाकर उसे बटन दबा देते हैं बटन, और वो बंद हो जाती है। और आगे उनके खड़े साथी वो कहते हैं कि लाओ हम इसे चालू कर देंगे, कोई 100 रुपया कोई 200 रुपया लेके। फिर वो उसी ब्लूटूथ से बैट से ऐप से वो चालू कर देता है।
0: कई ऐसे ऐप्स हैं जिनसे ये बैटरी रिक्शा एक क्लिक में बंद किए जा सकते हैं।
5: इस तरीके का ये एक ऐप होता है, जिस ऐप में अगर आप ई रिक्शा के पास कहीं होते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, इसे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन के बाद उन्हें जो है वहाँ पे हैक कर दिया जाता है। और ये आप जो देख रहे हैं, जब हैक हो जाता है तो उसे शुरू करने के नाम पे फिर उनसे पैसे वसूले जाते हैं।
0: तमाम कोशिशों के बाद बैट BMS ऐप पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने बैट BMS, लॉसीजी और इपोच आइकॉन ऐप्स को हटाने के निर्देश दिए हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
6: अब बात करते हैं पुणे मर्डर केस की, जहां सवाल यह कि आखिर सिया ने केतन को क्यों मारा, क्यों सिया ने शादी से इनकार करने की बजाय केतन के कत्ल का प्लान बनाया, क्या सिया को इसका पछतावा है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।

0: कोर्ट में पेशी के दौरान कैमरे पर दिखाई गई सिया की ये मिडिल फिंगर इस बात की गवाह है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और न ही कानून का डर। आखिर हो भी क्यों, जिस सोनम रघुवंशी की राह पर वो चली है उसे कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मेघालय सरकार की अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले हम देखेंगे कि ट्रायल कैसे चल रहा है। उधर राजा रघुवंशी के परिवार को इंसाफ का इंतजार है, जो कि सीबीआई जांच की मांग कर रहा है।
1: हमको न्याय अभी तक मिला नहीं, तो मतलब इसमें इतनी ढीलपोल क्यों चल रही है? और ढीलपोल चल रही है तो हमको वापस से जांच चाहते हम, और हमारी सीबीआई जांच की मांग है तो हमारी सीबीआई जांच की मांग पूरी रखें।
0: अब सवाल यह है कि क्या मेघालय पुलिस की तरह पुणे पुलिस के सबूत भी कोर्ट में कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि पैटर्न से लेकर सबूतों की पड़ताल सब कुछ वैसी ही नजर आ रही है। आज तक की टीम उस जगह पहुंची जहां केतन के पुतले को खाई से फेंक कर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था।
2: जिस डमी को धक्का दिया था वो डमी अभी हमारे सामने है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये डमी है। और ऊपर से धक्का देने के बाद दो चोटियों पर केतन हो या फिर ये डमी हो उसको मार पड़ी थी, और उसके बाद ये नीचे आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस डमी की क्या अवस्था हुई है, और उसी तरह मतलब आप सोच लीजिए केतन अग्रवाल की क्या हालत हुई होगी।
0: केतन केस की जांच में अब एक युवक की एंट्री हुई है जो कि केतन चौधरी का क्लासमेट था। सूत्रों की माने तो आईटी कंपनी में काम करने वाले उस शख्स को सिया और चेतन ने साजिश की जानकारी दी थी। इसे भी लोहगढ़ किले में साथ में जाने को कहा था, लेकिन वो आखिरी वक्त में नहीं गया। हत्या के बाद भी चेतन और सिया ने इससे बातचीत की थी। पुलिस अब इस शख्स से पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो इस शख्स ने दोनों को हत्या न करने की सलाह दी थी। आज तक ब्यूरो
3: बाद बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ यात्रा की पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई। श्रद्धालुओं के पहले जत्थे के दर्शन हो गए हैं और बहुत से श्रद्धालु बेस कैंप पर वापस भी आ गए हैं। इस बार की यात्रा बहुत खास है क्योंकि यात्रा बड़ी होने वाली है। भोले के भक्तों को बाबा के दर्शन के लिए इस बार 57 दिनों का समय मिला है। अभी तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। आज तक की कई टीमें यात्रा में मौजूद भी हैं।

0: बम बम भोले के नारों से कश्मीर की वादियां गूंज रही
1: हैं।
0: आज पहले जत्थे के दर्शन भी हो चुके हैं।
1: हम अपार मध्य प्रदेश
0: यात्रा इस बार खास इसलिए है क्योंकि ये लंबी चलेगी। अमरनाथ यात्रा इस बार 57 दिन की होगी। 3 जुलाई से 28 अगस्त तक यात्रा चलेगी। इस वक्त अलग अलग यात्रा मार्गों से करीब 20,000 लोग दर्शन करने जा रहे हैं। यात्रा में आज तक की कई टीमें मौजूद हैं। हमारी पहली टीम के जितेंद्र सिंह भी इस पहले जत्थे के साथ।
2: बाबा बर्फानी की गुफा के सबसे नजदीक पहुंचने वाला अकेला चैनल आज तक है। तस्वीरों में हम आपको सीधे लाइव दिखा रहे हैं कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु किस तरीके से यहां ऊपर की तरफ सीढ़ियों से होते हुए पहुंच रहे हैं। ये पवित्र गुफा बाबा बर्फानी की है और आज पहला जत्था यहां पर दर्शन कर चुका है। इसके साथ ही आज से जो ये शुरुआत हुई है दर्शन करने की, वो 28 अगस्त तक चलेगा। आप तस्वीरों में देखिए कि पूरा किस तरीके से यहां जो बाबा बर्फानी की गुफा के पास तैयारियां की गई हैं और यहां पर लोगों के लिए सुविधाएं भी अलग अलग तरीके की दी गई हैं। ये जो जल यहां से गुफा से आगे की ओर निकलता है, यहां पर भी लोग जल का आचमन करते हैं। लोग यहां पर यहां मिलते हैं और इसके साथ साथ स्नान करने के बाद बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन करने के लिए जाते हैं।
0: अमरनाथ यात्रा दो रास्तों से की जाती है। पारंपरिक रास्ता 48 किलोमीटर लंबा नुनवान पहलगाम से, दूसरा रास्ता गांदेरबल जिले में 13 किलोमीटर लंबे बालटाल से। हिंदुओं की यह सबसे बड़ी यात्रा है। सर्दियों में यह पूरा इलाका बर्फ से ढका होता है। मार्च में जब बर्फ गलती है तो यहां यात्रा का मार्ग साफ किया जाता है। यात्रियों के रुकने के लिए इंतजाम किए जाते हैं। इतना इंतजाम करते करते 3 महीने से ज्यादा का वक्त लगता है, इसीलिए अब जाकर यात्रा शुरू हुई है।
2: तस्वीरों में जो आप यहां पर देख रहे हैं, टेंट्स वगैरह जो लगे हुए हैं, ये श्रद्धालुओं के लिए यहां पर इंतजाम किए गए हैं कि उनको किसी भी तरीके की दिक्कत न हो। साथ ही बेस कैंप भी, हॉस्पिटल भी यहां पर बनाया गया है कि अगर श्रद्धालु किसी की इस 14,000 फीट की हाइट पर उनको परेशानी होती है या किसी भी तरीके से बीमार होते हैं तो उनके लिए इस तरीके की व्यवस्था यहां पर की गई है। तो ये पूरी तैयारी यहां पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा किया गया है। मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं, इसकी हाइट 14,000 फीट के आसपास है और बालटाल से होते हुए सीधा पूरा करीब 12 से 13 किलोमीटर का ये रास्ता है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इन सब के बीच होते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आज तक की टीम यहां पर पहुंची हुई है और आप पहले दर्शन यहां पर कर सकते हैं क्योंकि पहला जत्था जो है वो आज ही यहां पर पहुंचा हुआ है और सभी लोग लगातार यहां पर आ करके जयकारे लगा रहे हैं बाबा बर्फानी के और कोशिश उनकी यही है कि एक झलक बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद वो यहां से नीचे की तरफ रवाना हो।

0: बालटाल यात्रा का प्रमुख बेस कैंप है। यहाँ से आगे 13 से 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। यहीं पर 15 से 20 हजार श्रद्धालु होते हैं। आमतौर पर श्रद्धालु यहाँ से सुबह सुबह यात्रा शुरू करते हैं और पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के बाद शाम तक वापस भी लौट आते हैं। बालटाल में आज तक की दूसरी टीम मौजूद है।
1: अभी फिलहाल हम देखें तो करीब 20 हजार श्रद्धालु अलग अलग रास्तों में अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ लोग वहां सुबह पहली आरती करके, जो हमने तस्वीरें दिखाई, वहां से करके जो है वापस उतर रहे हैं और उनका पहुंचना अब धीरे धीरे शुरू हो गया है कि पहले जत्थे के जो श्रद्धालु थे वो धीरे धीरे करके जो हैं, अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं, धीरे धीरे करके वापस लौट रहे हैं। ये करीब सुबह 4 बजे बालटाल के रास्ते से गए थे, उससे पहले भी कुछ लोग निकले थे और अब जो है क्योंकि मौसम संभला है, रात भर बारिश हुई थी, सुबह भी करीब 9 बजे तक बारिश हो रही थी, लेकिन 9 बजे के बाद खुली धूप निकली है, रास्ते सूख गए हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है अमरनाथ यात्रा के लिए मिजाज जो है वो पूरी तरह से बन गया है।
0: लेकिन श्रद्धालु किस वक्त जाएंगे और कब लौटेंगे ये सब मौसम पर निर्भर करता है, जैसा कि आज हुआ। आज सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ था, लेकिन जब दूसरे जत्थे की बारी आई तो बारिश बहुत तेज होने लगी। पता चला कि श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, इसीलिए प्रशासन को यात्रा रोकनी पड़ी।
1: दिन ही इस अमरनाथ यात्रा में कल रात से जमकर यहां बारिशें हुई, पूरे अमरनाथ के जितने भी रास्ते हैं वहां पर बारिशें हुई और अब मौसम संभला है, लेकिन यहां पर अनुमान से भी ज्यादा भीड़ इस पहले दिन के दर्शन के लिए न सिर्फ बालटाल पहलगाम बल्कि अलग अलग पड़ावों पर जमा है। आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा, यहाँ पर एक परिस्थिति ऐसी बन गई है, ये करीब कई सौ श्रद्धालु हैं जो रोक दिए गए हैं अब, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है आगे अमरनाथ यात्रा के रास्तों पर। अब चूंकि नियम होते हैं दिन में 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु नहीं छोड़े जा सकते हैं, सुबह 4 बजे से ये यात्रा शुरू हो गई और अब 11 बजे को ये बंद कर दी गई है यहाँ से, क्योंकि अब जो दर्शन करके लौट रहे हैं वो काफिला वहां से लौट रहा है, काफी तंग रास्ते हैं पहाड़ों के बीच में से, तो किसी यात्री को कोई क्षति न पहुंचे उसके लिए फिलहाल अब आज जो है आज पहले जत्थे की यात्रा रोक दी गई है, कल सुबह दोबारा शुरू होगी।
0: प्रशासन की कोशिश थी कि 10 बजे तक दूसरे जत्थे को रवाना कर दिया जाए, लेकिन पीछे से और श्रद्धालु भी आ गए। अब अगर प्रशासन एक साथ इन श्रद्धालुओं को छोड़ देगा तो रास्ते में भीड़ हो जाएगी, धक्का मुक्की हो सकती है, इसीलिए जब भोले के भक्तों को रोका गया तो वो आक्रोशित भी होने लगे।
2: और हम यात्रा करने के लिए आए, ये 11 बजे का टाइम था, उससे पहले ही रास्ता बंद कर दिया इन्होंने, बंद कर दिया, अब यहाँ पे रोक रखे हैं। अब इससे लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, एक दिन ज्यादा रुकना पड़ेगा और कई जैसे लोग हैं जिन्होंने घोड़े पाल की कर लिए, अब वो उनके पैसे लग गए।
3: वो 7 बजे आए थे, सुबह 7 बजे बारिश के कारण यात्रा रोक दी थी, फिर कहा आप थोड़ी देर बाद आइए, जब हम 10:15 पर यहाँ आए तो यात्रा रोक दी गई, कहा कि 10 बजे का आखिरी समय है, इसके बाद आप यात्रा नहीं कर सकते। हम पिछले 1 घंटे से यहाँ पर पूरे खड़े हैं और ना हमें यहाँ से आगे जाने दिया जा रहा, ना किसी तरह का जवाब दिया जा रहा है।
4: 11 बजे का टाइम दिया था इन्होंने, कोई पहले इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए थी, अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी, इतने बजे का गेट बंद होगा आप आ जाओ यहाँ पे रोकने को, तो अभी 11 अभी बजे हैं, 10 बजे यहाँ से खड़े हैं, 10 बजे यहाँ से खड़े हैं, 11:15 हो गए, ये देख लो आप कितना टाइम हो गया यहाँ पे खड़े।
0: अभी तो यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन जैसे जैसे बरसात बढ़ेगी, बारिश तेज होगी, हालात और खराब होंगे, लेकिन भोले के भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। बालटाल से अशरफ वानी के साथ जितेंद्र सिंह, अमरनाथ।
5: एक छोटा सा ब्रेक, चलता हाजिर होंगे।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से।
7: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices. So you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
8: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: 7.5 के पहले चरण में क्या परिणाम आते हैं, क्या 7.5 के दूसरे चरण में संघर्ष बढ़ जाता है, क्या शनि जाते जाते जीवन में कुछ दे जाता है, शनि की 7.5 के चरणों का क्या है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ।
2: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
3: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
2: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
3: They score!
2: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
0: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

चढ़ावा चोरी पर आरएसएस ने तोड़ी चुप्पी, दत्तात्रेय होश बोले बोले। राम भक्तों की भावनाएं आहत करने वालों को मिले कठोर सजा, कांग्रेस का पलटवार, सिर्फ दिखावे के लिए निंदा। पंजाब कांग्रेस में घमासान तेज, पूर्व सीएम चन्नी के समर्थन में कई विधायक और नेता। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए बने पहली पसंद, खड़गे बोल करेंगे फैसला। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अहम बैठक। अल नीनो की वजह से देश के कुछ इलाकों में कम बारिश और उसके असर की स्थिति पर समीक्षा। बिहार सरकार ने बहाल की लालू यादव और राबड़ी की जेड श्रेणी सुरक्षा, दोनों को मिली बुलेट प्रूफ गाड़ी। कुछ दिनों पहले जेड प्लस सिक्योरिटी हटाने पर हुआ था सियासी बवाल। और तेहरान में अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में ईरानी राष्ट्रपति समेत सभी वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, मौके पर आज तक भी मौजूद। पल पल की जानकारी।

0: एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। ओडिशा के मयूरभंज जिले के बारीपदा में बड़ा सड़क हादसा हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 पर तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे मौजूद लोगों को कुचल दिया। बताया जा रहा है इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग घायल हैं और 3 मीडियाकर्मी भी शामिल। हालत उनकी गंभीर बताई जा रही है। पहले पलचे हुए एक लकड़ी से लदे वाहन को हटाने का काम चल रहा था, उसी वक्त एक डंपर बेकाबू होकर लोगों पर चढ़ गया, लोगों को कुचलता चला गया। 2 लोग मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया, बाकी लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है, मीडिया कर्मी भी इसमें शामिल हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। सोनीपत में बड़ी औद्योगिक क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक कपड़ा गोदाम में लगी भीषण आग और इतनी तेजी से फैली कि पूरे इलाके में धुआं और लपटें फैल गई। और घटना के समय गोदाम की पहली मंजिल पर एक श्रमिक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ फंस गया। दमकल और पुलिस की टीम ने हाइड्रा मशीन की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आग पर काबू पाने के लिए सोनीपत सहित आसपास के कई जिलों से दमकल वाहनों को मौके पर बुलाना पड़ा। आग के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं घटना ने फैक्ट्री की फायर सेफ्टी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मॉनसून ने पश्चिम भारत में रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। कहीं शहर पानी पानी है, कहीं नदियां और चेक डैम उफान पर हैं, तो कहीं सड़कें अंडरपास और खेत जलमग्न हो गए। देखिए बारिश के कहर की एक ग्राउंड रिपोर्ट।
1: सबसे पहले गुजरात के मेहसाणा के कड़ी की तस्वीरें, जहां एक ही रात में 8 से 9 इंच बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। 3 मुख्य अंडरपास डूब गए, कई रिहायशी इलाकों और घरों में पानी घुस गया, जबकि करण नगर रोड, सुजातपुरा और थोल रोड पर घुटनों तक पानी से यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। सूरत में भी हालात गंभीर हैं। महुआ के पास अंबिका नदी और ऐतिहासिक मदर डेयरी चेक डैम उफान पर हैं। वहीं किम इलाके में अस्पताल, मंदिर और कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। हॉस्पिटल के ICU तक में पानी पहुंचने से मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना पड़ा। लगातार बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने 24 घंटे निगरानी और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वलसाड़ में जलभराव के बीच सड़क पार करने की कोशिश एक मारुति वैन चालक को भारी पड़ गई और वाहन बीच पानी में फंस गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद वैन को बाहर निकाला। उधर गिर सोमनाथ में रिकॉर्ड बारिश से खेत नदी बन गए। कई इलाकों में जलभराव और पेड़ गिरने से यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा, जबकि वेरावल पोर्ट पर खतरे का नंबर 3 सिग्नल जारी कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो।
0: राम मंदिर न सिर्फ राम भक्तों की आस्था से जुड़ा मुद्दा है, बल्कि इसका सीधा असर यूपी चुनाव पर भी पड़ सकता है। ऐसे में 2027 को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी, जहां बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन अब यूपी के दौरे पर जा रहे हैं।
2: राम मंदिर को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन यूपी के दौरे पर जा रहे हैं। नितिन नवीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला ऐसा दौरा है जिसमें संगठन और सरकार के बीच चुनावी

0: संगठन और सरकार के बीच चुनावी तैयारी को लेकर लखनऊ में मंथन होगा, जहां यूपी के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम के अलावा संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी। वहीं बीजेपी के विधायकों और सांसदों के साथ मीटिंग का भी कार्यक्रम है। यूं तो लखनऊ में यूपी के चुनाव की रणनीति का बुनियादी ताना बाना बुना जाना है, लेकिन खबर है कि जल्द ही अमित शाह यूपी के सभी 6 क्षेत्रीय इकाइयों का दौरा शुरू करने वाले हैं। इसमें पश्चिम यूपी से लेकर ब्रज और कानपुर बुंदेलखंड से लेकर अवध, काशी, गोरखपुर क्षेत्र के दौरे तय किए गए हैं। इसकी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा नितिन नवीन के लिए बनाई जा रही नई टीम में यूपी के नए और युवा चेहरों की तलाश भी चल रही है। दिल्ली में कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बीएल संतोष की जो बैठक हुई है, उसका बड़ा हिस्सा यूपी चुनाव से जुड़ा था। खबर है कि इसमें सरकार से कुछ नेताओं को संगठन में लाने और यूपी संगठन से कुछ नेताओं को सरकार में जगह देने पर भी चर्चा हुई है, जहां अखिलेश के पीडीए की काट निकालने की रणनीति का खाका तैयार हो रहा है। अखिलेश के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले पीडीए फॉर्मूले का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने प्रदेश संगठन में ओबीसी पदाधिकारियों की संख्या 16 से बढ़ाकर 25 कर दी है। इसके अलावा बीजेपी के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के खासकर गंगा, घाघरा, दुआब की 15 लोकसभा सीटों वाले इलाकों का प्रदर्शन चिंताजनक है। बड़ी फिक्र के तौर पर यूपी की वो 61 विधानसभा सीटें भी हैं, जहां 15 साल में बीजेपी एक बार भी नहीं जीत पाई है। इसके अलावा 10 साल के योगी राज में पैदा हुई एंटी इनकम्बेंसी से निपटना भी बीजेपी के लिए आसान नहीं है। ऐसे में चर्चा है कि बीजेपी करीब 100 मौजूदा विधायकों के टिकट पर गंभीरता से विचार कर सकती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
1: पिछले कुछ चुनाव से एसआईआर का मुद्दा भी गर्म है, जिसे विपक्ष छोड़ता नहीं दिख रहा। अब एसआईआर को लेकर इंडिया ब्लॉक की ओर से एक चिट्ठी सीजेआई को लिखी गई है, जिसकी भाषा पर अब बीजेपी सवाल खड़े कर रही है।
2: एक ओर एसआईआर की प्रक्रिया कई राज्यों में चल रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। इंडिया ब्लॉक ने सीजेआई सूर्यकांत को पत्र लिखकर ईसीआई और सीईसी के खुले तौर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। 28 जून को लिखे इस खत पर टीएमसी, आप और डीएमके समेत 25 राजनीतिक दलों ने हस्ताक्षर किए हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने खत में लिखा है, विधानसभा चुनावों के एन पहले एसआईआर करना गलत था और इसे गलत तरीके से लागू करना एक बहुत बड़ी विफलता थी, जबकि इलेक्टोरल रोल्स 2002 में डिजिटलाइज होने के बाद से लगातार रिवाइज और अपडेट किए जाते रहे हैं।
3: एसआईआर को लेकर जितनी अनियमितताएं देखने को मिली हैं और खास तौर से एसआईआर के बाद जिस तरह से लोगों के और जिस तादाद में लोगों के नाम कटे हैं, जिस तादाद में लोगों ने इस पर एक नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, तो उसके बाद तो विपक्ष एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ेगा।
4: क्या आपने जिस भाषा शैली में सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखा है, ये वही अहंकारी भाषा शैली नजर आती है जो आपातकाल के समय में दिखाई पड़ती थी।
2: बिहार और बंगाल में बीजेपी विरोधियों के हार के बाद आने वाले यूपी चुनाव के मद्देनजर ये चिट्ठी अहम सियासी मुद्दा बन सकती है। हालांकि जहां चुनाव की निष्पक्षता पर इंडिया अलायंस के ऐसे सवाल हैं, वहीं यूपी में अखिलेश यादव समय से पहले ही चुनाव के लिए तैयार होने का दम भर रहे हैं।
5: अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करेंगे। जो लोग चुनाव नवंबर में कराना चाहते थे, सितंबर में करा दें, हम लोग तैयार हैं।
2: साफ है एसआईआर पर जारी घमासान के बीच अगला चुनाव यूपी में होना है। ऐसे में विपक्ष अब बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरने की हर कोशिश कर रहा है। आज तक ब्यूरो।
1: बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, अब सम्राट चौधरी के सहयोगी दल ही सवाल खड़े कर रहे हैं। चिराग पासवान ने भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात की और सिस्टम पर सवाल खड़े किए, जबकि इससे पहले जीतन राम मांझी भरत तिवारी एनकाउंटर को सही बता चुके हैं। ऐसे में चिराग और मांझी के बीच एक बार फिर एनकाउंटर को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई।
6: भरत तिवारी जी के साथ उन्होंने ही भक्षक बनने का काम किया, ऐसे में पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उनकी बात को उचित मंच तक पहुंचाया जा सके, इस सोच के साथ आज मैंने परिवार से मुलाकात की है। उनकी तमाम बातों को हर उस मंच पर रखा जाएगा ताकि परिवार को न्याय मिले।
7: चिराग पासवान जो करते हैं वही हम करेंगे, इस मामले में हमने बहुत पहले कर दिया है।
1: बात बाबा बर्फानी की करते हैं। पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई, श्रद्धालुओं के पहले जत्थे ने दर्शन कर भी लिए और बहुत से श्रद्धालु बेस कैंप पर वापस भी आ गए। इस बार की यात्रा बहुत खास है क्योंकि यात्रा बड़ी होने वाली है। भोले के भक्तों को बाबा के दर्शन के लिए इस बार 57 दिनों का समय मिला है।

अभी तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। आज तक की टीम भी पूरी यात्रा में मौजूद है।

0: बम बम भोले के नारों से कश्मीर की वादियां गूंज रही
1: है।
0: आज पहले जत्थे के दर्शन भी हो चुके हैं।
1: हम अपार मध्य प्रदेश
0: यात्रा इस बार खास इसलिए है क्योंकि ये लंबी चलेगी। अमरनाथ यात्रा इस बार 57 दिन की होगी। 3 जुलाई से 28 अगस्त तक यात्रा चलेगी। इस वक्त अलग अलग यात्रा मार्गों से करीब 20,000 लोग दर्शन करने जा रहे हैं। यात्रा में आज तक की कई टीमें मौजूद हैं। हमारी पहली टीम के जितेंद्र सिंह भी इस पहले जत्थे के साथ थे।
2: बाबा बर्फानी की गुफा के सबसे नजदीक पहुंचने वाला अकेला चैनल आज तक है। तस्वीरों में हम आपको सीधे लाइव दिखा रहे हैं कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु किस तरीके से यहां ऊपर की तरफ सीढ़ियों से होते हुए पहुंच रहे हैं। ये पवित्र गुफा बाबा बर्फानी की है और आज पहला जत्था यहाँ पर दर्शन कर चुका है। इसके साथ ही आज से जो ये शुरुआत हुई है दर्शन करने की, वो 28 अगस्त तक चलेगा। आप तस्वीरों में देखिए कि पूरा किस तरीके से यहाँ जो बाबा बर्फानी की गुफा के पास तैयारियां की गई हैं और यहाँ पर लोगों के लिए सुविधाएं भी अलग अलग तरीके की दी गई हैं। ये जो जल यहाँ से गुफा से आगे की ओर निकलता है, यहाँ पर भी लोग जल का आचमन करते हैं। लोग यहाँ पर यहाँ मिलते हैं और इसके साथ साथ स्नान करने के बाद बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन करने के लिए जाते हैं।
0: अमरनाथ यात्रा दो रास्तों से की जाती है। पारंपरिक रास्ता 48 किलोमीटर लंबा नुनवान पहलगाम से, दूसरा रास्ता गांदेरबल जिले में 13 किलोमीटर लंबे बालटाल से। हिंदुओं की यह सबसे बड़ी यात्रा है। सर्दियों में ये पूरा इलाका बर्फ से ढका होता है। मार्च में जब बर्फ गलती है तो यहाँ यात्रा का मार्ग साफ किया जाता है। यात्रियों के रुकने के लिए इंतजाम किए जाते हैं। इतना इंतजाम करते करते 3 महीने से ज्यादा का वक्त लगता है, इसीलिए अब जाकर यात्रा शुरू हुई है।
2: तस्वीरों में जो आप यहां पर देख रहे हैं, टेंट्स वगैरह जो लगे हुए हैं, ये श्रद्धालुओं के लिए यहां पर इंतजाम किए गए हैं कि उनको किसी भी तरीके की दिक्कत न हो। साथ ही बेस कैंप भी, हॉस्पिटल भी यहां पर बनाया गया है कि अगर श्रद्धालु किसी की इस 14,000 फीट की हाइट पर उनको परेशानी होती है या किसी भी तरीके से बीमार होते हैं तो उनके लिए इस तरीके की व्यवस्था यहां पर की गई है। तो ये पूरी तैयारी यहां पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा किया गया है। मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं, इसकी हाइट 14,000 फीट के आसपास है और बालटाल से होते हुए सीधा पूरा करीब 12 से 13 किलोमीटर का ये रास्ता है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इन सब के बीच होते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आज तक की टीम यहां पर पहुंची हुई है और आप पहले दर्शन यहां पर कर सकते हैं क्योंकि पहला जत्था जो है वो आज ही यहां पर पहुंचा हुआ है और सभी लोग लगातार यहां पर आ करके जयकारे लगा रहे हैं बाबा बर्फानी के और कोशिश उनकी यही है कि एक झलक बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद वो यहां से नीचे की तरफ रवाना हो।

0: बालटाल यात्रा का प्रमुख बेस कैंप है। यहाँ से आगे 13 से 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। यहीं पर 15 से 20 हजार श्रद्धालु होते हैं। आमतौर पर श्रद्धालु यहाँ से सुबह सुबह यात्रा शुरू करते हैं और पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के बाद शाम तक वापस भी लौट आते हैं। बालटाल में आज तक की दूसरी टीम मौजूद है।
1: अभी फिलहाल हम देखें तो करीब 20 हजार श्रद्धालु अलग अलग रास्तों में अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ लोग वहां सुबह पहली आरती करके, जो हमने तस्वीरें दिखाई, वहां से करके जो है वापस उतर रहे हैं और उनका पहुंचना अब धीरे धीरे शुरू हो गया है कि पहले जत्थे के जो श्रद्धालु थे वो धीरे धीरे करके जो हैं, अब आप तस्वीर में देख सकते हैं, धीरे धीरे करके वापस लौट रहे हैं। ये करीब सुबह 4 बजे बालटाल के रास्ते से गए थे, उससे पहले भी कुछ लोग निकले थे और अब जो है क्योंकि मौसम संभला है, रात भर बारिश हुई थी, सुबह भी करीब 9 बजे तक बारिश हो रही थी, लेकिन 9 बजे के बाद खुली धूप निकली है, रास्ते सूख गए हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है अमरनाथ यात्रा के लिए मिजाज जो है वो पूरी तरह से बन गया है।
0: लेकिन श्रद्धालु किस वक्त जाएंगे और कब लौटेंगे ये सब मौसम पर निर्भर करता है, जैसा कि आज हुआ। आज सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ था, लेकिन जब दूसरे जत्थे की बारी आई तो बारिश बहुत तेज होने लगी। पता चला कि श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, इसीलिए प्रशासन को यात्रा रोकनी पड़ी।
1: दिन ही इस अमरनाथ यात्रा में कल रात से जमकर यहां बारिशें हुई, पूरे अमरनाथ के जितने भी रास्ते हैं वहां पर बारिशें हुई और अब मौसम संभला है, लेकिन यहां पर अनुमान से भी ज्यादा भीड़ इस पहले दिन के दर्शन के लिए न सिर्फ बालटाल पहलगाम बल्कि अलग अलग पड़ावों पर जमा है। आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा, यहाँ पर एक परिस्थिति ऐसी बन गई है, ये करीब कई सौ श्रद्धालु हैं जो रोक दिए गए हैं अब, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है आगे अमरनाथ यात्रा के रास्तों पर। अब चूंकि नियम होते हैं दिन में 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु नहीं छोड़े जा सकते हैं, सुबह 4 बजे से ये यात्रा शुरू हो गई और अब 11 बजे को ये बंद कर दी गई है यहाँ से, क्योंकि अब जो दर्शन करके लौट रहे हैं वो काफिला वहां से लौट रहा है, काफी तंग रास्ते हैं पहाड़ों के बीच में से, तो किसी यात्री को कोई क्षति न पहुंचे उसके लिए फिलहाल अब आज जो है आज पहले जत्थे की यात्रा रोक दी गई है, कल सुबह दोबारा शुरू होगी।
0: प्रशासन की कोशिश थी कि 10 बजे तक दूसरे जत्थे को रवाना कर दिया जाए, लेकिन पीछे से और श्रद्धालु भी आ गए। अब अगर प्रशासन एक साथ इन श्रद्धालुओं को छोड़ देगा तो रास्ते में भीड़ हो जाएगी, धक्का मुक्की हो सकती है, इसीलिए जब भोले के भक्तों को रोका गया तो वो आक्रोशित भी होने लगे।
2: और हम यात्रा करने के लिए आए, ये 11 बजे का टाइम था, उससे पहले ही रास्ता बंद कर दिया इन्होंने, बंद कर दिया, अब यहाँ पे रोक रखे हैं। अब इससे लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, एक दिन ज्यादा रुकना पड़ेगा और कई जैसे लोग हैं जिन्होंने घोड़े पालकी कर लिए, अब वो उनके पैसे लग गए।
3: वो 7 बजे आए थे, सुबह 7 बजे बारिश के कारण यात्रा रोक दी थी, फिर कहा आप थोड़ी देर बाद आइए, जब हम 10:15 पर यहाँ आए तो यात्रा रोक दी गई, कहा कि 10 बजे का आखिरी समय है, इसके बाद आप यात्रा नहीं कर सकते। हम पिछले 1 घंटे से यहाँ पर पूरे खड़े हैं और ना हमें यहाँ से आगे जाने दिया जा रहा, ना किसी तरह का जवाब दिया जा रहा है।
4: 11 बजे का टाइम दिया था इन्होंने, कोई पहले इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए थी, अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी, इतने बजे तक गेट बंद होगा, आप आ जाओ यहाँ पे रोकने को, तो अभी 11 अभी बजे हैं, 10 बजे यहाँ से खड़े हैं, 10 बजे यहाँ से खड़े हैं, 11:15 हो गए, ये देख लो आप कितना टाइम होगा यहाँ पे खड़े।
0: अभी तो यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन जैसे जैसे बरसात बढ़ेगी, बारिश तेज होगी, हालात और खराब होंगे, लेकिन भोले के भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। बालटाल से अशरफ वानी के साथ जितेंद्र सिंह, अमरनाथ।
5: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: साढ़े साती के पहले चरण में क्या परिणाम आते हैं, क्या साढ़े साती के दूसरे चरण में संघर्ष बढ़ जाता है, क्या शनि जाते जाते जीवन में कुछ दे जाता है, शनि की साढ़े साती के चरणों का क्या है प्रभाव, जानिए मेरे साथ
8: सिर्फ नो टिकट नो लाइन जस्ट शो टाइम क्वेलो कॉन्सर्ट्स इज द डेस्टिनेशन फॉर म्यूजिक लवर्स विद थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रिफाइंग कॉन्सर्ट्स एंड म्यूजिक डॉक्यूमेंट्रीज ट्राई क्वेलो कॉन्सर्ट्स दैट्स QELLO फॉर फ्री ऑन Amazon Prime Video today.
9: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
10: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
11: भाग्य चक्र में

राम मंदिर के दान में हुए गबन की जांच कर रही एसआईटी एक बार फिर अयोध्या पहुंची है। इस बार जांच का दायरा काफी बड़ा है। दान में हेरफेर की आंच अब बड़े अधिकारियों तक पहुंच गई है। सेकेंड राउंड के पहले दिन एसआईटी की टीम ने बंद कमरे में 8 घंटे की मैराथन पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक गोपाल राव, चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा से भी पूछताछ की गई है। हालांकि एसआईटी और ट्रस्ट की ओर से अभी तक पूछताछ की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। एसआईटी टीम का नेतृत्व आईपीएस अधिकारी किरण एस कर रहे हैं। एसआईटी मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था, दान संग्रह की प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की भी बारीकी से जांच कर रही है। इस बीच चंपत राय का बयान सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने अपने करीबी सहयोगियों से कहा है कि अयोध्या में उनकी सेवा पूरी हो चुकी है और चंदे में हेराफेरी के विवाद के बाद वे दाग के साथ काम जारी नहीं रखेंगे। इस बीच मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आगे की पूछताछ के लिए अविनाश शुक्ला को पुलिस ने रिमांड पर लिया है, क्योंकि जांच के दौरान सबसे ज्यादा कैश 20,39,000 अविनाश शुक्ला के घर से बरामद किया गया था। कैश के साथ पुलिस को अमेरिकी डॉलर और सोने चांदी के जेवरात भी मिले हैं। समझ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: कि हम इस समय तेहरान में मौजूद है और हर बदलते घटनाक्रम की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।
1: मैं गीता मोहन सीधे तेहरान से आज तक के लिए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले की जांच जमीन घोटाले तक पहुंची। एसआईटी ने प्रॉपर्टी डीलर समेत लेन देन से जुड़े सभी लोगों से की पूछताछ। अविनाश शुक्ला की कार बरामद। पंजाब कांग्रेस में घमासान तेज। पूर्व सीएम चन्नी के समर्थन में कई विधायक और नेता। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए बने पहली पसंद। खड़गे करेंगे फैसला। देश के कई राज्यों में बेहिसाब बारिश से हालात खराब। गुजरात और मध्य प्रदेश के कई इलाके प्रभावित। महाराष्ट्र के कई शहरों में रेड अलर्ट। उत्तराखंड के हर्षिल में फिर मंडराया आपदा का खतरा। तेहरान में आयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा में ईरानी राष्ट्रपति समेत सभी वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। मौके पर आज तक भी मौजूद। पल पल की जानकारी। भारत और इंग्लैंड के बीच आज दूसरा T20 मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर सस्पेंस बरकरार।

एक बड़ी खबर आपको बता दें, थाईलैंड में लापरवाही से एक बड़ा हादसा हुआ है। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे। नाबालिग ने बौद्ध भिक्षुओं को टक्कर मार दी और ये बताया जा रहा है कि एक सड़क के किनारे में बौद्ध भिक्षु जा रहे थे। 11 साल का ये युवक बताया जा रहा है जो अचानक तेज रफ्तार से गाड़ी से आता है और कई बौद्ध भिक्षुओं को कुचल देता है। बेहद डराने वाली वो तस्वीरें हैं जो सामने आई है, जहां पर सड़क के किनारे बौद्ध भिक्षु जा रहे थे, एक कतार में जा रहे थे और अचानक एक तेज रफ्तार कार आती है जो बताया जा रहा है कि 11 साल का एक नाबालिग चला रहा था। ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में आप देखेंगे ये बौद्ध भिक्षु एक सड़क के किनारे जा रहे हैं और अचानक तेज रफ्तार कार आती है और कई बौद्ध भिक्षुओं को कुचल के चली जाती है। और ये बताया जा रहा है कि कई बौद्ध भिक्षु ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत गंभीर है। ग्यारह साल का ये बच्चा बताया जा रहा है जो कि कार चला रहा था, कार संभाल नहीं सका और उसके बाद एक के बाद एक कई बौद्ध भिक्षु लाइन से चल रहे थे, कतार में चल रहे थे, सड़क किनारे चल रहे थे, उन सभी को कुचलते हुए चला गया। जिसने भी तस्वीर देखी उसकी भी काटे, क्योंकि कई बौद्ध भिक्षु इस कार की चपेट में आ जाते हैं। अब ये तस्वीरें वायरल हो रही है, कई बौद्ध भिक्षुओं की जान पर बनाई। आठ बौद्ध भिक्षुओं की मौत की खबर है, आठ बौद्ध भिक्षु मर गए हैं क्योंकि एक नाबालिग लड़का जिसकी उम्र 11 साल बताई जा रही थी, वो गाड़ी चलाता है और उसके बाद तेज रफ्तार में, जबकि बौद्ध भिक्षुओं को आप देखेंगे तो वो सड़क किनारे बिल्कुल अनुशासन के साथ चलते आ रहे थे, एक के पीछे एक बौद्ध भिक्षु चल रहे थे, लेकिन उसी वक्त तेज रफ्तार कार आती है और कंट्रोल नहीं हो पाती, जो कतार में चले आ रहे बौद्ध भिक्षु को कुचल देती है।

देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि साढ़े साती के जो तीन चरण होते हैं उन चरणों का अलग अलग जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, कौन सा चरण तेज होता है और कौन सा चरण एवरेज होता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन शनिवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, दोपहर 12:39 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, दोपहर 1:43 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः काल 9:10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं शनि देव की 7.5 के बारे में और इसके अलग अलग चरणों के प्रभाव के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि शनि की 7.5 क्या है। देखिए, शनि देव एक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहते हैं। जब किसी राशि से 12वें जाते हैं तो पहला 2.5 साल शुरू होता है और वहां पर 7.5 शुरू हो जाती है। और जब राशि से दूसरे भाव को छोड़कर निकलते हैं तो 7.5 समाप्त हो जाती है। किसी राशि के 12वें रहेंगे तो पहला 2.5 साल, उस राशि में रहेंगे अगला 2.5 साल, उस राशि से दूसरे भाव में रहेंगे तो तीसरा 2.5 साल। जब लगातार एक राशि को शनि 7.5 साल तक प्रभावित करते हैं तो इसको 7.5 कहा जाता है। इसमें 2.5 साल के 3 चरण होते हैं और ये 2.5 साल के 3 चरण कुल मिलाकर 7.5 साल तक किसी राशि को प्रभावित करते हैं। शनि की 7.5 के 3 चरण का प्रभाव एक जैसा नहीं होता। 7.5 के अलग अलग चरणों का प्रभाव अलग अलग होता है और अलग अलग व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। शनि की 7.5 पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। हनुमान 40 का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, धन का लाभ होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके
दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब ये जानते हैं कि साढ़े साती जब शुरू होती है, जब उसका पहला चरण आता है तो पहले चरण का सामान्य प्रभाव क्या होता है। देखिए, जब शनि किसी राशि से बारहवें जाते हैं तो साढ़े साती का पहला चरण शुरू हो जाता है। साढ़े साती का पहला चरण सामान्यतः नकारात्मक नहीं होता। साढ़े साती के पहले चरण में स्थान परिवर्तन की संभावना जीवन में जरूर बनती है। और जब साढ़े साती का पहला चरण चलता है तो धन का खर्च थोड़ा बढ़ जाता है। सरदर्द और आंखों की समस्या व्यक्ति को हो सकती है। साढ़े साती का जब पहला चरण शुरू होता है तो यहां से माता पिता की आयु के लिए थोड़ा संकट शुरू हो जाता है। जैसे इस समय मेष राशि पर शनि की साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है। अगर आपकी साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है तो पहले चरण में हनुमान जी की आप जितनी उपासना करें, सुबह शाम कम से कम एक एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा करें तो आपको विशेष लाभ होगा। साढ़े साती के पहले चरण में अगर आपको परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करिए और हनुमान जी के मंदिर जा करके उनका नियमित दर्शन करिए, आपको लाभ होगा। आगे साढ़े साती के दूसरे चरण पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, बेवजह के तनाव से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन की हानि हो सकती है, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन कुछ बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, आर्थिक लाभ होगा, सेहत की स्थिति बेहतर होती जाएगी, नए काम की शुरुआत हो सकती है। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न अनुराग जुयाल ने हमें लिखा है, देहरादून से लिखते हैं। 22 फरवरी 1988 का जन्म है, सुबह 10:20 देहरादून। ये कह रहे हैं कि मेरे करियर में उतार चढ़ाव बहुत है, मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है, मुझे क्या उपाय करना चाहिए। अनुराग, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और मेष राशि की, महादशा मंगल की और अंतर दशा राहु की चल रही है। शनि की स्थिति की वजह से संघर्ष जीवन में ज्यादा है, पारिवारिक जीवन में भी और करियर में भी। सेहत में केवल आपको डाइजेशन का ध्यान रखना है और अपना तनाव थोड़ा कम पालना है। अप्रैल 2027 के बाद आपकी स्थितियां लगातार बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक माणिक्य बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य पहने, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं 7:30 के दूसरे चरण की। शनि जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो जिस राशि में रहते हैं उस पर 7:30 का दूसरा चरण शुरू हो जाता है। जैसे अभी शनि मीन राशि में हैं तो मीन राशि पर शनि की 7:30 का दूसरा चरण चल रहा है। 7:30 का दूसरा चरण सामान्यतः जीवन में संघर्ष बढ़ा देता है, मेहनत ज्यादा करवाता है, स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है। और 7:30 के दूसरे चरण का प्रभाव करियर पर अवश्य पड़ता है, करियर पर जरूर पड़ता है। जब 7:30 का दूसरा हिस्सा चल रहा हो तो करियर के निर्णयों में और बदलाव के मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। और 7:30 के दूसरे चरण में अक्सर ऐसा देखा गया है कि मैरिटल लाइफ में, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो दूसरे चरण में वैवाहिक जीवन का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी 7:30 का दूसरा चरण है
और आप इसमें लाभ चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के रास्ते नहीं बनेंगे। और अगर 7.5 का दूसरा चरण चल रहा हो तो नियमित रूप से दूसरों की सहायता करें, दान करें और सात्विक रहें। मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना करें, सात्विक रहें, मेहनत करें, दान करें, तब 7.5 का दूसरा चरण आपके लिए नकारात्मक नहीं होगा। 7.5 के तीसरे चरण की भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, संतान को लेकर समस्या हो सकती है, धन की हानि से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन कुछ बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। धनु राशि, तनाव समाप्त हो जाएगा, रुका हुआ काम बन जाएगा, लाभकारी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब जानते हैं 7.5 के तीसरे चरण के बारे में। जब शनि किसी राशि से दूसरे भाव में जाता है तो वहां से 7.5 उतरनी शुरू हो जाती है और ये 7.5 का अंतिम चरण होता है। शनि की 7.5 का अंतिम चरण सामान्यतः सबसे ज्यादा कठोर होता है। उतरती हुई 7.5 मुश्किलों का कारण बनती है। जैसे इस समय कुंभ राशि पर से 7.5 उतर रही है। उतरती हुई 7.5 स्वास्थ्य को और आर्थिक स्थिति को उलट पुलट कर देती है। और जब 7.5 का अंतिम चरण होता है उस समय जीवन में बड़े परिवर्तन अवश्य होते हैं, बड़े परिवर्तनों की संभावना जरूर बनती है। जब 7.5 का अंतिम चरण चले यानी 7.5 उतरने लगे, इसमें सावधानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है,
क्योंकि ये बुरी तरह से कोलैप्स कर सकती है, बुरी तरह से डैमेज कर सकती है। 7:30 के अंतिम चरण में हर तरह की सावधानी रखनी चाहिए, किसी तरह की लापरवाही ना करें। और 7:30 का अंतिम चरण माता पिता की आयु के लिए और स्वास्थ्य के लिए बड़ा कठिन होता है। अगर आपकी 7:30 का अंतिम चरण चल रहा है तो शनिदेव की जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा उपासना करें और सात्विक रहें। अगर सात्विक रहेंगे, शनिदेव की ज्यादा से ज्यादा उपासना करेंगे, तो 7:30 का अंतिम चरण आपके लिए बहुत नकारात्मक नहीं होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि।

आज बचिएगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी।

होगी, धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

लें, वाद विवाद से बचाव करें, खान पान में सावधानी रखें, शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन कुछ बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जब साढ़े साती उतरती है तो जाते समय कुछ दे कर जाती है, जाते समय फायदा पहुंचाती है, क्या ऐसा है? देखिए, शनि की साढ़े साती जब उतरती है 90% मामलों में फायदा नहीं पहुंचाती। शनि की साढ़े साती उतरते समय सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, सबसे ज्यादा मुश्किलें पैदा कर सकती है। अगर सर्वाष्टक वर्ग में और शनि के बिंदु ज्यादा दिखाई देते हों, उसके भिन्नाष्टक में शनि की पोजीशन जरूरत से ज्यादा अच्छी हो, तब शायद उतरती हुई साढ़े साती में नुकसान से बच सकें, अन्यथा उतरती हुई साढ़े साती कभी कुछ नहीं देती, उतरती हुई साढ़े साती में नुकसान जरूर होता है। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 2, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। नंबर 3, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 4, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 8, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 9, वाद विवाद से बचाव करें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न रश्मि ने हमें लिखा है और रश्मि हमें सहारनपुर उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 सितंबर 2003। जन्म का समय सुबह के 10:45। जन्म स्थान है सहारनपुर। ये कह रही हैं कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूं और उसकी मैं तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे प्रशासनिक सेवा में सफलता मिलेगी? रश्मि, अगर आप यूपी पीसीएस पे
स्टेट सर्विस कमीशन की नौकरियों पे फोकस करें तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना काफी है। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, 2028 और 2029 का समय आपकी तरक्की के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इस समय में आपको सफलता मिलेगी। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, लौंग खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, अपने साथ 2 लौंग रखकर जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो नीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान।

के लिए कार्यों में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा, मेष राशि के लिए धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज सावधान रहना होगा, कर्क राशि के लोगों को स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, विवाद हो सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आज के दिन की विशेषता क्या है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज चतुर्थी तिथि है, रिक्ता तिथि है, इसलिए आज कोई नया और शुभ कार्य ना करें और आज थोड़ा समय निकाल कर किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की वस्तु का दान करें, लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।

गुजरात में मानसून ने बरपाया कहर। मेहसाणा में पूरी रात बारिश के बाद पूरे इलाके में जल जमाव। वलसाड़ में मूसलाधार बारिश बनी आफत। बारिश के बाद पूरे इलाके में भारी जल जमाव। जल भराव के बीच कार निकालने की कोशिश फेल। वलसाड़ में मारुति वैन पानी में फंसी। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश का तांडव। जल भराव के बीच फंसकर वाहन खराब। 3 वाहन और 19 लोग फंसे। घटना की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। बचाव अभियान में 19 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। महाराष्ट्र और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। मुंबई में 6 जुलाई तक बारिश का अलर्ट और अगले 5 दिनों में गुजरात और गोवा में भारी बारिश का अनुमान। महाराष्ट्र के लोनावला में भारी बारिश के बाद मशहूर भूशी डैम ओवरफ्लो हुआ। मनमोहक नजारा देखने के लिए पर्यटकों का हुजूम। गुजरात के नवसारी और डांग जिलों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। उफान पर अंबिका और कई नदियां, जनजीवन प्रभावित। गुजरात के कई इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी। भारी बारिश के कारण खेत, सड़कें, नदियों में तब्दील। जल भराव से लोग परेशान। जूनागढ़ में भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया। उफंद नाले के बीच फंसी बस क्रेन से खींचकर निकाली गई बाहर। दिल्ली एनसीआर के लिए भी मौसम विभाग का येलो अलर्ट। देर रात झमाझम बारिश। जयपुर में बारिश के बाद टोंक रोड धस गई। किसी बड़े हादसे की आशंका। सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठे। मथुरा में भीषण गर्मी के बाद अचानक हुई बारिश। भारी बरसात के बाद जलमग्न हुई सड़कें। गोरखपुर के मुक्ति पथ पर सरयू नदी में डूबने से बचाई गई 5 जिंदगियां। मोटर बोट पलटने पर तुरंत एक्शन में आई रेस्क्यू टीम। उज्जैन में लगातार हो रही बारिश से क्षिप्रा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा और रामघाट सहित आसपास के छोटे मंदिरों तक पानी पहुंचा। चढ़ावा चोरी मामले में आज भी जारी रहेगा एसआईटी जांच का दूसरा चरण। जांच अब जमीन खरीद तक पहुंची। एसआईटी ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जमीन खरीद की जांच शुरू की। जमीन खरीद से जुड़े लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। एसआईटी ने कुछ प्रॉपर्टी डीलरों से भी की पूछताछ। टिन्नू यादव के 2 भतीजों से भी पूछताछ। सभी से करीब 3 घंटे तक पूछताछ हुई। राम मंदिर के कुछ सुरक्षा कर्मियों से भी एसआईटी की पूछताछ। बैंक कर्मचारियों से भी एसआईटी ने जुटाई जानकारी। पुलिस रिमांड में अविनाश शुक्ला से 13 घंटे की पूछताछ के बाद भेजा गया जेल। एसआईटी के हाथ लगे कई अहम सुराग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आरएसएस का पहला बयान। सरकार विवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा राम भक्तों की भावना को चोट पहुंची, दोषियों को सजा मिले। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का आरएसएस पर पलटवार। बोले आरएसएस ने अपनी छवि साफ करने की कोशिश की, सिर्फ दिखावे के लिए निंदा की। जयराम रमेश ने भी आरएसएस के बयान को निराशाजनक बताया। बोले आरएसएस की तरफ से दी गई क्लीन चिट शर्मनाक। चढ़ावा चोरी मामले में विनय कटियार से पीएम मोदी की कोई बात नहीं हुई। सूत्रों के हवाले से खबर। पहले कटियार ने प्रधानमंत्री से बातचीत का दावा किया था। लखनऊ में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 आयोजित। सीएम योगी ने महोत्सव का शुभारंभ कर प्रगतिशील बागवानों को सम्मानित किया। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार लखनऊ का दौरा करेंगे नितिन नवीन। लखनऊ में नितिन नवीन के स्वागत की भव्य तैयारी। एयरपोर्ट से बीजेपी मुख्यालय तक रोड शो। 2 दिन के यूपी दौरे पर रहेंगे। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। संगठन की रणनीति पर मंथन के साथ रणनीति तय होगी। बीजेपी अध्यक्ष पार्टी पदाधिकारियों के साथ अलग अलग करेंगे बैठक। सांसद और विधायकों से भी करेंगे मुलाकात। बैठक में बूथ सशक्तिकरण, जनसंपर्क और संगठन विस्तार पर मंथन। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का नया दांव पेच। आज राजस्थान गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। दोनों राज्यों को कई विकास परियोजनाओं की सौगात। राजस्थान में बाड़मेर के बालोतरा से सौगातों की शुरुआत। पीएम मोदी 1,06,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

0: जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन, मॉडिफाइड उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। राजस्थान में परियोजनाओं की बरसात के बाद गुजरात के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी, शाम 4:30 बजे सांणंद में सेमीकंडक्टर OS-80 प्लांट का उद्घाटन करेंगे। फैसिलिटी का उद्घाटन के बाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम, संबोधन के साथ पीएम मोदी के दौरे का समापन होगा। ईरान में पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई का अंतिम विदाई समारोह जारी है, शनिवार और रविवार को तेहरान में सार्वजनिक समारोह आयोजित किए जाएंगे। ग्रैंड मोसल्ला में आम लोगों के दर्शन के लिए ताबूत रखा जाएगा, अंतिम विदाई में 100 से अधिक देशों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद। ईरान और इराक के कई शहरों में 7 दिन तक धार्मिक अनुष्ठान, सोमवार और मंगलवार को शव यात्रा कुम शहर की ओर जाएगी। बुधवार को नजफ में रिसेप्शन और नजफ करबला में जुलूस होंगे, शुक्रवार को मशहद में अली खामनेई का अंतिम दफन संस्कार होगा। भारत, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, चीन और रूस समेत कई देशों के नेता शामिल होंगे। भारत से बिहार राज्यपाल अता हसनैन और पवित्रा मार्गरेचा रवाना हुए। T20 इथेनॉल ब्लेंडिंग से जुड़ी गलत जानकारियों का सरकार ने किया खंडन, इथेनॉल उत्पादन में 3 से 5 लीटर प्रोसेस्ड पानी प्रति लीटर उपयोग बताया गया। पानी की अधिक खपत और इंजन डैमेज के दावों को सरकार ने बताया गलत, 3 से 5 लीटर प्रोसेस्ड पानी की बात कही। इथेनॉल उत्पादन में पानी की बर्बादी के दावों का सरकार ने किया खंडन, धान और कम पानी वाली फसलों से हो रही है पैदावार। अमेरिका, ब्राजील और कनाडा समेत कई देशों से पहले से लागू इथेनॉल ब्लेंडिंग ARAI परीक्षण में वाहन प्रदर्शन पर नहीं मिला कोई नकारात्मक असर। ARAI परीक्षण में वाहन प्रदर्शन पर कोई नकारात्मक असर नहीं, उत्पादन क्षमता करीब 2000 करोड़ लीटर पहुंची। पश्चिम बंगाल की 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम का शुभारंभ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल में खुद को असली टीएमसी साबित करने की जंग तेज, ऋतुव्रत गुट ने पार्टी हेडक्वार्टर के गेट पर लगाया ताला, भारी बवाल मचा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अन्नपूर्णा योजना की राशि न मिलने पर फूटा महिलाओं का गुस्सा, पंचायत कार्यालय का घेराव। पंजाब कांग्रेस में घमासान तेज, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने आवास पर समर्थकों संग बैठक की। पूर्व सीएम चन्नी के समर्थन में आए कई विधायक और नेता, अमरिंदर राजाबड़ी को फिर पार्टी अध्यक्ष बनाने से नाराजगी, नेता शिकायत लेकर पार्टी अध्यक्ष खड़गे से बात करेंगे। पुणे केतन हत्याकांड में आरोपित सिया और चेतन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए, 16 जुलाई तक कस्टडी बढ़ी। चेतन हत्याकांड में पुलिस का हत्या के पर्याप्त सबूत मिलने का दावा, जब्त किया सिया का दूसरा मोबाइल, कहा कोडवर्ड में बात करते थे दोनों आरोपी, अब पॉलीग्राफ टेस्ट से होगा खुलासा। बच्चों में एनर्जी ड्रिंक की बढ़ती खपत को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर रोक। गुजरात में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, ATS ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया। मूसलाधार बारिश ने मुंबई में 3 दिन में 6 मौत हो गई है, खोखले पेड़, मैनहोल और बिजली के तारों से जा रही है जान, बीएमसी पर सवाल। पवित्र अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन कल, पहले दिन करीब 20,000 भक्तों ने दर्शन किए। बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौटने पर बाब विभोर नजर आए श्रद्धालु, प्रभु के दर्शनों को बताया जीवन का यादगार पल। यात्रा मार्ग पर प्रशासन के इंतजामों से संतुष्ट भक्त, भंडारे से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा इंतजाम। अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए स्वास्थ्य विभाग की पहल, नेशनल हाईवे 44 पर फर्स्ट एड कैंप लगाए और एम्बुलेंस तैनात। तीर्थयात्रा के दौरान ट्रैफिक की एडवाइजरी जारी की गई है, नेशनल हाईवे 44 पर बनी डिगडूल पंथियाल टनल और मगरकोट रामसू वायडक्ट को खोला गया। चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्कूटर से गश्त करेंगे RPF के जवान, प्लेटफॉर्म पर निगरानी, मदद और त्वरित कार्रवाई होगी आसान। शिरडी साई मंदिर को 17 लाख का स्वर्ण जड़ित शंख भेंट, चेन्नई की श्रद्धालु लक्ष्मीकांता गुप्ता ने साई बाबा के चरणों में विशेष शंख अर्पित किया। वाशिंगटन DC में जैन आचार्य लोकेश के बी सपोर्ट पीस अभियान को सांसदों के समर्थन, अमेरिकी राष्ट्रीय ध्वज और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित। नेशनल डॉक्टर्स डे 2026 पर फिट इंडिया 2.0 की शुरुआत, डॉक्टर सुनीता दुबे ने डॉक्टरों की सुरक्षा पर व्हाइट पेपर जारी कर AI आधारित सेफ्टी प्रोग्राम लॉन्च किया। ओडिशा के मयूरभंज में दर्दनाक सड़क हादसा, हाईवे पर लकड़ी से भरे ट्रक का रेस्क्यू के दौरान डंपर बेकाबू हो गया, डंपर से आसपास खड़े लोगों को डंपर ने कुचल दिया, 2 की मौत, 5 घायल। MP के सीहोर में आवारा कुत्तों का आतंक, 5 साल की बच्ची पर हमला। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में भयानक झड़प, विवाद बढ़ने पर एक पक्ष ने हाईवे जाम किया। दो परिवारों के झगड़े के बाद बढ़ी भीड़, एक कार का शीशा तोड़ा, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाला मामला। सोनीपत का कपड़ा गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की टीम ने काबू पाया। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर सड़क पार कर रहे ग्रामीण को टैंकर ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत। गोंडा में प्रेमी के लिए प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा, तीन बच्चों संग मोबाइल टावर पर चढ़ी विवाहिता, घंटों चला ड्रामा। आगरा में सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा, डेढ़ महीने तक लापता पति का चलता रहा नाटक, बाथरूम के फर्श के नीचे मिला शव। मॉडिफाइड साइलेंसर और हॉर्न पर बड़ी कार्रवाई, 300 साइलेंसर रोड रोलर से नष्ट। भारतीय बैडमिंटन में नया स्कोरिंग सिस्टम होगा लागू, इसके तहत 21 की जगह 15 पॉइंट्स का होंगे गेम। 7 से 14 जुलाई तक एर्नाकुलम में होने वाले ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग टूर्नामेंट में किया जाएगा नए नियमों का पहला इस्तेमाल। भारत और इंग्लैंड के बीच आज खेला जाएगा दूसरा T20 मैच, मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर होगा। मैच जीतने पर है दोनों टीमों की नजर, बारिश के कारण रद्द हुआ पहला मैच, चेस्टर ली स्ट्रीट के रिवर्स साइड ग्राउंड पर खेला गया था। कप्तान श्रेयस और अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक बार फिर तूफानी पारी की उम्मीद। वैश्विक अनिश्चितताओं और युद्ध संकट के बावजूद अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ी, घरेलू मांग, निवेश और स्थिर राजस्व संग्रह में आगे भी तेजी की उम्मीद। विदेश में यूपीआई पेमेंट को आसान बनाने के लिए एनपीसीआई ने एचएसबीसी इंडिया और जेपी मॉर्गन के साथ साझेदारी की। फाइनेंस कंपनियों का फोकस नए ग्राहकों पर बढ़ने से पहली बार लोन लेने वाले ग्राहक क्रेडिट ग्रोथ को नई रफ्तार देंगे। रिटेल स्पेस की लीजिंग सालाना आधार पर 18% बढ़ी, नई सप्लाई के मुकाबले मांग के लगातार बढ़ने से प्रॉपर्टी के किराए बढ़ने की संभावना। उत्तर प्रदेश में यूपी, नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा और गाजियाबाद में 10 नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। मैक्स मिन एंड म्याउजाकी का टीजर रिलीज, 10 जुलाई को होगा ट्रेलर। सिद्धार्थ मेनन, बंद्रा बेरी, नफीस अली मुख्य भूमिका में, 24 जुलाई को रिलीज होगी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: कि हम इस समय तेहरान में मौजूद है और हर बदलते घटनाक्रम की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।
1: मैं गीता मोहन सीधे तेहरान से आज तक के लिए।
2: Hi everyone, Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
3: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
4: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
5: What about me, Jack? What about me?
4: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
5: Well played, Jack. Well played.
4: Jack FM, playing what we want.
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
8: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
9: इन एसोसिएशन विद
10: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
9: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
11: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
12: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।
13: राम मंदिर के दान में हुए गबन की जांच कर रही SIT एक बार फिर अयोध्या पहुंची है। इस बार जांच का दायरा काफी बड़ा है। दान में हेरफेर की आंच अब बड़े अधिकारियों तक पहुंच गई है। सेकंड राउंड के पहले दिन SIT की टीम ने बंद कमरे में 8 घंटे की मैराथन पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक गोपाल राव, चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा से भी पूछताछ की गई है। हालांकि SIT और ट्रस्ट की ओर से अभी तक पूछताछ की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। SIT टीम का नेतृत्व IPS अधिकारी किरण एस कर रहे हैं। SIT मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था, दान संग्रह की प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की भी बारीकी से जाँच कर रही है। इस बीच चंपत राय का बयान सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने अपने करीबी सहयोगियों से कहा है कि अयोध्या में उनकी सेवा पूरी हो चुकी है और चंदे में हेराफेरी के विवाद के बाद वे दाग के साथ काम जारी नहीं रखेंगे। इस बीच मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आगे की पूछताछ के लिए अविनाश शुक्ला को पुलिस ने रिमांड पर लिया है, क्योंकि जांच के दौरान सबसे ज्यादा कैश 20,39,000 अविनाश शुक्ला के घर से बरामद किया गया था। कैश के साथ पुलिस को अमेरिकी डॉलर और सोने चांदी के जेवरात भी मिले हैं। समद श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
14: मोदी जी के साथ में संपर्क में है फोन पर,
15: इसी मामले में।
14: और यहाँ जब आ गए तो मोदी जी ने कहा रात को वो 1:30-2 बज गए होंगे रात के, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब। अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं, लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं ये, हाँ अनिल मिश्रा हैं, तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं अभी।

गुड मॉर्निंग मैसेज से लेकर रात के जरूरी काम निपटाने तक व्हाट्सएप हमारी जिंदगी का खास हिस्सा बन चुका है, लेकिन जल्द ही आपकी चैटिंग का अंदाज और पर्सनल डेटा पूरी तरह से बदल जाएगा। व्हाट्सएप एक नया यूजर नेम फीचर लेकर आया है, जिसे लेकर सरकार ने फ्रॉड के खतरों पर चिंता जताई थी। सरकार के नोटिस के बाद कंपनी ने भारत के 53.5 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सएप यूजर्स के लिए सुरक्षा से जुड़े नए नियम और गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। दरअसल नया फीचर आने के बाद व्हाट्सएप पर अपनी पहचान या फोन नंबर छिपाना बेहद आसान हो जाएगा। हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि इस यूजर नेम को बनाना सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, ये पूरी तरह से ऑप्शनल रहेगा। सुरक्षा के लिहाज से कंपनी ने मशहूर हस्तियों, राजनेताओं और सरकारी विभागों के नामों को पहले ही ब्लॉक कर दिया है, जिससे कोई उनका गलत इस्तेमाल न कर सके। इसके अलावा स्कैमर्स और फेक अकाउंट से आम जनता को बचाने के लिए कंपनी ने एक बेहद एडवांस सिक्योरिटी लेयर तैयार की है। अनजान लोगों से सुरक्षित रहने के लिए व्हाट्सएप यूजर नेम की नाम का नया सेफ्टी फीचर दे रहा है। इसके बाद कोई भी नया व्यक्ति बिना इस की के आपको मैसेज नहीं भेज पाएगा। चैटिंग के दौरान किसी अनजान यूजर नेम से मैसेज आने पर स्क्रीन पर इसकी जानकारी और वार्निंग दिखाई देगी। इस नई व्यवस्था में फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए ब्लॉक और रिपोर्ट होने वाले अकाउंट्स पर कड़ी नजर रखी जाएगी। कई छोटे बिजनेसमैन और क्रिएटर्स जो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक जैसी पहचान रखना चाहते हैं, वो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मौजूद अपने यूजर नेम को भी यहाँ क्लेम कर सकते हैं। साल के आखिर में पूरी तरह से रोल आउट होने वाले इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए यूजर व्हाट्सएप को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करके सेटिंग्स के अंदर अकाउंट ऑप्शन से मनपसंद नाम रिजर्व कर सकते हैं। ये नया कदम डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है। मेटा प्लेटफॉर्म्स के इस ऐप पर दुनिया भर में 3 अरब से ज्यादा लोग जुड़े हैं, जो रोजाना 140 अरब से ज्यादा मैसेज शेयर करते हैं। यूजर नेम के लाइव होने के बाद भी आज की तरह कोई भी अनजान व्यक्ति आपका नाम डायरेक्ट सर्च नहीं कर पाएगा। वहीं सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए यूजर अपनी इस सीक्रेट की को कभी भी रीसेट कर सकते हैं, और दावा किया गया है कि मशहूर नामों को एडवांस में बुक करने के इंटरनेट पर चल रहे दावे पूरी तरह से अफवाह और झूठे हैं। सरकार के कड़े रोक की वजह से कंपनी इस फीचर को पूरी तरह से परफेक्ट और फूल प्रूफ बनाने में जुटी है। आम नागरिकों के फीडबैक को ध्यान में रखकर ही इसे फाइनल स्टेज में लाया जा रहा है। यूजर नेम और प्राइवेसी की इस नई जुगलबंदी के बाद आम लोगों का पर्सनल डेटा पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सुरक्षित रहने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

अयोध्या राम मंदिर धान चोरी मामले की जांच जमीन घोटाले तक पहुंची। एसआईटी ने प्रॉपर्टी डीलर समेत लेन देन से जुड़े सभी लोगों से की पूछताछ। अविनाश शुक्ला की कार बरामद।

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू। पंजाब कांग्रेस में घमासान तेज। पूर्व सीएम चन्नी के समर्थन में कई विधायक और नेता। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए बने पहली पसंद। खड़गे करेंगे फैसला। देश के कई राज्यों में बेहिसाब बारिश से हालात खराब। गुजरात और मध्य प्रदेश में कई इलाके प्रभावित। महाराष्ट्र के कई शहरों में रेड अलर्ट जारी। उत्तराखंड के हरसिल में फिर मंडराया आपदा का खतरा। और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की अंतिम यात्रा में लाखों का हुजूम। आंसुओं में डूबा पूरा ईरान। श्रद्धांजलि सभा में रो पड़े राष्ट्रपति पेजेस्टियान। भारतीय दल ने भी दी श्रद्धांजलि।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। सुबह के 8 बज गए हैं और इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून की, जो इस समय गुजरात में जम के बरस रहा है। मानसून का पहला स्पेल गुजरात को पानी पानी कर चुका है। राजकोट, वलसाड, तापी, डांग, मेहसाणा, आणंद, ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। हर जगह बारिश से मुसीबत आप देख सकते हैं। मानसून ने पश्चिम भारत में रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। तस्वीरें बता रही हैं, कहीं शहर पानी पानी है, कहीं नदी और डैम उफान पर हैं, कहीं सड़कें अंडरपास, खेत सब कुछ जलमग्न है। तो ये तस्वीरें आपने देखी, हर जगह आपको क्या दिखाई देगा, हर जगह आपको बारिश दिखाई देगी। चलिए गुजरात के आणंद से मानसून की धमाकेदार एंट्री की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं गुजरात का आणंद है। अब इस तस्वीर में ध्यान से देखिए, ये एक चौराहा सा है। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये गाड़ियां देखिए, जहां पर भी आप देखेंगे आपको दूर दूर तक क्या नजर आएगा, ये साइकिल फंस गई, बच्चा धक्का दे रहा है, साइकिल फंस चुकी है यहां पर। अब सिर्फ साइकिल नहीं फंसी है, यहां पर आप देखिए बाइक गाड़ियां सब की एक ही जैसी हालत है। और बीच चौराहे पर जब ये देखिए बाइक डूब गई, अब कौन ये देखिए बाइक डूब गई, कौन यहां पर गाड़ी चलाएगा। सड़कें आजकल गाड़ी चलाने के लिए नहीं रह गई हैं। बारिश में क्या होता है, बारिश में आप यहां पर नाव चलाइए तो आप सक्सेसफुल हैं। ये गाड़ी तो यहां पर बैठ गई, नहीं चल पा रही, क्योंकि आप देखिए हर जगह पानी जमा हुआ है। लोग बाग कैसे निकाल रहे हैं, कुछ गाड़ियों को धक्का दे रहे हैं, साइलेंसर में पानी घुस जा रहा है। बच्चे हालांकि थोड़ी बहुत मस्ती कर देते हैं, उनको मौका मिल जाता है, यहां पर घूमने नहीं जा पाते तो बारिश में मजे ले लेते हैं। ये गुजरात के आनंद की हमने आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कुछ देर तक बारिश हुई, टावर बाजार रणमुक्तेश्वर मंदिर घुटनों तक पानी आ गया, दो पहिया वाहन फंस गए। मौसम विभाग ने गुजरात के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। गुजरात के आणंद की तस्वीर देखी, अब आपको अमरेली की तस्वीर दिखाते हैं। लगातार बारिश से यहां पर भी जनजीवन प्रभावित हो गया है। यहां भी आप कह सकते हैं कि सड़क है, तालाब है, कुछ पता नहीं, लेकिन जो है आपके सामने है। लाठी, दामनगर और वाडिया इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद कई गांव और शहरों में सड़कें जलमग्न हो गई। 1 घंटे में करीब 3 इंच बारिश दर्ज की गई, गलियां नदी जैसी नजर आई और हर जगह नदी नाले जैसा हालात थे। बच्चे यहां भी मस्ती कर रहे हैं, उनके लिए एंटरटेनमेंट का ये जरिया है, लेकिन कई लोगों के घर में पानी घुस जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं। यहां भी देखिए छाते तो निकल चुके हैं, लेकिन यहां पर आपको गाड़ियां दिखाई नहीं देंगी क्योंकि भरोसा ही नहीं है। गुजरात की ही और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अब राजकोट का ये हाल देख लीजिए, दे धक्का, यहां पर धक्का दिया जा रहा है बाइक में। क्यों? क्योंकि बाइक हो गई है बंद, पानी भर चुका है और यहां पर देखिए एक पहिया डूब चुका है। इस तरह से बच्चे यहां पर भी डुबकी लगा रहे हैं, तैरने की कोशिश कर रहे हैं, सड़कों पर तैरने की कोशिश की जा रही है। कुछ वक्त की बारिश, सड़कें पानी पानी, यही कहानी हर बार की। तो ये आप देख रहे हैं राजकोट की तस्वीरें हैं, ये सरदार चौक बस स्टैंड रोड, कई इलाके जलभराव हो गया, यातायात प्रभावित हुआ, लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो मानसून ने पश्चिम भारत में रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कहीं शहर पानी पानी है, कहीं नदियां चेक डैम उफान पर है, कहीं सड़कें अंडरपास, सब कुछ जलमग्न हो गए हैं। बारिश के कहर की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
1: सबसे पहले गुजरात के मेहसाणा के कड़ी की तस्वीरें, जहां एक ही रात में 8 से 9 इंच बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। तीनों मुख्य अंडरपास डूब गए, कई रिहायशी इलाकों और घरों में पानी घुस गया, जबकि करण नगर रोड, सुजातपुरा और थोल रोड पर घुटनों तक पानी से यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। सूरत में भी हालात गंभीर हैं। महुआ के पास अंबिका नदी और ऐतिहासिक मदर डेयरी चेक डैम उफान पर हैं। वहीं किम इलाके में अस्पताल, मंदिर और कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। हॉस्पिटल के आईसीयू तक में पानी पहुंचने से मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना पड़ा। लगातार बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने 24 घंटे निगरानी और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वलसाड़ में जलभराव के बीच सड़क पार करने की कोशिश एक मारुति वैन चालक को भारी पड़ गई और वाहन बीच पानी में फंस गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद वैन को बाहर निकाला। उधर गिर सोमनाथ में रिकॉर्ड बारिश से खेत नदी बन गए। कई इलाकों में जल भराव और पेड़ गिरने से यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। जबकि वेरावल पोर्ट पर खतरे का नंबर 3 सिग्नल जारी कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो।
0: गुजरात का हाल आपने देख लिया, अब आपको राजस्थान के जयपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। राजस्थान के जयपुर में मॉनसून की पहली ही बारिश ने शहर के विकास कार्यों की पोल खोल दी है। तस्वीरें आपके सामने, ये है विकास। सबसे व्यस्त मानी जाने वाली टॉक रोड अचानक बीचों बीच धस गई, गड्ढा हो गया। लोग देखने के लिए आ गए कि भाई हो क्या रहा है यहाँ। 20 फीट चौड़ा, 10 फीट गहरा विशाल गड्ढा बन गया। अब इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि हादसे के समय कोई बड़ा वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। मौके पर पुलिस पहुंची, प्रशासन की टीम पहुंची, बैरिकेटिंग की, यातायात डायवर्ट किया। सीवरेज और गैस पाइपलाइन कार्य में लापरवाही को इसके पीछे कारण बताया जा रहा है। सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और जो लोग ये तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, और जो लोग गाड़ी से चल रहे हैं, उनके मन में कहीं सवाल उठ रहा है, ऐसा ना हो कि हम गाड़ी से चल रहे हैं और अचानक सड़क धस जाए।
2: जयपुर में जगह जगह पे चल रही खुदाई से ऑलरेडी काफी सारे लोग यहाँ पे परेशान हो चुके हैं। और अभी अभी देखा गया है कि यहाँ पे गैस की पाइपलाइन जो डल रही थी, वहाँ ऑलरेडी जो गड्ढा हो रखा था उससे बारिश का पानी भर गया, और उसके बाद में मिट्टी गलने से अचानक पूरी रोड में ये बहुत बड़ा सा गड्ढा देखा गया है, जिसकी वजह से ये चलती जो मेन रोड है, सबसे ज्यादा हैवी ट्रैफिक वाली जयपुर की रोड है, वहां पे गड्ढा होने से बहुत बड़े बड़े नुकसान और हादसे जो हैं वो आज हो सकते थे। मेरे पीछे आप गाड़ियां भी देख रहे होंगे किस तरीके से यहां से लगातार गाड़ियां निकल रही है, जबकि ये गाड़ियां जो है वो डाइवर्जन के बाद में, इस ट्रैफिक को कम करने के बाद में इतनी गाड़ियां हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे ये सबसे बिजी रोड जो है जयपुर की वो माना जाता है, और ऐसे में ऐसी जो लापरवाही है वो बिल्कुल भी यहाँ पे सरकार से और जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं उनसे उनकी उस चीज की उम्मीद नहीं की जा सकती है। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, आज तक जयपुर।
0: गुजरात देख लिया, राजस्थान देख लिया, अब आपको मुंबई लिए चलते हैं। बारिश ने मुंबई में आफत ला दी है। बीएमसी के दावों की पोल खुल गई है। बारिश की वजह से मौत के बढ़ते आंकड़ों ने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
3: ये देश के बिजनेस कैपिटल का हाल है, जहां पाइप फटकर फव्वारा हो गया है, सड़कों पर पेड़ गिर रहे हैं तो लोगों की जान जा रही है, तार गिर रहे हैं तो करंट से मौत हो रही है, अंडरपास डूबे हुए हैं, मैनहोल, गड्ढे सब मौत का इंतजार कर रहे हैं। अब तक सिस्टम की लापरवाही 6 लोगों की जान ले चुकी है। आज मुंबई से सटे मीरा भयंदर में प्रशासन की लापरवाही से एक और शख्स की जान चली गई। नारियल के पेड़ के नीचे दबने से जो स्कूटी सवार घायल हुआ था उसकी मौत हो गई। मानसून की दस्तक के साथ ही मुंबई में इंतजामों के दावों की पोल खुल गई है। वहीं पुणे में भी बारिश के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ। पुणे के लोनी कालभोर गांव में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में गिरने से एक 2 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद से परिवार में मातम पसरा है। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात अयोध्या चढ़ावा चोरी की करते हैं। आरोपी अविनाश शुक्ला को पूछताछ के बाद अब जेल भेज दिया गया। अयोध्या पुलिस ने कल उसे 13 घंटे तक पूछताछ की, जिसके आधार पर एक कार भी जब्त की गई जो पिछले साल उसने खरीदी थी। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में आरोपी अविनाश शुक्ला से घंटों पूछताछ के बाद अयोध्या जिला जेल अविनाश को भेज दिया गया है। अपने भाई के नाम पर अविनाश शुक्ला ने कार खरीदी थी पिछले साल, अब उसको भी जब्त कर लिया गया है।
4: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला से 13 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड में जहां एक तरफ पूछताछ की गई, उसको योग केंद्र से लेकर 14 कोसी परिक्रमा के उस मार्ग तक लेकर जाया गया, जहां पर ये सारे चढ़ावा चोरी के आरोपी मिलकर पैसों की बंदरबांट करते थे। वहीं दूसरी तरफ अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर एक कार भी बरामद हुई है। यह कार ये पीछे खड़ी है, ये विटारा ब्रीजा कार है, ये बरामदगी हुई है। ये कार है जो अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक के नाम पर दर्ज है। और ये गाड़ी आपको दिखाते हैं, ये विटारा फोर्थ इसका ओनर है, यानी कि पुरानी गाड़ी है, सेकेंड हैंड खरीदी गई। और ये गाड़ी का आप पीछे से नंबर प्लेट नहीं दिख रहे, लेकिन आगे से हम आपको नंबर प्लेट भी दिखाते हैं। ये नंबर प्लेट है इसकी, ये कैमरा पर्सन दीप दिखा रहे हैं, UP42AP6054। ये गाड़ी है जो बरामद हुई है उस अविनाश शुक्ला से, जिसके पास से पुलिस ने सभी 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सबसे ज्यादा कैश बरामद किया था, 20,39,000 से अधिक का कैश बरामद किया था। और अब जब 13 घंटे की PCR की गई, तो इस PCR में, यानी कि पुलिस कस्टडी रिमांड में पूछताछ के बाद, अविनाश शुक्ला से यह गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। अयोध्या से कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।
0: तो राम मंदिर की चढ़ावा चोरी पर घमासान मचा हुआ है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर SIT की जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा सियासत बड़े चेहरों को लेकर है। अब सवाल यह कि क्या ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर भी एक्शन होगा, क्योंकि सूत्रों की अगर माने तो SIT चंपत राय समेत ट्रस्ट से जुड़े कई लोगों के जवाबों से संतुष्ट नहीं है।
3: राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जिस चंपत राय को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, अब जांच की आंच उन्हीं चंपत तक पहुंच रही है। SIT टीम ने फिर ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। टीम ने चढ़ावे के ऑडिट से जुड़े दस्तावेज कब्जे में लिए और पदाधिकारियों से इससे जुड़े सवाल पूछे। सूत्रों के अनुसार पूछताछ में कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले, जिससे आने वाले दिनों में पूछताछ का दायरा और बढ़ेगा। हालांकि राम मंदिर मामले के खुलासे के करीब 1 महीने बाद संघ ने चुप्पी तोड़ी है।
5: श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर, पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे।
3: अब साधु संतों और कथावाचकों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है।
6: इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। हमें उनसे सावधान रहना होगा, हमें उनसे सजग रहना होगा।
3: बहरहाल SIT की जांच जारी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या बड़े चेहरों की भी जिम्मेदारी तय होगी। आज तक ब्यूरो।
0: तो अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने क्या फिर से चले गए वनवास थीम पर एक गाना जारी किया। अब पार्टी का दावा है कि यह गीत मंदिर में चढ़ावे की हेराफेरी के मुद्दे पर सवाल उठाता है, और इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। सुन लीजिए।

0: अब बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावे में हेर फेर के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। बद्री केदार मंदिर समिति यानी BKTC ने पूरे मामले की आंतरिक जांच के आदेश दे दिए हैं। समिति का कहना है कि शुरुआती स्तर पर तथ्यों की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही BKTC ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिस कर्मचारी का नाम सामने आ रहा है वो चेयरमैन का निजी सचिव नहीं है बल्कि समिति का नियमित कर्मचारी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई अब की जाएगी।
1: हमें श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी गण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस, शो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
0: बात अमरनाथ यात्रा की करते हैं। बाबा बर्फानी की यात्रा का आज दूसरा दिन है। दुर्गम रास्तों से होते हुए महादेव की पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे सहयोगी अशरफ वानी भी श्रद्धालुओं के साथ चल रहे हैं। बालटाल से उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
2: अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन है और बराबर अमरनाथ श्रद्धालुओं में उत्साह बना हुआ है। हजारों की तादाद में कल भी पहले दिन अमरनाथ गुफा की ओर श्रद्धालु जो है चल पड़े थे और दर्शन करके उनमें से अधिकतर वापस लौट आए और अब आज दूसरे दिन भी हजारों की तादाद में बालटल के रास्ते से भी और पहलगाम के रास्ते से भी अमरनाथ गुफा की ओर दूसरा जत्था जो है श्रद्धालुओं का वो आगे बढ़ चुका है। सुबह 4 बजे से ही अमरनाथ यात्रा के लिए जो है दोनों बेस कैंप से बालटाल से भी और पहलगाम से भी श्रद्धालुओं को आगे चलने की इजाजत मिली है। अब की बार काफी नियम काफी व्यवस्था के साथ जो है श्रद्धालुओं को एक सीमित तरीके के तहत आगे अमरनाथ गुफा में दर्शन की ओर के लिए भेजा जा रहा है। यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो इस यात्रा का हिस्सा आज बन रहे हैं, दूसरे दिन उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए।
3: अनिल कुमार।
2: अनिल जी कहाँ से हैं आप?
3: उत्तराखंड से, देहरादून।
2: आज दूसरे दिन दूसरे दर्शन के लिए आप जा रहे हैं तो अभी फिलहाल मौसम वगैरह इंतजाम कैसे लग रहे हैं?
3: मौसम सही है पर इंतजाम ठीक है, पर नीचे बहुत ज्यादा भीड़ है, श्रद्धालु बहुत आए हुए हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है नीचे।
2: फिलहाल मौसम भी मेहरबान है, कल बारिशें हुई थी, आज बहुत अच्छा मौसम है तो उस बीच उम्मीद जताई जा रही है कि जिस अंदाज से कल करीब 20,000 श्रद्धालु अमरनाथ गुफा की ओर गए थे आज भी कुछ संख्या उसी नवियत की होगी जिस अंदाज से यहां पर भीड़ नजर आ रही है। तारिक लोन के साथ अशरफानी, बालटाल आज तक।
0: अब आपको दिखाते हैं कि इस वक्त मिडिल ईस्ट के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे भावुक, सबसे तनावपूर्ण घटनाक्रम इस वक्त ईरान की धरती पर चल रहा है। युद्ध के पहले ही दिन अमेरिकी और इजरायली हमले में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई का जो पार्थिव शरीर है वो विदाई समारोह के लिए रखा गया है। तेहरान की सड़कों पर रोती बिलखती आवाम का समंदर उमड़ पड़ा है।
4: बात करें तो यहाँ पर अब भीड़ बढ़नी शुरू हो चुकी है। सुबह के बाद धीरे धीरे लोग यहाँ पर सड़कों पर जुटना शुरू हो चुके हैं और चारों तरफ आपको काले लिबास में नजर आए लोग, यानी शोक को प्रतीत करते हुए, शोक को दिखाते हुए काले लिबास में लोग नजर आ जाएंगे। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे आपको इन सड़कों पर सिर्फ सिर्फ लोगों की आवाजाही नजर आएगी। थोड़ी देर में ये भीड़ और बढ़ती चली आएगी, यानी वक्त जैसे जैसे बढ़ेगा भीड़ और बढ़ेगी। 8 बजे करीब जो है वो जो ग्रेट मसल्ला है वहां पर उन गेट को खोला जाएगा और उसके बाद भीड़ अंदर जानी शुरू हो जाएगी, यानी उससे पहले ही यहाँ पर लोग पहले से वहाँ पर पहुँचना चाहते हैं। और इस समय के ताज़ा हालात अगर आप मेरे पीछे देखें, आपको बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, युवा हो, सभी लोग यहाँ पर सड़कों पर आपको नजर आएंगे क्योंकि यहाँ पर कई सड़कों को बंद कर दिया गया और अब धीरे थोड़ी देर बाद इन सड़कों को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसे में लोग पैदल ही यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से ग्रेट मसल्ला जो इनकी जो सबसे बड़ी आप कह सकते हैं मस्जिद है या फिर वो इलाका जहाँ पर सुप्रीम लीडर आयतुल्ला हिजबुल्लाह अली खामनेई के शव को पार्थिव शरीर को रखा गया है, वो यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर दूरी पर है और यहाँ पर लोग यहाँ से पैदल ही उस तरफ की तरफ वो वहाँ पर जाएंगे। और अभी अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको हर जगह इस तरीके के बैनर्स या फिर इस तरीके के काउंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर लोगों के लिए पीने का पानी या कई जगहों पर उनके लिए खाने पीने का सामान और मेडिकल एड या फिर मेडिकल सुविधाओं के देने की भी कोशिश यहाँ पर की गई है।
0: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
7: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
4: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
5: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
6: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
7: हमने तब भी सवाल किया था,
8: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
7: हम आज भी सवाल करते हैं,
8: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
7: ऑपरेशन अग्नि,
8: आज तक के ही स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
7: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
9: In association with
10: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।

0: गुजरात के जूनागढ़ में महज एक दिन में 10 इंच बारिश दर्ज की गई। हालात ये हैं कि नोली नदी उफान पर है, लंबोरा डैम ओवरफ्लो हो रहा है। रही सही कसर शहर की सड़कों पर बने गड्ढों ने पूरी कर दी है, जो बारिश के दौरान हादसों की वजह बन रहे हैं। गुजरात के सोमनाथ पाटन शहर में भी मौत के मैनहोल खुले पड़े हैं। ये तस्वीरें गुलाब नगर इलाके की हैं, जहां एक साइकिल सवार बच्चे को स्कूल से लेकर लौट रहा था, लेकिन गड्ढे में जा गिरा। वडोदरा में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। महज कुछ घंटे की बारिश में सड़क का एक हिस्सा तरक गया। तस्वीरें लालपुरा गांव की ओर जाने वाली सड़क की है। ये गड्ढा किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। भरूच में तो हादी हो गई। अंकलेश्वर के पिलूदरा गांव के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बीचों बीच बड़े बड़े गड्ढे दिलों में खौफ पैदा कर रहे हैं। कंक्रीट के स्लैब को देखिए, जिसमें लोहे के सरिये साफ नजर आ रहे हैं। बात गुजरात की है तो जरा सूरत में भ्रष्टाचार और लापरवाही की तस्वीर भी देखिए, जो बारिश के पानी में उजागर हो गई है। हाल ही में बनी नई सड़क बीचों बीच ऐसे धंसी कि एक भारी भरकम टैंकर उसमें फंस गया। तकरीबन पूरे सूरत में ही खस्ताहाल सड़कें बारिश होते ही धंसने लगे हैं। गड्ढे शहर में जगह जगह हादसों को न्योता दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं खुल रही।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
6: Tune in is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news, and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: बेंगलुरु में डे केयर के शैतानों पर बड़ा खुलासा। कैसे डे केयर सेंटर में बच्चे को वॉशिंग मशीन में डालकर डराया। बच्चे को बाथरूम में बंद किया, मुंह पर टॉयलेट जेट से पानी डाला। मासूम के साथ प्रताड़ना के वीडियो से कांप उठेगा कलेजा। बेंगलुरु में कैप जेमिनी कंपनी के डे केयर सेंटर ने हद पार कर दी। मासूम की चीखों में छिपा ये दर्द बेरहमी की पूरी कहानी बयान कर रहा है। 29 जून का ये वायरल वीडियो बेंगलुरु में आईटी कंपनी कैप जेमिनी के एचईएल कैंपस में चल रहे डे केयर सेंटर का है, जहां 2 से 3 साल के बच्चों के साथ बदसलूकी की जा रही है। वीडियो में बच्चा टॉयलेट में बंद है, फर्श पर लेटा हुआ है और जोरों से रो रहा है। एक महिला बच्चे के बिलखने का वीडियो बना रही है। एक और वीडियो में महिला बच्चे को टॉयलेट सीट पर बैठाकर उसके मुंह पर जेट स्प्रे से पानी डाल रही है। इसके अलावा बच्चे को फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के ड्रम में बैठाकर रखा गया है, उसे डराया जा रहा है, बच्चा रो रहा है। एचएल पुलिस स्टेशन में अब 5 महिला केयर गिवर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज और सभी दूसरे तकनीकी सबूतों की बारीकी से जांच की जा रही है। अब पुलिस ने 5 केयर गिवर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास भी शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आरोपी केयर गिवर्स को नोटिस जारी किए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। इन डे केयर सेंटर्स में ज्यादातर आईटी कंपनी में काम करने वाले माँ बाप अपने महज 2 से 3 साल के बच्चों को छोड़कर जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं कि जिन बच्चों के लिए वो कमा रहे हैं उन पर ऐसे अत्याचार किए जा रहे हैं। कैप जेमिनी ने एक बयान में कहा है कि उसके कर्मचारियों और उनके परिवारों का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कंपनी ने कहा कि वो जांच में पूरी तरह सहयोग कर रही है और एहतियाती कदम के तौर पर डे केयर सुविधा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: एक बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर यह बड़ी खबर है। पूछताछ के दौरान आरोपित अविनाश शुक्ला को दिखाई गई 45 दिनों की चोरी की सीसीटीवी सबूत उसको दिखाएगा अविनाश शुक्ला को जब पूछताछ हुई कि ये देखिए सीसीटीवी में पैसा चोरी करते देखते ही टूट गया अविनाश शुक्ला। अविनाश शुक्ला ने पुलिस की पूछताछ में माना कि वो लगातार चढ़ावे से चोरी कर रहा था। अविनाश शुक्ला ने चोरी की रकम से अपने भाई के नाम पर ब्रीजा कार खरीदी थी। भाई सरकारी टीचर था, इसीलिए ब्रीजा कार भाई के नाम पर खरीदी ताकि किसी को शक ना हो। चढ़ावा चोरी का मामला खुलते ही ब्रीजा कार को प्रतापगढ़ स्थित घर पहुंचवा दिया था। अविनाश शुक्ला अब गिरफ्तार हुआ है और भाई अभिषेक से पूछताछ की गई। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान अविनाश ने माना कि ब्रीजा कार चोरी की रकम से खरीदी गई थी। एक और अहम खुलासा हुआ है, सभी आरोपित एक दूसरे को जानते थे कि कौन कैसे चोरी कर रहा है। सबकी साठगांठ थी, मिली भगत थी। चोरी करने के बाद सभी मीटिंग करते थे। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के सुनसान इलाके में ये मीटिंग होती थी, सभी जहां पर एकजुटते थे। अनुकल्प मिश्रा से लेकर लवकुश मिश्रा, रामशंकर मिश्रा, सभी 6 आरोपियों की मीटिंग होती थी। संतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। संतोष, ये तो बहुत बड़ा खुलासा है कि तस्वीरें दिखाई गई, वीडियो दिखाई गई तो रो गया, कबूल किया और माना कि यहाँ चोरी की थी।
4: देखिए बिल्कुल, अयोध्या पुलिस ने जब 13 घंटे की रिमांड ली तो अविनाश शुक्ला को लगातार उसकी जो करतूत थी, उसकी चोरी करते हुए जो सीसीटीवी थी वो दिखाई गई। पहले तो वो मना करता रहा कि नहीं, वो चोरी नहीं करता था, उसको गलतफहमी में पकड़ा गया, ये जो पैसे बरामद हुए हैं ये उसके अपने पैसे हैं, उसके भाई के पैसे हैं क्योंकि वो सरकारी टीचर है। लेकिन जब पुलिस ने उसको सीसीटीवी दिखाया कि ये देखो चोरी कर रहे हो, ये देखो चोरी कर रहे हो, तब जाकर के वो टूट गया और तब उसने माना कि हाँ चोरी करते थे। और इसके साथ ही पुलिस इसके 13 घंटे की रिमांड के दौरान उस जगह पर भी ये लेकर के गया अविनाश शुक्ला, जहाँ 14 कोसी परिक्रमा लखनऊ अयोध्या हाईवे के किनारे एक सुनसान इलाका है जहाँ ट्रकों की मरम्मत का काम होता, उसके उस सुनसान इलाके में ये लोग मीटिंग करते थे और मीटिंग रोज लगभग होती थी और आपस में तय होता था कि किसने कितना पैसा चुराया। और इस मीटिंग में न सिर्फ लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा, अविनाश शुक्ला, सारे आरोपी जो गणना में लगे थे, जो गिरफ्तार किए गए के आरोपी वो भी बैठते थे। और अभी हाल ही में जब मई के आधे सप्ताह में ये पूरा मामला खुलने लगा तो उससे पहले आखिरी मीटिंग इनकी हुई थी और इस मीटिंग में मनीष यादव जो टिन्नू यादव का भतीजा है वो भी 1 से 2 मीटिंग में शामिल हुआ।

Watcha Pani. चढ़ावा चोरी मामले में आज भी जारी रहेगा एसआईटी जांच का दूसरा चरण। जांच अब जमीन खरीद तक पहुंची। एसआईटी ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जमीन खरीद की जांच शुरू की। जमीन खरीद से जुड़े लोगों की पूछताछ के लिए बुलाया गया। एसआईटी ने कुछ प्रॉपर्टी डीलरों से भी पूछताछ की। टिन्नू यादव के दो भतीजों से पूछताछ, सभी से करीब 3 घंटे पूछताछ हुई। राम मंदिर के कुछ सुरक्षा कर्मियों से भी एसआईटी की पूछताछ। बैंक कर्मचारियों से भी एसआईटी ने जानकारी जुटाई है। पुलिस रिमांड में अविनाश शुक्ला से 13 घंटे की पूछताछ के बाद भेजा गया जेल। एसआईटी के हाथ लगे कई अहम सुराग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आरएसएस का पहला बयान। सरकार बाहर दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, राम भक्तों की भावना को चोट पहुंची, दोषियों को सजा मिले। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का आरएसएस पर पलटवार, बोले आरएसएस ने अपनी छवि साफ करने की कोशिश की, सिर्फ दिखावे के लिए निंदा। जयराम रमेश ने भी आरएसएस के बयान को निराशाजनक बताया, बोले आरएसएस की तरफ से क्लीन चिट देना शर्मनाक। चढ़ावा चोरी मामले में विनय कटियार से पीएम मोदी की कोई बात नहीं हुई, सूत्रों के हवाले से खबर। पहले कटियार ने प्रधानमंत्री से बातचीत का दावा किया था। लखनऊ में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 आयोजित, सीएम योगी ने महोत्सव का शुभारंभ कर प्रगतिशील बागवानों को सम्मानित किया। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार लखनऊ का दौरा करेंगे नितिन नवीन। लखनऊ में नितिन नवीन के स्वागत की भव्य तैयारी, एयरपोर्ट से बीजेपी मुख्यालय तक रोड शो 2 दिन तक रहेंगे। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे नितिन नवीन। संगठन की रणनीति पर मंथन के साथ रणनीति तय होगी। नितिन नवीन पार्टी पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे, सांसद और विधायकों से भी मुलाकात करेंगे। बैठक में बूथ सशक्तिकरण, जनसंपर्क और संगठन विस्तार पर मंथन। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का नया दाव पेच। आज राजस्थान गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, दोनों राज्यों को कई विकास परियोजनाओं की सौगातें। राजस्थान में बाड़मेर के बालूतरा से सौगातों की शुरुआत। पीएम मोदी 1,06,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन, मॉडिफाइड उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे मोदी। राजस्थान की परियोजनाओं की बरसात के बाद गुजरात के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। शाम 4:30 बजे सारण में सेमी कंडक्टर ओएसएटी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। फैसिलिटी का उद्घाटन के बाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। संबोधन के बाद दौरे का समापन होगा। ईरान में पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई का अंतिम विदाई समारोह जारी है। शनिवार और रविवार को तेहरान को सार्वजनिक समारोह आयोजित किए जाएंगे। ग्रैंड मोसल्ला में आम लोगों के दर्शन के लिए ताबूत रखा जाएगा। 100 से अधिक देशों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद। ईरान और इराक के कई शहरों में 7 दिन तक धार्मिक अनुष्ठान। सोमवार और मंगलवार को शव यात्रा कुम शहर की ओर जाएगी। बुधवार को नजफ में रिसेप्शन और नजफ करबला में जुलूस होंगे। शुक्रवार को मशहद में अली खामनेई का अंतिम दफन समारोह होगा। भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन और रूस समेत कई देशों के नेता शामिल होंगे। भारत से बिहार राज्यपाल अता हसनैन और पवित्रा मार्गरीटा रवाना होंगे। T20 एथेनॉल ब्लेंडिंग से जुड़ी गलत जानकारियों का सरकार ने खंडन किया। एथेनॉल उत्पादन में 3 से 5 लीटर प्रोसेस्ड पानी प्रति लीटर उपयोग बताया गया। पानी की अधिक खपत और इंजन डैमेज के दावों को सरकार ने बताया गलत। 3 से 5 लीटर प्रोसेस्ड पानी किया जा रहा है। एथेनॉल उत्पादन में पानी की बर्बादी के दावों का सरकार ने खंडन किया। धान और कम पानी वाली फसलों में पैदावार हो रही है। अमेरिका, ब्राजील, कनाडा समेत कई देशों में पहले से लागू एथेनॉल ब्लेंडिंग ARAI परीक्षण में वाहन प्रदर्शन पर नहीं मिला कोई नकारात्मक असर। ARAI परीक्षण में वाहन प्रदर्शन पर कोई नकारात्मक असर नहीं। उत्पादन क्षमता करीब 2000 लीटर पहुंची। पश्चिम बंगाल के 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम का शुभारंभ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल में खुद को असली टीएमसी साबित करने की जंग तेज। रुद्र गुट ने पार्टी हेडक्वार्टर के गेट पर लगाया ताला।

0: पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अन्नपूर्णा योजना की राशि न मिलने से फूटा महिलाओं का गुस्सा, पंचायत कार्यालय का घेराव किया। पंजाब कांग्रेस में घमासान तेज, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने आवास पर समर्थकों संग बैठक बुलाई। पूर्व सीएम चन्नी के समर्थन में आए कई विधायकों नेता अमरिंदर राजावड़िंग को फिर पार्टी अध्यक्ष बनाने से नाराज की। पुणे केतन हत्याकांड में आरोपित सीओ चेतन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 16 जुलाई तक बड़ी कस्टडी। केतन हत्याकांड में पुलिस का हत्या के पर्याप्त सबूत मिलने का दावा, जब्त किया सिया का दूसरा मोबाइल, कहा कोडवर्ड में बात करते थे दोनों आरोपित, पॉलीग्राफ टेस्ट में खुलासा होगा। बच्चों में एनर्जी ड्रिंक की बढ़ती खपत को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर रोक। गुजरात में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, एटीएस ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 8 सदस्य को गिरफ्तार किया। जोरदार बारिश में मुंबई में 3 दिन में 6 मौत, खोखले पेड़, मैनहोल, बिजली के तारों से जान जा रही है, बीएमसी पर सवाल। पवित्र अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन, कल पहले दिन करीब 20,000 भक्तों ने दर्शन किए। बाबा बर्फानी के दर्शन के लौटने वाले भाव विभोर नजर आए। यात्रा मार्ग पर प्रशासन के इंतजामों से संतुष्ट नजर आए भक्त, भंडारे से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा इंतजाम। अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए स्वास्थ्य विभाग की पहल, नेशनल हाईवे 44 पर फर्स्ट एड कैंप लगाए और एम्बुलेंस तैनात की गई। तीर्थयात्रा के दौरान ट्रैफिक की आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए NH44 पर बनी डिगडोल, पंथियाल टनल और मगरकोट रामसू वायडक्ट को खोला गया। चेन्नई सेंट्रल स्टेशन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्कूटर से गश्त करेंगे RPF के जवान, प्लेटफॉर्म पर निगरानी, मदद और त्वरित कार्रवाई आसान होगी। शिरडी साई बाबा मंदिर में 17 लाख का स्वर्ण जड़ित शंख भेंट किया गया। चेन्नई की श्रद्धालु लक्ष्मीकांता गुट्टा ने साई बाबा के चरणों में विशेष शंख अर्पित किया। चमोली में लगातार हो रही बारिश के बाद ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, सड़क मार्ग धंसने की वजह से प्रशासन का फैसला। रिसर्च और इंजीनियरिंग इनोवेशन में JMV लिमिटेड को सरकार से मिला बड़ा सम्मान, डायरेक्टर मीनाक्षी को राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया। ओडिशा के मयूरभंज में दर्दनाक सड़क हादसा, हाईवे पर लकड़ी से भरे ट्रक को रेस्क्यू के दौरान डंपर बेकाबू, डंपर ने कई लोगों को कुचल दिया, 2 की मौत, 5 घायल। मध्य प्रदेश के सीहोर में आवारा कुत्तों का आतंक, 5 साल की बच्ची पर हमला। हिमाचल प्रदेश के मंडी व जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में भयानक झड़प, विवाद बढ़ने पर एक पक्ष ने हाईवे जाम किया। 2 परिवारों के झगड़े के बाद भड़की भीड़, एक कार का शीशा तोड़ा, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला संभाला। सोनीपत में कपड़ा गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की कई टीमों ने काबू पाया। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर सड़क पार कर रहे ग्रामीण को टैंकर ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत। गोंडा में प्रेमी के लिए प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा, 3 बच्चों संग मोबाइल टावर पर चढ़ी। आगरा में सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा, 1.5 महीने तक लापता पति का चलता रहा नाटक, बाथरूम के फर्श के नीचे मिला शव। मॉडिफाइड साइलेंसर और हॉर्न पर बड़ी कार्रवाई, 300 साइलेंसर रोलर से नष्ट सख्ती। भारतीय बैडमिंटन में नया स्कोरिंग सिस्टम होगा लागू, इसके तहत 21 की जगह 15 पॉइंट्स के होंगे गेम। 7 से 14 जुलाई तक एर्नाकुलम में होने वाले ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग टूर्नामेंट में इस्तेमाल किया जाएगा इसका। भारत इंग्लैंड के बीच आज खेला जाएगा दूसरा T20, मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा। मैच जीतने पर दोनों टीमों की नजरें, पहला बारिश की वजह से रद्द हो गया था। कप्तान श्रेयस और अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक बार फिर तूफानी पारी की उम्मीद है। वैश्विक अनिश्चितताओं और युद्ध संकट के बावजूद अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ी, घरेलू मांग, निवेश और स्थिर राजस्व संग्रह में आगे भी तेज विकास की उम्मीद। देशों में UPI पेमेंट को आसान बनाने के लिए NPCI ने HSBC इंडिया और JP Morgan के साथ साझेदारी की है। फाइनेंस कंपनियों का फोकस नए ग्राहकों पर बढ़ने से, पहली बार लोन लेने वाले ग्राहक क्रेडिट ग्रोथ को नई रफ्तार देंगे। रिटेल स्पेस की लीजिंग सालाना आधार पर 18% बढ़ी। नई सप्लाई के मुकाबले मांग को लगातार बढ़ने से प्रॉपर्टी किराए बढ़ने की संभावना। उत्तर प्रदेश ने लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा और गाजियाबाद में 10 नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। 1278 करोड़ रुपए के निवेश से 4,500 रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट्स विकसित होगी। मैक्स मैन एंड माउजाकी का टीजर रिलीज, 10 जुलाई को ट्रेलर होगा रिलीज और 24 जुलाई को सिनेमाघरों में। राघव जुयाल की फिल्म भाई तेरा स्टार है का टीजर जारी, यूट्यूबर निहारिका एनएम और एक्टर संजय कपूर आएगी नजर। भारत के बाद अब जापान की सिनेमाघरों में 10 जुलाई को धुरंधर दस्तक देगी। अर्शद वारसे की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई प्रीतम एंड पेड्रो की ढीली स्क्रिप्ट, हल्की फुल्की साइबर थ्रिलर साबित हुई वेब सीरीज। एनिमेटेड डिज्नी एडवेंचर फिल्म मुआना का ट्रेलर आउट हुआ। यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी सेना का भीषण हमला, गाइडेड मिसाइल से 105 लंबी दूरी के ड्रोन से हमला किया। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन पर हमले को लेकर जर्मनी के बाद रूस ने यूक्रेन को घेरा। फिनलैंड ने परमाणु हथियार रखने पर लगी रोक को आधिकारिक रूप से हटा दिया, फिनलैंड का यह नया कानून 1 जुलाई से लागू हो गया। ईरानी सेना का अल्टीमेटम का हॉर्मुज स्ट्रेट अमेरिका का खेल का मैदान नहीं बल्कि ईरान की संप्रभुता वाला क्षेत्र। अमेरिका की पेंसिल्वेनिया में भीषण गर्मी से जीना मुहाल, 35 से ज्यादा लोगों को अस्पताल जाना पड़ा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि साढ़े साती के जो तीन चरण होते हैं उन चरणों का अलग अलग जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, कौन सा चरण तेज होता है और कौन सा चरण एवरेज होता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 4 जुलाई 2026 दिन शनिवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 12:39 तक, नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र दोपहर 1:43 तक, चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं राहु काल का समय प्रातः काल 9 से 10:30 तक, पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं शनि देव की साढ़े साती के बारे में और इसके अलग अलग चरणों के प्रभाव के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि शनि की साढ़े साती क्या है। देखिए शनि देव एक राशि में लगभग 2.5 तक रहते हैं। जब किसी राशि से 12वें जाते हैं तो पहला 2.5 शुरू होता है और वहां पर 7.5 शुरू हो जाती है और जब राशि से दूसरे भाव को छोड़कर निकलते हैं तो 7.5 समाप्त हो जाती है। किसी राशि के 12वें रहेंगे तो पहला 2.5 उस राशि में रहेंगे, अगला 2.5 उस राशि से दूसरे भाव में रहेंगे तो तीसरा 2.5 साल। जब लगातार एक राशि को शनि 7.5 साल तक प्रभावित करते हैं तो इसको 7.5 साती कहा जाता है। इसमें 2.5 साल के 3 चरण होते हैं और ये 2.5 साल के 3 चरण कुल मिलाकर 7.5 साल तक किसी राशि को प्रभावित करते हैं। शनि की 7.5 साती के 3 चरण का प्रभाव एक जैसा नहीं होता। 7.5 साती के अलग अलग चरणों का प्रभाव अलग अलग होता है और अलग अलग व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। शनि की 7.5 साती पर हमारी चर्चा जारी है लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, धन का लाभ होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब ये जानते हैं कि साढ़े साती जब शुरू होती है, जब उसका पहला चरण आता है तो पहले चरण का सामान्य प्रभाव क्या होता है? देखिए, जब शनि किसी राशि से बारहवें जाते हैं तो साढ़े साती का पहला चरण शुरू हो जाता है। साढ़े साती का पहला चरण सामान्यतः नकारात्मक नहीं होता। साढ़े साती के पहले चरण में स्थान परिवर्तन की संभावना जीवन में जरूर बनती है। और जब साढ़े साती का पहला चरण चलता है तो धन का खर्च थोड़ा बढ़ जाता है। सरदर्द और आंखों की समस्या व्यक्ति को हो सकती है। साढ़े साती का जब पहला चरण शुरू होता है तो यहां से माता पिता की आयु के लिए थोड़ा संकट शुरू हो जाता है। जैसे इस समय मेष राशि पर शनि की साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है। अगर आपकी साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है तो पहले चरण में हनुमान जी की आप जितनी उपासना करें, सुबह शाम कम से कम एक एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा करें, तो आपको विशेष लाभ होगा। साढ़े साती के पहले चरण में अगर आपको परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करिए और हनुमान जी के मंदिर जा करके उनका नियमित दर्शन करिए, आपको लाभ होगा। आगे साढ़े साती के दूसरे चरण पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, बेवजह के तनाव से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन की हानि हो सकती है, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन कुछ बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

आएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, आर्थिक लाभ होगा, सेहत की स्थिति बेहतर होती जाएगी, नए काम की शुरुआत हो सकती है। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न अनुराग जुयाल ने हमें लिखा है, देहरादून से लिखते हैं। 22 फरवरी 1988 का जन्म है, सुबह 10:20 देहरादून। ये कह रहे हैं कि मेरे करियर में उतार चढ़ाव बहुत है, मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है, मुझे क्या उपाय करना चाहिए। अनुराग, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और मेष राशि की, महादशा मंगल की और अंतर दशा राहु की चल रही है। शनि की स्थिति की वजह से संघर्ष जीवन में ज्यादा है, पारिवारिक जीवन में भी और करियर में भी। सेहत में केवल आपको डाइजेशन का ध्यान रखना है और अपना तनाव थोड़ा कम पालना है। अप्रैल 2027 के बाद आपकी स्थितियां लगातार बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक माणिक्य बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य पहने, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं 7:30 के दूसरे चरण की। शनि जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो जिस राशि में रहते हैं उस पर 7:30 का दूसरा चरण शुरू हो जाता है। जैसे अभी शनि मीन राशि में है तो मीन राशि पर शनि की 7:30 का दूसरा चरण चल रहा है। 7:30 का दूसरा चरण सामान्यतः जीवन में संघर्ष बढ़ा देता है, मेहनत ज्यादा करवाता है, स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है। और 7:30 के दूसरे चरण का प्रभाव करियर पर अवश्य पड़ता है, करियर पर जरूर पड़ता है। जब 7:30 का दूसरा हिस्सा चल रहा हो तो करियर के निर्णयों में और बदलाव के मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। और 7:30 के दूसरे चरण में अक्सर ऐसा देखा गया है कि मैरिटल लाइफ में, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो दूसरे चरण में वैवाहिक जीवन का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी 7:30 का दूसरा चरण है
और आप इसमें लाभ चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के रास्ते नहीं बनेंगे। और अगर 7.5 का दूसरा चरण चल रहा हो तो नियमित रूप से दूसरों की सहायता करें, दान करें और सात्विक रहें। मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना करें, सात्विक रहें, मेहनत करें, दान करें, तब 7.5 का दूसरा चरण आपके लिए नकारात्मक नहीं होगा। 7.5 के तीसरे चरण की भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

समस्या हो सकती है। धन की हानि से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन कुछ बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। धनु राशि, तनाव समाप्त हो जाएगा, रुका हुआ काम बन जाएगा, लाभकारी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब जानते हैं साढ़े साती के तीसरे चरण के बारे में। जब शनि किसी राशि से दूसरे भाव में जाता है तो वहां से साढ़े साती उतरनी शुरू हो जाती है और ये साढ़े साती का अंतिम चरण होता है। शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण सामान्यतः सबसे ज्यादा कठोर होता है। उतरती हुई साढ़े साती मुश्किलों का कारण बनती है। जैसे इस समय कुंभ राशि पर से साढ़े साती उतर रही है। उतरती हुई साढ़े साती स्वास्थ्य को और आर्थिक स्थिति को उलट पुलट कर देती है। और जब साढ़े साती का अंतिम चरण होता है उस समय जीवन में बड़े परिवर्तन अवश्य होते हैं। बड़े परिवर्तनों की संभावना जरूर बनती है। जब साढ़े साती का अंतिम चरण चले यानी साढ़े साती उतरने लगे इसमें सावधानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि ये बुरी तरह से कोलैप्स कर सकती है, बुरी तरह से डैमेज कर सकती है। साढ़े साती के अंतिम चरण में हर तरह की सावधानी रखनी चाहिए, किसी तरह की लापरवाही ना करें। और साढ़े साती का अंतिम चरण माता पिता की आयु के लिए और स्वास्थ्य के लिए बड़ा कठिन होता है। अगर आपकी साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है तो शनिदेव की जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा उपासना करें और सात्विक रहें। अगर सात्विक रहेंगे, शनिदेव की ज्यादा से ज्यादा उपासना करेंगे तो साढ़े साती का अंतिम चरण आपके लिए बहुत नकारात्मक नहीं होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे लेकिन चोट चपेट से आज बचिएगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं
वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी।

धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

पालें, वाद विवाद से बचाव करें, खान पान में सावधानी रखें, शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन कुछ बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जब साढ़े साती उतरती है तो जाते समय कुछ दे कर जाती है, जाते समय फायदा पहुंचाती है। क्या ऐसा है? देखिए, शनि की साढ़े साती जब उतरती है 90% मामलों में फायदा नहीं पहुंचाती। शनि की साढ़े साती उतरते समय सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, सबसे ज्यादा मुश्किलें पैदा कर सकती है। अगर सर्वाष्टक वर्ग में और शनि के बिंदु ज्यादा दिखाई देते हो, उसके भिन्नाष्टक में शनि की पोजीशन जरूरत से ज्यादा अच्छी हो, तब शायद उतरती हुई साढ़े साती में नुकसान से बच सकें, अन्यथा उतरती हुई साढ़े साती कभी कुछ नहीं देती, उतरती हुई साढ़े साती में नुकसान जरूर होता है। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 2, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। नंबर 3, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 4, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 8, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 9, वाद विवाद से बचाव करें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न रश्मि ने हमें लिखा है और रश्मि हमें सहारनपुर उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 सितंबर 2003। जन्म का समय सुबह के 10:45। जन्म स्थान है सहारनपुर। ये कह रही हैं कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूं और उसकी मैं तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे प्रशासनिक सेवा में सफलता मिलेगी? रश्मि, अगर आप यूपी पीसीएस पे
स्टेट सर्विस कमीशन की नौकरियों पे फोकस करें तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना काफी है। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, 2028 और 2029 का समय आपकी तरक्की के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, इस समय में आपको सफलता मिलेगी। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, लौंग खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, अपने साथ 2 लौंग रखकर जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो नीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान।

के लिए कार्यों में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा, मेष राशि के लिए धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज सावधान रहना होगा, कर्क राशि के लोगों को स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, विवाद हो सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आज के दिन की विशेषता क्या है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज चतुर्थी तिथि है, रिक्ता तिथि है, इसलिए आज कोई नया और शुभ कार्य ना करें और आज थोड़ा समय निकाल कर किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की वस्तु का दान करें, लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: राम मंदिर चढ़ाव चोरी मामले को लेकर पुलिस और एसआईटी की टीम ने जांच तेज कर दी है। दान चोरी के बाद अब जमीन घोटाले तक एसआईटी ने पड़ताल शुरू कर दी है। प्रॉपर्टी डीलर समेत लेन देन से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपित अविनाश शुक्ला से 13 घंटे तक पूछताछ की, जिसमें कई खुलासे किए गए हैं। अविनाश ने चोरी करने की बात भी कबूल की है। चोरी की रकम से कार खरीदने और शक न होने पर भाई के नाम पर कार खरीदने की बात कही। साथ ही चोरी करने के बाद सभी आरोपियों की सीक्रेट मीटिंग होती थी, इस बात का भी खुलासा हुआ, जो अयोध्या के एक सुनसान इलाके में होती थी, जिसमें टिन्नू यादव भी शामिल होता था। तो चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की पूछताछ में आरोपित अविनाश शुक्ला ने बड़ा खुलासा किया है। अविनाश ने कहा कि सभी आरोपित एक दूसरे को जानते थे और एक पैसा चुराता था, दूसरा कैमरे से उसे बचाता था। कौन कैसे कर रहा है चोरी सब जानते थे। चोरी करने के बाद सभी मीटिंग करते थे। चोरी की गई रकम सभी आरोपियों के बीच बराबर बराबर बांटी जाती थी। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग में जहां सुनसान एक इलाका होता था, वहां पर ये सब मिलते थे। कौन कौन? अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और भी सभी आरोपी रमाकांत, ये सब लोग मिलते थे और फिर पैसों की बंदरबांट करते थे। लेकिन जब ये गड्डी चुराते थे तो एक शख्स कैमरे से दूसरे को बचाता था। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पुलिस की पूछताछ में अविनाश ने टिन्नू यादव को लेकर बड़ा खुलासा किया। कहा पूरे खेल में टिन्नू यादव का दबदबा रहता था, यानी टिन्नू यादव लीड करता था। अविनाश ने बताया कि टिन्नू और सुभाष की मिली भगत होने की वजह से उन्हें पकड़े जाने का कोई डर नहीं था, क्योंकि टिन्नू यादव का काफी वर्चस्व था। अविनाश के अनुसार टिन्नू हमेशा कहता था कि कुछ नहीं होगा, सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए जाएंगे। टिन्नू की जिम्मेदारी निगरानी की होने के कारण किसी सुरक्षा कर्मी या अन्य कर्मचारी ने कभी उसे नहीं रोका। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष, क्या क्या खुलासे हो रहे हैं?
1: बिल्कुल देखिए, जो टिन्नू यादव है वो लगातार जो है इस तरीके की पूरी कोशिश में रहता था कि कहीं ना कहीं पूरा जो खुलासा है वो ना हो सके। इसी वजह से वह लगातार जो है अविनाश शुक्ला और अन्य साथियों की मदद के लिए भी रहता था, क्योंकि चोरी की जो रकम थी वो कैसे निकाली जाए इसका पूरा जिम्मेदारी टिन्नू यादव पर रहती थी, और टिन्नू यादव उसको कैसे मैनेज करना है इन सभी की बात करता था। और यही वजह है कि कभी भी टिन्नू यादव के जरिए से ये उसने आश्वासन दिया था चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि वो सीसीटीवी के फुटेज को या तो ऑफ करा देगा या तो उससे कहीं ना कहीं मैनेज करा देगा। तो इस वजह से भी लोगों को कॉन्फिडेंस आया जो उसके गैंग में थे एक तरीके से। तो टिन्नू यादव इन तरीकों से ही लोगों को आगे बढ़ाता था और कहीं ना कहीं।
0: अच्छा, बने रही है आशीष। आशीष, और भी बड़ी खबर आ रही है, वो भी बताते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बड़ी खबर। पूछताछ के दौरान आरोपी अविनाश शुक्ला को दिखाई गई 45 दिनों की चोरी की सीसीटीवी। पैसा चोरी करते जब उसने खुद को देखा तो टूट गया। अविनाश शुक्ला ने पुलिस की पूछताछ में माना कि वो लगातार चढ़ावे से चोरी कर रहा था, लेकिन लीड टिन्नू यादव कर रहा था। 45 दिनों की चोरी का सीसीटीवी बकायदा दिखाया गया है। एक और बड़ी खबर, अविनाश शुक्ला ने चोरी की रकम से अपने भाई के नाम पर ब्रीजा कार खरीदी। भाई सरकारी टीचर, इसलिए ब्रीजा कार भाई के नाम पर खरीदी ताकि किसी को शक ना हो। चढ़ावा चोरी का मामला खुलते ही ब्रीजा कार को प्रतापगढ़ स्थित घर पहुंचवा दिया था। अविनाश शुक्ला गिरफ्तार हुआ है। भाई अभिषेक से पूछताछ की जा रही है और रिमांड के दौरान अविनाश ने माना कि ब्रीजा कार चोरी की रकम से खरीदी गई थी। बने हुए हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ। आशीष, अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, तो पता चल रहा है कि ये तो एक पूरी तरह से नेक्सस चला रहे थे। लीड टिन्नू यादव कर रहा था, मीटिंग होती थी, गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, शक ना हो किसी को, ये भी कहा था कि सीसीटीवी भी डिलीट कर दिया जाएगा, टेंशन मत लो। तो खुलेआम गालमेल किया जा रहा था बिना किसी डर के, लेकिन अब जांच दल का शिकंजा कस गया है। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। आज सुबह मंदिर के गेट नंबर 4B पर तैनात पीएसी के एक सिपाही की बंदूक से गलती से एक गोली चल गई। जानकारी के मुताबिक 3 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। वहां मौजूद 3 लोगों को गोली के छर्रे लगे, जिसमें वो मामूली रूप से घायल हो गए। सिपाही की बंदूक से अचानक से गोली चल जाती है। गलती से गोली चली। फिर आपको बता दें कि 4B गेट नंबर 4B पर तैनात पीएसी के एक सिपाही की बंदूक से गलती से गोली चल जाती है, जिसकी वजह से 3 लोग मामूली रूप से घायल हो गए, जिनको छर्रे लगे, ऐसी खबर आ रही है। हालांकि उनका इलाज कराया गया, लेकिन लापरवाही कही जा सकती है। हालांकि बताया जा रहा है कि गलती से यह गोली चली है। 4 नंबर गेट जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है, जहां से एंट्री होती है, उसी जगह पर पीएसी का एक सिपाही तैनात था, जिसकी बंदूक से अचानक गोली चली धोखे से, और उसी के बाद अफरा तफरी मचती है। 3 लोग मामूली रूप से घायल हुए। काशी विश्वनाथ मंदिर से यह बड़ी खबर आ रही है। और देखिए, इस मोबाइल में हालांकि वो सीसीटीवी फुटेज दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे गलती से एक सिपाही की बंदूक से गोली चली। रोशन जायसवाल जुड़े हुए हमारे साथ। रोशन, क्या हुआ था वहां?
2: जी देखिए, बिल्कुल बताया जा रहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का गेट नंबर 4B नंदूफरिया है, वहां पर श्रद्धालुओं का आवागमन हमेशा जारी रहता है। और आज सुबह 7 बजे की घटना है, जब वहां कार्बाइन लिए हुए पीएसी का जवान था, और उसकी कार्बाइन से पहले तो ये बताया जाता है कि कार्बाइन की बेल्ट खुलती है, छूट जाती है, उसके बाद जो कार्बाइन है वो जमीन पर गिरती है और उसमें से ऑटोमेटिक 2 राउंड फायरिंग हो जाती है, जिसके बाद जिसकी जद में 3 वहीं पर जो मौजूद फूलमाला के दुकानदार है वो आ जाते हैं, और भी आनंद फानंद में उनको वाराणसी के कबीर द्वारा मंडी अस्पताल लाया जाता है। हालांकि बहुत ही मामूली इंजरी रहती है, कुछ लोगों का कहना है कि छर्रे लगे हैं कार्बाइन के, लेकिन जो पुलिस का स्टेटमेंट आया है उनका कहना है कि कार्बाइन की जो फायरिंग है उससे जमीन से जो गिट्टियां उड़ी हैं वे जाकर लगी हैं लोगों को, 3 लोगों को, जबकि हमारी बात वहां जो घायल हुए लोगों उनसे हुई है, उन्होंने कहा कि साफ तौर पर जो गोली है वो सीधे जमीन पर लगते हुए उनसे टकराई है, तो बात में काफी विरोधाभास आया है। और साथ ही साथ जो वीडियो सामने आया है, जो सीसीटीवी फुटेज आया है, वो इस बात की पुष्टि करता है कि कार्बाइन जमीन पर नहीं गिरी है, बेल्ट नहीं खुला है, डायरेक्ट फायर हुआ है।
0: बिल्कुल, और वो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई भी दे रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर यानी हेडलाइंस का।

राम मंदिर दान चोरी मामले में बड़ा खुलासा। चोरी के बाद चिन्नू यादव समेत सभी आरोपी करते थे सीक्रेट मीटिंग, बांटते थे लूट, सीसीटीवी फुटेज करते थे डिलीट। अविनाश शुक्ला ने भाई के नाम पर खरीदी थी कार। बद्रीनाथ धाम तक पहुंचा दान चोरी का मामला। सोशल मीडिया पर आरोप के बाद मंदिर प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। जांच कमेटी करेगी सीसीटीवी की पड़ताल। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार यूपी के दौरे पर नितिन नवीन, दो दिनों तक मिशन 2027 पर मंथन। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम समेत विधायकों के साथ बैठक। पंजाब कांग्रेस में घमासान तेज हुआ। पूर्व सीएम चन्नी के समर्थन में कई विधायक और नेता। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए बने पहली पसंद। खड़गे करेंगे फैसला। और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की अंतिम यात्रा में लाखों का हुजूम। आंसुओं में डूबा पूरा ईरान। श्रद्धांजलि सभा में रो पड़े राष्ट्रपति पेजश्कियान। भारतीय दल ने भी दी श्रद्धांजलि।

महाराष्ट्र और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का दौर। मुंबई में 6 जुलाई तक बारिश का अलर्ट। अगले 5 दिनों में गुजरात और गोवा में भारी बारिश का अनुमान। महाराष्ट्र के लोनावला में भारी बारिश के बाद मशहूर भुशी डैम ओवरफ्लो हुआ। मनमोहक नजारा, पर्यटकों की भीड़। गुजरात के नवसारी और डांग जिलों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। उफान पर अंबिका और कई नदियां। गुजरात के कई इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी। भारी बारिश के कारण खेत सड़कें नदियों में बदल गई। जूनागढ़ में भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया और फंते नाले के बीच फंसी बस क्रेन से खींच कर निकाली गई। दिल्ली NCR के लिए भी मौसम विभाग का येलो अलर्ट। देर रात झमाझम बारिश के आसार हैं। जयपुर में बारिश के बाद टोक रोड धस गई है। किसी बड़े हादसे की आशंका। सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठे। मथुरा में भीषण गर्मी के बाद अचानक हुई बारिश। भारी बरसात के बाद जलमग्न हुई सड़कें, प्रमुख मार्ग। गोरखपुर के मुक्ति पथ पर सरयू नदी में डूबने से बचाई गई 5 जिंदगियां। मोटरबोट पलटने पर तुरंत एक्शन में आई रेस्क्यू टीम। उज्जैन में लगातार हो रही बारिश से क्षिप्रा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा और रामघाट सहित आसपास के घाटों में पानी भर गया। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस पूछताछ में अविनाश ने चोरी की रकम सभी आरोपियों में बराबर बांटने की बात बताई। SIT की पूछताछ में अविनाश ने कबूली चोरी। अविनाश ने बताया कि चोरी की रकम से उसने कार खरीदी और घर बनवाया। उसने अपने भाई को बड़ी रकम देने की बात कबूली। पूछताछ में अविनाश ने बताया टेन्नू और सुभाष की मिली भगत से किसी को पकड़े जाने का डर नहीं था। पुलिस पूछताछ में खुलासा। चोरी के बाद सुनसान जगहों पर होती थी मीटिंग। सभी आरोपी मिलकर रचते थे साजिश। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग में फैला नेटवर्क। जांच में चंपतराय के करीबी टेन्नू की अहम भूमिका सामने आई। आरोपी लंबे समय से चोरी की साजिश छुपाकर वारदात को अंजाम दे रहे थे। चढ़ावा चोरी मामले में आज भी जारी रहेगा SIT जांच का दूसरा चरण। जांच अब जमीन खरीद तक पहुंची। SIT ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जमीन खरीद की जांच शुरू की। जमीन खरीद से जुड़े लोगों की पूछताछ के लिए बुलाया गया। SIT ने कुछ प्रॉपर्टी डीलरों से भी पूछताछ की। टिन्नू यादव के 2 भतीजों से भी पूछताछ। सभी से करीब 3 घंटे पूछताछ हुई। राम मंदिर के कुछ सुरक्षाकर्मियों से भी SIT की पूछताछ। बैंक कर्मचारियों से भी SIT ने जानकारी जुटाई। पुलिस रिमांड में अविनाश शुक्ला के 13 घंटे की पूछताछ के बाद भेजा गया जेल। SIT के हाथ लगे अहम सुराग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर RSS का पहला बयान। सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले ने कहा राम भक्तों की भावना को चोट पहुंची, दोषियों को सजा मिले। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का RSS पर पलटवार। बोले RSS ने अपनी छवि साफ करने की कोशिश की, सिर्फ दिखावे के लिए जिंदा। जयराम रमेश ने भी RSS के बयान को निराशाजनक बताया। बोले RSS की तरफ से दी गई क्लीन चिट शर्मनाक। चढ़ावा चोरी मामले में विनय कटियार से पीएम मोदी की कोई बात नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर। पहले कटियार ने प्रधानमंत्री से बातचीत का दावा किया था। लखनऊ में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 आयोजित। सीएम योगी ने महोत्सव का शुभारंभ किया। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार लखनऊ का दौरा करेंगे अध्यक्ष नितिन नवीन। लखनऊ में नितिन नवीन के स्वागत की भव्य तैयारी। एयरपोर्ट से बीजेपी मुख्यालय तक रोड शो। 2 दिन यूपी में रहेंगे। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे बीजेपी अध्यक्ष। संगठन की रणनीति पर मंथन होगा। बीजेपी अध्यक्ष पार्टी पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। सांसद और विधायकों से भी मुलाकात करेंगे। बैठक में बूथ सशक्तिकरण, जनसंपर्क और संगठन विस्तार पर मंथन। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का नया दाव पेच। आज राजस्थान गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। दोनों राज्यों को कई विकास परियोजनाओं की सौगात। राजस्थान में बाड़मेर के बालोतरा से सौगातों की शुरुआत। पीएम मोदी 1,06,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन। मॉडिफाई उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे पीएम। राजस्थान में परियोजनाओं की बरसात के बाद गुजरात के लिए रवाना होंगे पीएम। 4:30 बजे सांणंद में सेमीकंडक्टर OSAT प्लांट का उद्घाटन करेंगे। फैसिलिटी का उद्घाटन के बाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। संबोधन के बाद पीएम के दौरे का समापन होगा। ईरान में पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की अंतिम

कई शहरों में 7 दिन तक धार्मिक अनुष्ठान। सोमवार और मंगलवार को शव यात्रा कुंभ शहर की ओर जाएगी। बुधवार को नजफ में रिसेप्शन और नजफ करबला में जुलूस होंगे। शुक्रवार को मशहद में अली खामनेई का अंतिम दफन होगा। भारत पाकिस्तान तजिकिस्तान चीन रूस समेत कई देशों के नेता शामिल होंगे। भारत से बिहार राज्यपाल अता हसनैन और पवित्रा मार्गरीटा रवाना होंगे। E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग से जुड़ी गलत जानकारियों का सरकार ने खंडन किया। एथेनॉल उत्पादन में 3 से 5 लीटर प्रोसेस्ड पानी प्रति लीटर उपयोग बताया गया। पानी की अधिक खपत और इंजन डैमेज के दावों को सरकार ने बताया गलत। 3 से 5 लीटर प्रोसेस्ड पानी प्रति लीटर किया जा रहा है इस्तेमाल। एथेनॉल उत्पादन में पानी की बर्बादी के दावों को सरकार ने खंडन किया। अमेरिका, ब्राजील और कनाडा समेत कई देशों में पहले से लागू एथेनॉल ब्लेंडिंग ARAI परीक्षण में वाहन प्रदर्शन पर कोई नकारात्मक असर नहीं। ARAI परीक्षण में वाहन प्रदर्शन पर कोई नकारात्मक असर नहीं। उत्पादन क्षमता करीब 2000 करोड़ लीटर पहुंची। पवित्र अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन कल पहले दिन करीब 20,000 भक्तों ने दर्शन किए। बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौटने पर भाव विभोर नजर आए श्रद्धालु। यात्रा मार्ग पर प्रशासन के इंतजामों से संतुष्ट नजर आए भक्त। भंडारे से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के लिए स्वास्थ्य विभाग की पहल। NH 44 पर फर्स्ट एड कैंप लगाए गए। एम्बुलेंस तैनात। तीर्थ यात्रा के दौरान ट्रैफिक के आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए NH 44 पर बनी डिगडूल पंथियाल टनल और मगरकोट रामसू वायडक्ट खोला गया। ओडिशा के मयूरभंज में दर्दनाक सड़क हादसा। हाईवे पर लकड़ी से भरे ट्रक के रेस्क्यू के दौरान डंपर बेकाबू हो गया। डंपर ने आसपास खड़े कई लोगों को कुचल दिया। 2 की मौत 5 घायल। मध्य प्रदेश के सीहोर में आवारा कुत्तों का आतंक। 5 साल की बच्ची पर हमला किया। हिमाचल के मंडी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में भयानक झड़प। विवाद बढ़ने पर एक पक्ष ने हाईवे बंद किया। 2 परिवारों के झगड़े के बाद भड़की भीड़। 1 कार का शीशा तोड़ा। पुलिस ने मौके पर हालात को संभाला। सोनीपत में कपड़ा गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने काबू पाया। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर सड़क पार कर रहे ग्रामीण को टैंकर ने टक्कर मारी। इलाज के दौरान मौत हो गई। गोंडा में प्रेमी के लिए प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा। 3 बच्चों संग टावर पर चढ़ गई। आगरा में सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा। 1.5 महीने तक लापता पति का चलता रहा नाटक। बाथरूम के फर्श के नीचे मिला शव। मॉडिफाइड साइलेंसर और हॉर्न पर बड़ी कार्रवाई। 300 साइलेंसर रोड रोलर से नष्ट किए गए। भारतीय बैडमिंटन में नया स्कोरिंग सिस्टम लागू होगा। इसके तहत 21 की जगह 15 पॉइंट्स होंगे। 7 से 14 जुलाई तक एर्नाकुलम में होने वाले ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग टूर्नामेंट में किया जाएगा नए नियमों का पहला इस्तेमाल। भारत और इंग्लैंड के बीच आज खेला जाएगा दूसरा T20 मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर। मैच जीतने पर दोनों टीमों की नजर। बारिश के कारण पहला मैच रद्द हो गया था। कप्तान श्रेयस और अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक बार फिर तूफानी पारी की उम्मीद।

वैश्विक अनिश्चितता और युद्ध संकट के बावजूद अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ी। घरेलू मांग, निवेश और स्थिर राजस्व संग्रह से आगे भी तेजी विकास की उम्मीद। विदेश में यूपीआई पेमेंट को आसान बनाने के लिए एनपीसीआई ने एचएसबीसी इंडिया और जेपी मॉर्गन के साथ साझेदारी की है। फाइनेंस कंपनियों का फोकस, नए ग्राहकों पर बढ़ने से पहली बार लोन लेने वाले ग्राहक क्रेडिट ग्रोथ को नई रफ्तार देंगे। रिटेल स्पेस की लीडिंग सालाना आधार पर 18% बढ़ी, नई सप्लाई के मुकाबले। मांग को लगातार बढ़ने से प्रॉपर्टी किराए बढ़ने की संभावना। उत्तर प्रदेश ने लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा और गाजियाबाद में 10 नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। 1278 करोड़ रुपए के निवेश से लगभग 4500 रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट्स विकसित होंगी। मैक्स मेन एंड म्याउजाकी का टीजर रिलीज, 10 जुलाई को ट्रेलर आएगा। सिद्धार्थ मेनन, मंदरा बेदी, नफीस अली मुख्य भूमिका में, 24 जुलाई को रिलीज होगी। राघव जुयाल की फिल्म भाई तेरा स्टार है का टीजर जारी। यूट्यूब निहारिका एलएम और एक्टर संजय कपूर आएगी नजर। भारत के बाद अब जापान के सिनेमाघरों में 10 जुलाई को धुरंधर दस्तक देगी। अर्षद वारसी की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई प्रीतम एंड पेड्रो, ढीली स्क्रिप्ट ने सीरीज डुबोई। एनिमेटेड डिज्नी एडवेंचर फिल्म मुआना का ट्रेलर आउट, पौराणिक कथाओं और प्रशांत महासागर के नाविकों की सच्ची कहानियों से प्रेरित।

0: गए और काफी देर तक यह हंगामा होता रहा। पुलिस पैरामिलिट्री को भी हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद टीएमसी दफ्तर पर तालाबंदी कर दी गई है, क्योंकि रिद्रत वाला गुट कह रहा है कि यह दफ्तर हमारा है, तो ममता बनर्जी का गुट कह रहा है कि हमारा है।
1: एक तरफ जैसे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस टूटने की खबर आई, उसी के साथ साथ आज बागी विधायक जितने भी तृणमूल कांग्रेस के थे वो हाजिर हुए तृणमूल कांग्रेस भवन पर। और यही जो तृणमूल कांग्रेस भवन है वो मेट्रोपॉलिटन पे स्थित है, जहां पे तृणमूल कांग्रेस की पार्टी ऑफिस है, और वही पार्टी ऑफिस में बागी विधायकों ने यहां पे ताला लगा दी। हम देख सकते हैं कि यहां पे जो तृणमूल कांग्रेस भवन की जो मेन गेट है उस पे दो दो ताले झुलाए गए, और उसके साथ साथ इस वक्त ये तृणमूल कांग्रेस भवन में एक नई जो है कि बैनर या होर्डिंग लगाई गई है, जहां पे लिखा हुआ है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और चेयरमैन की नाम है अरूप राय। हम जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की जो चेयरमैन फाउंडर ममता बनर्जी हर जगह पे छाई हुई रहती थी, और यहां पे यही पोस्टर पे ममता बनर्जी की कोई भी छवि नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यही उठता है कि
0: और अब बात करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की, जो इस समय गुजरात में जम के बरस रहा है। मानसून का पहला स्पेल गुजरात को पानी पानी कर चुका है। तस्वीरें देखिए, राजकोट, वलसाड़, महसाणा, तापी, डांग, आणंद और रैना, छह की छह तस्वीरों में क्या कॉमन है, हर जगह जल जमा, हर जगह बारिश का पानी, लोगों की परेशानी। मानसून ने पश्चिम भारत में रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक मूसलाधार बारिश ने जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित किया है। कई शहर पानी पानी हो गए हैं, नदियां डैम उफान पर हैं, सड़कें, अंडरपास, खेत, सब कुछ जलमग्न हो गया है। तो गुजरात के आणंद में मानसून की धमाकेदार एंट्री हुई। सीजन की पहली बारिश में महज कुछ घंटों में पानी जम गया, शहर जलमग्न हो गया। टावर बाजार, रण मुक्तेश्वर मंदिर के आसपास घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया, कई दोपहिया वाहन पानी में फंस गए। मौसम विभाग ने गुजरात के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। ये गुजरात के आणंद की तस्वीरें हैं। अब आपको गुजरात की अमरेली में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, तो वो तस्वीरें भी दिखाते हैं। यहाँ भी आप देखिए पानी ही पानी है। लाठी, दामनगर और वाडिया इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद कई गांवों और शहरों में सड़कें जलमग्न हो गई। देखिए सड़क आपको कहीं दिखाई नहीं देगी, डांबर वाली, आपको पानी ही पानी नजर आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप छोटी सी कोई नदी से शहर बसा दिया हो नदी पर। किसी के लिए आफत, किसी के लिए राहत। अब गुजरात का राजकोट भी देख लीजिए, यहां भी सरदार चौक, बस स्टैंड रोड समेत कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई, यातायात ठप हो गया, आवाजाही में दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ियां तो निकल नहीं पा रही हैं। तो यही हालात इस वक्त हो गए हैं, और ऐसा हर बार देखा गया है। बारिश जब होती है उसके बाद सड़कें जलमग्न हो जाती हैं और लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं, दोपहिया वाहन तो निकल ही नहीं पा रहे।
2: सबसे पहले गुजरात के मेहसाणा के कड़ी की तस्वीरें, जहां एक ही रात में 8 से 9 इंच बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। तीनों मुख्य अंडरपास डूब गए, कई रिहायशी इलाकों और घरों में पानी घुस गया, जबकि करण नगर रोड, सुजातपुरा और थोल रोड पर घुटनों तक पानी से यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। सूरत में भी हालात गंभीर हैं। महुआ के पास अंबिका नदी और ऐतिहासिक मदर डेयरी चेक डैम उफान पर हैं। वहीं किम इलाके में अस्पताल, मंदिर और कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। हॉस्पिटल के आईसीयू तक में पानी पहुंचने से मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना पड़ा। लगातार बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने 24 घंटे निगरानी और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वलसाड़ में जलभराव के बीच सड़क पार करने की कोशिश एक मारुति वैन चालक को भारी पड़ गई और वाहन बीच पानी में फंस गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद वैन को बाहर निकाला। उधर गिर सोमनाथ में रिकॉर्ड बारिश से खेत नदी बन गए। कई इलाकों में जल भराव और पेड़ गिरने से यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। जबकि वेरावल पोर्ट पर खतरे का नंबर 3 सिग्नल जारी कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो
0: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: सुप्रीम लीडर को 125 दिनों के बाद सुपुर्द खाक किया जा रहा है।

एक बड़ी खबर आपको बताते हैं कोलकाता से, जहां टीएमसी के दोनों गुटों में दफ्तर कब्जाने को लेकर अब तनातनी हो गई है। कल रात टीएमसी बागियों के गुट ने कोलकाता के तृणमूल भवन पर कब्जा करने की कोशिश की। ममता बनर्जी के पोस्टर हटा दिए, अपने पोस्टर चस्पा कर दिए, जिसके बाद ममता गुट के विधायक सांसद नेता भी पहुंच

0: कि हम इस समय तेहरान में मौजूद है और हर बदलते घटनाक्रम की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।
1: मैं गीता मोहन सीधे तेहरान से आज तक के लिए।
2: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
4: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
5: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
6: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: हमने तब भी सवाल किया था,
4: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
3: हम आज भी सवाल करते हैं,
4: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
3: ऑपरेशन अग्नि,
4: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
3: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई, खबरदार सिर्फ आज तक पर।
5: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमा कुरैशी।
6: ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
7: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अकल नहीं है। इस पे जो बहुत फेमस सीन है वो जो
8: परमिशन लेनी चाहिए ना,
7: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई।
9: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है, लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी,
7: आई फील अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो रुक जाइए।
10: मोदी जी के साथ वो संपर्क में है फोन पर,
11: इस मामले में,
10: इसी मामले में। और यहाँ जब आ गए तो मोदी जी ने कहा रात को वो 1:30-2 बज गए होंगे रात के, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब। अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं, लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं, ये हाँ अनिल मिश्रा हैं, तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं अभी।
0: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
0: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: राम मंदिर के दान में हुए गबन की जांच कर रही एसआईटी एक बार फिर अयोध्या पहुंची है। इस बार जांच का दायरा काफी बड़ा है। दान में हेरफेर की आंच अब बड़े अधिकारियों तक पहुंच गई है। सेकंड राउंड के पहले दिन एसआईटी की टीम ने बंद कमरे में 8 घंटे की मैराथन पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक गोपाल राव, चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा से भी पूछताछ की गई है। हालांकि एसआईटी और ट्रस्ट की ओर से अभी तक पूछताछ की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। एसआईटी टीम का नेतृत्व आईपीएस अधिकारी किरण एस कर रहे हैं। एसआईटी मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था, दान संग्रह की प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की भी बारीकी से जांच कर रही है। इस बीच चंपत राय का बयान सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने अपने करीबी सहयोगियों से कहा है कि अयोध्या में उनकी सेवा पूरी हो चुकी है और चंदे में हेराफेरी के विवाद के बाद वे दाग के साथ काम जारी नहीं रखेंगे। इस बीच मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आगे की पूछताछ के लिए अविनाश शुक्ला को पुलिस ने रिमांड पर लिया है, क्योंकि जांच के दौरान सबसे ज्यादा कैश 20,39,000 अविनाश शुक्ला के घर से बरामद किया गया था। कैश के साथ पुलिस को अमेरिकी डॉलर और सोने चांदी के जेवरात भी मिले हैं। समद श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

राम मंदिर दान चोरी मामले में बड़ा खुलासा। चोरी के बाद टिन्नू यादव समेत सभी आरोपी करते थे सीक्रेट मीटिंग, बांटते थे लूट, सीसीटीवी फुटेज करते थे डिलीट। अविनाश शुक्ला ने भाई के नाम पर खरीदी थी कार। बद्रीनाथ धाम तक पहुंचा दान चोरी का मामला। सोशल मीडिया पर आरोप के बाद मंदिर प्रशासन ने जांच के दिया आदेश। जांच करेगी सभी सीसीटीवी पड़ताल की। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार यूपी के दौरे पर नितिन नवीन। दो दिनों तक मिशन 2027 पर मंथन। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम समेत विधायकों के साथ बैठक। पंजाब कांग्रेस में घमासान तेज। पूर्व सीएम चन्नी के समर्थन में कई विधायक और नेता। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए बने पहली पसंद। खड़गे करेंगे फैसला। और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की अंतिम यात्रा में लाखों का हुजूम। आंसुओं में डूबा पूरा ईरान। श्रद्धांजलि सभा में रो पड़े राष्ट्रपति पेजश्कियान। भारतीय दल ने भी दी श्रद्धांजलि।

0: नमस्कार, सुबह के 10 बज गए हैं और स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। अब इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मंदिर चढ़ावा चोरों की। अयोध्या से लेकर बद्रीनाथ तक मंदिर में चढ़ावा चोरी से हड़कंप मचा हुआ है इसी बीच अयोध्या चढ़ावा चोरी के आरोपित अविनाश शुक्ला से पूछताछ हुई। जब पूछताछ हुई तो सवालों के जवाब मिले और जब जवाब मिले तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। अविनाश, टिन्नू यादव, लवकुश, सुभाष, ये सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं। और मिली भगत से पैसों की बंदर बांट करते थे ये। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अविनाश शुक्ला ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। पूछताछ के दौरान आरोपित अविनाश शुक्ला ने कबूल किया कि उसने चोरी की है। उसके सामने जांच टीम ने 45 सीसीटीवी फुटेज उसको दिखाए, पुलिस ने दिखाए, उसको चोरी करते हुए उसे दिखाया, जिसके बाद अविनाश शुक्ला ने पूरी कहानी बयां कर दी, क्योंकि उसके सामने सबूत थे, उसके सामने वो देख रहा था कि वो खुद चोरी कर रहा है और ये सब सीसीटीवी में कैद है। अविनाश शुक्ला ने पुलिस को बताया कि चोरी के माल में सबका हिस्सा बराबर का था, कभी कभी ऐसा होता था कि किसी को ज्यादा मिलता था। अविनाश ने कहा कि मैंने चोरी के पैसे से कार खरीदी, चोरी के पैसे से घर भी बनवाया, चोरी के पूरे खेल में टिन्नू यादव का दबदबा रहता था, जेल जाने का कोई डर नहीं था क्योंकि टिन्नू यादव उनके साथ था और टिन्नू यादव कहता था कि कुछ नहीं होगा, करो चोरी। टिन्नू का काम निगरानी का था और जब निगरानी करने वाला ही चोरी करे तो फिर आखिर कौन रोकेगा, समझिए कौन रोकेगा। सुभाष और टिन्नू पर भरोसा था, यह बात कही जा रही है और डिटेल में अब हम आपको समझा देते हैं। यहां पर अब देखिए अविनाश शुक्ला का कबूलनामा क्या, कि सबका हिस्सा बराबर लगता था, सबका हिस्सा बराबर था कि भाई तुम इतना रखो, अगर 10 लाख लिए तो दो दो करते हुए 5 लोग बांट लो आपस में। हां, कभी कभी किसी को ज्यादा हिस्सा मिलता था, जो ज्यादा मेहनत करता था, चोरी करने में मेहनत करता था, यानी सीसीटीवी से छुपाना हो अपने साथी को तो उसको ज्यादा मिल गया। अब अविनाश ने कहा कि मैंने चोरी के पैसों से कार खरीदी, ब्रेजा कार अपने भाई के नाम पर खरीदी थी, भाई सरकारी नौकरी में था, चोरी के पैसे से घर भी बनवाया। ये जब जांच टीम ने सवाल पूछे, सबूत दिखाए, तब अविनाश शुक्ला ने कबूल कर लिया। टिन्नू यादव का दबदबा रहता था, क्यों? क्योंकि वर्चस्व था टिन्नू यादव का, चंपत राय के करीबी, जेल जाने का तो कोई डर ही नहीं था, क्यों? क्योंकि टिन्नू यादव साथ में है, सुभाष साथ में है, तो इसीलिए क्या डर। टिन्नू कहता था कि कुछ नहीं होगा, करो चोरी जितनी करनी है, मैं हूं सब देख लूंगा। टिन्नू का काम क्या था, निगरानी करने का, टिन्नू वॉकी टॉकी हाथ में रखता था, वहीं से ऑर्डर देता था। तो सुभाष और टिन्नू यादव पर भरोसा था कि जब ये दो लोग साथ में हैं तो फिर हम कितना भी चोरी करें कुछ नहीं। और यह भी कहा गया कि कई बार सीसीटीवी फुटेज मिटाए गए, टिन्नू की जिम्मेदारी थी, टिन्नू की जिम्मेदारी थी, वो कहता था कि सीसीटीवी फुटेज सब मैनेज कर देंगे, कोई बात नहीं, जितनी चोरी करनी है करो। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए।
1: रामलला के घर हुई डकैती की जांच पुलिस और एसआईटी कर रही है। एसआईटी उन बड़े किरदारों को बेनकाब करने में लगी है जो बंदी प्रबंधन में थे, तो वहीं अयोध्या पुलिस उन आरोपियों से सवाल जवाब कर रही है जो सीधे सीधे चढ़ावे का पैसा दबा लिए। श्रद्धालुओं के चढ़ावे पर हाथ साफ करने वाले आरोपियों के काले कारनामे परत दर परत खुलते जा रहे हैं। पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला से कई ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुनकर राम भक्तों का खून खौल जाए। अयोध्या पुलिस ने पूछताछ के दौरान अविनाश शुक्ला को पिछले 45 दिनों की सीसीटीवी फुटेज दिखाई। जैसे ही उसने खुद को चढ़ावे से पैसे निकालते देखा, वो टूट गया और लगातार चोरी करने की बात स्वीकार कर ली। पूछताछ में अविनाश ने बताया कि चोरी की रकम से एक ब्रेजा कार खरीदी गई थी, जी कार उसने अपने भाई के नाम खरीदी। अविनाश का भाई इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ कि कार चढ़ावा चोरी के पैसे से खरीदी गई है। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आते ही अविनाश ने कार को तुरंत प्रतापगढ़ स्थित घर भेज दिया गया। इस मामले में अविनाश के भाई अभिषेक शुक्ला से भी पूछताछ की गई है।
2: ये कार ये पीछे खड़ी है, ये विटारा ब्रीजा कार है, ये बरामदगी हुई है। ये कार है जो अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक के नाम पर दर्ज है। और ये गाड़ी आपको दिखाते हैं, ये विटारा फोर्थ इसका ओनर है, यानी कि पुरानी गाड़ी है, सेकंड हैंड खरीदी गई। और ये गाड़ी का आप पीछे से नंबर प्लेट नहीं दिख रहे, लेकिन आगे से हम आपको नंबर प्लेट भी दिखाते हैं। ये नंबर प्लेट है इसकी, ये कैमरा पर्सन दीप दिखा रहे हैं, UP42AP6054। ये गाड़ी है जो बरामद हुई है उस अविनाश शुक्ला से, जिसके पास से पुलिस ने सभी 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सबसे ज्यादा कैश बरामद किया था, 20,39,000 से अधिक का कैश बरामद किया था। और अब जब 13 घंटे की PCR की गई, तो इस PCR में यानी कि पुलिस कस्टडी रिमांड में पूछताछ के बाद अविनाश शुक्ला से यह गाड़ी भी बरामद कर ली गई है।
1: जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, चढ़ावा चोरी गैंग के सभी आरोपी एक दूसरे की गतिविधियों से पूरी तरह वाकिफ थे। कौन कब और कैसे चोरी कर रहा है, इसकी जानकारी सभी को रहती थी। चढ़ावा चोरी के बाद सभी आरोपी नियमित रूप से बैठक करते थे, उस बैठक में चोरी का माल बांटने और आगे का प्लान डिस्कस होता था।
2: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला से 13 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड में जहां एक तरफ पूछताछ की गई, उसको योग केंद्र से लेकर 14 कोसी परिक्रमा के उस मार्ग तक लेकर जाया गया, जहां पर ये सारे चढ़ावा चोरी के आरोपी मिलकर पैसों की बंदरबांट करते थे।
1: इन बैठकों में अनुकल्प मिश्रा, लोकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा समेत 6 आरोपी शामिल होते थे। जांच में ये भी सामने आया है कि बाद में टिन्नू यादव का भतीजा भी इन बैठकों में शामिल होने लगा था। मई के आखिरी सप्ताह में मामला खुलने से ठीक पहले भी आरोपियों की एक बैठक हुई थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है। पूछताछ में सामने आए ये खुलासे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि चोरी कोई अकेले व्यक्ति की करतूत नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से अंजाम दी जा रही थी। अब पुलिस चोरी की रकम, उससे खरीदी गई संपत्तियों और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। कल करीब 13 घंटे की पूछताछ के बाद अविनाश शुक्ला को अयोध्या जेल भेज दिया गया है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
0: संतोष शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो शुरुआत से इस मामले पर बहुत बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। संतोष, अब जब सबूत दिखाए गए इन आरोपियों को, अविनाश शुक्ला को, तो अब ये सब कबूल भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि कैसे कैसे चोरी करते थे, कैसे बंदरबांट करते थे, लेकिन क्या यही लोग या फिर इनके ऊपर भी कोई था? अभी और भी खुलासे का इंतजार है?
2: देखिए, बिल्कुल, अविनाश शुक्ला से 13 घंटे की पूछताछ की गई। जो पूछताछ की शुरुआत हुई तो अविनाश शुक्ला से पूछा गया कि कैसे चोरी करते थे और रोज करते थे, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, हम चोरी करते ही नहीं थे। फिर पुलिस को वो CCTV दिखाने पड़े, जो 45 दिनों का CCTV पुलिस ने हासिल किया है, और एक एक CCTV में पूछा गया कि अविनाश शुक्ला से ही पूछा गया कि ये कौन है। अविनाश शुक्ला को ही चोरी करते जब दिखाया गया तो वो टूट गया और उसने कहा कि हाँ, तब उसने मान लिया कि चोरी कर रहा था। इतना ही नहीं, उसी की निशानदेही पर ब्रेजा कार बरामद की गई है, जो चोरी की रकम से उसने अपने बड़े भाई अभिषेक के नाम पर खरीदी थी। अभिषेक के नाम पर खरीदने की वजह यह थी कि वो सरकारी टीचर है, तो ऐसे में कोई सवाल नहीं करेगा कि भाई सरकारी टीचर है तो सेकेंड हैंड कार खरीद सकता है। लेकिन ये जो कार खरीदी गई, अविनाश शुक्ला ने खुद कबूलनामा किया है, उसके बाद उस कार को बरामद कर लिया है, पुलिस ने जब्त कर लिया है। इसके अलावा वो जगह जो 14 कोसी परिक्रमा पर लखनऊ अयोध्या हाईवे के किनारे है, सुनसान इलाका, वहां पर इन लोगों की मीटिंग होती थी सारे लोग। अभी तक ये था कि जिसका जितना हाथ लग रहा था वो अकेले अकेले चोरी कर रहे थे, लेकिन अविनाश शुक्ला ने पुलिस कस्टडी रिमांड में एक बड़ा ये खुलासा किया कि सारे लोग जानते थे कि कौन कैसे चोरी कर रहा है, और सारे लोगों की बाकायदा मीटिंग होती थी कि उस सुनसान इलाके में मिलते थे, वहां पर मीटिंग होती थी, बातें तय होती थी, मदद कौन कैसे कर सकता है इस पर तय होती थी। और यही वजह है कि जब आज तक ने सबसे पहले इस पूरी चोरी के मोडस ऑपरेंडी को बताया था, तो उसने साफ तौर पर कहा था कि जो गणना करने वाले जो आरोपी थे, ये CCTV से बचने के लिए एक युवक CCTV के सामने खड़ा हो जाता
0: और ये और पूरी प्लानिंग के साथ एक शख्स CCTV को ब्लैंक करता था और दूसरा फिर चोरी करता था। तो अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई। समाजवादी पार्टी ने क्या फिर से चले गए वनवास थीम पर एक गाना जारी किया है। पार्टी का ये दावा है कि यह गीत मंदिर में चढ़ावे की हेराफेरी के मुद्दे पर सवाल उठाता है, इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है।

0: तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आरएसएस का भी बयान आया। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच हो रही है, कार्रवाई होगी। राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
1: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। जय श्री राम।
0: तो अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच और सियासत के बीच अब बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे और दान से जुड़ी कथित गड़बड़ियों के आरोपों ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर मामला सामने आने के बाद आरोपों का दौर शुरू हो गया और इसी बीच श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति BKTC ने आंतरिक जांच के आदेश दे दिए हैं। समिति ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और अगर कोई दोषी पाया गया तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जांच बैठा दी गई।
2: मंदिर धाम में जो दान है चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी गण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस, शो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
0: अंकित हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बात करते हैं उनसे। अंकित, श्री बद्रीनाथ धाम में अयोध्या कांड वाली खबर आ रही है कि वहां भी दान चोरी हुआ है, तो क्या कुछ दावे किए जा रहे हैं जो जांच अब बिठा दी गई है?
3: देखिए हिमांशु, जिस तरह से राम मंदिर में करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं को आघात पहुंचा, उसी तरीके से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम को मैनेज करने वाली कमेटी BKTC पर भी आरोप लगाए गए हैं और इसमें एक जो बड़ा व्यक्ति है जो जिसको निजी सचिव बताया जा रहा है उस पर जो चढ़ावा चोरी है उसका आरोप लगाया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 तारीख को सुबह 8:30 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है जो कि CCTV में कैद हुआ। मंदिर में जो तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं या जो प्रोटोकॉल अधिकारी के तहत काम कर रहे हैं उन्होंने एक सूचना दी और ये जो सबसे पहले आरोप जो लगाया है ये भैरव सेना के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं संदीप खत्री, उन्होंने एक पत्र के जारी लगाया है। हालांकि उनका कहना है कि CCTV अभी तक उन तक नहीं पहुंचा है लेकिन जांच हो रही है और 2 तारीख को 8:30 बजे उनके अनुसार इस तरह की घटना सामने आई क्योंकि एक मंडली बनाई जाती है जो कि चढ़ावा और जो थाली भेंट की जाती है उसकी गणना होती है कि कितनी थालियां एक दिन में आई हैं। तो बताया जाता है कि प्रमोद नौटियाल जो कि निजी सचिव के तौर पर अध्यक्ष के साथ काम कर रहे हैं, हालांकि अध्यक्ष ने इसका खंडन किया है लेकिन आदेशों में इनका नाम अभी भी मौजूद है और ये व्यक्ति वहां पर मंदिर में मौजूद होता है और जो थाली गणना होती है उसमें सेंध मारता है या किस तरह से चोरी करता है ये जांच का विषय है लेकिन फिलहाल इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। मंदिर समिति ने निजी सचिव की बात का तो खंडन कर दिया है लेकिन कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं
0: है। वो दावे किए जा रहे हैं, जांच होगी, जांच के बाद ही निष्कर्ष निकल के सामने आएगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ी खबर बताते हैं कोलकाता से। TMC के 2 गुटों में दफ्तर कब्जाने को लेकर तनातनी हो रही। कल रात TMC बागियों के गुट ने कोलकाता के तृणमूल भवन पर कब्जा करने की कोशिश की, ममता बनर्जी के पोस्टर हटाकर अपने पोस्टर लगा दिए और उसके बाद ममता गुट के विधायक सांसद भी पहुंच गए वहां पर। काफी देर तक हंगामा होता रहा, फिर पुलिस और पैरामिलिट्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और TMC दफ्तर पर तालाबंदी कर दी गई। तो ये जो आप हालात देख रहे हैं ना, ये दोनों गुट हैं, एक तरफ ममता बनर्जी की तरफ से जो विधायक सांसद जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ रिद्वत का, और यहां आए थे तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर पर कब्जा करने के लिए। लेकिन जब हालात बिगड़ते दिखे तो फिर पुलिस आई, पैरामिलिट्री आई, उन्होंने लगा दिया ताला।
4: एक तरफ जैसे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस टूटने की खबर आई, उसी के साथ साथ आज बागी विधायक जितने भी तृणमूल कांग्रेस के थे वो हाजिर हुए तृणमूल कांग्रेस भवन पर। और यही जो तृणमूल कांग्रेस भवन है वो मेट्रोपॉलिटन पे स्थित है, जहां पे तृणमूल कांग्रेस की पार्टी ऑफिस है। और वही पार्टी ऑफिस में बागी विधायकों ने यहां पे ताला लगा दी। हम देख सकते हैं कि यहां पे जो तृणमूल कांग्रेस भवन की जो मेन गेट है उस पे दो दो ताले झुलाए गए। और उसके साथ साथ इस वक्त ये तृणमूल कांग्रेस भवन में एक नई जो है कि बैनर या होर्डिंग लगाई गई है, जहां पे लिखा हुआ है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और चेयरमैन की नाम है अरूप राय। हम जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की जो चेयरमैन फाउंडर ममता बैनर्जी हर जगह पे छाई हुई रहती थी, और यहां पे यही पोस्टर पे ममता बैनर्जी की कोई भी छवि नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यही उठता है कि इस वक्त तृणमूल कांग्रेस किसकी है? कहीं तृणमूल कांग्रेस ममता बैनर्जी की है या तृणमूल कांग्रेस बागी विधायकों की है? क्योंकि प्रश्न सवाल जो है वो बहुत ही पूरी तरीके से उठ रही है, क्योंकि इस वक्त जो है अब तृणमूल कांग्रेस भवन की जो है कि दखलदारी यानी कि इसकी सवाल उठ रही है कि ये दखल हो जाएगी तृणमूल कांग्रेस बागी विधायकों की ये भवन हो जाएगी या ये भवन ममता बैनर्जी की रहेगी। कैमरा पर्सन शुभजीत गायन के साथ अनिर्बान, आज तक, कोलकाता।
0: तो देखिए टीएमसी के दोनों गुट दफ्तर पर दावा ठोक रहे, लेकिन अभी के लिए दफ्तर पर तालाबंदी कर दी गई। दोनों गुटों को सुन भी लेते एक बार।
5: हम लोग तो तृणमूल कांग्रेस है, और अगर कोई तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस है तो वहां पे तो हम लोग जा ही सकते हैं, इस पे तो कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। तो हम लोग तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस में गए थे और जाके वहां पे हम लोग बैठे, तो इस पे कोई क्या आरोप लगा रहा है उस पे ध्यान हम लोग नहीं देंगे। हम लोगों को विधानसभा में प्रिंसिपल ऑपोजिशन का स्वीकृति मिल चुका है, हम ही लोग विधानसभा में प्रिंसिपल ऑपोजिशन है, हम लोग तृणमूल कांग्रेस है, और तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस के साथ हम लोग का इमोशन जुड़ा हुआ है।
6: जो एक्सपेल्ड मेंबर्स है उसका कोई राइट नहीं है पार्टी ऑफिस में घुसने का। तो हम लोग पुलिस के रिक्वेस्ट किया था, मदन मित्र, वैश्यनाथ चटर्जी, मृत्युंजय पाल और पूरा हमारा जो तृणमूल कांग्रेस लीडर्स वर्कर्स जो है, हम लोग कोई इरेस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं किया। जो ताला वो लोग दिया है वो हम लोग तोड़ सकता था, लेकिन एक भी इल्लीगल इरेस्पॉन्सिबल काम उस लोग किया है, हम लोग नहीं किया है। हम लोग पुलिस से रिक्वेस्ट किए थे, लेकिन पुलिस उनका फॉलो अप टीम जैसा बिहेव कर रहे थे।
0: टीएमसी किसकी, अब ये सवाल सब पूछ रहे हैं। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और सौगत राय भी रात में ही पार्टी ऑफिस पहुंच गए। इस दौरान कल्याण बनर्जी ने कहा कि खेल शुभेंदु ने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे।
7: वो क्लेम तो झूठा है, वो तो हम लोग साबित कर देगा। उनका क्लेम का माफी, उन लोगों का ऑफिस तो है राजधानी में, तो उधर में क्या है? अरे कुछ गुंडा मिलकर एक तो पार्टी बनाया, तो हमको मान लेना होगा। चोर गुंडा सब लोग मानते करते हैं, और वही चोर गुंडा सब सुगंध अधिकारी का वो नजदीक का आदमी है, तो हमको मान लेना होगा। क्या समझते हैं ये कलकत्ता सुगंध अधिकारी ये लोग सब फाइनल है, और कोई कुछ नहीं है देश में, लॉ बोलते कुछ नहीं है। अरे आप लोग सुगंध मुख्यमंत्री का नजदीक आदमी हो नहीं सकता है कि लॉ से आप लोग बहुत दूर है, बहुत दूर है। खेल आपने शुरू किया है, खत्म हम लोग करेंगे, देख लेना।
0: आइए बंगाल से लिए चलते पंजाब। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी तैयारियों से पहले पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी कला सबके सामने आ गई। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह राजावड़िंग को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जिसके बाद पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में कई नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। अब एक दिन पहले पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं ने चरणजीत सिंह चन्नी की आवाज पर बैठक की, और बैठक में मौजूद नेताओं ने कहा कि पंजाब के कार्यकर्ता और जनता की भावनाओं को पार्टी हाईकमान तक पहुंचाने के लिए एक समिति बनाई गई है। अब इस समिति में चरणजीत सिंह चन्नी भी शामिल है। समिति जल्दी दिल्ली जाकर राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात करेगी। और अपना पक्ष भी रखेगी।
8: हाईकमांड ना कोई लड़ाई, असी भी हाईकमांड नूं मन्ने आ, पर कुछ गल्लां ने जिहड़ियां असी हाईकमांड अगे मुड़ के रखणियां चाहुंदे आ। चन्नी जी नूं अधिकार दिवे तुसीं हाईकमांड को टाइम दे के उन्हों रिक्वेस्ट करो कि थोड़ा जिहा होर रीथिंक करके उहो जिहा फैसला करो जिहड़ा सारे कांग्रेस नूं फायदा होए। ते अगली बारी पंजाब च कांग्रेस सरकार बने, मेन गल साडी है, खास लोकां दी है। भाई
0: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: TuneIn has all of your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
12: After multiple assassination attempts, they can't even get.
13: They're reliable.
14: Always when I need them.
11: To live sports action.
15: One hand jam by LeBron on the break.
16: That's another three, Steph Curry.
11: And your favorite music.
17: Well, the dawn begins to crack.
11: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
18: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
3: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
4: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
8: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमा कुरैशी।
9: ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
10: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अकल अकल नहीं है। इस पे जो बहुत फेमस सीन है वो जो
11: परमिशन लेनी चाहिए ना,
10: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई।
12: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है, लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी,
10: आई फील अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो रुक जाइए।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

राम मंदिर धन चोरी मामले में बड़ा खुलासा। चोरी के बाद टिन्नू यादव समेत सभी आरोपी करते थे सीक्रेट मीटिंग, बांटते थे लूट, सीसीटीवी फुटेज करते थे डिलीट। अविनाश शुक्ला ने भाई के नाम पर खरीदी थी कार। बद्रीनाथ धाम तक पहुंचा दान चोरी का मामला। सोशल मीडिया पर आरोप के बाद मंदिर प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। जांच कमेटी करेगी सीसीटीवी की पड़ताल। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार यूपी के दौरे पर नितिन नवीन, दो दिनों तक मिशन 2027 पर मंथन। सीएम योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम समेत विधायकों के साथ बैठक। पंजाब कांग्रेस में घमासान तेज। पूर्व सीएम चन्नी के समर्थन में कई विधायक और नेता। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए बने पहली पसंद। खड़गे करेंगे फैसला। और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की अंतिम यात्रा में लाखों का हुजूम। आंसुओं में डूबा पूरा ईरान। श्रद्धांजलि सभा में रो पड़े राष्ट्रपति पजेशकियान। भारतीय दल ने भी दी श्रद्धांजलि।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। तेहरान आज सिर्फ एक शहर नहीं है बल्कि मातम का समंदर बना हुआ है। लाखों लोगों की भीड़ है, आंखों में आंसू हैं, हाथों में तस्वीरें हैं और हर तरफ सिर्फ एक ही नाम, आयतुल्लाह अली खामेनेई। अंतिम दर्शन के दौरान कई लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। ईरान की सत्ता के सबसे बड़े चेहरे भी भावुक दिखाई दिए। संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, सबकी आंखें नम। जबकि कई वरिष्ठ सैन्य और धार्मिक नेता भी शोक में डूबे नजर आए। इस अंतिम विदाई में दुनिया के कई देशों के डेलीगेट शामिल हुए। भारत की ओर से भी आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंचा। भारतीय दल में बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरिटा शामिल है। भारत ने ईरान के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की है। तेहरान से लेकर पवित्र शहरों तक चलने वाली इस अंतिम यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। लाखों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े हैं, ये देखिए लाखों लोग, और हर पल इतिहास लिखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर आज तक की टीम भी इस वक्त ईरान में मौजूद है और हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। तो जैसा आपको बताया कि ईरान में इस वक्त मातम है, आंसू है, गम है। आज तक की टीम ईरान में मौजूद है। तेहरान से आज तक संवाददाता सुमित चौधरी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
1: अगर आप तेहरान की बात करें तो यहाँ पर अब भीड़ बढ़नी शुरू हो चुकी है। सुबह के बाद धीरे धीरे लोग यहाँ पर सड़कों पर जुटना शुरू हो चुके हैं और चारों तरफ आपको काले लिबास में नजर आए लोग, यानी शोक को प्रतीत करते हुए, शोक को दिखाते हुए काले लिबास में लोग नजर आ जाएंगे। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे आपको इन सड़कों पर सिर्फ सिर्फ लोगों की आवाजाही नजर आएगी। थोड़ी देर में ये भीड़ और बढ़ती चली आएगी, यानी वक्त जैसे जैसे बढ़ेगा भीड़ और

0: पड़ेगी 8 बजे करीब जो है वो जो ग्रेट मसल्ला है वहाँ पर उन गेट को खोला जाएगा और उसके बाद भीड़ अंदर जानी शुरू हो जाएगी। यानी उससे पहले ही यहाँ पर लोग पहले से वहाँ पर पहुँचना चाहते हैं। और इस समय के ताज़ा हालात अगर आप मेरे पीछे देखें, आपको बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, युवा हो, सभी लोग यहाँ पर सड़कों पर आपको नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कई सड़कों को बंद कर दिया गया और अब थोड़ी देर बाद इन सड़कों को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसे में लोग पैदल ही यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से ग्रेट मसल्ला जो इनकी जो सबसे बड़ी आप कह सकते हैं मस्जिद है या फिर वो इलाका जहाँ पर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के शव को पार्थिव शरीर को रखा गया है वो यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर दूरी पर है और यहाँ पर लोग यहाँ से पैदल ही उस तरफ की तरफ वो वहाँ पर जाएंगे। और अभी अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको हर जगह इस तरीके के बैनर्स या फिर इस तरीके के काउंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर लोगों के लिए पीने का पानी या कई जगहों पर उनके लिए खाने पीने का सामान और मेडिकल एड या फिर मेडिकल सुविधाओं के देने की भी कोशिश यहाँ पर की गई है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ साथ यहाँ पर एम्बुलेंस है, रिलीफ और खासतौर पर जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनका भी गठन किया गया। हर जगह पर यहाँ पर इस तरीके की रिलीफ टीम को रखा गया है और यहाँ से पीछे अगर आप देखें तो हर चौराहों पर इस तरीके के जो शॉवर्स हैं, स्प्रिंकल्स हैं वो लगाए गए हैं ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। और यही वजह है क्योंकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि करीबन 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें इकट्ठा होंगे, तो यहाँ पर उसको लेकर तैयारियाँ पहले से चल गई थी। कल फॉरन डेलीगेट्स आए थे और आज धीरे धीरे जो लोग हैं आम लोगों के लिए ग्रेट मसल्ला के अंदर लोगों की आवाजाही शुरू होगी। 8 बजे गेट खोल दिए जाएंगे। अभी के ताज़ा हालात यहाँ क्योंकि आज तक की टीम अकेली ऐसी टीम है भारतीय मीडिया जो यहाँ पर मौजूद है, तो हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको ये भी बता रहे हैं कि आखिरकार यहाँ के अभी हालात कैसे हैं। और अभी थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा भीड़ का आप कह सकते हैं एक बड़े जत्था यहाँ से जाएगा और जो सुप्रीम लीडर थे उनके शव को 2 दिन के लिए, उनके पार्थिव शरीर को 2 दिन के लिए यहीं पर ग्रेट मसल्ला में रखा जाएगा। उसके बाद उस शव को ले जाया जाएगा कुंभ में और कुंभ में ले जाने के बाद करीबन जो करबला और नजफ का इलाका यानी जो इराक का इलाका है वहां पर उनको 6 और 7 तारीख को मुख्य रूप से उनके पार्थिव शरीर को वहां पर ले जाया जाएगा और उसके बाद सीधा उनके मसद की तरफ ले जाया जाएगा जो उनका क्षेत्र था, उनका उनका बॉर्न प्लेस था, और वहां पर फिर उनके पुर्दे खाक किया जाएगा। यानी करीबन 4 से 5 दिन का ये पूरा कार्यक्रम होगा, इसलिए माना जा रहा है कि 4 से 5 दिनों तक इसी तरीके की सिचुएशन यहाँ पे तेहरान की सड़कों पर नजर आ सकती है।
1: ईरान के सबसे ताकतवर रहे सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई का ताबूत तेहरान में आवाम के सामने रख दिया गया है। पूरे 125 दिन हो चुके हैं जब इसी तेहरान में अमेरिका और इसराइल के हमले में आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या की गई थी। 4 महीने बाद उन्हें सुपुर्द खाक किया जाना है और ईरान में खामनेई का अंतिम संस्कार का मातम है। लेकिन इस बीच एक ऐसा खतरा भी है जिसकी वजह से मुज्तबा खामनेई अपने ताकि अंतिम विदाई के समारोह में सबके सामने नहीं आए। इसराइल की धमकियों ने इस अंतिम संस्कार को एक टारगेट जोन में तब्दील कर दिया है।

खामेनेई की अंतिम विदाई, इसराइल से फिर धमकी आई। तेहरान में अंतिम विदाई समारोह शुरू, इसराइल का प्लान क्या है? क्या खामेनेई के अंतिम संस्कार में इसराइल करेगा बमबारी? अमेरिका ने ईरान को इजरायली साजिश की चेतावनी क्यों दी? आयतुल्लाह खामेनेई की अंतिम विदाई में सामने नहीं आएंगे मुज्तबा। 28 फरवरी यानी 125 दिन पहले इजरायली हमले में मारे गए ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों की अंतिम विदाई की रस्में शुरू हो गई हैं। खामेनेई के साथ उनकी 14 महीने की पोती, पत्नी, बेटी और दामाद को भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। खामेनेई की पोती के छोटे से ताबूत के पास उसकी तस्वीर भी रखी गई है। तेहरान के मुसल्ला परिसर में अली खामेनेई और उनके परिवार के कई सदस्यों के ताबूत रखे गए हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान समेत देश का शीर्ष नेतृत्व तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में खामेनेई को श्रद्धांजलि देने पहुंचा। इस दौरान पेजेशकियान भावुक होकर रो पड़े। उनके साथ मौजूद ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ और कई सैन्य अधिकारी भी अब

आंसू नहीं रोक पाए। 9 जुलाई को उन्हें ईरान के मशहद शहर में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इस मौके पर ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने अमेरिका और इसराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि हम पहले से ज्यादा मजबूत इरादे के साथ ईरानी जनता के दुश्मनों यानी अमेरिका और इसराइल से कहते हैं कि हम शहीद नेता खामेनेई के खून का बदला

0: और इसराइल से कहते हैं कि हम शहीद नेता खामेनेई के खून का बदला जरूर लेंगे। इस बीच अमेरिका ने ईरान को इजरायली साजिश की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि अमेरिका ईरान के बीच अप्रैल में शुरू हुई बातचीत के दौरान अमेरिका को डर था कि इसराइल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ को निशाना बना सकता है। इसी वजह से अमेरिका ने मिडल ईस्ट के कुछ सहयोगी देशों के जरिए तेहरान को सतर्क रहने का संदेश भिजवाया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में होने वाली एक बैठक से पहले भी ईरान को हमले का खतरा था। इसी कारण पाकिस्तान ने ईरानी प्रतिनिधि मंडल के विमान को फाइटर जेट की सुरक्षा में इस्लामाबाद तक पहुंचाया। लौटते समय भी सुरक्षा अलर्ट मिलने पर विमान की मशहद में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और डेलीगेशन सड़क के जरिए तेहरान पहुंचा। और इस वक्त जब खामेनेई की अंतिम विदाई का आयोजन शुरू हो रहा है तो अमेरिका ने फिर से ईरान को इजरायली साजिश की चेतावनी दी है। कल से उन्हें अंतिम विदाई देने की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मातम के इस आयोजन पर दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों और फाइटर जेट्स की नजरें गड़ी हैं।
1: करोड़ों की संख्या में लोग यहां सड़कों पर जुटने वाले हैं, इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई के बेटे यानी अभी के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई उसमें शामिल नहीं होंगे। दरअसल इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि उनकी सिक्योरिटी को लेकर या इसराइल की तरफ से जो धमकी दी गई है उसको लेकर ये सबसे बड़ी बात कही जा रही है।
0: सुना आपने, खतरा इतना भीषण है कि बेटा अपने पिता के जनाजे को कंधा देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने आज तक की सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट गीता मोहन से बातचीत में जो खुलासा किया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सुरक्षा कारणों से नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे।
2: And I think he will not come out. Do you know they have very, very advanced technology and they can recognize him and they can follow him. Where is he? And it's very dangerous for him. So because of that, he will not come out.
0: दरअसल इस बारूदी खेल की शुरुआत तब हुई जब इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ट्स ने सीधे हुंकार भरी कि मुस्तफा खामेनेई अब इसराइल की हिट लिस्ट पर हैं। वो मार्क फॉर डेथ हैं। इसराइल की इस खुली धमकी पर ईरान तड़प उठा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघते हुए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर डाला। अराग्ची ने कहा कि अमेरिका तेल अवीव के अपने इस पालतू को काबू में रखे, वरना ईरान उसे ऐसा सबक सिखाएगा कि वो भूल नहीं पाएगा। जब ईरान की तरफ से धमकी आई तो ट्रंप की सबसे कट्टर सिपह सालार लॉरा लूमर ने वो बात खुलकर कह दी जो तमाम ईरान विरोधी और इजरायली समर्थकों के दिल में छिपी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेहद करीबी और धुर दक्षिणपंथी कार्यकर्ता लॉरा लूमर ने खामेनेई सीनियर के इस अंतिम संस्कार को टारगेट रिच एनवायरमेंट घोषित कर दिया, यानी वो खुलेआम इसराइल को उकसा रही हैं कि पूरी ईरानी लीडरशिप एक जगह जमा है, हमला करने का इससे मजेदार और सही मौका दूसरा नहीं हो सकता। ऐसा होने की आशंका कोरी कल्पना नहीं है। दुनिया ने पिछले साल ही देखा था कि जब लेबनान के बेरूत में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को सुपुर्दे खाक किया जा रहा था, तब इसराइल के F-15 और F-35 फाइटर जेट्स ने अंतिम संस्कार के ठीक ऊपर ऊंचाई पर फ्लाई पास्ट कर दहशत फैला दी थी। और इस बार तो जंग सीधे ईरान की धरती पर है। हालांकि ईरान भी चुप बैठने के मूड में नहीं है। तेहरान और मशहद समेत कई शहरों का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर अली अब्दुल्लाही ने अमेरिका और इसराइल को आखिरी चेतावनी देते हुए कहा है, हम ईरान के दुश्मनों खासकर अमेरिका और इसराइल को चेतावनी देते हैं कि वो कोई गलत कदम ना उठाएं और सोचें कि किसी भी खतरे या आक्रामकता का हमारी सेना की ओर से कितना कड़ा जवाब दिया जाएगा। साफ है कि ईरान की ताकत पर सेना कड़ा जवाब देने के लिए मिसाइलों के ट्रिगर पर हाथ रखे बैठी है। अब सवाल ये है कि अगर इसराइल ने ईरान के अंदर खामेनेई के अंतिम विदाई समारोह में किसी हमले को अंजाम देने की कोशिश की तो क्या होगा। गीता मोहन के साथ सुमित चौधरी, तेहरान, आज तक।

अब आपको दिखाते हैं कि इस वक्त मिडिल ईस्ट के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे भावुक और सबसे तनावपूर्ण घटनाक्रम इस वक्त ईरान की धरती पर चल रहा है। युद्ध के पहले ही दिन अमेरिका और इजरायली हमले में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई का पार्थिव शरीर विदाई समारोह के लिए रख दिया गया है। तेहरान की सड़कों पर रोती बिलखती आवाम का समंदर उमड़ पड़ा है। 4 जुलाई से शुरू होकर 9 जुलाई तक चलने वाले इस ऐतिहासिक और राजकीय अंतिम संस्कार में नेता आयतुल्लाह अली खामनेई का पार्थिव शरीर विदाई समारोह के लिए रख दिया गया है। तेहरान की सड़कों पर रोती बिलखती आवाम का समंदर उमड़ पड़ा है। 4 जुलाई से शुरू होकर 9 जुलाई तक चलने वाले इस ऐतिहासिक और राजकीय अंतिम संस्कार में दुनिया भर के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से भी एक बड़ा डेलीगेशन ईरान पहुंचा, जिसमें सत्ता और विपक्ष दोनों के चेहरे शामिल हैं।

0: नम आंखें, गगन भेदी नारे और अपने सबसे बड़े रहबर को खोने का बेइंतहा दर्द। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामिनेई का ताबूत आधिकारिक समारोह से दो दिन पहले ही आवाम के सामने रख दिया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने देश की जनता से अपील की है कि वो हर राजनीतिक और धार्मिक मतभेद को भुलाकर इस ऐतिहासिक विदाई का हिस्सा बने और राष्ट्रीय एकता की मिसाल पेश करें। ईरान के इस सबसे बड़े संकट के समय भारत ने भी अपनी मजबूत कूटनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई है। आज तक की टीम जिस स्पेशल विमान से तेहरान पहुंची, उसी में भारत का हाई प्रोफाइल प्रतिनिधि मंडल भी सवार था। भारत सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा तेहरान में होने वाले समारोह में हिस्सा लेंगे। उनके साथ देश के जाने माने सैन्य रणनीतिकार और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन भी इस दुखद मौके पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कूटनीति के इस मंच पर भारत की एकजुटता तब और साफ दिखी जब विपक्ष की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी इस डेलीगेशन का हिस्सा बने। आज तक संवाददाता सुमित चौधरी से खास बातचीत में सलमान खुर्शीद ने भारत और ईरान के पुराने रिश्तों को याद किया।
1: बुरे वक्त में अपने दोस्त का साथ देना एक फर्ज है इंसान का, किसी भी मुल्क का एक फर्ज है। जब हमारे इतने गहरे और पुराने रिश्ते हैं और ईरान ने हर मौके पर हमारा साथ दिया है और हमारे साथ खड़ा रहा है।
0: आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि 4 जुलाई से 9 जुलाई तक चलने वाले इस राजकीय अंतिम संस्कार का पूरा रूट और शेड्यूल क्या है, क्योंकि ये सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। 4 और 5 जुलाई तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में विदाई समारोह होगा, जहां जनता और विदेशी मेहमान श्रद्धांजलि देंगे। 6 जुलाई तेहरान की सड़कों पर एक विशाल पैदल शोक जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद पार्थिव शरीर को शिया शिक्षा के मुख्य केंद्र कोम शहर ले जाया जाएगा। 7 जुलाई कोम के पवित्र धर्म स्थल की ओर एक बड़ा धार्मिक जुलूस निकाला जाएगा। 8 जुलाई ये अंतिम यात्रा पड़ोसी देश इराक पहुंचेगी। नजफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद शिया समुदाय के सबसे पवित्र स्थलों नजफ और कर्बला में सार्वजनिक शोक जुलूस निकलेंगे। 9 जुलाई अंतिम दिन पार्थिव शरीर वापस ईरान के मशहद शहर लाया जाएगा, जो खामिनेई का जन्म स्थान है। यह देश के दूसरे सबसे बड़े शहर में आखिरी जुलूस के बाद उन्हें इमाम रजा श्राइन परिसर में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। एक तरफ जहां सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच इस विदाई की तैयारी चल रही है, वहीं ईरान की मीडिया खामिनेई की सादगी और उनके राष्ट्रवाद को सलाम कर रही है। ईरान के टीवी चैनल उनके उस आत्मनिर्भर ईरान के संदेश को दोहरा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर चुनौती का समाधान सीमाओं के भीतर ही है।
2: قوی شدن نظامی لازمه، قوی شدن علمی لازمه، قوی شدن دولتی و ساختاری و سازمانی لازمه. باید بنشینند افراد هوشمند ما، صاحب نظران دلسوز ما، راه های تقویت کشور رو پیدا کنند.
0: कड़े प्रतिबंधों, मंडराते युद्ध के खतरों और बंद होते एयर स्पेस के बीच ईरान का ये घटनाक्रम पूरी दुनिया की भू राजनीति को बदलने वाला है। भारत से लेकर इराक तक की निगाहें इस 6 दिवसीय अंतिम यात्रा पर टिकी हैं। तेहरान के इस बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक माहौल में आज तक की टीम पल पल की सीधी और सटीक रिपोर्ट आप तक पहुँचाती रहेगी। गीता मोहन के साथ सुमित चौधरी, तेहरान आज तक।
3: जब ईरान पर अमेरिका और इसराइल की तरफ से हमले किए गए थे, तो पहले ही दिन आयतुल्ला अली खामनेई की जान चली गई थी। आज ईरान में शोक की लहर है, गम है, तो दूसरी तरफ अमेरिका में आज 250वीं वर्षगांठ आजादी की मनाई जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। दो तस्वीरें बिल्कुल अलग, तेहरान में, ईरान में दुख दर्द, तो अमेरिका में खुशी। राजधानी वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल पर सैल्यूट टू अमेरिका का भव्य आयोजन हो रहा है, जहां देशभक्ति, सैन्य ताकत, सांस्कृतिक विरासत का अनोखा संगम देखने को मिला। द ग्रेट अमेरिकन स्टेट फेयर और फीफा फैन जोन आम लोगों के लिए खोल दिए गए। जगह जगह मुफ्त पीने के पानी की व्यवस्था, वाटर रिफिल स्टेशन, कूलिंग टैंक, एयर कंडीशन पवेलियन बनाए गए ताकि तेज गर्मी के बीच भी लोग इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बन सके। शाम होते होते वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट परिसर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। अमेरिकी टाइम के अनुसार शाम 7 बजे सैल्यूट टू अमेरिका का मुख्य कार्यक्रम होगा। रात करीब 9:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप देश को संबोधित करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और इस ऐतिहासिक आयोजन की हर बड़ी तस्वीर और हर पल का अपडेट लेकर आज तक के संवाददाता रोहित शर्मा वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
4: अमेरिका अपना 250th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और उसके लिए अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, एक उत्सव की तरह इसे मनाने की कोशिश की गई। और अभी हम जहाँ पे खड़े इसे नेशनल मॉल कहा जाता है वॉशिंगटन डीसी में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से एक फेरिस व्हील है यहाँ पे और किस तरह से यहाँ पे एक स्टेट फेयर बनाने की कोशिश की गई। और मैं अपना कैमरा घुमा के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से यहाँ पे तरह तरह के जो स्टेट्स हैं अमेरिका के उनके एक एक बूथ बनाए गए हैं। यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन हो चुकी है। अभी शाम के करीब यहाँ पे 8 बज रहे हैं और थोड़ी देर पहले तक इनफैक्ट यहाँ पे ये बात हुई थी कि जो नेशनल मॉल की जो जो अथॉरिटी है उन्होंने ये कहा था कि अभी फ़िलहाल इतनी गर्मी है तो आप यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ से बाहर चले जाए, लेकिन अब यहाँ पे देखिए फिर से लोग आने लगे हैं। और पीछे आप देखिए जो फेरिस व्हील है यहीं पे इस तरफ कैपिटल हिल है, तो हम यहाँ पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये स्टेट फेयर बनाया है वहाँ पे मौजूद हैं और कोशिश करेंगे आपको दिखाने के अंदर ले जाके कि किस तरह से ये जो स्टेट फेयर है जिसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें क्या क्या है देख सकते हैं आप। सबसे ज़्यादा जो अभी फ़िलहाल जो लाइन लगी हुई है वो फ्लोरिडा जो स्टेट है उसके बूथ पे लगी हुई है, और इस तरह से जैसे ये फ्लोरिडा का बूथ हो गया, इसके बाद जीए मतलब जॉर्जिया, आप जाते हैं अलबामा, टीएन टेनेसी, उसके बाद लुजियाना, प्योर्टो रिको, मैसाचुसेट्स, और अगर इस तरफ आप आए तो आपको देखेंगे साउथ डकोटा, एसडीएनडी मतलब नॉर्थ डकोटा, केएस एन एकनसो, इस तरह से काफ़ी जो स्टेट्स है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हालांकि ये भी बात उतनी सही है कि काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया गया। ऑल्दो ये अमेरिका का सेलिब्रेशन है, करीब 50 के आसपास ऐसे बूथ होने चाहिए थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमें जो है काफ़ी कम स्टेट्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जो डेमोक्रेटिक कंट्रोल स्टेट्स है उनका ऐसा समझना था कि ये एक वन पार्टी रिपब्लिकन पार्टी का सेलिब्रेशन है और उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते।
3: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
5: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health का सच in association with
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: May I have your attention, please?
8: College wasn't built for people with full-time jobs, families, and busy lives. At WGU, we built something different. Education that lets you keep living your life. Your progress is based on what you know, not time in a classroom. If you know the material, you can move faster, saving time and money. With 24/7 online access, you stay in control, able to work, care for family, and learn on your schedule. Education that moves with you, not against you. Learn more at wgu.edu.
9: You hear it once and remember everything.
10: Too sexy for your party. Too sexy for your party.
9: One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stayed forever. They owned the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
11: हमने तब भी सवाल किया था।
12: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
11: हम आज भी सवाल करते हैं।
12: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
11: ऑपरेशन अग्नि,
12: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
11: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
13: इन एसोसिएशन विद
14: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: कि हम इस समय तेहरान में मौजूद है और हर बदलते घटनाक्रम की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।
1: मैं गीता मोहन सीधे तेहरान से आज तक के लिए।
2: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.

0: महाराष्ट्र की सियासत में ऑपरेशन टाइगर 2.0 के बाद क्या अब शरद पवार की पार्टी में भी दूसरे राउंड की टूट होने वाली है? सूत्रों के हवाले से खबर है कि लोकसभा में दो तिहाई बहुमत जुटाने में लगी एनडीए का ध्यान एनसीपी शरद पवार के 8 लोकसभा सांसदों पर है। ये संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि कांग्रेस एनसीपी विलय की अटकलों से सांसदों में 2029 को लेकर बेचैनी है। हालांकि बीजेपी के सूत्र अपने दल में इनका विलय नहीं चाहते, न ही मंत्री पद का भरोसा देना चाहते हैं। फिर भी महाराष्ट्र में हर दल सहमा हुआ है क्योंकि टूट का डर सिर्फ दलों को ही नहीं गठबंधन को भी है। ऊपर से पवार उद्धव कांग्रेस वाली अखाड़ी की 24 जून वाली बैठक में 23 विधायकों की गैर मौजूदगी ने अफवाहें और बढ़ा दी हैं। इस बैठक में खुद शरद पवार, जयंत पाटिल, रोहित पवार, नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार सहित प्रमुख नेता नहीं थे। इस बैठक के बाद उद्धव ने एकजुटता को लेकर नाराजगी भी जता दी थी, लेकिन जब दल के अंदर दरारें पड़ रही हैं, तो गठबंधन की फिक्र तो दूर की बात है। हाल तो ये है कि एक दिन पहले ही सचिन अहिर ने उद्धव का साथ छोड़कर डिप्टी चेयरमैन का पद चुन लिया। ऐसे में शरद पवार के सहयोगी ही कांग्रेस में विलय की सलाह दे रहे हैं। हालांकि शरद पवार ने साफ मना किया है कि न तो पार्टी कांग्रेस में मिलेगी, न ही उनके सांसद कहीं जा रहे हैं। फिलहाल शरद पवार की पार्टी में 8 सांसद और 10 विधायक हैं। दो तिहाई टूट के लिए 5 सांसद और 7 विधायकों की दरकार होगी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

राम मंदिर दान चोरी मामले में बड़ा खुलासा। चोरी के बाद चिन्नू समेत सभी आरोपी करते थे सीक्रेट मीटिंग, बांटते थे लूट, सीसीटीवी फुटेज करते थे डिलीट। अविनाश शुक्ला ने भाई के नाम पर खरीदी थी कार। बद्रीनाथ धाम तक पहुंचा दान चोरी का मामला। सोशल मीडिया पर आरोप के बाद मंदिर प्रशासन ने जांच के दिए आदेश। जांच कमेटी करेगी सीसीटीवी की पड़ताल। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार यूपी के दौरे पर नितिन नवीन। दो दिनों तक मिशन 2027 पर मंथन। सीएम योगी आदित्यनाथ चैप्टी सीएम समेत विधायकों के साथ बैठक। पंजाब कांग्रेस में घमासान तेज। पूर्व सीएम चन्नी के समर्थन में कई विधायक और नेता। पर्यवेक्षक की रिपोर्ट में भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए बने पहली पसंद। खड़गे करेंगे फैसला। और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की अंतिम यात्रा में लाखों का हुजूम। आंसुओं में डूबा पूरा ईरान। श्रद्धांजलि सभा में रो पड़े राष्ट्रपति पजश्कियान। भारतीय दल ने भी दी श्रद्धांजलि।

राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस पूछताछ में अविनाश ने चोरी की रकम सभी आरोपियों में बराबर बांटने की बात बताई। एसआईटी की पूछताछ में अविनाश ने कबूली चोरी। अविनाश ने बताया कि चोरी की रकम से उसने कार खरीदी, घर बनवाया। अपने भाई को बड़ी रकम देने की बात कबूली। पूछताछ में अविनाश ने बताया टिन्नू और सुभाष की मिलीभगत से किसी को पकड़े जाने का डर नहीं था। पुलिस पूछताछ में खुलासा। चोरी के बाद सुनसान जगहों पर होती थी मीटिंग, सभी आरोपी मिलकर रचते थे साजिश। जांच में चंपतराय के करीबी टिन्नू की अहम भूमिका सामने आई। आरोपी लंबे समय तक चोरी की साजिश छुपाकर वारदात को अंजाम दे रहा था। चढ़ाव चोरी मामले में आज भी जारी रहेगा एसआईटी जांच का दूसरा चरण। जांच अब जमीन खरीद तक पहुंची। एसआईटी ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जमीन खरीद की जांच शुरू की। जमीन खरीद से जुड़े लोगों से पूछताछ। एसआईटी ने कुछ प्रॉपर्टी डीलरों से भी पूछताछ की। टिन्नू यादव के दो भतीजों से भी पूछताछ। सभी से करीब तीन घंटे तक सवाल किए। राम मंदिर के कुछ सुरक्षा कर्मियों में भी एसआईटी की पूछताछ। बैंक कर्मचारियों से भी एसआईटी ने जानकारी ली। पुलिस रिमांड में अविनाश शुक्ला से 13 घंटे की पूछताछ के बाद भेजा गया जेल। एसआईटी के हाथ लगे अहम सुराग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आरएसएस का पहला बयान। सरकारी वाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा राम भक्तों की भावना को चोट पहुंची, दोषियों को सजा मिले। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का आरएसएस पर पलटवार। बोले आरएसएस ने अपनी छवि साफ करने की कोशिश की, सिर्फ दिखाने के लिए निंदा। जयराम रमेश ने आरएसएस के बयान को निराशाजनक बताया। बोले आरएसएस की तरफ से दी गई क्लीन चिट शर्मनाक। चढ़ावा चोरी मामले में विनय कटियार से पीएम मोदी की कोई बात नहीं हुई, सूत्रों से खबर। पहले कटियार ने प्रधानमंत्री से बातचीत का दावा किया था। लखनऊ में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 आयोजित। सीएम योगी ने महोत्सव का शुभारंभ कर प्रगतिशील बागवानों को किया सम्मानित। राम मंदिर के डन काउंटिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव। सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डबल सिक्योरिटी चेक व नया ड्रेस कोड लागू। राम मंदिर डाउन काउंटिंग अब कुर्सी मेज पर नहीं, जमीन पर बैठकर होगी। काउंटिंग हॉल में प्रवेश से पहले दो चरणों की जांच होगी। जूते चप्पल बाहर उतारना होगा, मोबाइल कैमरा कुछ अलाउ नहीं होगा। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे में कथित हेराफेरी के आरोपों पर बीकेटीसी ने जांच समिति गठित करने के लिए आदेश दिए। अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी बोले दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने स्पष्ट किया वायरल पोस्ट में निजी सचिव बताया गया व्यक्ति उनका निजी सचिव नहीं। कहा आरोप सही पाए गए तो दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। बद्रीनाथ मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज की जांच। बीकेटीसी बोला उपलब्ध फुटेज पूरी तरह स्पष्ट नहीं, मामले की निष्पक्ष जांच के लिए आंतरिक समिति बनाई जाएगी। पंजाब में आगामी चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर बड़ा उलटफेर। चन्नी के नाम की सिफारिश के बाद भी हाईकमान ने अमरिंदर राजावड़िक पर भरोसा जताया। नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने पर कांग्रेस के एक पक्ष ने पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाया। औपचारिकता बताते हुए हाईकमान के फैसले पर सवाल उठाए। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए करीब 67 नेताओं से लंबी चर्चा। हाईकमान ने राजा वरिंग का पद दिया है। पंजाब कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए चरणजीत सिंह चन्नी। पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर मतभेद और बढ़ गए। पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच सुखदेव भगत का बड़ा बयान। हाईकमान का फैसला ही सर्वोपरि, कोई कला नहीं। टीएमसी के बागी कुटकर बोले दिलीप घोष ये पार्टी का अंदरूनी मामला। दफ्तर और विधानसभा सीटों पर फैसला स्पीकर व कानून करेगा। अभिषेक बनर्जी के बयानों को दिलीप घोष ने बताया भड़काऊ। चुनाव बाद हिंसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का लगाया आरोप। कहा ऐसे लोग बाहर नहीं जेल में होने चाहिए। गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत 23 नए आतंकियों को घोषित किया आतंकवादी। गजट नोटिफिकेशन जारी। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार लखनऊ के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। लखनऊ में नितिन नवीन के स्वागत की भव्य तैयारी। एयरपोर्ट में बीजेपी मुख्यालय तक रोड शो। दो दिन के यूपी दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर जायजा लेंगे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। संगठन की रणनीति पर मंथन के साथ तय होगी रणनीति। बीजेपी अध्यक्ष पार्टी पदाधिकारियों के साथ अलग अलग करेंगे बैठक। सांसदों और विधायकों से भी मुलाकात करेंगे। बैठक में बूथ सशक्तिकरण, जनसंपर्क और संगठन विस्तार पर मंथन। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का दाव पेच। आज राजस्थान गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। दोनों राज्यों को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। राजस्थान में बाड़मेर के बालोतरा में सौगातों की शुरुआत। पीएम मोदी 1,06,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन। मॉडिफाइड उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे पीएम। राजस्थान में परियोजनाओं की बरसात के बाद गुजरात के लिए रवाना होंगे पीएम। शाम 4:30 बजे सारण में सेमीकंडक्टर ओएसएटी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। फैसिलिटी का उद्घाटन के बाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम। संबोधन के बाद पीएम के दौरे का समापन।
E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग से जुड़ी गलत जानकारियों का सरकार ने खंडन किया। इथेनॉल उत्पादन में 3 से 5 लीटर प्रोसेस्ड पानी प्रति लीटर उपयोग बताया गया। पानी की अधिक खपत और इंजन डैमेज के दावों को सरकार ने बताया गलत। एथेनॉल उत्पादन में पानी की बर्बादी का खंडन किया। धान और कम पानी वाली फसलों से हो रही है पैदावार। अमेरिका, ब्राजील, कनाडा समेत कई देशों में पहले से लागू एथेनॉल ब्लेंडिंग ERAI परीक्षण में वाहन प्रदर्शन पर नहीं मिला कोई नकारात्मक असर। ERAI परीक्षण में वाहन प्रदर्शन पर कोई नकारात्मक असर नहीं। 2000 लीटर पहुंची क्षमता। ईरान में पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई का अंतिम समारोह जारी है। शनिवार और रविवार को तेहरान में सार्वजनिक समारोह आयोजित किए जाएंगे। ग्रैंड मौसल्ला में आम लोगों के दर्शन के लिए ताबूत रखा जाएगा। अंतिम संस्कार में 100 से अधिक देशों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद। ईरान और इराक के कई शहरों में 7 दिन तक धार्मिक अनुष्ठान। सोमवार और मंगलवार को शब यात्रा कुम शहर की ओर जाएगी। बुधवार को नजफ में रिसेप्शन और नजफ करबला में जुलूस होंगे। शुक्रवार को मशहद में अली खामनेई का अंतिम दफन संस्कार होगा। ईरान पहुंचे भारतीय डेलीगेशन ने आयतुल्लाह अली खामनेई को श्रद्धांजलि दी। सलमान खुर्शीद और महबूबा मुफ्ती शामिल रहे। गुजरात में मानसून ने बरपाया कहर। मेहसाड़ा में पूरी रात बारिश के बाद पूरे इलाके में जमा हुआ बारिश का पानी। वलसाड़ में मूसलाधार बारिश बनी आफत, लोग परेशान। जलभराव के बीच कार निकालने की कोशिश फेल। वलसाड़ में मारुति वैन फंस गई। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश का तांडव। जलभराव में फंसकर वाहन खराब। जानकारी मिलते ही NDRF की टीम मौके पर पहुंची। 19 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया।

महाराष्ट्र और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। मुंबई में 6 जुलाई तक बारिश का अलर्ट, 5 दिनों तक गुजरात गोवा में भी भारी बारिश। महाराष्ट्र के लोनावला में भारी बारिश के बाद मशहूर बुशी डैम ओवरफ्लो हुआ, पर्यटकों की संख्या बढ़ गई। गुजरात के नवसारी और डांग जिले में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, उफान पर अंबिका और कई नदियां। गुजरात के कई इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी, भारी बारिश के कारण खेत सड़कें नदियों में तब्दील, जलभराव से लोग की मुश्किलें बढ़ी। जूनागढ़ में भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में भरा पानी, उफनते नालों के बीच फंसी बस क्रेन से खींच कर निकाली गई बाहर। दिल्ली एनसीआर के लिए भी मौसम विभाग का येलो अलर्ट, देर रात झमाझम बारिश के आसार। जयपुर में बारिश के बाद टोंक रोड धंसी, किसी बड़े हादसे की आशंका, सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठे। मथुरा में भीषण गर्मी के बाद अचानक बारिश, भारी बरसात के बाद जलमग्न हुई सड़कें। गोरखपुर के मुक्ति पथ पर सरयू नदी में डूबने से बचाई गई 5 जिंदगी, मोटरबोट पलटने पर तुरंत एक्शन। उज्जैन में लगातार हो रही बारिश से क्षिप्रा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा, रामघाट सहित आसपास के घाटों पर कई छोटे मंदिरों तक पहुंचा पानी। पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन, कल पहले दिन करीब 20,000 भक्तों ने दर्शन किए। बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौटने पर भाव विभोर नजर आए श्रद्धालु, प्रभु के दर्शनों को बताया जीवन का यादगार पल। यात्रा मार्ग पर प्रशासन के इंतजामों से संतुष्ट नजर आए भक्त, भंडारे से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा इंतजाम। अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए स्वास्थ्य विभाग की पहल, नेशनल हाईवे 44 पर फर्स्ट एड कैंप लगाए गए और एम्बुलेंस तैनात। तीर्थयात्रा के दौरान ट्रैफिक की आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए NH44 पर बनी जिगजोल, पांत्याल टनल और मगरकोच रामसू वायडाक्ट को खोला गया। ओडिशा के मयूरभंज में दर्दनाक सड़क हादसा, हाईवे पर लकड़ी से भरे ट्रक का रेस्क्यू के दौरान बेकाबू हुआ डंपर, डंपर के आसपास खड़े लोगों को डंपर ने अपनी चपेट में लिया, हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 घायल। मध्य प्रदेश के सीहोर में आवारा कुत्तों का आतंक, 5 साल की बच्ची पर हमला। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में भयानक झड़प, विवाद बढ़ने पर हाईवे जाम, 2 परिवारों के झगड़े के बाद भड़की भीड़, 1 कार का शीशा तोड़ा, पुलिस ने संभाला मोर्चा। सोनीपत में कपड़ा गोदाम में भीषण आग, दमकल की टीम ने काबू पाया। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर सड़क पार कर रहे ग्रामीण को टैंकर ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत। गोंडा में प्रेमी के लिए प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा, 3 बच्चों संग मोबाइल टावर पर चढ़ी। आगरा में संसद के हत्याकांड का खुलासा, 1.5 महीने तक लापता पति, बाथरूम के फर्श के नीचे मिला शव। मॉडिफाइड साइलेंसर और हॉर्न पर बड़ी कार्रवाई, 300 साइलेंसर रोड रोलर से नष्ट हुए। भारतीय बैडमिंटन में नया स्कोरिंग सिस्टम लागू होगा, इसके बाद इसके तहत 21 की जगह 15 पॉइंट्स के होंगे गेम। 7 से 14 जुलाई तक एर्नाकुलम में होने वाले ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग टूर्नामेंट में किया जाएगा नए नियमों का पहला इस्तेमाल। भारत और इंग्लैंड के बीच आज खेला जाएगा दूसरा T20 मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर। दोनों टीमों की मैच जीतने पर नजर होगी, पहला बारिश की वजह से रद्द हो गया था। कप्तान श्रेयस और अभिषेक पर फिर से बल्ले से तूफान दिखाने की उम्मीद, पहले मैच में दोनों ने अर्धशतक लगाए थे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में राउंड ऑफ 16 की शुरुआत, आज कनाडा और मोरक्को के बीच हाई वोल्टेज भिड़ंत। फ्रांस का सामना पैराग्वे से, नॉकआउट मुकाबले में क्वार्टर फाइनल का टिकट दांव पर। लियोनेल मेसी ने रचा नया इतिहास, अर्जेंटीना को जीत दिलाकर बनाया फीफा वर्ल्ड कप का एक और रिकॉर्ड, कैपवर्ड से छीनी जीत। मिस ने पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार वर्ल्ड कप नॉकआउट मुकाबला जीता। अमेरिका में भीषण गर्मी के बीच फीफा वर्ल्ड कप मैचों का असर की आशंका, खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी। वैश्विक अनिश्चितताओं और युद्ध संकट के बावजूद अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ी, घरेलू मांग, निवेश और स्थिर राजस्व संग्रह, आगे भी तेजी से विकास की उम्मीद है। विदेशों में यूपीआई पेमेंट को आसान बनाने के लिए NPCI ने HSBC इंडिया और JP Morgan के साथ साझेदारी की। फाइनेंस कंपनियों का फोकस नए ग्राहकों पर बढ़ने से, पहली बार लोन लेने वाले ग्राहक क्रेडिट ग्रोथ की नई रफ्तार देंगे। रिटेल स्पेस की लीडिंग सालाना आधार पर 18% बढ़ी, नई सप्लाई के मुकाबले मांग के लगातार बढ़ने से प्रॉपर्टी के किराए बढ़ने की संभावना। उत्तर प्रदेश रेरा ने लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा और गाजियाबाद में 10 नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। मैक्स मैन एंड म्याउज की का टीजर रिलीज, 10 जुलाई को ट्रेलर रिलीज होगा। सिद्धार्थ मेनन, मंदरा बेदी, नफीसा अली मुख्य भूमिका में, 24 जुलाई को रिलीज होगी। राघव जुयाल की फिल्म भाई तेरा स्टार है का टीजर जारी, संजय कपूर भी नजर आएंगे। भारत के बाद जापान के सिनेमाघरों में 10 जुलाई को धुरंधर देगी दस्तक। अर्षद वारसी की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई प्रीतम एंड पेड्रो की ढीली स्क्रिप्ट, हल्की फुल्की साइबर थ्रिलर साबित हुई वेब सीरीज।
एनिमेटेड डिज्नी एडवेंचर फिल्म मुआना का ट्रेलर आउट, पौराणिक कथाओं और प्रशांत महासागर के नाविकों की सच्ची कहानियों से प्रेरित।

0: आइए उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करते हैं। यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल रणनीति बनाने में लगे हैं। चुनाव में विपक्ष को मात देने के लिए बीजेपी चक्रव्यूह रचना शुरू कर चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन यूपी दौरे पर पहुंचे। सीएम योगी ने नितिन नवीन का स्वागत किया। 4 और 5 जुलाई को 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका यह पहला यूपी का दौरा है, जिसे सूबे में 2027 के विधानसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद माना जा रहा है। नितिन नवीन के इस दौरे का एकमात्र लक्ष्य यूपी में बीजेपी सरकार की सफलता की हैट्रिक, यानी तीसरी बार सरकार बनाना है। आशीष जुड़ गए हमारे साथ, हमारे सहयोगी आशीष, क्या रणनीति लेकर आगे बढ़ेगी बीजेपी और नितिन नवीन का दौरा कितना है?
1: बिल्कुल, देखिए मानसू, सबसे बड़ी बात है कि लखनऊ एयरपोर्ट पर नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पहुंच चुके हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत किया है, केशव प्रसाद मौर्य ने स्वागत किया है। और ऐसे में अगर हम बाहर की तस्वीर आपको दिखाएंगे तो यहां पर पाएंगे कि आप अवधि में यहां पर उनका स्वागत के लिए गान हो रहा है। इसके साथ हाथों में आप देखेंगे तो फ्लैग लिए हुए भाजपा के साथ ही साथ केसरिया गुब्बारों के साथ में यहां स्वागत किया जा रहा है। महिला कार्यकर्ताएं फूल लेकर यहां पर मौजूद हैं, साथ ही साथ यहां पर स्टेज लगाया गया है जहां पर यहां के जो विधायक है राजेश्वर सिंह वो वहां वेलकम करने के लिए कैंप लगाकर हैं। इसी तरीके से पूरे लखनऊ में अलग अलग जगह पर लोग स्वागत करने के लिए, फिर चाहे वो अल्पसंख्यक मोर्चे के हों, फिर चाहे अलग अलग मोर्चे के हों, स्वागत के लिए मौजूद हैं। ये देखिए आप यहाँ पर जो तस्वीर देख रहे होंगे, यहाँ पर मोर पंख की तरीके से ये जो पारंपरिक तौर का एक नृत्य है उसको किया जा रहा है कि जब नितिन नवीन उनसे मिलेंगे कार्यकर्ताओं से, उनके अंदर जोश भरा हुआ है कि पहली बार जब वो यहाँ पहुंच रहे हैं, ऐसे में लोगों का जोश पूरे तरीके से उफान पर है। कितना जोश है आप लोगों में?
2: हम लोगों में बहुत जोश है। हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के स्वागत के लिए सुबह से 8 बजे से तैयारी में खड़े हुए हैं। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करते हैं और उनके स्वागत में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं, माननीय राजेश्वर सिंह जी की टीम से सभी कार्यकर्ता
1: यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो हाथों में तस्वीर लेकर महिला सुबह 8 बजे से आई हुई हैं। और कब से आप आई हैं?
3: मैं सुबह 8:30 बजे आ गई थी क्योंकि हम लोगों के हमारी राजधानी में पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हो रहा है तो हम लोग आते उत्साहित हैं।
1: देखिए मेरे पीछे जो पारंपरिक एक नृत्य है वो किया जा रहा है, यानी कि स्वागत है। सीधे एयरपोर्ट से ये तस्वीरें हैं जहाँ पर नितिन नवीन लैंड हो चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उसके बाद स्वागत के बाद अब कुछ ही देर में जैसे ही निकलते हैं लोगों का हुजूम बाहर लगा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था तो मजबूत है, लेकिन अगर आप एक देखेंगे पूरे रोड पे ये एरिया जो एयरपोर्ट का है पूरा लास्ट तक सजा हुआ है एक तरीके से। हाथों में लोगों के नितिन नवीन के पोस्टर हैं, बलून्स हैं, फ्लैग हैं, यहाँ तक हाथों नितिन नवीन को ही देखने के लिए, मिलने के लिए। अब देखिए आप तस्वीर, यहाँ पर एक एक गाड़ी जो है निकलना शुरू कर दी है। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि यहाँ से अब ये जो अंदर विधायक मौजूद थे जो उनका स्वागत के लिए गए थे वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से निकलने के लिए।
0: चलिए, मतलब पूरी तैयारी है, यहीं से रोड शो होते हुए जाएंगे अभी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, मूसलाधार बारिश की कर लेते हैं। हालात काफी खराब है। वसई विरार क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। भारी बारिश के कारण शहर में जलभराव है, नालों में उफान है, पाइपलाइन फटने की घटनाओं ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। 24 घंटे में बिजली आपूर्ति भी ठप है, जिसके चलते 100 से ज्यादा परिवार प्रभावित है। अब देखिए हालात, ये देखिए, दूर दूर तक आपको कहीं रोड दिखाई नहीं देगी, सड़क दिखाई नहीं देगी, हर जगह पानी ही पानी है। बारिश लगातार हो रही है, कहीं तो पाइपलाइन फट गई है, कहीं पर तारों का जाल है तो कहीं पर गड्ढे हैं। यही हाल इस वक्त इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं।
4: वसई विरार में लगातार 4 दिन से जोरदार बारिश हो रही है, कई निचले इलाकों में पानी भर चुका है। फिलहाल इस वक्त मैं खड़ा हूँ वसई ईस्ट के मिठागर की बस्ती है। यहाँ हम देखेंगे तो ये जो रोड है जहाँ भरा है इसके नीचे रास्ता है, और ये रास्ते से अंदर हम 1 से 1.5 किलोमीटर जाए तो ये नमक की खेती करने वालों की बस्ती है। कुल 120 फैमिलीज वहाँ रहती है, 300 से 400 लोग है। हर साल इसी तरह ये रोड जो है पानी के नीचे चला जाता है। ये इन्होंने जानकारी दी जो है कि इनके घर में आसपास कुल कमर के ऊपर तक का पानी भर चुका है, बिजली भी कल से चली गई है और ये बस्ती के आसपास भी ये जो प्लेन इलाका है वहां भी ये भी पूरी तरह से भर चुका है। प्रशासन की ओर से इन्हें कोई अभी तक मदद पहुंची नहीं है। फिलहाल इन्हें खाने पीने की चीजों की सख्त जरूरत है क्योंकि लाइट कल से है नहीं और यही बारिश अगर लगातार चालू रही तो इनके हाल बेहाल हो सकते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए और कुछ लोग हैं, हम इससे जानना चाहेंगे। सर जी क्या बताना चाहेंगे, कल से आपके लोगों को क्या हालत है वहाँ पे?
5: बहुत हालत खराब है कल से लोगों से, क्योंकि लाइट भी नहीं है, कल से लाइट भी नहीं है और पानी भी जैसे बढ़ते ही जा रहा है और ऊपर से बारिश भी और ज्यादा ही होते जा रहा है। जैसे कि अभी एक दो घंटा और गिरेगा तो घर में भी घुस सकता है पानी।
4: लाइट की क्या समस्या है उधर?
5: लाइट तो कल से ही नहीं है, कल से दोपहर से गई है, अभी तक आई ही नहीं है।
4: अभी अंदर कितना पानी है, कितने फैमिलीज अंदर रहती है?
5: फैमिली रहती है 450 फैमिली रहती है और कंबर के ऊपर पानी है।
4: कि कुछ सुबह से कुछ प्रशासन की हेल्प हुई है?
5: कुछ भी नहीं, किसी ने हेल्प करने के लिए फोन भी नहीं किया, कुछ हेल्प आया ही नहीं।
4: लोगों का कहना है कि प्रशासन का कोई कर्मचारी हो अधिकारी हो यहाँ मदद के लिए पहुंचा नहीं है, पर आने वाले टाइम अगर 2 से 4 घंटा ऐसी लगातार बारिश अगर होती है तो ये लोगों के हाल बेहाल हो सकते हैं, इनके घरों में पानी जा सकता है। इनको हर साल की तरह इस साल भी ये मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन के गुजारिश है कि हर साल का ये रोना है, इस पर कुछ इलाज करें। प्रवीण नलावड़े, आज तक वसई।
0: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और उससे सटे थाने और नवी मुंबई में मूसलाधार बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन तो प्रभावित है। मौसम विभाग ने ठाणे जिले में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे में जिले में 77.18 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि बीते 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव, पेड़ गिरने की घटनाएं तेजी से बढ़ी और गड्ढे तो शान है यहाँ की, गड्ढों की वजह से तो और लोगों की परेशानी बढ़ रही है। ठाणे जिले में पिछले 4 दिनों में कई पेड़ पूरी तरह धराशायी हो गए। राहत की बात यह रही कि इन घटनाओं में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
7: एक्जे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड।
8: स्पोर्ट्स फैंस, ट्यून इन प्रीमियम इज द अल्टीमेट प्लेबुक। From live play-by-play of the biggest leagues all season long.
9: Lee looks for someone, finds the right someone. Curry knocks it down. Tatum lines up the three and nails it.
8: To live sports talk radio to keep you in the game in between games.
10: Because people who all watch games, they hear the voice.
8: The sports action you crave comes alive with TuneIn Premium. Live games, fewer ads, endless action. Upgrade to premium to get in the game.
11: Now in India.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
8: इन एसोसिएशन विद
9: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
8: विमल बोलो जुबा केसरी। हिंट बड़े आराम से।
10: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
11: हमने तब भी सवाल किया था।
12: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
11: हम आज भी सवाल करते हैं।
12: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
11: ऑपरेशन अग्नि,
12: आज तक के ही स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
11: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड।
14: पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस दौरान राजस्थान के CM मदन लाल भी मौजूद रहे। इसके बाद पीएम मोदी राजस्थान के बलोत्रा जिले में देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। करीब 79,000 करोड़ की इस परियोजना से पेट्रोकेमिकल उत्पादन, औद्योगिक विकास, बड़े पैमाने पर रोजगार को नई गति मिलने की उम्मीद है। ऐतिहासिक मौके को लेकर पूरे राजस्थान में तैयारियां की गई। भीषण गर्मी को देखते हुए कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रदेश भर में LED स्क्रीन के जरिए करीब 57 लाख लोगों तक पहुंचाया जाएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहे आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड, नाउ इन इंडिया।
15: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
16: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमा कुरैशी।
4: ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
5: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अकल अकल नहीं है। इस पे जो बहुत फेमस सीन है वो जो
6: परमिशन लेनी चाहिए ना,
5: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई।
7: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है, लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी,
5: आई फील अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो रुक जाइए।
8: मुंबई में बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। बारिश की वजह से होने वाले हादसों की संख्या महज 3 दिन में 5 तक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा दहशत मुंबई के मैनहोल में गिरने वाले 55 वर्षीय असलम शेख की मौत से फैली है। हादसा अंधेरी के साकिना का इलाके में खैरानी रोड पर हुआ। आप खुद देखिए किस तरह असलम शेख मैनहोल में गिरे, इसके बाद घंटों की जद्दोजहद भी उनकी जान नहीं बचा पाई।
9: कमाने वाला वो एक अकेला इंसान था, उसके लिए मुआवजा चाहिए, प्लस दोबारा ऐसा कुछ ना हो ये कॉन्ट्रैक्टर को सिखाओ, जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, वैसे कॉन्ट्रैक्टर को भी सिखाओ अगर तुमको काम करना है तो किस तरीके से काम करना है।
8: दूसरा हादसा ठाणे के मुंब्रा में हुआ। बारिश के दौरान करंट लगने से 17 साल की आलिया की मौत हो गई। आलिया किसी काम से बिल्डिंग के बाहर निकली थी, अचानक वो बारिश के पानी में उतरे करंट की चपेट में आ गई। डोंबिवली में बच्चों के लिए नाश्ता लेने निकली माँ की भी करंट लगने से दर्दनाक मौत हुई। हनुमान नगर में खुले बिजली के तार ने 42 साल की शशि चक्र की जान ले ली। 30 जून को चेंबूर इलाके में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से 11 साल के विहान की मौत हो गई थी। अब ठाणे के मीरा भाईंदर में एक चलती स्कूटी पर अचानक नारियल का पेड़ गिर गया। बताया जा रहा है कि यह नारियल का पेड़ खोखला हो गया था। भारी बारिश की वजह से मुंबई के निचले इलाके डूबे हुए हैं। ये हर साल की कहानी है, लेकिन इस बार एक के बाद एक हो रही मौतों ने लोगों को दहला दिया है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

राम मंदिर धन चोरी मामले में बड़ा खुलासा। चोरी के बाद चिन्नू समेत सभी आरोपी करते थे सीक्रेट मीटिंग, बांटते थे लूट, सीसीटीवी फुटेज करते थे डिलीट। अविनाश शुक्ला ने भाई के नाम पर खरीदी थी कार। बद्रीनाथ धाम तक पहुंचा धान चोरी का मामला। सोशल मीडिया पर आरोप के बाद मंदिर प्रशासन ने जांच के दिए आदेश। जांच कमेटी करेगी सीसीटीवी की पड़ताल।

एयरपोर्ट टर्मिनल का तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। राजस्थान के बालोतरा को मिलेगी देश की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार यूपी के दौरे पर नितिन नवीन, दो दिनों तक मिशन 2027 पर मंथन। सीएम योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम समेत विधायकों के साथ बैठक। और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की अंतिम यात्रा में लाखों का हुजूम, आंसुओं में डूबा पूरा ईरान। श्रद्धांजलि सभा में रो पड़े राष्ट्रपति पजश्कियान, भारतीय दल ने भी दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 11:30 बजे हैं और इस बुलेटिन में बात चार बड़ी खबरों की करेंगे। पहली खबर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई है, जिसकी जांच और आरोपियों से पूछताछ के बीच लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। तो उधर राम मंदिर चढ़ावे पर जारी सियासत के बीच आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन चुनावी रणनीति पर मंथन के लिए उत्तर प्रदेश पहुंच गए हैं। और इसके साथ पश्चिम बंगाल की सियासत की भी बात करेंगे, जहां टीएमसी के दो गुट लड़ रहे हैं पार्टी दफ्तर पर कब्जे के लिए। बताएंगे हम आपको पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले आखिर क्यों कांग्रेस में घमासान छिड़ गया है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई। अविनाश शुक्ला ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया और पूछताछ के दौरान आरोपित अविनाश शुक्ला ने कबूल किया कि उसने चोरी की है। जांच टीम ने चोरी की 45 सीसीटीवी फुटेज अविनाश शुक्ला को दिखाए, जिसके बाद अविनाश शुक्ला ने पूरी कहानी बयां कर दी। अविनाश ने पुलिस को बताया कि चोरी के माल में सबका हिस्सा बराबर होता था, कभी कभी ऐसा होता था किसी को ज्यादा मिल जाता था। चोरी के पैसे से कार, घर, ये सब कबूल किया। चोरी के पूरे खेल में टिन्नू यादव का दबदबा रहता था, ये भी बोला। जेल जाने का डर इसलिए नहीं था क्योंकि टिन्नू कहता था कि कुछ नहीं होगा, चोरी करो मैं संभाल लूंगा। ये सब अविनाश शुक्ला ने तोते की तरह रटा जब जांच टीम ने सबूत दिखा दिया। और अच्छे से हम आपको बता देते हैं, देखिए आप समझिए अविनाश शुक्ला का कबूलनामा क्या है। सबका हिस्सा बराबर था, ये अविनाश शुक्ला कह रहे हैं, सबका हिस्सा यहां पर बराबर था। और अविनाश की तरफ से यह भी बताया गया कि मिल बांटकर लूट के हिस्से करते थे, कभी किसी को ज्यादा मिलता था कभी किसी को कम मिलता था, क्योंकि कैमरे से खुद को छुपाते भी थे ये। चोरी के पैसे से मैंने कार खरीदी, चोरी के पैसे से मैंने घर बनवाया, यह भी अविनाश शुक्ला ने कबूल किया है। टिन्नू यादव का दबदबा था, वॉकी टॉकी चलाता था, हर जगह ऑर्डर झाड़ता था और इसीलिए पकड़े जाने का डर नहीं था, जेल जाने का कोई डर नहीं था। टिन्नू यादव कहता था मैं हूं ना, कोई दिक्कत नहीं, करो चोरी, तो कोई डर नहीं, हौसले बढ़ते गए इनके। टिन्नू कहता था कि कुछ नहीं होगा, टिन्नू का काम निगरानी का था, जब निगरानी करने वाला ही चोरी करे तो फिर कौन रोकेगा। अविनाश ने कहा कि सुभाष और टिन्नू पर भरोसा था, कई बार सीसीटीवी फुटेज भी मिटाए हैं, ये अविनाश शुक्ला ने बताया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते, देखिए

0: रामलला के घर हुई डकैती की जांच पुलिस और एसआईटी कर रही है। एसआईटी उन बड़े किरदारों को बेनकाब करने में लगी है जो बंदी प्रबंधन में थे, तो वहीं अयोध्या पुलिस उन आरोपियों से सवाल जवाब कर रही है जो सीधे सीधे चढ़ावे का पैसा दबा लिए। श्रद्धालुओं के चढ़ावे पर हाथ साफ करने वाले आरोपियों के काले कारनामे परत दर परत खुलते जा रहे हैं। पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला से कई ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुनकर राम भक्तों का खून खौल जाए। अयोध्या पुलिस ने पूछताछ के दौरान अविनाश शुक्ला को पिछले 45 दिनों की सीसीटीवी फुटेज दिखाई। जैसे ही उसने खुद को चढ़ावे से पैसे निकालते देखा, वो टूट गया और लगातार चोरी करने की बात स्वीकार कर ली। पूछताछ में अविनाश ने बताया कि चोरी की रकम से एक ब्रेजा कार खरीदी गई थी, जी कार उसने अपने भाई के नाम खरीदी। अविनाश का भाई इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ कि कार चढ़ावा चोरी के पैसे से खरीदी गई है। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आते ही अविनाश ने कार को तुरंत प्रतापगढ़ स्थित घर भेज दिया गया। इस मामले में अविनाश के भाई अभिषेक शुक्ला से भी पूछताछ की गई है।
1: ये कार ये पीछे खड़ी है, ये विटारा ब्रीजा कार है, ये बरामदगी हुई है। ये कार है जो अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक के नाम पर दर्ज है और ये गाड़ी आपको दिखाते हैं, ये विटारा फोर्थ इसका ओनर है, यानी कि पुरानी गाड़ी है, सेकंड हैंड खरीदी गई। और ये गाड़ी का आप पीछे से नंबर प्लेट नहीं दिख रहे, लेकिन आगे से हम आपको नंबर प्लेट भी दिखाते हैं। ये नंबर प्लेट है इसकी, ये कैमरा पर्सन दीप दिखा रहे हैं, UP42AP6054। ये गाड़ी है जो बरामद हुई है उस अविनाश शुक्ला से, जिसके पास से पुलिस ने सभी 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सबसे ज्यादा कैश बरामद किया था, 20,39,000 से अधिक का कैश बरामद किया था। और अब जब 13 घंटे की PCR की गई, तो इस PCR में यानी कि पुलिस कस्टडी रिमांड में पूछताछ के बाद अविनाश शुक्ला से यह गाड़ी भी बरामद कर ली गई है।
0: जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। चढ़ावा चोरी गैंग के सभी आरोपी एक दूसरे की गतिविधियों से पूरी तरह वाकिफ थे। कौन कब और कैसे चोरी कर रहा है, इसकी जानकारी सभी को रहती थी। चढ़ावा चोरी के बाद सभी आरोपी नियमित रूप से बैठक करते थे। उस बैठक में चोरी का माल बांटने और आगे का प्लान डिस्कस होता था।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला से 13 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड में जहां एक तरफ पूछताछ की गई, उसको योग केंद्र से लेकर 14 कोसी परिक्रमा के उस मार्ग तक लेकर जाया गया जहां पर ये सारे चढ़ावा चोरी के आरोपी मिलकर पैसों की बंदरबांट करते थे।
0: इन बैठकों में अनुकल्प मिश्रा, लोकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा समेत 6 आरोपी शामिल होते थे। जांच में ये भी सामने आया है कि बाद में टिन्नू यादव का भतीजा भी इन बैठकों में शामिल होने लगा था। मई के आखिरी सप्ताह में मामला खुलने से ठीक पहले भी आरोपियों की एक बैठक हुई थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है। पूछताछ में सामने आए ये खुलासे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि चोरी कोई अकेले व्यक्ति की करतूत नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से अंजाम दी जा रही थी। अब पुलिस चोरी की रकम, उससे खरीदी गई संपत्तियों और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। कल करीब 13 घंटे की पूछताछ के बाद अविनाश शुक्ला को अयोध्या जेल भेज दिया गया है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
2: और इसी दौरान एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता

0: उठाए गए हैं, तो उम्मीद है और ये जो तमाम चीजें एसओपी बनाई गई इनका कड़ाई से पालन होगा तो जरूर कुछ सुधार होने की उम्मीद है। लेकिन जिस तरीके की लापरवाही शुरू से बढ़ती गई कि कोई भी व्यक्ति बिना वेरिफिकेशन के नौकरी कर पा रहा था और उस व्यक्ति के आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी, भाई भतीजावाद के कोई किसी का परिचय तो नौकरी मिल जा रही थी, वो सीधे गणना कक्ष में नौकरी कर रहा था, तो तमाम चीजों को अब रोकने की कोशिश कवायद शुरू हो चुकी है और उसी कड़ी में इसकी ये शुरुआत हुई है कि अब जो भी लोग जाएंगे वो ड्रेस कोड होगा और ड्रेस कोड के साथ साथ उनकी चेकिंग फ्रिस्किंग होगी, वो पॉकेटलेस ड्रेस होगी और उसके साथ ही उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाने पर पाबंदी होगी और जब वो वापस जाएंगे
1: तो वही बात हो गई कि जब बहुत बड़ी चोरी हो गई गांव में तब किसी ने 10-10 किलो के ताले लगा दिए हैं कि अब चोरी ना हो। आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन अयोध्या संत मंडल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधे लिए चलते हैं।
2: अयोध्या ये साजिश है, ये षड्यंत्र है, राम की आस्था को
3: विश्वास है,
2: षड्यंत्र जो भी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत ये सब हो रहा है।
3: अगर थोड़ा भी कहीं चुप गए तो उनका फिर
4: क्या लगता है कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं साजिश में?
2: शामिल है अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, विदेश का पैसा शामिल है, वो सब लोग करा रहे हैं।
4: विदेश का पैसा,
2: विदेश का पैसा श्रद्धा से आया जो लोगों के पास निकला है, मैंने सुना कि डॉलर किसी के पास पकड़ा गया है, वो श्रद्धा से आया, उसको चंपा।
1: तो ये विवाद काफी बढ़ता जा रहा है। अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आरएसएस का बयान आया, दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच हो रही है, कार्रवाई भी होगी, राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
5: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करें। जय श्री राम।
1: तो अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच और सियासत के बीच अब बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा और दान से जुड़ी कथित गड़बड़ियों के आरोपों ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर मामला सामने आने के बाद आरोपों का दौर शुरू हो गया और इस बीच श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी ने आंतरिक जांच के आदेश दिए। समिति ने कहा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषी अगर कोई पाया गया तो बहुत सख्त कार्रवाई होगी।
6: बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है और चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी गण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस, सो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: एक बड़ी खबर आपको कोलकाता से बताते हैं, टीएमसी के दोनों गुट आमने सामने हैं। क्यों? क्योंकि दफ्तर कब्जाने की तनातनी है। कल रात टीएमसी बागियों के गुट ने कोलकाता के तृणमूल भवन पर कब्जा करने की कोशिश की, ममता बनर्जी के पोस्टर हटाकर अपने पोस्टर लगा दिए, जिसके बाद ममता गुट के विधायक सांसद नेता भी पहुंच गए और काफी देर तक हंगामा होता रहा। पुलिस और पैरामिलिट्री को भी हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद टीएमसी दफ्तर पर तालाबंदी कर दी गई है।
7: एक तरफ जैसे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस टूटने की खबर आई, उसी के साथ साथ आज बागी विधायक जितने भी तृणमूल कांग्रेस के थे वो हाजिर हुए तृणमूल कांग्रेस भवन पर। और यही जो तृणमूल कांग्रेस भवन है वो मेट्रोपॉलिटन पे स्थित है, जहां पे तृणमूल कांग्रेस की पार्टी ऑफिस है और वही पार्टी ऑफिस में बागी विधायकों ने यहाँ पे ताला लगा दी। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तृणमूल कांग्रेस भवन की जो मेन गेट है उस पे दो दो ताले झुलाए गए और उसके साथ साथ इस वक्त ये तृणमूल कांग्रेस भवन में एक नई जो है कि बैनर या होर्डिंग लगाई गई है, जहाँ पे लिखा हुआ है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और चेयरमैन की नाम है अरूप राय। हम जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की जो चेयरमैन

0: फाउंडर ममता बनर्जी हर जगह पे छाई हुई रहती थी और यहाँ पे यही पोस्टर पे ममता बनर्जी की कोई भी छवि नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यही उठता है कि इस वक्त तृणमूल कांग्रेस किसकी है, कहीं तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की है या तृणमूल कांग्रेस बागी विधायकों की है, क्योंकि प्रश्न सवाल जो है वो बहुत ही पूरी तरीके से उठ रही है। क्योंकि इस वक्त जो है अब तृणमूल कांग्रेस भवन की जो है कि दखलदारी यानी कि इसकी सवाल उठ रही है कि ये दखल हो जाएगी तृणमूल कांग्रेस बागी विधायकों की ये भवन हो जाएगी या ये भवन ममता बनर्जी की रहेगी। कैमरा पर्सन शुभजीत गायन के साथ अनिर्बान आज तक कोलकाता।
1: टीएमसी के दो गुट दोनों दफ्तर पर दावा ठोक रहे हैं लेकिन अभी के लिए दफ्तर पर तालाबंदी कर दी गई है, लेकिन दोनों गुटों की तरफ से क्या कहा जा रहा है वो सुनाते हैं आपको।
2: देखिए हम लोग तो तृणमूल कांग्रेस है और अगर कोई तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस है तो वहां पे तो हम लोग जा ही सकते हैं, इस पे तो कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। तो हम लोग तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस में गए थे और जाके वहां पे हम लोग बैठे, तो इस पे कोई क्या आरोप लगा रहा है उस पे ध्यान हम लोग नहीं देंगे। हम लोगों को विधानसभा में प्रिंसिपल ऑपोजिशन का स्वीकृति मिल चुका है, हम ही लोग विधानसभा में प्रिंसिपल ऑपोजिशन है, हम लोग तृणमूल कांग्रेस है और तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस के साथ हम लोग का इमोशन जुड़ा हुआ है।
3: जो एक्सपेल्ड मेंबर्स है उसका कोई राइट नहीं है पार्टी ऑफिस में घुसने का, तो हम लोग पुलिस के रिक्वेस्ट किया था, मदन मित्र, वैश्यनाथ चटर्जी, मृत्युंजय पाल और पूरा हमारा जो तृणमूल कांग्रेस लीडर्स वर्कर्स जो है, हम लोग कोई इरेस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं किया। जो ताला वो लोग दिया है वो हम लोग तोड़ सकता था लेकिन एक भी इल्लीगल इरेस्पॉन्सिबल काम उस लोग किया है, हम लोग नहीं किया है। हम लोग पुलिस से रिक्वेस्ट किए थे लेकिन पुलिस उनका फॉलो अप टीम जैसा बिहेव कर रहे थे।
1: टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी और सौगत राय भी रात में ही पार्टी ऑफिस पहुंच गए थे और इस दौरान कल्याण बनर्जी ने कहा कि खेल शुभेंदु ने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे।
4: वो क्लेम तो झूठा है, वो तो हम लोग साबित कर देगा। उनका क्लेम का माफी उन लोगों का ऑफिस तो है राजधानी में, तो उधर में क्या है? अरे कुछ गुंडा मिलकर एक तो पार्टी बनाया तो हमको मान लेना होगा। चोर गुंडा सब लोग मानते करते हैं और वही चोर गुंडा सब शुभेंदु अधिकारी का वो नजदीक का आदमी है तो हमको मान लेना होगा। क्या समझते हैं ये कोलकाता शुभेंदु अधिकारी ये लोग सब फाइनल है और कोई कुछ नहीं है, देश में लॉ बोलते कुछ नहीं है। अरे आप लोग शुभेंदु मुख्यमंत्री का नजदीक आदमी हो नहीं सकता है कि लॉ से आप लोग बहुत दूर है, बहुत दूर है। खेल आपने शुरू किया है, खत्म हम लोग करेंगे, देख लेना।
1: पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने और चुनावी तैयारियों से पहले पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी कला सबके सामने आ गई। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह राजावड़िंग को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जिसके बाद पूर्व सीएम चन्नी की अगुवाई में कई नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। अब एक दिन पहले पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं ने चरणजीत सिंह चन्नी की आवास पर बैठक की। बैठक में मौजूद नेताओं ने कहा कि पंजाब के कार्यकर्ता और जनता की भावनाओं को पार्टी हाईकमान तक पहुंचाने के लिए एक समिति बनाई गई है। इस समिति में चन्नी भी शामिल है और समिति जल्दी ही दिल्ली जाकर राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात करेगी और अपना पक्ष रखेगी।
5: हाईकमांड ना कोई लड़ाई असि भी हाईकमांड नूं मानने आ पर कुछ गल्लां ने जिहड़ियां असि हाईकमांड अगे मुड़ के रखणियां चाहुंदे आ। चन्नी जी नूं अधिकार दे दिंदे तुसीं हाईकमांड कोल टाइम लेके उन्हां रिक्वेस्ट करो कि थोड़ा जिहा होर रीथिंक करके ਉਹ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਬਈ।
1: इसी बीच पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने ताजा बयान दिया, कांग्रेस में मची खींचतान अब और गर्मा गई।
6: ये कांग्रेस का एक कल्चर है, इसमें लोटस का कोई रोल नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब चट्टान की तरह खड़ी है, वो लोगों के दिल में बसी है। 22 सूबों में हमारी सरकार चलती है, सब जगह तरक्की हो रही है। और आप पूछ रहे हैं कि लोग हमारे पास आएंगे, हम तो सबका वेलकम करते हैं।
1: एक छोटा सा ब्रेक, जल लौटेंगे, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
8: सुप्रीम लीडर को 125 दिनों के बाद सुपुर्द खाक किया जा रहा है।

राम मंदिर के दान में हुए गबन की जांच कर रही एसआईटी एक बार फिर अयोध्या पहुंची है। इस बार जांच का दायरा काफी बड़ा है। दान में हेरफेर की आंच अब बड़े अधिकारियों तक पहुंच गई है। सेकेंड राउंड के पहले दिन एसआईटी की टीम ने बंद कमरे में 8 घंटे की मैराथन पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक गोपाल राव, चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा से भी पूछताछ की गई है। हालांकि एसआईटी और ट्रस्ट की ओर से अभी तक पूछताछ की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। एसआईटी टीम का नेतृत्व आईपीएस अधिकारी किरण एस कर रहे हैं। एसआईटी मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था, दान संग्रह की प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की भी बारीकी से जांच कर रही है। इस बीच चंपत राय का बयान सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने अपने करीबी सहयोगियों से कहा है कि अयोध्या में उनकी सेवा पूरी हो चुकी है और चंदे में हेराफेरी के विवाद के बाद वे दाग के साथ काम जारी नहीं रखेंगे। इस बीच मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आगे की पूछताछ के लिए अविनाश शुक्ला को पुलिस ने रिमांड पर लिया है, क्योंकि जांच के दौरान सबसे ज्यादा कैश 20,39,000 अविनाश शुक्ला के घर से बरामद किया गया था। कैश के साथ पुलिस को अमेरिकी डॉलर और सोने चांदी के जेवरात भी मिले हैं। समझ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.
2: अब बात अमरनाथ यात्रा की करेंगे. बाबा बर्फानी की यात्रा का आज दूसरा दिन. दुर्गम रास्तों से होते हुए महादेव के भक्त पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे हैं. हमारे सहयोगी अशरफ वानी भी श्रद्धालुओं के साथ चल रहे हैं. बालटाल से उनकी रिपोर्ट.
3: हम इससे बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि हमें पहले जत्थे में आने का मौका मिला.
4: अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन है और बराबर अमरनाथ श्रद्धालुओं में उत्साह बना हुआ है. हजारों की तादाद में कल भी पहले दिन अमरनाथ गुफा की ओर श्रद्धालु जो है चल पड़े थे और दर्शन करके उनमें से अधिकतर वापस लौट आए. और अब आज दूसरे दिन भी हजारों की तादाद में बालटल के रास्ते से भी और पहलगाम के रास्ते से भी अमरनाथ गुफा की ओर दूसरा जत्था जो है श्रद्धालुओं का वो आगे बढ़ चुका है. सुबह 4 बजे से ही अमरनाथ यात्रा के लिए जो है दोनों बेस कैंप से बालटाल से भी और पहलगाम से भी श्रद्धालुओं को आगे चलने की इजाज़त मिली है. अब की बार काफ़ी नियम काफ़ी व्यवस्था के साथ जो है श्रद्धालुओं को एक सीमित तरीके के तहत आगे अमरनाथ गुफा में दर्शन की ओर के लिए भेजा जा रहा है. यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो इस यात्रा का हिस्सा आज बन रहे हैं. दूसरे दिन उनसे बात करते हैं. आप अपना नाम बताइए.
5: अनिल कुमार.
4: अनिल जी कहाँ से हैं आप?
5: उत्तराखंड से, देहरादून.
4: तो आज दूसरे दिन दूसरे दर्शन के लिए आप जा रहे हैं, तो अभी फिलहाल मौसम वगैरह इंतजाम कैसे लग रहे हैं?
5: मौसम सही है पर इंतजाम ठीक है, पर नीचे बहुत ज्यादा भीड़ है. श्रद्धालु बहुत आए हुए हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है नीचे.
4: फिलहाल मौसम भी मेहरबान है. कल बारिशें हुई थी, आज बहुत अच्छा मौसम है. तो उस बीच उम्मीद जताई जा रही है कि जिस अंदाज से कल करीब 20,000 श्रद्धालु अमरनाथ गुफा की ओर गए थे, आज भी कुछ संख्या उसी नवियत की होगी जिस अंदाज से यहां पर भीड़ नजर आ रही है. तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, बालटाल आज तक.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.
1: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
1: After multiple assassination attempts, they can't even get...
2: They're reliable.
3: Always when I need them.
0: To live sports action.
4: One hand jam by LeBron on the break.
5: That's another three, Steph Curry.
0: And your favorite music. TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
6: मोदी जी के साथ में संपर्क में है फोन पर
7: इस मामले में
6: इसी मामले में और यहां जब आ गए तो मोदी जी ने कहा रात को वो डेढ़ दो बज गए होंगे रात के तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा कुछ तो है नहीं लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है गोपाल राव भी है ये सब जितने हैं
7: ये
6: हाँ अनिल मिश्रा हैं तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए जेल नहीं जा पा रहे हैं अब हो सकता आगे जाएं अभी
8: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

राम मंदिर दान चोरी मामले में बड़ा खुलासा। चोरी के बाद चिन्नू यादव समेत सभी आरोपी करते थे सीक्रेट मीटिंग, बांटते थे लूट, सीसीटीवी फुटेज करते थे डिलीट। अविनाश शुक्ला ने भाई के नाम पर खरीदी थी कार। बद्रीनाथ धाम तक पहुंचा दान चोरी का मामला। सोशल मीडिया पर आरोप के बाद मंदिर प्रशासन ने जांच के दिए आदेश। जांच कमेटी करेगी सीसीटीवी की पड़ताल। जोधपुर को मिला नया एयरपोर्ट टर्मिनल का तोहफा। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। राजस्थान के बालोतरा को मिलेगी देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार यूपी के दौरे पर नितिन नवीन। दो दिनों तक मिशन 2027 पर मंथन। सीएम योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम समेत विधायकों के साथ बैठक। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा में लाखों का हुजूम। आंसुओं में डूबा पूरा ईरान। श्रद्धांजलि सभा में रो पड़े राष्ट्रपति पजेश्कियान। भारतीय दल ने भी दी श्रद्धांजलि।

0: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और एक बार सबसे पहले यहां मौजूद जनता को दिखा दीजिए, क्योंकि आज ये तमाम छात्र आए हैं। कुछ संस्कृत विश्वविद्यालय से आए हैं, कुछ छात्र इधर से हैं। दिखा दीजिए उनको जो आज इस चर्चा में शामिल होंगे और वो प्रश्न भी करेंगे। तो तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले विषय आपको बता दें, मेहमानों से मिला दें, क्या उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाला चुनाव वक्त से पहले हो सकता है? ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले एक डेढ़ महीने में यूपी के अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ विकास योजनाओं की सौगात की है, वो रैलियां कर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सितंबर में ही चुनाव के लिए तैयार होने का दम भर रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बहाने बीजेपी को घेरने का मौका पा चुके अखिलेश यादव लगातार अपने पीडीए का दायरा बढ़ाने की कोशिश में भी हैं। उधर इंडिया अलायंस ने चुनाव धांधली के अपने आरोपों पर नया मोर्चा खोलते हुए सीजेआई को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से 28 जून को लिखी गई ये चिट्ठी आज सार्वजनिक हुई है। इस पर 24 दलों और एक निर्दलीय सांसद के दस्तखत हैं। चिट्ठी में एसआईआर पर सवाल के साथ साथ 2027 में होने वाले चुनाव में मतदान सूची और ईवीएम पर भी संदेह है। विपक्ष की इस रणनीति के बीच बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंचकर बड़ी बैठकें करने वाले हैं। सवाल है कि क्या यूपी में चढ़ावा चोरी और चुनाव चोरी समेत विपक्ष के मुद्दों की काट योगी के पास है? क्या यूपी में चुनाव वाकई जल्दी होने की संभावना है या सिर्फ ये अटकलें हैं? 2027 से पहले पूर्व में आर पार अखिलेश तैयार, यही आज हल्ला बोल का विषय। सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ इस चर्चा में आए हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए अतुल लौंडे पाटिल जी हैं, तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। हमारे साथ प्रोफेसर विजय राठी जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं, रोहित सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, और शादाब चौहान हमारे साथ ओवैसी साहब की पार्टी की तरफ से आए हुए हैं। ओवैसी साहब ने एक अलग ही मजहबी रंग इस पूरे चढ़ावा चोरी के मुद्दे को दिया। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। चुनावों में कथित धांधली पर इंडिया अलायंस ने अपना त्रुप का पत्ता चल दिया है। 8 जून को इंडिया अलायंस की मीटिंग में हुए फैसले के मुताबिक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से मुख्य न्यायाधीश को एक लेटर लिखा गया है जिसमें 24 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सांसद के दस्तखत है। 28 जून की इस चिट्ठी में मुख्य चुनाव आयुक्त पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए पक्षपात का आरोप है। चिट्ठी में लिखा गया है कि विधानसभा चुनावों के एन पहले एसआईआर करना गलत था और इसे गलत तरीके से लागू करना एक बहुत बड़ी विफलता थी, जबकि इलेक्टोरल रोल्स 2002 में डिजिटाइज होने के बाद से लगातार रिवाइज और अपडेट किए जाते रहे हैं।
1: एसआईआर को लेकर जितनी अनियमितताएं देखने को मिली हैं और खास तौर से एसआईआर के बाद जिस तरह से लोगों के और जिस तादाद में लोगों के नाम कटे हैं, जिस तादाद में लोगों ने इस पर एक नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, तो उसके बाद तो विपक्ष एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ेगा। और मुझे लगता है कि खड़गे जी ने जो पत्र लिखा और उसके साथ साथ और भी जितने क्षेत्रीय दल हैं उनके भी सर्वश्रेष्ठ नेताओं को या प्रतिनिधियों को पत्र लिखने चाहिए, दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि एसआईआर को केवल वोट चोरी का माध्यम बना दिया जाए ये तो विपक्ष बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा।
0: चिट्ठी में 2027 में होने जा रहे चुनावों के मद्देनजर न सिर्फ इलेक्टोरल रोल्स बल्कि ईवीएम की भूमिका पर भी सवाल है। चिट्ठी में कहा गया है कि अगर संस्थाएं नाकाम होंगी तो लोकतंत्र अराजकता में बदल जाएगा, इसलिए इस पर अदालतों को विचार करना होगा।
2: भारतीय जनता पार्टी उसकी कठोर शब्दों में निंदा करती है। वैधानिक दृष्टि से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को भिन्न भिन्न न्यायालयों के द्वारा पूर्णतः युक्ति सम्मत और विधि सम्मत ठहराया जा चुका है। संवैधानिक दृष्टि से एक बार भी कोई तथ्यात्मक विषय न्यायालय के समक्ष ये रखने में असफल रहे तो मैं कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों से पूछना चाहता हूं, क्या आपने जिस भाषा शैली में सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखा है ये वही अहंकारी भाषा शैली नजर आती है जो आपातकाल के समय में दिखाई पड़ती थी?
0: बिहार और बंगाल में बीजेपी विरोधियों की हार के बाद आने वाले यूपी चुनाव के मद्देनजर ये चिट्ठी अहम सियासी मुद्दा बन सकती है। हालांकि जहां चुनाव की निष्पक्षता पर इंडिया अलायंस के ऐसे सवाल हैं, वहीं यूपी में अखिलेश यादव समय से पहले ही चुनाव के लिए तैयार होने का दम भर रहे हैं।
3: अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करेंगे। जो लोग चुनाव नवंबर में कराना चाहते थे, सितंबर में करा दें, हम लोग तैयार हैं।
0: अखिलेश यादव का ये बयान उन अटकलों के बाद आया है कि यूपी का चुनाव 2027 से पहले ही कराने की तैयारी बीजेपी ने की है। इन अटकलों की एक बड़ी वजह बीजेपी की सक्रियता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष के हमले के बावजूद योगी आदित्यनाथ न सिर्फ अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं, बल्कि 2017 से पहले के यूपी का हाल की तस्वीर भी खींच रहे हैं।
4: कमल का बटन दबाते हैं, बीजेपी या एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बना करके भेजते हैं, बदले में विकास मिलता है, बदले में सुरक्षा मिलती है, बदले में बेटियों की सुरक्षा होती है, व्यापारियों की सुरक्षा होती है, नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी मिलती है, अन्नदाता किसानों को खुशहाली लाने के लिए प्रयास होते हैं।
0: यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हाल में अपनी नई टीम गठित की है। यूपी बीजेपी के 19 उपाध्यक्षों में ओबीसी 8, क्षत्रिय 4, ब्राह्मण 3, वैश्य 2 और 2 दलित चेहरे हैं। उधर बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन की लखनऊ में बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ बैठक होने जा रही है। लखनऊ में संगठन महामंत्री और संघ के प्रतिनिधि के साथ नितिन नवीन की अलग से बैठक का भी कार्यक्रम है। बीजेपी कहीं से ये संकेत नहीं देना चाहती कि अगर यूपी में जल्दी चुनाव होंगे तो उसकी तैयारी नहीं है।
5: उत्तर प्रदेश में चुनाव चाहे तय समय पर हो और चाहे पूर्व में हो जाए, अखिलेश यादव को क्या फर्क पड़ना है, उन्हें तो परिणाम पता ही है कि उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में 2017 दोहराएगी, साइकिल को पंचर करके वापस सैफई भेजेगी। उत्तर प्रदेश की जनता विकास के साथ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी।
0: यूपी का चुनाव जहां विपक्ष के लिए एक चुनौती है, वहीं बीजेपी के लिए भी लिटमस टेस्ट होगा। गौरतलब है कि 2024 के चुनाव में यूपी से लगा झटका ही बीजेपी पर भारी पड़ा था। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल सुधांशु जी आप ही से है, तीन प्रश्न है, प्रश्न के तीन हिस्से समझ लीजिए। एक तो चढ़ावा चोरी का मुद्दा, वो भी राम मंदिर में, क्या आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है? अब विपक्ष इस चिट्ठी के जरिए जो कि अतुल लौंडे पाटिल साहब लेकर भी आए हैं, वोट चोरी का भी आरोप लगा रहा है, दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज। और तीसरा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप वक्त से पहले चुनाव कराना चाहते हैं, सच है क्या?
6: देखिए मैं तीनों चीजों का जवाब देता हूं। अखिलेश यादव जी ने कहा वक्त से पहले का चुनाव, तो देखिए तो चुनाव आयोग तय करता है किस वक्त पे चुनाव होगा, मगर मैं इतना बता देना चाहता हूं, वक्त हो या बेवक्त हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है और इस बात के लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि ना सपा का बीता हुआ वक्त आएगा, ना यूपी का बुरा वक्त आएगा, बल्कि अब एक नया वक्त जिस दिशा में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चल चुका है उस दिशा में आगे बढ़ेगा। जो एक पुराना गीत था ना, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा। और सोचियो बदला हुआ वक्त क्या है, इनका MY है, हमारा भी MY है, मोदी योगी। और उस वक्त में जरूरत क्या है, देखिए साहब कोई वायरस अगर गहरा आपके शरीर में आ जाए तो कोरोना में वायरस के लिए कितने डोज वैक्सीन की जरूरत थी, पहली डोज, सेकेंडरी डोज और बूस्टर डोज। तो पहली डोज 2017, सेकेंड डोज 2022 और बूस्टर डोज 2027। तो प्रदेश की जनता ने यह बिल्कुल तय कर लिया है कि वो इस दिशा में आगे आएंगे। अब दूसरा विषय जो अखिलेश जी ने कहा, जो इन लोगों ने कहा कि साहब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की बात, तो यहां मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं ये हर हिंदू को लेके दिल में पीड़ा उत्पन्न करने वाला विषय है। और लाखों राम भक्त कार सेवक, मैं एक बालक के रूप में अप्रैल 1987 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण संकल्प की रैली में गया था। 9 नवंबर 1989 को मैंने अपने हॉस्टल में शिला पूजन कराया था, जो मैंने फोटो भी 9 नवंबर 2019 को पोस्ट किया था। तो हमारे जैसे लाखों कार सेवकों के मन में जो ये कहते थे उस समय कि मन तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की, और आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। और फिर हम कहते थे शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की, और आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। मगर जिन्होंने गोलियां चलाई, आज प्रश्न कौन कर रहा है? एक मैं टेक्निकल बात करता हूं, फिर पॉलिटिकल बताता हूं। देखिए साहब, मैं विनम्रता और दृढ़ता से अपने विरोधियों से पूछता हूं, ट्रस्ट में डायरेक्ट एक्शन लेने का अधिकार सरकार के पास कहां है? क्लॉज के साथ कोट करके बताएं। इसके बावजूद सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के ऊपर तुरंत SIT गठित की। पॉइंट नंबर 2 कि तुरंत गिरफ्तारियां क्यों नहीं की गई? कोई भी गिरफ्तारी कम से कम पुख्ता सबूत ना हो तो प्राइमरी एविडेंस के आधार पर होनी चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट तक कटे नहीं, क्योंकि यह कोई पॉलिटिकल नाटक नहीं है कि 100 लोगों को गिरफ्तार कर लो, 90 लोग एक बार में छूट जाएं। पॉइंट नंबर 3 कि अमुक अमुक के ऊपर ही कार्रवाई क्यों हुई है, अमुक अमुक पे क्यों नहीं? क्योंकि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, कंप्लीट रिपोर्ट आने के बाद जो भी चीजें सामने आएंगी उनके ऊपर कार्रवाई होगी। पॉइंट नंबर 4 कि साहब ट्रस्ट की बैठक बुलाई गई है, वो अभी तुरंत क्यों नहीं, बाद में क्यों? उसका कारण यह है कि भारत के कानून के अनुसार ट्रस्ट के अधिकारी को हटाने का अधिकार ट्रस्ट के बोर्ड को ही होता है, और रिपोर्ट जब पूरी आ जाए तो एक बार में तय हो जाए कि ट्रस्ट के कौन कौन से लोग संदिग्ध हैं, तो उनके ऊपर संपूर्ण कार्रवाई एक साथ हो जाए। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, अब पॉलिटिकल बात कहता हूं, राजनीति में क्या कहा जा रहा है इससे इंपॉर्टेंट होता कौन कह रहा है। वो कह रहे हैं जो कहते थे अयोध्या थी ही नहीं, जो कहते थे राम हुए ही नहीं, जो ये कहते थे कि हजारों कमरे थे, राजा दशरथ के यहां मणिशंकर अय्यर बोले थे, ये किस जगह हुए थे बताओ? वो अर्जुन सिंह जाके एक विमोचन किए थे एक एग्जीबिशन का, जिसमें भगवान राम और माता सीता को भाई बहन बना दिया गया था। यानी जिन्होंने अयोध्या को अपमानित किया, जिन्होंने अयोध्या को कलंकित किया, जिन्होंने अयोध्या को लांछित किया, जिन्होंने सरयू को रक्त रंजित किया, वो आकर कहते हैं आज चिंतित है। ये तो वैसा ही लगता है इसे जनरल डायर कहे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के फंड में कुछ गड़बड़ हो गई तो मुझे उस बार उसके ऊपर चिंता हो रही है। मगर मैं एक बात फिर भी कहना चाहूंगा, प्रभु की लीला समझनी चाहिए। एक दौर था जो लोग कहते थे अयोध्या थी ही नहीं, वो आज खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि अयोध्या राम की थी और यह चढ़ावा भी राम का था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राम मंदिर के समय हम लोग एक नारा लगाते थे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, और आज जैसे सब राम नाम जपने में लगे हैं विपक्ष के नेता, तो हमें लगता है झूठा सच्चा सबै राम का, पक्का कच्चा सबै राम का, और लगन से बोले चाहे जलन से न ले, हर नेता हुआ भगत राम का। मुझे लगता है भगवान ने,
0: चलिए माइक उठाइए, उन्होंने लंबा बोला, मैं आपको भी उतना ही टाइम दूंगी। अब इस मुद्दे पर वो कह रहे हैं कि, और मुझे लगता है प्रीएम्प्ट कर लिया उन्होंने कि आप चंपत राय पर, अनिल मिश्रा, गोपाल राव सब पर सवाल पूछेंगे, उन्होंने कहा कि सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपका जवाब इस पर?
7: कार्रवाई सबके खिलाफ होगी ये तो सभी बोल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जिनके ऊपर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, चोरी चकारी रोकने की जिम्मेदारी, उनके अलावा। और RSS अब तक पाकिस्तान के साथ बिजी थी, अभी 2-3 घंटे के पहले उनको समय मिला पाकिस्तान से बातचीत करने के बाद, तो आज उनको थोड़ा दुख हुआ है, आज थोड़ा दर्द महसूस हुआ है। तो यूपी में अभी बर्बाद होने के लिए कुछ बचा है? एक जात को दूसरे जात के खिलाफ क्यों ब्राह्मण ठाकुरों के खिलाफ बोल रहे हैं? क्यों कानून के बजाय बुलडोजर चल रहा है? क्यों सिलेक्टिव लोगों के यहाँ चल रहे हैं? क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? बात करोगे अभी वक्त का? तो एक शेर कहा है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां, कानून तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा।
6: ये इमरजेंसी में लिखा गया था,
7: सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त कहां होगी, एक मोम के पुतले से किरदार तुम्हारा। तो वक्त के साथ सुधांशु जी लागू होता है, अभी आपने 1, 2, 3, 4 एक्सेप्ट करना पड़ा, जो वैक्सीन जल्दी जल्दी में दी ना, जो हार्ट अटैक से मौत हो रही ना, हम तो पब्लिक में काम करते हैं, हर 100 में से 101वीं मौत जो है ना वो हार्ट अटैक से होती है, और वो खून के जमा होने से होती है, सुप्रीम कोर्ट में भी आपको ये बोलना पड़ा, मानना पड़ा कि वैक्सीन गलत तरीके से दी गई थी। अब दूसरी बात
6: पे बोला गया वैक्सीन गलत तरीके से,
7: मैं आपको सब सबूत देता हूं, मैंने बीच में आपको
6: कहा गया वैक्सीन,
7: ये सब डॉक्टर ने एक्सेप्ट किया,
6: सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके आप झूठ बोल रहे हैं,
7: ये आपको ठीक नहीं लगता, आपको शोभा नहीं देता, आपने बोलिए ना, आपने इतना बोला, मैंने बोला बीच में, आपने SIT की बात की, SIT कैसे अपॉइंट होती बताइए मुझे, बिल्कुल बताता हूँ मैं, जो धूल झोंकने का काम चल रहा है देश के हिंदुओं के बीच में, देश की जनता के बीच में, वो ये है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट में Section 3 में टर्म्स एंड रेफरेंसेस दिए जाते हैं, SIT अपॉइंट करने के बाद कहाँ कहाँ किस किस तरह से इंक्वायरी करनी है उसको कहते हैं टर्म्स एंड रेफरेंसेस, मुझे दिखाओ कहाँ है टर्म्स एंड रेफरेंसेस, कहीं भी नहीं है। दूसरी बात, जो दीपक पाटिल ने कहा है, गोपाल राय ने जो पैसा लेकर वहां पर गए हैं 2021 से लेकर, बीदर के जो आपके विधायक है वहां पर जिस तरह से जमीनें खरीदी की गई है जहां से कॉन्ट्रैक्टर से 40% कमीशन लिया गया है, आज जो वहां पर संतोष दुबे जी है, करपात्री महाराज जो है, वहां के सारे साधु संत जो आरोप लगा रहे हैं, मैं सब देख रहा था, छानबीन कर रहा था कि साधु संतों का क्या कहना है। तो साधु संतों का कहना पहले से यही है कि कार सेवा के वक्त जब 1400 करोड़ जो जमा हुए थे वो बीजेपी खा गई। हम नहीं कह रहे, ये निर्मोया अखाड़े के साधु संत कह रहे हैं, ये वीएचपी के साधु संत कह रहे हैं। जो दुबे जी है, संतोष दुबे जी, जिन्होंने कहा है कि मैंने, मेरी हड्डियां टूटी है, मैंने पूरा जीवन यहां बिताया है, वो तो गंदे गंदे आरोप कर रहे हैं। सुधांशु जी, मैं यहां पर वो लेकर जो एक चर्चा की एक मर्यादा होती है उसको भंग नहीं करूंगा, क्योंकि प्रभु राम का है घर है वो, तो वहां पर होम स्टे से लेकर सारे आरोप जो हुए हैं बहुत ही गंदे और घिनौने हैं। दिन का रजिस्टर क्यों मेंटेन नहीं हुआ? 2020 में फ्लैग किया था ऑडिटर ने, SBI ने कहा था कि यहां पर जो घपले हो रहे हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हो रही है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था। ऑडिटर ने लेयर्स के बारे में बात कही थी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेयर्स होते हैं, वो लेयर्स इसमें मिसिंग है, यहां पर घपला हो रहा। जिस महिपाल चीफ अकाउंटेंट थे उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं तो उनको ही वहां से हटाया गया। तो ये दिख नहीं रहा है, न्याय होना चाहिए लेकिन न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। तो आप मुझे बताइए कहां दिख रहा है? चंपत राय को जो कहा था कि हनुमान हनुमान है, वो हनुमान ही लूट गया। और सबसे आहत करने वाली बात तो ये है कि बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि मुझे सच पता है और मैं अगर सच कह दूंगा तो ये वो जो बड़े लोग हैं वो मुझे निपटा देंगे। और वही अकेले नहीं कह रहे, जिन्होंने बहुतों को निपटाया, वो ब्रजभूषण शरण सिंह जिसने 1000 महिला को खराब किया, और आपके सरकार ने संसद के बाहर देश को मेडल देने वाली महिलाओं को खींचा ना, घसीटा जो है ना, वो कह रहा है कि मुझे भी सच्चाई पता है, मैं अगर बोल दूंगा तो मुझे ये लोग निपटा देंगे। कौन है ये लोग? कौन इनको निपटा देंगे? बागेश्वर धाम जी को, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बागेश्वर धाम जी कह रहे हैं।
8: कहां पे कहा, किसके लिए कहा, कोट करिए।
7: अरे कहां, अरे सब जगह ओपनली अवेलेबल है। सुधांशु जी, आपको शोभा नहीं देता,
8: किसके लिए कहा? आपको कुछ भी
7: बिल्कुल नहीं। अगर बागेश्वर धाम ने नहीं कहा होगा तो मैं कल से डिबेट में नहीं आऊंगा, और कहा होगा तो आप नहीं आओगे।
8: जो लोग करेंगे उनको दंड मिलेगा,
7: तो आप नहीं आओगे।
8: कोट करिए,
7: मैं तो आपको बता रहा हूं मैं नहीं आऊंगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ।
8: अगर मैं नहीं, नहीं आना। बताओ भाई,
7: अरे सब जगह सब अवेलेबल है अभी।
0: चलिए ठीक है, अगले दो लोगों को लाते हैं। चुनाव पर भी आ जाइए कि 27 के चुनाव के लिए तैयार हैं पाटिल साहब?
9: बिल्कुल, सब तैयार है, चुनाव के लिए तैयारी है।
0: चलिए आप माइक उठा लीजिए।
9: सपा के कंधे पे चल के चढ़ा तैयार है
10: तो बहुत चोट लगेगी और मैं विवाद में फंस जाऊंगा खुद, क्योंकि वो लोग बड़े पावरफुल लोग हैं।
0: ये ब्रजभूषण शरण सिंह आप सुना रहे हैं,
10: मैं मारे डर के सच नहीं बोल सकता। देखिए, सच अगर बोल देंगे तो बहुत चोट लगेगी और मैं विवाद में फंस जाऊंगा।
0: ब्रजभूषण शरण सिंह है, चलिए ठीक है, आज आप उनकी बात सुना रहे हैं। निकाल लीजिए सर, निकाल लीजिए जल्दी से, आप माइक उठाइए और समाजवादी पार्टी की तरफ से बोलिए।
11: नाम बता दीजिए, नाम बता दें, सब खोल दे, चुनाव में खोलेंगे। कुछ लोग तो इसे जो नेताओं को लड़कियां सप्लाई करते थे,
0: ये भी
12: संतोष दुबे क्या कह रहे हैं?
0: ठीक है,
13: अभी सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन उन्होंने दो तीन चीजें बोली, वक्त पे, डोज पे, कार सेवा, गोली, और कब से ये लोग राम के भक्त हैं, इन सब चीजों पे मैं क्रमवार जवाब दे देता हूं इसका। सबसे पहले इन्होंने कहा वक्त, ना पहले था ना बाद में, तो सच बात है तो सच बोला। 80 लाख रुपए मिल गए लेकिन मान रहे चोरी नहीं हुई, ये सही बात है। वक्त ऐसे ही, ऐसा पहले था ही नहीं कभी। CCTV फुटेज में 40 दिन में 70 बार चोरी, ये फिर भी कह रहे हैं कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। वीडियो सारी पब्लिक डोमेन में, FIR भी दर्ज हो रही है, लेकिन ये कह रहे हैं अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात से सहमत नहीं होगे तो आप राम विरोधी हैं। जैसे पहले, अभी कुछ दिन पहले सुनते थे, अगर आपने प्रधानमंत्री जी की किसी बात का विरोध कर दिया तो आप राष्ट्र विरोधी हैं। और इनका भगवान राम से इतना ही नाता है जितना बाबा राम रहीम का सत्संग से है, इतना इनका भगवान राम से इतना ही नाता है जितना बापू आसाराम का महिलाओं के सम्मान से। और इन्होंने कहा अभी कि मैं जब बच्चा था तो मैं पता नहीं क्या क्या सोचता था। मैं इनसे इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि ये राम भक्त कब बने। इनके किसी दस्तावेज में, चाहे हिंदू महासभा बनी हो या RSS बनाओ या जनसंघ बनाओ या जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी हो 1980 में, इनका पहला घोषणा पत्र उठाना, इन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा चलेगी गांधीयन सोशलिज्म पे, गांधीवाद समाजवाद। इन्होंने चुनाव लड़ा, इन्हें कुछ नहीं मिला। 1984 में 2 सीटें आई इनकी। इन्होंने कहा 1989 में पालमपुर में हिमाचल प्रदेश में अध्यक्ष भाषण दिया लालकृष्ण अडवाणी जी ने, उन्होंने कहा कुछ ऐसा निकाल करके लाओ ना हिंदुस्तान में कि जो इमोशनल पॉलिटिक्स पे चले देश, तो इन्होंने वहां पर राम मंदिर का मुद्दा अपनाया। ये उस समय नए नए ताजा ताजा गरम गरम राम भक्त बने और वो चीज काम कर गई। 1989 के बाद जो चुनाव हुआ उसमें 85 सीट और 90 में जब लाल कृष्ण अडवाणी जी यात्रा लेकर के चले, क्यों? क्योंकि मंडल कमीशन में जो पिछड़े लोग हैं उनको 27% आरक्षण दे देते, जो गरीब थे, दलित थे, पिछड़े थे, जो ना नौकरियों में थे ना कॉलेजों में थे, उनको आरक्षण मिला, तो इन्होंने उसकी काट के लिए वो यात्रा चलाई और उसके बाद 1991 में 120 सीट पे पहुंचे। अब गिन लीजिए कितने साल के राम भक्त हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और मंदिर में चोरी हो गई, चढ़ावा चोरी हो गई। ये कहते चोरी ठीक है लेकिन समाजवादी वाले सवाल क्यों पूछते हैं, इसलिए हम लोग चोरी करेंगे ये सवाल नहीं पूछेंगे। बार बार ये जिक्र करते हैं कार सेवक, कार सेवक। मैं सुधांशु जी से पूछूंगा कार सेवक वर्ड जो ये शब्द है कब इजाद हुआ? गोली चली अक्टूबर 1900 कितने में, 90 में,
14: कार सेवक अक्टूबर 90, 2 नवंबर 90,
13: ठीक है ना, 1990 में। उस समय कार सेवक वर्ड नहीं था, इनके कार्यकर्ता थे। कार सेवक वर्ड आया 6 दिसंबर 1992 जब मस्जिद ढा गई। ये झूठ बोलते हैं। एक और बात, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर, आप सपोज कीजिए ना, आप मुख्यमंत्री हैं, आप छोड़ दीजिए इस चीज को, आपसे कहा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना है, आपको मुख्यमंत्री बना दिया, क्या आप भाई कौन है, भतीजा कौन है, पिताजी कौन है, बुआ, ये देखेंगे? या देखेंगे हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है? आप अगर आप इनके मुख्यमंत्री भी संविधान की शपथ लेते हैं, मैं संविधान की शपथ लेता हूं, अरे काहे की शपथ लेते हो, तुम झूठ बोलते हो। तुम कहो ना कि संविधान में अगर मुस्लिम होगा मुझे गोली मारनी है, ईसाई होगा मुझे गोली मारनी है, या सिख होगा मुझे गोली मारनी है,
0: ठीक,
13: ये कहो ना, संविधान की शपथ मत लो।
0: अब सुधांशु जी आप दोनों का जवाब,
13: लास्ट सेकंड हो गया,
0: जल्दी जल्दी।
13: उसके बाद कल्याण सिंह जी आते हैं, मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेके ऐसे हाथ करके, और कहते हैं ठीक है मैं सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हूं, ढा दीजिए इसको। सुधांशु जी, ये इस देश का तासीर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अगर आपको भी बनाया जाए तो शायद बोलेंगे। और लास्ट में कर रहा हूं, उसमें मारे गए 17 लोग जो अयोध्या में गोली चली, लेकिन जब मस्जिद ढाई गई इनके राज में, उसमें दंगे में मारे गए 2000 लोग जिसमें 300 हिंदू थे, उसका आप जिक्र ही नहीं करते। 16 लोगों का जिक्र करते, लेकिन जितने आज तक हिंदुस्तान में दंगे हुए सबसे ज्यादा नरसंहार आपके हाथ में, और सबसे लेटेस्ट किसान आंदोलन जिसमें
14: मैं कैमरामैन से कहूंगा मेरे फोन पर फोकस करिए, झूठ बोलते हैं। 17 लोग मारे गए 3 नवंबर 90 का आज अखबार है, कह रहा है अयोध्या में घंटों घेर कर फायरिंग, 200 मारे गए, रक्त से नहाई अयोध्या, जलियों वाले बाग को बेकाम किया। मैं मीडिया को कोट कर रहा हूं, हवा में नहीं बोल रहा हूं, और इनका झूठ अभी बेनकाब करता हूं। पहली बार में क्या बोले, 1989 में पालमपुर में भाजपा ने अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया राम मंदिर का। फिर क्या बोले, 1990 में मंडल आया, उसके बदले में भारत मंदिर लाई। मतलब खुद बोल रहे हैं व्यक्ति की 1989 में मंदिर का प्रस्ताव ला चुके थे और मंडल 1990 में आया, यानी आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एक साथ पीछे गए। अब सुनिए,
13: आडवाणी जी की यात्रा बहुत गलत,
14: सुनिए सुनिए,
13: मैंने बोला 1990
0: में, बताइएगा मैं मौका दूंगी।
14: मंदिर का विषय 1983 में आया, जिस समय मीनाक्षीपुरम में एक बड़ी धर्मांतरण की घटना हुई, संघ ने इसको मुद्दा बनाया, इंदिरा जी ने हस्तक्षेप किया, कई सौ दलित मुस्लिम बन गए थे, वो वापस आए। पहली रैली 9 अक्टूबर 1984 को लखनऊ के बेगम आजाद महल पार्क में हुई, जहां नारा लगा था लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। आप खुद कहते हो कि आपने ताला खुलवाया 2 फरवरी 1986 को, बगैर आंदोलन के ताला खुलवाया। अप्रैल 1987 की रैली में हम गए, 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास हुआ, और 7 अगस्त 1990 को मंडल आया, कहते मंडल के बदले में मंदिर लाए। अरे यार, इतनी जानकारियां नहीं रखते आप, बेसिक जानकारी नहीं रखते, और उसके बाद जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल जो आपने बात कही, हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, क्योंकि हमारा यह मानना है कि राम का नाम लेकर पाप कटते हैं, पर अगर राम के धाम
13: चोरी के लिए
14: पाप किया है, उसके पाप विधाता भी नहीं काट सकते, उसे दंड मिलेगा, राज दंड इस लोक में मिलेगा हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी, और धर्म दंड पर लोक में मिलेगा, वो भी हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। मगर एक मिनट मैं पूछना चाहता हूं, ये लोग कहते हैं हमने ये किया, बने बने ताजे भक्त। अरे भाई, ताजे भक्त क्या, आपको बुलाया गया राम मंदिर में, आप नहीं गए, और 3-3 पीढ़ी बाबर के कब्र पे जाके सजदा की, 59 जवाहरलाल नेहरू, 68 इंदिरा गांधी और 2005 राहुल गांधी, किसी ने बुलाया था क्या? और आप कहते हैं संविधान की शपथ लेंगे, आपको मरवाना नहीं है। अरे मुलायम सिंह अपने मुंह से बोले कि मैंने इतने हिंदू मरवा दिए थे, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था, अगर 40 भी मर जाते तो गम नहीं था मुसलमानों के लिए, इससे ज्यादा और क्या कर सकता था। और तीसरी बात, हमने कभी नहीं कहा मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, मंदिर न्यास बनवाएगा और संत। इन्होंने दोनों ने कहा, नरसिम्हा राव ने कहा हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करेंगे और मुलायम सिंह ने कहा हम बाबरी मस्जिद तामील करेंगे। 16 या 17 दिसंबर 1992 का नरसिम्हा राव का स्टेटमेंट है और OCWC में डिस्कस भी हुआ था। और मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, यूपी की सरकार पे आपको प्रॉब्लम थी 6 दिसंबर 1992 को गिरने में, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल क्यों बर्खास्त कर दी थी? वहां कौन सा लॉ एंड ऑर्डर बैकअप था? वास्तविकता ये, इसे कहते हैं संविधान को मजाक बनाकर संविधान का खिलौना बनाना। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कितनी भी कोशिश कर लें, एक रामचरितमानस की चौपाई है, उबरे ही अंत न होए निबाहू, काल नेम जिम रावण राहू। ये क्या है भाई साहब, समझिए आप, रामायण में भी लक्ष्मण जी के भी नागपाश लगा था, भगवान राम के भी शक्ति लगी थी और ये भगवान की आस्था को नागपाश लगा है।
0: जब लक्ष्मण जी को संजीवनी
14: जा रहे थे तो रास्ते में राम का भक्त बनकर बैठ के हनुमान जी को रोकने लगा था, वही कालनेमी था। मगर रावण हो, राहु हो या कालनेमी हो, आखिर में सब पहचान लिए गए थे, इसलिए जनता भली भांति सबको।
7: कौन चंपत रहा है कालनेमी?
14: वो तो आपको पता है ना,
7: वो तो आपको पता है ना, सरकार आपकी, पुलिस आपकी,
14: लश्कर आपका, कोर्ट आपका, रावण का
7: पुलिस
14: दूत था,
7: फिर आप कहते चंपत राय पता नहीं कौन
14: है,
7: देखो बचाने की कोशिश,
14: वो उसे पता है,
7: कितनी बचाने की कोशिश हो रही है, चोर को बचाने की कोशिश कर रहे हो और राम का नाम ले रहे।
0: आपके नेता हैदराबाद में बैठे बैठे कहे इसमें धर्म का तड़का लगा रहे हैं बैठ के, मतलब कब तक आग से पे हाथ से किएगा आप?
7: नहीं, वो सवाल,
0: उन्होंने कहा है कोई मुस्लिम होता तो अब तक ये चल जाता बुलडोजर, तो बुलडोजर के लिए तो नोटिस 2 लोगों को जा चुका है योगी सरकार।
7: नहीं, ये सवाल पूछा गया था वैसे हिसाब से, मैं साथ में ही था तो उन्होंने तब कहा कि बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और यहां चूक हो गई, अगर इस ट्रस्ट में किसी मुसलमान को डाल देते तो फिर स्केपगोट बना करके उस एनकाउंटर भी होता, बुलडोजर भी चल जाता, ये गलती हो गई, मामला रफा दफा हो जाता। और चंपत ने जो चपत लगाया है उस पर FIR दर्ज नहीं हो रही है। लोग पूछ रहे हैं काकभूषणी जी कहाँ हैं, पादुकाएं कहाँ हैं, लेकिन वो बात अलग है, जिन लोगों की आस्था वो तो पूछेंगे ना, वो लोग पूछ रहे हैं। निश्चित हम लोगों ने जहां तक भी हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ सकते थे, बारहवीं मस्जिद के लिए हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन जब माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आ गया, ठीक है जो बन रहा है, लेकिन
0: माने ओवैसी साहब ने मुझे इंटरव्यू दिया था, कहा था कि हम डिसएग्री कर,
7: डिसएग्री करना अलग बात है, वो मेरा संवैधानिक राइट है, मैं भी करता हूं, डिसएग्री करना अलग बात है, लेकिन नई बात यह है कि अखिलेश जी भी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे हैं। 25 दिन में 23 ट्वीट में सुबह गिन के आया था, 23 ट्वीट उन्होंने राम मंदिर के संबंध में किए हैं, आवाज उठाई, उन्हें उठाना चाहिए था, लेकिन 23 ट्वीट किया। लेकिन पिछले 9 साल में मस्जिद गिरी, मदरसा गिरा, मुसलमानों पे बुलडोजर चला, फर्जिया एनकाउंटर हुए, तमाम इश्यूज हुए, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, एक ट्वीट नहीं किया, क्योंकि मुसलमानों को समझते हैं कि वोट डालने वाला रोबोट है, हमारा राजनीतिक गुलाम है, हमें पॉलिटिकली अनटचेबल समझते हैं। और जब हमारे नेता ने कहा कि हम मिलकर के बीजेपी को हराना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं आप चुनाव मत लड़िए, उनको इतना अहंकार है कि मुसलमान कहां जाएगा। उनमें और अखिलेश जी, योगी जी की भाषा में कोई डिफरेंस नहीं है, बीजेपी कहती है कि एक आस्था सुप्रीम है, और वही अखिलेश जी ने कहा,
0: ठीक है इस पर एक छोटा सा जल्दी से,
7: संविधान को उन्होंने सेकंड नंबर पे बताया, उन्होंने कहा कि नहीं मर्यादा का पहला नाम श्रीनाम, दूसरा नाम संविधान, यही बीजेपी बोलती है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, वो सियाराम धाम बनाएंगे, धर्म के नाम पर एक आस्था सुप्रीम भारत में कैसा हो सकती है? यही मैं समाजवादी से पूछ रहा हूं कि मुसलमानों से आपको कौन सी आपत्ति है? हमको अलायंस में नहीं लेंगे, लेकिन शिवसेना के साथ अलायंस करेंगे। जिस व्यक्ति ने कहा मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल के रेप करो, वो सुनील सिंह इनकी पार्टी में है, और कल्याण सिंह जी इनकी पार्टी में, साक्षी महाराज को पहले राज्यसभा भेजा इन्होंने, तो ये सेकुलर है, जो कुछ भी ये कर ले वो सेकुलर है, और हम संविधान की रक्षा की बात
0: कर रहे और कांग्रेस पार्टी के इमरान प्रताप गढ़ी भी यही कह रहे हैं कि अब आप सिर्फ हिंदुओं की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अखिलेश जी पर आरोप लगाया।
13: हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, बी टीम, सी टीम, ये जो टीम है इनकी बाद में जवाब देते रहेंगे, अभी जो मेन मसला है उस पर मैं जवाब दे दूं, 10 सेकंड आप दीजिएगा। सुधांशु जी ने अभी कई चीजें बोली है कि बचाव करने वाली, और बोला है कि झूठ बोल दिया पालमपुर का, ये तो बच्चे हैं सब जानते हैं, और टेक्नोलॉजी, सुनिए अब बोलूं, मैं नहीं
14: बोला पालमपुर 89, टेक्नोलॉजी,
13: टेक्नोलॉजी का जमाना है, बहुत सारी साइटें डालेंगे बच्चे, पता चल जाएगा कि राम मंदिर मुद्दा भाजपा ने कब अपनाया, अभी पता चल जाएगा। एक बात, दूसरी बात, आप जैसे बचाव कर रहे हैं, मैं पहले भी देखता था आपको, उन्नाव कांड में भी ऐसे ही बचाव करते थे कुलदीप सेंगर का, खूब वीडियो देखी मैंने, लखीमपुर में भी जो टैनी है जिसने किसानों पर गाड़ी चलाई उसका भी बचाव करते थे, ये भी करते थे इनके मंत्री, इनके प्रवक्ता सब करते थे, हाथरस कांड में भी ऐसी बचाव करते थे, लेकिन क्या निकला उसमें? वही दोषी निकले, उसी ने उनको मारा। ऐसे ही आज क्या करते हैं, आज चोरी हो गई, सब कुछ सामने है, वीडियो फुटेज है, एफआईआर है, लेकिन छोटी मछली पकड़ेंगे, बड़े मगरमच्छ को हाथ
0: रोहित जी जल्दी से माइक उठाइए, बताइए
13: बड़े मगरमच्छ को नहीं पकड़ पाएंगे,
0: बच्चों के सवाल लेंगे।
15: उत्तर प्रदेश की धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का अवतरण हुआ और लंबे समय तक 550 सालों के उपरांत तक उनको टेंट में रहने के लिए बाध्य होना पड़ा। इससे व्यथित बाबा विश्वनाथ ने बाबा सोमनाथ को 2014 में फोन किया और कहा कि मैं विश्वनाथ बोल रहा हूं, बाबा सोमनाथ जी अपनी धरती से महानाथ को भेज दीजिए, रघुनाथ की धरती पर यह धरती अनाथ हो रही है। तब सोमनाथ की धरती से बाबा विश्वनाथ की धरती पर रघुनाथ की धरती को मरुभूमि से बचाने के लिए, अनाथ होने से बचाने के लिए महानाथ के रूप में नरेंद्र भाई मोदी का आगमन हुआ और नरेंद्र भाई मोदी के आने के उपरांत माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के उपरांत भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो गया। आपको याद होगा त्रेता काल में जब राम जी का राज्याभिषेक होना था उस समय भी केकई और मंथरा रूपी विस्मयादि बोधक लोगों ने राम जी के घर में विस्मय क्रिएट किया और राजा बनने से बाध्य किया, उनको जंगल जाना पड़ा। ठीक उसी प्रकार आज राम मंदिर ट्रस्ट में कुछ केकई और मंथरा को चिन्हित किया गया है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
0: एक बार करेक्ट कर देती हूं, मुझे लगता है इस तरह के एनालॉजी से बीजेपी वाले भी खुश नहीं होंगे।
15: इसमें क्या दिक्कत है,
0: आप जो ला रहे हैं जहां जहां से ला रहे हैं टॉपिक पर आइए ना,
15: टॉपिक पे आ रहे हैं आप बीच में इंटरप्ट कर रही हैं, सबको आपने बोलने दिया, हम सही बात बोल रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है, सुनिए मूल बात पर। मूल बात यह है कि राम जी के अस्तित्व की लड़ाई अगर इस देश में किसी ने लड़ी तो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लड़ा, विश्व हिंदू परिषद ने लड़ा, इन लोगों ने लड़के 550 सालों के बाद राम जी को अयोध्या में प्रतिष्ठित किया। और आज अगर कुछ कमियां आई हैं तो एसआईटी जांच आयोग का गठन किसने किया? भैया एक मिनट रुक जाइए, एक बात उठाइएगा, रुकिए ना, बोल रहे थे नहीं बोल रहे,
13: मुझे ऐतराज है ना,
15: अरे ऐतराज आपके हर बात पर ऐतराज है, ऐतराज कीजिएगा,
13: कुछ कमी है
15: नहीं, रुकिए, कोई कमी नहीं है, जनता 27% की कमी आपने है,
13: राजनीति में
15: खींच कर दोषियों को लाया जाएगा।
0: पाताल जाने की जरूरत कहाँ है, सब घूम रहे हैं वहाँ पे,
15: अब आइए,
0: अरे पाताल जाने की जरूरत नहीं है गुरुजी, सब वहीं घूम रहे हैं।
15: अंजना जी लोग जेल गए हैं, जनता का आई वॉश में नहीं कर रहा हूँ, जनता देख रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठन किया, दोषी जो संदिग्ध हैं उनको जेल भेजा, उनके घरों पर कार्रवाई हो रही है, उनके धर्मपत्नी की संपत्ति का जांच हो रहा है, सब कुछ ऑन कैमरा है, ऑन स्क्रीन है, ऑफ स्क्रीन कुछ नहीं हो रहा है। और मैं चाहूंगा क्यों नहीं कर रहा हूँ, 10 सेकंड और। 1967 में पहली बार स्वर्गीय मुलायम सिंह जी विधायक बने, 1984 में कांग्रेस के लोगों ने उनकी हत्या रचने की साजिश रची, आदरणीय मुलायम सिंह जी ने आदरणीय अखिलेश जी से कहा कुछ भी हो जाए कांग्रेस के साथ गठबंधन मत करना, राम मनोहर लोहिया ने पहली बार रामायण मेला चित्रकूट में लगाया था, रामायण मेला की विचारधारा से निकले समाजवादी आंदोलन के नेता मुलायम सिंह के पुत्र ने रामायण आंदोलन के खिलाफ काम किया, ये उत्तर प्रदेश स्वीकार
13: करने के लिए
15: जनता रामालय ट्रस्ट की भी जांच की मांग कर रही है। अंजना जी इस पर भी चर्चा होनी चाहिए।
16: मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक पार्टी किसी को नेशनलिस्ट एंटी नेशनलिस्ट का तमगा कैसे दे रही है, बायोफ्यूल पे क्वेश्चन पूछने पे लोगों को एंटी नेशनलिस्ट बोल दिया जा रहा है, इथेनॉल ब्लेंडिंग पे बीजेपी ने अभी तक कुछ भी अपना प्रतिक्रिया नहीं
14: दिया। बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि एंटी
17: इन एनी केस जो हीटअप मूवमेंट होता है, कुछ भी बात होती है उसमें अकाउंटेबिलिटी के नाम पे राइमिंग शुरू हो जाती है, हिस्ट्री को लाया जाता है, पर जब जहां पर पेपर्स की बात होती है, बच्चों के भविष्य की बात होती है, इवन राम मंदिर की भी बात होती है, तो कोई भी सरकार हो, सरकार मैटर ही नहीं रखती, अकाउंटेबिलिटी के नाम पर राइमिंग मजाक रेप वर्डिक्ट ऐसे ही घूम रहे हैं, इतने राम रहीम ऐसे ही घूम रहे हैं, और आप हम लोग कैसे मान लें कि आप लोग जो मंदिर चोरी हुई आप लोग पकड़ेंगे ही उन लोगों,
18: उन पर भरोसा करें। हाँ
19: वही सेम क्वेश्चन के आप बोल रहे हैं कि पहला प्रोसीजर चोरी का क्या होता है कि एफआईआर होती है, अभी तक ये तो बहुत ही बड़ा चोरी हुई है, यहाँ पे एफआईआर ही अभी तक दर्ज नहीं हुई है, सबसे पहला प्रोसीजर होता है एफआईआर,
0: देर से हुई लेकिन अब हो गई है एफआईआर दर्ज हो गई।
20: ये समाजवादी पार्टी वालों से पूछता हूँ,
0: आप अपना परिचय दे दें, आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं?
20: मैं अखिलेश गर्ग हूँ,
14: समाज सेवी हैं।
0: अच्छा बोलिए।
20: तो इनके नेता कहते थे बच्चे हैं गलती हो जाती है, तो ऐसे शब्द बोलते हैं और अब ऐसा ये उसके लिए बोलते हैं,
13: उस पे सुनो, उस पे अगर आप देखोगे
0: भिड़िए मत, सबको प्रश्न का अधिकार है ना, बोलने दीजिए।
19: मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बार बार ये बोला जा रहा है कि विपक्ष जो है वो श्री राम में नहीं मानती है, लेकिन चोरी होना तो फिर भी गलत है, लोगों का विश्वास टूटना फिर भी गलत है, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे जवाब तो देना होगा ही, विपक्ष माने या ना माने।
18: और जो विश्वास करते थे अगर वो विश्वास तोड़े तो और भी गंभीर सवाल है। आप दोनों आ जाइए।
21: सिस्टमैटिक फेलियर, पेपर लीक, कोचिंग सेंटर्स में आग लगना, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अभी तक ये ब्लेम गेम क्यों खेला जा रहा है? क्या हम लोग सीधे पॉइंट पे आके बात कर सकते हैं कि कोर फ्लॉ है किधर?
22: मेरा सवाल ओपोजिशन से ये है कि आपका कहना है कि बीजेपी धर्म की सत्ता खेलती है, लेकिन बाबरी मस्जिद को आप सपोर्ट करते हैं, मदरसों को फंडिंग आप देते हैं, लेकिन जब बीजेपी हिंदुओं की बात करती है तो अचानक से वो धर्म की सत्ता कैसे खेलने लगी?
18: ठीक है, आप आ जाइए। एक आखिरी सवाल यहाँ से, फिर जाओ।
23: मेरा सवाल ये है कि योगी जी ने तुरंत जैसे ही ये सारा चीजें हुई SIT की बैठक बैठाई और जो भी चीजें थी उस पर गिरफ्तारी करी गई और सारे ही चीजें चल रही है और आगे भी जो भी होगा वो होता रहेगा, लेकिन आप अभी जब इलेक्शंस आने वाले हैं तो आप इस मुद्दे को लेके क्यों एकदम राम मंदिर, जब राम मंदिर के लिए भी कोर्ट में जब ये चीजें चल रही थी तब तो आप लोग बिल्कुल शांत थे, तब तो आप लोग कुछ भी नहीं बोल रहे थे।
18: और यहाँ दिन दिन का हिसाब लिया जा रहा है। अतुल जी आप ही से शुरू करते हैं, जो और अच्छी बात भी है, 15 दिन हुई और SIT ने और टाइम मांगा है। केरल में अब आपकी सरकार है, एक दो महीना तो हो ही गया है, 4 किलो सोना सबरीमाला मंदिर से चोरी होने का और हाईकोर्ट ने ये बात कहकर नामजद किया है लोगों को, तो फिर अलग अलग मापदंड क्यों?
7: नहीं, कोई अलग मापदंड नहीं है, यहाँ सीधा सीधा बचाते हुए दिखाई देता है। आप सवाल करो चोरी पे, सवाल होता है आप कौन हो, एंटी नेशनल हो। एक 12वीं क्लास का लड़का जो नीट पेपर लीक होता है उसके ऊपर सारा रिसर्च करके निकालता है तो उसे देशद्रोही कहा जाता है, वो कोमा में चला जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो जो अभी ये जो जेंजी का या युवाओं का जो सवाल है कि हमारे भविष्य के साथ क्या होगा, फिर तो केदारनाथ में भी जो है वो सोना गायब हो गया है 250 किलो के आसपास, ये 2012 में भी चोरी हुई, कार सेवकों के 1400 करोड़ भी चोरी हो गए, 200 शिलाएं भी चोरी हो गई है, 50% जमीन जो है अयोध्या की वो जमीन सारी कौन किसने खा गए है, किसने लिए है, कौन अंसारी कौन पाठक है जिन्होंने 2 करोड़ की जमीन, दोनों ने मिलकर, अंसारी और पाठक दोनों ने मिलकर 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे में 4 घंटे में 18 करोड़ 30 लाख में ट्रस्ट को बेची है। ये सारे जो है ना ओपन एंड शट केसेस है, सब जगह कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई होती हुई दिखनी चाहिए।
18: सुधांशु जी, अब इस बच्चे का सवाल जो पूछे वो देश विरोधी, वो राष्ट्र विरोधी क्यों भाई?
14: बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देश विरोधी राष्ट्र विरोधी कौन? हाफिज सईद ने अपने स्टेटमेंट में किस पार्टी को अच्छा बोला जाके चेक कर लीजिए।
7: छोड़ा किसने हाफिज सईद को?
14: वीडियो है
7: हाफिज सईद को, छोड़ा किसने?
14: हाफिज सईद ने कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा बोला।
7: छोड़ा किसने? पकड़ा हमने।
14: अब सुनिए, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है, संसद पे हमले का मुख्य आरोपी अफजल गुरु हालात का मारा है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, जाकिर नायक शांति का मसीहा है, इशरत जहां बेटी है, भारत का सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष से पप्पी झप्पी इनके नेता जाग कर रहे हैं। अब ये दर्शक अपने आप तय करें कौन नेशनल है, कौन एंटी नेशनल है
18: और
14: कौन।
18: एक सेकंड, आपको टोक रही हूं, पर कांग्रेस पर तो पूछ ही नहीं रहा, वो जनता पर।
14: अगर मैंने तो नाम किसी पार्टी का नहीं लिया, आपने बहुत अच्छा किया जो आपने उड़ता तीर पकड़ के बता दिया कि ये कौन है, सारे देश को समझ में आ गया। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, सुनिए
18: ब्लेंडिंग,
14: आप सुनिए,
18: या फिर अन्य जो मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं, भाई ये मंदिर जाते हैं लोग चढ़ा

0: को महिलाओं को सबको टिकट देते, आप देते नहीं, आपका दोष है क्योंकि आपको हिंदू मुसलमान की राजनीति बहती है। आप बताओ मुझे प्रदीप कुरलकर कौन है, ध्रुव अग्रवाल कौन है? ये सारे बीजेपी के लोग बैठ के रैना से लेके किसको टिकट दी थी सैफुल्ला को आपने, ये सारे के सारे देशद्रोही देश के सीक्रेट पाकिस्तान से बांट रहे हैं और होसबले से लेके राम माधव से लेके एक महीने से पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, पानी तोड़ने की बात कर रहे हम, अभी तक हमारा सिंदूर चालू है, फिर क्यों हो रहा है ये? ये सवाल जो खड़े होते हैं ना, ये केवल आपको राजनीति भाती है क्योंकि आप पेपर लीक पे बात नहीं कर सकते। आप पेपर लीक पर अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, 21 बच्चों ने आत्महत्या कर दी, लेकिन उसका जवाब आपको देना नहीं है। आपको इथेनॉल का जवाब आपको देना नहीं है, आपको बेरोजगारी का जवाब देना नहीं है, आपको जिस तरह से आपने अभी आपको डिलिमिटेशन करना है इसलिए पार्टियां तोड़ तोड़कर जनादेश को जो है ठुकरा कर, आप संविधान की बात करें ना, जनादेश को ठुकरा कर लोगों को ईडी इनकम टैक्स सीबीआई का डर दिखा दिखा कर साथ में लाकर डिलिमिटेशन करके नॉर्थ साउथ करना चाहते हो, इतनी सारी बातें देशभक्ति सर्टिफिकेट भी खुद ले लेते हो।
1: देखिए, सनातन धर्म और राम जी के प्रति चिंता व्यक्त करने वाली कांग्रेस पार्टी से देश जानना चाहती है कि मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय गौ रक्षा के संदर्भ में आया, गौ की हत्या को निषेध किया गया
0: 14 साल की उम्र की गौ माता को चलता है क्या?
1: आप एडवोकेट नहीं है सुप्रीम कोर्ट के विश्लेषण बारे में,
0: विश्लेषण आपको
1: 14 साल
0: के ऊपर की गाय को काटो, मां बूढ़ी हो जाए तो उसको काटो, ये इनको चलता है।
1: मैडम सोनिया
0: के बाद सबसे ज्यादा तीन
1: सोनिया गांधी के रिश्तेदार
0: का एक्सपोर्ट जो है वो नंबर 1 सरकार ने गया है।
1: मैं जोसेफ विजय की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गौ हत्या को रोकने के वर्दिक को चैलेंज किया है।
0: किसने किया?
1: मैडम सोनिया गांधी इटली की बेटी के रिश्तेदार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने।
2: एक सेकंड कहां से ये निकाला आपने?
1: निकल गया, मेलोडी पर देश के प्रधानमंत्री को
0: देश के प्रधानमंत्री की बात मत करो, और
1: करता है और राहुल गांधी का मित्र
0: शुरू कर दूंगा,
1: भाई है जो गौ की हत्या उसके पक्ष में ये बोलेंगे और देश बढ़ेगा।
2: एक सेकंड मैं इस बात का पूरे एक सेकंड खंडन करती हूँ रोहित जी, अब मैं माइक ले लूंगी। प्लीज आप किसी भी नेता या नेत्री का इस तरह से आप अपमान, प्लीज वेट, आप अपमान मत करिए और इस तरह से रिश्ता मत निकालिए, ये बिल्कुल गलत है और आगे से इसको करने से आप बचिए। प्लीज टॉपिक पर रहिए, अगर आपकी दलील में दम होगा तो आपको दूसरे पर कीचड़ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फैक्ट पे ही बात हो, फैक्ट पे।
3: इनको हमदर्दी, अतुल पाटिल जी महाराष्ट्र से हैं, 2024 में 48 लोकसभा है महाराष्ट्र में, कितने मुस्लिम को टिकट दिया था बताओ? महाविकास अघाड़ी ने कितने को दिया? एक नहीं दिया था,
0: सुनो
3: 48 में एक नहीं दिया, यहाँ के भाषण दे रहे, बताओ।
2: शादाब चौहान जी मुस्कुराने लगे,
3: अब मैं बताता हूँ, पेपर लीक पे सुनिए, अब
0: सुधांशु जी अपने हिसाब से मत बताइए,
3: अपने टन पे बोलिएगा,
0: अपने हिसाब से मत बताइए,
3: अपने हिसाब से नहीं,
0: अपने हिसाब से मत बताइए,
3: 10 होने चाहिए
0: महाराष्ट्र से इमरान प्रताप गढ़ी है, पता नहीं।
3: दूसरा बोलता हूँ, नीट और पेपर लीक पे जूनियर, सबसे ज्यादा पेपर लीक कहाँ हुए? इनकी पार्टी के नेता,
2: चुनाव सुनिए दिया था
3: सचिन पायलट, अजमेर से लेके जयपुर तक पद यात्रा निकाले, उन्होंने कहा इतने पेपर लीक हो रहे चाहे मेरे पैर के छाले फूट जाएं मगर मैं मानूंगा नहीं। 19 पेपर लीक हुए और उस पे मजाक बनाया अशोक गहलोत ने, मैं जादूगर हूं सब ठीक कर दूंगा। बताओ सचिन पायलट ने किसके खिलाफ यात्रा निकाली थी और आपने अपनी पार्टी के नेता पे ध्यान क्यों नहीं दिया? बताइए,
0: सुनिए,
2: सबसे ज्यादा पेपर
0: योगी एक तिहाई है, पूरी भाजपा इकाई में है, ये देखो
3: योगी एक तिहाई, पूरी भाजपा,
0: पूरी एडवर्टाइज है आज की, ये होर्डिंग लगे है।
2: चलिए ठीक है,
0: हमारा
2: महाराष्ट्र में टिकट नहीं दिया,
0: हमारा लोकसभा का
3: टिकट बताइए,
0: हमारा जो चुनाव हुआ लोकसभा का वो हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार कांग्रेस और शिवसेना के साथ लड़ा, जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उस डिस्ट्रीब्यूशन में हम दे नहीं पाए, सच्चाई है, लेकिन हमने विधानसभा में दिया, तुमने कितना दिया?
3: धन्यवाद स्वीकार,
0: तुमने कितना दिया बताओ मुझे? हमने इमरान प्रताप गढ़ी हमारे यहां से
2: राज्यसभा
4: में गए, सुधांशु जी ने बात कही है, सुधांशु जी की बात से एक प्रतीत होता है कि उन्होंने कहा कि जो राम मंदिर में जाता है और खूब चोरी कर ले वो राम भक्त, और जैसे हमसे सवाल पूछते हैं आपने गए तो हम द्रोही, हमें पूछता हूं जो रामद्रोही, इतने करोड़ों लोग जो नहीं गए मंदिर में वो सारे रामद्रोही हैं, और आप जो बैठ करके चोरी कर रहे हैं वो राम भक्त है, एक बात। दूसरी बात, आपका सवाल जो होता है ना बहुत ज्यादा हाँ ना में बहुत होता, आप बताओ उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर लीक हुआ हाँ या ना? आप बताओ उत्तर प्रदेश में सीटीईटी का पेपर लीक हुआ हाँ या ना? बताओ उत्तर प्रदेश में पूरे देश में नीट का पेपर दो दो

0: प्रमाण लीक हुआ।
1: दो लाइन का जवाब समय समाप्त हो गया, जल्दी से
0: बताओ फायरमैन का ऑपरेटर का उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ है ना?
1: अगर इशू हो रहा है सरकारें आपकी हैं सुधांशु जी, इसको आप विपक्ष के ऊपर नहीं थोप सकते हैं। तो सवाल जवाब लीजिए ना रे सर।
2: पेपर लीक के चेन के लिए नया सख्त कानून किसने बनाया?
3: धर्मेंद्र बताएंगे।
2: भारतीय जनता पार्टी ने बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना।
1: धर्मेंद्र बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जिस वक्त इतने की इजाजत।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
5: हमने तब भी सवाल किया था।
6: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
5: हम आज भी सवाल करते हैं।
6: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
5: ऑपरेशन अग्नि,
6: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
5: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
7: In association with
8: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
10: सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
12: No.
13: Oh, no.
14: Welcome to Get Real.
13: I got something to say.
14: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
13: Oh, my God.
12: It's got to be deliciously desperate.
13: Why do these girls forgive him?
15: Well, she has a soft spot for troubled men.
14: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
13: Love runs deeper than we know.
14: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney Plus.
16: शेयर बाजार ने ज्यादा ट्रेडर्स बनाए हैं या फिर ज्यादा गैम्बलर्स बना दिए हैं सर? अब
17: ये जो जॉबिंग स्प्रेड हुआ करता था, दैट इटसेल्फ वाज वेरी लार्ज। तब मैं कम से कम एक 150-200 स्टॉक का मार्केट मेकिंग मैं किया करता था। आपने शुरू किया हर्षद मेहता स्कैम से, उसके पहले एक क्रैश आई थी, दैट वाज एन एक्सट्रीमली सीवियर बेयर मार्केट। 42 होते होते डिफरेंस का मेरे सारे रुपए खत्म हो गए। फियर ऑफ लीविंग मनी ऑन द टेबल एक बहुत बड़ा फियर है जो आपको फोर्स करता है कि जल्दी में प्रॉफिट ले लो। हिम्मत दिखाओ तो आपको उसका कीमत भी मिलता है।
18: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमा कुरैशी। ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
19: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अकल अकल नहीं है। इस पे जो बहुत फेमस सीन है वो जो
20: परमिशन लेनी चाहिए ना,
19: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई।
21: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है, लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी,
19: आई फील अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो रुक जाइए।
6: चुनावों में कथित धांधली पर इंडिया अलायंस ने अपना ध्रुव का पत्ता चल दिया है। 8 जून को इंडिया अलायंस की मीटिंग में हुए फैसले के मुताबिक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से मुख्य न्यायाधीश को एक लेटर लिखा गया है जिसमें 24 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सांसद के दस्तखत है। 28 जून की इस चिट्ठी में मुख्य चुनाव आयुक्त पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए पक्षपात का आरोप है। चिट्ठी में लिखा गया है कि विधानसभा चुनावों के एन पहले SIR करना गलत था और इसे गलत तरीके से लागू करना एक बहुत बड़ी विफलता थी, जबकि इलेक्टोरल रोल्स 2002 में डिजिटाइज होने के बाद से लगातार रिवाइज और अपडेट किए जाते रहे हैं।
9: चिट्ठी में 2027 में होने जा रहे चुनावों के मद्देनजर न सिर्फ इलेक्टोरल रोल्स बल्कि ईवीएम की भूमिका पर भी सवाल है। चिट्ठी में कहा गया है कि अगर संस्थाएं नाकाम होंगी तो लोकतंत्र अराजकता में बदल जाएगा, इसलिए इस पर अदालतों को विचार करना होगा। बिहार और बंगाल में बीजेपी विरोधियों की हार के बाद आने वाले यूपी चुनाव के मद्देनजर ये चिट्ठी अहम सियासी मुद्दा बन सकती है। हालांकि जहां चुनाव की निष्पक्षता पर इंडिया अलायंस के ऐसे सवाल हैं, वहीं यूपी में अखिलेश यादव समय से पहले ही चुनाव के लिए तैयार होने का दम भर रहे हैं।
0: अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करेंगे। जो लोग चुनाव नवंबर में कराना चाहते थे, सितंबर में करा दें, हम लोग तैयार हैं।
9: अखिलेश यादव का ये बयान उन अटकलों के बाद आया है कि यूपी का चुनाव 2027 से पहले ही कराने की तैयारी बीजेपी ने की है। इन अटकलों की एक बड़ी वजह बीजेपी की सक्रियता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष के हमले के बावजूद योगी आदित्यनाथ न सिर्फ अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं बल्कि 2017 से पहले के यूपी का हाल की तस्वीर भी खींच रहे हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हाल में अपनी नई टीम गठित की है। यूपी बीजेपी के 19 उपाध्यक्षों में ओबीसी 8, क्षत्रिय 4, ब्राह्मण 3, वैश्य 2 और 2 दलित चेहरे हैं। बीजेपी कहीं से ये संकेत नहीं देना चाहती कि अगर यूपी में जल्दी चुनाव होंगे तो उसकी तैयारी नहीं है। यूपी का चुनाव जहां विपक्ष के लिए एक चुनौती है, वहीं बीजेपी के लिए भी लिटमस टेस्ट होगा। गौरतलब है कि 2024 के चुनाव में यूपी से लगा झटका ही बीजेपी पर भारी पड़ा था। आज तक ब्यूरो

0: सुप्रीम लीडर को 125 दिनों के बाद सुपुर्द खाक किया जा रहा है। हम इस समय तेहरान में मौजूद है और हर बदलते घटनाक्रम की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।
1: मैं गीता मोहन सीधे तेहरान से आज तक के लिए।
2: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
2: If you love podcasts, you never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the three dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
3: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks.
1: राम मंदिर चढ़ावा लूट मामले में एसआईटी सूत्रों से खुलासा, रोज 6 से 8 लाख की होती थी चोरी। आभूषण गला कर सोने के बिस्किट बनाने का शक, सीक्रेट मीटिंग करते थे सभी आरोपी। बद्रीनाथ धाम तक पहुंचा दान चोरी का मामला, सोशल मीडिया पर आरोप के बाद मंदिर प्रशासन ने जांच के आदेश दिए, जांच कमेटी करेगी सीसीटीवी की पड़ताल। जोधपुर को मिला नए एयरपोर्ट टर्मिनल का तोहफा, प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। राजस्थान के बालोतरा को मिलेगी देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी, गुजरात का भी दौरा। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार यूपी के दौरे पर नित्य नवीन, 2 दिनों तक मिशन 2027 पर मंथन। सीएम योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम समेत विधायकों के साथ बैठक। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की अंतिम यात्रा में लाखों का हुजूम, आंसुओं में डूबा पूरा ईरान। श्रद्धांजलि सभा में रो पड़े राष्ट्रपति पेजस्टियान, भारतीय दल ने भी दी श्रद्धांजलि।

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। मोदी 3.0 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होने वाला है। कौन मंत्री बनेगा, किसकी कुर्सी जाएगी, किसको सीधे वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलेगी, तमाम सवाल हर जगह चर्चा में है। इन सारे सवालों के जवाब एक एक करके हम आपको बताएंगे। खबर है कि जो टीम बनेगी उसके लिए सब कुछ तय हो चुका है। मोदी मंत्रिमंडल में कई की छुट्टी होने वाली है, जिनके पास कई विभाग हैं, कुछ के विभाग कम होने वाले हैं, महिलाओं को प्राथमिकता और पिछड़ों पर जोर रहने वाला है। और खबर है कि नए चेहरे मंत्रिमंडल में आकर चौंकाने वाले हैं।
1: नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में किसकी सीट पक्की है, किसकी कुर्सी जाएगी, कितने नए चेहरों का प्रवेश होगा, कितने पुराने चेहरों की विदाई होगी, किस किस मंत्री का विभाग अब की बदला जा सकता है, पिछड़ों और महिलाओं को क्या बंपर सीट मंत्रिमंडल में मिलेगी, नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की तारीख क्या है, चुनावी राज्य वाला एंगल मंत्रिमंडल विस्तार में कितना दिखेगा। खूब पतंग नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की तारीख से लेकर मंत्रिमंडल के चेहरों तक पर उड़ाई जा रही है। सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग सियासी गलियारों में सब सूत्रों की पतंग उड़ा रहे हैं। पहला सवाल, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, क्या तारीख आ चुकी है? छह जुलाई से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर पीएम मोदी निकल जाएंगे। 11 जुलाई तक वो दौरे पर रहेंगे।
2: 11 जुलाई को विदेश दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट विस्तार कर सकते हैं, या फिर 5 जुलाई को जो एक विंडो खाली है उसमें कैबिनेट विस्तार को अमलीजामा पहनाया जा सकता है। इतना जरूर है कि अब जल्द से जल्द मोदी सरकार के अंदर कैबिनेट विस्तार देखने को मिलेगा।
1: अब सवाल नंबर 2 आता है, क्या मानसून सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जबकि सदन में मंत्रियों को कई सवालों के जवाब तैयारी करके देने होते हैं।
2: संसद का सत्र जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू हो सकता है। संसद के मानसून सत्र शुरू होने से पहले 11 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में क्या कैबिनेट में विस्तार हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। इससे पहले 2021 में 7 जुलाई को कैबिनेट में विस्तार हुआ था और 14 जुलाई से संसद का सत्र था। तब रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक जैसे बड़े नेताओं को कैबिनेट से हटाया गया था। ये पहले भी हुआ है और अब भी हो सकता है।
1: सवाल नंबर 3, कितने नए मंत्री मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं? ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितने मंत्री हटाए जाएंगे, कितने मंत्रियों की पोस्ट खाली हो रही। जैसे पंकज चौधरी अभी वित्त राज्य मंत्री, अब यूपी बीजेपी अध्यक्ष बन चुके हैं। एक व्यक्ति एक पद के चलते इनकी मंत्री पद वाली सीट खाली हो सकती है, ताकि पूरा फोकस 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में संगठन पर रख सके। रवनीत सिंह बिट्टू रेल राज्य मंत्री हैं। 21 जून को इनका राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। राज्यसभा की नई सीटों के चुनाव में इन्हें जगह नहीं मिली। पंजाब चुनाव में पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू पूरा ध्यान लगा सके, इसलिए हो सकता है कि इनकी मंत्री पद वाली कुर्सी खाली रहेगी। हर्ष मल्होत्रा सहकारिता राज्य मंत्री रहे। मई महीने में इन्हें दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। एक व्यक्ति एक पद की नीति के चलते इनकी मंत्री पद वाली कुर्सी खाली हो सकती है। जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री हैं। 23 जून को ये इस्तीफा दे चुके हैं।
2: पंकज चौधरी, हर्ष मल्होत्रा प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ केंद्र सरकार में भी मंत्री बने रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इससे पहले जी किशन रेड्डी, विजय सापला, सर्वानंद सोनेवाल प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ केंद्र सरकार में मंत्री बने रहे, क्योंकि उन राज्यों में विधानसभा चुनाव थे। क्या इसी फार्मूले के तहत पंकज चौधरी भी मंत्री बने रहेंगे, या फिर एक व्यक्ति एक पद वाला फार्मूला ही चलेगा? कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: 12 साल में मोदी मंत्रिमंडल में 4 बड़े बदलाव देखे गए। नवंबर 2014, जब 4 कैबिनेट, 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 14 राज्य मंत्री के साथ कुल 21 नए मंत्री जुड़ने से मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 45 से बढ़कर 66 हो गई थी। पहले कार्यकाल में दूसरा विस्तार जुलाई 2016 में पीएम ने किया, जब 19 नए चेहरे शामिल किए गए और 5 मंत्रियों को हटाया गया। सितंबर 2017 में पहले कार्यकाल के दौरान तीसरा विस्तार हुआ, छह मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए, नौ नए राज्य मंत्री जोड़े गए, मंत्रियों का प्रमोशन हुआ। जुलाई 2021 में दूसरे कार्यकाल का पहला और अब तक का चौथा विस्तार मोदी मंत्रिमंडल में हुआ, जो अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल रहा, जब 36 नए चेहरे शामिल हुए, 12 सीनियर मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए, 7 तत्कालीन राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। क्या अब रिफॉर्म और परफॉर्म की बात पर फोकस करने वाले प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रिमंडल विस्तार में रिफॉर्म करके परफॉर्म वाले पैमाने पर ध्यान देंगे?
1: नए चेहरों को चुनने, पुरानों की विदाई का कौन सा फॉर्मूला प्रधानमंत्री ने निकाला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सियासी दौर में बीजेपी में मुख्यमंत्री चुनना हो या पार्टी अध्यक्ष का चुनाव हो, चेहरे जो चुने जाते हैं सबको चौंकाते हैं। क्या यही नितिन नवीन की यानी बीजेपी की नेशनल टीम में नजर आएगा, जिसका ऐलान नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले हो सकता है? तो टीम में क्या दिखेगा, इसका एक सैंपल आप यूपी की बीजेपी टीम से समझिए, जहां 47% सीट पिछड़ों को दी गई, 13% पद SC/ST को दिए गए, 20% पद महिलाओं को मिले। बताया जा रहा है कि इसी तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में महिलाओं और युवाओं को तरजीह मिलेगी। चुनावी साल के हिसाब से जहां अगले साल 7 राज्यों में चुनाव है, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, तो इनका भी ध्यान रखा जाएगा।
2: बात 21 मई की है। पीएम मोदी ने मंत्री परिषद की बैठक में सुधारों को लेकर बड़े विस्तार से चर्चा की थी। क्या यही मंत्र अब पीएम मोदी की नई कैबिनेट की टीम में देखने को मिलेगा, जहां पिछड़ों, महिलाओं और युवाओं को और ज्यादा मौके मिलेंगे?
1: खबर है कि मोदी मंत्रिमंडल से 75 साल की उम्र के जो करीब मंत्री हैं, उनमें से कुछ की विदाई की जा सकती है। नए मंत्रियों को शामिल करने में सबसे ज्यादा दो बातों पर फोकस रहना है, पिछड़ा वर्ग और महिला। ये दो फैक्टर मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे अहम बताए जा रहे हैं। चुनावी राज्यों की इंजीनियरिंग पर भी ध्यान दिया जाना है।
2: 2021 में पीएम मोदी ने कैबिनेट का सबसे बड़ा फेरबदल किया था, तब यूपी के 6, गुजरात के 3 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिली थी, क्योंकि इन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव थे। इस बार भी मंत्रिमंडल विस्तार में इन राज्यों को ज्यादा से ज्यादा जगह मिलेगी, क्योंकि अगले साल यूपी, पंजाब, हिमाचल, गुजरात, गोवा, मणिपुर जैसे राज्यों के अंदर जो है वो विधानसभा चुनाव है।
1: अब सवाल है कि परफॉर्मेंस पर खुद फोकस करने वाले प्रधानमंत्री किस पर परफॉर्मेंस के नजरिए से नजरें टेढ़ी करेंगे और किस पर नए परफॉर्मेंस के लिए भरोसा करेंगे। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: अगर मौजूदा सरकार का मंत्रिमंडल अभी देखें तो प्रधानमंत्री 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, 36 राज्य मंत्री यानी कुल 72 भारत सरकार में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1)(a) के तहत यह नियम लागू होता है। वर्तमान में लोकसभा की कुल निर्वाचित सीटें 543 हैं, जिसके अनुसार केंद्र सरकार में अधिकतम 81 मंत्री हो सकते हैं, यानी 9 मंत्री पद अभी खाली हैं। जॉर्ज कुरियन इस्तीफा दे चुके हैं, यानी 10 मंत्री पद तो साफ साफ खाली हैं। कुछ मंत्री की छुट्टी उनके खराब परफॉर्मेंस की वजह से हो सकती है। 2 मंत्री यूपी और दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं, तो एक व्यक्ति एक पद वाले फॉर्मूले से हो सकता है कि उनकी सीट भी खाली हो, हालांकि यह कोई निश्चित बात नहीं है। अब इन सबके बीच जवाब इस बात का खोजा जा रहा है कि जो साथी दल पुराने हैं और जो अब बागी समर्थक बनकर आए हैं, इनमें से कितने लोगों को मंत्री पद दिया जा सकता है।
3: नागरिक देवो भव, ये केवल वाक्य नहीं है, यह हमारी कार्य संस्कृति है। यहां चलने वाली हर फाइल, यहां बिताया गया हर क्षण 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। हम यहां जिम्मेदारी निभाने आए हैं।
1: सेवा तीर्थ से जो बात प्रधानमंत्री ने फरवरी महीने में कही, क्या उसी को पालन कराने वाला मंत्रिमंडल विस्तार जल्द नजर आ सकता है? और तब सवाल आता है, पुराने सहयोगियों के पद ज्यादा बढ़ेंगे या नए समर्थक सांसदों के? जो बागी सांसद समर्थन कर चुके हैं उनको कितना मंत्री पद मिलेगा? इन दो सवालों के साथ सबसे पहले ये वीडियो याद आता है जब ममता बनर्जी के पार्टी के 20 बागी लोकसभा सांसद स्पीकर से मिलकर बताते हैं कि वो NCPI नाम की पार्टी में शामिल हो चुके हैं और देश के विकास में योगदान के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन करते हैं।
4: हमारा जो AITC के सांसद थे उनमें से 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद हैं हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके NDA के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में।
1: TMC के बागी सांसद 20 हैं जिनकी NCPI इस वक्त NDA को समर्थन करने वाली सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बन चुकी है, क्योंकि इनके सांसद नीतीश और नायडू की पार्टी से भी ज्यादा हैं। क्या इन बागी सांसदों को मंत्री पद मिलेगा, और अगर हाँ तो वो किसको? काकोली घोष, सुदीप बंदोपाध्याय, शताब्दी रॉय, माला रॉय, यूसुफ पठान, अरूप चक्रवर्ती या फिर बागी सांसद में से कोई और? लेकिन सवाल तो यह है कि इनमें से क्या कोई एक बड़ा नेता है जो इन सब का नेतृत्व करते हुए मंत्री पद हासिल कर सके?
2: सबकी नजर इस बात पर है कि नए समर्थन देने वाले दल और पुराने सहयोगी दलों में किसकी संख्या ज्यादा मंत्री परिषद में होगी। TMC के 20 बागी सांसदों ने NCPI में विलय कर स्पीकर को समर्थन पत्र भले ही दे दिया हो, लेकिन स्पीकर का फैसला आना अभी बाकी है। ममता बनर्जी के 20 बागी सांसदों ने एक छतरी के नीचे आकर NDA को समर्थन तो दे दिया है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि इनमें नेता कौन है।
1: तो क्या लीडरशिप साफ ना होने वाला सियासी संकट केजरीवाल का साथ छोड़कर राज्यसभा में बगावत करके BJP में शामिल हुए राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों पर भी रहेगा?
5: आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें।
1: लेकिन जो सांसद राघव चड्ढा के साथ टूट कर आए उनको लेकर भी प्रश्न यही है कि इनका लीडर कौन है, कौन बड़ा है जिसे जगह मंत्रिमंडल में अगर देनी हुई तो दे दी जाएगी।
2: स्वाति मालीवाल ने राघव चड्ढा के साथ आए सांसदों से पहले ही अपनी लाइन तय कर ली थी। ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि राघव चड्ढा ही सबके नेता हैं। अब देखना यह है कि केजरीवाल का पाला बदलने वालों में किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। ये सवाल अभी भी कायम रहने वाला है।
1: इस बीच 6 चेहरे और देख लीजिए जो जून के महीने में पलटी मार चुके हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हुए, जिनकी पार्टी की ताकत बढ़ने पर मुहर खुद गृह मंत्री अमित शाह तक लगा चुके हैं।
6: पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है।
1: खुद बगावत करके सत्ता मजबूत पाने वाले एकनाथ शिंदे की ताकत को और बागियों ने बढ़ा दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में क्या शिंदे के खाते में नए मंत्री पद वाली ताकत बढ़ेगी?
2: शिंदे शिवसेना के अब 13 सांसद हो चुके हैं जो JDU से ज्यादा हैं। मंत्री परिषद में JDU के कोटे से एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री है। सवाल यह है कि शिंदे की पार्टी का कोटा क्या बढ़ाया जाएगा? अगर बढ़ाया जाएगा तो पुराने सांसदों में से क्या किसी को जगह मिलेगी, या फिर नए बागी जो सांसद शिंदे ग्रुप में शामिल हुए हैं उनको जगह मिलेगी? इस पर अभी धर्म संकट बना हुआ है।
1: NDA के बड़े सहयोगी दल का मंत्रिमंडल में अभी हिस्सा देखें तो JDU से मंत्री 2 हैं, एक कैबिनेट और एक राज्य। TDP से मंत्री 2 हैं, एक कैबिनेट और एक राज्य। शिवसेना से केवल एक मंत्री है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो क्या पुराने सहयोगियों की पावर मंत्रिमंडल विस्तार में बढ़ सकती है?
2: TDP और JDU भी चाहेंगे कि कैबिनेट विस्तार में मंत्रिपरिषद में उनका कोटा बढ़े।
7: अजीत पवार की पार्टी भी चाहती है कि मंत्री परिषद में उनको जगह मिले। इन सभी सवालों को लेकर चर्चा चल रही है। चुनौती ये है कि पुराने साथियों को ज्यादा मौका दिया जाए या फिर नए साथियों को।
1: अब तक मोदी सरकार के दो कार्यकाल में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुए, तब बीजेपी खुद अपने दम पर बहुमत वाली सरकार चलाती आई। सहयोगियों को सम्मान और पद जरूर दिया गया, लेकिन अब की बार एनडीए सरकार का वो मंत्रिमंडल विस्तार है जहां सहयोगियों की सियासी ताकत भी बीजेपी के लिए जरूरी है। ऐसे मंत्रिमंडल फेरबदल में क्या चुनौती पुराने साथी बनाम नए साथी के बीच सामंजस्य बनाने की भी होगी? हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: मोदी मंत्रिमंडल में कहा जा रहा है कि विस्तार के दौरान नई सोशल इंजीनियरिंग भी देखने को मिल सकती है, जहां महिला, युवा और ओबीसी इन तीन कैटेगरी में खासकर चेहरों को चुनकर जिम्मेदारी दी जा सकती है।
1: मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार कितने युवाओं को मौका मिलने वाला है?
3: हमारे पास आज दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण टैलेंट पूल है, युवा टैलेंट पूल है, जिसके पास सपने भी हैं, संकल्प भी है, सामर्थ्य भी है।
1: जल्द होने वाले मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में अब की बार कितनी महिला सांसद शपथ लेंगी?
3: इस देश की कोई भी महिला, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझे उसे सशक्त करना है।
1: 12 साल में पांचवी बार, तीसरे कार्यकाल में पहली बार, मंत्रिमंडल में होने वाले फेरबदल में पिछड़े वर्ग के कितने सांसद मंत्री बनेंगे?
3: भाजपा का मंत्र है पिछड़ों को प्राथमिकता।
1: लाल किले की प्राचीर से लेकर संसद के दोनों सदनों तक, चुनाव प्रचार के मंच से लेकर हर सभा और सम्मेलन तक प्रधानमंत्री कहते हैं देश में केवल चार जातियां हैं।

0: जाती है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान।
1: तो क्या इसी मंत्र को ध्यान में रखकर इस बार प्रधानमंत्री ने अपनी नई टीम का चाल, चेहरा और चरित्र तय कर लिया है? जहां सबसे पहला सवाल आता है, कितने युवा चेहरे इस बार मोदी मंत्रिमंडल में दिखने वाले हैं?
0: दिनों दिन हमारा देश युवा होता जा रहा है, युवा आबादी वाला देश है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सुयोग है।
1: युवाओं पर फोकस करने वाले प्रधानमंत्री कितने युवा सांसद को मौका मंत्रिमंडल में दे सकते हैं, ये निर्भर करता है कि कितने युवा सांसद संसद में हैं और कितने मंत्री हैं। लोकसभा में अभी 30 साल से कम उम्र के एनडीए के केवल एक सांसद हैं, 31 से 40 साल की उम्र के एनडीए के 15 सांसद हैं और 41 से 50 साल की उम्र के 39 सांसद, जबकि अभी मोदी मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत 72 मंत्रियों की संख्या में 2 मंत्री एनडीए के 30 से 40 साल के हैं, 15 मंत्री 41 से 50 साल के बीच के हैं, यानी 50 साल तक की आयु वाले 24% मंत्री हैं। तो क्या प्रधानमंत्री इस बार युवाओं की संख्या और बढ़ाकर मंत्रिमंडल की औसत आयु को कम करेंगे?
0: युवा शक्ति पर मेरा भरोसा है, युवा शक्ति में सामर्थ्य है और हमारी नीतियां, हमारी रीतियां भी उस युवा सामर्थ्य को और बल देने के लिए है। मैं मेरे देश के नौजवानों को कहना चाहता हूँ, अवसरों की कमी नहीं है, आप जितने अवसर चाहेंगे ये देश आसमान से भी ज्यादा अवसर आपने देने का सामर्थ्य रखता है।
2: हर बार मोदी मंत्रिमंडल की औसत आयु लगातार कम हो रही है। 2014 में मोदी मंत्रिमंडल की औसत आयु 62 वर्ष थी, 2019 में मोदी मंत्रिमंडल की औसत आयु 60 वर्ष थी, 2021 में जब कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हुआ तब ये औसत आयु घटकर 58 वर्ष हो गई, 2024 में ये औसत आयु कायम रही। क्या इस बार कैबिनेट के विस्तार और फेरबदल में मोदी मंत्रिमंडल की औसत आयु कम हो जाएगी, क्योंकि 2047 में विकसित भारत पर काम करने के लिए पीएम मोदी सबको प्रेरित कर रहे हैं और चर्चा ये है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा मौका युवाओं को दिया जाएगा।
3: इसी हफ्ते सरकार ने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री को एक साल का विस्तार देने का फैसला किया है। ये अच्छा काम करने का नतीजा होता है, लेकिन क्या ऐसा ही विस्तार मंत्री भी पाएंगे? जहां कहा जा रहा है कि कुछ मंत्रियों को उनकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से हटाया जा सकता है या विभाग कम हो सकते हैं, और तब सवाल आता है कि खाली पदों पर या जो विभाग अब बचेंगे उनमें महिला सांसदों को मौका मंत्री पद पर मिल सकता है। क्या प्रधानमंत्री खुद अपने ही रिकॉर्ड इस मामले में तोड़ेंगे?
0: वक्त का इंतजार है, हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए।
1: महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी कहा जाता है कि इस वक्त संसद में बिल पास कराने के मकसद से जरूरी 2/3 सांसद तक इकट्ठा करने में जुटे हैं, क्या वो आपकी मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं को इतना मौका दे सकते हैं जिसके बाद विपक्ष के दांव धरे के धरे रह जाएंगे?
0: इस विश्वास के साथ अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को दिल्ली भेजा, उस विश्वास को बढ़ाने वाला एक और काम आपके भाई ने दिल्ली में किया है। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, प्रतिनिधित्व बढ़े, ये मोदी की गारंटी।
1: तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार में महिला कोटे को इस बार बड़ी गारंटी प्रधानमंत्री देने वाले? जहां इस वक्त महिला सांसदों की ताकत देखें तो महिला सांसद लोकसभा में कुल 75 हैं और राज्यसभा में 38, यानी कुल संख्या 113। इनमें बीजेपी की लोकसभा में 31, राज्यसभा में 20, यानी कुल 51 महिला सांसद, एनडीए की 37 लोकसभा में महिला सांसद हैं, 21 राज्यसभा में, कुल ताकत 58 महिला सांसद की। अभी का अगर हम आंकड़ा देखें तो कुल 7 महिला मंत्री मोदी मंत्रिमंडल में हैं, जिनमें 2 कैबिनेट, 5 राज्य मंत्री हैं, बीजेपी की 6 महिला मंत्री हैं, 1 सहयोगी दल अपना दल से अनुप्रिया पटेल मंत्री हैं। 2024 में महिलाओं को मंत्री बनाते वक्त 7 में से 4 मंत्री ऐसी रही जो पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल की गई। मनमोहन सिंह के दोनों कार्यकाल में 10-10 महिला मंत्री थी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में 2021 में सबसे ज्यादा महिला मंत्रियों की संख्या 11 तक पहुंची, जो 2004 के बाद केंद्र में सबसे ज्यादा महिला मंत्री की संख्या रही। इस वक्त निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय है, अन्नपूर्णा देवी के पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, शोभा करंदलाजे जो कर्नाटक से आती है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री है, रक्षा खड से 2024 में मंत्रिमंडल में शामिल दूसरी सबसे युवा मंत्री हैं, युवा मामले और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, धार से सांसद सावित्री ठाकुर महिला बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, गुजरात से लोकसभा सांसद नीमूबेन बभानिया उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। अब इन 7 के साथ और कितने महिला चेहरे मंत्रिमंडल विस्तार में मौका पाएंगे या फिर इन चेहरों में भी कुछ फेर बदल होगी।
2: पीएम मोदी की सोशल इंजीनियरिंग में जातियों को जोड़ना ही नहीं बल्कि महिला, युवा, पिछड़ों और दलितों को साथ लेकर आगे बढ़ना है। संसद के इस मानसून सत्र में सरकार महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन बिल को किसी भी हालत में पास कराना चाहती है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देकर एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: कॉलेज हैज बीन आउट ऑफ रीच फॉर टू मेनी फॉर टू लॉन्ग। WGU चेंजेस दैट। We're an online nonprofit university made for anyone overlooked by traditional colleges. This is education without limits. Learn more at wgu.edu.
7: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
9: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
10: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
11: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
4: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuje, the number one Korean skincare brand, now in India.
3: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
4: Schwarber to right field, and it will leave.
3: From the first pitch of the season to the stretch run,
4: and that's the ball game.
3: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
5: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
6: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
7: हमने तब भी सवाल किया था,
8: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
7: हम आज भी सवाल करते हैं,
8: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
7: ऑपरेशन अग्नि,
8: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
7: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई, खबरदार सिर्फ आज तक पर।
9: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमा कुरैशी। ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
10: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अकल नहीं है। इसमें जो बहुत फेमस सीन है वो जो
11: परमिशन लेनी चाहिए ना,
10: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई।
12: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है, लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी
10: आई फील अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो रुक जाइए।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: विपक्ष का पूरा दांव पिछड़ों और दलितों को लेकर रहता है, जिसके जवाब में लगातार सरकार ये याद कराती है कि उसने मंत्रिमंडल में किस तरह पिछड़े वर्ग के सांसदों को बड़ा मौका और जिम्मेदारी दी है। तो क्या इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में भी पिछड़े वर्ग से नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है?
2: साल 2014 नरेंद्र मोदी के पहले मंत्रिमंडल में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समुदाय से 22 मंत्री शामिल होते हैं। 2019 में नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री ओबीसी वर्ग से बनते हैं। 2024 मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल में ओबीसी मंत्रियों की संख्या 27 है, लेकिन क्या अब की बार पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी और बढ़ने वाली है?
3: विश्वकर्मा योजना का सबसे ज्यादा लाभ एससी एसटी और ओबीसी समाज उठा रहा है। ये शुरुआत बता रही है जो वर्ग आर्थिक प्रगति में पीछे छूट रहा था, वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अहम रोल निभाएगा।
2: मंत्रिमंडल विस्तार जब मोदी सरकार का जल्द हो सकता है, तब सबकी नजरें पिछड़ों की हिस्सेदारी पर लगी है। वजह कई है, जैसे पहली वजह जातिगत जनगणना की मांग करता विपक्ष, जिसकी मांग बाद में सरकार को माननी पड़ी ताकि पिछड़ों की ताकत मजबूती से सरकार के साथ रहे। दूसरी वजह पिछड़ा वर्ग जो नरेंद्र मोदी के नाम पर 2014 से बीजेपी के साथ बड़ी तादाद में एकजुट हुआ, वो 2024 में इंडिया गठबंधन के दांव से कुछ छिटका है। और तीसरी वजह आगे उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव है, जहां पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग को संदेश देना जरूरी है। और तब जहां एनडीए के अभी 26.2% सांसद ओबीसी हैं, मंत्रिमंडल में 38% ओबीसी वर्ग से मंत्री हैं। पूरे मंत्रिमंडल का हिसाब देखें तो ओबीसी अनुसूचित जाति वर्ग को संदेश देना जरूरी है। और तब जहां एनडीए के अभी 26.2% सांसद ओबीसी हैं, मंत्रिमंडल में 38% ओबीसी वर्ग से मंत्री हैं। पूरे मंत्रिमंडल का हिसाब देखें तो ओबीसी 38%, 10 मंत्री एससी के यानी 14% हिस्सेदारी, 5 मंत्री एसटी के 7%, 5 मंत्री अल्पसंख्यक 7% है। तो क्या ओबीसी और एससी वर्ग के मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल विस्तार में बढ़ सकती है?
4: 2014 का मंत्रिमंडल हो या 2019 का मंत्रिमंडल, ओबीसी जातियों का प्रभाव दिखा है। 2024 के मंत्रिमंडल में भी 38% ओबीसी जातियों से आने वाले मंत्री हैं। इस मंत्रिमंडल विस्तार में क्या यह संख्या और बढ़ने वाली है? कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
1: अब सवाल यह आता है कि चुनावी राज्यों से कितने और कौन से चेहरे मंत्रिमंडल में आ सकते हैं? अगले साल पहले उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्य और फिर साल के अंत में गुजरात, हिमाचल प्रदेश में चुनाव होना है। पहले मंत्रिमंडल विस्तार में देखा गया है कि चुनावी राज्यों से प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में बढ़ाया था, तो क्या इस बार भी यही होगा?
3: चरैवेती चरैवेती के मंत्र का जाप करते हुए इस राजनीतिक यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव देखते हुए एक दिन ये पड़ाव भी आएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था।
2: चरैवेती चरैवेती यानी चलते रहो आगे बढ़ते रहो, इस मंत्र पर चलकर देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर इतिहास रचने वाले नरेंद्र मोदी क्या इसी मंत्र के आधार पर मंत्रिमंडल विस्तार भी करेंगे? अगर हाँ तो सबकी नजर इस बात पर है कि किस राज्य से कितने मंत्री धीरे धीरे बढ़ेंगे या घटेंगे। क्या चुनावी राज्यों का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में ज्यादा बढ़ने वाला है? मोदी सरकार में इस समय देखें तो उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री मोदी को मिलाकर 11 लोग मंत्रिमंडल में हैं, बिहार से 8, गुजरात से 6, महाराष्ट्र से 6, मध्य प्रदेश से 7, कर्नाटक से 5, राजस्थान से 5, हरियाणा से 3, आंध्र प्रदेश से 3, ओडिशा से 3, असम से 2, झारखंड से 2, पश्चिम बंगाल से 2, तेलंगाना से 2, गोवा से 1, जम्मू कश्मीर से 1, केरल, उत्तराखंड, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ से 1-1 मंत्री हैं। अब सबकी नजर उत्तर प्रदेश पर लगी है, जहां 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है, जहां से खुद सांसद प्रधानमंत्री हैं। क्या इस बार उत्तर प्रदेश का मोदी मंत्रिमंडल में दबदबा और बढ़ सकता है, ताकि यूपी से मंत्री बनाकर विधानसभा चुनाव में पार्टी एक्शन मोड में दिखे? इस सवाल की वजह 2021 का मंत्रिमंडल विस्तार है, जब 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले हुए मोदी मंत्रिमंडल के फेरबदल में अगर देश से कुल 36 नए मंत्री बने तो अकेले उत्तर प्रदेश से 7 नए मंत्री बने थे। तब 2021 के मंत्रिमंडल फेरबदल में उत्तर प्रदेश से मंत्री बनने वालों की संख्या 16 तक पहुंच गई थी। अभी यूपी से कुल 11 मंत्री हैं, जिसमें पीएम भी शामिल है, तो क्या ये संख्या अब की भी बढ़ सकती है?
5: 2014 और 2019 में मोदी मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश से 9 मंत्री रहे हैं। 2024 में उत्तर प्रदेश के सांसदों की संख्या भले ही घट गई हो, लेकिन मोदी मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कम नहीं हुआ। 2021 के कैबिनेट विस्तार को देखें तो विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। वहीं गुजरात, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर से भी नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है।
2: उत्तर प्रदेश से आने वाले सभी मंत्रियों को जाति वर्ग में देखें तो ओबीसी 4, ठाकुर 2, ब्राह्मण 1, जाट 1, दलित 2 और सिख 1। इनमें से पंकज चौधरी चूंकि यूपी बीजेपी अध्यक्ष बन चुके हैं, तो एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले से हो सकता है इनकी जगह नया चेहरा शामिल हो। ब्राह्मण और पिछड़े दलित की संख्या भी यूपी से क्या बढ़ सकती है?
3: पिछड़ों को प्राथमिकता, जिनकी किसी ने सूद नहीं ली, हमने उनकी साधना की है। जिनको किसी ने पूछा नहीं, मोदी ने उन्हें पूजा है।
2: 2022 के चुनाव से पहले 2021 के मंत्रिमंडल विस्तार में गुजरात से आने वाले 2 मंत्री का प्रमोशन हुआ था। 2 नए मंत्री गुजरात से आने वाले नए चेहरे बने थे। इसी तरह 2022 के चुनाव से पहले 2021 के मंत्रिमंडल विस्तार में हिमाचल प्रदेश से आने वाले मंत्री अनुराग ठाकुर का प्रमोशन हुआ था। पंजाब से आने वाले हरदीप सिंह पुरी का प्रमोशन हुआ था। मणिपुर तक से एक नए चेहरे के तौर पर राज्य मंत्री का पद दिया गया था।
4: चुनावी राज्यों के अलावा चर्चा ये भी है कि रवनीश सिंह बिट्टू का कार्यकाल खत्म होने और हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाने के बाद अगर इन्हें कैबिनेट से हटाया जाता है तो पंजाब और दिल्ली से नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है।
2: पंजाब में चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है। यहाँ बीजेपी का अपना कोई लोकसभा सांसद नहीं, हालांकि पंजाब से आने वाले आम आदमी पार्टी के 6 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो क्या विधानसभा चुनाव को देखते हुए इनमें से किसी को मंत्री पद दिया जा सकता है?
6: हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें।
2: पश्चिम बंगाल से अभी 2 मंत्री मोदी मंत्रिमंडल में हैं, दोनों राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री 1 भी नहीं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की ऐतिहासिक जीत और टीएमसी के बागी सांसदों के समर्थन के बाद बंगाल का वेटेज क्या मंत्रिमंडल में बढ़ सकता है? नीतीश कुमार की पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भी चाहती है कि उनको और जगह मंत्रिमंडल में मिले। अगर ऐसा होता है तो फिर बिहार और आंध्र प्रदेश से भी नए चेहरे मंत्रिमंडल में दिख सकते हैं। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
1: क्या बड़े नौकरशाह अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट को प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में जगह दे सकते हैं? क्योंकि पीएम का भरोसा योग्य नौकरशाहों पर रहा है। वो मानते हैं कि ब्यूरोक्रेट हो या टेक्नोक्रेट, ये योजनाओं को पूरा करने में तेजी लाते हैं, नीतियों के जनता के असर तक को समझते हैं। ऐसे में 2014 से अब तक का विश्लेषण करने के बाद यह दिखता है कि अब की बार भी मोदी मंत्रिमंडल में नौकरशाही से बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं।
2: क्या नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार में फिर किसी भरोसेमंद नौकरशाह को जगह मिलने वाली है?
7: क्या हम हमारे देश के ब्यूरोक्रेसी के दिमाग में चीज नहीं भर सकते हैं? कि आपकी हर चीज की प्रायोरिटी ये रहेगी कि आखिरी गरीब से गरीब आदमी की भलाई में इसमें क्या रहा है तुम्हारे निर्णय में, तुम्हारी पॉलिसी में।
2: क्या मोदी 3.0 के विस्तार में प्रधानमंत्री का विश्वसनीय नौकरशाह पर ट्राइड और टेस्टेड फॉर्मूला फिर आजमाया जाएगा?

0: के लिए काम करना था और तब वहां की गवर्नमेंट मशीनरी जो काम करती थी उस समय के लिए ठीक था, लेकिन वी आर अ इंडिपेंडेंट कंट्री, हम एक स्वतंत्र भारत है, हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है, तो हमें किसके लिए काम करना? हमें चुनी हुई सरकारों के लिए काम नहीं करना है, हमें जनता जनार्दन के लिए काम करना है। मित्रों, ये कहने की हिम्मत मेरे में थी। और मेरे यहां मैं मुलाजिम को कहता हूं, तुम्हारा काम चुनी हुई सरकार की भलाई नहीं है, तुम्हारा काम जनता जनार्दन का है।
1: 2013 में कही बात को प्रधानमंत्री बनने के बाद अमल में नरेंद्र मोदी लाते हैं। जब पहली बार पीएम पद की शपथ लेते हैं तो उनके मंत्रिमंडल में पूर्व गृह सचिव आर के सिंह, पूर्व राजदूत हरदीप सिंह पुरी, पूर्व सेना प्रमुख जनरल वी के सिंह, मुंबई के कमिश्नर रह चुके पूर्व आईपीएस सत्यपाल सिंह, पूर्व आईएएस केजे अल्फोंस, दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री रहते पोलियो उन्मूलन के काम को मजबूती से चलाने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन और ओलंपिक पदक विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ शामिल होते हैं।
2: पीएम मोदी 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसमें जमीनी राजनेताओं के साथ साथ पूर्व नौकरशाहों, पूर्व सैन्य अधिकारियों और प्रोफेशनल टेक्नोक्रेट्स की क्या उपयोगिता है, इस बात को भली भांति जानते हैं। इसीलिए राजनेताओं के साथ साथ पीएम मोदी ने पूर्व नौकरशाहों, पूर्व सैन्य अधिकारियों और प्रोफेशनल टेक्नोक्रेट्स को उनके अनुभव के आधार पर मंत्रिमंडल में शामिल किया है या सरकार में अन्य बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं।
1: 2021 में जब मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ तो पूर्व आईएएस अश्विनी वैष्णव को सीधे रेल और संचार जैसा बड़ा मंत्रालय दिया गया। आरसीपी सिंह जो आईएएस रहे उनको मौका दिया गया। इसके अलावा विश्वेश्वर टुडू जो ओडिशा के पूर्व वरिष्ठ सरकारी इंजीनियर रहे उन्हें मंत्री बनाया गया। देवू सिंह चौहान जो ऑल इंडिया रेडियो के पूर्व इंजीनियर रहे उन्हें संचार राज्य मंत्री बनाया गया। अभी मौजूदा 2024 की सरकार में तीसरे कार्यकाल में एस जयशंकर फिर से विदेश मंत्री बने तो हरदीप सिंह पुरी पूर्व आईएफएस पेट्रोलियम मंत्री बने। अश्विनी वैष्णव रेल सूचना प्रसारण आईटी मंत्रालय संभाल रहे हैं। कुल 7 नौकरशाह भी मंत्रिमंडल में, वकील की डिग्री वाले 13 मंत्री हैं, डॉक्टर 6, इंजीनियर 5, पीएचडी धारक 7, एमबीए डिग्री धारक 3। जबकि जो सांसद हैं इनकी शैक्षिक योग्यता देखें तो लोकसभा में बीजेपी के 5वीं पास 1, 8वीं पास 3, 10वीं पास 8, 12वीं पास 32, ग्रेजुएट 64, ग्रेजुएट प्रोफेशनल 40, पोस्ट ग्रेजुएट 69, डॉक्टरेट 15, डिप्लोमाधारी 8 हैं। राज्यसभा में बीजेपी के साक्षर 1, 5वीं पास 2, 8वीं पास 2, 10वीं पास 4, 12वीं पास 10, डिप्लोमा 2, डॉक्टरेट 16, पोस्ट ग्रेजुएट 32, ग्रेजुएट प्रोफेशनल 9 और ग्रेजुएट 29 सांसद हैं। प्रधानमंत्री लगातार अर्थव्यवस्था को गति देने, 2027 के विकसित भारत वाले रोडमैप, रिफॉर्म और परफॉर्म वाले मंत्र पर चलते आए हैं। इसी आधार पर यह चर्चा तेज है कि इस बार भी कुछ ऐसे विश्वस्त नौकरशाह या फिर एक्सपर्ट चेहरों को मोदी मंत्रिमंडल में सीट मिल सकती है जिन्होंने अपने कामकाज से पहले ही योग्यता साबित की है।
2: चौंकिया गया नहीं, इस बार भी कैबिनेट विस्तार में पूर्व नौकरशाहों और प्रोफेशनल टेक्नोक्रेट्स को मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए, क्योंकि राजनीति किसी के लिए भी अछूत ही नहीं है। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
3: हमारी इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
4: और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान के बालोतरा, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं।
5: इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं। भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है। साथियों, जब सार्वजनिक तौर पर कुछ ताकतें अफवाह और आशंका फैलाने में व्यस्त थी।

तब किस स्केल पर दिन रात काम हो रहा था, किस तरह स्थिति को संभाला जा रहा था, वो मेहनत, वो प्रयास, वो धैर्य नीतिगत स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर उठाए गए एक एक संवेदनशील कदम कभी न कभी इतिहास लिखेगा, ये सब अभूतपूर्व है। मैं एक उदाहरण देता हूं, रसोई गैस यानी एलपीजी के विषय में हम सब जानते हैं हमारी जरूरतों की करीब 60% एलपीजी अन्य देशों से आयात की जाती थी और इसमें से भी 90% एलपीजी गल्फ देशों से आ रही थी, हॉर्मुज से होकर के आ रही थी और अचानक से युद्ध के हालातों ने उस सप्लाई को लगभग बंद कर दिया। आप अंदाज लगा सकते हैं हमारे देश में कितना बड़ा हाहाकार मचने जा रहा था, लेकिन राजस्थान की इस धरती ने हमें चुनौतियों को भी चैलेंज देना सिखाया है और इसलिए हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरीज के सामर्थ्य पर फोकस किया, औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया। जिन रिफाइनरीज ने पहले कभी एलपीजी नहीं बनाया था उन्हें भी इसके लिए कन्फिगर किया गया। साथियों, रसोई गैस की डिमांड का पूरा लोड एलपीजी पर न पड़े, सरकार ने इसका भी ध्यान रखा। पीएनजी कनेक्शन यानी पाइप से रसोई गैस के कनेक्शन बढ़ाने का अभियान चलाया गया। बहुत ही कम समय में भारत ने करीब 11 लाख से ज्यादा घरों को गैस का पीएनजी कनेक्शन से जोड़ दिया। भाइयों बहनों, हमने एक और सप्लाई को सुनिश्चित किया। दूसरी ओर घरेलू उपभोक्ताओं पर बहुत बोझ भी नहीं पड़ने दिया। जो हालात थे उनमें घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 2,000 रुपये तक जा सकती थी। बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट यही आकलन कर रहे थे, लेकिन हमारे यहां अभी भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर 950 रुपये से भी कम में दिया जा रहा है। गरीबों को तो उज्ज्वला सिलेंडर 650 के भी भीतर पड़ रहा है। अब से 2 दिन पहले सरकार ने कमर्शियल गैस की कीमतों में भी बहुत बड़ी कटौती कर दी है। ये दिखाता है कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशीलता से काम कर रही है। साथियों, युद्ध की वजह से डीजल पेट्रोल पर आया संकट भी बहुत बड़ा था।
हमारे देश में तेल के बड़े बड़े कुएं नहीं हैं। जब ये संकट बढ़ा तो क्रूड ऑयल की कीमतें $70 प्रति बैरल से $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। आयात के रास्ते भी बंद थे। दुनिया के कई देशों में डीजल पेट्रोल की कीमतों में 40 से 50 प्रतिशत का इजाफा हो गया। कई देशों में तो डीजल पेट्रोल कोटे के आधार पर मिलने लगा था, लेकिन भारत में एक दिन भी ऐसे हालात नहीं आए। अफवाहें बहुत फैलाई गई, लोगों को डराया गया, भड़काया गया, राजनीति के खेल खेले गए, लेकिन जिनके इरादे गलत थे वो सफल नहीं हो पाए। दूर सुदूर इलाकों में भी छोटी मोटी अड़चनों के अलावा सप्लाई की कोई बड़ी चुनौती नहीं आई। अप्रैल से जून के बीच ही अकेले डीजल पेट्रोल में 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा कंपनियों को उठाना पड़ा। यानी एक नई रिफाइनरी बन जाए इतना घाटा सहना पड़ा, और इस घाटे को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकारी खजाने से उठाई गई। हमने प्रति लीटर 10 रुपये की एक्साइज ड्यूटी भी कम की, और बहुत ज्यादा बोझ जनता पर नहीं पड़ने दिया। साथियों, युद्ध के इसी समय में भारत की दूसरे देशों के साथ जो दोस्ती है ना, वो दोस्ती भी बहुत काम आ गई। जब ये संकट शुरू हुआ था उससे पहले भारत 25-26 देशों से ही ईंधन का, ऊर्जा का आयात करता था, लेकिन संकट के समय भारत की डिप्लोमेसी का जलवा दिख गया। दूसरे देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध इस संकट की घड़ी में बहुत काम आए। युद्ध के दौरान ही भारत 40 से ज्यादा देशों से ईंधन मंगाने लगा। भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि हमारे लिए राष्ट्रहित और राष्ट्र के नागरिकों का हित सर्वोपरि है। नागरिक देवो भव, ये हमारा मंत्र है। साथियों, इतनी अप्रत्याशित चुनौती से देश ऐसे ही नहीं उभरा। इसके पीछे हमारी एक दशक से चल रही दूरदर्शी नीतियों की सफलता भी है। आज हम राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन यहां कर रहे हैं। हमने 2017 में इसके लिए एमओयू साइन किया था, लेकिन 2018 से 2023 तक राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही। कांग्रेस के असहयोग के कारण यहां का काम लगभग ठप ही रह गया। लेकिन जैसे ही डबल इंजन सरकार आई, इसका काम तेजी से आगे बढ़ा।
और आज हम इसका लोकार्पण भी कर रहे हैं। और आप तो जानते हैं मेरी कार्यशैली, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका लोकार्पण भी हम ही करते हैं।

0: इसी तरह भारत ने अपनी रिफाइनरी क्षमता को लगातार बढ़ाया है। अमेरिका में पिछले 50 वर्षों में एक भी नई रिफाइनरी नहीं बनी है। यूरोप की रिफाइनरी क्षमता लगातार कम होती गई है, वहीं भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी क्षमता वाला देश बन चुका है। और हम यहां रुकने वाले नहीं है, आने वाले वर्षों में ये क्षमता और भी बढ़ने वाली है। इन्हीं प्रयासों के कारण भारत सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से लड़कर उभरा है। साथियों, दुनिया में युद्ध और अशांति से हमारे किसानों के लिए भी चुनौतियां पैदा होती है। अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस, खाड़ी के देशों का संकट और इसके पहले यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया में खाद का बड़ा संकट भी पैदा हुआ, फर्टिलाइजर के लिए समस्या पैदा हो गई। यूक्रेन युद्ध के बाद एक समय एक यूरिया की बोरी की कीमत 3000 रुपये से भी ऊपर पहुंच गई थी, लेकिन हम अपने किसानों को जो दुनिया के बाजार में 3000 की बोरी थी, हम मेरे देश के किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में देते रहे। और इसके लिए खजाने से लाखों करोड़ रुपए खर्च करने पड़े, सब्सिडी दी गई, आपूर्ति के लिए जो सप्लाई चेन प्रभावित हुई थी भारत ने उसके लिए भी समाधान निकाले। सरकार ने वैकल्प की रास्ते तलाशे, हमने कई देशों में हमारे दूतावासों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी, दूसरे देशों से उर्वरक खरीदने की, खाद खरीदने की पहल की। आयात के साथ साथ हमने घरेलू उत्पादन भी बढ़ाया, उस पर ध्यान केंद्रित किया। और इतना ही नहीं, हमने प्राकृतिक खेती जैसे विकल्पों को भी बढ़ावा दिया और जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ भी सख्ती की। साथियों, इसी तरह हमने हमारे उद्योगों का, एमएसएमईज का भी ध्यान रखा। एमएसएमईज को बढ़ती लागत का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए हम इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का एक नया चरण लेकर आए। इस स्कीम के तहत बैंकों ने एमएसएमईज को 20% तक का अतिरिक्त लोन दिया और सरकार ने एमएसएमईज के इन सभी लोन के लिए 100% गारंटी, और ये मोदी की गारंटी है। इसका बहुत लाभ लघु उद्योगों को मिला, कुटीर उद्योगों को मिला। ऐसे ही अनेक फैसलों का नतीजा है कि आज हमारे छोटे बड़े उद्योग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने निरंतर निर्णय लिए, क्योंकि हमें भारत के सामर्थ्य पर भरोसा था, हमें हमारे देशवासियों की क्षमताओं पर, उनकी सूझबूझ पर हमारा शत प्रतिशत भरोसा था और आज मैं 140 करोड़ देशवासियों का आभार प्रकट करता हूं। मैं देशवासियों को नमन करते हुए धन्यवाद कहता हूं। जिस तरह वो इस मुश्किल समय में देश के साथ मजबूती से खड़े रहे, जिस तरह देशवासियों ने अफवाह, डर और भ्रम फैलाने वालों का सामना किया, देश में अस्थिरता फैलाने की साजिशों को नाकाम किया, देश उसी विश्वास के भरोसे आगे बढ़ पाया है। जो लोग भारत को असफल होते देखना चाह रहे हैं, इसके लिए भविष्यवाणी भी करने लग गए थे, वो जरूर आज निराशा की गर्त में पड़े होंगे। साथियों, आज विकास परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास के साथ ही मुझे यहां एक पेड़ मां के नाम खेजड़ी का पौधा लगाने का सौभाग्य भी मिला है। मैं जानता हूं कि राजस्थान में खेजड़ी का कितना महत्व है। बढ़ते रेगिस्तान को रोकने में इसकी बहुत सार्थक भूमिका रही है, इसलिए ये वृक्षारोपण हमारी कार्य संस्कृति का उदाहरण भी है। हमें प्रगति की नई ऊंचाइयों को भी छूना है और हमें पर्यावरण का संरक्षण भी करना है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ऊर्जा के दूसरे स्रोतों पर भी काम कर रही है, खासकर राजस्थान पर सूर्य देवता की कुछ ज्यादा ही कृपा है, इसलिए यहां विश्व स्तरीय सोलर पार्क बनाने का काम चल रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भी राजस्थान में 1.5 लाख से ज्यादा घरों को सोलर से जोड़ा जा चुका है। पीएम कुसुम योजना के तहत भी राजस्थान में किसानों को 65,000 से ज्यादा सोलर पंप भी दिए गए हैं। साथियों, कठिन से कठिन लगने वाले संकल्प भी सिद्ध हो जाते हैं अगर उनके पीछे की नीयत साफ हो। यही बीजेपी और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा अंतर है। साथियों, राजस्थान में पानी से जुड़ी परेशानियों का समाधान इसका एक और बड़ा उदाहरण है। आप सब जानते हैं कांग्रेस की सरकारों ने कभी राजस्थान के जल संकट को दूर करने के लिए कोई ठोस काम नहीं किया, लेकिन बीजेपी क्षेत्रवाद और बंटवारे की सियासत नहीं करती। बीजेपी राष्ट्र प्रथम की भावना पर चलती है। हमने जब गुजरात में पानी पहुंचाने की योजनाओं पर काम किया था और राजस्थान को पानी देने की बात आई थी, मुझे बराबर यह हिंदुस्तान के हर कोने में एक राज्य दूसरे राज्य से पानी के लिए लंबे अरसे से लड़ाइयां चल रही है। राजस्थान के लोगों को भी लगता था कि पता नहीं गुजरात नर्मदा का पानी देगा कि नहीं देगा, लेकिन हमारा सौभाग्य था कि राजस्थान में भी बीजेपी सरकार, गुजरात में भी बीजेपी सरकार, उस समय मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, यहां बहन वसुंधरा जी यहां मुख्यमंत्री थी, और हम दोनों ने मिलकर बिना कोई संघर्ष, बिना कोई वाद विवाद, बिना कोई आंदोलन, बिना कोई लड़ाई गुजरात से नर्मदा का पानी राजस्थान के साथ साझा किया और राजस्थान के कई गांवों तक मां नर्मदा का पानी पहुंच रहा है। अभी भजनलाल जी बड़े भावुक होकर पानी की इस काम का वर्णन कर रहे थे। भाइयों बहनों, अब जब राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्यों में भाजपा सरकार है तो पहली बार आपसी सहमति से समाधान निकाले गए। अब राजस्थान और हरियाणा सरकार मिलकर शेखावटी तक पानी पहुंचाएंगे। हाल ही में दोनों राज्यों के बीच समझौते पर मोहर भी लग चुकी है। इस समझौते के तहत हथनी कुंड बैराज से पानी राजस्थान लाया जाएगा। इसके लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसका लाभ सीकर, चूरू, झुंझुनू और आसपास के पूरे शेखावटी क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। इस परियोजना पर लगभग 34,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथियों, आने वाले समय में अपर यमुना बेसिन में रेणुका, लखवाड़ और किशाऊ बांधों का निर्माण पूरा होने पर राजस्थान को पानी का और लाभ होगा। गांवों में नल से जल पहुंचाने का काम भी तेजी से आगे बढ़ा है। राम जल सेतु परियोजना भी इसी सोच का परिणाम है। साथ ही राजस्थान में जल संरक्षण के लिए जल संचय जन भागीदारी भी बड़ी भूमिका निभा रही है। देश में इस अभियान के तहत जल संरक्षण के लिए करीब करीब 25 लाख सॉक पिट्स बने हैं। राजस्थान में भी 1.25 लाख से ज्यादा सॉक पिट्स बनाए गए हैं। इससे पानी संरक्षित हो रहा है, ग्राउंड वॉटर का स्तर सुधर रहा है। मैं इन प्रयासों के लिए केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों को और शेखावटी क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जब देश कोई संकल्प लेता है, कोई लक्ष्य बनाता है, तो राजस्थान उसके केंद्र में होता है। आज राजस्थान में तेज गति से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो रहा है, नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज जयपुर मेट्रो फेज टू की आधारशिला और जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन, ये राजस्थान के विकास को और गति देंगे और नई उड़ान देंगे। जयपुर में फेज टू पूरा होने के बाद जयपुर का कुल मेट्रो नेटवर्क 50 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा। पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण मेट्रो नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को आसानी तो होगी, पर्यटकों के लिए सुविधा भी बढ़ेगी। साथियों, आने वाले समय में हमें विकास के और भी नए आयाम छूने हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप सब इसी तरह डबल इंजन सरकार को आशीर्वाद देते रहेंगे। हम साथ मिलकर राजस्थान के नए भविष्य का निर्माण करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर राजस्थान रिफाइनरी के लिए, अन्य विकास कार्यों के लिए देशवासियों को, राजस्थान वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों मिट्टी ऊपर करके राजस्थान की ताकत नजर आए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। विपक्ष पर निशाना भी साधा, भारत की ताकत भी बताई और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ ताकतें अफवाह फैलाने के लिए काम कर रही थी, लोगों को डराया गया, राजनीतिक खेल खेले गए, अफवाह भ्रम फैलाने वाले लोगों को लोगों ने नकार दिया है। संकट में भारत ने सही फैसले लिए और ये संकट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बात का जिक्र किया जब वेस्ट एशिया में तनावपूर्ण हालात थे, पेट्रोल एलपीजी की दिक्कत थी, और अब अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे मंदिर चढ़ावे चोरी की। अयोध्या से बद्रीनाथ तक मंदिर में चढ़ावा चोरी से हड़कंप मचा है और इस बीच अयोध्या चढ़ावा चोरी के आरोपित अविनाश शुक्ला से पूछताछ में बहुत चौंकाने वाले खुलासे हुए। अविनाश, टिन्नू यादव, लवकुश, सुभाष, ये सब मिले हुए थे पूछताछ में। अब बहुत स्पष्ट हो गया है कि इन सब की मिलीभगत से ही ये काम होता था। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अविनाश शुक्ला ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। पूछताछ के दौरान आरोपित अविनाश शुक्ला ने कबूल किया कि उसने चोरी की है। पुलिस ने उसको 45 सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिसमें वो चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है और जब पुलिस ने यह सच्चाई उसके सामने रखी तो उसके बाद उसने सब कबूल कर लिया कि कैसे चोरी होती थी। उसने चोरी की और उसने कार खरीदी, उसने घर खरीदा। तो अब आप समझिए अविनाश शुक्ला का कबूलनामा कि सबका हिस्सा बराबर बराबर लगता था, सबका हिस्सा लगता था। अब उसमें टिन्नू यादव भी है, सुभाष भी है, अविनाश भी है, सबका हिस्सा होता था। कभी कभी किसी को ज्यादा मिलता था, कई बार कैमरे के सामने खड़े हो जाना, छुपाना और उसके बाद पैसे चुराना, तो किसी का हिस्सा कभी कभी ज्यादा भी होता था। उसमें इनको कोई दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि मिल बांट के तो सभी खा रहे थे। इन्होंने यह भी कहा, अविनाश शुक्ला ने कहा है कि मैंने चोरी के पैसे से कार खरीदी, जो ब्रीजा कार आपने देखी थी वो चोरी के पैसों से कार यहां पर खरीदी गई। घर भी बनवाया चोरी के पैसे से, वही चोरी के पैसे से जो गरीब माताएं, बहनें, दादी बटुए से निकाल के भगवान रामलीला को चढ़ाती थी। टिन्नू यादव, दबदबा था उसका, जेल जाने का कोई डर नहीं था। क्यों? क्योंकि टिन्नू यादव वहां पर व्यवस्था सब संभाल रहा था। टिन्नू यादव कहता था कुछ नहीं होगा, करो चोरी जितनी करना। टिन्नू का काम निगरानी का था, टिन्नू सुभाष है तो फिर काहे की दिक्कत, इसीलिए इनका हौसला बढ़ता चला गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
3: रामलला के घर हुई डकैती की जांच पुलिस और एसआईटी कर रही है। एसआईटी उन बड़े किरदारों को बेनकाब करने में लगी है जो बंदी प्रबंधन में थे, तो वहीं अयोध्या पुलिस उन आरोपियों से सवाल जवाब कर रही है जो सीधे सीधे चढ़ावे का पैसा दबा लिए। श्रद्धालुओं के चढ़ावे पर हाथ साफ करने वाले आरोपियों के काले कारनामे परत दर परत खुलते जा रहे हैं। पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला से कई ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुनकर राम भक्तों का खून खौल जाए। अयोध्या पुलिस ने पूछताछ के दौरान अविनाश शुक्ला को पिछले 45 दिनों की सीसीटीवी फुटेज दिखाई। जैसे ही उसने खुद को चढ़ावे से पैसे निकालते देखा वो टूट गया और लगातार चोरी करने की बात स्वीकार कर ली। पूछताछ में अविनाश ने बताया कि चोरी की रकम से एक ब्रेजा कार खरीदी गई थी, जी कार उसने अपने भाई के नाम खरीदी। अविनाश का भाई इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ कि कार चढ़ावा चोरी के पैसे से खरीदी गई है। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आते ही अविनाश ने कार को तुरंत प्रतापगढ़ स्थित घर भेज दिया गया। इस मामले में अविनाश के भाई अभिषेक शुक्ला से भी पूछताछ की गई है।
4: ये कार ये पीछे खड़ी है, ये विटारा ब्रीजा कार है, ये बरामदगी हुई है। ये कार है जो अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक के नाम पर दर्ज है और ये गाड़ी आपको दिखाते हैं, ये विटारा फोर्थ इसका ओनर है। यानी कि पुरानी गाड़ी है, सेकंड हैंड खरीदी गई, और ये गाड़ी का आप पीछे से नंबर प्लेट नहीं दिख रहे, लेकिन आगे से हम आपको नंबर प्लेट भी दिखाते हैं। ये नंबर प्लेट है इसकी, ये कैमरा पर्सन दीप दिखा रहे हैं, UP42AP6054। ये गाड़ी है जो बरामद हुई है उस अविनाश शुक्ला से, जिसके पास से पुलिस ने सभी 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सबसे ज्यादा कैश बरामद किया था, 20,39,000 से अधिक का कैश बरामद किया था। और अब जब 13 घंटे की PCR की गई, तो इस PCR में यानी कि पुलिस कस्टडी रिमांड में पूछताछ के बाद अविनाश शुक्ला से यह गाड़ी भी बरामद कर ली गई है।
3: जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, चढ़ावा चोरी गैंग के सभी आरोपी एक दूसरे की गतिविधियों से पूरी तरह वाकिफ थे। कौन कब और कैसे चोरी कर रहा है, इसकी जानकारी सभी को रहती थी। चढ़ावा चोरी के बाद सभी आरोपी नियमित रूप से बैठक करते थे। उस बैठक में चोरी का माल बांटने और आगे का प्लान डिस्कस होता था।
4: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला से 13 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड में जहां एक तरफ पूछताछ की गई, उसको योग केंद्र से लेकर 14 कोसी परिक्रमा के उस मार्ग तक लेकर जाया गया, जहां पर ये सारे चढ़ावा चोरी आरोपी अविनाश शुक्ला से 13 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड में जहां एक तरफ पूछताछ की गई, उसको योग केंद्र से लेकर 14 कोसी परिक्रमा के उस मार्ग तक लेकर जाया गया, जहां पर ये सारे चढ़ावा चोरी के आरोपी मिलकर पैसों के बंदरबांट करते थे।
3: इन बैठकों में अनुकल्प मिश्रा, लोकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा समेत 6 आरोपी शामिल होते थे। जांच में ये भी सामने आया है कि बाद में टिन्नू यादव का भतीजा भी इन बैठकों में शामिल होने लगा था। मई के आखिरी सप्ताह में मामला खुलने से ठीक पहले भी आरोपियों की एक बैठक हुई थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है। पूछताछ में सामने आए ये खुलासे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि चोरी कोई अकेले व्यक्ति की करतूत नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से अंजाम दी जा रही थी। अब पुलिस चोरी की रकम, उससे खरीदी गई संपत्तियों और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जाँच कर रही है। कल करीब 13 घंटे की पूछताछ के बाद अविनाश शुक्ला को अयोध्या जेल भेज दिया गया है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
2: तो देखिए, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, इसी दौरान एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी हम आपको बता दें। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए खुलासे होते जा रहे हैं। तो चढ़ावा चोरी के SIT की जांच में एक और बड़ा खुलासा होता है। प्रतिदिन लगभग 6-8 लाख की चोरी होती थी। आप समझिए यह रकम कितनी ज्यादा होगी। हर दिन अगर 6-8 लाख की चोरी हो रही है, और उसके बाद तो पंचकोसी परिक्रमा होती है, वहां पर एक सुनसान जगह पर जाते हैं, जो चोरी की जाती है उसको ये आपस में बांटते हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम। तो 6-8 लाख रुपए हर दिन चोरी हो रहे थे। SIT ने SBI बैंक के मैनेजर समेत 10 बैंक कर्मियों से पूछताछ की, और उसके बाद बैंक के लेन देन से जुड़े दस्तावेज हिसाब किताब अपने कब्जे में ले लिए। अब जांच की जा रही है। अयोध्या में चोरी का मामला सामने आने से पहले ट्रस्ट के SBI और PNB बैंक खातों में हर दिन 16-18 लाख रुपए जमा हो रहे थे। चोरी का खुलासा होने के बाद अब प्रतिदिन जमा होने वाली राशि बढ़कर 24-26 लाख रुपए तक पहुंच गई है। अब समझिए, 16-18 हो रहे थे, खुलासा हुआ तो अब बढ़ गई वो राशि, 24-26 लाख हो गई, क्योंकि अब इन लोगों की जेब में नहीं जा रहा है पैसा। तो अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और BJP पर हमला बोला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो शातिर सैन लगाकर बोरी भरकर सुरंग के रास्ते बहुत दूर निकल गए हैं, वो असली पापी याद रखें, जहां भूमिगत मार्ग खत्म होगा उस अगले छोर पर सत्य उनके पापों की सजा देने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। अखिलेश यादव ने कहा, इन्हें ना अयोध्या क्षमा करेगा, ना देश, ना वो परम प्रभु जिसके खजाने को इन्होंने बेरहमी, बेदर्दी और बेशर्मी से लूटा है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने चढ़ावा चोरी पर एक गाना भी जारी किया, जिसकी थीम है, क्या राम फिर से चले गए वनवास।

0: भाई कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसको लेकर बीजेपी आरएसएस को घेरा और उन्होंने दावा किया कि ये चोरी बीजेपी आरएसएस वालों ने ही की है।
1: चंदा चोरी बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं जानते थे इन लोगों को? इन्हीं के तो लोग हैं जो बिठाए गए हैं ट्रस्ट में। और चंदा चोरी तो बिल्कुल साफ हुआ है, हजारों करोड़ का चंदा चोरी हुआ है उत्तर प्रदेश में और अंदर से ही ये सब जानकारी आ रही है। सब आरएसएस के लोग हैं और सब राम का नाम बदनाम किया है, राम के नाम है वोट लिया है, राम के पुजार, जैसे कि प्रमोद तिवारी ने राज्यसभा में बहस के समय कहा था, हम तो राम के पुजारी हैं, आप तो राम के व्यापारी हैं। अभी न केवल ये व्यापारी निकले पर चंदा चोर भी निकले।
0: मामला तूल पकड़ रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आरएसएस का भी बयान आया। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच हो रही है, कार्रवाई होगी, राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
2: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करें। जय श्री राम।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ा दावा किया। ब्रजभूषण ने कहा है कि 4 साल में अयोध्या में यह खेल चल रहा था, शुरुआत से ही राम मंदिर में खेला हो रहा था, इसलिए मैं अयोध्या नहीं जाता था। यह दावा है बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का।
3: जो बोलना है मैं पहले बोल चुका हूं और जब कोई नहीं बोला था संसार में 4 साल पहले बोल चुका हूं और इसीलिए आज तक मैं राम जन्मभूमि दर्शन करने नहीं गया क्योंकि यहां फर्स्ट डे से खेल चल रहा था।
0: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच और सियासत के बीच अब बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे और दान से जुड़ी कथित गड़बड़ियों के आरोपों ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर मामला सामने आया और उसके बाद आरोपों का दौर शुरू हो गया और इसी बीच श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी ने आंतरिक जांच के आदेश दिए। समिति ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
4: बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी गण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस, शो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
5: सवाल उठ रहे हैं कि जो 9 अप्रैल को जो रोस्टर जारी हुआ था, तत्कालीन सीईओ विशाल मिश्रा ने जो रोस्टर मंदिर समिति के लिए जारी किया था, क्योंकि यात्रा के लिए एक मैनेजमेंट टीम बनाई जाती है जिसमें कई लोग अपनी ड्यूटीज निभाते हैं और जो बीकेटीसी का स्टाफ है उसको अलग अलग भूमिका में रखा जाता है। इसी तरीके से जो थाली गणना समिति होती है उसमें प्रमोद नौटियाल नामक व्यक्ति का नाम था जो कि कागजों पर भी अध्यक्ष का निजी सचिव है और उसी पर आरोप लग रहे हैं कि 2 तारीख को सुबह 8:30 के आसपास इन्होंने मंदिर गणना समिति के सदस्य रहते हुए बिना किसी स्वीकृति के पेटी को खोल दिया गया। अब इस पेटी में कितनी चोरी हुई है, कब ये चोरी हुई है, ये जांच का विषय है या फिर ये आरोप बेबुनियाद है ये भी जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल जो मंदिर समिति के जो सीईओ है उनका कहना है कि इस मामले में अभी तक कुछ भी स्पष्ट सामने नहीं आया है, सीसीटीवी का परीक्षण जारी है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सीसीटीवी को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? जब सवाल आस्था का आता है, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ बद्रीनाथ धाम है, तो इसमें सारी चीजें जो हैं वो सबके सामने रखी जाए तो उससे ही पारदर्शिता सामने आएगी। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या सिर्फ प्रमोद नौटियाल इस मामले में आरोपी है या दूसरे आरोपी भी इसमें सामने निकल के आते हैं। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।
0: वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
8: Tune In's got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
9: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
8: to live sports action.
10: To the near side corner, to wrap around, he scores!
8: And your favorite music.
11: You and I start guessing.
8: Tune In has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play Tune In.
12: सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
4: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: हमने तब भी सवाल किया था
7: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
6: हम आज भी सवाल करते हैं
7: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
6: ऑपरेशन अग्नि
7: आज तक के ही स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
6: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार सिर्फ आज तक पर।
8: In association with
9: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
11: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
2: शादी का किचन महक है जहाँ गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
4: 25 सालों से जहाँ टिकी है देश की नजर मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर ये है खबरें सात तक देखते रहिए आज तक
5: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमा कुरैशी ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले
6: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो तुमको बिल्कुल अकल नहीं है इस पे जो बहुत फेमस सीन है वो जो
7: परमिशन लेनी चाहिए ना
6: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई
8: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी
6: आई फील अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है तो रुक जाइए

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: ले चलते हैं आपको यूपी एक्सप्रेस वे, यूपी की हर बड़ी खबर आपको बताते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने कमर कसी है। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नितिन नवीन लखनऊ के दौरे पर हैं। लखनऊ में नितिन नवीन का भव्य स्वागत हुआ, एयरपोर्ट से बीजेपी मुख्यालय तक रोड शो हुआ, दो दिन के यूपी दौरे पर हैं। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे नितिन नवीन, संगठन की रणनीति पर मंथन के साथ तय होगी रणनीति। बीजेपी अध्यक्ष पार्टी पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे, सांसदों और विधायकों से भी मुलाकात करेंगे। बैठक में बूथ सशक्तिकरण, जनसंपर्क और संगठन विस्तार पर मंथन, यूपी चुनाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का नया दाव पेच। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बड़ा खुलासा, पुलिस पूछताछ में अविनाश ने चोरी की रकम सभी आरोपियों में बराबर बांटने की बात कही। एसआईटी की पूछताछ में अविनाश ने कबूली चोरी, अविनाश ने बताया कि चोरी की रकम को उसने कार खरीदी और घर बनवाया, उसने अपने भाई को बड़ी रकम देने की बात कबूली। पूछताछ में अविनाश ने बताया टिन्नू और सुभाष की मिलीभगत से किसी को पकड़े जाने का डर नहीं था। पुलिस पूछताछ में खुलासा, चोरी के बाद सुनसान जगहों पर होती थी मीटिंग, सभी आरोपित मिलकर रचते थे साजिश। जांच में चंपतराय के करीबी टिन्नू यादव की अहम भूमिका सामने आई, आरोपित लंबे समय तक चोरी की साजिश छिपाकर वारदात को देते रहे अंजाम। चढ़ावा चोरी मामले में आज भी जारी रहेगा एसआईटी जांच का दूसरा चरण, जांच अब जमीन खरीद तक पहुंची। एसआईटी ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जमीन खरीद की जांच शुरू की, जमीन खरीद से जुड़े लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। एसआईटी ने कुछ प्रॉपर्टी डीलरों से भी पूछताछ की, टिन्नू यादव के दो भतीजों से भी पूछताछ, सभी से करीब तीन घंटे तक पूछताछ की गई। राम मंदिर के कुछ सुरक्षा कर्मियों से भी एसआईटी की पूछताछ, बैंक कर्मचारियों से भी एसआईटी ने जानकारी जुटाई। पुलिस रिमांड में अविनाश शुक्ला 13 घंटे की पूछताछ के बाद भेजा गया जेल, एसआईटी के हाथ लगे कई अहम सुराग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आरएसएस का पहला बयान, सरकारी वाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा राम भक्तों की भावना को चोट पहुंची, दोषियों को सजा मिले। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का आरएसएस पर पलटवार, बोले आरएसएस ने अपनी छवि साफ करने की कोशिश की, सिर्फ दिखावे के लिए निंदा। जयराम रमेश ने भी आरएसएस के बयान को निराशाजनक बताया, बोले आरएसएस की तरफ से दी गई क्लीन चिट शर्मनाक। चढ़ावा चोरी मामले में विनय कटियार से पीएम मोदी की कोई बात नहीं हुई, सूत्रों से खबर, पहले कटियार ने प्रधानमंत्री से बातचीत का दावा किया था। अयोध्या के संतों ने चंपतराय का इस्तीफा ठुकराने की मांग की, कहा इस ट्रस्ट इसे स्वीकार न करे। राम मंदिर के डाउन काउंटिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव, सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डबल सिक्योरिटी चेक व नया ड्रेस कोड लागू। राम मंदिर डाउन काउंटिंग अब कुर्सी मेज पर नहीं, जमीन पर बैठकर होगी, काउंटिंग हॉल में प्रवेश से पहले दो चरणों की जांच और जूते चप्पल बाहर उतारना होगा। मथुरा में भीषण गर्मी के बाद अचानक हुई बारिश, भारी बरसात के बाद जलमग्न हुई सड़कें। गोरखपुर में मुक्ति पथ पर सरयू नदी में डूबने से बचाई गई पांच जिंदगियां, मोटर बोट पलटने से तुरंत एक्शन में आई रेस्क्यू टीम। मेरठ में भाई ने 16 वर्षीय बहन के सिर में गोली मारी, मौके से फरार हुआ आरोपित गिरफ्तार, पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल तमंचा बरामद किया।

और अब बात मुंबई में बारिश से मचे हाहाकार की। जैसा कि आप तस्वीरें देखकर समझ गए होंगे, बीते चार दिनों से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के चलते मुंबई के इलाकों में पानी भर गया, सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। इस बीच मौसम विभाग और सभी एजेंसियों ने मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जिससे लोगों की मुसीबत अब और बढ़ सकती है। देखिए ना, भिवंडी हो, नाला सुपारा हो, अंधेरी, बांद्रा, पाटकोपर, घाटकोपर, सब जगह ऐसे ही हालात है। भिवंडी की तस्वीर देखिए सबसे पहले आप, लोगों के छाते निकल चुके हैं, दुकानों में पानी घुस गया है, सड़क आपको दिखेगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको लग रहा है कि एक दरिया है और डूब के जाना है। अब ये देखिए, इतना तेज बहाव सड़क पर है कि लोगों का खड़ा होना, पैर जमाना मुश्किल हो रहा है। नाला सुपारा देखिए, नाला सुपारा में भी गाड़ी नहीं निकल पा रही है, ऑटो बैठ गए हैं, इंसान पार करने की कोशिश कर रहा है लेकिन बहाव इतना तेज है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई तालाब हो, कोई झील हो। अब ये एक और तस्वीर नाला सुपारा की है, सब लोग ये कतार में चलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पता नहीं चलता ना मुंबई में कहां पर गड्ढे हैं और अचानक वहां पर गिर जाओ, जान चली जाए, इसीलिए लोग बाग एक कतार में चलने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ पकड़ के लोगों को निकलवा रहे हैं, एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं, क्योंकि बीएमसी से आप उम्मीद नहीं कर सकते। अंधेरी सबवे, साल बदलते रहते हैं, तस्वीरें यहां पर नहीं बदलती हैं। पानी का बहाव इतना तेज होता है यहां पर कि अगर आम इंसान होगा वो तो बह के ना जाने कहां जाएगा। यह अंधेरी सबवे है, बंद कर दिया है और हमेशा ये सबवे बंद हो जाता है, बेहद खतरनाक होता है क्योंकि पानी का बहाव फुल हो गया, बिल्कुल ओवरफ्लो हो रहा है। यह अंधेरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितना तेज बहाव है। और ये सबवे देखिए, अब उत्तर मुंबई विरार, एक तरफ गाड़ियों का जाम, दूसरी तरफ गाड़ियां निकाल नहीं रहे हैं क्योंकि पता नहीं कि आगे क्या होगा, सड़कों पर पूरा पानी भरा हुआ है, इसलिए ये जाम देखिए, हर जगह जाम ही जाम की स्थिति है। बारिश है, मुंबईकरों से कहना है कि अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए वरना जाम में फंस जाएंगे। और बाकी मैन होल जान ले सकते हैं, सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक और तस्वीर आप ये देखिए विरार की, दूर दूर तक आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पर तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की नौबत आ गई है, लोगों को बचाने की नौबत आ गई है और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि अगर बारिश लगातार ऐसी चलती रही तो रेस्क्यू करना पड़ेगा, लोगों को खाने को कुछ नहीं है, करीबन यहाँ पर 400-450 परिवार रहते हैं। अब एक और तस्वीर बांद्रा वेस्ट की देख लीजिए आप वो देख रहे हैं, गाड़ियां बच के निकल रही हैं और वहां पर एक बैरिकेड पड़ा हुआ है। अभी देखिए एक ऑटो वाला रिस्क लेकर दूसरी तरफ घूमने की कोशिश करता है,

सड़कों पर सैलाब है, सबवे लहरों के बीच डूब चुका है। एक बार फिर भारी बारिश के चलते मुंबई में हाल बेहद बुरा है। चाहे अंधेरी हो या नाला सोपारा, वसई या विरार, हर ओर मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा है। लगातार हो रही बारिश ने मुंबई के लोगों का जीवन दुभर कर दिया है। एक एक तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर मॉनसून की बारिश के बीच मुंबई किस तरह की मुसीबत झेल रही है। गाड़ियां पानी के बीच फंसी हुई हैं, कहीं आना जाना मुश्किल है, बारिश का दौर थम नहीं रहा है, सड़कों पर बढ़ता जलस्तर लोगों का संकट बढ़ा रहा है। सबसे पहले भिवंडी इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। तेज बारिश से पूरा बाजार तालाब बन गया है, दुकानों में पानी भर गया है, गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, घुटनों तक पानी में लोग आ जा रहे हैं। किसी तरह जद्दोजहद कर अपनी दुकानों का सामान बचाने की कोशिश में लोग जुटे हुए हैं। अब नाला सोपारा हाईवे का हाल देखिए। सड़कों पर भरे पानी के चलते कई गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, लोगों को कहीं आने जाने में काफी परेशानी हो रही है।

0: यहाँ नजर आ रही हैं। लोग कई समय से यहाँ पर बस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो बस है वो नहीं आ रही है। गाड़ियों की आवाजाही थोड़ी यहाँ धीमी होती हुई नजर आ रही है।
1: वसई इलाके का हाल तो और भी ज्यादा बुरा है। पानी इतना ज्यादा भर गया है कि मानो पूरा इलाका टापू बन गया है। इस बीच बिजली ना होने से करीब 450 परिवारों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।
2: वसई विरार में लगातार चार दिन से जोरदार बारिश हो रही है। कई निचले इलाकों में पानी भर चुका है। फिलहाल इस वक्त में खड़ा हूँ वसई ईस्ट के मिठागढ़ की बस्ती है। यहाँ हम देखेंगे तो ये जो रोड है जहाँ भरा है, इसके नीचे रास्ता है और ये रास्ते से अंदर हम एक से डेढ़ किलोमीटर जाए तो ये नमक की खेती करने वालों की बस्ती है। कुल 120 फैमिलीज वहाँ रहती है, 300 से 400 लोग हैं। हर साल इसी तरह ये रोड जो है पानी के नीचे चला जाता है। ये इन्होंने जानकारी दी जो है कि इनके घर में आसपास कुल कमर के ऊपर तक का पानी भर चुका है। बिजली भी कल से चली गई है और ये बस्ती के आसपास भी ये जो प्लेन इलाका है वहाँ भी ये भी पूरी तरह से भर चुका है। प्रशासन की ओर से इन्हें कोई अभी तक मदद पहुंची नहीं है। फिलहाल इन्हें खाने पीने की चीज़ों की सख्त ज़रूरत है क्योंकि लाइट कल से है नहीं और यही बारिश अगर लगातार चालू रही तो इनके हाल बेहाल हो सकते
1: हैं। इस बीच बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन की ओर से अब तक लोगों तक कोई मदद नहीं पहुंची है, जिससे लोगों पर आई आफत और ज्यादा बढ़ गई है।
3: हालत खराब है कल से लोगों से क्योंकि लाइट भी नहीं है, कल से लाइट भी नहीं है और पानी भी जैसे बढ़ते ही जा रहा है और ऊपर से बारिश भी और ज्यादा ही होते जा रहा है। जैसे कि अभी एक दो घंटा और गिरेगा तो घर में भी घुस सकता है बारिश पानी।
2: लाइट की क्या समस्या है उधर?
3: लाइट तो कल से ही नहीं है, कल से दोपहर से गई है, अभी तक आई ही नहीं है।
2: अभी अंदर कितना पानी है, कितने फैमिलीज अंदर रहती है?
3: फैमिली रहती है 450 फैमिली रहती है और कंबर के ऊपर पानी है।
2: कि कुछ सुबह से कुछ प्रशासन की हेल्प हुई है?
3: कुछ भी नहीं, किसी ने हेल्प करने के लिए फोन भी नहीं किया, कुछ हेल्प आया ही नहीं।
1: बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा, जगह जगह भारी जल भराव है और लोग बेहद परेशान। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच मौसम विभाग ने भी शहर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर प्रशासन ने लोगों को बेहद जरूरी यात्रा करने की सलाह दी है ताकि मौसम की मार किसी की जिंदगी पर संकट न बने। मुंबई में हर साल की यही कहानी है, बारिश हुई और लोगों की जिंदगी आफत के बीच घिर गई। एक बार फिर ऐसी ही तस्वीरें शहर की पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। सैलाब के बीच जिंदगी संकट में घिरी है।
4: मुंबई से प्रवीण नालावड़े के साथ दीपेश त्रिपाठी आज तक।
5: हालात आप समझ गए। मुंबई में जारी भारी बारिश के बीच नालासोपारा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें। नालासोपारा के सुदाम नगर में पानी भरने से कई लोग फंस गए। खबर मिली, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की टीम पहुंची, 25 लोगों को सुरक्षित निकाला, 25 लोगों को रेस्क्यू किया है यहां पर नालासोपारा में। ये बारिश है, खतरनाक बारिश है। देखिए रोड पर बोट चलानी पड़ रही है क्योंकि लोगों को बचाना है। चार दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है मुंबई में। मुंबई की बारिश वैसे ही आप जानते हैं कि कितनी खतरनाक होती है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं लोगों को बचाने के लिए। नालासोपारा आपने देख लिया, पालघर की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं जहां मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर पानी भरने से कई ट्रक फंस गए। देखिए ये हाईवे है मुंबई अहमदाबाद। अब जो बड़े ट्रक निकल रहे हैं उनकी हालत आप देख लीजिए, कुछ लोग तो वहीं बैठ गए खड़े होके, तो गाड़ी नहीं निकल पा रही तो क्या करें। अब ये ट्रक की हालत देखिए, फंस गया ट्रक यहाँ, पहिया आपको कहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि ट्रक तैर रहा है या आधा डूबा हुआ है, इतना पानी यहाँ पर भर चुका है। ट्रक चालक ने सोचा कि ट्रक है बड़ी गाड़ी आसानी से निकल जाएगी, लेकिन गलती कर दी, अब फंस गया। इसी हाईवे पर अगर सीधे जाएंगे तो आप पहुंचेंगे गुजरात, तो सीधे आपको गुजरात लिए चलते हैं जहां मानसून राहत नहीं आफत बनकर बरस रहा है। जूनागढ़ से राजकोट, महसाड़ा, वलसाड़, तेज बारिश ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया। कई शहरों और गांवों में भारी जल भराव है, कहीं सड़कें तालाब बन गई तो कहीं तेज बहाव में वाहन फंस गए। जूनागढ़ में तो एनडीआरएफ को आना पड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए, 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है।

0: ये तस्वीरें गुजरात की हैं, जहां तक नजर घुमाइए वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं, हाईवे तालाब में तब्दील हो गए हैं और लगातार बारिश ने जनजीवन की रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया है। ये तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ की हैं, जहां मानसून अब मेहरबान कम और आफत ज्यादा बनता दिख रहा है। तेज बारिश के बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हैं और सामान्य जीवन पूरी तरह प्रभावित है। मानसूनी आफत इस कदर बरसी कि तेज बहाव के बीच वाहन समेत कई लोग फंस गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कुल 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं जिला प्रशासन की ओर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और लोगों से अपील की गई है कि वो सतर्क रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें।
1: सभी सिटीजन से हमारी रिक्वेस्ट है कि जब तक कोई एब्सोल्यूट जरूरत ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो हमारे कंट्रोल रूम पे कॉल करें, हमारी टीम आपको हेल्प करने के लिए तुरंत आ जाएगी।
0: अब चलते हैं गुजरात के मेहसाणा, जहां पूरी रात हुई मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया है। कई इलाकों में सड़कों पर घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया है, जिससे आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है और कई जगह वाहन बीच पानी में फंसे नजर आए। वहीं वलसाड में भी बारिश का असर साफ देखने को मिल रहा है, जहां जलभराव के बीच सड़क पर एक कार फंस गई और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी बीच राजकोट में भी आसमानी आफत इस कदर बरसी कि पूरा शहर जलमग्न हो गया। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें और गड्ढे एक जैसे हो गए हैं और कई इलाकों में हालात बेहद खराब बने हुए हैं। अगली तस्वीर अमरेली जिले की है, जहां पिछले 3-4 दिनों से लगातार हो रही बेमौसम बारिश ने पूरा इलाका पानी पानी कर दिया है। जलभराव के बीच लोग घुटनों तक पानी में आने जाने को मजबूर हैं। बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज तक ब्यूरो।
2: ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र में यह हाल है, गुजरात में यह हाल है, पहाड़ी राज्य भी ऐसे ही हैं। बारिश का दौर वहां भी जारी है, कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ और इसके चलते संकट बढ़ रहा है।

0: रुद्रप्रयाग, नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। किनारे की घाट पूरी तरह टूट चुके हैं और बहाव आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले रहा है। बीते कुछ दिनों से उत्तराखंड में हो रही बारिश का असर अब यहाँ की नदियों पर दिखने लगा है। ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी की है, जिसका बढ़ते जलस्तर से आसपास के इलाकों में संकट बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। कई जगहों से लैंडस्लाइड की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ की है, जहां भारी बारिश के बाद मलबे ने कई मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। कई मकान पूरी तरह बर्बाद हो गए। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भी बारिश का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में पहाड़ से पत्थर गिरते हुए सड़कों तक आ गए और फिर खाई में जा गिरे। गनीमत रही कि इस दौरान यहां से कोई गाड़ी नहीं गुजरी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था।
1: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: If you love podcasts, you never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the three dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
5: देखिए, हम लोग तो तृणमूल कांग्रेस है, और अगर कोई तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस है तो वहां पे तो हम लोग जा ही सकते हैं। इस पे तो कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। तो हम लोग तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस में गए थे और जाके वहां पे हम लोग बैठे। तो इस पे कोई क्या आरोप लगा रहा है उस पे ध्यान हम लोग नहीं देंगे। हम लोगों को विधानसभा में प्रिंसिपल ऑपोजिशन का स्वीकृति मिल चुका है। हम ही लोग विधानसभा में प्रिंसिपल ऑपोजिशन है। हम लोग तृणमूल कांग्रेस है और तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस के साथ हम लोग का इमोशन जुड़ा हुआ है।
6: जो एक्सपेल्ड मेंबर्स है उसका कोई राइट नहीं है पार्टी ऑफिस में घुसने का। तो हम लोग पुलिस के रिक्वेस्ट किया था, मदन मित्र, वैश्यनाथ चटर्जी, मृत्युंजय पाल और पूरा हमारा जो तृणमूल कांग्रेस लीडर्स वर्कर्स जो है, हम लोग कोई इरेस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं किया। जो ताला वो लोग दिया है वो हम लोग तोड़ सकता था, लेकिन एक भी इल्लीगल इरेस्पॉन्सिबल काम उस लोग किया है, हम लोग नहीं किया है। हम लोग पुलिस से रिक्वेस्ट किए थे, लेकिन पुलिस उनका फॉलो अप टीम जैसा बिहेव कर रहे थे।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
0: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
1: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
2: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
3: वो क्लेम तो झूठा है, वो तो हम लोग साबित कर देगा। उनका क्लेम का माफिक उन लोगों का ऑफिस तो है राजधानी में, तो उधर में क्या है? अरे कुछ गुंडा मिलकर एक तो पार्टी बनाया, तो हमको मान लेना होगा। चोर गुंडा सब लोग मान देता, और वही चोर गुंडा सब सुगंध अधिकारी का वो नजदीक का आदमी है, तो हमको मान लेना है, मान लेना होगा। क्या समझते है ये कलकत्ता सुगंध अधिकारी? ये लोग सब फाइनल है, और कोई कुछ नहीं है देश में, लॉ बोलते कुछ नहीं है। अरे आप लोग सुगंध मुख्यमंत्री का नजदीक आदमी हो नहीं सकता है कि लॉ से आप लोग बहुत दूर है, बहुत दूर है। खेल आपने शुरू किया है, खत्म हम लोग करेंगे, देख लेना।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: कि हम इस समय तेहरान में मौजूद है और हर बदलते घटनाक्रम की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।
1: मैं गीता मोहन सीधे तेहरान से आज तक के लिए।
2: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
3: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.

0: महाराष्ट्र की सियासत में ऑपरेशन टाइगर 2.0 के बाद क्या अब शरद पवार की पार्टी में भी दूसरे राउंड की टूट होने वाली है? सूत्रों के हवाले से खबर है कि लोकसभा में दो तिहाई बहुमत जुटाने में लगी एनडीए का ध्यान एनसीपी शरद पवार के 8 लोकसभा सांसदों पर है। ये संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि कांग्रेस एनसीपी विलय की अटकलों से सांसदों में 2029 को लेकर बेचैनी है। हालांकि बीजेपी के सूत्र अपने दल में इनका विलय नहीं चाहते, न ही मंत्री पद का भरोसा देना चाहते हैं। फिर भी महाराष्ट्र में हर दल सहमा हुआ है क्योंकि टूट का डर सिर्फ दलों को ही नहीं गठबंधन को भी है। ऊपर से पवार उद्धव कांग्रेस वाली अखाड़ी की 24 जून वाली बैठक में 23 विधायकों की गैर मौजूदगी ने अफवाहें और बढ़ा दी हैं। इस बैठक में खुद शरद पवार, जयंत पाटिल, रोहित पवार, नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार सहित प्रमुख नेता नहीं थे। इस बैठक के बाद उद्धव ने एकजुटता को लेकर नाराजगी भी जता दी थी, लेकिन जब दल के अंदर दरारें पड़ रही हैं, तो गठबंधन की फिक्र तो दूर की बात है। हाल तो ये है कि एक दिन पहले ही सचिन अहिर ने उद्धव का साथ छोड़कर डिप्टी चेयरमैन का पद चुन लिया। ऐसे में शरद पवार के सहयोगी ही कांग्रेस में विलय की सलाह दे रहे हैं। हालांकि शरद पवार ने साफ मना किया है कि न तो पार्टी कांग्रेस में मिलेगी, न ही उनके सांसद कहीं जा रहे हैं। फिलहाल शरद पवार की पार्टी में 8 सांसद और 10 विधायक हैं। दो तिहाई टूट के लिए 5 सांसद और 7 विधायकों की दरकार होगी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर युद्ध काल में देश को डराने का लगाया आरोप। राजस्थान के बालोतरा में बोले, संकट काल में राष्ट्र हित को आगे रखकर फैसला, देश में नहीं डाला बोझ। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार यूपी के दौरे पर नितिन नवीन। मिशन 2027 को लेकर सरकार से पार्टी तक मैराथन बैठक, जीत की हैट्रिक लगाने पर मंथन। पंजाब कांग्रेस में खींचतान के बीच प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजे वोटिंग का बैन। सीएम की रेस में मैं नहीं, चन्नी के शक्ति प्रदर्शन पर बोले, कुछ दिन में सब हो जाएगा ठीक। राम मंदिर से रोज 6 से 8 लाख की चोरी होती थी। रामलला के आभूषण को गलाने का भी एसआईटी को शक। आरोपी अविनाश का कबूलनामा, सीक्रेट मीटिंग करके चोरी बांटने की रकम की प्लानिंग करते थे। और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामिनेई की अंतिम यात्रा में लाखों का हुजूम, आंसुओं में डूबा पूरा ईरान। श्रद्धांजलि सभा में रो पड़े राष्ट्रपति, स्पीकर, भारतीय दल ने भी दी श्रद्धांजलि।

0: तरन तारण में दिल दहला देने वाली वारदात, साले ने जीजा पर तेज तेल डालकर आग लगा दी। घटना में युवक की मौत, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। आगरा में 45 दिन से लापता पति की हत्या का खुलासा हुआ। बाथरूम के फर्श के नीचे मिला शव, पुलिस ने पति को हिरासत में लिया। गुमशुदगी का पूरा मामला, हत्या की साजिश निकला। काशी विश्वनाथ मंदिर गेट के बाहर पीएसी जवान के कार्बाइन से चले दो गोलियां, तीन लोग इसमें घायल। सीसीटीवी में मामला सामने आया, पुलिस बोली कि हादसा है, घायलों ने लापरवाही का आरोप लगाया। मेरठ में भाई ने 16 वर्षीय बहन के सिर में मारी गोली, मौके से फरार आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल तमंचा बरामद किया। लोहिया नगर के जाकिर कॉलोनी का मामला है। देहरादून में शराब की दुकान के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, दो लोग इसमें घायल। घटना के बाद से पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश, इलाके में मचा हड़कंप। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बड़ा खुलासा, पुलिस पूछताछ में अविनाश ने चोरी की रकम सभी आरोपियों में बराबर बांटने की बात बताई है। एसआईटी की पूछताछ में अविनाश ने खुद ली चोरी। अविनाश ने बताया कि चोरी की रकम से उसने कार खरीद दी, घर भी बनवाया। उसने अपने बड़े भाई को भी रकम देने की बात कबूली है। पूछताछ में अविनाश ने बताया कि टिनू और सुभाष के मिली भगत से किसी को पकड़े जाने का डर ही नहीं था। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ, चोरी के बाद सुनसान जगहों पर मीटिंग होती थी, सभी आरोपी मिलकर साजिश रचते थे। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग से नेटवर्क फैला। जांच में चंपत राय के करीबी टिन्नू की अहम भूमिका सामने आई, आरोपी लंबे समय तक चोरी की साजिश छिपाकर वारदात को देते रहे अंजाम। चढ़ावा चोरी के मामले में आज भी जारी रहेगा एसआईटी जांच का दूसरा चरण और जमीन खरीद तक पहुंची जांच। एसआईटी ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जमीन खरीद की जांच शुरू की। जमीन खरीद से जुड़े हुए लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। एसआईटी ने कुछ प्रॉपर्टी डीलर से भी पूछताछ की। टिन्नू यादव के दो भतीजों के साथ पूछताछ, सभी से लगभग 3-3 घंटे तक पूछताछ हुई। राम मंदिर के कुछ सुरक्षा कर्मी से भी एसआईटी की पूछताछ, बैंक कर्मचारियों से भी एसआईटी ने जानकारियां जुटाई है। पुलिस रिमांड में अविनाश शुक्ला से 13 घंटे तक पूछताछ के बाद भेजा गया जेल। एसआईटी के हाथ लगे कई अहम सुराग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आरएसएस का बयान सर कार्यवाह। दत्तात्रेय होस बोले ने कहा कि राम भक्तों की भावनाओं को चोट पहुंची है, दोषियों को सजा मिले। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का आरएसएस पर बड़ा पलटवार, बोले कि आरएसएस ने अपनी छवि साफ करने की कोशिश की, सिर्फ दिखावे के लिए निंदा की। जयराम रमेश ने भी आरएसएस के बयान को निराशाजनक बताया, बोले कि आरएसएस की तरफ से दे दी गई क्लीन चिट शर्मनाक। चढ़ावा चोरी मामले में विनय कटियार से पीएम मोदी की कोई भी बातचीत नहीं, सूत्रों के हवाले से यह खबर है। पहले कटियार ने प्रधानमंत्री से बातचीत का दावा किया था। अयोध्या के संतों ने चंपत राय का इस्तीफा ठुकराने की मांग की, कहा कि ट्रस्ट इसे स्वीकार न करे। राम मंदिर के दान काउंटिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव, सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डबल सिक्योरिटी चेक और नया ड्रेस कोड लागू, बिना जेब वाली डार्क ब्लू ड्रेस अनिवार्य, मोबाइल कैमरा बैग इसके साथ साथ निजी सामान पूरी तरह प्रतिबंधित। राम मंदिर दान काउंटिंग पर जब कुर्सी मेज पर नहीं बल्कि जमीन पर बैठकर अब होगी, काउंटिंग हॉल में प्रवेश के पहले दो चरणों की जांच होगी, जूते चप्पल बाहर उतारना भी अनिवार्य। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की कथित हेराफेरी के आरोपों पर अब बीकेटीसी ने जांच समिति गठित करने का आदेश दिया, अध्यक्ष बोले जांच होगी। बद्री केदार ट्रस्ट समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि वायरल पोस्ट में निजी सचिव जिसे बताया गया व्यक्ति वो निजी सचिव नहीं है, आरोप अगर साहिब पाए गए तो दोषियों पर कार्रवाई होगी। बद्रीनाथ मंदिर परिसर में सीसीटीवी फुटेज की जांच, बीकेटीसी बोला कि उपलब्ध फुटेज पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, मामले की निष्पक्ष जांच के लिए आंतरिक समिति बनाई जाएगी। राजस्थान गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, दोनों ही राज्यों में कई विकास पर योजनाओं की सौगात। राजस्थान के बाड़मेर के बालोतरा में सौगातों की शुरुआत, यहां पर 1,00,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन, मॉडिफाइड उड़ान योजना की शुरुआत, गुजरात में पीएम मोदी का संबोधन। प्रधानमंत्री मोदी 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेंगे, मेलबर्न में होगी इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल लीडर्स समिट। ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी एल्बनीज पीएम मोदी के दौरे पर उन्होंने बयान दिया, कहा कि भारत हमारे लिए अहम तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अब कसी कमर, बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार लखनऊ के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। लखनऊ में नितिन नवीन का भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से बीजेपी मुख्यालय तक रोड शो, दो दिनों के यूपी के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष। यूपी में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेंगे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। संगठन की रणनीति पर मंथन के साथ तय होगी रणनीति। बीजेपी अध्यक्ष पार्टी पदाधिकारियों के साथ अलग अलग करेंगे बैठक, सांसदों और विधायकों से भी मुलाकात। बैठक में बूथ सशक्तिकरण, जनसंपर्क और संगठन विस्तार पर मंथन। यूपी चुनावों के लिए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का नया दांव पेंच। पंजाब में आगामी चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर बड़ा उलटफेर। चन्ने के नाम की सिफारिश के बाद भी हाईकमान ने अमरिंदर सिंह राजवर्डिंग पर ही जताया भरोसा। नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने पर कांग्रेस के एक पक्ष ने प्रक्रिया पर उठाए सवाल, औपचारिकता बताते हुए हाईकमान के फैसले पर सवाल उठे। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए लगभग 87 नेताओं की एक लंबी चर्चा हुई, हाईकमान ने राजवर्डिंग को ही यह पद दिया। पंजाब कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए चरणजीत सिंह चन्नी, पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर मतभेद और ज्यादा बढ़ गए। पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच में सुखदेव भगत का बड़ा बयान, हाईकमान का फैसला सर्वोपरि, कोई कला नहीं है। टीएमसी के बागी गुट पर बोले दिलीप घोष की यह पार्टी का अंदरूनी मामला है, दफ्तर और विधानसभा सीटों पर फैसला स्पीकर और कानून करें। अभिषेक बैनर्जी के बयानों को दिलीप घोष ने भड़काऊ बयान बताया। चुनावों के बाद हिंसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमलों का आरोप लगाया, कहा कि ऐसे लोगों को बाहर नहीं जेल में होना चाहिए। गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत 23 नए आतंकियों को घोषित की सूची जारी की और इसके लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए पाकिस्तान आधारित 23 आतंकवादियों पर केंद्र का ही बड़ा एक्शन। गुजरात सरकार ने बिजली ट्रांसमिशन लाइन और टावर के लिए किसानों को मिलने वाला मुआवजा बढ़ा दिया। E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग से जुड़ी हुई गलत जानकारियों पर सरकार ने खंडन किया। एथेनॉल उत्पादन में 3 से 5 लीटर प्रशिष्ट पानी प्रति लीटर उपयोग बताया गया है। पानी की अधिक खपत और इंजन डैमेज के दावों को भी सरकार गलत बता रही है। 3 से 5 लीटर प्रोसेस्ड पानी प्रति लीटर का किया जा रहा है। एथेनॉल उत्पादन में पानी की बर्बादी के दावों पर सरकार की तरफ से खंडन, धान और कम पानी वाली फसलों से पैदावार हो रही है। अमेरिका, ब्राजील और कनाडा समेत कई देशों में पहले से लागू एथेनॉल ब्लेंडिंग ARAI परीक्षण में वाहन प्रदर्शन पर कोई भी नकारात्मक इम्पैक्ट नहीं मिला। ARAI परीक्षण में वाहन प्रदर्शन पर कोई नकारात्मक असर नहीं, उत्पादन क्षमता लगभग 2000 करोड़ लीटर पहुंची। ईरान में पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार समारोह जारी, शनिवार और रविवार को तेहरान में सार्वजनिक समारोह आयोजित किए जाएंगे। ग्रैंड मोसल्ला में आम लोगों के दर्शनों के लिए ताबूत रखा जाएगा, अंतिम संस्कार में 100 से ज्यादा देशों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान और इराक के कई शहरों में 7 दिनों के बाद धार्मिक अनुष्ठान यहां, और सोमवार और मंगलवार को शव यात्रा कुम शहर की ओर जाएगी। बुधवार को नजफ में रिसेप्शन और नजफ करबला में जुलूस भी होंगे। शुक्रवार को मशहूर अली खामेनेई का अंतिम संस्कार होगा, उनको दफन कराया जाएगा। ईरान में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में आयतुल्ला खामेनेई को श्रद्धांजलि दी, सलमान खुर्शीद और महबूबा मुफ्ती इसमें शामिल रहे। पवित्र अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन कल पहले दिन लगभग 20,000 भक्तों ने दर्शन किए। बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौट रहे भाव विभोर होकर श्रद्धालु प्रभु के दर्शनों को एक यादगार पल बताया। यात्रा मार्ग पर प्रशासन के इंतजामों से भक्त संतुष्ट भी दिखे, भंडारे से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक का इंतजाम। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के लिए स्वास्थ्य विभाग की बड़ी पहल, नेशनल हाईवे 44 पर फर्स्ट एड कैंप लगाया गया, एम्बुलेंस भी तैनात है। तीर्थ यात्रा के दौरान ट्रैफिक की आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए नेशनल हाईवे 44 पर डिगडूल पांथियाल टनल और मगरकोट रामसू वायाडक्ट खोला गया। गुजरात में मॉनसून का कहर देखने को मिला, मेहसाणा में पूरी रात बारिश के बाद से इलाके जलमग्न दिखाई दिए। वलसाड में मूसलाधार बारिश बनी आफत, बारिश के बाद से पूरे इलाके में जलभराव दिखा। जलभराव के बीच में कार निकालने की कोशिश फेल, वलसाड में मारुति वैन पानी में जा फंसी। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश का तांडव दिखा, जलभराव के बीच में फंसकर वाहन खराब, 3 वाहन और 19 लोग फंसे थे। घटना की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, बचाव अभियान में 19 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। महाराष्ट्र और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी, मुंबई में 6 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट है, अगले 5 दिनों में गुजरात और गोवा में भी भारी बारिश का अनुमान। महाराष्ट्र के लोनावला में भारी बारिश के बाद मशहूर भूसी डैम ओवरफ्लो हुआ और मनमोहक नजारा देखने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। मुंबई का अंधेरी सबवे फिर से बंद किया गया। पानी भरने के बाद सबवे बंद। अंधेरी ईस्ट वेस्ट की कनेक्टिविटी से प्रभावित। गुजरात के कई इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी। भारी बारिश के चलते खेत, सड़कें, नदियां, सब तरफ पानी ही पानी दिखा। जूनागढ़ में भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में भरा पानी। उफान से नाले के बीच में फंसी बस क्रेन से खींचकर निकाली गई बाहर। दिल्ली एनसीआर के लिए भी मौसम विभाग का येलो अलर्ट है। देर रात झमाझम बारिश का आसार। जयपुर में बारिश के बाद टोंक रोड धंस गई। किसी बड़े हादसे की आशंका। सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल। मथुरा में भीषण गर्मी के बाद अचानक बारिश। भारी बरसात के बाद सड़कें जलमग्न। मार्ग प्रभावित। गोरखपुर के मुक्ति पथ पर सरयू नदी में डूबने से बचाए गए 5 जिंदे गया। मोटर बोट पलटने पर तुरंत एक्शन में रेस्क्यू टीम आई। जोशीमठ के पगनो गांव में सक्रिय हुआ भूस्खलन। घरों में मलबा घुस रहा है। बुजुर्ग महिला और एक व्यक्ति को बचाया गया। ओडिशा के मयूरभंज में दर्दनाक हादसा हुआ। हाईवे पर लकड़ी से भरे हुए एक ट्रक रेस्क्यू के दौरान बेकाबू हो गया। एक डंपर। डंपर के आसपास खड़े हुए लोगों को डंपर ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 5 घायल हैं। एमपी के सीहोर में आवारा कुत्तों का आतंक दिखा। 5 साल की बच्ची पर जानलेवा हमला हुआ। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में भयानक झड़प। विवाद बढ़ने पर एक पक्ष ने हाईवे पर जाम लगा दिया। 2 परिवारों के झगड़े के बाद भड़की भीड़। कार का शीशा तोड़ा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को संभाला। सोनीपत में कपड़ा गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की कई टीमें मौके पर पहुंची। आग बुझाने का प्रयास किया। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर सड़क पार कर रहे ग्रामीण को टैंकर ने मारी टक्कर। इलाज के दौरान मौत। गोंडा में प्रेमी खेले प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा। 3 बच्चों के साथ टावर पर चढ़ी और ये विवाहित महिला थी। घंटों तक ड्रामा करती रही। आगरा में सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा। 1.5 महीने तक लापता पति का पता नहीं चला। एक नाटक था। बाथरूम के फर्श के नीचे शव मिला। मॉडिफाइड साइलेंसर और हॉर्न पर बड़ी कार्रवाई। 300 साइलेंसर रोड पर नष्ट किए गए। भारतीय बैडमिंटन में नया स्कोरिंग सिस्टम होगा लागू और इसके तहत 21 की जगह 15 पॉइंट्स के होंगे अब गेम। 7-14 जुलाई तक एर्नाकुलम में होने वाले ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग टूर्नामेंट में किया जाएगा नए नियमों का इस्तेमाल। भारत और इंग्लैंड के बीच में आज खेला जाएगा 2 टी20 मैच। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में खेला जाएगा। 5 मैचों की टी20 सीरीज में 2 मैच है। मैच जीतने पर दोनों ही टीमों की नजर रहेगी। बारिश के चलते पहला मैच रद्द हो गया था। कैप्टन श्रेयस अय्यर अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक बार फिर से तूफानी पारी की उम्मीद है और पिछले मैच में बारिश होने के चलते उनकी अर्धशतकीय पारी बेकार हो गई थी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में राउंड ऑफ 16 की शुरुआत। आज कनाडा और मोरक्को के बीच में हाई वोल्टेज भिड़ंत। फ्रांस का सामना पैराग्वे से। नॉकआउट मुकाबले में क्वार्टर फाइनल का टिकट दांव पर है। लियोनेल मेसी ने रचा नया इतिहास। अर्जेंटीना को जीत दिलाकर बनाया फीफा वर्ल्ड कप का एक और रिकॉर्ड और केप वर्ल्ड से जीत छीन ली। मिस ने पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार वर्ल्ड कप नॉकआउट मुकाबला जीता है। अमेरिका में भीषण गर्मी के बीच फीफा वर्ल्ड कप के मैचों पर असर की आशंका। खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई। मिक्स मिन एंड म्याओ जाकी का टीजर हुआ रिलीज। 10 जुलाई को ट्रेलर होगा जारी। सिद्धार्थ मेनन, मंदिरा बेदी, नफीसा मुख्य भूमिका में। 24 जुलाई को रिलीज होगी। राघव जुयाल की फिल्म भाई तेरा स्टार है का टीजर हुआ जारी। यूट्यूबर निहारिका एनएम और एक्टर संजय कपूर इसमें दिखाए। भारत के बाद अब जापान में सिनेमाघरों में 10 जुलाई को धुरंधर देगी दस्तक। एक्टर रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। हर्षद वारसी की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई। प्रीतम एंड पेड्रो की एक ढीली स्क्रिप्ट हल्की फुल्की साइबर थ्रिलर साबित हुई ये वेब सीरीज। एनिमेटेड डिज्नी एडवेंचर फिल्म मोआना का ट्रेलर हुआ आउट। पौराणिक कथाओं और प्रशांत महासागर के नाविकों की सच्ची कहानी से प्रेरित।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माह।
0: राजस्थान के बालोतरा से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को एक बड़ी सौगात दी। पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी का उन्होंने उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के फेज 2 का भी उद्घाटन किया है। इस आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जोधपुर में एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग की उन्होंने सौगात दी। और इसके साथ उन्होंने कई टिप्पणियां भी की। ऊर्जा संकट को इस युद्ध ने दुनिया भर में जन्म दिया, युद्ध की वजह से पूरी दुनिया भी प्रभावित रही। इस पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया संकट को लेकर कहा कि युद्ध के चलते 21वीं सदी का सबसे बड़ा यह ऊर्जा संकट पैदा हुआ। भारत ने हालांकि समय लेते हुए इस संकट का आकलन किया, भारत की दृढ़ शक्ति के कारण ही बड़ा संकट छोटा हो गया। भारत ने इस दौरान अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल किया। युद्ध के समय भारत की दूसरे देशों से दोस्ती बहुत काम आई। जहां पहले 25-26 देशों से ईंधन खरीदते थे, अब 40 देशों तक ये पहुंच गए खरीद। युद्ध के समय भारत की डिप्लोमेसी का जलवा दिखा। वो साथ ही बोले कि कुछ ताकतों ने अफवाह फैलाने की कोशिश भी की, लेकिन देश के लोगों ने अफवाह और भ्रम को नकार दिया।
2: आज राजस्थान की इस धरती से मैं देश के एक और सामर्थ्य की चर्चा करूंगा। आप भी देख रहे हैं, पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों, 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं। साथियों, जब सार्वजनिक तौर पर कुछ ताकतें अफवाह और आशंका फैलाने में व्यस्त थी, तब किस स्केल पर दिन रात काम हो रहा था, किस तरह स्थिति को संभाला जा रहा था, वो मेहनत, वो प्रयास, वो धैर्य नीतिगत स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर उठाए गए एक एक संवेदनशील कदम कभी न कभी इतिहास लिखेगा। ये सब अभूतपूर्व है।
0: और वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देख रहे हैं आज तक
1: presented by electric savari sokudo.
3: This is radio reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world, all in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
4: I think we still can win the World Cup with this squad.
3: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
5: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
6: Ye pillar kabhi nahi tootega. Rungta Steel TMT se bana.
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: हमने तब भी सवाल किया था,
4: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
3: हम आज भी सवाल करते हैं,
4: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
3: ऑपरेशन अग्नि,
4: आज तक के ही स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
3: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
5: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमा कुरैशी।
6: ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
7: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अकल नहीं है। इसमें जो बहुत फेमस सीन है वो जो
8: परमिशन लेनी चाहिए ना,
7: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई।
9: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है, लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी,
7: आई फील अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो रुक जाइए।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: शादी
1: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
0: किचन में के जहाँ गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
4: इन एसोसिएशन विद
5: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक
4: विमल बोलो जुबां केसरी हिंद बड़े आराम से
6: शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी वेर आर यू

0: कोर्ट में पेशी के दौरान कैमरे पर दिखाई गई सिया की ये मिडिल फिंगर इस बात की गवाह है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और न ही कानून का डर। आखिर हो भी क्यों, जिस सोनम रघुवंशी की राह पर वह चली है उसे कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मेघालय सरकार की अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले हम देखेंगे कि ट्रायल कैसे चल रहा है। उधर राजा रघुवंशी के परिवार को इंसाफ का इंतजार है, जो कि सीबीआई जांच की मांग कर रहा है।
1: हमको न्याय अभी तक मिला नहीं, तो मतलब इसमें इतनी ढीलपोल क्यों चल रही है? और ढीलपोल चल रही है तो हमको वापिस से जांच चाहते हम, और हमारी सीबीआई जांच की मांग है तो हमारी सीबीआई जांच की मांग पूरी रखें।
0: अब सवाल यह है कि क्या मेघालय पुलिस की तरह पुणे पुलिस के सबूत भी कोर्ट में कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि पैटर्न से लेकर सबूतों की पड़ताल सब कुछ वैसी ही नजर आ रही है। आज तक की टीम उस जगह पहुंची जहां केतन के पुतले को खाई से फेंक कर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था।
2: जिस डमी को धक्का दिया था वो डमी अभी हमारे सामने है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये डमी है। और ऊपर से धक्का देने के बाद दो चोटियों पर केतन हो या फिर ये डमी हो उसको मार पड़ी थी, और उसके बाद ये नीचे आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस डमी की क्या अवस्था हुई है, और उसी तरह मतलब आप सोच लीजिए केतन अग्रवाल की क्या हालत हुई होगी।
0: केतन केस की जांच में अब एक युवक की एंट्री हुई है जो कि केतन चौधरी का क्लासमेट था। सूत्रों की माने तो आईटी कंपनी में काम करने वाले शख्स को सिया और चेतन ने साजिश की जानकारी दी थी। इसे भी लोगढ़ किले में साथ में जाने को कहा था, लेकिन वो आखिरी वक्त में नहीं गया। हत्या के बाद भी चेतन और सिया ने इससे बातचीत की थी। पुलिस अब इस शख्स से पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो इस शख्स ने दोनों को हत्या न करने की सलाह दी थी। आज तक ब्यूरो।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

काल में देश को डराने का लगाया आरोप राजस्थान के बालोतरा में बोले संकट काल में राष्ट्र हित को आगे रखकर फैसला देश में बोझ नहीं आने दिया। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार यूपी के दौरे पर नितिन नवीन मिशन 2027 को लेकर सरकार से पार्टी तक मैराथन बैठक जीत की हैट्रिक लगाने पर मंथन। पंजाब कांग्रेस में खींचतान के बीच प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजे वडिंगा मैन सीएम की रेस में मैं नहीं चन्नी की शक्ति प्रदर्शन पर बोले कि कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। राम मंदिर से रोज 6 से 8 लाख रुपए की चोरी का शक रामलला के आभूषण को गलाने का भी एसआईटी को आशंका आरोपी अविनाश का कबूलनामा सीक्रेट मीटिंग करते थे चोरी की रकम बांटने के लिए। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की अंतिम यात्रा में लाखों का हुजूम आंसुओं में डूबा पूरा ईरान श्रद्धांजलि सभा में रो पड़े राष्ट्रपति स्पीकर भारतीय दल ने भी श्रद्धांजलि दी।

सबसे पहले बात करेंगे मुंबई की बारिश की। बीते चार दिनों से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के चलते मुंबई के इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। इस बीच मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों की मुसीबत और बढ़ सकती है। आठ तस्वीरें आपके सामने हैं जो मूसलाधार बारिश के बाद की स्थिति को बयां कर रहे हैं। हर तरफ पोल सिस्टम की खुलती दिख रही है, क्योंकि कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां पर पानी ना भरा हो। ये आप देखेंगे कि मुख्य सड़क है, लेकिन आपको कहीं दिखाई दे रही कि कोई सड़क है। ये पॉश इलाकों में से एक इलाका है, आप देखेंगे वसई का इलाका है। लोग आप देखेंगे कि घुटनों से ऊपर तक पानी भरा हुआ है सड़क पर। डिवाइडर आपको कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देखा। आप एक ये तस्वीर देखिए, ये भी वसई की ही तस्वीर है, बस कहां तक डूबे हुए। ये है महाराष्ट्र, ये है मुंबई की स्थिति, जहां बीएमसी जिसका इतना बड़ा बजट है, लेकिन वो इतना बड़ा बजट जाता कहां है, क्योंकि सड़कों पर तो उसका कहीं भी कोई इंप्लीमेंटेशन दिखता नहीं है। क्योंकि सड़कों पर तो उसका कहीं भी कोई इंप्लीमेंटेशन दिखता नहीं है।

0: सड़कों पर सैलाब है, सबवे लहरों के बीच डूब चुका है। एक बार फिर भारी बारिश के चलते मुंबई में हाल बेहद बुरा है। चाहे अंधेरी हो या नाला सोपारा, वसई या विरार, हर ओर मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा है। लगातार हो रही बारिश ने मुंबई के लोगों का जीवन दुभर कर दिया है। एक एक तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर मॉनसून की बारिश के बीच मुंबई किस तरह की मुसीबत झेल रही है। गाड़ियां पानी के बीच फंसी हुई हैं, कहीं आना जाना मुश्किल है, बारिश का दौर थम नहीं रहा है, सड़कों पर बढ़ता जलस्तर लोगों का संकट बढ़ा रहा है। सबसे पहले भिवंडी इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। तेज बारिश से पूरा बाजार तालाब बन गया है, दुकानों में पानी भर गया है, गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, घुटनों तक पानी में लोग आ जा रहे हैं। किसी तरह जद्दोजहद कर अपनी दुकानों का सामान बचाने की कोशिश में लोग जुटे हुए हैं। अब नाला सोपारा हाईवे का हाल देखिए। सड़कों पर भरे पानी के चलते कई गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, लोगों को कहीं आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। नाला सोपारा में बढ़ता जलस्तर तेजी से रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ रहा है, जो आने वाले दिनों में मुंबई के लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकता है, क्योंकि नाला सोपारा और उसके आसपास के सभी मार्केट पूरी तरह से पानी में घिरे हुए हैं। गाड़ियों से भी गुजर रहे लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। मुंबई में बीते चार दिनों से बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाके पानी में डूब गए हैं। इस बीच पानी भरने के बाद अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। अब विरार इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। दोनों ओर की सड़क पर सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है, सड़कों पर गाड़ियां फंसी हुई हैं, दूर तक लंबी कतार नजर आ रही है। बांद्रा इलाके में सड़कें लबालब हैं, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। बारिश के बीच मुसीबत का दायरा बढ़ता जा रहा है।
1: मुंबई में सुबह से लगातार बारिश हो रही है और यह बारिश पिछले तीन से चार दिनों से मुंबई में हो रही है। आज भी मौसम विभाग द्वारा मुंबई और मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, रायगढ़, थाने, पालघर, नवी मुंबई, इनके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया है। आप देख सकते हैं, हम इस वक्त मुंबई के घाटकोपर इलाके में है, जहां पर 1.5 से 2 फीट तक का पानी जो है वो मुंबई की सड़कों पर जमा हो गया है और सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील होती हुई यहाँ नजर आ रही हैं। लोग कई समय से यहाँ पर बस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो बस है वो नहीं आ रही है। गाड़ियों की आवाजाही थोड़ी यहाँ धीमी होती हुई नजर आ रही है।
0: वसई इलाके का हाल तो और भी ज्यादा बुरा है। पानी इतना ज्यादा भर गया है कि मानो पूरा इलाका टापू बन गया है। इस बीच बिजली न होने से करीब 450 परिवारों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।
2: वसई विरार में लगातार चार दिन से जोरदार बारिश हो रही है। कई निचले इलाकों में पानी भर चुका है। फिलहाल इस वक्त मैं खड़ा हूँ वसई ईस्ट के मिठागर की बस्ती है। यहाँ हम देखेंगे तो ये जो रोड है जहाँ भरा है, इसके नीचे रास्ता है और ये रास्ते से अंदर हम 1.5 से 1.5 किलोमीटर जाए तो ये नमक की खेती करने वालों की बस्ती है। कुल 120 फैमिलीज वहाँ रहती है, 300 से 400 लोग है। हर साल इसी तरह ये रोड जो है पानी के नीचे चला जाता है। ये इन्होंने जानकारी दी जो है कि इनके घर में आसपास कुल कमर के ऊपर तक का पानी भर चुका है। बिजली भी कल से चली गई है और ये वस्ती के आसपास भी ये जो प्लेन इलाका है वहाँ भी ये भी पूरी तरह से भर चुका है। प्रशासन की ओर से इन्हें कोई अभी तक मदद पहुंची नहीं है। फिलहाल इन्हें खाने पीने की चीजों की सख्त जरूरत है, क्योंकि लाइट कल से है नहीं और यही बारिश अगर लगातार चालू रही तो इनके हाल बेहाल हो सकते
0: हैं। इस बीच बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन की ओर से अब तक लोगों तक कोई मदद नहीं पहुंची है, जिससे लोगों पर आई आफत और ज्यादा बढ़ गई है।
3: हालत खराब है कल से लोगों से, क्योंकि लाइट भी नहीं है, कल से लाइट भी नहीं है और पानी भी जैसे बढ़ते ही जा रहा है और ऊपर से बारिश भी और ज्यादा ही होते जा रहा है। जैसे कि अभी 1-2 घंटा और गिरेगा तो घर में भी घुस सकता है बारिश पानी।
2: लाइट की क्या समस्या है उधर?
3: लाइट तो कल से ही नहीं है, कल से दोपहर से गई है, अभी तक आई ही नहीं है।
2: अभी अंदर कितना पानी है, कितने फैमिलीज अंदर रहती है?
3: फैमिली रहती है 450 फैमिली रहती है और कंबर के ऊपर पानी है।
2: कुछ सुबह से कुछ प्रशासन की हेल्प हुई है?
3: कुछ भी नहीं, किसी ने हेल्प करने के लिए फोन भी नहीं किया, कुछ हेल्प आया ही नहीं।
0: बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा, जगह जगह भारी जलभराव है और लोग बेहद परेशान। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच मौसम विभाग ने भी शहर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर प्रशासन ने लोगों को बेहद जरूरी यात्रा करने की सलाह दी है ताकि मौसम की मार किसी की जिंदगी पर संकट न बने। मुंबई में हर साल की यही कहानी है, बारिश हुई और लोगों की जिंदगी आफत के बीच घिर गई। एक बार फिर ऐसी ही तस्वीरें शहर की पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। सैलाब के बीच जिंदगी संकट में घिरी है।
4: मुंबई से प्रवीण नालावड़े के साथ दीपेश त्रिपाठी आज तक।

0: सुविधा नहीं है कुछ भी, बड़े पाने से हम लोग जा रहे हैं, इतने इतने कोई कुछ नहीं कर रहे हैं।
1: क्या प्रशासन की तरफ से कोई आप लोगों को इंतजाम
0: किया? कोई कुछ भी इंतजाम नहीं किया हमारा।
1: क्या कहेंगे आप, क्या मांग करती है आप?
0: ये रास्ता तो बनाना मांगता है, उधर से पूरा हम इतना भीग के आए हैं।
1: आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जो है महिला जो है जान जोखिम में डाल करके यहाँ के जो है वो अपने घर की तरफ जाने की तैयारी कर रही है। उनकी एक ही मांग है कि प्रशासन की तरफ से किसी तरीके की यहाँ पे तैयारी न किए जाने की वजह से इन कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है।
2: मुंबई में जारी भारी बारिश के बीच में नालासोपारा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई हैं। नालासोपारा के सुधाम नगर में पानी भरने से कई लोग फंस गए, ये तस्वीरें देखिए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की टीमें पहुंची, 25 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। लेकिन डी वॉटरिंग पंप होते तो शायद ये सिचुएशन नहीं होती। कहा गया था हाईटेक, हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक से जोड़ रहे हैं, कंट्रोल रूम से मॉनिटर होगा, लेकिन चीजें आपके सामने, रियलिटी आपके सामने है। चलते फिरते कुछ पंप लगाए जाएंगे, व्हीकल माउंटेड जो पंप से जो जहां पानी भरा होगा वहां से निकालेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि बोट चल रही है सड़कों पर। ये नालासोपारा की तस्वीर, लोग फंस गए थे उनको रेस्क्यू करने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। ये तस्वीरें बीएमसी की कार्यप्रणाली पर सीधा सीधा सवाल है। अब आपको पालघर की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर पानी भर गया और इस पानी में ट्रक फंस गया। अब आप, ये हाईवे है, ये हाईवे जो कि मुंबई से अहमदाबाद को जोड़ता है और काफी व्यस्ततम हाईवे में से एक है, वहां पर आप देखेंगे ट्रक कितना पानी भरा हुआ है ट्रक में। मतलब इसकी अच्छी खासी हाइट है, आप देखेंगे लगभग 1 मीटर तक ये पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। और जो दूसरे वहां कंटेनर्स आप देखें, ये मुख्य हाईवे है जहां से पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई, हाईवे का हाल है। पालघर की तस्वीरें जहां पर सब डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की, जिसमें आरोपी अविनाश शुक्ला ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। उसने काफी कुछ लोगों को भी एक्सपोज किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी अविनाश शुक्ला ने यह स्वीकार किया है कि उसने चोरी की है। उसको चोरी के 45 सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने देखा भी और उसको दिखाया भी गया, जिसके बाद अविनाश शुक्ला ने पूरी कहानी बयां कर दी।
3: रामलला के घर हुई डकैती की जांच पुलिस और एसआईटी कर रही है। एसआईटी उन बड़े किरदारों को बेनकाब करने में लगी है जो बंदी प्रबंधन में थे, तो वहीं अयोध्या पुलिस उन आरोपियों से सवाल जवाब कर रही है जो सीधे सीधे चढ़ावे का पैसा दबा लिए। श्रद्धालुओं के चढ़ावे पर हाथ साफ करने वाले आरोपियों के काले कारनामे परत दर परत खुलते जा रहे हैं। पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला से कई ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुनकर राम भक्तों का खून खौल जाए। अयोध्या पुलिस ने पूछताछ के दौरान अविनाश शुक्ला को पिछले 45 दिनों की सीसीटीवी फुटेज दिखाई। जैसे ही उसने खुद को चढ़ावे से पैसे निकालते देखा, वो टूट गया और लगातार चोरी करने की बात स्वीकार कर ली। पूछताछ में अविनाश ने बताया कि चोरी की रकम से एक ब्रेजा कार खरीदी गई थी, जी कार उसने अपने भाई के नाम खरीदी। अविनाश का भाई इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ कि कार चढ़ावा चोरी के पैसे से खरीदी गई है। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आते ही अविनाश ने कार को तुरंत प्रतापगढ़ स्थित घर भेज दिया गया। इस मामले में अविनाश के भाई अभिषेक शुक्ला से भी पूछताछ की गई है।
4: यह कार ये पीछे खड़ी है, ये विटारा ब्रीजा कार है, ये बरामदगी हुई है। ये कार है जो अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक के नाम पर दर्ज है और ये गाड़ी आपको दिखाते हैं, ये विटारा फोर्थ इसका ओनर है, यानी कि पुरानी गाड़ी है, सेकंड हैंड खरीदी गई। और ये गाड़ी का आप पीछे से नंबर प्लेट नहीं दिख रहे, लेकिन आगे से हम आपको नंबर प्लेट भी दिखाते हैं। ये नंबर प्लेट है इसकी, ये कैमरा पर्सन दीप दिखा रहे हैं, UP42AP6054। ये गाड़ी है जो बरामद हुई है उस अविनाश शुक्ला से, जिसके पास से पुलिस ने सभी 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सबसे ज्यादा कैश बरामद किया था, 20,39,000 से अधिक का कैश बरामद किया था। और अब जब 13 घंटे की पीसीआर की गई, तो इस पीसीआर में यानी कि पुलिस कस्टडी रिमांड में पूछताछ के बाद अविनाश शुक्ला से यह गाड़ी भी बरामद

0: कर ली गई है।
1: जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। चढ़ावा चोरी गैंग के सभी आरोपी एक दूसरे की गतिविधियों से पूरी तरह वाकिफ थे। कौन कब और कैसे चोरी कर रहा है, इसकी जानकारी सभी को रहती थी। चढ़ावा चोरी के बाद सभी आरोपी नियमित रूप से बैठक करते थे। उस बैठक में चोरी का माल बांटने और आगे का प्लान डिस्कस होता था।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला से 13 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड में जहां एक तरफ पूछताछ की गई, उसको योग केंद्र से लेकर 14 कोसी परिक्रमा के उस मार्ग तक लेकर जाया गया जहां पर ये सारे चढ़ावा चोरी के आरोपी मिलकर पैसों की बंदरबांट करते थे।
1: इन बैठकों में अनुकल्प मिश्रा, लोकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा समेत 6 आरोपी शामिल होते थे। जांच में यह भी सामने आया है कि बाद में टिन्नू यादव का भतीजा भी इन बैठकों में शामिल होने लगा था। मई के आखिरी सप्ताह में मामला खुलने से ठीक पहले भी आरोपियों की एक बैठक हुई थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है। पूछताछ में सामने आए ये खुलासे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि चोरी कोई अकेले व्यक्ति की करतूत नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से अंजाम दी जा रही थी। अब पुलिस चोरी की रकम, उससे खरीदी गई संपत्तियों और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। कल करीब 13 घंटे की पूछताछ के बाद अविनाश शुक्ला को अयोध्या जेल भेज दिया गया है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
2: छोटे से ब्रेक का फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: सुप्रीम लीडर को 125 दिनों के बाद सुपुर्द खाक किया जा रहा है।

0: सिर्फ वक्त का इंतजार है। हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए।
1: महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी कहा जाता है कि इस वक्त संसद में बिल पास कराने के मकसद से जरूरी 2/3 सांसद तक इकट्ठा करने में जुटे, क्या वो आपकी मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं को इतना मौका दे सकते हैं जिसके बाद विपक्ष के दांव धरे के धरे रह जाएंगे?
0: इस विश्वास के साथ अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को दिल्ली भेजा, उस विश्वास को बढ़ाने वाला एक और काम आपके इस भाई ने दिल्ली में किया है। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, प्रतिनिधित्व बढ़े, ये मोदी की गारंटी।
1: तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार में महिला कोटे को इस बार बड़ी गारंटी प्रधानमंत्री देने वाले? जहां इस वक्त महिला सांसदों की ताकत देखें तो महिला सांसद लोकसभा में कुल 75 हैं और राज्यसभा में 38, यानी कुल संख्या 113। इनमें बीजेपी की लोकसभा में 31, राज्यसभा में 20, यानी कुल 51 महिला सांसद। एनडीए की 37 लोकसभा में महिला सांसद हैं, 21 राज्यसभा में, कुल ताकत 58 महिला सांसद की। अभी का अगर हम आंकड़ा देखें तो कुल 7 महिला मंत्री मोदी मंत्रिमंडल में हैं, जिनमें 2 कैबिनेट, 5 राज्य मंत्री हैं, बीजेपी की 6 महिला मंत्री हैं, 1 सहयोगी दल अपना दल से अनुप्रिया पटेल मंत्री हैं। 2024 में महिलाओं को मंत्री बनाते वक्त 7 में से 4 मंत्री ऐसी रही जो पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल की गई। मनमोहन सिंह के दोनों कार्यकाल में 10-10 महिला मंत्री थी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में 2021 में सबसे ज्यादा महिला मंत्रियों की संख्या 11 तक पहुंची, जो 2004 के बाद केंद्र में सबसे ज्यादा महिला मंत्री की संख्या रही। इस वक्त निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय है, अन्नपूर्णा देवी के पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, शोभा करंदलाजे जो कर्नाटक से आती हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, रक्षा खंड से 2024 में मंत्रिमंडल में शामिल दूसरी सबसे युवा मंत्री हैं, युवा मामले और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। धार से सांसद सावित्री ठाकुर महिला बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। गुजरात से लोकसभा सांसद नीमूबेन बभानिया उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। अब इन 7 के साथ और कितने महिला चेहरे मंत्रिमंडल विस्तार में मौका पाएंगे या फिर इन चेहरों में भी कुछ फेर बदल होगी?
2: पीएम मोदी की सोशल इंजीनियरिंग में जातियों को जोड़ना ही नहीं बल्कि महिला, युवा, पिछड़ों और दलितों को साथ लेकर आगे बढ़ना है। संसद के इस मानसून सत्र में सरकार महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन बिल को किसी भी हालत में पास कराना चाहती है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देकर एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
2: मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार कितने युवाओं को मौका मिलने वाला है?
3: हमारे पास आज दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण टैलेंट पूल है, युवा टैलेंट पूल है, जिसके पास सपने भी हैं, संकल्प भी हैं, सामर्थ्य भी है।
2: जल्द होने वाले मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में अब की बार कितनी महिला सांसद शपथ लेंगी?
3: इस देश की कोई भी महिला, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझे उसे सशक्त करना है।
2: 12 साल में पांचवी बार, तीसरे कार्यकाल में पहली बार, मंत्रिमंडल में होने वाले फेरबदल में पिछड़े वर्ग के कितने सांसद मंत्री बनेंगे?
3: भाजपा का मंत्र है पिछड़ों को प्राथमिकता।
2: लाल किले की प्राचीर से लेकर संसद के दोनों सदनों तक, चुनाव प्रचार के मंच से लेकर हर सभा और सम्मेलन तक, प्रधानमंत्री कहते हैं देश में केवल चार जातियां हैं।

0: जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान।
1: तो क्या इसी मंत्र को ध्यान में रखकर इस बार प्रधानमंत्री ने अपनी नई टीम का चाल, चेहरा और चरित्र तय कर लिया है? जहां सबसे पहला सवाल आता है, कितने युवा चेहरे इस बार मोदी मंत्रिमंडल में दिखने वाले हैं?
0: दिनों दिन हमारा देश युवा होता जा रहा है, युवा आबादी वाला देश है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सुयोग है।
1: युवाओं पर फोकस करने वाले प्रधानमंत्री कितने युवा सांसद को मौका मंत्रिमंडल में दे सकते हैं, ये निर्भर करता है कि कितने युवा सांसद संसद में हैं और कितने मंत्री हैं। लोकसभा में अभी 30 साल से कम उम्र के एनडीए के केवल एक सांसद हैं, 31 से 40 साल की उम्र के एनडीए के 15 सांसद हैं और 41 से 50 साल की उम्र के 39 सांसद, जबकि अभी मोदी मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत 72 मंत्रियों की संख्या में 2 मंत्री एनडीए के 30 से 40 साल के हैं, 15 मंत्री 41 से 50 साल के बीच के हैं, यानी 50 साल तक की आयु वाले 24% मंत्री हैं। तो क्या प्रधानमंत्री इस बार युवाओं की संख्या और बढ़ाकर मंत्रिमंडल की औसत आयु को कम करेंगे?
0: युवा शक्ति पर मेरा भरोसा है, युवा शक्ति में सामर्थ्य है और हमारी नीतियां, हमारी रीतियां भी उस युवा सामर्थ्य को और बल देने के लिए है। मैं मेरे देश के नौजवानों को कहना चाहता हूँ, अवसरों की कमी नहीं है, आप जितने अवसर चाहेंगे ये देश आसमान से भी ज्यादा अवसर आपने देने का सामर्थ्य रखता है।
2: हर बार मोदी मंत्रिमंडल की औसत आयु लगातार कम हो रही है। 2014 में मोदी मंत्रिमंडल की औसत आयु 62 वर्ष थी, 2019 में मोदी मंत्रिमंडल की औसत आयु 60 वर्ष थी, 2021 में जब कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हुआ तब ये औसत आयु घटकर 58 वर्ष हो गई, 2024 में ये औसत आयु कायम रही। क्या इस बार कैबिनेट के विस्तार और फेरबदल में मोदी मंत्रिमंडल की औसत आयु कम हो जाएगी, क्योंकि 2047 में विकसित भारत पर काम करने के लिए पीएम मोदी सबको प्रेरित कर रहे हैं? और चर्चा ये है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा मौका युवाओं को दिया जाएगा।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: In association.
2: प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर युद्धकाल में देश को डराने का लगा आरोप. राजस्थान के बालोतरा में बोले, संकट काल में राष्ट्रहित को आगे रखकर फैसला, देश में नहीं डाला कोई बोझ. बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार यूपी के दौरे पर नितिन नवीन. मिशन 2027 को लेकर सरकार से पार्टी तक मैराथन बैठक, जीत की हैट्रिक लगाने पर मंथन. पंजाब कांग्रेस में खींचतान के बीच प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजभवटिंग का बयान, सीएम की रेस में मैं नहीं, चन्नी के शक्ति प्रदर्शन पर बोले, कुछ दिन बाद सब हो जाएगा साफ. राम मंदिर से रोज 6 से 8 लाख रुपए के चोरे का शक, रामलला के आभूषण को गलाने का भी एसआईटी को आशंका है. आरोपी अविनाश का कबूलनामा, सीक्रेट मीटिंग कर करते थे चोरी की रकम बांटने की प्लानिंग. और ईरान के सर्वोच्च लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की अंतिम यात्रा में लाखों का हुजूम, आंसुओं में डूबा ईरान. श्रद्धांजलि सभा में रो पड़े राष्ट्रपति, स्पीकर, भारतीय दल ने भी श्रद्धांजलि दी.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सो गुड.
4: नमस्कार, रणभूमि स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है. मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी. मैं इस समय ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद हूं और इस जगह जहां मैं मौजूद हूं इसे ग्रैंड मुसल्ला कहा जाता है, यानी इस ईरान की सबसे बड़ी मस्जिद जहां पर पुराने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के पार्थिव शरीर को रखा गया है. आज तक की टीम आपको रणभूमि स्पेशल का एक स्पेशल एडिशन यहां से सीधे प्रसारण कर रही है और आपको बताएगी कि आखिरकार 125 दिन के बाद लगभग जब उनके पार्थिव शरीर को दफनाया जाएगा, सुपुर्द खाक किया जाएगा, उस समय ईरान में कैसे ताज़ा हालात हैं. यह हालात इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसराइल की तरफ से लगातार जो धमकियां दी जा रही है उसके बाद क्या ईरान कोई नए युद्ध के लिए तैयारियां तो नहीं कर रहा. हालांकि देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच MOU साइन हो गया, शांति वार्ता को लेकर बातचीत आगे चल रही है, लेकिन इसी बीच घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहा है. करीबन 125 दिन तक ईरान की जनता ने, ईरान के रिजिम ने, ईरान की IRGC ने यह इंतजार किया कि उनके सुप्रीम लीडर के सुपुर्द खाक किया जाएगा, उनकी जो सेरेमनी है या फिर आपके सेक्शन की उनके जो उनके जनाजे नमाज को अदा किया जाएगा. और इसी वजह से ईरान के इतिहास में सबसे बड़ी सेरेमनी या फिर सबसे बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. ये वो कार्यक्रम है जो एक मातम के तौर पर मनाया जा रहा है, यानी वो मातम है, यानी वो जो लोगों की संवेदना है, लोगों का दर्द है जो लगातार यहाँ के चप्पे चप्पे पर हर इलाके में नजर आ रहा है. रणभूमि स्पेशल में हम आपको एक बेहद खास बुलेटिन सीधे ईरान की राजधानी तेहरान से पहुंचा रहे हैं. आज तक इकलौता ऐसा चैनल है जो इस समय यहां पर मौजूद है, भारतीय मीडिया में सबसे पहला चैनल और लगातार आपको ईरान की खबरें देने वाला इकलौता ऐसा चैनल जो आपको ग्राउंड जीरो से पल पल की जानकारी देता रहा है. हम इस समय ग्रैंड मुसल्लम मस्जिद के ठीक बाहर है और यहां से हम आपको एक्सक्लूसिव खबरें भी दिखाएंगे. हम आपको बताएंगे कि कैसे आयतुल्ला अली खामेनी यानी सुप्रीम लीडर की जो अंतिम संस्कार की रस्में हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है. लगातार करोड़ों की संख्या में लोग यहां पर पूरे तेहरान के आसपास के इलाकों में, तेहरान की सड़कों पर मौजूद है. लेकिन इसके साथ ही हम आपको बताएंगे जबकि अंतिम संस्कार की रस्में चल रही है उसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को सीधे तौर पर धमकी दी है. इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि रूस और यूक्रेन की जंग भीषण होती जा रही है. माना जा रहा है कि रूस कभी भी अब यूक्रेन पर पूर्ण तरीके से कब्जा जमा लेगा. सबसे पहले बात करते हैं तेहरान की. तेहरान की सड़कों पर आप जहां पर भी नजरें दौड़ाएंगे या जहां पर भी आप देखेंगे आपको लोगों का हुजूम ही नजर आएगा. तेहरान की सड़कों पर भारी तादाद में लोग उतर गए अपने पूर्व सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई देने के लिए. माना जा रहा है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस समय तेहरान की अलग अलग इलाकों में सड़कों पर मौजूद हैं. दरअसल ये पूरा इलाका ऐसा है जो इस समय छावनी में तब्दील हो चुका है, जहां पर भारी पुलिस बल भी तैनात है और लगातार ईरान को ये भी डर है कि कहीं इसराइल इस पूरे मौके का फायदा ना उठा ले और कोई बड़ा अटैक ना कर दे. हालांकि लोग अपने सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई देने के लिए यहां पर जुट रहे हैं और लोग गमजदा भी हैं, अब आघात भी हैं और इसको लेकर परेशान भी है कि जिस तरीके से सुप्रीम लीडर को मारा गया वो एक निश्चित तौर पर ईरान की संस्कृति या ईरान के लोगों के ऊपर वार था. शायद इसी वजह से अंतिम संस्कार के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग इस समय तेहरान में पहुंच रहे हैं.
5: खामेनेई को अंतिम विदाई देने उमड़ा ईरान। 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि पहुंचे तेहरान। जमीन से आसमान तक सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। तेहरान की ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। हर शहर, हर गली, हर मोड़ से लोग जाते दिख रहे हैं अपने चाहते नेता के अंतिम दर्शन के लिए। स्कूल कॉलेज बंद है, दफ्तर बंद है, खेल के मैदानों तक में लोगों के रुकने के इंतजाम किए गए हैं। बसों ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है जो मुफ्त में लोगों को ले जाने का काम कर रही है। लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। लोगों में गम भी है, गुस्सा भी है, प्यार भी, और अपनों को आखिरी बार विदा करने की मजबूरी भी दिख रही है। देश के सर्वोच्च नेता रहे अली खामेनेई की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। दुनिया भर से राजनेता, अधिकारी और धर्मगुरु तेहरान पहुंच चुके हैं और अंतिम यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। अमेरिका और इसराइल से कोई नहीं आया है, आना था भी नहीं। वैसे भी 28 फरवरी से अमेरिका ने ईरान को इतने जख्म दिए हैं जिसे भरने में सालों लग जाएंगे। इस बीच सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री की अंतिम यात्रा में मौजूदगी हर किसी को हैरान कर रही है। ओमान और कतर विदेशी प्रतिनिधियों की सूची में शामिल थे, लेकिन सऊदी अरब के किसी भी प्रतिनिधि का नाम नदारद था। आखिरी वक्त में उनकी मौजूदगी सुर्खियां बटोर रही है। आज और कल दो दिन तक तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में विदाई समारोह होगा, जहां जनता और विदेशी मेहमान श्रद्धांजलि देंगे। फिर 6 जुलाई को तेहरान की सड़कों पर एक विशाल पैदल शोक जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद पार्थिव शरीर को शिया शिक्षा के मुख्य केंद्र कोम शहर ले जाया जाएगा। 7 जुलाई को कोम के पवित्र धर्मस्थल की ओर एक बड़ा धार्मिक जुलूस निकाला जाएगा। 8 जुलाई वो तारीख है जब ये अंतिम यात्रा पड़ोसी देश इराक पहुंचेगी। नजफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद शिया समुदाय के सबसे पवित्र स्थलों नजफ और करबला में सार्वजनिक शोक जुलूस निकलेंगे। 9 जुलाई को इस विदाई समारोह के आखिरी दिन पार्थिव शरीर वापस ईरान के मशहद शहर लाया जाएगा, जो खामेनेई का जन्म स्थान है, जहां देश के दूसरे सबसे बड़े शहर में आखिरी जुलूस के बाद इन्हें इमाम रजा श्राइन परिसर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वैसे ईरान के लिए ये मौका बेहद ही संजीदा है। एक तरफ पूरा देश भावुक हो रहा है, वहीं करीब 4 महीने बाद ईरान ने हिम्मत जुटाई है अपने सबसे बड़े धर्मगुरु और नेता रहे अली खामेनेई का अंतिम संस्कार करने की। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है इसे सुरक्षित बनाए रखने की। इसी चुनौती की वजह से इस अंतिम विदाई में वो शख्स नहीं आएगा जिसके पिता को अलविदा कहने के लिए पूरी दुनिया इकट्ठा हो रही है। जी हाँ, सुरक्षा कारणों से नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने आज तक से बातचीत में यह खुलासा किया है।
6: Doesn't allow him to come. They said it's very dangerous and we cannot provide security for him and I think he will not come out. Do you know they have very, very advanced technology and they can recognize him and they can follow him. Where is he? And it's very dangerous for him. So because of that, he will not come out.
7: करोड़ों की संख्या में लोग यहां सड़कों पर जुटने वाले हैं, इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे यानी अभी के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई उसमें शामिल नहीं होंगे। दरअसल इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि उनकी सिक्योरिटी को लेकर या इसराइल की तरफ से जो धमकी दी गई है उसको लेकर ये सबसे बड़ी बात कही जा रही है।
5: इस मौके पर 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों और धर्मगुरुओं को बुलाकर ईरान दुनिया भर को कई संदेश देने की कोशिश भी कर रहा है। अमेरिका और इसराइल के साथ युद्ध के बावजूद वो ये साबित करना चाहता है कि कूटनीति के स्तर पर भी अभी वो उतना ही मजबूत है जितना 28 फरवरी से पहले था। तेहरान से गीता मोहन और सुमित चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।
4: आपको बता दें कि ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद के अंदर लाखों की संख्या में लोग अपने सुप्रीम लीडर के लिए पहुंचे हुए हैं। लोग लगातार वहां बढ़ते जा रहे हैं अपने अंतिम संस्कार के लिए, उनको नमाज़े जनाजे के लिए अपनी नमाज को अदा कर रहे हैं और फिर जा रहे हैं, और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। सुबह से ही लाखों की संख्या में लोग आ चुके हैं। आपको आगे लिए चले, लेकिन उससे पहले आपको एक और वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अपनी दिखा देता हूँ। इस समय मैं मौजूद हूँ ग्रैंड मुसल्ला में, और मैं जहाँ मौजूद हूँ उसके ठीक पीछे अगर आप देखें कुछ ही दूरी पर आपको वो कॉफिन नजर आ जाएगा जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के शव को, उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। दरअसल अगर आप देखें उनके साथ में चार कॉफिन आपको नजर आ रहे होंगे। चारों कॉफिन में सबसे ऊपर का जो कॉफिन है वो है सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई का। उसके नीचे अगर आप देखें उनके ग्रैंडसन यानी उनके पोते भी जो उसमें मारे गए थे, छोटा कॉफिन, उसके बाद उनके दामाद और उनकी जो कहते हैं कि मुश्तबा खामनेई की वाइफ का भी कॉफिन है, उनकी बेटी का कॉफिन है। और अगर आप देखें कि उनके साथ साथ चार कॉफिन से परिवार के अलग अलग लोगों के बताए जाते हैं कि उनके ये कॉफिन है। हालांकि कुछ लोग और मारे जाने का भी दावा किया गया था, लेकिन उसकी पुष्टि अब तक ईरान में नहीं की गई है। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि चार कॉफिन इस समय रखे हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई का कॉफिन हमारे ठीक पीछे, आपको याद होगा जब 28 फरवरी को यूएस की और इसराइल की जॉइंट एयर स्ट्राइक्स की थी, वो अपने घर में मौजूद थे, उनको एयर स्ट्राइक्स में मिसाइल से मार दिया गया। और उनके कहते हैं कि उस समय जो बॉडी का कुछ ही हिस्से मिल पाए थे, हालांकि उनके अंगूठी से उनकी पहचान हुई। लेकिन मैं इस समय जहां मौजूद हूं, अगर आप देखें कि ये है वो जगह जहां पर इस समय दुनिया भर की निगाहें या दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स इस समय इसी जगह पर आकर उनको जो रिस्पेक्ट है या उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भारत का प्रतिनिधिमंडल भी आया, इसके अलावा दुनिया भर के अलग अलग देशों के आए, और यहाँ पर हज़ारों की संख्या, लाखों की संख्या में लोग लगातार पहुँच रहे हैं। और तमाम वो लोग, यानी ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि सिविल लोग, बल्कि अगर आप मेरे नीचे अगर आप देख रहे हो तो आपको फोर्सेस नज़र आ जाएंगी। दरअसल IRGC हो, उनकी पैरामिलिट्री बेसिस फोर्स हो, इसके अलावा जो उनकी अलग अलग टुकड़ियाँ जो हैं जिन्होंने उनको उसका भी सर्व किया, तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इसके अलावा खास बात ये भी कि जो उनके आप कह सकते हैं कि सुप्रीम लीडर के साथ साथ जो उनके साथ लोग काम करते थे, उनके भी यहाँ पर जो घर वाले हैं, उनके आसपास के लोग, पूरे ईरान के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें ये ग्रैंड मुसल्ला का इलाका, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, पूरी बड़ी मस्जिद आप देखें कितनी बड़ी बड़ी मस्जिद है। कल रात को या कल शाम तक, देर शाम तक इनको इससे पीछे के एक हॉल में रखा गया था, इनकी पार्थिव शरीर को, जहाँ पर लगातार जो वर्ल्ड लीडर्स थे वो वहाँ पर श्रद्धांजलि के लिए आ रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर बाहर रखा गया ताकि जो आम लोग हैं वो देख सके इस पूरे उनके शरीर को, एक रेफ्रिजरेटर टाइप, यानी जो ठंडक शरीर के जो बॉडी है वो ख़राब ना हो, इसके लिए उसमें रेफ्रिजरेटर टाइप चीज़ में रखा गया है, कूलिंग जिससे हो सके। और इसी वजह से आप देखें चारों को बाहर ओपन में रखा गया है, और कल तक ये यहीं रहेंगे। इसके बाद इनको आगे फिर कुंभ ले जाया जाएगा, उसके बाद आगे का जो प्रोग्राम है, यानी जो करबला, नजफ़ और उसके बाद मशहद, जो इनका अपना गृह क्षेत्र था, वहाँ ले जाया जाएगा। लेकिन आप देखिए चारों तरफ भीड़ आपको मिल रही है, धूप बहुत तेज़ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों का पहुँचना अब भी जारी है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अभी इस कंपाउंड में बताया गया हमको लगातार कि करीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं। लोग ना सिर्फ यहाँ पर है बल्कि इस कंपाउंड, ये जो पूरे कॉरिडोर्स हैं इसके अंदर भी बैठे हुए हैं, और कॉरिडोर्स के अलावा वो लोग यहाँ के बाहर अंदर लोग आ जा रहे हैं। तो अगर आप देखें आज तक एक अकेला मात्र चैनल है जो लगातार आपको ये दिखा रहा है कि इस समय हम सीधा ग्रैंड मुसल्ला में मौजूद, और हमारे ठीक पीछे आप लगातार उस तस्वीरें देख सकते हैं जो आपको समझाने के लिए कि आखिरकार यहाँ का नज़ारा क्या है। आज तक का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको ग्रैंड मुसल्ला से पहुँचा रहे हैं, जहाँ पर जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला अली खामनेई, उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, और दुनिया भर की नज़रें ईरान के सबसे बड़े, आप कह सकते हैं कि सबसे बड़े, सबसे ऐतिहासिक क्षणों को देख रही है। और आज तक की टीम उन्हीं क्षणों को कैद कर भारतीय अपनी जनता को या फिर अपने अपने लोगों को दिखा रही है। आपको बता दें कि ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद के अंदर लाखों की संख्या में लोग अपने सुप्रीम लीडर के लिए पहुंचे हुए हैं। लोग लगातार वहां बढ़ते जा रहे हैं अपने अंतिम संस्कार के लिए, उनको नमाज़े जनाजे के लिए अपनी नमाज को अदा कर रहे हैं और फिर जा रहे हैं, और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। सुबह से ही लाखों की संख्या में लोग आ चुके हैं। आपको आगे लिए चले, लेकिन उससे पहले आपको एक और वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अपनी दिखा देता हूँ। इस समय आज तक की टीम ग्रैंड मसल्ला में है, और मैं इस समय जहाँ मौजूद हूँ यहाँ पर इस समय 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मौजूदगी। अगर आप देखें कि यहाँ पर लोग सुबह से जो नमाज अदा करने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं, और ये जो उनके जनाजे की नमाज है उसको अदा करने के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, आ रहे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाह रहा था कि मेरे पीछे अगर आप देखें कि जो लोग सुबह से यहाँ कर आके बैठे हुए हैं, क्योंकि गेट जो है सुबह 6 बजे से खोल दिए गए थे, उसके बाद लोग यहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए या फिर जो जनाजे की नमाज है वो अदा करते हैं, और यहाँ से थोड़ी देर के बाद बैठने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। 10 लाख से ज्यादा लोग, कहा जा रहा है कि सिर्फ इस कंपाउंड में ग्रैंड मसल्ला का कॉन्सेप्ट जो था वो ईरान के लिए इसीलिए था कि जब 1979 के बाद से ही तेहरान यूनिवर्सिटी के बाद एक ऐसी जगह तलाशी जा रही थी जहां पर बड़े संख्या में लोग आकर एक साथ नमाज अदा कर सके, मस्जिद में जा सके, और इसी वजह से इसको चुना गया। और उसके बाद धीरे धीरे इस काम को 1990 के बाद तेजी से बढ़ाया गया। हालांकि सैंक्शंस के बावजूद, आर्थिक तंगी के बावजूद ईरान ने इस काम को रोका नहीं और अब भी इस कंपाउंड को बनाया जा रहा है। कहा जाता है कि आने वाले वक्त में ये दुनिया का सबसे बड़ी मस्जिद के तौर पर होगा। मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें, अभी यहाँ पर तो नेशनल एंथम है, अगर आप देखें सबने यहाँ पर रिस्पेक्ट के लिए यहाँ पर करना शुरू कर दिया। ये देखिए सलूट किया जा रहा है। और अगर आप मेरे चारों तरफ देखें, जो सुप्रीम लीडर हैं उनको यहाँ पर ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। और अभी खास बात ये भी है कि जो जनाजे की नमाज अदा करने का वक्त है वो हर शख्स यहाँ पर आके कर रहा है। इसके खास इंतज़ाम भी किए गए हैं, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ पर जो स्प्रिंकल्स हैं या फिर जो पानी गिरने के झरने हैं, जो फवारे हैं, वो लगाए गए हैं ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। अभी यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं अगर आप उनको भी देखें तो वो भी आपको नज़र आएगा। वो यहाँ पर आपको वो यहाँ पर चारों तरफ इसको किले नुमा चीज़ में कब तब्दील कर लिया है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ भीड़ नज़र आएगी। ये वो इलाका है, यानी ग्रैंड मसल्ला का वो इलाका है जहाँ पर अभी उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। जहाँ से उनकी बॉडी को, जैसा हम पहले भी बता चुके हैं, कि कुम ले जाया जाएगा और कुम के बाद फिर उन्हें इराक, करबला और नजफ के बाद उन्हें मसद दिया जाएगा। लेकिन आप मानिए कि लोगों में उनकी जो आपके से जुड़ाव है सुप्रीम लीडर को लेकर, इस समय वो किसी भगवान की तरह ही मान लीजिए आप उनको, कि यहाँ पर लोग उनको इस तरीके से प्यार करते हैं। और ये लोगों का जुड़ाव जो है वो सुप्रीम लीडर की एक शख्सियत के साथ होता है, एक इंस्टीट्यूशन के साथ होता है। और शायद यही वजह है कि अभी यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मौजूदगी। और आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर आपको हर शख्स अपने साथ, जो सुप्रीम लीडर थे पुराने आयतुल्लाह अली खमेनी, उनकी तस्वीरें साथ लेकर नजर आ जाएगा। इसके अलावा चारों तरफ आपको पूरा इंटरनेशनल मीडिया नजर आ जाएगा। कल यहीं पर जो फॉरेन डेलीगेट्स थे वो यहाँ पर ट्रिब्यूट या फिर आप कह सकते हैं श्रद्धांजलि दे चुके हैं। और आज आम लोगों के लिए इसको खोला गया है। एक तरफ पूरी दुनिया की नजरें इस समय यहाँ पर मौजूद अंतिम संस्कार की रीति रिवाजों और उसके पूरे जमावड़े को लेकर है, वहीं इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी बयानबाजी कर दी है जिसने ईरान और अमेरिका के बीच में तल्खी को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। जो लाखों लोग यहाँ की सड़कों पर मौजूद है वो अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 9 जुलाई के बाद एक बार फिर से ये तल्खी और ज्यादा बढ़ सकती है। और क्या ईरान एक बार फिर से 9 जुलाई के बाद कोई बड़ी कार्रवाई अमेरिका और इसराइल के खिलाफ कर सकता है? ये भी संभावना जताई जा रही है।

0: ट्रंप ने कस दिया तंज, फिर मचेगा घमासान। अंतिम यात्रा में गूंजा बदला बदला, गुस्से में ईरान। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, अब इन आवाजों को ध्यान से सुनिए। तेहरान में इकट्ठा हुए लाखों लोगों के गुस्से का इजहार है ये तस्वीरें। गुस्सा अमेरिकी हमलों का, गुस्सा ट्रंप के बयानों का, गुस्सा तबाही का और इरादा बदला लेने का। लोगों के हाथों में आपको कई तरह के झंडे दिखाई दे रहे होंगे। इनमें कुछ लाल झंडे भी हैं, जिसका मतलब है दुश्मन से बदला लेने की मांग। तेहरान का ये इलाका अमेरिका की मौत और बदला लेने की नारों से गूंज रहा है। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी अमेरिका और इसराइल को पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। हम पहले से ज्यादा मजबूत इरादे के साथ ईरानी जनता के दुश्मनों यानी अमेरिका और इसराइल से कहते हैं कि हम शहीद नेता खामेनेई के खून का बदला जरूर लेंगे। इस बीच ट्रंप ने ईरान में चल रहे आयतुल्ला खामेनेई के अंतिम यात्रा समारोह पर तंज कस दिया है। अमेरिका की पीठ ठोकते हुए उन्होंने कहा कि हमने ईरान को एक हफ्ते की छुट्टी दी है क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं।
1: Two world wars, the Cold War, left America's enemies in the depths of history. We beat Venezuela in one day, and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice.
0: Trump के इस बयान पर वहां मौजूद लोग हंसे भी और उन्होंने ताली भी बजाई, लेकिन कम से कम ईरान और उसके दोस्तों को ये तंज पसंद नहीं आएगा। युद्ध विराम की शर्तों पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि इनके ऐलान के बावजूद हॉर्मुज में जहाजों पर गोलीबारी की वारदातें हो चुकी हैं और दोनों देश एक दूसरे पर आरोपों के वार पलटवार कर चुके हैं। सस्पेंस इस बात पर भी बना हुआ है कि अंतिम संस्कार के बाद क्या अमेरिका और ईरान सुलह की तरफ बढ़ते दिखेंगे या फिर संग्राम की तरफ। आज तक ब्यूरो
2: रणभूमि स्पेशल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आज तक की एक्सक्लूसिव जानकारी, एक्सक्लूसिव कवरेज जारी रहेगी और हम आपको बताते रहेंगे ईरान के बदलते घटनाक्रम के बारे में। आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। Acoge, the number one Korean skincare brand, now in India.
4: You're listening Uninterrupted with TuneIn Premium. Enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
4: हमने तब भी सवाल किया था,
5: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
4: हम आज भी सवाल करते हैं,
5: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
4: ऑपरेशन अग्नि,
5: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
4: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
6: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: The action never stops and neither do we. From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive, fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first, welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.
8: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमा कुरैशी। ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
9: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अकल अकल नहीं है। इस पे जो बहुत फेमस सीन है वो जो
10: परमिशन लेनी चाहिए ना,
9: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई।
11: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है, लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी,
9: आई फील अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो रुक जाइए।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: एक्जे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
2: You hear it once and remember everything.
3: Too sexy for your party. Too sexy for your party.
2: One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They own the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
4: हमने तब भी सवाल किया था।
5: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
4: हम आज भी सवाल करते हैं।
5: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
4: ऑपरेशन अग्नि,
5: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
4: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
6: In association with
7: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: गुजरात के जूनागढ़ में महज एक दिन में 10 इंच बारिश दर्ज की गई। हालात ये हैं कि नोली नदी उफान पर है, लंबोरा डैम ओवरफ्लो हो रहा है। रही सही कसर शहर की सड़कों पर बने गड्ढों ने पूरी कर दी है, जो बारिश के दौरान हादसों की वजह बन रहे हैं। गुजरात के सोमनाथ पाटन शहर में भी मौत के मैनहोल खुले पड़े हैं। ये तस्वीरें गुलाब नगर इलाके की हैं, जहां एक साइकिल सवार बच्चे को स्कूल से लेकर लौट रहा था लेकिन गड्ढे में जा गिरा। वडोदरा में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। महज कुछ घंटे की बारिश में सड़क का एक हिस्सा तरक गया। तस्वीरें लालपुरा गाँव की ओर जाने वाली सड़क की है, ये गड्ढा किसी बड़े हादसे को न्यौता दे रहा है। भरूच में तो हादी हो गई। अंकलेश्वर के पिलूदरा गांव के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बीचों बीच बड़े बड़े गड्ढे दिलों में खौफ पैदा कर रहे हैं। कंक्रीट की स्लैब को देखिए, जिसमें लोहे के सरिये साफ नजर आ रहे हैं। बात गुजरात की है तो जरा सूरत में भ्रष्टाचार और लापरवाही की तस्वीर भी देखिए, जो बारिश के पानी में उजागर हो गई है। हाल ही में बनी नई सड़क बीचों बीच ऐसे धंसी कि एक भारी भरकम टैंकर उसमें फंस गया। तकरीबन पूरे सूरत में ही खस्ताहाल सड़कें बारिश होते ही धंसने लगे हैं। गड्ढे शहर में जगह जगह हादसों को न्यौता दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं खुल रही।
9: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड, नाउ इन इंडिया।

0: मोदी ने विपक्ष पर युद्धकाल में देश को डराने का आरोप लगाया। राजस्थान के बालोतरा में बोले, संकटकाल में राष्ट्रहित को आगे रखकर फैसला, देश पर नहीं डाला बोझ। बीस जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री रिजिजू बोले, कई मुद्दों पर बहस चर्चा, होंगे फैसले। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार यूपी के दौरे पर नितिन नवीन, मिशन 2027 को लेकर सरकार से पाटन तक मैराथन, जीत की हैट्रिक लगाने पर मंथन। जश्न में फायरिंग से मौत मामले में मुश्किल में बिहार के विधायक राजू कुमार सिंह, दिल्ली गिराव सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा, पीड़ित परिवार को 25 लाख मुआवजे का भी आदेश। मूसलाधार बारिश से पानी पानी, मुंबई के इलाकों में जल भराव से बड़ी परेशानी, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, ट्रेन और उड़ानों पर असर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो एक्जे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड।
2: तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग अलग अलग तरीके से अपनी संवेदना या फिर रिजिम के लिए, सुप्रीम लीडर के लिए अपना जुड़ाव पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कई लोग ऐसे भी दिखे जो अपने शरीर पर मिट्टी लपेटे हुए लगातार यहां पहुंचे थे, और ग्रैंड मसल्ला मस्जिद में भी वो लगातार इसी संख्या में पहुंच रहे थे। आखिरकार ये क्यों हुआ, कैसे किया गया और क्यों किया गया, ये जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए।
3: इस समय ग्रैंड मसल्ला के अंदर जो हालात है वो बेहद आप कह सकते हैं कि थोड़े से गमगीन कर रहे हैं, मातम वाले। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पर लोगों में आप देखिए कि जो दर्द है वो उनके चेहरों पर, उनके आंखों में नजर आ रहा है, लोग रो रहे हैं। और अभी जो मातम का आप कह सकते हैं कि जब ये जो उनके जनाजे की नमाज है अदा की जाती है, तब करीबन 2 दिन तक इसी तरीके का जो हालात हैं वो यहाँ पर बनेंगे। हर थोड़ी देर में यहाँ पर अपडेट किया जा रहा था हमको कि कितने लोग यहाँ मौजूद हैं, करीबन 10 लाख लोग अभी मौजूद थे, लेकिन अभी धीरे धीरे और भी लोग बढ़ेंगे। और कहा जा रहा है कि एक बार में यहाँ पर कई लोगों के आने का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, सबके हाथों में तस्वीर है। लेकिन आपको ये भी दिखा रहा था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार यहाँ पर पहुँचे हैं अपने बच्चों के साथ, परिवारों के साथ, और एक तरीके का एक ऐतिहासिक पल को गवाह बनने के लिए भी, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वो जब उनके सुप्रीम लीडर मारे गए, उनका जो जनाजा है उनको सुनकर खा किया हो, तब वो उसको इसको मिस करें। इसलिए यहाँ पर जो बाहर पीछे लोग वो भी यहाँ पर आए। हालांकि देखिए यहाँ पर मैं लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस समय मातम क्योंकि ये अपना अदायगी कर रहे हैं तो इसलिए कोई बातचीत नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ जरूर है कि लोगों में एक तरीके का आक्रोश यहाँ पर मुझे जरूर दिखा, लोग परेशान हैं, गुस्सा हैं इन बातों को लेकर के। देखिए अभी भी इसराइल की तरफ से जो थ्रेट दिया जा रहा है, जो लगातार बात कही जा रही है, उससे लोगों की नाराजगी है। और लोगों में जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें भीड़ के, और इस भीड़ में करीबन लगातार ये भीड़ बढ़ती जा रही है और लगातार यहाँ पे लोगों का जुड़ना जारी है।
2: पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को संवेदना देने या अपना अंतिम संस्कार में उनकी विदाई के लिए लोग अलग अलग तरीके से अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आपने जो तस्वीर हैरान करने वाली होगी वो छोटे बच्चे जो लगातार ग्रैंड मसल्ला मस्जिद में मौजूद रहकर वहां रो रहे थे, लगातार बिलबिला रहे थे और सुप्रीम लीडर को याद कर रहे थे। ये तस्वीरें हैरान करने वाली भी हैं। आज तक की टीम ने वहां ग्रैंड मसल्ला मस्जिद में जाकर इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया है। आइए आपको वो रिपोर्ट भी दिखाते हैं।
3: इस समय मैं ग्रैंड मसल्ला में मौजूद हूं और अगर मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर जो इस समय के ताज़ा हालात कैसे हैं, अगर आप देखें जो बच्चे हैं यहां पर, वो यहां पर जो पिता है वो यहां बैठे हुए हैं, और यहां पर जो मौसम है अगर आप देखें बच्चों में, बच्चों बुजुर्ग को हर कोई यहां पर रो रहा है। और ये तस्वीरें आप देख के समझिए कि इस समय के ताज़ा हालात यहाँ कैसे रहूँगा। आज तक लगातार आप तक ये खबर, ये रिपोर्ट पहुँचा रही है ताकि आप ये समझ सकें कि 125 दिन के बाद जब जो आप कह सकते हैं कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का जो उनको सुपुर्द खाक किया जा रहा है, उस दौरान यहाँ पर जो नमाज अदा करने के लिए जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं खासतौर पर। और मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि यहाँ के हालात क्या, और मैं आपको लगातार इन जगहों से
4: अकेला ऐसा मीडिया चैनल है जो आपको अंदर से ये रिपोर्ट कर रहा है, और मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार यहाँ की तस्वीरें कैसी हैं। देखिए हालांकि देखिए बहुत कुछ ज़्यादा बोलना संभव नहीं हो पाता ऐसे हालातों में जब लोग इतने ज़्यादा परेशान हो या गमगीन हो, मातम में हो, लेकिन ये ज़रूर है कि लोगों की यहाँ पर जो तकलीफ़ें हैं वो ज़रूर ये दिखाती है कि कितना ज़्यादा दर्द इन लोगों को लगा होगा जब इनके सुप्रीम लीडर को ऐसे मारा गया होगा। और सुप्रीम लीडर को लेकर जो तमाम बातें खासतौर पर अमेरिका की तरफ से की गई वो यहाँ की सच्चाई को बिल्कुल उलट है। लगातार ऐसा नहीं है कि सुप्रीम लीडर या इंस्टीट्यूशन को लेकर लोगों में नाराज़गी थी, लोग अब भी उनसे प्यार करते हैं, अपना जुड़ाव देखते हैं, और ईरान के रेवोल्यूशन के साथ, ईरान की सिविलाइजेशन के साथ उसको उसका गहरा नाता मानते हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ के ताज़ा हालात को देख कर ऐसा ही लगता है। और अगर आप देखें तस्वीरों में पीछे, जो मेरे पीछे तस्वीरें, हालाँकि आपको तस्वीरें क्लियर नहीं हो पा रही होंगी, लेकिन ये ज़रूर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर नसरुल्ला जो अयतुल्ला अली खामनेई की जो तस्वीरें हैं वो लगातार यहाँ पर लगाई गई हैं। रणभूमि में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन आपको ये बता दें कि आज तक की टीम एकमात्र ऐसा भारतीय चैनल है जो इस समय ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में मौजूद है। आपको बताएं कि ना सिर्फ ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद या फिर उसके पूरे कंपाउंड में बल्कि उसके बाहर पूर्व सुप्रीम लीडर की ऐसी तस्वीरें आपको नजर आएंगी, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं उनके, आपके से जवानी से लेकर उनके आखिरी समय तक की हर तस्वीर को वहाँ प्रदर्शित किया गया है। उसको लेकर भी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हम इस समय ग्रैंड मसल्ला पर है, और वहाँ पर अगर आप, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप सबसे पहले ऊपर देखते हैं जो सुप्रीम लीडर थे जो मारे गए थे 28 फरवरी को अयतुल्ला अली खामनेई, उनके हाथ की तस्वीर है, और उनके हाथ में वो अंगूठी आपको नज़र आ रही होगी जिसकी वजह से उनको पहचान की, उनके शव की शनाख्त भी की गई थी। आपको बता दूँ वो दरअसल एक साइन था ताकत का या फिर उनकी पहचान का, जिसको यहाँ पर ग्रेट मसल्ला की दीवारों पर भी और हर जगह आपको दिखाया गया है, ये हर जगह हमको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप ऊपर देख रहे हो तो आपको नज़र आएगा कि वो स्पेसिफिक रूप से यहाँ पर दर्शाया गया ग्रेट मसल्ला, यानी वो ग्रैंड जगह जहाँ पर उनके शव को रखा जाएगा, उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, और जिसके बाद लोग वहाँ पर आएंगे अपना कह सकते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसकी पूरी सारी दीवारों के ऊपर उन्हीं की तस्वीर लगी है, उनकी जवानी की तस्वीरें, जब लगातार वो IRGC में लोगों को संबोधित करते हुए नज़र आ जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि जब वो कोई आपदा आती थी या कोई हेलीकॉप्टर से रिव्यू करते हुए नज़र आ जाएंगे। और इसके अलावा उनके बाद की तस्वीरें, यानी अली खामनेई साहब की जो तस्वीरें थी बाद की, उनकी तस्वीरें भी इस समय यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी, जब उनके मारे जाने से पहले उनकी तस्वीरें, और जब जब जहाँ जहाँ वो गए एक एक तस्वीर, यानी कहा जा रहा है कि उनकी कलेक्शन से एक एक तस्वीर को यहाँ पर दर्शाया गया, और ये दिखाने की कोशिश की गई है उनकी यादों को कि कैसे वो थे एक कमांडर के तौर पर, या फिर आप कह सकते हैं सुप्रीम लीडर के साथ साथ उनका जो जुड़ाव रहा था वो लोगों के साथ कैसा रहा था, और ये उनके आप कह सकते हैं कि उस समय नौजवान जब वो थे तब की तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें लगातार यहाँ पर ग्रैंड मसल्ला के ऊपर देखी जा रही है। अगर आप एक और इम्पॉर्टेंट बात देखें कि यहाँ पर आप देखेंगे कि हर तरफ आपको एम्बुलेंस नज़र आ जाएंगी, दरअसल इस पूरे इलाके के आसपास हज़ारों की संख्या में करीबन एम्बुलेंसेज खड़ी हैं। जी हाँ, हज़ारों में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पूरे रेडियस में पूरा फोकस किया गया है कि क्योंकि करोड़ों लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो ऐसे में कोई आपदा ना आ जाए, कोई चीज़ ना हो जाए, इसके लिए पैसेज अलग से डिसाइड किए गए हैं, इमरजेंसी या फिर आप कह सकते हैं सेफ पैसेज, और यहाँ पर एम्बुलेंसेज और दूसरी डिप्लॉयमेंट भी की गई हैं। इसके अलावा लोगों के खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। अगर आप देखें दोनों तरफ, यानी एक एम्बुलेंस के साथ दूसरी तरफ दूसरी एम्बुलेंस भी खड़ी होगी, और ये हर 10 मीटर के ऊपर इसी तरीके की परिस्थितियाँ, और पीने का पानी हो, स्प्रिंकल्स या फिर आप कह रहे हैं फुवारे लगाए गए हैं पानी के, ताकि लोग इस गर्मी के अंदर राहत पा सके, और ये तमाम तैयारियां इस समय ईरान में की गई हैं। सुप्रीम लीडर के साथ साथ उनके परिवार के मारे गए लोगों को भी सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। तेहरान के अलग अलग इलाकों में मस्जिदों पर कुछ ऐसे ही मातम के लिए तैयारियाँ की गई हैं। इसी तरीके की एक रिपोर्ट आपको इमामजादे साले की मस्जिद से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और बताता हूं कि आखिरकार वहां के ताज़ा हालात कैसे थे। पुराने सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के साथ साथ उनके परिवार के लोगों को भी आप कह सकते हैं दफनाया जाएगा, और ये प्रक्रिया भी की जाएगी। दरअसल ये पूरा सेरेमनी जो है, या फिर ये पूरी जो आप कह सकते हैं कि बड़ा इवेंट किया जा रहा है, ये अयतुल्ला अली खामनेई के लिए तो किया ही जा रहा है, बल्कि उनके परिवार के लोगों को भी मस्जिद के अंदर दफनाया जाएगा। लेकिन अलग से, उनके परिवार के कई लोग थे जब 28 फरवरी को अटैक हुआ तब उसमें मारे गए थे, और परिवार के लोगों का भी जो सुपुर्दे खा गए या उनको जो दफनाया जाएगा वो उसी प्रक्रिया में उसी तरीके से उनके बाद उसी उन्हीं के आसपास की कब्रों में उनको दफनाया जाएगा। इस समय इमामजादे मैं यहाँ पर दरगाह पे हूँ या फिर आप कह सकते हैं मस्जिद पे हूँ, और अगर आप देखें ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस जगह के ऊपर जितने बड़े साइंटिस्ट मारे गए थे ईरान के या फिर उनके जो बड़े टॉप कमांडर्स मारे गए हैं उनकी अलग अलग आप कह सकते हैं उनके एशेस को या फिर उनके कुछ चीज़ों को यहाँ रखा जाता है ताकि लोग जो आएँ और उनसे उनसे इंस्पायर हो, और ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन है ईरान की वो इंस्पायर हो अपने उन लीडर के सेक्रीफाइस से जो लगातार अपने देश की यानी ईरानियन रेवोल्यूशन को बचाने के लिए सैंक्शंस के दौरान अपने देश को महफूज रखने के लिए मारे गए या फिर शहीद हो गए। अभी इस इमामजादे दरगाह के ऊपर या फिर मस्जिद के आसपास अगर आप देखें तो इसको भी ब्लैक कलर से या फिर ब्लैक कर्टन से या फिर पर्दों से ढक दिया गया है, यहाँ पर शहादत का जिक्र किया जा रहा है। और खास बात यह भी कि अभी के मौजूदा हालात में यहाँ की परिस्थिति कैसी है ये हम आपको दिखा रहे हैं, ईरान के तेहरान के खास तौर पे अलग अलग इलाकों से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। आज तक की टीम एक अकेली ऐसी टीम है लगातार जो आपको इन इलाकों से ये खबर पहुंचा रही है, तस्वीरें पहुंचा रही है कि आखिरकार यहाँ के मौजूदा हालात कैसे हैं। और करीबन 120 दिन के बाद जब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को दफनाया जाएगा या सुपुर्द खाक किया जाएगा उस समय उनकी जो उनके जनाजे की नमाज है उसको अदा करने के दौरान यहाँ के हालात कैसे बने हुए हैं ये भी हम आप तक तस्वीरें पहुँचा रहे हैं। इस समय सुप्रीम लीडर का पार्थिव शरीर ग्रैंड मोसल्ला मस्जिद में रखा गया है, आखिरकार उसका महत्व क्या है, क्यों ईरान के रेवोल्यूशन के बाद इस जगह को ही चुना गया, आखिरकार यहीं पर उनके पार्थिव शरीर को रखने के पीछे का मकसद क्या था, इसको लेकर भी आपको अपनी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाता हूं। इस समय मैं मौजूद हूँ ग्रैंड मसल्ला के बाहर, ग्रैंड मसल्ला यानी ईरान की सबसे बड़ी मस्जिद या फिर वो जगह जहाँ पर सुप्रीम लीडर के पार्थिव शरीर को रखा गया है। यहीं पर लगातार जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो कई बड़े डेलीगेट्स लगातार 30 से ज़्यादा देशों के डेलीगेट्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। इस समय अगर आप देखें कि ग्रैंड मसल्ला पर किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके का आलम है, ये आज तक की टीम अकेली ऐसी टीम है भारतीय मीडिया की जो यहां से रिपोर्ट कर रही है, और आपको इसलिए बता रही है क्योंकि ये ईरान के इतिहास में होने वाला सबसे बड़ा आप कह सकते हैं सबसे बड़ा आयोजन होगा जब उनके सुप्रीम लीडर के पार्थिव शरीर को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। लेकिन उससे पहले

0: हो गई है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं खाने पीने का सामान की बहुत भारी आप कह सकते हैं कमी हो गई है, और यही वजह है कि वहां पर अब सिर्फ तबाही और बर्बादी नजर आ रही है। माना जा रहा है कि रूस अब ये चाहता है कि वो यूक्रेन को पूरी तरीके से अपने हाथ में ले ले। इसी बीच रूस की तरफ से एक और यूक्रेन के शहर को अब अपने कब्जे में लेने का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसके बाद अब यूक्रेन भी लगातार यूरोप के कई देशों से मदद मांग रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें मांग रहा है, लेकिन अब भी यूक्रेन के हाथ खाली है, जिससे ऐसा लग रहा है कि शायद यूक्रेन के लिए सर्वाइवल अब बहुत बड़ी चुनौती होगा।
1: रूसी हमलों से अभी तक कांप रहा है कीव।

0: मिट्टी में मिल गई इमारतें, 25 से ज्यादा की मौत। रूस का विनाशकारी पलटवार, यूक्रेन का एक और शहर कब्जाया। रूस और यूक्रेन की रणभूमि में घमासान एक बार फिर बढ़ गया है। यूक्रेन के लंबी दूरी के मिसाइल हमलों से रूस इतना बौखलाया कि उसने यूक्रेन की राजधानी को बर्बादी की कागार पर ला खड़ा किया है। उसने क्यू पर करीब 500 ड्रोन और 70 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी। एक के बाद एक इलाके में बम गिर रहे थे और धमाकों की आवाज के साथ आग की लपटें उठती दिख रही थी। करीब 10 घंटों तक रूस यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक करता रहा। क्योंकि इस हाई राइज बिल्डिंग की हालत देखिए, मिसाइल गिरते ही इसकी ऊपर की मंजिलों में आग लग गई। इस इलाके की कई रिहायशी इमारतें इसी तरह रूसी हमलों का शिकार हो गई। लोग फंसे रह गए और कईयों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कीव के ज्यादातर इलाकों में बर्बादी का ऐसा ही मंजर दिखाई दे रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें बर्बाद हो चुकी हैं, गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं। सरकारी दफ्तर और मार्केट में हमलों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। लोग अपनों को याद कर रहे हैं और राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। यूक्रेनी सेना ने ज्यादातर ड्रोन को आसमान में ही मार गिराया, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों ने कई इमारतों को उड़ा दिया। रूसी सेना ने एयर स्ट्राइक कर खार्किव में यूक्रेन की एक ड्रोन कमांड पोस्ट को तबाह करने का दावा भी किया है। तबाही का यही मंजर सुमी में भी दिख रहा है, जहां रूस ने रिहायशी इलाकों में हमला कर 4 लोगों की जान ले ली। इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन के एक और शहर कोसियन टिनियुका पर कब्जे का ऐलान कर दिया है।
1: Мнимые успехи формирования ВСУ, а территория, освобожденная российскими войсками, скрывает под нейтральной формулировкой «перешли в серую зону». Идется продвижение в направлении Сумы и в районе населенного пункта Белый Колодец Харьковской области. Ведутся уличные бои под Лиман. Завершается освобождение города Красный Лиман.
0: ظاہر ہے روس کے تازہ حملوں کے بعد سے زیلنسکی کی مشکلیں لگاتار بڑھ رہی ہیں اور فی الحال انہیں مدد کی درکار ہے۔
2: पुतिन इस युद्ध को खत्म करने के बजाय रिहायशी इलाकों पर हमले जारी रखने का इरादा रखते हैं। यूरोप में अपनी एंटी बैलिस्टिक रक्षा प्रणाली विकसित करने की दिशा में काम को काफी तेज करने की आवश्यकता है। नाटो सहयोगियों के लिए यह आवश्यक है कि यूरोप के पास प्रमुख खतरों से बचाव के लिए पर्याप्त क्षमता हो। मैं उन सभी देशों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो वायु रक्षा कार्यक्रम के माध्यम से मदद कर रहे हैं और हमें पैट्रियट जैसी प्रणालियों के लिए मिसाइलें खरीदने की अनुमति दे रहे हैं।
3: तूत उनास यूक्रेन,
2: हमें यूक्रेन में अपने भागीदारों विशेषकर अमेरिका के साथ मिलकर यूरोपीय उत्पादन क्षमता की

0: आवश्यकता है। हम जीवन की रक्षा के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की सकारात्मक प्रतिक्रिया की बहुत उम्मीद करते हैं।
1: वैसे यूक्रेन भी चुप नहीं बैठा है। उसने जवाब में बेलगोरोद में 25 रॉकेट के बौछार करके रूस के एक बड़े इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन को उड़ा दिया। बमों की बरसात होते ही पूरा स्टेशन आग की लपटों में घिर गया। आज तक ब्यूरो।
2: रणभूमि स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आज तक की टीम एक अकेली ऐसी टीम है जो लगातार ग्राउंड जीरो से या फिर इस समय ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद है, और हम आपको इस पूर्व महत्वपूर्ण या ऐतिहासिक लम्हे की जानकारी लगातार पहुंचाते रहेंगे। मैं और मेरी सहयोगी गीता मोहन लगातार यहां से रिपोर्ट कर रहे हैं और आपको इसके बारे में जानकारी देंगे कि आखिरकार ईरान के इतिहास में इस घटनाक्रम का या आने वाले वक्त में इस पूरे घटनाक्रम का असर क्या होने वाला है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा और ईरान इसका फायदा या फिर ईरान इसको कैसे अपने फेवर के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आज तक में आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए आप आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ।
4: इफ यू आर सीरियस अबाउट स्पोर्ट्स, एनबीसी स्पोर्ट्स रेडियो इज द प्लेस फॉर यू। स्टार्ट योर डे विद एनएफएल अपडेट्स फ्रॉम माइक फ्लोरियो, देन जॉइन डैन पैट्रिक एंड द डैनेट्स फॉर इन-डेप्थ डिस्कशंस एंड द बिगेस्ट गेस्ट्स इन स्पोर्ट्स। Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
5: Sanitary Solutions.

0: ये तस्वीरें गुजरात की हैं, जहां तक नजर घुमाइए वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं, हाईवे तालाब में तब्दील हो गए हैं और लगातार बारिश ने जनजीवन की रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया है। ये तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ की हैं, जहां मॉनसून अब मेहरबान कम और आफत ज्यादा बनता दिख रहा है। तेज बारिश के बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हैं और सामान्य जीवन पूरी तरह प्रभावित है। मॉनसूनी आफत इस कदर बरसी कि तेज बहाव के बीच वाहन समेत कई लोग फंस गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कुल 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं जिला प्रशासन की ओर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और लोगों से अपील की गई है कि वो सतर्क रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें।
1: सभी सिटीजन से हमारी रिक्वेस्ट है कि जब तक कोई एब्सोल्यूट जरूरत ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो हमारे कंट्रोल रूम पे कॉल करें, हमारी टीम आपको हेल्प करने के लिए तुरंत आ जाएगी।
0: अब चलते हैं गुजरात के मेहसाणा, जहां पूरी रात हुई मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया है। कई इलाकों में सड़कों पर घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया है, जिससे आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है और कई जगह वाहन बीच पानी में फंसे नजर आए। वहीं वलसाड में भी बारिश का असर साफ देखने को मिल रहा है, जहां जलभराव के बीच सड़क पर एक कार फंस गई और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी बीच राजकोट में भी आसमानी आफत इस कदर बरसी कि पूरा शहर जलमग्न हो गया। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें और गड्ढे एक जैसे हो गए हैं और कई इलाकों में हालात बेहद खराब बने हुए हैं। अगली तस्वीर अमरेली जिले की है, जहां पिछले 3-4 दिनों से लगातार हो रही बेमौसम बारिश ने पूरा इलाका पानी पानी कर दिया है। जलभराव के बीच लोग घुटनों तक पानी में आने जाने को मजबूर हैं। बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: No ticket, no line, just showtime. Qwello Concerts is the destination for music lovers with thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qwello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
1: एक ओर एसआईआर की प्रक्रिया कई राज्यों में चल रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। इंडिया ब्लॉक ने सीजेआई सूर्यकांत को पत्र लिखकर ईसीआई और सीईसी के खुले तौर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। 28 जून को लिखे इस खत पर टीएमसी, आप और डीएमके समेत 25 राजनीतिक दलों ने हस्ताक्षर किए हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने खत में लिखा है, विधानसभा चुनावों के एन पहले एसआईआर करना गलत था और इसे गलत तरीके से लागू करना एक बहुत बड़ी विफलता थी, जबकि इलेक्ट्रल रोल्स 2002 में डिजिटलाइज होने के बाद से लगातार रिवाइज और अपडेट किए जाते रहे हैं।
2: एसआईआर को लेकर जितनी अनियमितताएं देखने को मिली हैं और खासतौर से एसआईआर के बाद जिस तरह से लोगों के और जिस तादाद में लोगों के नाम कटे हैं, जिस तादाद में लोगों ने इस पर एक नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, तो उसके बाद तो विपक्ष एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ेगा।
3: क्या आपने जिस भाषा शैली में सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखा है, ये वही अहंकारी भाषा शैली नजर आती है जो आपातकाल के समय में दिखाई पड़ती थी।
1: बिहार और बंगाल में बीजेपी विरोधियों के हार के बाद आने वाले यूपी चुनाव के मद्देनजर ये चिट्ठी अहम सियासी मुद्दा बन सकती है। हालांकि जहां चुनाव की निष्पक्षता पर इंडिया अलायंस के ऐसे सवाल हैं, वहीं यूपी में अखिलेश यादव समय से पहले ही चुनाव के लिए तैयार होने का दम भर रहे हैं।
4: अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करेंगे। जो लोग चुनाव नवम्बर में कराना चाहते थे, सेप्टेम्बर में करा दें, हम लोग तैयार हैं।
1: साफ है एसआईआर पर जारी घमासान के बीच अगला चुनाव यूपी में होना है। ऐसे में विपक्ष अब बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरने की हर कोशिश कर रहा है। आज तक ब्यूरो।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर युद्धकाल में देश को डराने का लगाया आरोप। राजस्थान के बालोतरा में बोले, संकट काल में राष्ट्रहित को आगे रखकर लिया फैसला, देश पर नहीं डाला बोझ। बीस जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा संसद का मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री रिजिजू बोले, कई मुद्दों पर बहस, चर्चा और होंगे फैसले। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार यूपी के दौरे पर नीति, नवीन मिशन 2027 को लेकर सरकार से पार्टी तक मैराथन बैठक, जीत की हैट्रिक लगाने पर मंथन। जश्न में फायरिंग से मौत, मामले में मुश्किल में बिहार के विधायक राजू कुमार सिंह। दिल्ली गिराव से रेवेन्यू कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा, पीड़ित परिवार को 25 लाख मुआवजे का भी आदेश। मूसलाधार बारिश से पानी पानी, मुंबई के इलाकों में जलभराव से भारी परेशानी। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, ट्रेनों और उड़ानों पर भी असर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढौंडियाल और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे लोकतांत्रिक और प्रमाणिक नंबर वन शो दंगल। उत्तर प्रदेश राजनीति का वो रणक्षेत्र जहां पर जीत हार की तकदीर भी देश की जो है तकदीर बदलती है। इस बार 2027 का यूपी विधानसभा का चुनाव काफी अहम है। यूपी में चुनाव अगले साल होने, लेकिन सियासत ने इंतजार करना छोड़ दिया है, तैयारी शुरू हो चुकी है। पहली बार बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन लखनऊ के दौरे पर है। संदेश साफ है कि संगठन और चुनावी मोड में वो आ चुके हैं, बूथ से लेकर मंडल तक, कार्यकर्ताओं से लेकर नेतृत्व तक 2027 की बिसात बिठाई जा रही है। लेकिन हर चुनाव सिर्फ तैयारी से नहीं जीता जाता, चुनौतियों से भी तय होता है। लगातार दो बार से सत्ता में रहने के बाद बीजेपी के सामने सत्ता विरोधी रुझान की आशंका, स्थानीय नाराजगी, टिकटों की दावेदारी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे तमाम मुद्दे हैं। विपक्ष के बहुत सारे हमले हैं, जवाब देना भी उतना ही अहम है। इसी बीच में अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मुद्दा भी सियासी बहस का हिस्सा बन गया है। विपक्ष को बीजेपी पर हमला बोलने का शानदार मौका मिला है, जबकि जांच जारी है। चढ़ावा चोरी के 8 आरोपी जेल में है, ट्रस्ट सवालों के घेरे में है। और ऐसे समय में नितिन नवीन का दौरा राजनीतिक रूप से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उधर अखिलेश यादव पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सामाजिक गठजोड़ के सारे बीजेपी के लाभार्थी और संगठन मॉडल को चुनौती देने की कोशिश में है। बीएसपी फिलहाल शांत दिख रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में उसकी भूमिका को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस भी संगठन और गठबंधन दोनों ही विकल्पों पर नजर रखे हुए है। राजनीति का एक सिद्धांत है, सत्ता चुनाव से नहीं आती, अगर समय रहते संकेत पढ़ ले। और विपक्ष चुनावों से पहले नहीं जीतता जब तक वो उम्मीद को विश्वास में न बदलते। तो क्या 2027 की पहली चाल चल दी गई है? क्या असली खेल अभी बाकी है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट।
1: राजनीति में कई बार संदेश भाषणों से नहीं, तस्वीरों से लिखा जाता है। स्वागत केवल सम्मान नहीं होता, वो शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन भी होता है। लखनऊ की सड़कों पर आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखी जब नितिन नवीन पहली बार बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद लखनऊ पहुंचे। तो सवाल ये कि क्या नितिन नवीन का दौरा बीजेपी के 2027 चुनाव अभियान का औपचारिक आगाज है? क्या बीजेपी का संगठन विपक्ष के सामाजिक समीकरणों पर फिर भारी पड़ेगा, या इस बार मुकाबला बदल चुका है? क्या यूपी में 2027 की लड़ाई सत्ता बचाने की होगी या सत्ता बदलने की?
2: लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। भगवान प्रभु श्री राम का भूमि, और हम कह सकते हैं भोले बाबा काशी विश्वनाथ का नगरी, मथुरा की नगरी, भगवान की नगरी, उस नगरी को नमन करता हूं। और अपने सुधे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करूंगा।
1: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का लखनऊ एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए सीएम योगी खुद मौजूद थे, साथ में बीजेपी के दिग्गज मंत्री और नेता थे।
3: उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। उत्तर प्रदेश का आम जनमानस आज मान रहा है, आज उत्तर प्रदेश का युवा चाह रहा है कि आदरणीय नितिन नवीन जी जिस ढंग से सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरे प्रदेश के युवाओं में, माताओं बहनों में, गरीबों में, आम जनता में भारी उत्साह है।
1: यूपी विधानसभा चुनाव अगले साल के शुरुआती महीनों में होना है, लेकिन बीजेपी ने अपनी राजनीतिक घड़ी तेज कर दी है। लखनऊ दौरे पर नितिन नवीन का एजेंडा साफ है, 2024 की समीक्षा, सोशल इंजीनियरिंग, सरकार संगठन में तालमेल, वोटर आउटरीच, 2027 की जीत का ब्लूप्रिंट। बीजेपी अध्यक्ष पद संभालने के बाद नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी ने बंगाल में ऐतिहासिक रूप से सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की, जबकि असम और पुडुचेरी में अपनी सत्ता बरकरार रखी। केरल में भी पार्टी का वोट बैंक तेजी से बढ़ा है। अब इसी विनिंग फॉर्मूले के साथ वो यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव लगातार पीडीए के फॉर्मूले को जीत का मंत्र बताते रहे हैं।
4: हम सबसे अपील करेंगे, जो हम लोगों ने एक आवाज दी है कि पीडीए से सब जुड़ जाएं। मुझे उम्मीद है पीडीए की लड़ाई मजबूत होगी, पीडीए एनडीए को हराएगा। और जब हम लोग टिकट बांट रहे हैं, सीटें बांट रहे हैं, तब बीजेपी अपनी टिकट काटने की सोच रही है। सोचो, बीजेपी टिकट काटना चाहती है, हम सीटें बांट करके जनता में पहुंचे।
5: नफरत के सहारे ये सत्ता में आना चाहते हैं,
4: लेकिन देश जाग गया है, पीडीए जाग गया है, इस बार मुकाबला पीडीए करेगा एनडीए का।
1: हालांकि जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं उसमें से नितिन नवीन के स्वागत करने पहुंचे यादव समाज के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि यादव समाज को बीजेपी में ही सम्मान और भागीदारी मिली है।
5: यादव की जगह उत्तर प्रदेश के अंदर हो, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में है। 6 केंद्र में मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के बना रखे हैं। हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश में मंत्री, मुझे भाजपा पार्षद दल का उपनेता बनाया गया। हमारे तमाम पद ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण पद यादव के।
6: इस बार
5: अखिलेश जी का जो पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको हमारा समाज पूरी तरीके से जान चुका है।
1: यूपी की राजनीति में हर चुनाव सामाजिक समीकरणों और संगठनात्मक ताकत की नई परीक्षा बनकर आता है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के बाद बीजेपी के लिए अब सबसे बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है जबकि विपक्ष अपनी जीत का दावा ठोक रहा है। ऐसे में लखनऊ में जो बिसात नितिन नवीन बिछाएंगे उसकी गूंज 2027 विधानसभा चुनाव में जरूर सुनाई देगी। आज तक ब्यूरो।
0: और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालते हैं उन सवालों पर जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी यह बहस रहेगी केंद्रित। सवाल नंबर 1, क्या नितिन नवीन का लखनऊ के दौरा मिशन 2027 के दंगल की शुरुआत है? सवाल नंबर 2, क्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए भारी पड़ेगा? सवाल नंबर 3, क्या समाजवादी पार्टी के पीडीए का जवाब बीजेपी ओबीसी को आगे करके देगी? और खास मेहमान भी अब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जुड़े हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा जुड़े हैं, कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे प्रोफेसर रतनलाल, आरएलडी का पक्ष रखेंगी निशा चौधरी, हमारे साथ सुबह सुबह के जनरल सेक्रेटरी अरुण राजभर भी जुड़े हैं और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया भी हैं। लेकिन आज डॉक्टर आशुतोष, चर्चा की शुरुआत आपसे कि राम मंदिर में चंदा चोरी हुई उसके बाद से शायद आप लोगों को लगा होगा कि बीजेपी बैकफुट पर आ जाएगी, बीजेपी वहां संगठन को मजबूत करने पर जो है जोर दे रही, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी पहुंच गए हैं और उनका जो विचार है इस पर है अब कि हम जीत की हैट्रिक कैसे लगाएं।
7: धन्यवाद राजीव जी, और किसी भी पार्टी के अध्यक्ष को इससे कम पे तो सोचना भी नहीं चाहिए। स्वागत है, वो आए लखनऊ में आए और यहाँ पे राजनीतिक जमीन पे मिले, और मैं तो ये कहता हूँ कि जब लखनऊ तक आए हैं तो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर अयोध्या भी जाएं और देख के आए कि राम मंदिर में जो कुछ हुआ है उसके पीछे कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नाम, राम के नाम के आगे लेके गए थे और चंदा चोरी जैसा काम करके आए हैं। मुझे लगता है कि ये बड़ा सवाल है जो भारतीय जनता पार्टी को अपने आप से पूछना है। ये सवाल दूसरा है क्योंकि अध्यक्ष तो बना ही दिया उन्होंने, उनकी टीम भी बन गई है पूरी, सारी सीटें भी वो जीत चुके हैं, लोकसभा सांसद भी उनके हैं, तो यहाँ पे क्या नया करने आए हैं? मुझे पता है वो क्यों आए हैं और हम सबको पता है
0: क्यों आए।
7: वो देखने आए हैं कि कौन कौन लोग हैं जो राम मंदिर के चंदे चढ़ावे में सीधे तौर से वहां पे फंसे हुए हैं और कैसे कौन सा रास्ता नया निकाला जा सकता है जो बड़ी मछलियों को बचाया जा सकता है, उन सारी रास्तों को अपने आप क्लियर करने के लिए आए। लेकिन अफसोस, इस देश की 140 करोड़ की जनता और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता अपने समय का इंतजार कर रही है। वो इंतजार कर रही है कि जिन्होंने राम को,
0: लेकिन आशुतोष जी आपका ये आरोप पूरा राजनीतिक लगता है कि आप कह रहे हैं कि नितिन नवीन आए हैं तो वो उन भ्रष्टाचारियों को बचाने में लग जाएंगे, ये पूरा राजनीतिक, क्योंकि आधार नहीं है इसका कोई।
7: नहीं तो राजीव जी ये बताइए, 2017 में निर्मोही अखाड़ा ने कहा था विश्व हिंदू परिषद की ने 1400 करोड़ रुपए का गबन किया राम मंदिर पे, वो भी राजनीतिक था। फिर 2021 में समाजवादी पार्टी ने जो है लैंड के ऊपर, जो अब एसआईटी उस पर ध्यान देने रख रही है कि 2 करोड़ की जमीन आधे घंटे के अंदर 20 करोड़ की बेच दी, वो भी राजनीतिक था। और आज जो बोल रहे राजनीतिक, तो हम राजनीतिक पार्टी राजनीतिक आरोप नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? और अगर आरोप नहीं लगा है तो एसआईटी क्या करने के लिए बनाया है? वहां पे चाय थोड़ी बेच रहे हैं वहां पे बैठ के, एक एक घंटे बैठ के चंपत राय से जो सवाल जवाब हो रहा है वो, अगर आरोप नहीं है तो क्या ऐसा ही है? एफआईआर हो रही है वो ऐसे ही हो रही है? अगर आपको लगता है कि आरोप नहीं सिर्फ मजाक चल रहा है तो ठीक है, खुश रहिए। देखिए उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता बहुत इमोशनल है, उसने सब कुछ तो किया लेकिन जब भी आपने इमोशन से खिलवाड़ किया उसने माकूल जवाब दिया।
0: 2024 तो में इसी इमोशन को तो समाजवादी पार्टी भी तो उठा रही है और कुछ लोग तो ये भी कहने लग गए, आप जब से चंदा चोरी का मामला आया है उसके बाद से समाजवादी पार्टी भी हिंदुओं की पार्टी बन गई है।
7: नहीं नहीं क्या अच्छा तो क्या हम क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं की पार्टी नहीं चलेगी तो कौन चलेगी, क्या बात करते हैं, हम सर्वधर्म संभाव की पार्टी हैं।
0: अच्छा,
7: हमसे ज्यादा तो कोई समाजवादी हो ही नहीं सकता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि 2024 में जिस लोकसभा सीट से, जिस राम मंदिर को लेके जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी अलग होके अपनी स्थापना दिवस मनाती है, जिस मुद्दे को लेके पंडित अटल बिहारी वाजपेयी लाल किशन आडवाणी ने इस पार्टी को 2 सांसदों से लेके 300 तक बनाया, जिस मुद्दे को लेके उस पार्टी को अगर वहां से हार मिलती है तो इसका मतलब नींव तक दरक चुकी है अंदर। तो अब धीरे धीरे ये बिल्डिंग कैसे गिरती है ये सब समझ जाएगा, क्योंकि अंदर से ये सब खोखले हैं। इन्होंने राम के नाम को बेचा है, इन्होंने मजाक किया है, इन्होंने इसके 140 करोड़ की जनता के इमोशंस को बेचा है और नितिन नवीन इसी का तापमान चेक करने आए हैं। इन सबको पता है कि स्थितियां बहुत खराब।
0: ये जो आपका आरोप है ठीक है, इस पर तो बीजेपी जवाब देगी, लेकिन आप पर भी तो एक बहुत बड़ा दाग लगता है, मतलब वो बहुत ही बड़ा आरोप है कि आपने राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी।
7: अच्छा ठीक है,
0: मतलब आप अभी राम भक्त बन तो रहे हैं। हाँ
7: राजीव जी, चलिए तो मैं कह तो रहा हूं, अगर ये राजनीतिक आरोप है, क्योंकि ये आप यहाँ इसी दिन गलत हो जाते हैं कि जिस दिन जिस चीफ सेक्रेटरी ने गोली चलवाई उसको आपने पीएमओ का प्रधान सेवक बनाया, और जिस मुख्यमंत्री ने के ऊपर आरोप लगाया उसको आप जो है कोई और सरकार नहीं पद विभूषण देके आपने सम्मानित कर
0: चीफ सेक्रेटरी को आदेश किसने नहीं दिया?
7: अरे तो ठीक है, जिसने दिया उसको पद विभूषण क्यों दिया आपने? आपने क्या इस क्या उन्होंने गोली चलवाई इस बात में किया? तो ये आप तो खुद फंसते हुए आ रहे हैं ना इसमें, ये तथ्यात्मक चीजों में आप मत फंसिए, आप राजनीति में फंस जाएंगे।
0: ठीक है प्रेम शुक्ला जी, इस पर जवाब दीजिए। मतलब वो सीधा वो ये कह रहे हैं कि नितिन नवीन जो आए हैं इनडायरेक्टली एक तरीके से डैमेज कंट्रोल करने के लिए भी आए, वो तो आप पर ही आरोप लगा रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए आए हैं।
6: देखिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विविध प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं, उसी दौरे की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश भी आए हैं, और स्वाभाविक तौर पर उत्तर प्रदेश में चूंकि आगामी कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव जो है वो होने हैं, ऐसे में लोगों की निगाह गई है कि वहां पर चुनावी दृष्टिकोण से चर्चा करने के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं। अब समाजवादी पार्टी जो है भ्रष्टाचार पर बात कर रही है, जिनका पूरा कुनबा बेहिसाबी संपत्ति के मामले में अभियुक्त रहा हो, और अभियुक्त किसके कार्यकाल में रहा, जिस इंडी अलायंस के वो अंग हैं, उस इंडी अलायंस में 2008 में श्रीमान मुलायम सिंह यादव सीबीआई का डंडा देखकर सीबीआई के डायरेक्टर को संसद भवन में बुलाकर और डंडा दिखाकर उनका समर्थन हासिल किया था। ये मेरा आरोप नहीं है, समाजवादी पार्टी के तत्कालीन महासचिव श्रीमान अमर सिंह का तहलका नाम की मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू का यह अंश है, जिन्होंने कबूला कि श्रीमान मुलायम सिंह यादव सीबीआई के डंडे के डर से बेहिसाबी संपत्ति के मामले को वापस लेने के लिए उन्होंने तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन दिया। और विश्वनाथ चतुर्वेदी जो पेटिशनर थे और जो कांग्रेस से एक बार 2002 में चुनाव लड़े थे, उन विश्वनाथ चतुर्वेदी का आरोप है कि कपिल सिब्बल ने उन पर दबाव बनाया था कि बेहिसाबी संपत्ति के मामले को वापस ले लो, क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देश पर मुलायम सिंह यादव ने सपरिवार नाक रगड़ कर माफी मांगकर कांग्रेस की सरकार को समर्थन दिया है। ये तो इनका जो है इनकी स्थिति है। ये रामलला के भक्तों पर गोली चलाई है तो सब जानते हैं, लेकिन रामलला के मंदिर पर आतंकी हमला करने वालों का मजहब पूछकर उन पर से मुकदमे वापस लेने का कुकर्म श्रीमान अखिलेश यादव का ही था, और इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाकायदा अखिलेश यादव की सरकार को फटकार लगाया था। अब ये चंदा चोरी पर बात कर रहे हैं, बगल में ही बहराइच में आक्रांता सालार गाजी नाम के आक्रांता की दरगाह है, जिस दरगाह की सेवा करने में समाजवादी पार्टी वाले जुटे रहते हैं, उस दरगाह की चंदा चोरी में समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी बाकायदा पकड़ा गया है। अयोध्या में दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की संलिप्तता आज दिन तक सिद्ध करने की हिम्मत किसी की नहीं है, लेकिन सालार गाजी की दरगाह की चंदा चोरी में समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी बाकायदा गिरफ्तार हुआ है, तो चंदा चोर कौन है लोग जानते हैं भली भांति। और जिस बाबरी के समर्थन में मोहम्मद आजम खान बाबरी
8: प्रेम शुक्ला जी, आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं जिस राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है उसका आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, आपको लग रहा है, आपको क्या लगता है कोई नुकसान इसका नहीं होगा आपको 27 में?
6: बाबरी के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय में दलीलें देने का काम किया था। मुझे आपकी आवाज कट गई है, मुझे लगता है फोन कटा हुआ है, जरा फोन फिर से जुड़वाएंगे।
8: ठीक है, आपके पास आते हैं, फोन जुड़वाते हैं। प्रोफेसर रतन लाल, अब आपको चर्चा का हिस्सा बनाते हुए, मतलब समाजवादी पार्टी तो हमलावर है लेकिन आपकी लाइन भी सपा की लाइन से बिल्कुल अलग नहीं दिखती है, मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल पिछलग्गू, बिल्कुल जो बोलेंगे वही आप लोग भी बोलेंगे।
9: कांग्रेस पार्टी तो पहले दिन से पूरा पोजीशनिंग कर रही है उत्तर प्रदेश के लोगों को इस चंदा चोरों से मुक्त करना है। अब राम का नाम किस तरह से इन्होंने बदनाम किया है, उनके नाम पे सिर्फ राजनीति की है, पहले पॉलिटिक्स किया सत्ता में, अब चोरी भी कर रहे हैं। ये भाजपा पार्टी के प्रवक्ता जो है, भाजपा पार्टी के प्रवक्ता, इनसे पूछिए कि नितिन नवीन वहां गए हैं तो योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे क्यों नहीं रहेंगे, इसको निपटाने गए हैं कि काहे के लिए गए हैं वहां पर। और राम मंदिर में चंदा जो चोरी हुआ है उसमें भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का कोई स्टेटमेंट है? अरे ये पता करो पहले कि उसका पैसा क्या आरएसएस के हेडक्वार्टर यहाँ बना है झंडेवालान में 5 सितारा उसमें गया है कि नहीं, पीएम केयर फंड में गया है कि नहीं। ये लोग इतने बेशर्म और निर्लज हैं, इन्होंने देश की जनता का, पूरे लोगों का अपमान किया है, खास तौर से उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान किया है, और खास तौर से मैं कह रहा हूं ब्राह्मण समाज का सबसे ज्यादा अपमान किया है। ठगा है इन लोगों ने, ये ब्राह्मण समाज का इतना अपमान किया है ना। ये शुक्ला जी बैठे हुए हैं ना, तो पूछिए तो इनका सीएम कहाँ कहाँ है। कांग्रेस पार्टी 50 से 90 तक उत्तर प्रदेश में थी, सरकार चला रही थी, 24 बरस वहां ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहा, 7 ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे। और ये आजकल ये पंडित जी लोग जो है ना, मोदी और शाह का
8: इसका जवाब तो मेरे रतनलाल जी लूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है, मतलब बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें बड़े बड़े फेसेस, मतलब बड़े बड़े नेता है, बहुत बड़ा दल है, उसी प्रकार कांग्रेस भी मतलब बड़ा दल है, उसमें बड़े बड़े फेसेस हैं, बड़े बड़े नेता हैं। जितनी सक्रियता बीजेपी की दिखती है उतनी कांग्रेस की क्यों नहीं दिखती है?
9: अरे दिखेगी, क्यों नहीं दिखेगी? अभी हमारे जो सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज गए हैं, आपने 3 दिन में देखा कि यूपी में कितनी हलचल है, क्यों नहीं दिखेगी? हम राष्ट्रीय पार्टी है कि नहीं है? हम राष्ट्रीय पार्टी है ना, जहां जरूरत होगी हम दिखेंगे। अच्छा। और जरूर दिखेंगे। इस देश को, इस मुल्क को अगर बनाई है किसी ने, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सेक्टर, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आईआईटीज, मेडिकल कॉलेजेस, ये किसने बनाए? ये भाजपा पार्टी के प्रवक्ता नेता बता दे कितने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए हैं बिहार में? तो बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार 20-25 सालों से है। 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में बनी है। ये खाली, ये बेसिकली राम के नाम पर चोरी और ठगी करते हैं, ये अब देश की जनता को पता लग गया है। और ब्राह्मण समुदाय में, खास तौर से कह रहा हूं उत्तर प्रदेश का, बहुत ही अपमानित महसूस कर रहा है। कितनी
8: ब्राह्मण प्रेम के पीछे कुछ विशेष वजह, मतलब ब्राह्मणों के पीछे मतलब इतनी सहानुभूति क्यों है आपके अभी?
9: इसलिए है ना कि ब्राह्मण समुदाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन रिपब्लिक का सबसे ज्यादा लाभ लिया, और इनके चक्कर में आरएसएस ने बरगला दिया उनको कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और ये ऐसा बनेगा। आज क्या हालत है आप जाके देखिए, दिल्ली में आकर देखिए, दिल्ली में आप रहते हैं, इन्होंने कोई नौकरी सृजन नहीं किया, लेटरल एंट्री ला दिया है ना, कोई नौकरी, सब जगह लीक हो रहा है। राम मंदिर में चोरी नहीं हुआ है, पैसा लीक हुआ है।
8: ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, इसका जवाब दीजिए, मतलब क्या दिन देखने को मिल रहा है कि मतलब पहले जो आपकी हिंदुत्व की पिच पर आने से बचते थे वो अब आपकी पिच पर आकर मतलब खुल्लम खुल्ला खेल रहे हैं?
9: अरे सुनिए ना, हिंदू का ठेकेदार ये कब
8: हो? जवाब तो ले लेना आपने, आपके बहुत सारे सवाल हैं प्रेम शुक्ला जी, फिर दूसरे मेहमानों के पास भी जाऊंगा।
6: श्रीमान राजीव जी फोन कटा होने के कारण मैं श्री रतन लाल जी को पूरा सुन तो नहीं पाया, लेकिन कुछ वो ब्राह्मण कर रहे थे ऐसा मैंने सुना, कुछ ब्राह्मण करके बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे थे। तो फिरोज के पौत्र को जो है कोर्ट पर जनेऊ पहना देने से ब्राह्मणों की चिंता बढ़ जाया करती है। अब फिरोज का पौत्र और ईसाई मां का पुत्र कैसे ब्राह्मण हो जाता है, यह विज्ञान तो कांग्रेस ही बता सकते हैं, क्योंकि भारत में आप धर्म तो बदल सकते हैं लेकिन जाति नहीं बदल सकते, लेकिन कांग्रेसी जाति भी बदल लेते हैं। फिरोज का पौत्र ब्राह्मण हो जाता है,
10: तो फिरोज का पौत्र कैसे ब्राह्मण होता
8: प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं, मतलब क्या है भाई, ब्राह्मणों को आपने पूरा नाराज करके रखा हुआ है, अब उन ब्राह्मणों पर सपा बसपा सबकी नजर है।
10: बिल्कुल ब्राह्मण नाराज,
11: एक मिनट,
10: अरे मैं तो शुद्ध ब्राह्मण हूँ, मैं तो प्रसन्न हूँ, और भारतीय जनता पार्टी किसी जाति किसी धर्म की राजनीति नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास।
8: प्लीज
10: राजीव जी, मैं तो सुन रहा था शांति से,
11: ये पूछिए ना,
10: राजीव जी मैं बहुत शांति से संयम से श्रीमान रतन लाल जी को सुन रहा था। मैं अपेक्षा करूंगा कि श्रीमान रतन लाल जी धैर्य रखे, आप उनको अवसर देंगे, अपने अवसर पर अपनी बात रखने का उनको पूरा अधिकार होगा, क्यों बीच में बोल रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है, कांग्रेस इतना धैर्य क्यों खो दे रहे हैं, सिर्फ मैंने फिरोज के पौत्र की जाति पूछ ली और आपका धैर्य टूट गया, ये ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास के मूल मंत्र पर काम करती है, किसी जाति विशेष पर ना तो अन्याय होने पाएगा ना किसी जाति विशेष का फेवर होने पाएगा, यह भारतीय जनता पार्टी का शासन काल है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का।
8: ठीक है, लेकिन आपको मेरा जो पहले सवाल था जब फोन पर आपको आवाज नहीं आ रही थी, वापस राम राज्य की बात आप करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि चंदा चोरी आपको नुकसान पहुंचाएगी?
10: चंदा चोरी हमने की होती तो नुकसान पहुंचाता, सबको पता है, कर्मचारियों ने की, और कौन कह रहा, नेशनल हेराल्ड, स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस समाचार संस्थान को अपने चंदे से स्थापित किया उसमें गबन करके चाची 420 श्रीमती सोनिया गांधी और उनका 420 पुत्र आज भी अभियुक्त है, जमानत पर हैं। तो जो लोग स्वतंत्रता सेनानियों के पुण्य पुंज को पचा गए, ऐसे चोरों को इस देश की जनता भली भांति जानती है।
8: 30 सेकंड रतन लाल जी, भी दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा, सिर्फ 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा।
10: जो कल तक प्रभु राम के विरुद्ध जो है कपिल सिब्बल जैसे वकीलों को खड़ा करके बाबरी के कलम को स्थापित रखना चाहते थे, जो संसद में कहते थे कि रामलला की जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, उनको राम जी पर भी बात करना शुरू कर दिया, क्योंकि पता है कि इस मुस्लिम पार्टी को बेपर्दा करके पूरा देश इनके चेहरे को भली भांति पहचान।
8: ठीक है रतन जी, सिर्फ 30 सेकंड।
9: अच्छा इनसे पूछिए जरा सा, जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो वहां ये क्या कर रहे थे, आरएसएस क्या कर रहा था जरा सा। दूसरी बात है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सब तो आपके पास है,
10: आजादी की लड़ाई में थे,
9: पकड़ने पहुंच जाता है तो राहुल गांधी
10: संचालक जी जेल गए थे, नेहरू जी की तरह एडविना के चरण नहीं चाट रहे थे, नेहरू जी जब एडविना के चरण चाट रहे थे,
11: संघ परिवार
10: जब नेहरू जी अंग्रेजों के चरण चाट रहे थे तब वो जंगल सत्याग्रह कर रहे थे, परम पूजनीय संस्थापक सरसंघचालक
8: प्रेम शुक्ला जी, इस तरह की टिप्पणी से हम बचेंगे, इस तरह के
10: अंग्रेजों के दलाल तो आप हैं, अंग्रेजों ने स्थापित किया,
8: प्रेम शुक्ला जी प्लीज आप प्लीज,
10: अंग्रेजों की दलाली उनके गोदाम की चाटने के अलावा आपके पास था क्या महाराज?
8: प्रेम शुक्ला जी प्लीज उनको उनको कंप्लीट तो करने दीजिए, और प्लीज इस तरह के शब्दों से बचेंगे फिर बचेंगे हम।
9: नवाज भाई या मुख्तार अब्बास नकवी, आप तो हिंदू मुसलमान दिन भर करते हैं, आपके रिश्तेदार है कि नहीं है ये बताइए देश के लोगों को, आप खाली हिंदू मुस्लिम करते हैं राजनीति, रोटी सेकने की आपने राम को भी बेचा है, जो आपने राम को बेचा है, पता कीजिए इनके पास आया कि नहीं आया,
10: पार्टी के सदस्य अपराध है।
8: मैं फिर वही
9: पैसा कहाँ से
10: बेच रहे थे,
8: फिर हम इतिहास में नहीं जाना, फिर मुद्दे से जो है भटक रहे हैं। उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निशा चौधरी जी, उत्तर प्रदेश मतलब पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा घटित हुआ है जो बहुत शॉकिंग है बीजेपी के लिए, क्योंकि राम हिंदुत्व ये सब जो है मतलब इसने बीजेपी को बहुत मजबूती दी है, बीजेपी को आज आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया है। अब 2027 में आज प्रवेश कर रहे हैं, जब राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हुई है, क्या उसका इम्पैक्ट पश्चिमी यूपी में आरएलडी को भी झेलना पड़ेगा?
12: राजीव जी आज हमारे आदरणीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी, वही विचारधारा जो चौधरी चरण सिंह जी की थी आज उसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। शरद चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा सिर्फ एक ही बात पे थी, एक ही मुद्दे पे थी कि देश का संपूर्ण विकास और वो सबसे पहले कहते थे ग्रामीण विकास, जिसमें चाहे युवा हो, किसान हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, हर वर्ग को साथ लेके चलने की बात वो करते थे। और आज उसी तरीके से माननीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी भी बात करते हैं, ना तो हम धर्म ना तो हम जाति किसी भी तरीके के ऐसे मुद्दों पर चुनाव लड़ने नहीं जाते, क्योंकि हम लड़ते हैं विकास के मुद्दों के ऊपर। और आज उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार में जिस तरीके से चाहे वो किसानों के गन्ना भुगतान हो, चाहे वो सिंचाई योजनाएं हो, चाहे वो मंडियों का नवीनीकरण हो, और चाहे वो किसानों को अपना माल बेचने के लिए नजदीक से नजदीक उनको अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हो उसके लिए हो, और चाहे वो कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो आज अगर हर तरीके से हम देखें तो उत्तर प्रदेश का विकास पिछले 2017 से जिस तरीके से गति से हुआ है उसी गति से और कई गुना आगे बढ़ जाएगा जब फिर से यही सरकार रिपीट होगी। क्योंकि आज अगर एनडीए गठबंधन के हम घटक हैं तो हमने उस गठबंधन को सिर्फ इसलिए सबसे ज्यादा तवज्जो दी क्योंकि ये सरकार जनता के मुद्दों को, जनता के विकास को, देश के विकास को, देश की सुरक्षा को, देश की चौतरफा विकास के ऊपर काम कर रही थी। तो जब लगा राष्ट्रीय लोकदल के माननीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी को कि सरकार के साथ लग के किसान की बात को हम साध सकते हैं, हम किसानों की तरक्की करा सकते हैं, किसानों के गन्ने का भुगतान करा सकते हैं, उसके मूल्य की बढ़ोतरी के लिए बात कर सकते हैं, तो वही संवाद आज करके उनमें प्रोग्रेस हुई है। और आने वाले समय में और प्रोग्रेस होगी तो 2027 में जब हम जनता के पास जाएंगे तो हमारे पास वही मुद्दे होंगे कि पिछले इन सालों में क्या किया गया, और वो जनता को बिल्कुल साक्षात दिखता है कि वाक्य में योगी सरकार में
8: ठीक है
12: उत्तर प्रदेश का
8: तो आप कह रहे कि आपका काम जो विकास है वो जनता तक जाएगा। लेकिन अरुण राजभर जी, क्या आपको लगता है कि गठबंधन में, इस एनडीए गठबंधन में बने रहना सेफ है, खासतौर पर जब से चंदा चोरी का मामला सामने आया उसके बाद से?
12: एसआईटी अपना काम कर रही है।
11: देखिए बार बार जब कहा जाता है चंदा चंदा चंदा, तो ये जितने लोग जाते हैं मंदिरों में सनातन को मानने वाले, वो आस्था के नाम पर अपना श्रद्धा अर्पित करते हैं, वो श्रद्धा से देने का काम करते हैं। अगर किसी ने इस तरह का काम कर दिया है तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार उसकी दोषी नहीं है, वो जो उसमें कर्मचारी काम कर रहे हैं उन वो लोग दोषी है, और सरकार के पास इसकी सूचना आई, एसआईटी गठित करके उस पर कानून उस पर कार्रवाई करने का अभियान चला दिया। अब दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, तो इसमें जो लोग कल तक बाबर को अपना आदर्श मान रहे थे, जो कल तक बाबर के रास्ते पर काम करना चाह रहे थे, आज वह लोग राम राम कर रहे हैं। तो अब उत्तर प्रदेश या देश में कितना विकास चाहिए? जो लोग कल तक सनातन को मानने को तैयार नहीं थे, सनातन को कीड़ा मकोड़ा लोग भगवान राम को काल्पनिक बताने का काम करते थे, आज वह लोग अगर राम राम कर रहे हैं तो सोचिए कि जन्म होने के बाद जो लोग बाबर को मान रहे थे, आप जन्म के बाद कुछ समय बाद वो राम राम कर रहे हैं। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, तीन बार यहां यादव मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, क्या कभी तीनों मुख्यमंत्री अपने श्री कृष्ण भगवान के दरबार में जाकर कहे हैं कि नहीं हम आपकी रक्षा करने के भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे? कभी नहीं कहा। अब जो लोग अपने आराध्य को, अपने वंशज के पूर्वज को वहां स्थापित करने के लिए नहीं जा सकते, दर्शन भी नहीं कर सकते, आज 500 साल बाद अगर भगवान राम का मंदिर निर्माण हुआ है और उसमें करोड़ों लोगों की आस्थाएं उससे जुड़ी हुई है, कोई ठेस पहुंचा रहा है, तो हमारी सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। तो दूसरी बात यह है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस समय 43 डिग्री गर्मी में जनता के बीच में काम कर रहे हैं, और श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बहादुर लोग कहाँ काम कर रहे हैं? वो एक्स पर काम कर रहे हैं और पीसी में काम कर रहे हैं कि वो एक्स पर सुबह 12 बजे के बाद उठेंगे, फिर एक्स पर ट्वीट करेंगे, फिर पीसी करेंगे, उसके बाद फिर एसी में चले जाएंगे। अब जो लोग यह अभियान चलाते हैं, अब उनको जनता के प्रति क्या जवाबदेही होती है? आज उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी का जब आगमन हुआ तो वो तापमान में हुआ, गर्मी के तापमान में हुआ, और श्री अखिलेश यादव जी किस तापमान में है? तो आप दोनों की
8: सवाल आपकी तरफ है तो इसका जवाब दीजिए। जनता के बीजेपी एनडीए वो कह रहे हैं हम तो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं,
11: काम करेंगे,
8: इस पर तो जवाब देंगे। साथ साथ उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी सवाल पूछ दिया, वो कह रहे हैं कि आप इस पर जवाब भी नहीं देंगे क्योंकि वहां पर वो मुस्लिम वोट बैंक जुड़ा हुआ है, इसलिए आप उस कॉन्फ्लिक्ट पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे।
13: देखिए राजीव जी, दो बातें मैं बोलना चाहता हूं कि एक तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं फिर वही सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस भारत के सबसे विशिष्ट भारत रत्न के बाद दूसरा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो अटल बिहारी वाजपेयी को आपने दिया, वही मुलायम सिंह यादव को दिया है, तो उनके पहले बोलने से पहले अपने अपने लोगों के ऊपर भी ध्यान रखिए, ये आपकी सरकार ने दिया है। अब रही बात नितिन नवीन ने क्या किया है, देखिए नितिन नवीन इसलिए आए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में सब कुछ सही नहीं चल रहा है एनडीए में। आपको याद है कि अपना दल एस के जो कैबिनेट मंत्री हैं और अनुप्रिया पटेल के जो पति हैं आशीष पाटिल ने क्या बोला था कुछ दिन पहले, कहा था मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है और धरने में बैठ गए थे विधानसभा के सामने। तब से बातें सेटल नहीं हुई हैं, वो ऐसे ही चल रही हैं। हाल ही में 4 जून को कमलेश बिंद की जब हत्या हुई है तो निषाद पार्टी ने जम के उसका विरोध किया है और कहा कि अगर ये ठोक देंगे कि नीति चलती रहेगी तो हमें राजनीतिक नुकसान होगा। तो भाजपा ने भी विरोध किया, तो इन्होंने क्या कहा निषाद ने कि अगर गठबंधन ठीक नहीं समझते हैं, आपको फायदा नहीं हो रहा है तो तोड़ दीजिए हमसे गठबंधन, धमकी दिया। उसके बाद अब ओपी राजभर जी, अब इनके क्या बताया जाए, ये तो कल तक हमारे साथ थे आज आपके साथ में है। ये उस आजमगढ़ की सीट को चाहते हैं जिसमें निषाद जी का ऑलरेडी विधायक है और वो कह रहे हैं हम सबकी सब लड़ेंगे, वो कह रहे हैं हम एक भी नहीं छोड़ेंगे। और रही बात चौथी आरएलडी, उसका तो इनको ये भी नहीं पता है कि आरएलडी कब तक भाजपा के साथ है। सुनिए सुनिए एक मिनट, अरे अरुण भाई रुक जाओ, अरुण भाई रुक जाओ,
14: आजमगढ़ में
13: अब रही बात आरएलडी की, अरे इतना बुरा क्यों लग गया, दिल पे चोट लगी क्या,
14: सड़कें गड्ढा में तब्दील हो गई है, धान रोपा
13: दिल पे चोट लग गई क्या,
14: आप उस पर विकास को छुपाने का काम कर रहे हैं। अरे भाई तो कम से कम जनता को बताइए,
13: अरे अरविंद राजभर को बनाइए एमएलए बनाने की कोशिश कीजिए,
14: महाराजा सुहेलदेव राजभर के मंदिर पर कम से कम जाकर।
8: अरुण जी, अरुण जी एक बार सुन तो लेना उनको, 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिएगा फिर मैं सुधींद्र जी के पास जाऊंगा। कंप्लीट 30 सेकंड,
13: सुनने का भी हिम्मत रखिए अरुण जी, अभी भाई को बना नहीं पाए हैं ना विधायक, जनता को ना भाई विधायक बना है ना सांसद बना है, सब लोग लगे हुए को लगाने
8: वो के कह रहे हैं आशुतोष जी की हम तो जमीन पर काम कर रहे हैं, आपके जो नेता हैं वो
13: मुझे लगता है कि इन सब में कोई
8: सीमित रहते हैं।
13: राजीव जी इन सब में कोई दम नहीं है, ये सब डाइवर्जन पॉलिटिक्स है। राम मंदिर पे बिल्कुल पूरी की पारी उल्टी घूमी हुई है, समझ में नहीं आ रहा करे क्या, इसलिए स्थितियां बहुत नाजुक है। उत्तर प्रदेश में कुछ भी बड़ा समाचार 2-3 दिन बाद आ सकता है।
8: क्या बड़ा समाचार?
13: नितिन नवीन उसी की तैयारी देखने आए कि समाचार आने से पहले क्या कोई बड़ा भूकंप तो नहीं आएगा। तो ये सब लोग जितने ये अगल बगल है ना, अपना दल निषाद ओपी राजभर, ये अपनी सीट संभाल के रखे हैं, झटका इनको भी मिल सकता है जल्दी।
8: मतलब एनडीए में क्या चल रहा है, मतलब काफी अंदर अंदर खाने आपको जानकारियां मिलती रहती है शायद। आशुतोष जी ठीक है,
13: बैठेंगे एक हफ्ते बाद बैठेंगे राजीव जी हम लोग,
8: ठीक है। सुधींद्र जी, मतलब बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड बड़ा न्यूट्रल है और उस स्टैंड का क्या मतलब, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि उस स्टैंड से सीधे सीधे बीजेपी को फायदा मिल रहा है। चुनावी पूरी तरह से निष्क्रियता है मतलब बसपा की, जो इतनी बड़ी पार्टी है।
15: देखिए उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रांत है, यहाँ की जनसंख्या आप जानते हैं सबसे ज़्यादा है, सीटें सबसे ज़्यादा हैं और ये देश की राजनीति को भी बहुत प्रभावित करती है। इस चुनाव में 2027 के चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपने अपनी कोशिश में लग गए हैं, कुछ समय से लगे हुए हैं, बल्कि मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश में 3 लोकप्रिय नाम हैं इस समय जो देखे जा सकते हैं जो चुनाव के अंदर। एक योगी आदित्यनाथ जी का है जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, मायावती जी का है जो पूर्व में मुख्यमंत्री 4 बार रही हैं, और अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। कांग्रेस पार्टी तो लगभग 40 वर्षों से उत्तर प्रदेश में उनका कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, तो उसके बारे में तो कांग्रेस के प्रवक्ता ही बताएंगे। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की जनता को एक विकल्प चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने इन 3 लोगों के शासनकाल को देखा है, भ्रष्टाचार को भी देखा है और उन्होंने जो विकास के काम किए हैं उनको भी देखा है। जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो उस समय कानून व्यवस्था बहुत चुस्त और दुरुस्त थी, ये भी लोगों ने देखा है। अब रहा ये जो वर्तमान चुनाव है, इस वर्तमान चुनाव में मैं कहूंगा कि जल्दबाजी होगी कहना कि ये ही केवल जीतेगा या ये नहीं जीतेगा। अब ये आने वाले दिनों के अंदर जब लोग अपनी पूरी लिस्ट जाहिर करेंगे, चुनाव कैंपेन शुरू होगा, उसके आसपास एक अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी।
8: सुधींद्र जी क्या आप ये मानेंगे, ये क्या आप मानेंगे, ठीक है रिजल्ट तो खैर चुनावों में पता चलेगा, लेकिन क्या आप ये मानेंगे कि बसपा उतनी सक्रिय नहीं रहती, मतलब चुनाव जब हो जाते हैं संपन्न उसके बाद वो सिर्फ ट्विटर तक या प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रहती है, उसके बाद मतलब ग्राउंड पर जो एक एग्रेशन दिखना चाहिए, जो आक्रामकता दिखनी चाहिए ऑपोजिशन की, वो नहीं दिखती है।
15: देखिए बसपा के कोई प्रवक्ता होंगे तो देंगे, पर आपने मुझे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बुलाया है। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि बसपा की जो राजनीतिक संस्कृति है वो संविधान के दायरे में, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के दायरे में राजनीति किया करती है, और इसके अंदर बहुजन समाज पार्टी का पिछला पुराना भी जो प्रदर्शन रहा है उसको लगभग 20% वोट उसके पास अपना रहता है। और पिछले बार जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ उस समय भी जो परिस्थितियां थी उनमें भी 10% वोट रहा था, तो इस बार अगर उनका 20% वोट जो पुराना रहता और उसमें और लोगों को जोड़ने में सफल रहते तो निस्संदेह बहुजन समाज पार्टी की एक बहुत अहम भूमिका होगी, और बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी के नेतृत्व में कुछ इस प्रकार का उनका भूमिका रहेगी जिसमें वो उत्तर प्रदेश में निर्णायक हो सकती है।
8: प्रेम शुक्ला जी, मैं इस पर चाहूंगा कि आप जवाब दें कि आपको टफ कंपटीशन कौन दे, आपको लगता है कि देगा, प्लस में जो समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला है, क्या है आपके पास उसकी कार्ड?
10: देखिए बहुजन समाज पार्टी की सुश्री मायावती के नेतृत्व वाली पार्टी ने 2007 में एक नारा दिया था, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। तो गुंडे कौन थे? गुंडे यही समाजवादी पार्टी के लोग थे। किसके विरुद्ध नारा था? ये समाजवादी पार्टी के गुंडों के विरुद्ध नारा था। तो गुंडों के विरुद्ध एक अभियान तो सुश्री मायावती के नेतृत्व में निश्चित तौर पर चला था, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। और अगर सबसे बड़ी भूमिका जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में उत्तर प्रदेश में किसी की रही है तो सुश्री मायावती की रही, और इसीलिए श्रीमान मुलायम सिंह यादव 1993 में सत्ता में आए थे तो उसका कारण एकमात्र था कि माननीय कांशीराम जी ने उनके साथ गठबंधन किया था। सुधीर जी इस बात को निश्चित तौर पर मानेंगे। और उसके बाद जिस तरह से सुश्री मायावती का उत्तर प्रदेश के लखनऊ के गेस्ट हाउस में चीरहरण करने का प्रयास हुआ, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के शासनकाल में थाने दर थाने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के खिलाफ सपाइयों के उत्पीड़न का सत्र प्रारंभ हुआ, और आज भी सबसे अधिक जो है समाजवादी पार्टी के समर्थकों के खिलाफ ही अनुसूचित जाति जनजाति के उत्पीड़न के मामले जो है वो FIR दर्ज होते हैं, तो ये सबके सामने है, इसमें कुछ छिपा हुआ नहीं है। लेकिन हमारे सामने जो मुकाबला करने के लिए सबसे ज्यादा दम ठोक रहा है वो तो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी का संकट यह है कि उनका नेता जो है वो सड़क पर उतरने के लिए तैयार कभी रहा नहीं, संघर्ष करने की उसकी स्थिति रही नहीं है। पिता ने उसको जो गद्दी दी थी उस पिता से भी, जैसे औरंगजेब ने अपने पिता से जबरदस्ती सत्ता छीनी थी, उसी तरह से अखिलेश यादव को मंच से श्रीमान मुलायम सिंह यादव की माइक छीनते हुए हर किसी ने देखा था, और मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण देने पर इनको इतनी पीड़ा हो रही है, उनको जो जेल में जिसने जेल में भेजा था, मैं शब्दों का सही चयन कर रहा हूँ, जिसने जेल भेजा था, जिस कांग्रेस ने मुलायम सिंह यादव को जेल भेजा, आज उस कांग्रेस की चाटुकारिता करने में अखिलेश यादव स्वयं को धन्य पा रहे हैं, और इनको आपत्ति है कि मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण क्यों दे दिया। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देने पर जिनको अत्यंत पीड़ा हो रही है, ऐसे अखिलेश यादव के समर्थक मुलायम सिंह यादव को जेल भेजने वाले और उनके एनकाउंटर का प्रयास करने वाले, ये मुलायम सिंह यादव जी ने स्वयं 1986 के एक इंटरव्यू में बताया है कि किस तरह से 1980 के दशक में कांग्रेस की सरकार ने श्रीमान मुलायम सिंह यादव का एनकाउंटर करने का प्रयास किया था। तो जिन्होंने श्रीमान मुलायम सिंह यादव को जेल भेजा, उनके एनकाउंटर का प्रयास किया, उनके साथ उनके पुत्र जो है खड़े हो गए। मुलायम सिंह यादव की राजनीति गैर कांग्रेसवाद पर निर्भर थी, उन्होंने जो है आखिरी दिनों में 2008 में
8: ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आपके आपकी बात आ गए हैं, मतलब आशुतोष आप इसका जवाब तो दें, लेकिन साथ साथ में मतलब हाल के मतलब देख रहा हूँ समाजवादी पार्टी के नेताओं के जो वक्तव्य है, मतलब ये वो समाजवादी पार्टी है जो आरोप बीजेपी पर लगाया करती थी कि ये तो हिंदू मुसलमान करते हैं या फिर हिंदू हिंदू करते रहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स मतलब पहले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये जो तमाम बड़े बड़े सोशल जो बहुत बड़े इश्यूज थे उन पर फोकस करने के बजाय समाजवादी पार्टी भी बस अब राम राम में ही जुटी हुई दिख रही है, दूसरे मुद्दों पर वो फोकस नहीं कर रहे। मतलब पहले आप ये आरोप लगाते थे बीजेपी पर, अब आप खुद भी वही कर रहे हैं ऑपोजिशन में रहते हुए।
13: देखिए, पहले तो मैं इस बेवकूफ आदमी को बोल दूं कि भाषा का मर्यादा
8: है। आशुतोष प्लीज,
13: मतलब गलती इन्होंने
10: की। तू भी जरा शांत रह।
13: देखिए शुरू
8: हो गया ना। आशुतोष मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा,
13: इसके मुंह से प्लीज निकलेगा तो गंदगी निकलेगी।
8: आप मतलब आप दोनों, आप इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर, मैं आप लोगों से अपेक्षा नहीं रखता कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म, नेशनल प्लेटफॉर्म पर आप एक शब्द कहते हैं मतलब वायरल हो जाता है। आप लोग एक शब्द कहते हैं तो मैं प्लीज, मैं पहले तो इस प्लेटफॉर्म से जो जो शब्द अब तक निकले उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, और मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अवॉइड करें से, वरना मुझे थैंक यू कहना पड़ेगा। अब आप अपनी बात शुरू करें आशुतोष।
13: राजीव जी, आपको एज अ मॉडरेटर रोकना चाहिए ऐसे शब्दों को, और कौन शुरुआत कर रहा है इसको भी देखना चाहिए। हम बस ये बताना चाहते हैं कि मेरे मुंह में भी जबान है, और जब चाहूंगा तो पटक के इनको जवाब दूंगा। तो इसलिए ढंग से बात करें तो ढंग से बात होगी। दूसरी चीज, अब इन्होंने बोला कि मायावती ने कहा कि
10: गालियां बकोगे गाली खाओगे।
13: अरे ठीक है भाई, तुम्हारा तो इतिहास ही वैसे ही है। तो इन्होंने मायावती जी के एक उसमें बोला था कि गुंडों की भी छाती पे मोहर लगेगा, हाथी पे। अरे अब शांत रहिए, म्यूट बंद कराइए,
8: फिर मुद्दे पर आते हैं।
13: मैं इनकी बातों को ही बता रहा हूँ। 2007 में जब ये बढ़ाया गया ये कीचड़ गुंडों की छाती पे और मोहर लगाऊ हाथी पे, तो समाजवादी पार्टी तो द्वितीय स्थान पे आई थी सबसे ज्यादा।
8: अगर फिर उनके ट्रैप में आ गए ना आप, फिर वो उन्हीं का जवाब देने लग जाते हैं कि 2005 में 8 में क्या हुआ था। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप, महंगाई बेरोजगारी वाला मेरा प्रश्न था जो आप उठा रहे थे और बीजेपी नहीं करती थी, तो आप उनसे पूछते थे आप खुद क्यों नहीं उठा रहे मुद्दों का।
13: ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक मिनट तक वो बोले और 20 सेकंड में बोलूं। अगर उन्होंने सवाल किया है तो आपके दर्शकों का जवाब भी मिलना चाहिए ना उसका। अब बस बस बहुत छोटी सी लाइन है,
8: बोले
13: कि समाजवादी पार्टी उसमें द्वितीय स्थान पे हुई थी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी बुरी तरीके से हारी थी, 50 सीटों पे सिमट गई थी। तो कितने गुंडे थे और कितने हारे थे 2007 में, ये पहले भाजपा का इतिहास देखो। और 2012 में फिर हारे थे, तो एक बार नहीं ये लगातार हारे थे और 47 में गिर गए थे। तो अपने इतिहास का सबसे खराब उत्तर प्रदेश का चुनाव 2007 और 2012 का था। ये भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को जो नहीं जानता है वो टीवी पे ना बैठ के हमको ज्ञान दे। अब दूसरी बात आती है, चंदा चोरी एक इतना बड़ा चीज है जिसको भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से नीचे तक वो सहम गया है। उसको उम्मीद नहीं थी कि जिस राम भक्त के ऊपर हमने पूरी राजनीति लगाई वो आज पूरी तरीके से धराशायी है। आज का रिकॉर्ड ये है कि राम मंदिर में चंदा के चढ़ावे में 95

0: ये लोग दंगाई बना रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा था
1: हम्म,
0: कि जो समाज अपने आप को इंटेलेक्चुअली बहुत शार्प और अग्रणी मानता था, ये इनका कॉन्ट्रीब्यूशन। हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं, हम एजेंडा की राजनीति करते हैं। आप उठा के देख लो, जितने स्कूल कॉलेज पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक का नेशनलाइजेशन, लैंड रिफॉर्म, दलितों को राइट्स, प्रोटेक्शन, पट्टे, जमीन, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, सब में रिजर्वेशन मिला उनको, उनका प्रतिनिधित्व मिला। ये आरएसएस बीजेपी उन सबको लूट रही है, ये है इनकी हकीकत। तो मैंने ब्राह्मण से लेकर और दलित तक आपको बता दिया कि इन्होंने पूरा ब्राह्मणों को, अब उनके बच्चों को, मैं बार बार कहता हूँ कि अपने बच्चों को देखिए,
1: ठीक है,
0: आपका बच्चा कहीं दंगाई तो नहीं बन रहा है। मैं शिक्षक हूं भी हूँ, मैं छात्रों को पढ़ाता हूँ, तो इनका ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। पूरे देश की हालत, आर्थिक हालत खराब है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, प्रधानमंत्री सिर्फ फर्जी अवार्ड लेने जाते हैं, पूरा दुनिया में जग जाहिर है, अपनी डिग्री दिखाते नहीं है। तो ये सब हाल है, इसलिए इनसे
1: ठीक
0: मुक्त
1: है,
0: कराना है। आरएसएस और बीजेपी के
1: ठीक है।
0: लोगों ने
1: निषाद, निषाद, निषाद
0: देश को
1: चौधरी, चूंकि
0: लूटा है,
1: आखिरी
0: देश
1: रिमार्क,
0: के
1: समय
0: लोगों का
1: बड़ा कम।
0: अपमान किया है।
1: आपके रिमार्क, क्या इस बार चैलेंजेस 27 में बहुत डबल होने वाले हैं? मतलब आप विकास की बात तो कर रही थी, लेकिन उसके अलावा मतलब ऑपोजिशन के इस बार बहुत बड़े बड़े मुद्दे जो आपके सामने खड़े हैं, कैसे पार करेंगे उन मुद्दों को?
2: नहीं देखिए राजीव जी, जो मुद्दा आया है राम मंदिर का, इसमें करोड़ों भक्तों की एक आस्था है। और एक बात का आप जरूर इस बात को कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी ने जैसे ही ये पता लगा, वो इमीडिएट राम मंदिर गए और उन्होंने कहा किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, जो वो हर किसी क्रिमिनल के लिए कहते हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए अपराध हो, चाहे वो गुंडों के प्रति हो,
1: ठीक
2: चाहे
1: है,
2: वो माफिया के प्रति हो, उनका बुलडोजर हमेशा ही चला है न्याय के लिए। तो इस मुद्दे पर भी न्याय होगा,
1: ठीक
2: लेकिन
1: है, आप कह रहे हैं कि न्याय
2: राष्ट्रीय
1: होगा।
2: लोकदल
1: अरुण
2: किसी और
1: राजभर,
2: की उसमें
1: 30 सेकंड्स
2: डालने
1: पे,
2: का।
1: 30 सेकंड आप।
3: देखिए, चार चार बार सपा की सरकारें थी, नौकरियों में लूट होती थी, और उत्तर प्रदेश की 9 साल की सरकार में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ नौकरियां दी जा रही है और हर वर्ग के लोगों को नौकरियां दी जा रही है। यहां तो एक वर्ग को नौकरी मिल रही थी जब सपा की सरकारें थी। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ये दोनों मिले हुए लोग हैं। ये जो कल तक इनको चिल्लर चिरकुट दिखाई देते थे, और
1: ठीक है,
3: आज वो लोग इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं।
1: ठीक है।
3: मुझे लगता है
1: सुधींद्र
3: उत्तर
1: जी,
3: प्रदेश की जनता आने
1: क्या
3: वाले समय
1: सपा
3: में
1: को
3: इन्हीं
1: फायदा
3: लोगों को
1: होगा
3: मुख्यमंत्री बनाएगी।
1: चंदा चोरी से, और बीजेपी को नुकसान होगा या नहीं?
4: आपने मुझसे
1: जी
4: ये
1: सुधींद्र
4: प्रश्न
1: जी, जी
4: किया है।
1: जी जी
4: देखिए, ये तो आने वाले चुनाव में एक किसी पार्टी को आप कह दें कि फायदा होगा और एक पार्टी को नुकसान होगा, इसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे। बेरोजगारी प्रश्न होगा, भ्रष्टाचार होगा, कानून व्यवस्था होगा, विकास का होगा, और साथ में ये भी जो चंदा चोरी का प्रश्न है ये भी एक रहेगा। पर जो व्यक्ति इन सारे सवालों को समेट सकेगा, एक बेहतर नेतृत्व, तो पुराना उसका एक इतिहास रहा होगा, उस पार्टी को और उस नेता को ही लोग वोट देंगे। और हम समझते हैं कि शीघ्र चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें सभी लोग टेस्टेड हैं, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी
1: जी,
4: हो जाएगा।
1: आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2027 के चुनाव में यूं तो अभी समय है, लेकिन अपनी अपनी तैयारी हर राजनीतिक दल ने शुरू कर दी, और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश पहुंचे, जब उत्तर प्रदेश में राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर बवंडर मचा हुआ है। कितना मजबूत करते हैं अपने आप को, कर पाते हैं अपने आप को, ये तो खैर 27 में दिख ही जाएगा। रुकने छोड़ से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
5: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Acajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: वी आर ओवर जिमी।
6: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PP अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: हमने तब भी सवाल किया था,
4: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
3: हम आज भी सवाल करते हैं,
4: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
3: ऑपरेशन अग्नि,
4: आज तक के ही स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
3: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
5: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमा कुरैशी। ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
6: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अकल अकल नहीं है। इस पे जो बहुत फेमस सीन है वो जो
7: परमिशन लेनी चाहिए ना,
6: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई।
8: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है, लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी,
6: आई फील अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो रुक जाइए।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: कि हम इस समय तेहरान में मौजूद है और हर बदलते घटनाक्रम की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।
1: मैं गीता मोहन सीधे तेहरान से आज तक के लिए।
2: Drinks are now at McDonald's. Like the strawberry watermelon refresher, the mango pineapple refresher with popping boba, and the Sprite berry blast topped with cold foam. Who knew ice cold drinks could be so fire?
3: The sun's out, and so is our new drink lineup. From the blackberry passion fruit refresher to the dirty Dr. Pepper, and they all pair perfectly with some fries. Refreshers contain caffeine. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Sports fans, TuneIn Premium is the ultimate playbook. From live play-by-play of the biggest leagues all season long.
5: Lee looks for someone, finds the right someone. Curry knocks it down. Tatum lines up to three and nails it.
4: To live sports talk radio to keep you in the game in between games.
6: Because people who all watch games, they hear the voice.
4: The sports action you crave comes alive with TuneIn Premium. Live games, fewer ads, endless action. Upgrade to premium to get in the game.
7: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
8: राजनीति में कई बार संदेश भाषणों से नहीं तस्वीरों से लिखा जाता है। स्वागत केवल सम्मान नहीं होता, वो शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन भी होता है। लखनऊ की सड़कों पर कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखी जब नितिन नवीन पहली बार बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद लखनऊ पहुंचे। तो सवाल यह कि क्या नितिन नवीन का दौरा बीजेपी के 2027 चुनाव अभियान का औपचारिक आगाज है? क्या बीजेपी का संगठन विपक्ष के सामाजिक समीकरणों पर फिर भारी पड़ेगा या इस बार मुकाबला बदल चुका है? क्या यूपी में 2027 की लड़ाई सत्ता बचाने की होगी या सत्ता बदलने की? बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का लखनऊ एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए सीएम योगी खुद मौजूद थे, साथ में बीजेपी के दिग्गज मंत्री और नेता थे। यूपी विधानसभा चुनाव अगले साल के शुरुआती महीनों में होना है, लेकिन बीजेपी ने अपनी राजनीतिक घड़ी तेज कर दी है। लखनऊ दौरे पर नितिन नवीन का एजेंडा साफ है। 2024 की समीक्षा, सोशल इंजीनियरिंग, सरकार संगठन में तालमेल, वोटर आउटरीच, 2027 की जीत का ब्लूप्रिंट। बीजेपी अध्यक्ष पद संभालने के बाद नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी ने बंगाल में ऐतिहासिक रूप से सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की, जबकि असम और पुडुचेरी में अपनी सत्ता बरकरार रखी। केरल में भी पार्टी का वोट बैंक तेजी से बढ़ा है। अब इसी विनिंग फॉर्मूले के साथ वो यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव लगातार पीडीए के फॉर्मूले को जीत का मंत्र बताते रहे हैं।
9: हम सबसे अपील करेंगे, जो हम लोगों ने एक आवाज दी है कि पीडीए से सब जुड़ जाएं। मुझे उम्मीद है पीडीए की लड़ाई मजबूत होगी, पीडीए एनडीए को हराएगा, और जब हम लोग टिकट बांट रहे हैं, सीटें बांट रहे हैं, तब बीजेपी अपनी टिकट काटने की सोच रही है। सोचो, बीजेपी टिकट काटना चाहती है, हम सीटें बांट करके जनता में पहुंचे।
10: नफरत के सहारे ये सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन देश जाग गया है, पीडीए जाग गया है। इस बार मुकाबला पीडीए करेगा एनडीए का।
8: हालांकि जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं, उसमें से नितिन नवीन के स्वागत करने पहुंचे यादव समाज के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि यादव समाज को बीजेपी में ही सम्मान और भागीदारी मिली है। यूपी की राजनीति में हर चुनाव सामाजिक समीकरणों और संगठनात्मक ताकत की नई परीक्षा बनकर आता है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के बाद बीजेपी के लिए अब सबसे बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, जबकि विपक्ष अपनी जीत का दावा ठोक रहा है। ऐसे में लखनऊ में जो बिसात नितिन नवीन बिछाएंगे, उसकी गूंज 2027 विधानसभा चुनाव में जरूर सुनाई देगी। आज तक ब्यूरो।
11: मोदी जी के साथ वो संपर्क में है फोन पर,
12: इस मामले में,
11: इसी मामले में। और यहाँ जब आ गए तो मोदी जी ने कहा रात को वो 1:30-2 बज गए होंगे रात के, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब? अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं, लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं ये, हाँ अनिल मिश्रा हैं, तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं अभी।

0: उत्तर प्रदेश में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे पर आपने देखा दंगल, अब आगे देखिए हल्ला बोल अंजना ओम कश्यप के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: सीक्रेट मीटिंग में बांटते थे चोरी की रकम। पीएम मोदी ने विपक्ष पर युद्धकाल में देश को डराने का लगाया आरोप। राजस्थान के बालोतरा में बोले, संकट में राष्ट्रहित को आगे रख कर लिया फैसला, देश पर नहीं डाला बोझ। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार यूपी के दौरे पर नितिन नवीन। मिशन 2027 को लेकर सरकार से पार्टी तक मैराथन बैठक, जीत की हैट्रिक के लिए मंथन। 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा संसद का मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री रिजिजू बोले, कई मुद्दों पर बहस, चर्चा और होंगे बड़े फैसले। मूसलाधार बारिश से पानी पानी मुंबई, कई इलाकों में जल भराव से भारी परेशानी। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, ट्रेनों और उड़ानों पर भी असर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

क्या बोल, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप। राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड पर विपक्ष का हमला थमता नहीं दिख रहा। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भरोसे और आरएसएस की ओर से भी अब कड़ी सजा की मांग के बावजूद विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। सवाल यह है कि क्या चढ़ावा चोरी पर मचा ये कोहराम बीजेपी को हिंदुत्व पर बैकफुट पर खड़ा कर सकता है? क्या राम मंदिर मुद्दे पर विपक्ष का ट्रैक रिकॉर्ड गिनाकर चढ़ावा चोरी पर भक्तों के आक्रोश से बीजेपी बच जाएगी? अगर 6 जुलाई की ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा पर कार्रवाई हो भी गई तो भी क्या लोगों का विश्वास फिर से लौटेगा? चढ़ावा पर कोहराम, विपक्ष कहे राम राम, आज इसी पर हम हल्ला बोल में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। शिवम त्यागी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर अजय उपाध्याय कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जुड़ रहे हैं, कल्की धाम के पीठाधीश्वर हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष अनुराग भदौरिया जी रखेंगे और इधर प्रवेश चौधरी जी हैं जो वीएचपी का पक्ष रखे होंगे। और वहीं एसबीएसपी की तरफ से राघवेंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं।

0: मंदिर चढ़ावा चोरी पर सियासी आर पार।
1: चोरी की रकम है वो भी बरामद हो रही है, तो अब तो ये साबित हो रहा है ना कि सरकार जो काम चाह रही है, जनता जो चाह रही है उस काम को सरकार कर रही है।
0: 27 सूपी चुनाव से पहले सरकार पर विपक्ष की चढ़ाई।
2: राम का नाम अपने बदनाम कर दिया।
0: अखिलेश ने बीजेपी के खिलाफ बनाया बड़ा मुद्दा।
3: न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है।
0: क्या बीजेपी के लिए भारी पड़ेगा चढ़ावा चोरी का मामला?
4: उसकी जांच हो रही, जांच का जो निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर जो कार्रवाई है वो होगी।
0: क्या राम की आस्था को हथियार बनाएगा विपक्ष?
5: पूरे राम मंदिर ट्रस्ट ने मिलकर ये डकैती अयोध्या के राम मंदिर में की है।
0: क्या SIT जांच में होगा दूध का दूध पानी का पानी? चढ़ावा चोरी पर संघ ने तोड़ी चुप्पी, बढ़ा सियासी तापमान।
6: जो लोग जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
3: हर बात को दबाने के लिए कैसे डराएं, धमकाएं, क्या रास्ता निकालें, कोई कहानी बना करके बता दें कि उन्हीं का रिश्तेदार है।
0: 27 से पहले ही यूपी में शुरू हुआ राजनीतिक घमासान।
7: आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या ये चढ़ावा चोरी का मुद्दा, सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ शिवम त्यागी जी, वो सवाल ये है कि क्या ये चढ़ावा चोरी का, वो भी उस राम मंदिर के लिए जिसने इतना सालों का इंतजार जिसके लिए किया हिंदुओं ने, ये आपको बैकफुट पर नहीं डाल देगा? अब चुनाव दर चुनाव 80-20 कहते थे योगी आदित्यनाथ जी, हिंदुत्व के ही एजेंडे पर तो आप आगे बढ़ते थे।
8: अंजना जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप इसको आस्था के नजरिए से देखें तो हाँ, जाहिर है कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये दुखद है। इस देश में और दुनिया में जहां पर भी हिंदू रहता है उसको नाराजगी, उसको इस चीज को लेकर चिंता रखना और ये सब तमाम चीजें जायज हैं। लेकिन अगर खासतौर पर आप बात करते हैं तो चुनाव की, तो मैं एक चीज मानता हूं कि जब भी आप चुनाव में जाते हैं तो दोनों ही पार्टीज का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है और दोनों ही तरफ से 2-3-4 जितने भी लोग हैं उन सब के बारे में उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उन्होंने राम मंदिर मूवमेंट को लेकर क्या किया, उनके किस तरह के कर्म रहे, क्या उन्होंने किया, किस तरीके से वो आगे बढ़े, क्या उनका राम मंदिर में कोई समर्थन था या सपोर्ट था या विरोध था, या वो बाबर की तरफ वाले लोग थे जो उधर की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे। ये सारी चीजें जब जनता देखती है तो जाहिर है सही फैसला लेती है। जहां तक बात चढ़ावा चोरी का विषय की है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि चाहे कोई भी उसमें हो, बड़ा छोटा मछली मगरमच्छ जो भी सब कह रहे हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अगर ट्रस्ट से आगे की बात करें तो चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विषय हो, मंदिर का विषय हो, आस्था का विषय हो, वो कभी ना कम हो सकती है, ना हो सकेगी, ना कोई कर पाएगा। उसकी वजह है जब इस देश ने 500 साल, जब हमारे बड़ों ने, पूर्वजों ने 500 साल उसके लिए इंतजार किया, आस्था तब भी उतनी ही थी। जब रामलला टेंट में थे आस्था तब भी उतनी ही थी। जब इस देश में लोग अपने आप को मुल्ला और मौलाना कहलाने में शर्माते नहीं थे और कहते थे कि अगर हमें यह भी कहा जाए तो कोई बुराई नहीं है, आस्था तब भी थी और आस्था आज भी है। लेकिन जब मैं ये कहता हूं तो मैं किसी भी चढ़ावा चोर या फिर उसमें जो भी व्यक्ति है उसको बचा नहीं रहा हूं, ना बचाना चाहता हूं। हर एक को सजा मिलेगी, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनके मंदिर में आस्था थी।
7: अनुराग जी से शुरू करते हैं, समाजवादी पार्टी बड़ी है उत्तर प्रदेश में, अजय जी थोड़ा सा आपको उनको पहले मौका देना होगा, चलिए जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जांच तो हो रही है ना, SIT गिरफ्तारियां कर रही है, अब ऐसा तो है नहीं कि सबको बंद कर दे और फिर कोर्ट में केस ठहरे नहीं, जांच हो रही है, माफ नहीं किया जाएगा। अनुराग जी
9: देखो, हिंदुस्तान में जो सनातनी है, सारे सनातनी देश के संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। 500 साल तक सनातनों ने इंतजार किया और उसके बाद जब फैसला मानी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का आया, सभी सनातनी ने मिलकर राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का निर्माण किया। और राम मंदिर का निर्माण के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपने कब्जा करने की कोशिश की। सोचिए, सनातनी लोग, सनातन विपक्ष में हम हैं, इसका मतलब नहीं कि विपक्ष में सनातनी नहीं है, सभी सनातनी है, सबके सबने मंदिर बनाने में योगदान दिया। फिर इन्होंने क्या किया, कब्जा करके अपने ही ट्रस्ट के लोग, अपने ही विश्वास के लोग, अपने ही संबंधित लोगों को ट्रस्टी बना दिया और उसके बाद जब क्या और लोग सनातनी नहीं थे, औरों को उसमें ट्रस्ट में नहीं रखना चाहिए था, इन्होंने किसी को नहीं रखा, अपने लोगों को रखा। बाद में जब उसमें चोरी हुई, जिस तरह दान पात्र में चोरी हुई, तो फिर वो सनातनी जो हम सनातनी थे अपना दोनों धर्म निभा रहे थे, विपक्ष का भी धर्म निभा रहे थे और सनातन होने का भी धर्म निभा रहे थे, हमने उनको पकड़ा, हमने लाया जनता के सामने कि देखिए वहां पे चढ़ावा चोरी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी शुरुआत में आनाकानी कर रही थी, डिबेट में भी आने को तैयार नहीं होती थी, आपके साथ सामने बोलने को तैयार नहीं होती थी, ये पता नहीं कहां चले गए थे। लेकिन समाजवादी लगातार, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार लड़ते रहे। उसके बाद लास्ट में पता चला हाँ चोरी हुई है, एसआईटी गठित हुई है। मैं तो कह रहा हूं अगर आपको मगरमच्छ पकड़ने हैं, 25 दिन हो गए, आप तो आज आप 25 दिन बाद तो आरएसएस को याद आया, आज कह रहे हैं, उनका स्टेटमेंट आया कि मैं इससे बहुत आहत हूं, 25 दिन बाद तो प्रभु राम के यहां पे चढ़ावा में चोरी हुई, 25 दिन बाद आहत हुए, तो सोचो आम जनता के साथ क्या करते होंगे ये, इनका सोचिए इनका भाव कैसा होगा। दूसरी बात, 25 दिन तक क्या कोई चोर अपनी चीजें बचा के रख पाएगा, क्या वो सारी एविडेंस खत्म नहीं कर देगा? आपने अब तक तो उस पर उनको बड़े लोगों को पकड़ लेना चाहिए था, आपने छोटे लोगों को तो पकड़ा है लेकिन मगरमच्छ को आपने नहीं पकड़ा, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार ही बचाने की उस पर कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर इनसे कहना चाहता हूं एक बात सुन लीजिए, हम समाजवादी लोग हैं, रामनाथ लोहिया ने 1963 में रामायण मेला शुरू किया था, चूंकि हम प्रभु के आदर्श आचरण पे चलते हैं, चूंकि उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, यही असली सनातनी होता है जो सभी धर्मों का सम्मान करे, सबको अपनाए, सबको प्रेम की भाषा बोले, पूरे विश्व को हम वसुदेव कुटुंबकम बात करते हैं, ये नफरत की बात करके प्रभु की बात कैसे कर सकते हैं, जरा पूछिए।
7: शिवम जी जवाब दीजिए।
8: मसला ये नहीं कि रखते हैं आप दो दो चेहरे, मलाल ये है कि दोनों खराब रखते हैं। अरे बाबरी वालों पूरा जीवन बीत गया, एक तो आपकी कब्जे की जो आदत है ना ये जाती नहीं है।
9: अच्छा,
8: 21 दिसंबर 1992 को रामगोपाल यादव ने खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस यानी कि इस देश के संसद में पार्लियामेंट में कहा कि क्या यह सच्चाई नहीं है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो हैं बाबरी मस्जिद में कब्जाधारी हैं? क्या यह सच्चाई नहीं है कि वहां पर गुम्मत पे लोग चढ़ तो गए मुलायम सिंह की सरकार में लेकिन तोड़ नहीं पाए, यानी कि आपने गोली मारी? और उन्होंने कहा कि इसके लिए हमारे नेता मुलायम सिंह यादव को मुल्ला और मौलाना कहा जाता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बाबरी तो सच्चे बन जाओ कम से कम, क्योंकि श्रीराम भक्त तो सच्चे बन नहीं सकते। अब एक और चीज, मैं पहले तो इनकी एक्स्ट्रा सनातनी बनने के ₹50 ओवर एक्टिंग के काटो,
9: जवाब दो,
8: जब हो गया भाई,
9: जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो।
8: आपकी इस एक्टिंग से एक बात और साबित होती है इस 21वीं सदी में और राजा राम के देश में, आप कितने भी बाबरी वाले बन लो, उम्मीद आज भी उनको राम से ही है कि वोट तो वही मिलेगा, तो कृपया करके वोट से आगे निकलिए। और अंत में आना चाहता हूं, रुकिए ना प्लीज, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इतने ही परम भक्त हैं, इतने ही प्रेमी भक्त हैं, आप इतना ही चाहते हैं, तो चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो चाहे श्री कृष्ण हो, दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, एक सीधा सा जवाब दे दो, देश अपने आप जान जाएगा और समझ जाएगा।
7: ठीक है, दो प्रश्न है अनुराग जी। एक तो क्या आप मानते हैं कि वाकई वो राम जन्मभूमि थी, क्योंकि लंबे अरसे तक तो नहीं माना, वही वो कह रहे कृष्ण जन्मभूमि, क्या आप मानने को तैयार होंगे मथुरा में?
9: देखिए, मैंने बहुत सीधा सा जवाब दिया है कि जब आपने भी सनातन की प्रभु राम के मंदिर की बात हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा गया तो बिलबिला गए, बिलबिला के कहां चले गए पता आपको? बाबर, औरंगजेब, इतिहास में पन्नों को पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। मैंने तो बाबर का नाम नहीं लिया, मैंने बोला कि देश संविधान से चलता, न्यायपालिका से चलता, न्यायपालिका का आदेश हुआ, हम सबने सर आंखों पर रखा और सभी सनातनियों सर आंखों पर रखा और मंदिर इतना भव्य मंदिर बना। इसी तरह से इस देश के अंदर में जब वहां पर चोरी हो तो हमने पकड़ा, इसी तरह से हम एक हाथ में संविधान और दिल के अंदर में प्रभु के प्रति आस्था, दोनों को लेके चलते हैं, यही राष्ट्रवाद है। असली राष्ट्रवाद यही होता है जो देश का भी सम्मान करे, सनातन का भी सम्मान करे, एक ही लाइन तो है, राष्ट्र का भी सम्मान करे, संविधान का भी सम्मान करे, न्यायपालिका का भी सम्मान करे, और जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारा सनातन है उसका भी सम्मान करते हुए चोरों को रोके और चोरों को रोकने चोरी करने से रोके और आप चोरों को बचाने की कोशिश कर रहे हो।
8: श्री कृष्ण मंदिर पर सवाल था, भूल गया,
7: इसका जवाब दिया मैंने,
8: अपना बोलने में कुछ भी निकल जाते हो, जवाब नहीं देते।
9: बोला मैंने, मैंने बोला हम संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं, आपके बोलने से मंदिर नहीं बना है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे बना है, तभी वहां भव्य मंदिर बना और हम लोगों ने चोरी पकड़ी वहां पे, इसी तरह से न्यायालय के आदेश पर चिल्ला
7: मंदिर 5 बार कह रहे हैं।
10: अंजना जी वाकई ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और जिस तरह से करोड़ों हिंदुओं के आस्था पर प्रश्न लगाने का काम, सही पूछिए तो ये चंदा चोरी सिर्फ नहीं है, राम नाम जपना, चंदा चढ़ावा का माल अपना करके जो भाजपा और आरएसएस और बीएसपी के लोग जो यहाँ थेथरगिरी कर रहे हैं, गोल गोल जलेबी बना रहे हैं कि हमने मंदिर आंदोलन में भाग लिया, हमने मंदिर आंदोलन के लिए चंदा वसूली की, हमने मंदिर आंदोलन में शिलान्यास के लिए पीएम साहब को बुलाया, हमने ध्वजारोहण किया, हमने अर्धनिर्मित मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा कराया, इसलिए हमारा अधिकार है कि मंदिर पर कब्जा करके और वहां चंदा चोरी करें। ये बेहद दुखद है और लाखों सनातनी धर्म के मानने वाले उन सभी श्रद्धालुओं के कहीं ना कहीं उसके उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, उसकी प्रतिबद्धता पर, उसकी सनातन के प्रति श्रद्धा पर। सच ये है कि धर्म के मामले में जिस तरह से इन लोगों ने मखौल उड़ा दिया है, आज के डेट में भाजपा, आरएसएस और बीएचपी के लोगों पर इस देश के आम आदमी का जो है विश्वास घट गया। राम मंदिर को एक तरह से ये आरएसएस और भाजपा का कार्यालय बना दिया, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश के जितने हमारे साधु संत हैं और जो हमारे शीर्ष लोग हैं, जो शंकराचार्य महोदय हैं, उनका ये स्टेटमेंट है। मात्र 15 सेकंड में इसको सुनाना चाहता हूं, ज्यादा नहीं।
11: हम भी अभी तक वहां नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि अभी वो मंदिर बना नहीं है, अभी वो बीजेपी का और आरएसएस का कार्यालय है। तो जब तक वो कार्यालय है किसी का, तब तक हम क्यों जाएंगे? जब वो उपासना स्थल बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा सच्चे अर्थों में, तब हम वहां जाएंगे, आराधना करेंगे, उपासना करेंगे।
10: देखिए, ये स्पष्ट बात है कि 10 सेकंड लास्ट स्पष्ट बात है कि मंदिर में जो ट्रस्ट बना, वो ट्रस्ट पर यदि लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया है, तो पहला काम होना चाहिए था जिस तरह 5 फरवरी 1919 को 20 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसमें 12 मेंबर नामित किए थे। क्या प्रधानमंत्री जी ने किए थे? प्रधानमंत्री जी ने सारे काम किए। आज जिस तरह से वहां पे प्रश्न लगाया जा रहा है और जिस तरह की परिस्थिति पैदा हुई है, प्रधानमंत्री जी को खुल के आना चाहिए, इस पर बात रखनी चाहिए। क्या खाली चुनाव के लिए आप बात रखते हैं? चुनाव के बाद सब चीज आप बदल देते हैं, सब चीज छोड़ देते हैं, ये ठीक नहीं है। देश के लिए भी ठीक नहीं है, हिंदू धर्म के लिए भी ठीक नहीं है, और इस देश के आम नागरिकों के लिए भी ठीक नहीं है।
7: इस पर आपकी राय?
12: देखिए अंजना जी, राजनीतिक दल हैं, अपने अपने निशाने साधेंगे, और ये अयोध्या है। अयोध्या में घटी प्रत्येक घटना का प्रभाव भारत की राजनीति पे पड़ा है। अयोध्या वो पवित्र भूमि है जहां से सरकारें बनी हैं और जहां सरकारें जिसकी वजह से गिराई गई हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था और करोड़ों हिंदुओं की भावना, उनकी श्रद्धा और करोड़ों लोगों का जो भरोसा टूटा है, वो कैसे पुनर्स्थापित हो, वो कैसे दोबारा से आए, ये एक बड़ा सवाल है। और इसकी पुनर्स्थापना करने का दायित्व सबसे पहले श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का है। ट्रस्ट को अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए सबसे पहले अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए आगे आना चाहिए।
7: पर कैसे होगी वो,
12: पहली बात। दूसरी बात यह है, अब आप अनुराग भदौरिया जी हों या हमारे उपाध्याय जी हों, देखिए एवरीबडी नोज, पूरी दुनिया जानती है, कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी के अलावा तो कोई नेता नहीं चाहता था ना कि राम मंदिर बने। सब राम मंदिर के रास्ते में रोड़े अटकाते थे। लेकिन ये बड़ा भारी परिवर्तन है, ये बड़ा भारी परिवर्तन है कि जो राम मंदिर के रोड़े रास्ते में रोड़े अटकाना चाहते थे, जो कभी भी राम मंदिर का समर्थन नहीं करते थे, वो भी राम मंदिर के भीतर हुई चोरी पर परेशान है और चिंतित है। ये बहुत बड़े राम राज्य का लक्षण है। लेकिन तीसरी बात कहूं कि भाजपा ने चोरी थोड़ी की है। मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, मैंने अभी तक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी नहीं की है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ना चोरी विश्व हिंदू परिषद ने की है, ना आरएसएस ने की है। उन्होंने एक ट्रस्ट का गठन किया, और ना चोरी सरकार ने की है। लेकिन उन्होंने जिस ट्रस्ट का गठन किया, उस ट्रस्ट की लापरवाही कहो या उस ट्रस्ट की संलिप्तता कहो, वो एक बड़ा सवाल है। और उस ट्रस्ट को सबसे पहले अपने ट्रस्ट को बरकरार रखने के लिए कोई फैसला करना पड़ेगा। तो ये जो राम मंदिर के नाम पर, राम मंदिर की चोरी के नाम पर, राम मंदिर में लूट के नाम पर, और हिंदुओं की आस्था को जो ठेस पहुंची है उसके नाम पर जो राजनीतिकरण किया जा रहा है, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। और इसका कंधा इस्तेमाल करके कोई भारत के प्रधानमंत्री पर निशाना साधना चाहता है, कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधना चाहता है, वो साधेंगे। राम के नाम पर राजनीति हमेशा होती है, अयोध्या के नाम पर राजनीति हुई है और आगे भी होगी। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल है कि राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट को अपना ट्रस्ट कायम रखने के लिए कोई बड़ा फैसला करना पड़ेगा।
10: एक सेकंड जो, अरे भाई रुक जाओ ना, एक दो सेकंड तो छोड़ दो,
8: आपस में तो सामंजस्य बैठा।
10: आचार्य जी का बड़ा सम्मान है, आचार्य जी चूंकि हमारे साथ भी रहे, ठीक है, आज भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, भाजपा में है नहीं, पर इन्हीं का एक कोट मैं करता हूं, चूंकि जो आपके दर्शक देख रहे होंगे वो इस बात को जरूर याद करेंगे। भारत सरकार द्वारा, अरे भाई सुन लीजिए, भारत सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट में करोड़ों का घोटाला घोर पाप के साथ साथ कानूनी अपराध है। राम नाम का धंधा करने वाले इस अनाधिकृत एजेंसी को तत्काल बर्खास्त किया जाए। सवाल सनातन धर्म की मान्यताओं और मर्यादाओं के साथ पीएम के क्रेडिबिलिटी पर है। ये 14/6/2021 यही जब घोटाला हुआ था, चंदा घोटाला, तो आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने ये ट्वीट किया है, इनका ऑन रिकॉर्ड ट्वीट है। आज ये बदल रहे हैं कि आज भाजपा का दोष नहीं है, प्रधानमंत्री का दोष नहीं है। तो उस समय आप जो है क्रेडिबिलिटी पर जो प्रश्न लगा रहे थे, मान्यता पर प्रश्न लगा रहे थे, सनातन धर्म की मान्यता उस समय बिखर गई थी, आज क्यों आप चुप हैं? आज भाजपा में आप हैं या भाजपा के साथ हैं इसलिए आप इतना चुप हों? आपसे ये एक्सपेक्ट हम नहीं करते हैं। आप श्रद्धेय हैं, आप कम से कम श्रेय लेने वाले जो थे, जब नंबर वन श्रेय लेंगे और जब बात आएगी परिस्थितियों की और इस तरह की घोटाले हो रहे हैं तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? जिम्मेवारी भी तो लेनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को, और आपको जरूर इस बात प्रश्न करना चाहिए।
12: अजय उपाध्याय जी, जब मैं आपके साथ था यानी कांग्रेस के साथ था, तब भी सत्य के साथ था, तब भी मैंने कहा था, सारी दुनिया जानती है कि राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं होना चाहिए, और आज भी मैं सच कह रहा हूं कि ये जो चोरी हुई है इसका दायित्व, इसकी जिम्मेदारी राम मंदिर ट्रस्ट की है
10: या नहीं,
12: सुनिए, राम मंदिर ट्रस्ट की है। और प्रधानमंत्री
10: पर प्रश्न है कि नहीं,
12: अब यार बीच में क्यों बोलते हो?
10: नहीं नहीं,
12: ये अभी तो बड़ी मर्यादा की बात कर रहे थे आप। मैं आपको सुन रहा हूँ, मैं अपने ट्वीट पे कायम हूँ।
10: अच्छा ठीक है,
12: मैं अपने ट्वीट पे कायम हूँ। और भारत के प्रधानमंत्री जी की जो प्रतिष्ठा है ये उसी का प्रताप है। भारत के प्रधानमंत्री की जो प्रतिष्ठा है ये उसी का प्रताप है कि आज जो राम का नाम सुनने को तैयार नहीं थे वो सब राम मंदिर की चोरी पे छाती पीट रहे
7: हैं।
8: अंजना जी, तीन चार सवाल है। सबसे पहले अनुराग भदौरिया से शुरू करते हैं। भदौरिया जी ने कहा कि हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, अगर प्लीज बीच में नहीं, अगर श्री कृष्ण मंदिर बनता है संविधान से तो हम उसका साथ देंगे। अरे मेरे पिताजी का घर किसी ने कब्जा लिया था, मैं उसको लेकर कोर्ट में चला गया, कोर्ट में जाकर मैंने केस फाइल कर दिया, जो भी कोर्ट कहेगा मैं मानूंगा, लेकिन मेरी फीलिंग तो ये है ना कि मेरा घर मुझे वापस मिलना चाहिए। अरे आप यदुवंशी हैं, हिंदू हैं, कोर्ट जो भी फैसला देगा हम मानेंगे, लेकिन आपकी भी कोई फीलिंग है या उस फीलिंग भी कोर्ट से ही तय करोगे? अब आगे एक और चीज कही मेरे कांग्रेस वाले ने कि इस तरीके से सनातन का अपमान हो रहा है और ये तो गलत है, प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी होनी चाहिए।
10: नहीं होनी चाहिए,
8: होनी चाहिए, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, अगर होनी चाहिए तो तय रहना इस पर। इस देश में 1984 में जब दंगा हुआ, प्लीज बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, इस देश में जब 1984 में दंगा हुआ, प्लीज, अब इस देश में जब 1984 में दंगा हुआ, जगदीश टाइटलर दिल्ली सदर से सांसद थे, उनको चुना गया, वो उसमें कन्विक्ट हुए, वो जेल गए। उस समय जो है हमारे जो राजीव गांधी थे वो प्रधानमंत्री थे, जिम्मेदारी तय हुई क्या उनकी? वो जेल गए क्या? वो तो उनके इमीडिएट सांसद थे, उनको तो जेल नहीं भेजा गया, उन पर तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, श्रीमती गांधी पर तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, राहुल गांधी से तो कोई पूछताछ नहीं हुई। यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री से क्रेडिबिलिटी की ओर आ गया, तो प्लीज रुकिए ना भाई। अरे
10: दंगे हुए हैं गुजरात में,
8: अरे नए नए हिंदू बने हो, क्रैश कोर्स तो लेते जाओ, रुक तो जाओ भाई, क्या हो गया?
10: दिखावे वाले, ये दिखावे
2: आपके बीच में नहीं बोला उन्होंने, आपके बीच में नहीं बोला।
8: 6 दिसंबर 1992 को राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए नरसिंह राव ने कहा था कि हम बाबरी मस्जिद का पुनर्स्थापना कराएंगे, उसको फिर से बनाएंगे। पवन बंसल का कहना है, जो इनके अभी के कांग्रेस के नेता हैं, कि वो राम मंदिर चंदे के लिए मेरे पास लोग आए थे, मैं चंदा क्यों दूं? पैसे में बराबर इंटरेस्ट है, जेल जा रहे हैं उनको नहीं देखना। लेकिन अब आ गया तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के खिलाफ आप हुए, चार राज्यों की सरकार आपने हमारी गिराई। और अब अंत में आता हूं, एक बात इन्होंने कही कि यहां पर सारा हिंदू भाजपा और सब इसके अलावा जो है संघ के लोगों को मंदिर सौंप दिया गया, उन्हीं का कार्यालय बन गया। जान दें संघ वाले, भाजपा वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, माथे पर गोलियां खाएं संघ वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, भाजपा वाले, हिंदू, लेकिन जब वहां पर वो सेवा के लिए उनको मौका मिले तो आप कहेंगे नहीं नहीं वो तो भाजपा का कार्यालय है। अरे जान हमने दी ना भाई, जान हमने दी, विश्व हिंदू परिषद ने दी, संघ ने दी, इस देश के आम हिंदू ने दी, तो भाई आज इतना दर्द क्यों है? और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं अंत में, ये पाप है अगर कोई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर को किसी पार्टी का कार्यालय कहता है। और मथुरा पर जवाब अभी पेंडिंग है, फीलिंग क्या कहती है बता।
9: अब सवाल है, भारतीय जनता पार्टी कह रही हो मेरे पिताजी का घर है, पिताजी का नहीं है भैया, हमारे सबके सनातनियों के प्रभु राम का घर है वो। और सुनिए मेरी बात, बेकार की बात मत
8: करना, एग्जांपल का मतलब समझ में नहीं आता क्या?
9: मैं आपके बीच में
8: नहीं बोला, तो आईक्यू और चौथी फेल से भी नीचे है, बताओ मैं क्या करूं भाई।
9: अब देखो, अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए,
8: आप बोले नहीं बीच में,
9: नहीं बोला
7: ये, बोले मेरे
9: शिवम त्यागी जी कह रहे थे कि मैंने, एक मिनट रुकिए, कह रहे मेरे पिताजी का घर नहीं था भाई, पिताजी का घर नहीं है वो, प्रभु श्री राम का घर है वो। और सुनिए, और आपको ये पता होना चाहिए, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ, भव्य मंदिर बना, सभी सनातनियों ने सहयोग दिया, इसलिए थोड़े दिया था कि भारतीय जनता पार्टी उसको कब्जा कर लेगी, अपने ही लोगों को ट्रस्ट में भर दिया था, अपने ही लोगों
7: को
9: आपके बीच में,
7: अरे मौका तो आप ही की पार्टी ने दिया ना
9: भैया, गलत बात है। उसके बाद आपने उस पर कब्जा कर लिया, अपने लोगों को ट्रस्टी बना दिया, अपने लोगों को सारा वहां घुसा के उसका कारवाग बना दिया, और उसके बाद जब हमने पकड़ लिया उसमें चोरी हो रही थी, तब क्या कह रहे हैं, तब कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, हम लोगों ने 500 साल लड़ाई लड़ी, आपने नहीं लड़ी है, सनातनियों ने लड़ी है। और सनातनियों ने जब लड़ाई लड़ी थी, आप कहां थे उस समय? उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ऑर्डर हुआ था और भव्य मंदिर बना। इसी तरह से सुन लो, मथुरा में भी, मथुरा में भी हम संविधान को, न्यायपालिका का सम्मान करेंगे, बनारस में भी संविधान सम्मान करेंगे। आप चिल्ला रहे हो क्योंकि आपकी चोरी, आपकी दाढ़ी में तिनका है, चोर की दाढ़ी में तिनका,
7: आपको
9: चिल्लाना पड़ रहा है क्योंकि आप चोरी पकड़ी गई है, और जब चोरी पकड़ी गई तो आपको मेरे साथ स्वर में स्वर
7: मिलना चाहिए। दोनों को बोले दीजिए,
8: चढ़ावा चोरी हुई, हुई, हम कहते हैं
9: गलती
8: हुई,
9: पकड़े
8: बीच में नहीं बोला, गलती हुई बिल्कुल जाहिर है, वहां पर कहीं ना कहीं त्रुटि जरूर हुई, लेकिन बीच में नहीं,
9: बीच में बोले थे, प्लीज
8: बीच में नहीं, चढ़ावा चोरी, अंजना जी अब आप उनको नहीं रोकेंगे, मुझे आप तुरंत रोके, वो दूर खड़े हैं तो आप उनको कुछ नहीं कहते,
9: मैंने पूरा सुना था,
8: थैंक यू। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हाँ बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये इस बात का सर्टिफिकेशन नहीं है कि जिन पार्टियों की पैदाइश ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के खिलाफ हुई हो, वो आज यहाँ पर आकर भाषण दे। आपको सवाल पूछना है, पूछ,
9: दोनों हाथ उठा के बोलो
7: जय
8: श्री राम, जय श्री राम।
9: बोलो,
7: अजय जी भी हंस रहे हैं,
9: नहीं आप बोलो, आप बोलो
7: कि आप क्या क्या कर रहे हैं,
9: आप बोलो।
8: तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, आपने अंजना जी एक सवाल उठाया, आपने कहा कि भाई मौका भी तो आपने ही दिया। हाँ मैं बिल्कुल मानता हूं कि जिस तरीके से ट्रस्ट में रेगुलरिटीज हुई, जिस तरीके से ये चीजें हुई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सवाल बनते हैं और सवालों के जवाब लगातार भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रवक्ता और तमाम लोग दे रहे हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो पापी लोग थे, जो बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे, जिन्होंने लोगों को माथे में गोलियां मारी, सरयू में बांध कर बोरे से डुबा दिया, जिन्होंने श्री राम मंदिर का विरोध किया, जिन्होंने उसको बनने नहीं दिया, जो अपने आप को मुल्ला कहलाने पर गौरव महसूस करते थे, वो आज आकर कहने के लिए हम भी राम भक्त हैं,
9: जिन्होंने पड़ा चढ़ावा में चोरी की,
8: 500 बार सनातनी सनातनी सनातनी कहते हैं अनुराग भदौरिया ने, बताइए
9: समाजवादी पार्टी उनका चेहरा सामने लेके आ गई, देखो चेहरे के पीछे इनकी राजनीति है, प्रभु के नाम पे राजनीति कर रहे थे।
7: बताइए परवेश चौधरी जी, लेकिन इसी बीच इसलिए थोड़ी ये दिन दिया गया था या फिर मंदिर बना या भव्य मंदिर बना की वहां चढ़ावा चोरी कोई कर ले, पूरी लड़ाई क्या थी कि मुगलों ने लूटा मंदिरों को, लूटा मंदिरों को, आप आए लूटने के लिए?
13: नहीं अंजना जी, कौन लूट रहा है?
7: ट्रस्ट
13: नहीं, जो भी हुआ उसकी तो हमने निंदा करी,
7: निंदा से क्या करेंगे?
13: विश्व हिंदू परिषद ने
7: पलटेगा कैसे?
9: ये सही है,
13: बीच में नहीं बोलूंगा। विश्व हिंदू परिषद ने अंजना जी पहले दिन से कहा कि जिसने भी अपराध किया है, चोरी हुई है, जिसने भी अपराध किया है, उन सबको सजा होनी चाहिए, और ये गलत हुआ है, इससे पूरे देश के हिंदू समाज के अंदर रोष है, ये विश्व हिंदू परिषद ने पहले दिन का स्टैंड लिया। अंजना जी हमारी बात समझिए, हम कोई न्यास के प्रवक्ता नहीं, एक चीज। दूसरी चीज, विश्व हिंदू परिषद को 80 के दशक में संतों ने काम दिया और हमारी भूमिका तय करी कि एक जन आंदोलन करिए, हमने जन आंदोलन किया, जन आंदोलन जन जागरण किया, खूब सारी यात्राएं निकाली, लोगों को जोड़ा, कोर्ट में वर्षों लड़े, और राम मंदिर निर्माण जिस दिन कोर्ट का निर्णय आया अंजना जी, उस दिन से विश्व हिंदू परिषद ने कोई इंटरफेयर नहीं करा। आप कितना भी कहते रहे न्यास में कौन कौन है, विश्व हिंदू परिषद का
7: तो किसकी गलती दिख रही है
13: और अप्रत्यक्ष,
7: ठीक है इस बात को मैं भी मानती हूँ, तो गलती
13: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में हमारा कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं है,
7: ठीक है,
13: हमारा बिल्कुल दखल नहीं है,
7: ये तो समझ गए। तो गलती किसकी है?
8: चंपत राय जी कौन?
13: मैं कह रहा हूँ कि प्रबंध के अंदर, प्रबंध जो प्रबंध समिति थी उसके द्वारा कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि हुई है, उस त्रुटि के कारण से ये वो सारी व्यवस्था हुई है, यानी निगरानी में दिक्कत हुई है ना, निगरानी में समस्या हुई इसलिए हुआ।
9: एक मिनट का दे दीजिए,
13: हम स्पष्ट कह रहे हैं इस बात को कि कोई भी अपराधी हो, उसमें बड़ा हो छोटा हो, सभी को सजा मिलनी चाहिए।
7: साथ ही आपको लगता है कि इस बार चुनावों में इसका सेटबैक, इसका फॉल बैक, इसकी सजा जनता दे सकती है चुनाव में?
14: नहीं आस्था जी, मुझे जहां तक लगता है और सुभाषपा जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है उसको जहां तक लगता है कि आस्था का जो चोट है ना वो दिल पे लगता है, और वोट और आस्था को हम एक नहीं कर सकते। आस्था हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय को, ये नहीं कि हम मुस्लिम हैं तो हम राम को नहीं मानते हैं या हम ईसाई हैं तो राम को नहीं मानते। राम को मानने वाले विश्व में धरती पे पता नहीं कितने करोड़ों अरबों लोग हैं, और ये जो हुआ है ये वास्तव में बहुत गलत हुआ है। चुनाव जो होता है ना, चुनाव सरकार की नीतियों पर, सरकार की क्या कार्यप्रणाली है, सरकार की क्या व्यवस्था है, व्यवस्था में चाहे वो चिकित्सा की व्यवस्था रही हो, सड़क की व्यवस्था रही हो, एयरपोर्ट की व्यवस्था रही हो, जो भी व्यवस्था है, जनता को चाहिए क्या, मूलभूत आवश्यकता चाहिए जनता को। अब मुझे लगता है कि राम मंदिर पे जो हुआ ये बहुत गलत हुआ, लेकिन जनता अब इससे थोड़ा सा किनारा करना चाह रही है। जनता सुकून में है इस समय, 2017 के बाद से जब से योगी जी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला है तब से मुझे लगता है कि जनता सुकून में है, और जनता इन जो फैसला है योगी जी का या योगी जी के कैबिनेट का, उन फैसलों को लेके वो हमेशा से सकारात्मक रही है। आप देखिए लगातार चुनाव जीतने का ये परिणाम है कि जनता कहीं ना कहीं एनडीए सरकार के साथ है, एनडीए सरकार जनता का काम कर रहा है और जनता उनकी सुन रही है।
10: बहुत व्यापक तौर पे उन्होंने चर्चा की है, क्या इस मुद्दे पर जिन लोगों पर कार्रवाई हो रही है वहाँ बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं?
14: बिल्कुल चलना चाहिए, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अगर सुन लीजिए
10: तो नहीं है, दस सेकंड में बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोलता। परवेश भाई ने जो बात रखी है, अरे प्रोफेसर साहब कितना बचाइएगा ये रिग्रेट सॉरी संघ को, आरएसएस को और अपने बीएचपी को। बीएचपी चंपत राय कौन है भाई, किसने उनकी नियुक्ति की है? प्रधानमंत्री जी ने की और बीएचपी के हैं इसीलिए उनकी नियुक्ति हुई, और कोई कारण नहीं है। यदि 10 सेकंड रुक जाइए, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, आप भी यदि इस मामले में जब आप नामित कर रहे थे सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पर होना था, यदि इंडिपेंडेंटली जो धार्मिक गुरु हैं, जो राम मंदिर निर्माण समिति से जुड़े रहे या किसी कारण से वो आंदोलन में भी रहे, वहां अयोध्या के लोग थे, ऐसे लोगों को नामित करते। अयोध्या में और कई मंदिर हैं, किसी मंदिर में चोरी नहीं, देश में और भी बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन ये यहाँ पे चंदा चढ़ावे का चोरी, और ये चोरी एक जगह नहीं है, छोटे छोटे मछलियों को पकड़कर आप मगरमच्छ को चाहते हैं कि वो छूट जाए, ये नहीं छूटने देगा, जनता समझ रही है।
7: इस बात को लेकर चंपत राय की देखरेख में सब कुछ होता था, ट्रस्ट चलता था, ऐसे लोगों को नामजद क्यों नहीं किया गया?
10: इन्होंने ही किया है ना, एसआईटी इनके भी हाथ पर होगी, एसआईटी के रिपोर्ट इनके भी हाथ पर आएगा, एसआईटी इन्हीं को रिपोर्ट देगी, और एसआईटी से अपेक्षा करेगा लोग क्यों कार्रवाई होगी? कोई कार्रवाई नहीं, ये लिपापोती हो रही है, और देश के हिंदुओं के आस्था को पर कुठराघात किया जा रहा है।
8: अंजना जी अभी
10: पूछिए,
8: रुक जाइए ना, हो गया भाई, हो गया रुक जाइए,
10: पूरे देश के
8: अंजना जी
10: जाति धर्म समुदाय से ऊपर है, उन पर प्रश्न हो गया लगा रहे हैं, चंदा चोरी कर
7: रहे हैं। वो राम जन्मभूमि है या नहीं ये तो बता दीजिए,
10: हमने ताला खुलवाया था ना,
7: कृष्ण जन्मभूमि,
10: हमने सब कानूनी प्रक्रिया में, हम आज भी कानूनी प्रक्रिया में हैं, ये कानून ही किया है, सुप्रीम कोर्ट के कारण तो दंगाई लोग हैं।
8: रैली के लिए भीड़ नहीं मिल रही तो क्या यही रैली समझ के कर दोगे सारा? रुक जाओ भाई, रुक जाओ,
10: चोरी मत कीजिए,
8: प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बोलिए, रुक जाइए, मैं भी आपके ऊपर बोल सकता हूँ, आपसे बेहतर आवाज है मेरी भाई, थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई भी जांच से बाहर नहीं है, चाहे वो 9 लोग जिनको गिरफ्तार किया गया, अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस उनसे फिर से जेल में जाकर जो है इन्वेस्टिगेट करके आई, अगर जहां तक चंपत राय जी की बात है उनसे भी इन्वेस्टिगेशन की, कोई जांच के बाहर नहीं है। आप ही तो हम पर ताने दे, प्लीज रुके ना, आप ही तो हम पर ताने देते थे, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वजह से सरकार आई, ये हिंदुत्व की वजह से सरकार आई, और ये सरकार जो है हद से ज्यादा घमंडी है, ये कभी सरकार से उतरना ही नहीं चाहते, तो सरकार से बड़ा भी कोई हो सकता है क्या? हम क्यों किसी को भी बख्शेंगे और कोई बख्शा नहीं जाएगा? और दूसरी, ये जो हाइपोथेटिकल सवाल डालकर इस देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जाती है, हमें उसमें सिर्फ इतना समझना है, अखिलेश यादव कहते हैं 7 करोड़ की चोरी हुई, इसके अलावा रामगोपाल यादव कहते हैं 20,000 करोड़ की चोरी हुई, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल कहते हैं 200 करोड़ की चोरी हुई, ये इस बात को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि इस देश में, इस धर्म में चोरी लगातार हो रही है, किसी भी तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, और यही उनका मिशन है। जब एसआईटी की रिपोर्ट निकल कर आ जाएगी तो समझ में आ जाएगा। और अंत में एक चीज और, प्लीज बीच में मत बोलिए, अरे रुकिए अंजना जी, 10 सेकंड, एक और कहा आपने कि इस देश के बाकी किसी मंदिरों में तो चोरी हुई ही नहीं, सबरीमला में 4.5 किलो, प्लीज बीच में नहीं, 4.5 किलो सोना गायब हो गया, 4.5 किलो सोना गायब होने के बाद लेफ्ट की सरकार चुप बैठी रही, उसके बाद वहां की पुलिस चुप बैठी रही, ना वहां कोई एसआईटी बनी, ना वहां पर कोई पुलिस ने एफआईआर करी, उसके बाद हाई कोर्ट ने खुद सुओ मोटो लेकर कहा कि सरकार अंधी हो गई है, कृपया कर इस पर एक एसआईटी बनाए।
15: और बड़ी खबर आपको देते हैं इंग्लैंड के खिलाफ मैच में वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे, यानी कि वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू आज होने जा रहा है थोड़ी देर में भारत और इंग्लैंड के बीच में, यानी कि 7 बजे से यू तो मैच शुरू होगा टॉस टाइम। लेकिन ये बहुत बड़ी जानकारी, वैभव सूर्यवंशी पूरा देश एकजुट होकर जिनके लिए मांग कर रहा था कि भाई इनको तो खिलाना चाहिए, लेकिन ना तो आयरलैंड सीरीज में उनको मौका मिला, न इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले T20 मैच में मौका मिला। हालांकि इंडिया की वो मैच पूरा हो नहीं सका बारिश की वजह से, लेकिन उसमें सूर्यवंशी को मौका नहीं मिला, टीम इंडिया ने बैटिंग कर ली थी। लेकिन दूसरे मैच में ये बहुत बड़ी खबर है, सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर लिया है वैभव सूर्यवंशी ने। विक्रांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। विक्रांत, वैभव सूर्यवंशी मतलब पूरा देश कह रहा था कि भाई इनको खिलाओ इनको खिलाओ, मतलब आखिर ऐसा क्या इस बार मन में आ गया मतलब गौतम गंभीर कैप्टन की भाई सेकंड मैच में चलो खिला लेते हैं, अब सूर्यवंशी की जगह मतलब किसकी जगह खिला रहे हैं सूर्यवंशी को?
16: टॉस अभी होने वाला है, मतलब किसी भी वक्त टॉस होगा, मोस्ट लाइकली संजू सैमसन की जगह ही वो खेलेंगे। मैं तो उम्मीद कर रहा था राजीव कि इनको आयरलैंड में आप इनिशिएट करेंगे, लेकिन आप तब ये मैसेज देते कि अभिषेक और संजू हमारे दो ओपनर्स हैं, चलिए वैभव आप भी खेले। लेकिन आज क्या हुआ है कि संजू की 3 पारियों में रन्स नहीं आए। हाँ, वो वर्ल्ड चैंपियन जिताने में उनकी सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन थी, बट आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वैभव ने न सिर्फ अपना अर्न किया है बल्कि टीम में वो मौका भी मिला है, और कहीं ना कहीं जो नुक्ताचीनी टीम की हो रही थी, आयरलैंड में आप सीरीज हार गए थे, तो आई थिंक वो भी एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन 4 जुलाई 2026 मतलब तारीखी दिन है ये आज हम लोग ये कह रहे हैं कि चलो जी वो यंगेस्ट इंडियन बन गए हैं 15 साल 99 दिन की उम्र में, लेकिन आज से शायद 5 साल बाद, शायद 10 साल बाद, शायद 20 साल बाद इस तारीख को याद किया जाएगा, क्योंकि कई ऐसी तारीख हम जब याद करते हैं कि यार एक्स वाई जेड प्लेयर खेले थे, तेंदुलकर कब खेले थे, इसी तरह से कई साल बाद ना आज लोग कहेंगे कि भाई आज के दिन वैभव सूर्यवंशी भी अपना पहला मुकाबला खेले थे।
15: बिल्कुल, इसमें अब सूर्यवंशी को कैप भी किसने दी है, वो तिलक वर्मा ने दी उनको, ये हम उस समय की तस्वीर भी विक्रांत दिखा रहे हैं। लेकिन ये कितना बड़ा क्षण है इंडियन क्रिकेट के लिए, इतनी कम उम्र में डेब्यू करने वाला मतलब एक खिलाड़ी, वो भी इंडिया से निकल रहा है और इतने टफ कॉम्पिटिशन में।
16: देखिए, इससे पहले शेफाली वर्मा खेली थी, उनकी उम्र थी 15 साल 239 दिन विमेन्स क्रिकेट में, लेकिन मेंस क्रिकेट हमेशा हम ज्यादा फॉलो करते हैं, तो सचिन तेंदुलकर के नाम रिकॉर्ड था 16 साल 210 दिन। और मैं इतना आपको बता सकता हूं राजीव कि सचिन तेंदुलकर की जो उम्र है मेरे से मतलब 3 महीने छोटे हैं, और उस वक्त इंडिया में ये मतलब हर कोई हैरान हो रहा था कि यार 16 साल की उम्र में कोई इंडिया खेल सकता है, वर्सेस आज जहां आप 16 साल नहीं, आप 15 साल 99 दिन की बात कर रहे हैं। और वैभव सूर्यवंशी तो मतलब उनका इंतजार वो सिर्फ हम ही लोग नहीं कर रहे थे, आप देखिए ना आयरलैंड में जो आपकी सीरीज हुई, जो इंग्लैंड में सीरीज हो रही है, आपका ब्रॉडकास्टर है वहां पर आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड, यहाँ पर इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, भाई वो पोस्टर ही एक बंदे के लगा रहे हैं। आप सोचिए कहां इंडियन क्रिकेट में, मतलब आप बात कर रहे थे विराट कोहली, रोहित शर्मा, और आज किसकी बात हो रही है।
15: बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और विक्रांत, भारत ने टॉस जीत लिया है, पहले बैटिंग का फैसला अच्छा, लिया है,
16: और इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है।
15: विक्रांत, लेकिन मैच में बारिश का खलल भी बताया जा रहा है कि पड़ सकता है, लेकिन हमें वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग तो दिख ही जाएगी लग रहा है।
16: बिल्कुल सही कहा आपने, अब 6:32:33 हो चुके हैं, इंडिया ने टॉस भी जीत लिया है, तो मतलब अब तो इस वक्त मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे, आप सोशल मीडिया देखें या आप कुछ भी देखें, सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, वो है वैभव सूर्यवंशी का। और राजीव, 7 बजे चूंकि मैच शुरू होना है, 7 बजे तक कोई बरसात का खलन नहीं है, विच मीन्स कि आमतौर पर डर ये होता है कि यार ये मैच कहीं रेन ऑफ ना हो जाए, मैच हो ही ना, सो मैच तो हो रहा है। मतलब आज अगर पहली बॉल गिर गई, जिसकी पूरी पूरी उम्मीद है, तो भाई आज टेक्निकली उनका डेब्यू हो गया, तो वो आज यंगेस्ट इंडियन प्लेयर बन गए। और चूंकि इंडिया पहले बैटिंग कर रहा, अब देखना ये है कि जो हमने आईपीएल में देखा है वर्सेस अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया के लिए क्या लेकर आएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में भले ही वही गेंदबाज उनको मिलेंगे, वही जोफ्रा आर्चर मिलेंगे, वही जोशुआ टंग मिलेंगे, उन्होंने तो बड़े बड़ों की जो है वो मतलब धज्जियां उड़ाई थी आईपीएल में, बट इंटरनेशनल क्रिकेट ना हल्का सा अलग तरह का दबाव लेकर आता है।
15: और वो ना विक्रांत, चूंकि संजू सैमसन को बिठाया गया, विक्रांत संजू सैमसन के लिए भी बात करना जरूरी है क्योंकि उनके भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है. वो कहेंगे कि भाई तीन मैचेस में वर्ल्ड कप के जिस व्यक्ति ने जीता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा और तीन मैचेस में जो नहीं चला आपने उसको बाहर बिठा दिया, उनका कॉन्फिडेंस का शेक नहीं होगा. आपको मतलब आप अभिषेक की जगह खिला सकते थे जिन्होंने अच्छा किया था, तो एक एक अच्छा मैसेज भी जाता संजू के लिए.
16: बात वही आती है ना राजीव की मुकम्मल जहां किसी को नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता. भाई कल तक लोग क्या कह रहे थे, लोग कह रहे थे जिसको मर्जी ड्रॉप कर दो जी, वैभव सूर्यवंशी को खिला दो. और जब क्रिकेट के वहां से टीम मैनेजमेंट से आ रहा था कि यार संजू को कैसे ड्रॉप कर दें, संजू सैमसन ने तो वर्ल्ड कप जिताया है, तो आपने भी देखा ना सोशल मीडिया में जो लोग क्रिकेट से लिंक्ड थे, जो क्रिकेट से लिंक्ड नहीं थे, जो पॉलिटिकल जिनका एक्यूमेंट था, वो भी सब कहते थे अरे किसी को भी निकाल दो, किसी को भी निकाल दो वैभव को. सो कभी ना कभी आपको ना मतलब यू हैव टू टेक दैट बिटर स्टेप, बिटर पिल. ऐसा नहीं है कि संजू सैमसन ड्रॉप हो गए हैं, लेट मी क्लैरिफाई, ऐसा नहीं है कि संजू सैमसन ड्रॉप हो गए हैं. ऐसा नहीं कि ड्रॉप हो गए हैं, बट टीम कहेगी कि जी उनको एक मैच हमने आराम करके वैभव को मौका दिया. अब वैभव पे भी है, और ऐसा नहीं कि वैभव को एक मैच मिलेगा, हो सकता है वैभव को एक और मैच मिले. क्या पता इसके बाद वैभव सूर्यवंशी कभी बाहर ही ना हो. तो संजू सैमसन बाहर नहीं हुए, मैं अभी भी मानता हूं. ऐसा नहीं है कि इंडियन क्रिकेट ने संजू सैमसन की बियॉन्ड देख लिया है, इतने नाशुकरा नहीं है इंडियन क्रिकेट. आपको भैया वर्ल्ड कप जिताने वाला वो प्लेयर था, बट अब आपके पास मजबूरी.
15: मैं वही तो विक्रांत आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये संजू को हटाकर उनको एक मौका दिया गया या अभी सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं कि चलो इनको भी डेब्यू करना जरूरी क्योंकि लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, या संजू की जगह ले लिया अब उन्होंने.
16: जब आप कहते हैं कि एक मौका दिया गया और चलो इनको खिला के देख भी लें, आई थिंक वो लिंक्ड हैं. मुझे नहीं लगता कि गौतम गंभीर ने या अजीत अगरकर ने या श्रेयस अय्यर ने आज ये फैसला ले लिया कि संजू सैमसन थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विसेज. नहीं, ऐसा नहीं है. बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि संजू सैमसन की उम्र क्या है. 34 साल उम्र है. वर्ल्ड कप मैं अगेन कहता हूं कि भैया उस तरह की परफॉर्मेंस पे आपको बड़ी लंबी रस्सी मिलती है, बट आपको आगे भी देखना है. संजू सैमसन इज हेयर टू स्टे, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन आज का दिन वैभव सूर्यवंशी का दिन है. अब ये देखिए कई तरह के समीकरण आएंगे. सपोज कीजिए वैभव आज रन बना दें, जो कि उनको बनाने भी होंगे, बना भी देंगे वो, और संजू सैमसन भी दोबारा आके रन बना दें, तो क्या होगा. अब कहीं ना कहीं आपको ना T20 में जो आप कहते हैं ना कि यू गॉट टू बी फ्लेक्सिबल, अब फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ आपकी बैटिंग ऑर्डर पे नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी सोच में नहीं होती. आई थिंक आपकी जो मुझे टीम का आगे चलते हुए दिखता है एक पॉसिबिलिटी, वो ये भी है, हो सकता है, हालांकि तिलक वर्मा वाइस कैप्टन है इस टीम के, हो सकता है कि वैभव भी रन बनाए और संजू को भी आपको दोबारा खिलाना हो, वैभव सूर्यवंशी अभिषेक शर्मा से आप ओपन कराएं, तीन नंबर पर आप संजू सैमसन को लेकर आएं, चार नंबर पांच नंबर जो है आपका श्रेयस अय्यर ईशान किशन है. ईशान किशन कहेंगे मेरा क्या कसूर है भाई, मैंने ओपन करके रन बनाए, मैंने तीन नंबर पे जाके रन बनाए और वर्ल्ड कप जिताने में उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो मुझे आप पांच नंबर पर क्यों धकेल रहे हो. बट आपको नहीं मालूम कब क्या हो जाए. तो ऐसा हो के ये भी हो सकता है कि तिलक वर्मा जो T20 में अभी फिलहाल ना स्ट्रगल करते आपको दिखे हैं, भले वो टीम के वाइस कैप्टन है, अभी तो आपकी वाइस कैप्टन बनाने का मतलब है कि आप आगे चल के तिलक वर्मा को कप्तान के बारे में सोच रहे थे, पर हो सकता है कि ये पर्दा उठे और आने वाले वक्त में आपको तिलक वर्मा की बजाय बैटिंग ऑर्डर में इस तरह का जो है जगल देखने को मिले. लेकिन बात वहीं आ जाती है.
15: सुझाव तो बड़ा शानदार है, लेकिन हमारे जो कोचेस हैं, हमारे जो कैप्टन हैं, वो तो सुना मीडिया वीडिया देखते नहीं, वो सोशल मीडिया भी नहीं देखते हैं, लेकिन सुझाव इसमें कोई तरह बड़ा शानदार. हां
16: राजीव सब देखते हैं, ये कहने की बात होती है. वो आई थिंक एक तरह का ना वो आप एरोगेंस कह लें, आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में थोड़ी ज्यादा होती है. कई बार ना मुझे लगता है कि जिद में आके ना प्रेस कॉन्फ्रेंसिस होते हैं, होना नहीं चाहिए. और अगर मुझे कोई भी इंसान ये कह दे कि हमें आउटसाइड नॉइज का कोई परवाह नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है और वो सिरे का झूठ बोल रहा है. क्योंकि जैसे ही ये दबाव बनता है और आप उस दबाव में ना आप कुछ कर नहीं पाते हैं. देखिए वैभव सूर्यवंशी का ये है कि वो पानी है और पानी जो है ना अपने आप अपनी जगह बनाता है, वो नदी बन जाता है, वो समंदर बन जाता है, वो कुछ भी बन जाता है. तो वैभव सूर्यवंशी का फिलहाल आप उनको रोक नहीं सकते थे, वो जो डैम जो आपने बांध बनाया हुआ था उसको रोक नहीं सकते थे, वो आज बांध के दरवाजे खुल गए हैं. अब वैभव ने अगर रन बना दिए तो आप ये थोड़ी कहोगे वैभव आपने आपका रिकॉर्ड बना दिया, देखो सोशल मीडिया पे लोग कहते थे ना हमने आपको एक मैच खिला दिया. हाँ. बच्चे अब आप बाहर जाओ, ऐसा नहीं होगा. पानी ने अपने आप अपना बहाव जो है ना अपने आप अपना रूप आकार ले लेना है. तो मेरे ख्याल से आगे चल के आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा, अगर संजू सैमसन भी इस सिस्टम का सेटअप का हिस्सा रहेंगे तो आपको हो सकता है अभिषेक, वैभव ओपनर, संजू सैमसन, तीन चार पांच आपके श्रेयस और ईशान हो जाते हैं वॉट एवर ऑर्डर। अनफेयर और ईशान किशन, क्योंकि तीन नंबर के बैट्समैन को आप पांच नंबर पे भेज रहे हो, बट हो सकता है आने वाले वक्त में ऐसा हो। और फिर तिलक वर्मा आहिस्ता आहिस्ता T20 से उनके लिए एक स्ट्रगल हो सकता है।
17: ये तो भविष्य घर में
16: विकल्प, ये नहीं कह रहा हूं कि ये होगा।
17: बयान सुना देते हैं, आपने ही बातचीत की थी मतलब हमारे वर्ल्ड चैंपियन कपिल देव से, एक बार उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को लेकर क्या कहा था सुना देते, फिर मैं वैभव के चैलेंजेस के बारे में बातचीत करूंगा आपसे, सुनाते हैं क्या कहा था।
18: टैलेंट की बात करते हैं, यस ही इज एज गुड एज सचिन और विराट कोहली, इतना टैलेंट उसमें नजर आता है। एट द मोमेंट हम कहते ही नहीं कि उसका बैड पैच है, इतना टैलेंटेड नजर आता है, सोचा भी नहीं। या नई जनरेशन के जो बच्चे हैं

0: कहां आयरलैंड है, आयरलैंड अगर आप देखें नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड हो जाता है जहां पे ठंड होती है. आज आप खेल रहे हैं मैनचेस्टर, ये बीच में आता है, बट मेरे ख्याल से कंडीशंस मैटर नहीं करती हैं. आज एक चीज का उनको ध्यान रखना है कि जोफ्रा आर्चर और जोशुआ टंग, आज इंग्लैंड का जो बॉलिंग लाइनअप है वो बेटर है. पिछले मैच में तो यार जो
1: मतलब
0: इंग्लैंड
1: क्या
0: के फास्ट
1: विक्रांत,
0: बॉलर्स
1: तुम्हें
0: थे
1: पता
0: हम
1: चल गया था क्या वैभव सूर्यवंशी को खिला रहे हैं? मतलब उनकी नजर तो थी क्या, मतलब इसी को देखते हुए जोफ्रा आर्चर और टंग वापस आए हैं, या फिर पहले से वो प्लानिंग का हिस्सा था कि वह
0: नहीं,
1: दूसरे मैच में
0: इंग्लैंड इंग्लैंड
1: आएंगे?
0: की प्लानिंग थी, इंग्लैंड की प्लानिंग थी, इंग्लैंड की प्लानिंग थी कि वो इसी तरह से जोफ्रा आर्चर को लेकर आएंगे. मुझे अब ये है कि कल रात को ना वैभव सूर्यवंशी, अब वो ऐसा नहीं कि वो अपना सोशल मीडिया का अकाउंट ऑपरेट करते हैं, उन्होंने एक बड़ा क्रिप्टिक सा पोस्ट डाला था न्यू बिगनिंग न्यू चैप्टर करके, तो वो समझ नहीं आया. बहुत से लोगों ने, हमने भी स्पोर्ट्स तक पे ये लगाया कि क्या वो ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि आज मेरा डेब्यू होगा. आमतौर पर मेरा ये मानना है, मेरा ये मानना है कि आमतौर पर खिलाड़ी को अगर पता भी हो कि कल मैं खेल रहा हूं, इतिहास रच रहा हूं, वो सोशल मीडिया पे जाके नहीं बताता,
1: हाँ
0: स्पेशली देन जबकि वो सोशल मीडिया खुद ऑपरेट ना करे, उनके मैनेजर्स या सोशल मीडिया मैनेजर्स कर रहे हो. सो वो मुझे थोड़ी हैरानी हुई, बट आज चूंकि वो सच हो गया, आई थिंक पता क्या है, अब बड़ी सिंपल बात है, इस वक्त वैभव सूर्यवंशी अगर वो सब चीजें सोच रहे हो जो हम और आप कह रहे हैं, या हम और आप सोच रहे हैं कि यार मैं क्या करूंगा, यार आईपीएल डिफरेंट था.
1: तो विक्रांत, मैं आपके पास लौटता हूं. अच्छा, वैभव के इंटरनेशनल डेब्यू पर बीसीसीआई ने पोस्ट किया है, बीसीसीआई ने भी खुशी जताई है और इसे एक ऐतिहासिक दिन बताया है. ये भारतीय क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक दिन है. बीसीसीआई की तरफ से ये रिएक्शन है, बीसीसीआई की तरफ से ये पोस्ट किया गया है. पूरा देश ये मांग कर रहा था कि वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ. वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू करना, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ऐतिहासिक दिन है. विक्रांत हमारे साथ है. विक्रांत, मैं लौटता हूं, लेकिन ये वैभव के इंटरनेशनल डेब्यू पर बीसीसीआई की तरफ से पोस्ट कर दिया है. तो 7 बजे से मैच की शुरुआत होगी और टीम इंडिया के लिए पहली बार ओपन करते हुए दिखाई देंगे वैभव सूर्यवंशी. विक्रांत, थैंक यू सो मच आप हमारे साथ जुड़े, और अब देखना होगा कि वैभव कैसा खेलते हैं. थैंक यू सो मच. अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक.

0: दैत्य महाराज ने हनुमान जी को परास्त कर दिया।
1: ये वेतन बाबा को मिल गया।
2: रावण की पूजा करते हैं, रामलीला निमनाते हैं यहाँ पे।
3: Hey there, it's Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcast, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
4: स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
5: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
3: वी आर ओवर जिमी।
4: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो

0: तो टूटता नहीं,
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना,
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
3: हमने तब भी सवाल किया था,
4: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
3: हम आज भी सवाल करते हैं,
4: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
3: ऑपरेशन अग्नि,
4: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
3: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई, खबरदार सिर्फ आज तक पर।
5: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
7: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच, हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
8: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
9: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमा कुरैशी।
10: ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
11: अनुराग गोज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अक्ल अक्ल नहीं है। इस पे जो बहुत फेमस सीन है वो जो
12: परमिशन लेनी चाहिए ना,
11: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई।
13: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है, लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी,
11: आई फील अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो रुक जाइए।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: कोर्ट में पेशी के दौरान कैमरे पर दिखाई गई सिया की ये मिडिल फिंगर इस बात की गवाह है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और न ही कानून का डर। आखिर हो भी क्यों, जिस सोनम रघुवंशी की राह पर वह चली है उसे कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मेघालय सरकार की अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले हम देखेंगे कि ट्रायल कैसे चल रहा है। उधर राजा रघुवंशी के परिवार को इंसाफ का इंतजार है, जो कि सीबीआई जांच की मांग कर रहा है।
1: हमको न्याय अभी तक मिला नहीं, तो मतलब इसमें इतनी ढीलपोल क्यों चल रही है, और ढीलपोल चल रही है तो हमको वापिस से जांच चाहते हम, और हमारी सीबीआई जांच की मांग है तो हमारी सीबीआई जांच की मांग पूरी रखें।
0: अब सवाल यह है कि क्या मेघालय पुलिस की तरह पुणे पुलिस के सबूत भी कोर्ट में कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि पैटर्न से लेकर सबूतों की पड़ताल सब कुछ वैसी ही नजर आ रही है। आज तक की टीम उस जगह पहुंची जहां केतन के पुतले को खाई से फेंक कर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था।
2: जिस डमी को धक्का दिया था वो डमी अभी हमारे सामने है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये डमी है, और ऊपर से धक्का देने के बाद दो चोटियों पर केतन हो या फिर ये डमी हो उसको मार पड़ी थी, और उसके बाद ये नीचे आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस डमी की क्या अवस्था हुई है, और उसी तरह मतलब आप सोच लीजिए केतन अग्रवाल की क्या हालत हुई होगी।
0: केतन केस की जांच में अब एक युवक की एंट्री हुई है जो कि केतन चौधरी का क्लासमेट था। सूत्रों की माने तो आईटी कंपनी में काम करने वाले शख्स को सिया और चेतन ने साजिश की जानकारी दी थी। इसे भी लोहगढ़ किले में साथ में जाने को कहा था, लेकिन वो आखिरी वक्त में नहीं गया। हत्या के बाद भी चेतन और सिया ने इससे बातचीत की थी। पुलिस अब इस शख्स से पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो इस शख्स ने दोनों को हत्या न करने की सलाह दी थी। आज तक ब्यूरो।
3: सबसे पहले गुजरात के मेहसाणा के कड़ी की तस्वीरें, जहां एक ही रात में 8 से 9 इंच बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। तीनों मुख्य अंडरपास डूब गए, कई रिहायशी इलाकों और घरों में पानी घुस गया, जबकि करण नगर रोड, सुजातपुरा और थोल रोड पर घुटनों तक पानी से यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। सूरत में भी हालात गंभीर हैं। महुआ के पास अंबिका नदी और ऐतिहासिक मदर डेयरी चेक डैम उफान पर हैं। वहीं किम इलाके में अस्पताल, मंदिर और कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। हॉस्पिटल के आईसीयू तक में पानी पहुंचने से मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना पड़ा। लगातार बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने 24 घंटे निगरानी और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वलसाड़ में जलभराव के बीच सड़क पार करने की कोशिश, एक मारुति वैन चालक को भारी पड़ गई और वाहन बीच पानी में फंस गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद वैन को बाहर निकाला। उधर गिर सोमनाथ में रिकॉर्ड बारिश से खेत नदी बन गए। कई इलाकों में जलभराव और पेड़ गिरने से यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा, जबकि वेरावल पोर्ट पर खतरे का नंबर 3 सिग्नल जारी कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो।

नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शाम के 7 बजने वाले आज तक के इस खास शो में अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और कीर्तिमान, भारत की ओर से सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 में मौका, BCCI ने कहा भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक दिन। चढ़ावा चोरी मामले में विपक्ष का हमला, तेज अखिलेश के बाद ममता ने भी खुला मुर्जा, कहा राम का नाम बदनाम किया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर युद्धकाल में देश को डराने का लगाया आरोप, राजस्थान के बालोतरा में बोले संकट में राष्ट्रहित को आगे रखकर लिया फैसला, देश पर नहीं डाला बोझ। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार यूपी के दौरे पर नितिन नवीन, मिशन 2027 को लेकर सरकार से लेकर पार्टी तक मैराथन बैठक, जीत की हैट्रिक के लिए मंथन। मूसलाधार बारिश से पानी पानी, मुंबई के इलाकों में जलभराव से परेशानी, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, ट्रेन और उड़ानों पर इंपैक्ट। और अब शो की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले क्रिकेटर बन गए। वो 15 साल 99 दिन की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं। वैभव को तिलक वर्मा ने डेब्यू कैप दी और बाकी साथियों ने तालियों के साथ टीम ने उनका स्वागत किया, जहां पर मैच से पहले वैभव के चयन का ऐलान किया गया। BCCI ने ट्वीट करके इस दिन को ऐतिहासिक दिन बताया, भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ा दिन बताया। वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू का बेसब्री से इंतजार, जहां पर पोस्टर्स में हर तरफ वैभव सूर्यवंशी छाए हुए थे, उनकी डिमांड हो रही थी और आखिरकार इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में उन्हें मौका मिल गया और उन्होंने ग्रेट सचिन तेंदुलकर का सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का भारतीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इसे ऐतिहासिक BCCI ने भी बताया।

वैभव सूर्यवंशी जिनके लिए सोशल मीडिया पर इतनी तरह की बातें हो रही थी और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा जा रहा था कोच से, कैप्टन से, तो कई तरह की बातें थी, एक नाराजगी भी थी, लेकिन अब आखिरकार दूसरे T20 मुकाबले में उनको मौका मिल गया संजू सैमसन की जगह, जो पिछले 3 मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पाए थे। किसी भी खिलाड़ी का सपना होता है कि वो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़े, लेकिन सोचिए वैभव सूर्यवंशी ने पहले ही मैच में सचिन का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

0: नाम वैभव सूर्यवंशी, उम्र 15 साल 99 दिन, तारीख 4 जुलाई 2026, जगह मैनचेस्टर। याद कर लीजिए इस तारीख को, इस उम्र को और इस नाम को, क्योंकि ये महज एक आंकड़ा नहीं, क्रिकेट के इतिहास की एक इबारत है। इंग्लैंड के खिलाफ मैदान पर उतरते ही वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही वो डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया जब आयरलैंड के खिलाफ मैदान पे उतरी तो हर किसी को उम्मीद थी कि वैभव को डेब्यू का मौका मिलेगा, लेकिन टीम मैनेजमेंट की जिद ने इस मौके को छीन लिया और टीम इंडिया आयरलैंड जैसी टीम से सीरीज हार गई। ऐसे में हर किसी की दिलचस्पी ये जानने में थी कि क्या 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड के खिलाफ मौका मिलेगा या नहीं। फिर जब उन्हें मैनचेस्टर में डेब्यू कैप मिली तो सारे सवालों के जवाब भी मिल गए। इसके साथ ही सबसे कम उम्र में भारतीय टीम की जर्सी पहनकर मैदान में उतरने का रिकॉर्ड भी वैभव ने अपने नाम कर लिया। पुरुष क्रिकेट में ये रिकॉर्ड पहले 16 साल 205 दिन की उम्र में टेस्ट डेब्यू करने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम पर था, जबकि ओवरऑल देखे तो शेफाली वर्मा का नाम भारतीय क्रिकेटरों की सूची में सबसे ऊपर था। जाहिर है वैभव के लिए भी ये सपने के सच होने जैसा ही है।
1: वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन करने के लिए जिस चीज के लिए मैंने फर्स्ट डे से बैट पकड़ा था, क्रिकेट ग्राउंड पे मैं गया प्रैक्टिस के लिए, वो आज ड्रीम मेरा पूरा हुआ और जो मेन स्टेप होता है वो आज कंप्लीट हुआ और मतलब मैं इस चीज को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ।
0: अभी तो सिर्फ आगाज है। जिस बेखौफ अंदाज में वैभव T20 में बल्लेबाजी करते हैं, आने वाले दिनों में दुनिया भर के कई गेंदबाजों के रिकॉर्ड रद्दी की टोकरी में जाने तय हैं। आज तक ब्यूरो।
2: अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब जांच में सामने आ रहा है कि पूरा का पूरा खेल एक गैंग के तौर पर चल रहा था, जहां बकायदा बैठक होती थी और फिर पैसों के हेर फेर का पूरा प्लान तैयार किया जाता था।
3: राम मंदिर चढ़ावा चोरी जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अयोध्या पुलिस ने पूछताछ के दौरान अविनाश शुक्ला को पिछले 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाई। जैसे ही उसने खुद को चढ़ावे से पैसे निकालते देखा, वो टूट गया और लगातार चोरी करने की बात स्वीकार कर ली। पूछताछ में अविनाश ने बताया कि चोरी की रकम से एक ब्रेजा कार खरीदी थी। ये कार उसने अपने भाई के नाम खरीदी, इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ कि कार चढ़ावा चोरी के पैसे से खरीदी गई है। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आते ही अविनाश ने कार को तुरंत प्रतापगढ़ स्थित घर भेज दिया। इस मामले में अविनाश के भाई अभिषेक शुक्ला से भी पूछताछ की गई है।
4: वहीं अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर एक कार भी बरामद कर ली गई है। ये कार ये पीछे खड़ी है, ये कार अविनाश शुक्ला ने चढ़ावा चोरी की रकम से अपने भाई अभिषेक के नाम पर खरीदी थी।
3: जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। चढ़ावा चोरी गैंग के सभी आरोपी एक दूसरे की गतिविधियों से पूरी तरह वाकिफ थे। कौन कब कैसे चोरी कर रहा है, इसकी जानकारी सभी को रहती थी। चढ़ावा चोरी के बाद सभी आरोपी नियमित रूप से बैठक करते थे। उस बैठक में चोरी का माल बांटने और आगे के प्लान पर चर्चा होती थी। इन बैठकों में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा समेत 6 आरोपी शामिल होते थे। जांच में यह भी सामने आया है कि बाद में टिन्नू यादव का भतीजा भी इन बैठकों में शामिल होने लगा था। मई के आखिरी सप्ताह में मामला खुलने से ठीक पहले भी आरोपियों की एक बैठक हुई थी। अब पुलिस चोरी की रकम, उससे खरीदी गई संपत्तियों और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। कल करीब 13 घंटे की पूछताछ के बाद अविनाश शुक्ला को अयोध्या जेल भेज दिया गया है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
2: यूपी चुनाव से पहले हुए राम मंदिर चढ़ावा चोरी के इस खुलासे को विपक्ष अब छोड़ना नहीं चाहता। समाजवादी पार्टी ने अब एक गाना जारी किया है, जिसमें पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर तंज किया गया है।

समाजवादी पार्टी की ओर से जारी किया ये नया वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा अगले चुनाव में विपक्ष के लिए बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार होगा। ये वीडियो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में साझा किया है, जिसमें भगवान राम को अयोध्या छोड़कर वापस वनवास जाते दिखाया जा रहा है।

0: समाजवादी पार्टी के इस वीडियो पर सरकार के नेता अखिलेश से सवाल पूछ रहे हैं।
1: जो गाना बजा रहे हैं ना कि राम बन गए कब आएंगे, तो जब अखिलेश यादव जी दर्शन करने जाएंगे तब राम जी आ जाएंगे।
0: राम मंदिर को लेकर पूरे विपक्ष का सुर एक है।
2: राम का नाम आपने बदनाम कर दिया, हिंदुत्व का नाम पे खेला और हिंदुइज्म को आपने फिनिश किया।
3: ये चंदा चोरी बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं जानते थे इन लोगों को? इन्हीं के तो लोग हैं जो बिठाए गए हैं ट्रस्ट में।
0: इस सियासत के बीच एसआईटी सूत्रों की माने तो अयोध्या में प्रतिदिन करीब 6 से 8 लाख रुपए की चोरी हो रही थी। एसआईटी ने एसबीआई बैंक के मैनेजर समेत 10 बैंक कर्मियों से पूछताछ की है। पूछताछ के बाद बैंक के लेन देन से जुड़े दस्तावेज और हिसाब किताब अपने कब्जे में लेकर उनकी जांच की जा रही है। अयोध्या में चोरी का मामला सामने आने से पहले ट्रस्ट के एसबीआई और पीएनबी बैंक खाते में प्रतिदिन करीब 16 से 18 लाख रुपए जमा हो रहे थे। चोरी का खुलासा होने के बाद अब प्रतिदिन जमा होने वाली राशि बढ़कर 24 से 26 लाख रुपए तक पहुँच गयी है। लेकिन सवाल वही, क्या ये जाँच बड़े पदाधिकारियों तक पहुंचेगी? पूरी सियासत अब इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। आज तक ब्यूरो।
4: राम मंदिर पर विवाद अभी बढ़ ही रहा था कि अब बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावा चोरी के आरोप लग रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में जिसे लेकर जांच कमेटी बना दी गई है।
0: सवाल भक्तों की आस्था का है, उनके दान का है, जिसमें गड़बड़ी का विवाद अब बद्रीनाथ धाम तक पहुंच गया है।
5: सबसे पहले ये मामला उजागर हुआ जब भैरव सेना संगठन ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ में तैनात बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष निजी सचिव ने प्रसाद में चोरी की है और जो चढ़ावा आता है उसमें सेंध मारी है। 2 तारीख का यह मामला बताया जा रहा है। करीब 8:30 से 9:30 के बीच में ये चोरी की घटना हुई, ऐसे आरोप लग रहे हैं।
0: दावा किया जा रहा है कि बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के सचिव ने पेटी खोली और दान के पैसों में हेरा फेरी की। प्रशासन कह रहा है कि सीसीटीवी चेक किए गए हैं और ऐसा कोई मामला सामने नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर सीसीटीवी को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा?
5: 2 तारीख को सुबह 8:30 के आसपास इन्होंने मंदिर गणना समिति के सदस्य रहते हुए बिना किसी स्वीकृति के पेटी को खोल दिया गया। अब इस पेटी में कितनी चोरी हुई है, कब ये चोरी हुई है, ये जांच का विषय है या फिर ये आरोप बेबुनियाद है, ये भी जांच का विषय है।
0: उधर बीकेटीसी अध्यक्ष ने आरोपी शख्स के सचिव होने से इनकार किया है और जांच के बाद दोषियों पर एक्शन का भरोसा दिया है
6: और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
0: मामले ने उत्तराखंड की सियासत को गर्म कर दिया है, जहां कांग्रेस अब बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है।
7: इस तरह की गतिविधियां और ये प्रकरण सामने आ रहे हैं, उससे न केवल सरकार और मंदिर समिति की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि करोड़ों जो हिंदू श्रद्धालु हैं, आस्थावान हैं, उनकी भावनाएं भी आहत हो रही है।
0: सवाल करोड़ों भक्तों की आस्था का है, उनके दान किए पैसों का है। राम मंदिर के बाद अब बद्रीनाथ से आ रही खबरों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। बद्रीनाथ धाम चढ़ावा हेरा फेरी मामले में 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है। ये कमेटी एक हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जांच कमेटी में विधि अधिकारी, सीईओ, प्रभारी अधिकारी केदारनाथ और वित्त नियंत्रक को शामिल किया गया है। वहीं बद्रीनाथ धाम बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री उत्तराखंड को एक पत्र लिखा है, इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। अब बात करते हैं यूपी में 2027 को लेकर बीजेपी की तैयारी की, जिसे लेकर नितिन नवीन यूपी के दौरे पर हैं, जहां पर वो अगले कुछ दिनों में यूपी चुनावों को लेकर मंथन करेंगे।
0: यूपी चुनाव की तैयारियों का मंथन करने जब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे तो खुद योगी आदित्यनाथ उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। साथ में बीजेपी के दिग्गज मंत्री और नेता भी थे।
8: लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। भगवान प्रभु श्री राम का भूमि कह सकते हैं, भोले बाबा काशी विश्वनाथ का नगरी, मथुरा की नगरी, भगवान की नगरी, उस नगरी को नमन करता हूँ और अपने सुधे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करूँगा।
0: लखनऊ के दौरे पर नितिन नवीन की बैठकों का एक लंबा दौर चलेगा, जहां विधायक सांसदों के अलावा सीएम, डिप्टी सीएम और संघ के लोग भी शामिल होंगे।
9: उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। उत्तर प्रदेश का आम जनमानस आज मान रहा है, आज उत्तर प्रदेश का युवा चाह रहा है कि आदरणीय नितिन नवीन जी जिस ढंग से सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश के युवाओं में, माताओं बहनों में, गरीबों में, आम जनता में भारी उत्साह है।
0: नितिन नवीन के दौरे पर अखिलेश के पीडीए के कार्ड का संदेश भी देखने को मिला। नितिन नवीन का स्वागत करने पहुंचे यादव समाज के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि यादव समाज को बीजेपी में ही सम्मान और भागीदारी मिली है।
10: यादव की जगह उत्तर प्रदेश के अंदर हो, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में है। 6 केंद्र में मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के बना रखे हैं। हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश में मंत्री, मुझे भाजपा पार्षद दल का उपनेता बनाया गया। हमारे तमाम पद ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण पद यादव के।
11: इस बार
10: अखिलेश जी का जो पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको हमारा समाज पूरी तरीके से जान चुका है।
0: यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे झटके और दो बार सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्पेंसी जैसे खतरों को लेकर नितिन नवीन का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
4: अब बात पंजाब के, जहां पर चुनावों से पहले कांग्रेस की टेंशन बढ़ते दिख रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बीच में खींचतान अब खुलकर सामने आ गए हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस को आलाकमान रिपोर्ट के बावजूद चन्नी की मांगों से सहमत नहीं दिख रहा।
12: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर के बाहर मचे इस हंगामे ने एक बार फिर दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की टेंशन बढ़ा दी है। चन्नी दिल्ली कूच की तैयारी में है, लेकिन सूत्रों की माने तो चन्नी की मांग से आलाकमान सहमत नहीं है। पिछले दिनों बनी कांग्रेस ऑब्जर्वर पैनल ने पंजाब कांग्रेस प्रमुख के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी के नाम की सिफारिश की थी। पैनल की सिफारिशों के बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने राजा वडिंग को ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए रखा। ये रिपोर्ट पंजाब कांग्रेस नेताओं के साथ लंबी बातचीत के बाद तैयार की गई थी। जहां राजा वडिंग को लेकर नाराजगी थी, तो वहीं चन्नी को लेकर लोगों का समर्थन था। चन्नी को भरोसा था कि रिपोर्ट के बाद आलाकमान पंजाब में नेतृत्व में बदलाव करेगा, लेकिन हाईकमान ने इस रिपोर्ट को नजरअंदाज किया। हालांकि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग किसी भी तक की खींचतान से इनकार कर रहे हैं।
13: चन्नी जी को कोई ऑथराइजेशन की जरूरत है? चन्नी जी जब चाहे, क्योंकि राहुल गांधी जी चन्नी साहब को प्यार करते हैं, कांग्रेस पार्टी उनको प्यार करती है। देखो, मेरी बात है कि चन्नी साहब सीएम फेस बन जाएं, कोई और बन जाएं, मैं तो इस रेस में नहीं हूं।
12: राहुल गांधी 7 जुलाई को विदेश से लौट आएंगे, जिसके बाद चन्नी राहुल से मुलाकात करेंगे। वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल भी इसको लेकर हरकत में आ गए हैं, जो कुछ दिन चंडीगढ़ में बिता सकते हैं, जहां चन्नी और राजा वडिंग के साथ उनकी बातचीत होगी। इस बीच बीजेपी के चन्नी को दिए गए ऑफर ने पंजाब की सियासत को नई हवा दे दी है।
14: ये ये
11: ये कांग्रेस का एक कल्चर है, इसमें लोटस का कोई रोल नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब चट्टान की तरह खड़ी है, वो लोगों के दिल में बसी है। 22 सूबों में हमारी सरकार चलती है, सब जगह तरक्की हो रही है।
13: हाँ भाई, खुश हो लो जरा थोड़े 2-4 दिन के लिए दिल बहलाने को, यही ख्याल अच्छा है गालिब।
14: सो
13: मेरी बेनती है इन्हें बीजेपी वाले नु बावां भी खुलिया रख लेन ते भावे लत्तां भी खुलिया रख लेन।
12: पिछले चुनाव से पहले सिद्धू और अमरिंदर की खींचतान कांग्रेस को पंजाब में महंगी पड़ी थी, ऐसे में इस बार चुनाव से पहले चन्नी की नाराजगी कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रही है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ असीम बस्सी, चंडीगढ़ आज तक।
4: अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि आज राजस्थान के दौरे पर थे, पीएम मोदी ने यहां पर सबसे आधुनिक रिफाइनरी की कंट्रोल रूम को देखा, एक्सपर्ट से बातचीत की, इसके बाद रिफाइनरी का उद्घाटन किया। इस बीच पीएम मोदी ने दुनिया में ऊर्जा संकट का जिक्र किया, वहीं विपक्ष पर तंज भी किया।
15: कई देशों में तो डीजल पेट्रोल कोटे के आधार पर मिलने लगा था, लेकिन भारत में एक दिन भी ऐसे हालात नहीं आए। अफवाहें बहुत फैलाई गई, लोगों को डराया गया, भड़काया गया, राजनीति के खेल खेले गए, लेकिन जिनके इरादे गलत थे वो सफल नहीं हो पाए। दूर सुदूर इलाकों में भी छोटी मोटी अड़चनों के अलावा सप्लाई की कोई बड़ी चुनौती नहीं आई।
4: अब बात आगरा से एक हैरान कर देने वाली खबर की, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति का कत्ल करके उसे बाथरूम में गाड़ दिया। 45 दिनों के बाद इस रात से पर्दा उठा।
12: आगरा में बाथरूम में हो रही खुदाई में सुरेंद्र शर्मा नाम के शख्स की बॉडी को निकाला जा रहा है, जिसे उसकी पत्नी रूबी ने 45 दिन पहले मार कर गाड़ दिया था। अब पुलिस को सुरेंद्र का सिर्फ कंकाल मिला है।
16: मैंने घर पे कहा बोली बाथरूम में, मैंने बाथरूम में जाके देखा लेकिन मुझे मिला नहीं, तो मैंने कहा बाथरूम में तो है नहीं, मैंने क्या बताना चाह रही है, बोली है बाथरूम में लेकिन बाथरूम में जमीन के नीचे है। मैंने कि जमीन के नीचे मैंने कि गाड़ दिया है, बोली हाँ।
12: रूबी ने परिवार को बताया था कि उसका पति 5,000 रुपए लेकर झगड़ा करके घर छोड़कर कहीं चला गया। रूबी 45 दिनों तक पुलिस और घर वालों को गुमराह करती रही। जांच के दौरान महिला पुलिस के साथ सीसीटीवी फुटेज देखती रही और रोने का नाटक करती रही।
17: इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो यह पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया।
12: जांच में पता चला कि सुरेंद्र शराब पीकर रूबी के साथ मारपीट करता था, इसी वजह से उसने खीर में 18 से ज्यादा नींद की गोलियां मिलाकर पति को खिला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सुरेंद्र के साथ उसकी माँ और दो मासूम बेटियां भी रहती थी। रूबी तीनों को घर से थोड़ी दूर पर एक दुकान में ले गई, वहीं से जेठ के साथ उन्हें बेच दिया।
16: 1.5 महीने से यहाँ पर ये बोलती आ रही है कि मतलब मेरा आदमी मतलब लापता है, कोई पता नहीं है, मगर इनके घर पे रोजाना का यही मैटर था। आई दिन इनके घर में लड़ाइयाँ होती थी, आदमी दारू पीने के चक्कर में अपनी वाइफ में मार लगाता था कि पैसे दे मुझे, कहीं से भी ला के पैसे दे, इस चक्कर में इन दोनों में आपस में काफी विवाद होता था।
12: पूछताछ में पता चला है कि पत्नी ने पति को मारने की पहले ही प्लानिंग कर ली थी, बाथरूम में मजदूरों से गड्ढा बनवाया था, फिर मर्डर के बाद पति के शव को कमरे से खींचकर उसी गड्ढे में गाड़ दिया और ऊपर से फर्श बनवा दी। सबसे बड़ी बात, रूबी उसी बाथरूम में रोजाना नहाती रही। आज तक ब्यूरो।
4: अब ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के, जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर की हस्तियां पहुंची। देखिए ग्राउंड जीरो से आज तक की खास रिपोर्ट।
0: ईरान के सर्वोच्च नेता की अंतिम विदाई में लाखों लोग शामिल होने पहुंच रहे हैं, जहां अली खामेनेई की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है।
14: इस समय मैं मौजूद हूं ग्रैंड मुसल्ला में, और मैं जहां मौजूद हूं उसके ठीक पीछे अगर आप देखें कुछ ही दूरी पर आपको वो कॉफिन नजर आ जाएगा जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के शव को, उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। दरअसल आप देखें उनके साथ में चार कॉफिन आपको नजर आ रहे होंगे। चारों कॉफिन में सबसे ऊपर का जो कॉफिन है वो है सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई का। उसके नीचे अगर आप देखें उनके ग्रैंडसन यानी उनके पोते भी जो उसमें मारे गए थे, छोटा कॉफिन, उसके बाद उनके दामाद और उनकी जो कहते हैं कि मुश्तबा खामेनेई की वाइफ का भी कॉफिन है, उनकी बेटी का कॉफिन है। और अगर आप देखें कि उनके साथ साथ चार कॉफिन से परिवार के अलग अलग लोगों के बताए जाते हैं कि उनके ये कॉफिन है। हालांकि कुछ लोग और मारे जाने का भी दावा किया गया था, लेकिन उसकी पुष्टि अब तक ईरान में नहीं की गई है।
4: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन भी कुदरती है जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
6: वी आर ओवर जिमी।
7: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PP अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: शेयर बाजार, जहां कुछ लोग सीखते रह जाते हैं और कुछ इतिहास लिख जाते हैं। आखिर बड़ा पैसा बनता कैसे है, कौन सी सोच, कौन सी रणनीति और कैसा नजरिया किसी को बनाता है बाजार का असली खिलाड़ी, इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आ रही है बिस्तक की नई पॉडकास्ट सीरीज मनी मेकर्स। यहां मुलाकात होगी बाजार के उन दिग्गजों से, उन मार्केट लेजेंड से जिन्होंने सिर्फ मार्केट को देखा नहीं बल्कि बड़े उतार चढ़ाव दिए हैं, मौके पहचाने हैं और दौलत बनाई है। जानेंगे उनकी जर्नी, बड़े फैसले, निवेश की सीख और बड़ा पैसा बनाने की सोच। मनी मेकर्स, बाजार के बड़े नाम, बड़ी सीख, सिर्फ बिस्तक पर।
4: हमने तब भी सवाल किया था,
5: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
4: हम आज भी सवाल करते हैं,
5: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
4: ऑपरेशन अग्नि,
5: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
4: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई, खबरदार सिर्फ आज तक पर।
6: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमा कुरैशी।
7: ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
8: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अकल नहीं है। इस पे जो बहुत फेमस सीन है वो जो
9: परमिशन लेनी चाहिए ना,
8: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई।
10: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है, लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी,
8: आई फील अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो रुक जाइए,

0: रामलला के घर हुई डकैती की जांच पुलिस और एसआईटी कर रही है। एसआईटी उन बड़े किरदारों को बेनकाब करने में लगी है जो बंदी प्रबंधन में थे, तो वहीं अयोध्या पुलिस उन आरोपियों से सवाल जवाब कर रही है जो सीधे सीधे चढ़ावे का पैसा दबा लिए। श्रद्धालुओं के चढ़ावे पर हाथ साफ करने वाले आरोपियों के काले कारनामे परत दर परत खुलते जा रहे हैं। पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला से कई ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुनकर राम भक्तों का खून खौल जाए। अयोध्या पुलिस ने पूछताछ के दौरान अविनाश शुक्ला को पिछले 45 दिनों की सीसीटीवी फुटेज दिखाई। जैसे ही उसने खुद को चढ़ावे से पैसे निकालते देखा, वो टूट गया और लगातार चोरी करने की बात स्वीकार कर ली। पूछताछ में अविनाश ने बताया कि चोरी की रकम से एक ब्रेजा कार खरीदी गई थी, जी कार उसने अपने भाई के नाम खरीदी। अविनाश का भाई इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ कि कार चढ़ावा चोरी के पैसे से खरीदी गई है। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आते ही अविनाश ने कार को तुरंत प्रतापगढ़ स्थित घर भेज दिया गया। इस मामले में अविनाश के भाई अभिषेक शुक्ला से भी पूछताछ की गई है। जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। चढ़ावा चोरी गैंग के सभी आरोपी एक दूसरे की गतिविधियों से पूरी तरह वाकिफ थे। कौन कब और कैसे चोरी कर रहा है इसकी जानकारी सभी को रहती थी। चढ़ावा चोरी के बाद सभी आरोपी नियमित रूप से बैठक करते थे। उस बैठक में चोरी का माल बांटने और आगे का प्लान डिस्कस होता था।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला से 13 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड में जहां एक तरफ पूछताछ की गई, उसको योग केंद्र से लेकर 14 कोसी परिक्रमा के उस मार्ग तक ले जाया गया जहां पर ये सारे चढ़ावा चोरी के आरोपी मिलकर पैसों की बंदर बांट करते थे।
0: इन बैठकों में अनुकल्प मिश्रा, लोकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा समेत 6 आरोपी शामिल होते थे। जांच में ये भी सामने आया है कि बाद में टिन्नू यादव का भतीजा भी इन बैठकों में शामिल होने लगा था। मई के आखिरी सप्ताह में मामला खुलने से ठीक पहले भी आरोपियों की एक बैठक हुई थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है। पूछताछ में सामने आए ये खुलासे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि चोरी कोई अकेले व्यक्ति की करतूत नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से अंजाम दी जा रही थी। अब पुलिस चोरी की रकम, उससे खरीदी गई संपत्तियों और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। कल करीब 13 घंटे की पूछताछ के बाद अविनाश शुक्ला को अयोध्या जेल भेज दिया गया है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

इस अखिलेश के बाद ममता ने भी खोला मोर्चा, कहा राम का नाम किया बदनाम। पीएम मोदी ने विपक्ष पर युद्धकाल में देश को डराने का लगाया आरोप, राजस्थान के बालोतरा में बोले संकट में राष्ट्रहित को आगे रखकर फैसला, देश पर नहीं डाला बोझ। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पीएम मोदी को जान से मारने की ऑनलाइन धमकी, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का दावा, मामले की जांच और संदिग्ध की तलाश जारी, 9 जुलाई को मेलबर्न जाएंगे पीएम। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार यूपी के दौरे पर, नितिन नवीन मिशन 2027 को लेकर सरकार से पार्टी तक मैराथन बैठक, जीत की हैट्रिक के लिए मंथन। वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और कीर्तिमान, भारत की ओर से सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में मौका, बीसीसीआई ने कहा भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक दिन।

नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। देश के कई हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन बारिश की पहली किश्त ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। आपको बताएंगे अलग अलग जगहों का हाल, लेकिन सबसे पहले बात मुंबई की बारिश की करेंगे। बीते चार दिनों से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के चलते मुंबई के इलाकों में पानी भर गया, सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। इस बीच में मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों की मुसीबत और बढ़ सकती है।

0: सड़कों पर सैलाब है, सबवे लहरों के बीच डूब चुका है। एक बार फिर भारी बारिश के चलते मुंबई में हाल बेहद बुरा है। चाहे अंधेरी हो या नाला सोपारा, वसई या विरार, हर ओर मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा है। लगातार हो रही बारिश ने मुंबई के लोगों का जीवन दुभर कर दिया है।
1: चांदीवली विधानसभा नाले सफाई झाली नाही, महापौर म्हणतात नाले सफाई झाली, उपमहापौर म्हणतात नाले सफाई झाली, पण नाले सफाई कुठे झाली? कानुराम कुठे गेला? नाल्याचा कॉन्ट्रॅक्टर कुठे गेला? कानुराम हे बघा, वॉटर किंगडम आहे, वॉटर किंगडम चांदीवली विधानसभा।
0: एक एक तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर मॉनसून की बारिश के बीच मुंबई किस तरह की मुसीबत झेल रही है। गाड़ियां पानी के बीच फंसी हुई हैं, कहीं आना जाना मुश्किल है, बारिश का दौर थम नहीं रहा है, सड़कों पर बढ़ता जलस्तर लोगों का संकट बढ़ा रहा है। सबसे पहले भिवंडी इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। तेज बारिश से पूरा बाजार तालाब बन गया है, दुकानों में पानी भर गया है, गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, घुटनों तक पानी में लोग आ जा रहे हैं। किसी तरह जद्दोजहद कर अपनी दुकानों का सामान बचाने की कोशिश में लोग जुटे हुए हैं। अब नाला सोपारा हाईवे का हाल देखिए। सड़कों पर भरे पानी के चलते कई गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, लोगों को कहीं आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। नाला सोपारा में बढ़ता जलस्तर तेजी से रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ रहा है, जो आने वाले दिनों में मुंबई के लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकता है, क्योंकि नाला सोपारा और उसके आसपास के सभी मार्केट पूरी तरह से पानी में घिरे हुए हैं। गाड़ियों से भी गुजर रहे लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। मुंबई में बीते चार दिनों से बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाके पानी में डूब गए हैं। इस बीच पानी भरने के बाद अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। अब विरार इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। दोनों ओर की सड़क पर सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है, सड़कों पर गाड़ियां फंसी हुई हैं, दूर तक लंबी कतार नजर आ रही है। बांद्रा इलाके में सड़कें लबालब हैं, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। बारिश के बीच मुसीबत का दायरा बढ़ता जा रहा है।
2: मुंबई में सुबह से लगातार बारिश हो रही है और यह बारिश पिछले तीन से चार दिनों से मुंबई में हो रही है। आज भी मौसम विभाग द्वारा मुंबई और मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, रायगढ़, थाने, पालघर, नवी मुंबई, इनके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया है। आप देख सकते हैं हम इस वक्त मुंबई के घाटकोपर इलाके में है, जहां पर 1.5 से 2 फीट तक का पानी जो है वो मुंबई की सड़कों पर जमा हो गया है और सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील होती हुई यहाँ नजर आ रही हैं। लोग कई समय से यहाँ पर बस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो बस है वो नहीं आ रही है। गाड़ियों की आवाजाही थोड़ी यहाँ धीमी होती हुई नजर आ रही है।
0: वसई इलाके का हाल तो और भी ज्यादा बुरा है। पानी इतना ज्यादा भर गया है कि मानो पूरा इलाका टापू बन गया है। इस बीच बिजली न होने से करीब 450 परिवारों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।
3: वसई विरार में लगातार चार दिन से जोरदार बारिश हो रही है। कई निचले इलाकों में पानी भर चुका है। फिलहाल इस वक्त मैं खड़ा हूँ वसई ईस्ट के मिठागर की बस्ती है। यहाँ हम देखेंगे तो ये जो रोड है जहाँ भरा है, इसके नीचे रास्ता है और ये रास्ते से अंदर हम 1.5 से 1.5 किलोमीटर जाए तो ये नमक की खेती करने वालों की बस्ती है। कुल 120 फैमिलीज वहाँ रहती है, 300 से 400 लोग है। हर साल इसी तरह ये रोड जो है पानी के नीचे चला जाता है। ये इन्होंने जानकारी दी जो है कि इनके घर में आसपास कुल कमर के ऊपर तक का पानी भर चुका है। बिजली भी कल से चली गई है और ये वस्ती के आसपास भी ये जो प्लेन इलाका है वहाँ भी ये भी पूरी तरह से भर चुका है। प्रशासन की ओर से इन्हें कोई अभी तक मदद पहुंची नहीं है। फिलहाल इन्हें खाने पीने की चीज़ों की सख्त जरूरत है क्योंकि लाइट कल से है नहीं और यही बारिश अगर लगातार चालू रही तो इनके हाल बेहाल हो सकते
0: हैं। इस बीच बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन की ओर से अब तक लोगों तक कोई मदद नहीं पहुंची है, जिससे लोगों पर आई आफत और ज्यादा बढ़ गई है।
4: हालत खराब है कल से लोगों से, क्योंकि लाइट भी नहीं है, कल से लाइट भी नहीं है और पानी भी जैसे बढ़ते ही जा रहा है और ऊपर से बारिश भी और ज्यादा ही होते जा रहा है जैसे कि अभी एक दो घंटा और गिरेगा तो घर में भी घुस सकता है पानी।
3: लाइट की क्या समस्या है उधर?
4: लाइट तो कल से ही नहीं है, कल से दोपहर से गई है, अभी तक आई नहीं है।
3: अभी अंदर कितना पानी है, कितने फैमिलीज अंदर रहती है?
4: फैमिली रहती है 450 फैमिली रहती है और कम्बर के ऊपर पानी है।
3: कि कुछ सुबह से कुछ प्रशासन की हेल्प हुई है?
4: कुछ भी नहीं, किसी ने हेल्प करने के लिए फोन भी नहीं किया, कुछ हेल्प आया ही नहीं।
0: बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा, जगह जगह भारी जलभराव है और लोग बेहद परेशान। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच मौसम विभाग ने भी शहर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर प्रशासन ने लोगों को बेहद जरूरी यात्रा करने की सलाह दी है ताकि मौसम की मार किसी की जिंदगी पर संकट न बने। मुंबई में हर साल की यही कहानी है, बारिश हुई और लोगों की जिंदगी आफत के बीच घिर गई। एक बार फिर ऐसी ही तस्वीरें शहर की पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। सैलाब के बीच जिंदगी संकट में घिरी है। मुंबई से प्रवीण नालावड़े के साथ दीपेश त्रिपाठी आज तक।
5: चेंबूर से हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी जुड़ गए। दीपेश, मुंबई की हर साल की यही कहानी क्यों है? मतलब हजारों करोड़ का बजट और उस बजट को लगाने का भी दावा, लेकिन वो कहीं दिखता नहीं है, हर तरफ पानी ही पानी भरा दिखाई देता है।
2: जी राजीव, बिल्कुल। देखिए, एक जो उम्मीदें होती हैं लोगों की मानसून से पहले कि तैयारियां पूरी हो जाए प्रशासन की, पर वो उम्मीदें कभी पूरी नहीं होती, इतने सालों तक तो पूरी नहीं होती आई हैं, पर इस साल भी वो सिलसिला बदस्तूर कायम है। इस साल भी तैयारियां पूरी ना होने की वजह से बारिश शुरू हुए, मानसून दाखिल हुए, महाराष्ट्र में केवल 10 से 11 दिन हुए हैं और अभी से सड़कों पर पानी, कहीं तारे खुली हुई, कहीं पेड़ गिर रहे हैं, कहीं घरों के स्लैब गिर रहे हैं, ये सारे हादसे मुंबईकरों को जो है देखने पड़ रहे हैं, सहने पड़ रहे हैं। चार दिन से बरसात शुरू है, आज भी हम मुंबई के सड़कों पर हैं, आज भी कई जगहों पर मुंबई के जो लो लाइंग एरियाज है वहां पानी भरा हुआ है। अगले 3 घंटों के लिए दोबारा से रेड अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है मुंबई और थाने के लिए। तो वहीं जो मुंबई के सबर्बन इलाके हैं, ईस्टर्न सबर्बन हो या वेस्टर्न सबर्बन, ईस्टर्न सबर्बन में सबसे ज्यादा बरसात हुई है 186 मिलीमीटर, तो वहीं वेस्टर्न सबर्बन में 166 मिलीमीटर तक की बरसात जो है वो रिकॉर्ड की गई है। यहां पर भी आप देख रहे हैं सड़कों पर अभी भी पानी जमा हुआ है, बरसात की तीव्रता थोड़ी कम हुई है इसीलिए यहां पर पानी थोड़ा कम है, लेकिन जैसे जैसे बरसात की तीव्रता बढ़ेगी वैसे यहां सड़कों पर पानी दोबारा से देखने को मिलेगा। इसकी वजह से रेल यातायात और सड़क यातायात दोनों ही प्रभावित हुए हैं। जी
5: बहुत शुक्रिया दीपेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। महाराष्ट्र की तस्वीर हमने आपको दिखा दी, लेकिन अब बात करते हैं गुजरात की। भारी बारिश ने गुजरात की रफ्तार भी थाम दी है, शहर के कई इलाके दरिया बन चुके हैं, जनजीवन से लेकर वाहनों की रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लग गया है।

ये तस्वीरें गुजरात की हैं, जहां तक नजर घुमाइए वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं, हाईवे तालाब में तब्दील हो गए हैं और लगातार बारिश ने जनजीवन की रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया है। ये तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ की हैं, जहां मानसून अब मेहरबान कम और आफत ज्यादा बनता दिख रहा है। तेज बारिश के बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हैं और सामान्य जीवन पूरी तरह प्रभावित है। मानसूनी आफत इस कदर बरसी कि तेज बहाव के बीच वाहन समेत कई लोग फंस गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कुल 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।

0: जहां पिछले 3-4 दिनों से लगातार हो रही बेमौसम बारिश ने पूरा इलाका पानी पानी कर दिया है। जल भराव के बीच लोग घुटनों तक पानी में आने जाने को मजबूर हैं। बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं।
1: आज तक ब्यूरो।
2: महाराष्ट्र, गुजरात के साथ ही पहाड़ी राज्यों में भी बारिश का दौर जारी है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड के चलते संकट बढ़ता जा रहा है।

0: रुद्रप्रयाग। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, किनारे की घाट पूरी तरह टूट चुके हैं और बहाव आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले रहा है। बीते कुछ दिनों से उत्तराखंड में हो रही बारिश का असर अब यहाँ की नदियों पर दिखने लगा है। ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी की है, जिसका बढ़ते जलस्तर से आसपास के इलाकों में संकट बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है, कई जगहों से लैंडस्लाइड की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ की है, जहां भारी बारिश के बाद मलबे ने कई मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। कई मकान पूरी तरह बर्बाद हो गए। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भी बारिश का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में पहाड़ से पत्थर गिरते हुए सड़कों तक आ गए और फिर खाई में जा गिरे। गनीमत रही कि इस दौरान यहां से कोई गाड़ी नहीं गुजरी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हिमाचल प्रदेश में मानसून की एंट्री के बाद कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। आने वाले दिनों में भी कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। साथ ही ऊना, हमीरपुर, चंबा और कुल्लू जिलों में बारिश का अनुमान है, जिससे लोगों के सामने मुसीबत और बढ़ सकती है। आज तक ब्यूरो
1: विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक,
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: दैत्य महाराज ने हनुमान जी को परास्त कर दिया।
5: ये बेताल बाबा को मंदिर
6: है, रावण की पूजा करते हैं, रामलीला निमनाते हैं यहाँ पे।
7: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
4: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स,

0: रंग भी होता है। लखनऊ की सड़कों पर कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखी जब नितिन नवीन पहली बार बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद लखनऊ पहुंचे। तो सवाल यह कि क्या नितिन नवीन का दौरा बीजेपी के 2027 चुनाव अभियान का औपचारिक आगाज है? क्या बीजेपी का संगठन विपक्ष के सामाजिक समीकरणों पर फिर भारी पड़ेगा या इस बार मुकाबला बदल चुका है? क्या यूपी में 2027 की लड़ाई सत्ता बचाने की होगी या सत्ता बदलने की? बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का लखनऊ एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए सीएम योगी खुद मौजूद थे, साथ में बीजेपी के दिग्गज मंत्री और नेता थे। यूपी विधानसभा चुनाव अगले साल के शुरुआती महीनों में होना है, लेकिन बीजेपी ने अपनी राजनीतिक घड़ी तेज कर दी है। लखनऊ दौरे पर नितिन नवीन का एजेंडा साफ है। 2024 की समीक्षा, सोशल इंजीनियरिंग, सरकार संगठन में तालमेल, वोटर आउटरीच, 2027 की जीत का ब्लूप्रिंट। बीजेपी अध्यक्ष पद संभालने के बाद नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी ने बंगाल में ऐतिहासिक रूप से सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की, जबकि असम और पुडुचेरी में अपनी सत्ता बरकरार रखी। केरल में भी पार्टी का वोट बैंक तेजी से बढ़ा है। अब इसी विनिंग फॉर्मूले के साथ वो यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव लगातार पीडीए के फॉर्मूले को जीत का मंत्र बताते रहे हैं।
1: हम सबसे अपील करेंगे, जो हम लोगों ने एक आवाज दी है कि पीडीए से सब जुड़ जाएं। मुझे उम्मीद है पीडीए की लड़ाई मजबूत होगी, पीडीए एनडीए को हराएगा, और जब हम लोग टिकट बांट रहे हैं, सीटें बांट रहे हैं, तब बीजेपी अपनी टिकट काटने की सोच रही है। सोचो, बीजेपी टिकट काटना चाहती है, हम सीटें बांट करके जनता में पहुंचे।
2: नफरत के सहारे ये सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन देश जाग गया है, पीडीए जाग गया है, इस बार मुकाबला पीडीए करेगा एनडीए का।
0: हालांकि जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं, उसमें से नितिन नवीन के स्वागत करने पहुंचे यादव समाज के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि यादव समाज को बीजेपी में ही सम्मान और भागीदारी मिली है। यूपी की राजनीति में हर चुनाव सामाजिक समीकरणों और संगठनात्मक ताकत की नई परीक्षा बनकर आता है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के बाद बीजेपी के लिए अब सबसे बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, जबकि विपक्ष अपनी जीत का दावा ठोक रहा है। ऐसे में लखनऊ में जो बिसात नितिन नवीन बिछाएंगे, उसकी गूंज 2027 विधानसभा चुनाव में जरूर सुनाई देगी। आज तक ब्यूरो।

0: सुप्रीम लीडर को 125 दिनों के बाद सुपुर्द खाक किया जा रहा है। हम इस समय तेहरान में मौजूद है और हर बदलते घटनाक्रम की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।
1: मैं गीता मोहन सीधे तेहरान से आज तक के लिए।
2: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
4: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
5: कई देशों में तो डीजल पेट्रोल कोटे के आधार पर मिलने लगा था, लेकिन भारत में एक दिन भी ऐसे हालात नहीं आए। अफवाहें बहुत फैलाई गई, लोगों को डराया गया, भड़काया गया, राजनीति के खेल खेले गए, लेकिन जिनके इरादे गलत थे वो सफल नहीं हो पाए। दूर सुदूर इलाकों में भी छोटी मोटी अड़चनों के अलावा सप्लाई की कोई बड़ी चुनौती नहीं आई। अप्रैल से जून के बीच ही अकेले डीजल पेट्रोल में 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा कंपनियों को उठाना पड़ा। यानी एक नई रिफाइनरी बन जाए इतना घाटा सहना पड़ा, और इस घाटे को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकारी खजाने से उठाई गई। हमने प्रति लीटर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी भी कम की, और बहुत ज्यादा बोझ जनता पर नहीं पड़ने दिया। साथियों, जब सार्वजनिक तौर पर कुछ ताकतें अफवाह और आशंका फैलाने में व्यस्त थी, तब किस स्केल पर दिन रात काम हो रहा था, किस तरह स्थिति को संभाला जा रहा था, वो मेहनत, वो प्रयास, वो धैर्य नीतिगत स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर उठाए गए एक एक संवेदनशील कदम कभी न कभी इतिहास लिखेगा, ये सब अभूतपूर्व है।
6: राम मंदिर के दान में हुए गबन की जांच कर रही एसआईटी एक बार फिर अयोध्या पहुंची है। इस बार जांच का दायरा काफी बड़ा है। दान में हेरफेर की आंच अब बड़े अधिकारियों तक पहुंच गई है। सेकंड राउंड के पहले दिन एसआईटी की टीम ने बंद कमरे में 8 घंटे की मैराथन पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक गोपाल राव, चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा से भी पूछताछ की गई है। हालांकि एसआईटी और ट्रस्ट की ओर से अभी तक पूछताछ की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। एसआईटी टीम का नेतृत्व आईपीएस अधिकारी किरण एस कर रहे हैं। एसआईटी मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था, दान संग्रह की प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की भी बारीकी से जांच कर रही है। इस बीच चंपत राय का बयान सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने अपने करीबी सहयोगियों से कहा है कि अयोध्या में उनकी सेवा पूरी हो चुकी है और चंदे में हेराफेरी के विवाद के बाद वे दाग के साथ काम जारी नहीं रखेंगे। इस बीच मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आगे की पूछताछ के लिए अविनाश शुक्ला को पुलिस ने रिमांड पर लिया है, क्योंकि जांच के दौरान सबसे ज्यादा कैश 20,39,000 अविनाश शुक्ला के घर से बरामद किया गया था। कैश के साथ पुलिस को अमेरिकी डॉलर और सोने चांदी के जेवरात भी मिले हैं। समद श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
9: इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

मोर्चा कहा राम का नाम किया बदनाम। पीएम मोदी ने विपक्ष पर युद्धकाल में देश को डराने का आरोप लगाया। राजस्थान के बालोतरा में बोले, संकट में राष्ट्रहित को आगे रख लिया फैसला, देश पर नहीं डाला बोझ। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पीएम मोदी को जान से मारने की ऑनलाइन धमकी, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का दावा। मामले की जांच और संदिग्ध की तलाश जारी। 9 जुलाई को मेलबर्न जाएंगे पीएम। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार यूपी के दौरे पर नितिन नवीन। मिशन 2027 को लेकर सरकार से पार्टी तक मैराथन बैठक, जीत की हैट्रिक के लिए मंथन। मूसलाधार बारिश से पानी पानी, मुंबई के इलाकों में जलभराव से भारी परेशानी। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, ट्रेनों और उड़ानों पर भी असर।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। गोस्वामी तुलसीदास की हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी महावीर यानी हनुमान जी का नाम लेने से भूत पिशाच आदि दूर रहते हैं। लेकिन भारत में एक ऐसा गांव है जहां लोगों ने एक दैत्य को अपना भगवान मान लिया है और हनुमान जी के नाम से भी उन्हें बैर है, जहां जय बजरंग बली बोलने की सख्त मनाही है, जबकि दैत्य की निरंतर जय जयकार होती है। अद्भुत आस्था की अविश्वसनीय अकल्पनीय मान्यता के दर्शनों के लिए चलिए हमारे साथ इस गांव जहां हर तरफ दैत्य की महिमा का बखान होता है लेकिन बजरंग बली की जय नहीं बोली जाती।

0: हमारे गांव पर आज तक कोई नैसर्गिक आपत्ति भी नहीं आती है। जैसे हनुमान जी राम भक्त है निस्सीम, उस तरह श्री निंबादित्य महाराज राम भक्त है। वो जरी राक्षस कुल में उनका जन्म हुआ,
1: दैत्य महाराज ने हनुमान जी को परास्त कर दिया, इस गांव में हनुमान जी का नाम नहीं रहेगा।
2: गांव में हनुमान मारुति भवन इस नाम का कोई व्यक्ति यहाँ पे चलता नहीं है।
3: हम मारुति कार में बैठते ही सुधा नहीं।
2: गांव में आप कहीं भी जाइए, वहां पे डबल मंजिली इमारत कहीं नहीं है।
4: एक भगवान है मारुति, उनके साथ हमारे निंबादित्य महाराज का कभी जमता नहीं था।
2: हमारे जो भगवान है, हमारी जो देवता है, उसी नाम से गांव का नाम रखा है।

0: मंदिर में आरती दैत्य की। घरों पर कृपा दैत्य की। हर शुभ काम से पहले दैत्य की पूजा। हर अनिष्ट से बचने के लिए दैत्य की शरण। पूरा गांव दैत्य की जागीर। हर गांव वासी दैत्य का पुजारी। यहां भगवान के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि दैत्य ही यहां का भगवान है। अद्भुत आस्था की अक्सर ऐसी तस्वीरें मिल जाती हैं जहां पूजा का विधान अविश्वसनीय अकल्पनीय होता है, जैसे उत्तर प्रदेश के बिसरख में रावण के प्रति अगाध श्रद्धा, पुणे में प्रेत बेताल बाबा का मंदिर, जिनके बारे में हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन अभी हम जिस गांव की बात कर रहे हैं, यहां की जो मान्यता है वो केवल इतनी नहीं कि दैत्य को पूजने वालों का गांव है, बल्कि यहां पर हनुमान जी से घनघोर बैर भी है। ये गांव महाराष्ट्र के अहमदनगर से 60 किलोमीटर दूर है। यहां हनुमान जी की पूजा करना मना है।
1: गांव वाले लोग हनुमान जी को मान सम्मान देते हैं, तो वो गांव की ऐसी रीत है, हनुमान जी से जगह पर उनको मान दिया जाता है, वो श्री निम्बाजत्ते महाराज को मान दिया जाता है।
0: हनुमान जी का नाम लेना भी मना है। हनुमान जी के नामों वाले व्यक्ति का गांव में घुसना मना है।
1: आणि ए गांव में हनुमान और मारुति उनका कोई व्यक्ति का नाम रख दिया नहीं जाता।
0: यहाँ कोई हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता।
2: हनुमान चालीसा अभी तक इस गांव में जितने भी पीढ़ी हुए ये को भी हनुमान चालीसा नहीं आती। अभी तक गांव में कोई हनुमान चालीसा बोलता भी नहीं, किसी के नाम भी हनुमान चालीसा से नहीं। हनुमान चालीसा 100,000 बार भी ली और एक बार निम्बा दैत्य का नाम लिया, वो एक बार मतलब एक बराबर के तोले में होता है।
0: हनुमान जी के नाम वाली गाड़ी तक नहीं खरीदता।
3: जो मारुति गाड़ी हमने बेच दी और मारुति छोड़ के जो दूसरा कंपनी है, टाटा हो या हुंडई हो, वो गाड़ी लेने के बाद हमें वैसी कोई दिक्कत नहीं आई।
0: एक दैत्य के प्रति इतनी आस्था और हनुमान जी से इतना बैर, आखिर ये कैसी मान्यता है और ये कैसी अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय श्रद्धा है। अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय की टीम जब दैत्य नांदुर गांव पहुंची तो वाकई यहां घरों, दुकानों, गाड़ियों पर हर जगह निम्बा दैत्य महाराज की कृपा को समर्पित नाम ही हर जगह लिखे हुए मिले। आखिर क्यों यहां के लोगों ने हनुमान जी से नाता तोड़ लिया है? आखिर क्यों यहां हनुमान जी के नाम वाली गाड़ी तक लोग नहीं खरीदते? आखिर कौन है ये निम्बा दैत्य?
4: राम, लक्ष्मण और मां सीता, ये तीनों वनवास में आते समय कुछ दिन वहाँ भी रहे थे, और हमारा निम्बा दैत्य नाम का जो देवता है हम उसे मानते हैं, वो यहाँ पे रहते थे, प्रभु के नाम जप करते थे। जब ये हनुमान जी यहाँ से जा रहे थे उधर, तो उन्होंने देखा कि कुछ निम्बा दैत्य नाम का राक्षस यहाँ पे है और वो मेरे राम जी को कुछ ना कुछ उससे गलती हो सकती है, कुछ कर सकता है, इसके बारे में उन्होंने देखा तो नीचे आ गए। दोनों के बारे में झगड़ा हो गया, दोनों के बीच में
1: उनका जो तंटा हुआ, झगड़ा हुआ, उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी ने उनको एक आशीर्वाद दिया, वो गांव जागीरी दिया कि ये गांव में जैसा हर गांव में हनुमान जी का मंदिर होता है, उनको एक अपवाद ऐसा गांव होता है कि वो गांव में हनुमान जी का मंदिर नहीं है, उनको वो जो गाँव है वो प्रभु रामचंद्र जी ने श्री निम्बाजत्ते महाराज को जहागीरी दिया, वो गांव दान दिया,
2: राम जी खुश हुए और राम जी ने बोला कि आपको ऐसा क्या चाहिए, दैत्य महाराज को बोला कि मैं आपको दू। तब वो बोले कि जैसे आपने कबूल किया है कि जैसे हनुमान जी आपके भक्त है वैसे मैं ही हूँ, तो मुझे ऐसा एक स्थान दो कि जिसमें सिर्फ मैं ही आपका भक्त दिखूँ। और उस टाइम पर राम जी ने खुश होकर ये गांव अपने निम्बा देते हैं उनको गिफ्ट दिया कि यह सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारे नाम से सब चलेगा इस गाँव में।
0: आज का दैत्य नांदूर गांव जिस क्षेत्र में आता है वो रामायण काल में वर्णित दंडकारण्य वन का हिस्सा है, जहां से भगवान राम वनवास के समय गुजरे थे। गांव के लोगों का विश्वास है कि इस गांव की जागीर भगवान राम ने निम्बा दैत्य से प्रसन्न होकर उसे सौंप दी थी और तब से ये गांव उसके संरक्षण में माना जाता है।
4: वो जो हमारा ग्राम दैवत है, इस गांव के जो लोग हैं, उनका जो विश्वास है वो सभी देव के ऊपर ही आता है और देव हमारा वो जो भगवान है वो हमारा रक्षा करता है।
5: सर्विस होती है, कुछ भी होते हैं, मन्नत हमें दैत्य महाराज को मांगते हैं तो पूरी करते हैं दैत्य महाराज। और शादी के पहले भी परने कुछ भी जाता है ना तो उधर दैत्य महाराज को जाता है, दूसरे गाँव में जाता है तो ये हनुमान को चलता है, इधर नहीं चलता कुछ हनुमान।
6: मेरे बच्चे छोटे छोटे थे,
5: 3 महीने के थे।
6: उस टाइम वो शहीद हो गए, जुड़वे होते, लड़की होती उनकी शादी हो गई, अभी
5: जुड़वा
6: शादी है अभी।
7: अच्छा,
6: अभी वो लड़का है ना जुड़वातला, उनकी शादी है।
7: खुशी का माहौल है।
5: हाँ, खुशी का माहौल है।
0: गांव के लोग कोई भी शुभ कार्य करने से पहले किसी और भगवान को नहीं बल्कि सिर्फ निम्बा दैत्य का ही नाम लेते हैं और उन्हीं की आराधना करते हैं।
1: या शुभ कार्य होता है, शादी वगैरह, वो कार्यक्रम में इतर गांव में जैसा लोग पहला ग्राम दैवत का मान हनुमान जी को देता है, तैसा वो गांव की ऐसी रीत है कि वो गांव का जो मान सम्मान है ग्राम दैवत का वो श्री निम्बादित्य जी को मिलता है, ग्राम लोग देते हैं।
8: हमारे बेटे की शादी है, हाँ। इसलिए पहला नैवेद्य हम दैत्य को दिखाते हैं, शुरुआत यहीं से, हाँ, पूर्ण शादी की शुरुआत यहीं से होता है हमारे।
0: जितनी अद्भुत है दैत्य में आस्था उतनी ही अविश्वसनीय है एक दैत्य महाराज की पूजा का विधान भी।
1: तो श्री निम्बादित्य महाराज है, वो जरी राक्षस कुल में उनका जन्म हुआ लेकिन वो शुद्ध शाकाहारी है, उनको शाकाहारी मीठा भोग लगता है। जो शास्त्र में मुख्य पकवान कहते हैं पूरणपोड़ी, वो पूरणपोड़ी का हर घर का हर रोज उनको भोग लगता है दोपहर 12 बजे तक।
3: निम्बा दैत्य बोले तो कोई नॉन वेज रहेगा खाने को, लेकिन हमारे जो गांव की यात्रा है वो पूरे वेज रहती है, यानी बाकी के जो भगवान की यात्रा जैसे रहती है वैसे ही सेम हमारे निम्बादित्य महाराज की यात्रा रहती है।
0: चलिए मान लिया कि आस्था तो किसी की भी किसी में भी हो सकती है, लेकिन गाँव में हनुमान जी पूरी तरीके से क्यों वर्जित है? उनका नाम लेने या स्मरण करने से क्या हो जाता है? उनके नाम की इस गांव में सख्त मनाही क्यों है? रामायण काल से गांव की प्रथा निम्बा दैत्य को पूजने की रही, लेकिन हनुमान जी का नाम न लेने की जो कहानियां लोगों ने सुनाई वो वाकई अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है।
9: मैंने संकल्प किया, अभिषेक किया,
10: मैंने संकल्प लेकर मारुति की गाड़ी ली, लेकिन कभी उसका नाम नहीं लेता था। यही कहता था कार लाओ, कार की चाबी लाओ। एक बार मैं कार लेकर शहर से आ रहा था, सड़क खाली थी, पता नहीं चला क्या हुआ गाड़ी राइट साइड में खेतों में चली गई। मैं काफी अच्छा ड्राइवर था, ऐसे कैसे हुआ समझ में नहीं आया। मेरे दवा खाने में जहाँ कभी मरीजों की लाइन लगती थी अचानक वहाँ पर मरीज कम हो गए, 100 से 2-3 पर आ गए। मुझे समझ में नहीं आया आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब मुझे एक रात सपना आया जिसमें एक ब्राह्मण ने कहा कि जब मारुति की गाड़ी यहाँ चलती नहीं तो क्यों खरीदी। मैंने फौरन कार अपने दोस्त के नाम ट्रांसफर कर दी। उसके बाद मेरे दवाखाने पर फिर मरीजों की भीड़ लगने लगी। आज तक फिर किसी ने मारुति की गाड़ी वहाँ नहीं खरीदी।
0: गांव के लोगों का मानना है कि हनुमान जी से निम्बा दैत्य का झगड़ा हुआ था, इसीलिए उन लोगों ने खुद अनुभव किया है कि अगर कोई चीज हनुमान जी से जुड़ती है तो मुश्किल आती ही है।
2: पुराने जमाने का ट्रैक्टर है वो बहुत बड़ी ब्रांड, उस टाइम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रैक्टर था उस कंपनी का। और ऐसे बोलते हैं कि वो ट्रैक्टर कभी फंसा, उसकी पावर जो इंजन थी ट्रिपल इंजन जो बोलते हैं उस टाइप की, तो वो छोटा सा खड्डा था उसमें फंस गया था। सारे लोग उसको 4-5 बैलगाड़ी लेके आए थे उस टाइम पे खींच रहे थे, फिर भी वो निकल नहीं रहा था। लोग बोले ऐसा क्यों हो रहा है, वो किसी को पता नहीं था। सिंपल सी, जब लोगों ने हमारे निंबादित्य जी महाराज का नाम लिया और फिर वो धक्का दे के वो ट्रैक्टर आगे गया, पर बाद में एक लोगों को दिखा कि उसके पीछे नाम मारुति का था, तब तो लोगों ने माना कि ये हमारे दैत्य महाराज ने हमें साक्षात्कार किया है कि आप लोग ऐसा नहीं कि कोई गलती से हुआ तो वो उसने, पर आप डायरेक्टली चैलेंज लेके इधर आए तो वो सबसे महंगा पड़ सकता है।
0: सबसे हैरान करने वाला दावा तो ये है कि इस गांव से जुड़े एक व्यक्ति ने गांव से बाहर हनुमान जी के नाम वाली कार खरीदी, तो वो भी मुश्किल में पड़ गया।
3: मेरे भाई नासिक में उत्तराधिकारी है, उनका नाम श्रीपाद दहीपड़े है, तो उनके बारे में भी एक घटना हुई थी। उन्होंने सर्विस को लगने के बाद मारुति 800 एक गाड़ी नहीं खरीदी थी, लेकिन गाड़ी खरीदने के बाद 7-8 दिन में ही उनका उस गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ था। तो हमारे जो पुराने अंकल है या दादाजी है, उन्होंने सबको ध्यान में आया कि ये क्यों हुआ। तो गांव सब एजुकेटेड है, गांव में 90% सब लोग एजुकेटेड है। हम आजकल बोलते हैं कि सब दुनिया में साइंस चल रहा है, लेकिन साइंस होके भी अंधश्रद्धा न पालते हुए निंबादित्य महाराज पे हमारी सबकी श्रद्धा है। और इसलिए हमारे दादाजी ने या अंकल ने बोला कि पहले अपने को गाड़ी बदलनी पड़ेगी। जब बाद में जो मारुति गाड़ी हमने बेच दी और मारुति छोड़ के जो दूसरा कंपनी है टाटा हो या हुंडई हो, वो गाड़ी लेने के बाद हमें वैसी कोई दिक्कत नहीं आई।
0: इस गांव में बाहर से आने वाले व्यक्ति का नाम भी अगर हनुमान जी के नामों से जुड़ा है तो उसका प्रवेश तभी गांव में संभव है जब उसका नाम बदल दिया जाए।
4: उस पे जो मजदूर थे, एक मजदूर का नाम हनुमान था, लेकिन वो काम करते समय जब देखा गया तो अचानक उसके मन में कुछ बात हो गई, उनके शरीर में बदलाव हो गए और वो गलत गलत कुछ बातें करता था। जब गांव के 10-12 लोग वहां पे गए और उनसे वो नाम लेके बोल रहे थे, हनुमान तुम शांत रह जाओ। और इस गांव का तो इतिहास आपको मालूम है, पता है कि इस गांव में हनुमान मारुति पवन इस नाम का कोई व्यक्ति यहाँ पे चलता नहीं है, क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी ने खुद यहाँ पे श्री निंबादित्य जी को ये गांव दिया था। फिर उसे यहाँ पे लाया गया, उन्होंने त्रिफल देव को अर्पण किया, दर्शन लिया और सभी लोगों ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। और उन्होंने दर्शन लिया तो जो व्यक्ति था वो बिल्कुल ठीक हो गया।
0: अगर कोई गांव का व्यक्ति बाहर किसी नौकरी में जाता है तो निंबादित्य को किसी न किसी रूप में अपने साथ लेकर ही जाता है। वाकई अद्भुत है ये विश्वास।
4: जब वो अपने ड्यूटी पे जाता है, अपने साथ निंबादित्य जी महाराज की छोटी मूर्ति हो या फोटो हो वो लेके जाता है, और सुबह सवेरे वो उसका दर्शन लेता है, उसका नाम लेता है और अपना काम शुरू कर देता है।
5: हर घर में दैत्य महाराज का एक तस्वीर रहती है, पूरे गांव में, दूसरे गांव में जाते हैं सर्विस में, दूसरे गांव में जाते हैं तब भी एक दैत्य महाराज का एक फोटो लेके जाते हैं साथ मेरा।
0: निंबादित्य के प्रति ऐसी आस्था और लोगों के लिए लोक कथा की तरह हो सकती है, लेकिन इस गांव के लोगों के लिए ये विरासत है, एक ऐसी विरासत जो युगों से चली आ रही है और इसे कोई बदलना नहीं चाहता। लोग खुश हैं कि उनके रक्षक भगवान नहीं, एक दैत्य है। जिस पर विश्वास होता है उसी में आस्था हो जाती है, फिर भगवान हो या शैतान, देवता हो या दैत्य। लेकिन इसके साथ ही हम आपको अब आस्था के एक ऐसे अद्भुत रूप को दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के लिए मैं पहुंची पुणे। उसमें प्रेतों का राजा वेताल लोगों की अटूट श्रद्धा का ईश्वर है। बेताल का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसी अतृप्त आत्मा जो शमशान में मुर्दा शरीर पर बैठी होती है, जिसे प्रेत योनि का सबसे शक्तिशाली पिशाच माना जाता है। लेकिन उस वेताल का भी मंदिर हमें मिला और हजारों भक्त भी, जो रोज उनकी पूजा सदियों से करते चले आ रहे हैं।

0: महाराष्ट्र का शहर पुणे, आधुनिक चकाचौंध से भरा हुआ, लेकिन जहां से इस शहर की सीमाएं शुरू होकर जहां खत्म होती हैं, वहां तक शहर से सटी हुई एक ऊंची पहाड़ी है। इस पहाड़ी को कहा जाता है बेताल पहाड़ी, क्योंकि मान्यता ये है कि 2600 फीट ऊंची इसी पहाड़ी पर विराजे हैं 8 करोड़ भूतों के सम्राट बेताल। वही बेताल जो महाराजा विक्रमादित्य की कहानियों में भी नजर आते थे। बेताल हमारे लिए कहानियों का एक पात्र था, जिसे 2500 साल पहले महाकवि सोमदेव भट्ट ने बेताल पचीसी में गढ़ा था। कहानियां कहती हैं कि बेताल एक प्रेत था जो पेड़ पर उल्टा लटका रहता था और महाराजा विक्रमादित्य के कंधों पर सवार होकर कहानी सुनाया करता था। लेकिन क्या वाकई बेताल बेताल महाराज हो सकते हैं? क्या वाकई सैकड़ों साल पुराना बेताल मंदिर भी हो सकता है? और क्या सच में उनकी पूजा भगवान की तरह की जा सकती है? इन सवालों के साथ हम निकल पड़े पुणे की उस पहाड़ी की ओर, जिसकी चोटी पर बेताल महाराज के मंदिर का दावा किया जाता है। पहाड़ी पर पैदल ही चढ़ा जाता है, लिहाजा हमने गाड़ी नीचे छोड़ी और चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी। एक तो खड़ी चढ़ाई और दूसरे मन में ये भाव कि हम बेताल यानी भूतों के राजा के मंदिर में जा रहे हैं। तीसरे, चारों तरफ घनघोर जंगल। ये रास्ता किसी के लिए भी आसान नहीं रहता होगा। जब हम चढ़ाई चढ़ रहे थे तो हमें कुछ ऐसे लोग मिले जो मंदिर से बेताल के दर्शन करके लौट रहे थे। हमने उनसे बात की ताकि ये समझ सकें कि भूतों के राजा बेताल के दर्शन का उनके लिए आखिर महत्व है क्या।
1: ये बेताल बाबा का मंदिर है, जो भूतों का राजा करके माना जाता है उसका मंदिर है। बेताल तो हमारे हिंदू लोगों का एक देवता ही है ना, इसका ये सबसे पुरातन मंदिर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आए।
2: मैं नवनाथ की जो पोथी पढ़ता हूँ श्रावण मास में, तो उसमें इस मंदिर का जिक्र है, तो वो दर्शन के लिए मैं इसीलिए आया हूँ। बहुत सुकून लगता है यहाँ पे, इतना ये पहाड़ चढ़ के ऊपर आया हूँ, थक गया हूँ, लेकिन ऊपर आके दर्शन लेने के बाद ऐसा सुकून लग रहा है मेरे को।
0: मन में उत्सुकता और बढ़ी। हमें ये बताया गया था कि शाम होने से पहले मंदिर से नीचे लौट आना होता है, लिहाजा हमने तेजी से कदम बढ़ाए। पहाड़ी के ऊपर पहुंचे तो गहन सन्नाटा था। कुछ लोग वहां बैठे थे और उन्होंने बताया कि सामने मंदिर में जो प्रतिमा है वही है पिशाचराज महाभूत बेताल महाराज। पूजा पाठ तो हो रही थी, लेकिन चारों तरफ एक रहस्यमयी खामोशी थी। मुख्य प्रतिमा के आसपास कई छोटी छोटी पत्थर नुमा मूर्तियां थी जो गेरू से रंगी हुई थी। हमारे मन में उस आस्था का पूरा सम्मान करते हुए कई सवाल भी थे। क्या ये वही बेताल हैं जिन्हें हमने कहानियों में पढ़ा और टीवी सीरियल्स में देखा था? और क्यों इन्हें भूतों का महाराजा माना जाता है? जवाब मंदिर की देखरेख करने वाले एक बुजुर्ग से मिला।
3: यहाँ के दर्शन को बहुत ही पावन माना जाता है, लोग बार बार यहाँ दर्शन करने आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, यहाँ वो तरह तरह की मिठाइयाँ चढ़ाते हैं।
0: बातों बातों में हमें पता चला कि आम तौर पर पहाड़ी वाले इस मंदिर में कम ही लोग आ पाते हैं, जिसकी वजह से सन्नाटा सा रहता है। लेकिन अमावस्या या पूर्णिमा की रात को अक्सर यहाँ तंत्र सिद्धियों को पाने के लिए विशेष पूजा की जाती है। उस वक्त ये खामोश पहाड़ी मंत्रोच्चार से गूंजने लगती है। लोगों का मानना है कि बेताल बाबा की पूजा करने से भूतों से जुड़ी कोई बाधा उन्हें नहीं घेरती, उल्टे बेताल बाबा उनकी रक्षा करते हैं, लिहाजा सदियों से इस पहाड़ी पर आकर बेताल बाबा की पूजा करने का रिवाज इस क्षेत्र में है।
4: हम बहुत जमाने से इधर आते, बोले तो दादा परदादा इधर रहते थे, तब से इधर आते। अच्छा लगता है इस मंदिर में आने को, बोले तो पापा ही सब आते रहते।
0: दरअसल अगर हम पुराणों की बात करें तो वेताल बाबा या वेताल महाराज, वेताल देवता किसी नाम से कोई जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन पुणे में इतिहास दर्ज है। यहाँ 100 साल पुरानी पांडुलिपियां हैं जहां पर विधिवत बताया गया है कि वेताल महाराज की पूजा कैसे करनी है। वेताल को पहले सिर्फ लोक देवता माना जाता था, लेकिन पुणे के मशहूर शोधकर्ता डॉक्टर डीवी मुंजाल ने बाकायदा बेताल के इतिहास पर रिसर्च की तो पता चला कि पुराणों में तो बेताल नाम के किसी देवता का कोई जिक्र नहीं मिलता, लेकिन पुणे के 100 साल पुराने मराठी साहित्य में बाकायदा बेताल महाराज का जिक्र है, जिसमें उन्हें 8 करोड़ भूतों का राजा बताया गया है। ये दुर्लभ पांडुलिपि आज भी पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में बेताल स्रोत के नाम से रखी हुई है। जानकारों का कहना है कि इस पांडुलिपि में बेताल की पूजा विधि से लेकर बेताल को खुश करने के लिए विशेष क्रियाओं का भी विधिवत वर्णन किया गया है, जिनका उपयोग विशेष सिद्धि की कामना लेकर आने वाले श्रद्धालु करते हैं।
5: एरिया में जो गोखले नगर नाम का है, वहाँ वेताल बाबा की स्तवन यानी वेताल बाबा स्तुति नाम का मराठी ग्रंथ है, जो 60-70 पानों का पृष्ठों का है और उसमें वेताल बाबा की स्तुति की है।
0: पहाड़ी पर बने वेताल मंदिर में हमें एक और हैरान करने वाली बात पता चली कि इस मंदिर में कम चहल पहल इस कारण है क्योंकि अब वो यहाँ से जा चुके हैं और शहर के बीचों बीच एक मंदिर में उनका वास है। इसके पीछे की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। 8 करोड़ भूत प्रेतों के महाराज जो हैं वेताल महाराज, यहाँ पर आप इस परिसर में देखिएगा, आपको बजरंगबली का मंदिर पूर्ण रूप में नजर आ जाएगा, आपको शिव जी का मंदिर पूर्ण रूप में नजर आ जाएगा, लेकिन अगर आप देखेंगे कि यहाँ के जो मुख्य आराध्य हैं यानी कि वेताल बाबा, उनके सर पर कोई छत नहीं है, कोई मंदिर का निर्माण नहीं है, ये है क्यों, ये जानने की भी हमने कोशिश की और जो वजह सामने आई बहुत दिलचस्प।
6: बेताल पहाड़ी के नीचे बसे पुणे शहर में ये है बेताल महाराज का एक और मंदिर, जहां स्थापित प्रतिमाएं वैसी ही थीं जैसी पहाड़ी के ऊपर वाले मंदिर में थीं। लेकिन सवाल ये था कि जब पहाड़ी पर मंदिर पहले से मौजूद था तो पहाड़ी के नीचे एक और मंदिर कहां से आया और क्यों स्थापित किया गया।
7: पीछे जो पहाड़ी है उसको वेताल बाबा टिकड़ी बोलते हैं, तो पहले से वो मंदिर वहां पे था। एक जो हमारे भक्त थे बहुत साल पहले, यानी कि उसको 300-400 साल हो गए रहेंगे, तो वो भक्त वहाँ पे रोज जाके पूजा अर्चना करते थे। तो बाद में उनकी उम्र होने के बाद उनको ऊपर जाना जम नहीं रहा था, तो उन्होंने बाबा उनको प्रसन्न हो गए तो बाबा को बोले कि बाबा आप अगर नीचे आ जाएंगे तो मुझे आपकी पूजा अर्चना करने में दिक्कत नहीं आएंगी। तो जैसे बाबा उसको प्रसन्न होकर बोले ठीक है आप आगे चलिए मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ, तो अगर आपने पीछे मुड़ के देखा तो मैं वहीं पे प्रस्थान हो जाऊंगा। तो वो नीचे चलते चलते आए, उसके बाद उन्होंने जहाँ अभी आप देख रहे हो जो नीचे का मंदिर है वहाँ पे वो भक्त ने पीछे मुड़ के देखा, वहीं पे बाबा प्रस्थ हो गए।
0: यानी कहानी वाले बेताल की ही तरह, अगर शर्त नहीं मानी तो वो बात नहीं मानते। बातों बातों में हमारे सामने ये रहस्य उद्घाटन भी हुआ कि बेताल महाराज के मंदिर पर छत क्यों नहीं डाली गई।
8: पुराना मंदिर है, जब से हमारे नाना पर नाना के पहले से मंदिर है, एक ऊपर वेताल बाबा का मंदिर है और ये एक नीचे मंदिर है। ऐसा कहावत बोलते कि ये तुम्हारा भूतों का राजा है, तो इसके वास्ते इधर अभी इतना बाकी का इधर बाजू में मंदिर बांधा, लेकिन इसके ऊपर मंदिर नहीं बांधा क्योंकि बोलते एक रात में ये मंदिर होना मांगता, ऐसे लोग बोलते थे। एक रात में नहीं बन सकता, इसके वास्ते हम भी इसको कुछ ये नहीं किया, बनाने का कोशिश भी नहीं किया। अच्छा। हाँ, इसके वास्ते बाजू का मंदिर बने ले दोनों तीनों, लेकिन ये वेताल बाबा का जो मंदिर है ये नहीं बना बनाए हम,
0: ये खुले आसमान के नीचे ही रहना।
8: नीचे ही रहने।
0: एक रात में छत पूरी बन नहीं सकती और अधूरे निर्माण की वजह से भूतों के राजा की नाराजगी कोई झेलना नहीं चाहता, इसीलिए आज तक बेताल बाबा की मूर्तियों पर छत नहीं डाली जा सकी। ये सब जानते हैं कि बेताल महाराज भूतों के राजा हैं, लेकिन अद्भुत है ये बात कि बच्चा हो या बूढ़ा डर किसी को नहीं लगता, उल्टे उनका श्रद्धा भाव और अधिक बढ़ जाता है।
9: शंकर भगवान का इधर सेना आता है, भगवान का इधर बेताल बाबा का, कोई डरते नहीं, कुछ नहीं, कुछ कोई होता नहीं, कुछ नहीं, खाली पाँव पड़ते हैं इधर, आके उनको स्थान मिलता है सबको।
10: वेताल महाराज को शिव जी का रूप माना गया है और ये है वेताल महाराज की सेना, यानी प्रतीकात्मक तौर पर हम कहें तो ये छोटे छोटे भूत हैं जो उनकी सेना में शामिल हैं। तो लोग यहाँ पर पूजते हैं उन्हें कि उन्हें संरक्षण प्राप्त हो सके।
0: मंदिर के एक कोने में बहुत सारे पत्थर रखे हुए थे जो गेरुए रंग से रंगे थे। तभी हमें याद आया कि ठीक ऐसे ही पत्थर हमने पहाड़ी के ऊपर बने बेताल मंदिर में भी देखे थे।
11: इधर यात्रा बाबा बोले तो वो शंकर का अवतार है। हाँ, शंकर का अवतार है वो। कुछ ये उनका सैनिक है, उनका सैनिक है, वो कुछ नहीं कर सकते।
10: तो उनके सैनिक कौन है? भूत।
11: भूत, भूत है वो। यात्रा बोले तो शंकर का अवतार, उसके बाद में उनका सैनिक है, यात्रा का सैनिक है। शंकर का बोले तो शंकर का अवतार है ना वो। कुछ भी डर नहीं। हाँ, उल्टा संरक्षण देते है। हम बचपन से इधर खेलते बेलते सब बड़ा हो गए, अपन कुछ हमको डर नहीं, यहाँ पे बाबा का कुछ डर नहीं, उल्टा हमको समाधान मिलता है, वो कुछ भी मांग पूरा करते हो।
0: वैसे पुराणों में किसी बेताल महाराज या बेताल भगवान का उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन शिव पुराण में जहाँ शिव पार्वती विवाह का अध्याय आता है, वहाँ भगवान शिव की बारात में कई प्रमुख गणों के शामिल होने का जिक्र मिलता है, जिनमें भूत, पिशाच, प्रेत और बेताल को प्रमुख गण माना गया है। इस लिहाज ये माना जा सकता है कि शिवजी के गणों में शामिल होने की वजह से आज भी बेताल को भगवान जैसा मान दिया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये आस्था ही है जो प्रेतों के राजा बेताल को भगवान मान लेती है, निम्बा दैत्य को हनुमान जी से बड़ा राम भक्त घोषित करती है। ऐसी ही अद्भुत कहानी है अधर्म, अहंकार और अनीति का पर्याय माने जाने वाले रावण की। पूरे संसार में रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां रावण का मंदिर है, जहां रावण देवता है, जहां रावण के सम्मान में दशहरे पर न तो रावण का पुतला जलाया जाता है, न ही रामलीला होती है। श्री राम के हाथों रावण का संहार असत्य पर, सत्य और बुराई पर अच्छाई की विजय के तौर पर देखा गया। युग बीते लोग आज भी रावण का पुतला जलाकर बुराई के अंत का संकल्प लेते हैं, लेकिन जब पूरे देश और दुनिया के तमाम हिस्सों में रावण के अंत की खुशियां मनाई जा रही होती हैं, उस समय एक गांव ऐसा भी है जहां न राम की लीला का बखान होता है न कोई उत्सव। दिल्ली से सटा गांव विसरक, जिसे स्थानीय लोग आश विश्रवा की तपोभूमि और रावण का जन्म स्थान मानते हैं। ये वो गांव है जहां रावण खलनायक नहीं बल्कि कुल पुरुष माना जाता है। यही है वो मंदिर जहां लंकेश रावण की पूजा होती है।
12: पंडित जी, इस मंदिर के इतिहास का महत्व क्या है?
13: ये मंदिर जो है ना, ब्रह्मा जी और पुलस्त्य रावण के दादा और बाबा, उनके द्वारा जो है ये शिवलिंग जो है स्वयं प्रकट करी हुई है। उस साइड में गौरी शंकर हैं, इस साइड में शिवलिंग है जो स्वयं प्रकट करी, जब ये यहाँ कोई सृष्टि नहीं थी, जब का है। ऐसा है कि जो है रावण की इसलिए पूजा करी थी, सब में श्रेष्ठ ब्राह्मण था और इस गांव का ब्राह्मण था, और ब्राह्मणों में भी सबसे ऊँचा ब्राह्मण था, और सुबह शाम दोनों टाइम पूजा होती है रावण की।
14: इस मंदिर का है, रावण के जो पिताजी थे विश्रवा, उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग है और उनके ही नाम के इस गांव का नाम पड़ा है, और धीरे धीरे नाम का परिवर्तन होते हुए ये विश्रक हो गया विश्रवा से। रावण के पिताजी यहां पे शिवलिंग को स्थापित किए थे। अष्टकोणीय शिवलिंग है ये, पूरे भारतवर्ष में कहीं कहीं ही आपको मिलेगी अष्टकोणीय शिवलिंग। तो यहाँ पर रावण ने अपना बचपन में पूजा करी और उनका यहाँ पर बचपन बीता अपने पिताजी के पास, वो गुरुकुल उनका था। बाद में फिर रावण का जो लंका, हमारी सब जगह उनकी फेमस है लंका में, बाद में जाकर उन्होंने अपने युवावस्था के बाद, लंका विजय करने के बाद, लंका अपने भाई से ली थी, उसके बाद गया। ये मेन रावण का जन्म स्थान, उनके पिताजी का आश्रम विश्ववा जी के नाम पर, विश्वविशा के नाम पर पड़ा, और आगे विश्रक गाँव है। यहाँ पर रावण की मूर्ति भी स्थापित है आगे वहाँ पर, और बड़ा प्राचीन मंदिर है।
0: देश भर में दशहरे पर रावण के पुतले जलते हैं, लेकिन विसरक में ऐसा करना वर्जित माना जाता है। यहाँ रामलीला का मंचन भी नहीं होता। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि रावण का अपमान गांव के लिए अशुभ होता है।
13: ये एक पुरानी खानदानी ऐसी परंपरा चली आ रही है जिससे यहाँ रामलीला का कोई मंचन नहीं होता है। अगर कोई रामलीला का मंचन भी करता है तो बहुत बुरा ही हो जाता है, बहुत गलत होता है। नटकी कला नहीं होती है, रामलीला का मंचन नहीं होता है और जो है ना रावण का कोई पुतला नहीं जलाता। रामलीला कर लो पर राम रावण का जो मंच सजता है वो नहीं होता।
0: पूरी दुनिया में भले रावण को बुराई के प्रतीक के रूप में देखा जाता हो लेकिन बिसरख गांव में रावण की विधिवत पूजा किसी देवता की तरह होती है। रावण की नियमित आरती उतारी जाती है। रावण के प्रति कोई दुराग्रह नहीं रखा जाता है। सुनने में अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय लगता है लेकिन दिल्ली से सटे बिसरख में सदियों से यही परंपरा निभाई जा रही है। यहां रावण को सिर्फ लंका का राजा नहीं बल्कि गांव का पुत्र माना जाता है। इसीलिए न यहां रावण का पुतला जलता है न ही रामलीला होती है।
14: रावण के लिए यहां पर श्रद्धा है। हमारे बिसरख में उनका रावण का दशहरे पर दहन नहीं किया जाता है और उनके प्रति एक धार्मिक आस्था है और दादाजी के नाम से, रावण दादा के नाम से उनका नाम प्रचलित है आसपास के क्षेत्र में।
15: रावण की जन्मस्थली है, ठीक है, और यहाँ पे दशहरा हमारा नहीं मनाया जाता है। उसके रीजन थे किसी एक बार रामलीला हो रही थी तो यहाँ पे डेथ हो गई थी किसी की, तो उस दिन से रावण जी कुछ ऐसा लगा था, लोगों को लगा कि नाराज हो गए, तो उस दिन से रावण की पूजा नहीं करते, रावण की पूजा करते हैं और रामलीला नहीं मनाते यहाँ पे।
0: बिसरख का ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारतीय परंपराओं के उस अनोखे पक्ष की मिसाल है जहाँ इतिहास, लोकमान्यता और आस्था एक दूसरे से जुड़ जाते हैं।
15: ये रावण का जो ये जन्म स्थान है, बिसरख जो है रावण की जन्म स्थली है, इसलिए यहाँ पे रावण की मूर्ति स्थापित की हुई है, उनको पूजते हैं लोग। और ये बहुत, आपने शिव महापुराण में और रावण संहिता जो है उसमें सारा इस चीज़ का वर्णन दिया हुआ है। ये प्राचीन जो शिव मंदिर है, अष्टभुजी शिवलिंग है, जो पूरे भारतवर्ष में एक ही है जो यहाँ पे स्थापित है, जिसकी जो रावण जिसकी पूजा करते थे और जहाँ पे रावण ने अपना जितनी भी सिद्धियां थी जो शिव की पूजा करके जो भी प्राप्त किया था, शिव से वरदान, वो ये स्थान है।
0: रामायण में रावण अधर्म का चेहरा है, इसमें कोई विवाद नहीं, लेकिन क्या उसकी पूरी कहानी सिर्फ इतनी ही है? क्या वजह है कि बुराई का सबसे बड़ा प्रतीक माने जाने वाले रावण को आज भी कुछ लोग अपना आराध्य मानते हैं?
15: वो विद्वान पंडित थे, इस गांव के बेटे थे, उनका जन्म स्थान है इसलिए उनकी पूजा होती है। और जो उनको जितना भी ज्ञान था, हम उसको सोचते हैं कि वो हमारा, उनसे हमारी पहचान है और वो इस गांव के बेटे थे, ये जन्म स्थान है उनका, इसलिए उनकी पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं।
0: कहते हैं कि किसी इंसान में लाख गुण हो लेकिन उसका एक अवगुण उसके सारे गुणों पर पर्दा डाल देता है। रावण भी ऐसा ही था। भगवान शिव जिसकी तपस्या से प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी ने जिसको वरदान दिया और श्री राम जिन्होंने रावण के अंतिम क्षणों में भी उसके ज्ञान का सम्मान किया, लेकिन यही रावण अपने अहंकार के कारण असुर माना गया। यही विरोधाभास रावण को इतिहास का सबसे अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय पात्र बनाता है। सनातन धर्म में कण कण में ईश्वर का वास माना गया है। यही कारण है कि लोक मान्यताओं और स्थानीय विश्वास के आधार पर आस्था के रूप भी बदलते हैं। आज के लिए अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं महाराष्ट्र से, जहां मुंबई और ठाणे में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने मुंबई और ठाणे के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कल के लिए यह रेड अलर्ट है जो जारी किया गया है। अब अलर्ट के मद्देनजर बीएमसी ने मुंबई के लोगों से अपील की है कि बहुत जरूरी होने पर ही वो घरों से बाहर निकलें। हालात से निपटने के लिए बीएमसी ने अपनी तैयारियों का दावा किया है, अपने तमाम दस्तों को मौके पर तैनात भी कर दिया है। बीएमसी ने लोगों से कहा है कि वो समंदर के किनारों पर भी ना जाएं। मुंबई में कल भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बीएमसी ने लोगों से अपील की है कि कोशिश करें कि घरों में रहें, जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। कल रेड अलर्ट है, उससे पहले अगर हम आज की ही बात करें तो आज के ही कई इलाके जलमग्न दिखाई दिए हैं। तो कल तो रेड अलर्ट है, तो आप अंदाजा लगाइए कि हालात किस कदर खराब हो सकते हैं, क्योंकि बीएमसी को जो तैयारियां मॉनसून के पहले कर लेनी चाहिए थी वो तैयारियां हुई नहीं। हाँ, उन तैयारियों का दावा बहुत किया गया कि इतने हजार करोड़ का बजट हम मुंबई में बारिश के मद्देनजर कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी धरातल पर दिखाई नहीं दिया। आप रेलवे स्टेशन देख लीजिए, आप बस अड्डे देख लीजिए, आप हवाई सेवाओं पर देख लीजिए, हर बारिश में कैसे ये सेवाएं ठप हो रही हैं, ये सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह खड़े करता है उस बीएमसी पर जो इतना अमीर बोर्ड है। बीएमसी इतना अमीर, 80,000 करोड़ से ज्यादा का जिसका बजट है, उस महाराष्ट्र, उस मुंबई का ये हाल है कि वहां पर बरसात होते ही वो पानी ड्रेनेज सिस्टम से बाहर ही नहीं जाता, वो सड़कों पर ठहर जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना तैयार है। और कल रेड अलर्ट है, इस रेड अलर्ट के मद्देनजर लोगों से अपील की गई है कि आप ही कोशिश करें कि घरों से बाहर न निकले। जबकि बारिश चाहे कितने भी हो, लोगों का जो जरूरी कार्य है, चाहे रोजमर्रा का कार्य, उनको तो घर से बाहर निकलना ही चाहिए था। लेकिन ये सिचुएशन है कि लोगों से अपील की जा रही है कि आप जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलिए। ये उस आर्थिक शहर की हकीकत है। अब एक और बड़ी खबर देते हैं। ये खबर अयोध्या से, जहां पर मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में अविनाश शुक्ला के बाद बाकी आरोपियों से भी पुलिस फिर पूछताछ करेगी। अयोध्या पुलिस 5 आरोपियों से जेल में पूछताछ करेगी, जो कि कल से शुरू होगी। तो इन्वेस्टिगेशन का एक नया चरण। और ये बड़ी खबर आपको देते हैं, 5 आरोपियों में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, करुणेश पांडे और मनीष यादव नाम शामिल है। मनीष, इनसे भी पूछताछ होगी। इन सभी आरोपियों से जेल में पुलिस पूछताछ करेगी। कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। हमारे संवाददाता संतोष इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, इन आरोपियों से जेल में पूछताछ होगी, क्या प्लानिंग है? क्या एक साथ इनसे पूछताछ होगी, अलग अलग पूछताछ होगी?
1: देखिए, अविनाश शुक्ला से पूछताछ के बाद जब जेल में पूछताछ हुई थी, उसके बाद पुलिस ने उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड ली थी। अब इन 5 आरोपियों से, जिसमें लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, रामशंकर यादव, टिन्नू यादव, इसके साथ ही मनीष यादव जो उसका भतीजा है, और करुणेश पांडे, इन 5 आरोपियों से कल जेल जाकर जो इस केस के आईओ हैं सुमित त्रिपाठी, डीपीएसपी रैंक के अधिकारी, वो अपनी पुलिस टीम के साथ जाकर के बारी बारी से पूछताछ करेंगे। उसके बाद सारे लोगों से पूछताछ की जाएगी। और ये माना जा रहा है कि इस पूछताछ के बाद पुलिस इनमें से जो आरोपी होंगे उनमें से कुछ लोगों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर भी लेगी। तो एक ये कहा जाए कि पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने से पहले की कवायद पुलिस ने शुरू कर दी है। ठीक इसी तरीके से अविनाश शुक्ला से भी जेल में पूछताछ की गई और बाद में उसको पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया। अब इन 5 आरोपियों से,
0: संतोष, क्या अभी तक ऐसा है कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन टिन्नू यादव से ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हैं? जो अंतिम जांच है बस उन्हीं तक सीमित है, क्योंकि टिन्नू यादव ही सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी अब तक एसआईटी को दिखाई दे रहा है, या ऊपर भी कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं?
1: नहीं, देखिए, ये जांच अयोध्या पुलिस कर रही है, एसआईटी से कोई मतलब नहीं है। ये अयोध्या पुलिस को पूछताछ करेगी जेल जाकर। ये एफआईआर दर्ज हुई थी राम जन्मभूमि थाने में, तो उसी मामले में जांच होगी और पूछताछ होगी, जिसमें रामशंकर यादव, टिन्नू यादव का भी नाम शामिल है, उसके भतीजे मनीष यादव से भी शामिल है। ये कुल मिलाकर 5 लोग होंगे, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे, रामशंकर यादव, टिन्नू यादव और मनीष यादव। ये तमाम लोगों से पूछताछ होगी। पुलिस जाने की कोशिश करेगी कि किसने कैसे कहां पर चढ़ावे की रकम को चुराया, कहां खपाया, कैसे क्या संपत्ति करी।
0: जी संतोष,
1: और उसके बाद आगे की पड़ताल करेगी।
0: ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के। तो अयोध्या पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करने वाली, कल इन आरोपियों से जेल में जाकर पूछताछ होगी। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहे हैं, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। और अब जांच में यह सामने आ गया है, पूरा खेल एक गैंग के तौर पर चल रहा था, जहां बाकायदा बैठक होती थी, फिर पैसों के हेर फेर का पूरा प्लान तैयार किया जाता था।
2: राम मंदिर चढ़ावा चोरी जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अयोध्या पुलिस ने पूछताछ के दौरान अविनाश शुक्ला को पिछले 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाई। जैसे ही उसने खुद को चढ़ावे से पैसे निकालते देखा, वो टूट गया और लगातार चोरी करने की बात स्वीकार कर ली। पूछताछ में अविनाश ने बताया कि चोरी की रकम से एक ब्रेजा कार खरीदी थी। ये कार उसने अपने भाई के नाम खरीदी, इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ कि कार चढ़ावा चोरी के पैसे से खरीदी गई है। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आते ही अविनाश ने कार को तुरंत प्रतापगढ़ स्थित घर भेज दिया। इस मामले में अविनाश के भाई अभिषेक शुक्ला से भी पूछताछ की गई है।

समाजवादी पार्टी की ओर से जारी किया ये नया वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा अगले चुनाव में विपक्ष के लिए बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार होगा। ये वीडियो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में साझा किया है, जिसमें भगवान राम को अयोध्या छोड़कर वापस वनवास जाते दिखाया जा रहा है।

0: समाजवादी पार्टी के इस वीडियो पर सरकार के नेता अखिलेश से सवाल पूछ रहे हैं।
1: जो गाना बजा रहे हैं ना कि राम बन गए कब आएंगे, तो जब अखिलेश यादव जी दर्शन करने जाएंगे तब राम जी आ जाएंगे।
0: राम मंदिर को लेकर पूरे विपक्ष का सुर एक है।
2: राम का नाम आपने बदनाम कर दिया, हिंदुत्व का नाम पे खेला और हिंदुइज्म को आपने फिनिश किया।
3: ये चंदा चोरी बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं जानते थे इन लोगों को? इन्हीं के तो लोग हैं जो बिठाए गए हैं ट्रस्ट में।
0: इस सियासत के बीच एसआईटी सूत्रों की माने तो अयोध्या में प्रतिदिन करीब 6 से 8 लाख रुपए की चोरी हो रही थी। एसआईटी ने एसबीआई बैंक के मैनेजर समेत 10 बैंक कर्मियों से पूछताछ की है। पूछताछ के बाद बैंक के लेन देन से जुड़े दस्तावेज और हिसाब किताब अपने कब्जे में लेकर उनकी जांच की जा रही है। अयोध्या में चोरी का मामला सामने आने से पहले ट्रस्ट के एसबीआई और पीएनबी बैंक खाते में प्रतिदिन करीब 16 से 18 लाख रुपए जमा हो रहे थे। चोरी का खुलासा होने के बाद अब प्रतिदिन जमा होने वाली राशि बढ़कर 24 से 26 लाख रुपए तक पहुँच गयी है। लेकिन सवाल वही, क्या ये जाँच बड़े पदाधिकारियों तक पहुंचेगी? पूरी सियासत अब इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। आज तक ब्यूरो।
4: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: ये मजबूर हैं, पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
1: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: वी आर ओवर जिमी।
4: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
5: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
6: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
7: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
8: उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो रण क्षेत्र जहां पर जीत हार देश की तकदीर भी बदलती रही है। इस बार 2027 का यूपी विधानसभा का चुनाव बहुत अहम है। यूपी में अगले साल चुनाव होने, लेकिन सियासत ने जो इंतजार है करना वो छोड़ दिया है, क्योंकि तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन अब उत्तर प्रदेश लखनऊ के दौरे पर हैं।
9: राजनीति में कई बार संदेश भाषणों से नहीं, तस्वीरों से लिखा जाता है। स्वागत केवल सम्मान नहीं होता, वो शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन भी होता है। लखनऊ की सड़कों पर आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखी जब नितिन नवीन पहली बार बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद लखनऊ पहुंचे। तो सवाल ये कि क्या नितिन नवीन का दौरा बीजेपी के 2027 चुनाव अभियान का औपचारिक आगाज है? क्या बीजेपी का संगठन विपक्ष के सामाजिक समीकरणों पर फिर भारी पड़ेगा, या इस बार मुकाबला बदल चुका है? क्या यूपी में 2027 की लड़ाई सत्ता बचाने की होगी या सत्ता बदलने की?
10: लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूँ। भगवान प्रभु श्री राम का भूमि हम कह सकते हैं, भोले बाबा काशी विश्वनाथ का नगरी, मथुरा की नगरी, भगवान की नगरी, उस नगरी को नमन करता हूँ। और अपने सुबह अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करूंगा।
9: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का लखनऊ एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए सीएम योगी खुद मौजूद थे, साथ में बीजेपी के दिग्गज मंत्री और नेता थे।
11: उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। उत्तर प्रदेश का आम जनमानस आज मान रहा है, आज उत्तर प्रदेश का युवा चाह रहा है कि आदरणीय नितिन नवीन जी जिस ढंग से सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश के युवाओं में, माताओं बहनों में, गरीबों में, आम जनता में भारी उत्साह है।
9: यूपी विधानसभा चुनाव अगले साल के शुरुआती महीनों में होना है, लेकिन बीजेपी ने अपनी राजनीतिक घड़ी तेज कर दी है। लखनऊ दौरे पर नितिन नवीन का एजेंडा साफ है। 2024 की समीक्षा, सोशल इंजीनियरिंग, सरकार संगठन में तालमेल, वोटर आउटरीच, 2027 की जीत का ब्लूप्रिंट। बीजेपी अध्यक्ष पद संभालने के बाद नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी ने बंगाल में ऐतिहासिक रूप से सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की, जबकि असम और पुडुचेरी में अपनी सत्ता बरकरार रखी। केरल में भी पार्टी का वोट बैंक तेजी से बढ़ा है। अब इसी विनिंग फॉर्मूले के साथ वो यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव लगातार PDA के फॉर्मूले को जीत का मंत्र बताते रहे हैं।
12: हम सबसे अपील करेंगे, जो हम लोगों ने एक आवाज दी है कि PDA से सब जुड़ जाएं। मुझे उम्मीद है PDA की लड़ाई मजबूत होगी, PDA NDA को हराएगा। और जब हम लोग टिकट बांट रहे हैं, सीटें बांट रहे हैं, तब BJP अपनी टिकट काटने की सोच रही है। सोचो, BJP टिकट काटना चाहती है, हम सीटें बांट करके जनता में पहुंचे।
13: नफरत के सहारे ये सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन देश जाग गया है, PDA जाग गया है। इस बार मुकाबला PDA करेगा NDA का।
9: हालांकि जिस PDA की बात अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं, उसमें से नितिन नवीन के स्वागत करने पहुंचे यादव समाज के कार्यकर्ताओं ने दावा किया यादव समाज को BJP में ही सम्मान और भागीदारी मिली है।
14: यादों की जगह उत्तर प्रदेश के अंदर हो, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में है। 6 केंद्र में मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के बना रखे हैं। हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश में मंत्री, मुझे भाजपा पार्षद दल का उपनेता बनाया गया। हमारे तमाम पद ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण पद यादव के।
15: इस बार
14: अखिलेश जी का जो पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको हमारा समाज पूरी तरीके से जान चुका है।
16: यूपी की राजनीति में हर चुनाव सामाजिक समीकरणों और संगठनात्मक ताकत की नई परीक्षा बनकर आता है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के बाद बीजेपी के लिए अब सबसे बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, जबकि विपक्ष अपनी जीत का दावा ठोक रहा है। ऐसे में लखनऊ में जो बिसात नितिन नवीन बिछाएंगे, उसकी गूंज 2027 विधानसभा चुनाव में जरूर सुनाई देगी। आज तक ब्यूरो।
8: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
17: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
18: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
19: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
20: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: वी आर ओवर जिमी।
4: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
20: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
21: हमने तब भी सवाल किया था,
22: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
21: हम आज भी सवाल करते हैं।
22: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
21: ऑपरेशन अग्नि,
22: आज तक के ही स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
21: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
23: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
24: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमा कुरैशी।
25: ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
26: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अकल नहीं है। इस पे जो बहुत फेमस सीन है वो जो
27: परमिशन लेनी चाहिए ना,
26: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई।
28: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है, लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी,
26: आई फील अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो रुक जाइए।
29: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी है।

0: बहुत स्वागत है तालियों के साथ यहाँ पर मौजूद सभी जनता का, छात्रों का बहुत बहुत अभिवादन है। और आज तो खास मेहमान हमारे साथ कुछ आए हैं क्योंकि ये पणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय से हैं और ये छात्र एक बार दिखा दीजिए तो अलग से आप लोगों के लिए और आपके ज्ञान के लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम ये मानते हैं कि आज भगवान राम की बात होगी इस शो में, क्योंकि भगवान को भी अगर लूटते हैं तो इंसा को क्या छोड़ेंगे, ये आज पूरे देश में चर्चा है और बहसबाजीगर में। इसीलिए हमने आज ये संगीन विषय भी उठाया है, राम मंदिर बनने के पहले बीजेपी सत्ता में रही हो या विपक्ष में, एक मुद्दा जो हमेशा उनका रहा, पार्टी जिस पर आक्रामक रही, वो है राम मंदिर का मुद्दा। उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर सत्ता हासिल की नहीं की ये एक अलग विषय है, लेकिन इस मुद्दे पर वो आक्रामक रहे। सिर्फ 1999 के चुनाव को छोड़कर 1991 से लेकर 2019 के हर एक चुनाव में राम मंदिर बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल हुआ। यही वो ट्रंप कार्ड था जिसने बीजेपी को विरोधियों के खिलाफ हिंदुत्व का दाव चलने का एक मौका दिया। और शायद यही वजह है कि जब तमाम अन्य पार्टियां हिंदुत्व की बात करती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो पीछे पीछे इस मुद्दे पर चल रही हैं। बीजेपी ने हमेशा राम मंदिर के मुद्दे पर हिंदुत्व की जो अपनी सोच थी या जो विचारधारा थी या जो एजेंडा था उसको जोर शोर से उठाया, लेकिन अब चढ़ावा चोरी के मामले से ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर के मुद्दे पर गोल पोस्ट बदल गया है। अब तो योगी आदित्यनाथ बार बार दावा कर रहे हैं कि राम मंदिर पर विपक्ष की नीयत में खोट है, लेकिन अखिलेश यादव हो, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी को प्रभु राम पर अब घेर रहे हैं। इस नई राजनीति का पहला और सबसे बड़ा इम्तिहान 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में होने वाला है, चुनाव करीब है। इसीलिए आज बहसबाजीगर का मोशन है, क्या चढ़ावा चोरी के मुद्दे से यूपी में विपक्ष को चुनावी फायदा होगा? तो ये वो हिस्सा है जो मानता है कि विपक्ष को फायदा होगा, तो ताली बजा लीजिए अपने लिए। ये वो मुद्दा है जो मानता है, ये वो पूरा हिस्सा है नीले गमछे वाले जो ये मानते हैं कि इस मुद्दे को उठाने की वजह से विपक्ष को फायदा होगा और बीजेपी को नुकसान होगा। और सफेद गमछे वाले क्या मानते हैं?
1: न्यूट्रल,
0: मतलब फायदा होगा या नुकसान होगा, या नुकसान भी होगा फायदा भी होगा। बहुत अच्छा है, जीवन में जो आप लोगों के आदर्शों पर निकल पड़ा उसको मोक्ष बहुत जल्दी मिल जाएगा। और ये वो लाल हिस्सा है जो मानता है कि विपक्ष को फायदा नहीं होगा। तालियों के साथ आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो आज भाई, आज जबरदस्त यहाँ पर चर्चा होने वाली है और दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही हिस्से अपने अपने मजबूती का दम यहां पर भरने वाले हैं। तो आपके पास ये ऑप्शन भी है, एक बार फिर आपको दिखा दें, ये लाल गमछे हैं। तो अगर आप में से किसी का भी मन बदले या सफेद गमछे वाले तो आप लाल ले सकते हैं, और इधर नीला गमछा है तो लाल, इनको सुनने के बाद अगर मन बदलता है तो आप नीला गमछा ले सकते हैं, और बीच में सफेद का भी हमने ऑप्शन दे दिया है। किसी को ऐसा लगता है कि वो मोक्ष के करीब पहुंच रहा है और उसको शांति अंदर की बाहर की सब मिल चुकी है तो वो सफेद गमछा ले सकता है। भाई ये शुरुआत करते हैं बहसबाजी कर का, और सबसे पहले बुलाते हैं अपने तीनों जजेस, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ओहो, आज तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी पहुंचे हैं, पीठाधीश्वर है श्री कल्कि धाम के, बहुत बहुत स्वागत है आप, बहुत बहुत स्वागत है। और दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए विनोद अग्निहोत्री और कमलेश किशोर, 3 साल के ताऊ, बहुत बहुत स्वागत। आज जज की भूमिका में है ताऊ, मंदिर के मुद्दे पे बड़े दिन से चल रहा है, अब तो
2: अभी बहुत दिनों तक चलेगा, अभी चुनाव है,
0: हाँ।
2: चढ़ावा है, चंदा है,
0: ओहो,
3: और चोरी है,
0: ब्लॉकबस्टर के लिए जो जो चाहिए पॉलिटिकली, मतलब इलेक्शन वाइज पॉलिटिकली ब्लॉकबस्टर के लिए जो जो चाहिए विनोद जी है।
4: आचार्य जी ने तो आते छक्का मार दिया,
0: हाँ, चोरी से शुरुआत की है।
3: देखिए हमारे यहाँ शास्त्रों में एक उद्घोष हुआ है, सत्य सार्थक सर्वदा, तो आज मैं एक नया शब्द दे रहा हूँ, सत्य सनातन सर्वदा।
0: क्या बात, चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बुलाते हैं अपने दो पहले वक्ताओं को, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अतुल लौंडे पाटिल जी पहले आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में इनकी अच्छी खासी पैठ है, बेबाक अंदाज में बोलते हैं। प्रदीप भंडारी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, ये तीन इनकी टीम के लिए, और यहाँ से आपकी टीम की शुरुआत होती है। दो दो वक्ता और मिलेंगे, तीन तीन की टीम होगी, फिर देखते हैं जनता को ज्यादा कन्विंस कौन कर पाता है। तो प्रदीप भंडारी जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, अब अगले दो वक्ताओं को बुलाते हैं। आज सूट बूट में आए हैं अनुराग भदौरिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और रोहित सिंह हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस बहस में जुड़ रहे हैं, अपनी अपनी टीम में जाकर बैठ जाइए। आज तो ट्रेडमार्क कुर्ता है अनुराग जी का, वो मिसिंग है और आज सूट बूट में आए हैं। ठीक है, देखते हैं समाजवाद पर क्या बोलते हैं और राम मंदिर कैसे जुड़ता है इस पूरी कड़ी में। अगले दो वक्ताओं को बुलाते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए राघवेंद्र राम द्विवेदी, प्रवक्ता है SBSP के, और प्रोफेसर सतीश प्रकाश, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर अतुल लौंडे पाटिल जी की टीम में जुड़ने वाले हैं। तो तीन तीन वक्ता भाई दोनों को मिल चुके हैं आज। बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी। एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, जितने कंटेस्टेंट्स हैं, वक्ता हैं, रोज की दलील तो आप लोग 6 बजे हल्ला बोल में देते ही हैं। ये डिबेट की प्रथा को सही तरीके से आगे ले जाने की कोशिश है जिसमें हम अलग अलग टाइम आपको देते हैं। दमदार तरीके से बोलिए लेकिन मोशन पर रहिए। आज का मोशन है कि क्या चढ़ावा चोरी के मुद्दे से यूपी में विपक्ष को चुनावी फायदा होगा

0: आज की इस बहस का आधार बना है राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और उस पर होती जबरदस्त सियासत, जिसके बाद सवाल पैदा हुआ कि क्या चढ़ावा चोरी के मुद्दे से विपक्ष को उत्तर प्रदेश में चुनावी फायदा होगा। साल 1991 से लेकर 2019 तक सियासत का एक ही सेंटर पॉइंट रहा, अयोध्या में राम मंदिर। साल 1999 के चुनाव को अगर छोड़ दें तो बीजेपी के हर मैनिफेस्टो की जान राम मंदिर का मुद्दा ही रहा। यही वो ट्रंप कार्ड था जिसने विरोधियों के चक्रव्यूह को ध्वस्त कर हिंदुत्व की ऐसी लहर पैदा की जिसने बीजेपी को सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या साल 2026-27 आते आते राम मंदिर की सियासी पिच की बाउंड्री लाइन बदल गई है? जो मुद्दा कभी बीजेपी का सबसे अभेद किला था, आज उसी किले में सेंध लगाने के लिए विपक्ष ने चढ़ावा चोरी का नया हथियार निकाल लिया है। दशकों तक देश की राजनीति ने देखा कि राम मंदिर के नाम पर विपक्ष बैकफुट पर रहता था। तुष्टीकरण के आरोपों से घबराया विपक्ष अयोध्या का नाम लेने से भी बचता था। लेकिन वक्त बदला, मंदिर बना और अब सियासत की बिसात भी बदल गई है। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेर-फेर और चढ़ावा चोरी के आरोपों ने विपक्ष को बैकफुट से सीधे फ्रंट फुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार दहाड़ रहे हैं कि विपक्ष की नीयत में ही खोट है। वो याद दिला रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो कभी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे। लेकिन इस बार विपक्ष डिफेंसिव नहीं है। अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस तक सबने रणनीति बदल दी है। अब लड़ाई राम बनाम रामद्रोही की नहीं बल्कि आस्था बनाम ईमानदारी की पिच पर खेली जा रही है। विपक्ष अब बीजेपी को प्रभु राम के नाम पर ही घेर रहा है। सवाल सिर्फ एक आरोप का नहीं है, सवाल है क्रोनोलॉजी का। राम मंदिर बनने के बाद उत्तर प्रदेश में ये पहली ऐसी बड़ी बहस है जो सीधे आस्था की जेब पर चोट करने का दावा करती है। इस नई और बदली हुई राजनीति का पहला और सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होने जा रहा है 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में। क्या बीजेपी इस नैरेटिव को ध्वस्त कर पाएगी या विपक्ष इस मुद्दे के सहारे यूपी की सत्ता की चाबी हासिल कर लेगा? आरोप संगीन है और दांव पर उत्तर प्रदेश का सिंहासन है, इसलिए आज हम सीधा सवाल पूछेंगे, क्या चढ़ावा चोरी के मुद्दे से यूपी में विपक्ष को चुनावी फायदा होगा?
1: इस मुद्दे पर बोलने के लिए सबसे पहले डेढ़ डेढ़ मिनट का समय मिलेगा प्रदीप भंडारी और अतुल लौंडे पाटिल को। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। आपका सपोर्ट करने वाला ये हिस्सा है, आपके सपोर्ट में ये बच्चे बैठे हैं और कोशिश होनी चाहिए आपकी कि ज्यादा से ज्यादा दूसरे पक्ष के लोगों को अपनी तरफ, क्योंकि गमछा दोनों तरफ रखा हुआ है। तो अतुल जी, इस विषय पर बोलने का कि क्या चढ़ावा चोरी के मुद्दे से यूपी में विपक्ष को चुनावी फायदा होगा, आपका 90 सेकंड का टाइम शुरू होता है अब।
2: मेरे पास तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई नहीं है, तो मैं कमी अपेक्षा करूंगा कि ये गमछे वाले उधर आएंगे और मेरी अपेक्षा रहेगी कि मैं प्यार मोहब्बत और किस तरह से देश को आगे लेके जाएंगे इसी मुद्दे पर यहां से यहां लोग आएंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। देखिए, कभी भी हमने राजनीति जो है वो प्रभु रामचंद्र का धर्म का कभी भी इस्तेमाल हमने राजनीतिक फायदे के लिए किया नहीं, इसलिए कभी भी उस आंदोलन में हम दिखे नहीं और हमने सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसे हमने माना। हालांकि ताले खोलने से लेकर पहला शिलान्यास करने से लेकर सब कुछ हमने किया, लेकिन ये बहुधर्मीय देश है और इसमें सबका सम्मान रहना चाहिए। और अगर राजनीति होनी है तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, युवाओं का भविष्य, पेपर लीक न हो, युवाओं को अच्छी नौकरी मिले, ये हमारे मुद्दे रहे हैं। तो मैं मोशन के खिलाफ और इसमें बदलने से अच्छा जो भविष्य यहाँ सामने बैठा है, जो कल का भारत है, उसे हम क्या करने वाले, ये बताना जरूरी है। तो अगर धर्म के नाम पर अगर हम राजनीति करेंगे तो हमारे साथ आज़ाद तो कई देश हुए, लैटिन अमेरिका में हुए, अफ्रीका में हुए, हमारे आशिया में भी हुए, लेकिन माता कौन रखता है वर्ल्ड पावर बनने का? भारत, क्योंकि हमने विकास की राजनीति की। हमने इस देश के सतलज के ऊपर जो भाखड़ा नंगल बना उसको कहा हमने मॉडर्न टेंपल ऑफ इंडिया। तो ये सोच लेकर हम आगे गए, हम आईआईटी, आईआईएम, डीआरडीओ, इसरो, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं, एम्स, ऐसी सारी चीजों को लेकर हम गए, आज तक गए हैं, इसके आगे भी जाएंगे और हमारी प्रेरणा रहेंगी प्रभु रामचंद्र।
1: वाह, 2 सेकंड पहले ही खत्म कर दिया इन्होंने। इधर से ओपनिंग बैट्समैन ने एकदम पिच को थोड़ा जमाया है। अब आप पर पूरी जिम्मेदारी है प्रदीप भंडारी जी, आपके अपने अपने जब वक्ता बोलते हैं उनका जोश बढ़ाइए ताली से। चलिए प्रदीप भंडारी जी, आपका 90 सेकंड का समय इस विषय पर बोलने का शुरू होता है। अब
3: देखिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने कहा वो धर्म की राजनीति नहीं करती, परंतु हिंदुओं को हिंसक जरूर कहती है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती, पर राम गोपाल यादव 1992 में फ्लोर ऑफ द हाउस इन द पार्लियामेंट ये कहते हैं कि प्रभु श्री राम अयोध्या के अंदर इलीगल ऑक्यूपेंट हैं। प्रभु श्री राम को पार्लियामेंट के अंदर घुसबैठिया कहा जाता है, ये मैं नहीं, ये सुनिए समाजवादी पार्टी कहती है।
4: अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट जिन्हें आप रामलला कहते हैं, क्या मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट नहीं?
3: जिन्हें आप रामलला कहते हैं, क्या वो मस्जिद में अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट नहीं है? ऐसी सोच इन लोगों की है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनता है, ये धन की राजनीति नहीं करते, पर कपिल सिब्बल कोर्ट के अंदर राम मंदिर जो है वो चुनावों के बाद बने ऐसी दलील देते हैं, ये धर्म की राजनीति नहीं करते, पर राहुल गांधी हनुमान घड़ी के बाजू में प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने नहीं आते, ये धर्म की राजनीति नहीं करते, पर बाबर की मजारों पे 3 बार जाते हैं, हिंदुओं को हिंसक कहने के अलावा इफ्तार पे जाते हैं, धर्म की राजनीति नहीं करते, पर कहते हैं दादी और नानी कहा करती थी कि उनके बाबर के मजार के ऊपर कभी भी प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बन सकता। तो याद रखिए, जब जब कोई चुनावी हिंदू हुआ है, जब जब कोई कालनेमी हुआ है, इस देश के हिंदू समाज और इस देश के युवा ने उसको देखा है, क्योंकि धर्म अगर प्रोटेक्टेड रहेगा तभी देश सुरक्षित रहेगा। और आज भारत 7%
1: समय समाप्त हुआ, कालनेमी
3: है, चुनावी हिंदू
1: समय समाप्त हुआ। भाई दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है।
5: एक बात है कि आप दोनों ने अपना सारा ध्यान केंद्रित रखा इस बात पर कि कौन कैसी राजनीति करते हैं, वो कैसी करते हैं, आप कैसी करती हैं, करते हैं। मुद्दा है कि क्या चढ़ावा चोरी के मामले से यूपी में विपक्ष को फायदा होगा।
1: भाई स्टूडेंट ने जोश भर दिया कि टॉपिक से भाग गए,
5: ये तो बोला
1: अच्छा,
5: ही नहीं क्या आपको फायदा होने वाला है, और क्या कैसे प्रदीप भंडारी कहते हैं क्या आपको नुकसान होगा अगर इनको फायदा होगा, तो इस पे भी थोड़ा प्रकाश डाले, क्योंकि मुद्दे से जो है अभी शुरुआत पहले राउंड में भटक जाएंगे तो ठीक नहीं है।
2: नहीं, मैंने सीधे से पहले सिरे से रखा कि हमारी राजनीति प्रभु रामचंद्र या धर्म की नहीं है। अब जब नैतिक पतन किसी पार्टी का और साथ में लिए लोगों का इतना हो जाए कि प्रभु रामचंद्र के यहाँ चोरी हो जाए, और उसे अगर हम राजनीति का मुद्दा बनाएंगे, तो ये जो पीढ़ी हमारे सामने बैठी है और जो पीढ़ी देख रही है हमें, जो नई पीढ़ी है, उनको उन्हें हम क्या दिशा देंगे। तो मेरा कहने का मतलब, पहले ही मैंने सिरे से नकार दिया था कि प्रभु रामचंद्र के साथ जिन्होंने गलत किया उन्हें प्रभु रामचंद्र देख लेंगे और एजेंसी देख लेगा, देश के लोग देख लेंगे, लेकिन हमारी राजनीति क्या होगी। तो हमारी राजनीति होगी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका फ्यूचर, पेपर लीक न हो, OSM न हो। तो ये विजन जो है, ये विजन क्या होगा हमारा चुनाव में, ये हमने दिया है। मैं आपको काउंटर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतनी बात जरूर है, जब जब राम प्रभु रामचंद्र या धर्म का राजनीति हुआ है, या धर्म के राजनीति लेकर भूमध्य समुद्र से लेकर पाकिस्तान तक जो जो देशों ने धर्म की राजनीति की है वो खत्म हुए हैं, उनका देश के नाम पर अस्तित्व जो है।
1: आपने भी नहीं बोला कि चुनावी फायदा, चंदा चोरी तो आया ही नहीं, चढ़ावा चोरी।
3: मैंने कहा इस देश में जो जो जब जब चुनावी हिंदू बनने का प्रयास किया, इस देश के हिंदू समाज ने उसको जवाब दिया। देश के किसी भी कार्य में, दुनिया में किसी भी कार्य में, भले वो चुनाव हो या कोई और, कल्याण तभी हो सकता है जब प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिलता है। और प्रभु श्री राम ने कभी भी चुनावी हिंदुओं को, जो चुनाव के समय जनेऊधारी ब्राह्मण बन गए, या आप चुनाव के समय राम राम कह रहे हैं जो पूरे राजनीतिक जीवन में नहीं करे, तो कभी उनको आशीर्वाद नहीं मिला है। तो भले वो राजनीति हो, भले वो समाज हो, कभी भी प्रभु श्री राम या राम भक्त उन पर आशीर्वाद नहीं देते। तो मेरे बात चुनावी है ही नहीं, मेरे बात देश के अस्तित्व की है। क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने 6 मई 2024 को कहा, जिसके बाद मैं स्तब्ध हो गया, कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आती तो राहुल गांधी ने यह कहा था कि वो राम मंदिर की वर्डिक्ट को ओवरटर्न कर देते। तो जब इतने पूज्य संत, जो इस वक्त हमारे जज हैं, जो उन्होंने कहा, उनकी बात जो है उनको मैंने माना, तो ये बात देश को बचाने की है। क्योंकि अगर धर्म बचेगा तभी विकास होगा। और बात रही विकास की, आज 7% ग्रोथ रेट से भारत ग्रो कर रहा है। विकास पे 4 घंटे में डिबेट कर दूं, पर अगर मैं हिंदू कहने पे ही अपने आप को संकोचित फील करूं तो क्या बात होगी ताऊ।
5: एक बार मोशन क्या है यही बोल दीजिए, शब्द तो आ जाए।
3: ताऊ
6: चंदा चोरी में जो शामिल हो मोशन के बीच में क्या बोलेंगे।
1: और ये भी बताइए, क्या बीजेपी घिर नहीं गई है इस मुद्दे पर? आपके लिए सबसे बड़ा
2: नहीं, नहीं मेरा जवाब बचा एक प्रभु रामचंद्र तो प्रजा हित अध्यक्ष राजा थे।
3: चलिए,
2: और जो प्रभु रामचंद्र का नाम लेकर राजनीति में आए हैं वो प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगते जिसने 3000 महिलाओं का बलात्कार किया।
3: दो प्रज्वल,
2: वो ब्रजभूषण शरण सिंह के, ब्रजभूषण शरण सिंह को शरण देते हैं। और प्रभु राम जो नीट का पेपर लीक होने के बाद भी जिनका मंत्री इस्तीफा नहीं देता है, 21 आत्महत्या होने के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहे, वो प्रजा हित अध्यक्ष प्रभु रामचंद्र का नाम लेता है। जो प्रधानमंत्री एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हैं, जो प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के साथ बंद हो जाते हैं, जो प्रधानमंत्री गड्ढे में लोगों को गिरा गिरा के मार रहे, जिस प्रधानमंत्री के मेरे मुंबई में 3 लोग मर गए हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इनके पास कुछ है नहीं है। और चोरी में ट्रस्ट इनका उद्घाटन इन्होंने बनाया, उद्घाटन इन्होंने किया, चंदा इन्होंने जमा किया और चंदा चोरी
3: उसको क्योंकि
2: हिंदू मुसलमान के बाहर निकल नहीं सकते।
3: हम कांग्रेस की सरकार नहीं है कि आजम खान को बचाने
2: जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करेगा।
3: हम कांग्रेस की सरकार नहीं है कि सबरीमाला के अंदर जिनने सोना लूटा उनको कांग्रेस और सीपीएम ने बचाया।
2: केदारनाथ का सोना कहां गया?
3: जो होगा बुलडोजर
2: का सोना लूटने वालों
3: भी करेगी।
2: राम मंदिर के जैसे, राम मंदिर के पैक भूषुंडी को लूटने वाले,
3: तुमको
2: राम मंदिर के 200-200 शिलाओं को लूटने वाले, राम मंदिर के अयोध्या में आपने 50% जमीन लूट ली,
3: और जिसमें ये धर्म और जिसमें
5: ही बात है। भदौरिया जी बार बार बाएं चढ़ा रहे हैं बैठे हुए हैं।
3: भदौरिया जी ने 3 शायरी याद करी है वो बोलने वाले।
1: भदौरिया जी को लग रहा है कि हमारा, हमने मुद्दा उठाया, हमारा समय जा रहा है,
6: मुद्दे की बात नहीं कर रहे बच्चों।
1: जल्दी जल्दी,
3: अरे भैया कब जाओगे भाई अयोध्या में दर्शन करने? ये तो बता दो, दर्शन करने कब जाओगे?
5: अतुल अतुल, आपने अपने भाषण में 1949 से मूर्तियां रखने और शिलान्यास का तो उदाहरण लिया, लेकिन बाबरी मस्जिद के कार्यकाल में उसका जिक्र नहीं किया।
2: ऐसा है,
5: उसका भी कर रहे थे जिक्र, उस श्रेय भी ले लेते।
2: नहीं, कौन कौन खड़ा था वो गिराते वक्त? वो सारे देश ने, दुनिया ने, सारे जमात ने देखा है कि वहां कैसे अडवाणी जी खड़े थे, वहां कैसे उमा भारती जी खड़ी थी और किस तरह से उन्होंने माफी मांगी है।
3: आप बाबरी का
2: माफी मांगी है अडवाणी जी ने,
3: कांग्रेस बाबरी का भी सपोर्ट करी है। ये क्या राम मंदिर के अंदर दर्शन देंगे? अभी मैं इनने दर्शन करा, मेरे साथ अगर सकते तो बाबरी के साथ हो कि राम के साथ हो। भाई जो राम के साथ है वो चंदा चोरी करने वालों पे बुलडोजर भी चलाएगा और बोलेगा इस देश का अस्तित्व बाबरी नहीं है। जो बाबरी के साथ है वो सिर्फ बाबर की मजार पे जाएगा, इसीलिए गांधी वाड्रा परिवार जो है बाबर की मजार पे जा चुका है, अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन नहीं किए। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये चोर है, ये चोर का फायदा उठा रहे हैं, ये इनकी सच्चाई है, ये सच्चाई है।
2: अभी सच्चाई मैं बताता हूँ, अभी सच्चाई मैं बताता हूँ, अभी सच्चाई मैं बताता हूँ बाबरी के साथ कौन है।
3: अखिलेश जी से मेरा निवेदन है कि अनुराग भदौरिया को नेक्स्ट रैली में बुलाए जिससे कि कुछ नारे लगवा सके, क्योंकि इनको नारे लगाने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए भदौरिया जी स्टूडियो में नारे लगवा रहे हैं। भदौरिया जी करवा दो।
2: नहीं, बड़ा एक सवाल है, बाबरी के साथ कौन है?
5: सवाल आपसे भी पूछा।
2: नहीं, बाबरी के साथ कौन है ये तो तभी पता चला जब वेस्ट बंगाल का चुनाव था, हुमायूं कबूर को 1000 करोड़ देके बाबरी मस्जिद वहां बनाकर हिंदू मुसलमान की कोशिश की थी। तो बाबरी मस्जिद के साथ तो ये थे, हम तो वहां खड़े थे, हम तो वहां खड़े थे कि सुप्रीम कोर्ट के पास हमने
3: गांधी का स्टेटमेंट,
2: चोर मचाए शोर, बीजेपी की चंदा में चोरी ये करे, प्रभु रामचंद्र की शिला की चोरी ये करे,
3: पर आप कभी बाबरी
2: ये काकभूषण की चोरी ये करे,
3: ये पूरा
2: 2012 में इन्होंने चोरी किया, विश्व हिंदू परिषद ने भाजपा पे 1400 करोड़ चोरी करने का
1: आरोप
2: सारी चोरी चकारी 1400 करोड़ विश्व हिंदू परिषद के कार्यवाह के इन्होंने चुराए,
3: 1.25 करोड़
2: की 1200 शिला शिलाएं जो है 2012 में इन्होंने चुराई।
1: हो गया,
3: राम राम तो बोलना शुरू कर दिया, चोर चोर जीवन काल
2: चोर और सीना चोरी, चोरी और सीना चोरी कोई सीखे प्रदीप भंडारी से।
3: कांग्रेस ने जितना राम राम नहीं किया चुनावों के लिए कर रही है।
1: धन्यवाद आप दोनों का, कोटि कोटि धन्यवाद। आइए, चलिए 90 सेकंड का इस विषय पर कि क्या चढ़ावा चोरी के मुद्दे से यूपी में विपक्ष को चुनावी फायदा होगा। समय शुरू होता है आपका, अनुराग भदौरिया जी, 90 सेकंड का अब।
7: देखिए, हम समाजवादी लोग कभी फायदा नुकसान के लिए धर्म की राजनीति नहीं करते। ये मेरा विषय नहीं है कि मुझे क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा। विपक्ष में हम हैं और विपक्ष में भी सनातनी है। ऐसा नहीं कि विपक्ष में सनातनी नहीं है, और सनातनी होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं दो धर्म निभाऊं। मैं विपक्ष का भी धर्म निभा रहा हूं और सनातनी होने का भी धर्म निभा रहा हूं। विपक्ष में मैंने बताया कि सत्ता किसकी, भारतीय जनता पार्टी की। सत्ता में अगर चोरी हो रही है, जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की थी कि अगर मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रहा है तो आपको उसको उठाना था। आप चुप्पी साध गए, उठाया किसने? समाजवादियों ने, क्योंकि वो सनातनी धर्म भी निभा रहे थे। अब सवाल यह है कि ये इनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या करोड़ों हिंदुओं की जो श्रद्धालु हैं, उनकी जो श्रद्धा है, उनकी भक्ति है, क्या उस पर डाका नहीं डाला गया? क्या वहां चोरी हुई, इनकी जिम्मेदारी नहीं थी? उस जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकते ना। और विपक्ष ने जब आवाज उठाई तो विपक्ष पे सवाल उठाते ये, अरे हम वो लोग हैं जो हमेशा से प्रभु का नाम लेते हैं और प्रभु के आद और साचरण को अपनाते हैं। आपको पता है मन मंदिर में प्रभु होता है, जरूरी नहीं प्रभु के लिए आपको मंदिर जाना पड़ेगा। अगर आप घर में भी बैठे हैं, अगर आप किसी कुटिया में भी बैठे हैं, अगर कोई किसान अपनी कुटिया में बैठा अपनी किसानी कर रहा है, खेती कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है, वो कुटिया में बैठ के भी कैलेंडर के सामने बैठ के प्रभु राम की मूर्ति में प्रभु राम को खोज लेगा। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके मंदिर में बैठे और आपके जिन लोगों को बैठाया आपने वो चोरी करे जाके। अरे हम तो वो लोग हैं 1963 में लोहिया जी ने रामायण मेला शुरू किया था। हम रामायण मेला वाले लोगों की रामायण इसलिए शुरू किया था कि राम के आदर्श आचरण पे चलते हैं। उन्होंने बोला था सत्य बोलो, सभी धर्मों का सम्मान करो, प्यार की भाषा बोलो, दूसरों को अपनाओ। इसलिए वासुदेव कुटुंब की बात करते हैं, हमारे लिए धर्म राजनीति विषय कभी नहीं रहा, इसलिए फायदा नुकसान कभी नहीं सोचा, हमारे लिए धर्म हमेशा आस्था का विषय।
1: मिडिल ऑर्डर ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है और तालियों की गूंज बता ही रही है। आज की ऑडियंस के लिए एक बार ताली बजाए भाई, बड़ा दिलचस्प होकर हर मुद्दे पर, वेरी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑडियंस, पूरी ताकत के साथ मुद्दे पर। और ऐसा नहीं है जहां की बात जच रही उधर ही चल पड़ रहे हैं एकदम तालियों के साथ। चलिए रोहित जी,
3: जय श्री राम, जय सीताराम,
1: जय सीताराम।
3: अब बताइए
1: समय रुक, अच्छा चलिए बोलिए बोलिए बोलिए बोलिए।
3: परम श्रद्धे पूज्य डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने पहली बार रामायण मेला कहां लगाया था?
7: बोलो
3: बताइए।
7: कन्नौज में,
3: चित्रकूट में,
7: कन्नौज में,
3: चित्रकूट में,
7: बच्चे चुप रहिए, कन्नौज में, चित्रकूट में, उसके बाद चित्रकूट में लगाया था, दूसरा नंबर
3: चित्रकूट में। अंधेरे रास्ते रहिए पहले,
7: बस चोर पकड़ा गया,
3: करते रहते हैं,
7: चोर पकड़ी गई,
3: चोर,
7: चोरी पकड़ी गई,
3: चोर जब सामने निकले
1: प्लीज
3: देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी हमारे और आपके प्राण पुरुष हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी इस देश की आत्मा है, परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा के बीच में अगर कोई आने का प्रयास करेगा, कोई चोरी करने का प्रयास करेगा, सुन लीजिए, कांग्रेस के मित्र पर ताली मत बजाइए, सुनिए पहले ध्यान से,
7: अच्छा।
3: उन्माद के प्रतीक लोगों का साथ मत दीजिए,
7: अच्छा,
3: बात की गंभीरता को समझिए प्रवक्ता महोदय।
1: चोरी का साथ
3: हम छोड़ेंगे नहीं आपको,
7: चोरी का साथ नहीं देंगे,
3: सुनिए,
1: 10 सेकंड
3: एक्स्ट्रा तंग किया था त्रेता काल में,
7: साथ नहीं दिया जाएगा।
3: कई और मंथरा थी और वो राम के घर में उत्पत्ति हुई थी उनकी, ठीक उसी प्रकार
7: चोरी कैसे हो गई?
3: तीनू यादव जैसे लोग
7: चोरी कैसे हो गई?
3: जो समाप्तवादी
7: चोरी कैसे हो गई?
3: अरे सुनिए भदौरिया जी, बेंगवन की तरह मत बोलिए, हाइबरनेशन में भेज देंगे।
7: चोरी कैसे हो गई?
1: हाइबरनेशन के साथ समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। चलिए तालियों के साथ दोनों ही मिडिल ऑर्डर ने बहुत ताबड़तोड़ कुछ सवाल, गुरु जी आप कीजिए, आचार्य जी कोई प्रश्न हो।
8: देखिए एक तो प्रदीप भंडारी जी को सुना सबसे पहले, और उनके साथ साथ सुना अतुल जी को। अतुल जी ने एक बात कही कि विकास की बात होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, विकास होना चाहिए, लेकिन अतुल जी को मैं ये बात बताना चाहता हूँ, उन्हें इस बात का ध्यान रहना चाहिए, उनकी पार्टी को भी, कि विकास होना चाहिए लेकिन इतिहास को भी भूलना नहीं चाहिए। दूसरा, हमारे प्रदीप भंडारी जी ने बड़ी तैयारी के साथ आकर के और उन पर हमला किया और पूरा अपना पक्ष रखा, लेकिन जो विषय था उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, अपना पक्ष नहीं रखा। मैं प्रदीप भंडारी जी को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अयोध्या में माँ सीता की अग्नि परीक्षा हुई है तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की भी अग्नि परीक्षा होनी चाहिए। अब आया भदौरिया जी का विषय। भदौरिया जी जिस बात के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बखूबी, अभी उनका एक वीडियो हमने देखा था जो दंड बैठक लगाते हुए, तो उन्होंने अपनी शक्ति
1: उसकी
8: का
1: खास बात जानते हैं कि नहीं आप आचार्य जी? इनके नेताजी जितने वर्ष के हुए हैं उतने दंड लगाए इन्होंने।
8: हाँ, मुझे अभी बता रहे थे कि उससे ज्यादा लगा दिए हैं। तो मैं भदौरिया जी को ये कहना चाहता हूँ, भदौरिया जी को ये कहना चाहता हूँ कि वो इसी खूबी के साथ, इसी जोश के साथ अपनी पार्टी का पक्ष रखते रहें, कभी ना कभी बिल्ली के भाग से छींका टूट जाता है।
7: आप जवाब जवाब दे दो।
8: अब कुछ नहीं,
1: आचार्य जी इसमें भी एक राज है,
7: एक सेकंड,
1: पार्टी इनको हर बार विधानसभा का टिकट देती है लेकिन ऐसी सीट पर देती है जहाँ बीजेपी ही जीती है हमेशा, जहाँ कभी समाजवादी पार्टी नहीं जीती है।
8: दूसरा, रोहित जी हमारे जो उन्होंने जो आते ही बैटिंग की है वो 30-32 साल पहले जो कभी लालू जी का स्टाइल होता था उससे उन्होंने जो अपना एक तरह से प्रेजेंटेशन दिया है उनका भविष्य उज्जवल दिखता है। अच्छा। और बड़ी बखूबी से भारत के सनातन परंपरा को सनातन संस्कृति को रखने का उन्होंने प्रयास किया है।
1: ठीक है, एक सवाल तीनों हिस्से से लेंगे, लाल हिस्से से किसी अनु जाए, एक सेकंड, कोई प्रश्न है आप लोगों में से, आइए आगे आ जाइए।
9: मेरा अनुराग जी से सवाल है, ये कह रहे हैं कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, धर्म की राजनीति नहीं करते, ये गोल टोपी तो लगा सकते हैं लेकिन भगवा नहीं डाल सकते, तिलक नहीं लगा सकते, जय श्री राम नहीं बोल सकते इनके नेता। दूसरा, ये वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई, इनको कोई हक नहीं है राम के नाम पे बात करने का।
10: मेरा ये प्रश्न है विपक्ष से कि जब राम के अस्तित्व को ही नकार दिया तो राम के चोरी पे बात करना अधिकार नहीं बनता।
9: जवाब दे दो।
11: सर, मेरा सवाल ये है कि ये पूरा मुद्दा चोर का है या चौकीदार का? अगर चोरी हुई है तो सजा सिर्फ चोर को मिलेगी या फिर चौकीदार करने वाले को भी?
1: ठीक, जवाब। और इधर से कोई है, तीन तीन प्रश्न इधर से भी लेंगे, आइए आ जाइए।
12: मेरा सवाल ये है कि चंपत राय जी पर कब आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे?
13: मेरा सवाल प्रदीप भंडारी जी से, उन्होंने कहा धर्म सुरक्षित होगा तो देश सुरक्षित होगा। प्रदेश में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो धर्म में चोरी कैसे हो रही? जिस मंदिर को आपने बनाया, जिस मंदिर पे आपने वोट लिया, उस धर्म में चोरी कैसे हो रही?
1: मंदिर जनता के पैसे से बना है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, तो इनको ये श्रेय मत दे दीजिए कि इन्होंने बनवाया है।
13: श्रेय ये लेते हैं ना, ये श्रेय लेते हैं, तो ये जवाब देंगे उसका।
1: जवाब दे दो। सवाल दोनों सफेद मोक्ष वाले साइड से, कोई मोक्ष
9: इधर, एक
1: मैंने पकड़ा,
9: एक बच्ची थी इधर।
14: मेरा सवाल ये है कि जैसे कि जो चोरी का मामला है, तो ये अगर हम पार्टी इसको छोड़ के सिर्फ इसकी जांच पड़ताल पे हम करें, कि इसकी जांच पड़ताल अगर सही तरीके से हो रही है तो फिर वो ज्यादा सही रहेगा।
1: ठीक, आई आखिरी सवाल।
15: फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मुद्दा बना दिया गया है वो बना दिया है पार्टीज का। हम लोग अगर ये नीला पहन के बैठे, डजंट मीन कि हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। वो रेड पहने, डजंट मीन कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा प्रश्न था कि क्या ये जो चोरी हुई है ये इनकी पार्टी को अफेक्ट करेगी या नहीं। वो कोई भी पार्टी होगी, अगर वो चोरी होगी या एनी थिंग, अगर जो भी रॉन्ग होगा इस कंट्री में, तो वो इफेक्ट करेगी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। डजंट मीन कि वो बीजेपी है, कांग्रेस है, और
1: जो भी है उसको होगा। ठीक है, चलिए अब जवाब से शुरुआत करते हैं आपसे।
9: देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे अपने आप को बनाया जैसे राम मंदिर का आंदोलन, राम मंदिर वही बना रहे, सनातनियों का है ये। आपने उस पे कब्जा किया, क्या सनातन पे कोई कब्जा कर सकता है? क्या कह सकता है प्रभु राम मेरे हैं? प्रभु राम तो सबके हैं, जो सनातनी उसके प्रभु राम है। इन्होंने प्रभु राम के नाम पे राजनीति करने की कोशिश की थी। और जिसकी बात आप कर रहे हो कार सेपो को गोली चलाने की, निपेंद्र मिश्रा जी उस समय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने अंजना जी के स्पीच में अपने इंटरव्यू में कहा था कि राम भक्त की जो गोली चली थी वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चलाई थी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने ऑर्डर दिया था। ये झूठा प्रचार करते हैं, ये हम लोग को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, आपका अधिकार छीन रहे हैं, जिससे आपके नीट पे पर्चा लीक हुआ उस पे बात ना हो जाए। आपके जो जल के लोग मर गए वहां बिल्डिंगों में, उन बच्चे 14 बच्चों की मौत हो गई जल के, सरकार की नाकामी की वजह से सवाल आपसे ना पूछा जाए। महंगाई बेरोजगारी से जो आपके घर में आग लगी, परेशान है, उससे तकलीफ ना हो, उस पे बात ना हो जाए, इसलिए मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। प्रभु राम के नाम पर राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं, डंके की चोट पे बोल रहा हूं मैं, प्रभु राम के नाम पर राजनीति नहीं। प्रभु राम मेरे आस्था का विषय है, उनके यहाँ चोरी हुई है चढ़ावा में, तो माननीय श्री अखिलेश यादव ने अपना धर्म निभाते हुए, सनातन को विपक्ष का धर्म निभाते हुए आवाज उठाई है कि वहाँ चोरी हुई है, और अगर वो आवाज नहीं उठाते तो लोग तो चुप्पी साध गए थे।
1: पूछा था कि इसका नुकसान तो होगा ही होगा जो भी सरकार में हो, ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, उस पर आप जवाब दीजिए जो उस बच्ची का प्रश्न।
9: देखिए, मर्यादा
1: पुरुषोत्तम राय पर स्पेसिफिक सवाल है कि उनको बचाया जा रहा है क्या?
9: मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी इस देश की आस्था, निष्ठा और प्रतिष्ठा के प्रतीक है। मैंने पूर्व में भी कहा, राम जी के घर के अंदर मंथरा और केकई थी, समय काल परिस्थिति उनको चिन्हित किया गया, पाप का प्रतिभागी उनको भी बनना पड़ा। ठीक उसी प्रकार भव्य राम मंदिर के निर्माण के उपरांत जो ट्रस्ट बना है, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई हैं। उन गलतियों का पताक्षेप होने के उपरांत राज्य की सरकार के द्वारा SIT जांच आयोग का गठन किया गया है। यह एक बहुत संवेदनशील विषय है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी पान की दुकान पर बैठे पान बेचने वाले भाई के तरह एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, जिनकी पान की दुकान पर ट्रंप के चुनाव से लेकर जिनपिंग के चुनाव हारने तक की चर्चा होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी इस घर की, इस देश की झोपड़ी में रहने वाले एक साधारण किसान से लेकर मुकेश अंबानी के घर में रहने वाले बड़े बड़े लोगों तक के आराध्य देव हैं, भारत के प्राण पुरुष हैं। उनके नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए, खासकर उन लोगों के द्वारा जिन लोगों ने टारगेट करके
16: इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के अस्तित्व के बारे में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा कि राम कोई व्यक्ति नहीं थे, राम एक पात्र थे, राम एक काल्पनिक व्यक्ति थे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा में वरिष्ठ नेता आदरणीय रामगोपाल यादव जी ने उन्हें इलीगल ऑक्युपेंट बताया, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ये सब बातें गूगल पर 10 सेकंड और अंजना जी
1: नहीं, अब नहीं, अब नहीं,
16: 10 सेकंड अनुराग जी 10 सेकंड, अनुराग जी 10 सेकंड,
17: मुझे एक लाइन दे,
16: लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, कोई खेत का झगड़ा नहीं है, मर्यादा का पालन कीजिए, राम पर चर्चा हो रही है,
17: बोलो भाई यार, समय नहीं है।
16: आपने जो प्रश्न पूछा आदरणीय चंपत जी के संदर्भ में या ट्रस्ट के संदर्भ में, जिन्होंने भी पूछा, तीनू यादव जी से लेकर मिश्रा जी तक, कई लोग शुक्ला जी तक जेल में गए हैं,
17: एक लाइन,
16: आगे बड़ी कार्रवाई होगी, पाताल से प्रधानमंत्री गणनायक नरेंद्र मोदी जी के रहते, उत्तर प्रदेश सरकार के रहते, दोषियों को खींच के लाया जाएगा, द्वापर त्रेता हड़ताल खंड में कई सौ रावण जैसे लोग पैदा हुए,
17: कलयुग में भी रावण
1: एक लाइन।
16: कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ, अब कालने में कौन हुआ चंदा वहाँ पे जो चोरी हुई है चढ़ावे में, तो जिम्मेदार कौन? आपने ही तो ट्रस्ट चुने थे, आपने ट्रस्टी बनाए थे वहाँ पे, आपने वहाँ पे अधिकारी अपने अपॉइंट किए थे, अब वहाँ पे चोरी हुई है तो कालने में कौन? एक बात, दूसरी बात, चंपत राय अगर विपक्ष में होते, विपक्ष के संपर्क में होते, विपक्ष की तरफ से पॉइंट किए गए होते, अब तक ईडी सीबीआई पकड़ के कहां फेंक देती? आप जानते हो
1: गया आपका?
16: आप जानते हो,
1: सेकंड
16: हमको भी दीजिए, 10 सेकंड हमको भी दीजिए,
1: बड़ी विनम्रता के साथ, पानी पीजिए, और मुझे चिंता हो रही है आपकी, जितना आप आक्रामक हो रहे हैं, प्लीज
16: डॉक्टर लेकर के आए, गाड़ी में डॉक्टर बैठा हुआ है, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, इनको भी बहुत जीना है, भोगना है इनको अभी,
17: फिर मैं भी बोलूंगा अंजना जी, अगर ये बोलेंगे लंबा बोलने के बाद,
16: आप भी बोल लीजिएगा,
17: नहीं नहीं नहीं,
16: अरे पानी अमृत है भाई, गंगा जल है पीजिए ना,
17: ना ना ना,
16: अरे गंगा जल है पीजिए,
17: ये जल है,
16: गंगा जल,
17: सम्मान करो,
16: गंगा जल
17: पीजिए,
1: सम्मान करिए,
17: बोलोगे देखो,
16: सुनिए, ईडी हो सीबीआई हो,
17: हाँ,
16: यह सब देश की स्वतंत्र संस्थाएं हैं।
17: 25 दिन बाद 25 दिन हो गए अभी तक किसी को याद नहीं आई, 25 दिन हो गए अभी तक याद नहीं आई,
1: बोलिएगा मत,
17: नहीं नहीं,
1: क्योंकि मत बोलिएगा, आगे से मैं आपको बोल रही हूं,
17: उसने मुझे बोलने नहीं दिया, फिर भी उसने मुझे बोलने नहीं दिया, मैं बोलूंगा, उसने मुझे बोलने नहीं दिया,
16: कोई भी ट्रस्ट का व्यक्ति हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे,
17: कब होगी,
16: सबूत पाए जाएंगे,
17: कब होगी,
16: सरकार को
17: बताएंगे, कब होगी,
16: आप इनको इनको चिट्ठी लिख करके मनियादर किया जाएगा, कब होगी, चिट्ठी से बताया जाएगा, कब होगी।
1: और अब वो वक्त है जब आप लोगों को मौका है, अगर आप कन्विंस हुए हैं किसी एक व्यक्ति के बोलने से तो आप लोग अपना गमछा बदल सकते हैं, आप लोगों को टाइम मिलेगा, नीले वाले सफेद या लाल ले सकते हैं, सफेद वालों के पास दोनों तरफ का ऑप्शन है, लाल या नीला, और लाल गमछे वालों के पास ऑप्शन है कि आप सफेद या नीला लें। कोई ऐसा है जो बदलना चाहता है? बदलिए बदलिए,

0: अगले दो कंटेस्टेंट्स जो हैं उनको बुलाते हैं, दोनों वक्ताओं को तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ राघवेंद्र राम द्विवेदी जी और प्रोफेसर सतीश प्रकाश गुर्जर। आइए, तो इस विषय पर बोलने का आपका समय शुरू होता है द्विवेदी जी, 90 सेकंड का अब।
1: देखिए, उत्तर प्रदेश हमेशा आस्था का केंद्र रहा है और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। ये बात सही है कि राम मंदिर पे इस समय धब्बा लग रहा है और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी चीख चीख के कह रहे थे, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अगल बगल बैठे, चुनाव में भी दोनों बबुआ एक ही साथ रहते हैं। इनको चोरी का एक्सपीरियंस है, 2G 4G जीजा जी कोयला घोटाला से लेके और जो लखनऊ की नदी है वहां तक का घोटाला है, तो इनको पहले पता चल गया। लेकिन भदौरिया जी, आपसे एक निवेदन है कि अगर योगी जी कार्रवाई करेंगे तो आप रोना मत रोइएगा कि किसके किस पे कार्रवाई हो रही है। और मैं आज तक के इस मंच पे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ने वाली है जो उसमें थोड़ा सा भी संलिप्त है, पाताल से खींच के लाएगी, क्योंकि यहाँ योगी जी की सरकार है और योगी जी के सरकार में सभी लोग, जैसे राम राज्य राम जी के सरकार में चलता था, वैसे आज उत्तर प्रदेश में है। अभी भदौरिया जी लगातार बहस कर रहे थे, लेकिन ये नहीं बताया कि इनके सरकार में 3.25 लाख केवल महिलाओं पे अत्याचार, बलात्कार, छेड़खानी के मुकदमा हुए। यही नोएडा सूर्यास्त होने के बाद महिलाएं निकलती नहीं थी, इनके मुख्यमंत्री नोएडा नहीं आते थे कि यहाँ हम सरकार बदल जाएगी। ये सब भ्रांतियां दूर हो गई हैं। और राजनीतिक मुद्दा राम मंदिर नहीं है, राम मंदिर बहुत छोटा मुद्दा है। अभी 1 से 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप सब लोग जान जाएंगे कि
0: समय समाप्त हुआ।
1: कौन सा
0: भाई क्लोजिंग, जो टेल बैट्समैन है वो भी अपनी अपनी पारी खेल रहे हैं। सतीश प्रकाश जी, आपका 90 सेकंड का समय इस विषय पर बोलने का शुरू होता है।
2: सभी को मेरा नमस्कार। दो शब्दों में अपनी बात खत्म कर देता हूं। ये मिस गवर्नेंस और मिस हैंडलिंग का केस है। पहले दिन से कहीं ना कहीं सरकार ने गलती करी। अगर वो चोरा अगर वहां चोरी हुई थी तो ये जाकर के पुलिस के अंदर जाने चाहिए थे। चंपत राय जी कहीं ना कहीं थाने को इन्फॉर्म ना करके उसको बरामद करने के लिए गई। उसके बाद सरकार ने क्या गलती करी, सरकार को FIR दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं SIT बनानी थी, ये भी गलत हुआ। और मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं अब भी मिसहैंडलिंग हो रही है। एक व्यक्ति जो है जो रेडियो ऑपरेटर था, कहीं ना कहीं 40 दिन के अंदर अगर 70 बार वो कैमरे ऑफ हो रहे हैं, तो वहां सिर्फ मुद्दा ये नहीं है कि राम मंदिर के अंदर से जो पैसे लूटे गए होंगे। मुझे आप ये बताइए कि कोई बाहर का व्यक्ति अगर वहां कैमरे बंद करा करके अगर वहां विस्फोटक सामग्री रख देता, उसका जिम्मेदार कौन होता और उस आदमी का आपने ट्रांसफर कर दिया। देखिए, मेरा मानना यह है सरकार आपकी है, लोग आपके हैं, सारी व्यवस्था आपकी है और सवाल भी आपसे है। आपको कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए थी। चंपत राय जी को पाताल में ढूंढने की जरूरत नहीं है, अनिल मिश्रा जी को पाताल में ढूंढने की जरूरत नहीं है, गोपाल राव को पाताल में ढूंढने की जरूरत नहीं है। और जब फाइनेंशियल क्राइम होते हैं ना, उसके एविडेंस जो क्राइम करने वाला व्यक्ति है वो खुद जनरेट करता है। और विपक्ष के लिए एक बात कह रहा हूं, देखिए धर्म आपके पीछे, धर्म की पिच पे खेल करके आपने सत्ता पाई है, लेकिन हम विपक्ष के लोग हैं, हम धर्म की पिच के ऊपर नहीं खेलेंगे। राम जी का सम्मान करेंगे, उनका हमेशा सम्मान इसी तरीके से।
0: समय समाप्त हुआ, जबरदस्त। कोई प्रश्न जो इन दोनों से करना हो या अगले राउंड में चले?
3: ये द्विवेदी जी से पूछ रहा हूं मैं। द्विवेदी जी, आपने कहा, वो तो उन्होंने कह दिया कि पाताल में खोज जरूरत नहीं है, लेकिन आपके जो नेता हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनका राम मंदिर पर क्या स्टैंड रहा है? वो तो कभी राम मंदिर के पक्ष में तो कभी विपक्ष में, तो जैसे उनको बोलने, वो भी कभी मंदिर आंदोलन समझ नहीं रहे, कभी मंदिर आंदोलन में नहीं गए,
1: देखिए
3: दर्शन करने भी नहीं गए।
1: ओम प्रकाश राजभर जी मंदिर की उपज नहीं है, ओम प्रकाश राजभर जी अंतिम व्यक्ति का कैसे उदय हो, शोषितों वंचितों का कैसे लाभ हो, उसके उस बीच से वो नेता बनकर आए हैं। और ओम प्रकाश राजभर जी सरकार की सहभागिता, सरकार में सहयोगी हैं और सरकार जो करेगी उसमें कंधे से कंधे मिला के हैं। आप इसी TV पे देखेंगे कि ओम प्रकाश राजभर जी योगी जी के साथ बैठ के क्या क्या करेंगे।
0: ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन। आइए, प्रदीप भंडारी जी, अतुल लौंडे पाटिल जी, जल्दी से आ जाइए। एक एक मिनट का रिबटल राउंड होगा जिसमें छात्रों के सवाल, जजेस के सवाल, जो भी आपको अपना बोलना है, किसी की भी कोई दलील हो जिस पर आपको काउंटर करना है रिबटल में, ऑल राउंड टाइम आपका 7 सेकंड का अतुल लौंडे पाटिल जी शुरू होता है अब।
4: मैं तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि 2G 3G सब एक्विट हो गए साहब। जज ने कहा मैं 7 साल 11 बजे से 7 बजे तक बैठा रहा, सबूत का इतना चिट्ठा नहीं लाया, तो झूठ बोलना थोड़ा कम कीजिए क्योंकि संगत का असर होता है, आपके ऊपर होते हुए दिखाई दिया है। आपने कहा पाताल से ढूंढ के लाएंगे, पाताल से तो पुलवामा वाले को ढूंढ के ला रहे थे, 7 साल हो गए। पाताल से तो आप पहलगाम, पाताल से आप पहलगाम वालों को ढूंढ के लाने वाले थे, स्केच भी गलत निकला, और हमारी 26 महिलाएं जिसमें कि 2 बहनें मेरे महाराष्ट्र की है वो तो विधवा है, उनको तो कभी न्याय नहीं मिला, और जो 17 मर गए थे ना उनको जाके पूछा नहीं है। तो ये दुबे जी है, एक संतोष दुबे जी जिनका बड़ा ये था, 17 हड्डियां टूटी थी, वो क्या कहते एक बार ये भी सुन लो आप, तर्क देते समय ये भी समझ लो कि आजादी के जंग में आरएसएस का कोई रोल नहीं था, आरएसएस तो अंग्रेजों के साथ मिली हुई थी, सबूत है मेरे पास। तो फिर उन्होंने देश के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, झूठ मत कहिए, मेरे पास सबूत है,
5: झूठ है,
4: सबूत है, रॉयल सीक्रेट सर्विस करके आरएसएस का अच्छा लॉन्ग, सही लॉन्ग फॉर्म है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एसआईटी जो है ना आई वॉश है, क्योंकि ये पूरे देश भर में चल रहा है। एक ऑडिटर ने 2021 SBI ने ऑब्जेक्शन लिया, यहाँ पर चोरी हो रही है, फिर भी चोरों को संभालने का काम चौकीदार ने किया है, तो ये बात जो है राम के साथ चोरी इन्होंने की है, राजनीति इन्होंने की है, बदनामी इन्होंने किया।
0: रिबटल राउंड में आपका 60 सेकंड का समय शुरू होता है।
6: देखिए बात रही, किसी ने भी चोरी करी हो, भले वो ट्रस्ट का हो या ना हो, भले वो राजनीतिक व्यक्ति हो या नहीं हो, इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। अगर आप देखेंगे सेक्शन 61 ऑफ भारतीय न्याय संहिता इंक्लूड करी गई है, जिसमें कॉन्स्पिरेसी की बात करी गई है, तो हम किसी को छुपाने वाले नहीं है। याद करिए सबरीमाला के अंदर सोने की चोरी हुई थी, सीपीएम और कांग्रेस और इस सीपीएम और कांग्रेस की सरकार को कलकत्ता केरला हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, जिसमें कांग्रेस और सीपीएम के लोग जो है एक्यूज हुए थे। तो यहाँ कोई किसी को नहीं बचा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मामला है, हम पूरे क्लियर है, क्योंकि हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं आस्था की बात है। पर मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, इनके पूरे जीवन काल में इन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए किया क्या, इसलिए हम इनको काल निधि बोल रहे हैं। ये इन्होंने किया, आज ये मंदिर बना है, इसमें अंजना जी से डिसएग्री, हमारी इसलिए कंट्रीब्यूशन है क्योंकि हमने कपिल सिब्बल जैसे वकील को नहीं बैठाया जिसने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर 2029 के चुनाव के बाद बनना चाहिए। हमने कहा कि मंदिर कानूनी रूप से बनना चाहिए, यह हमें और इनमें फर्क है। ये तो राम जन्मभूमि को राम जन्मभूमि तक नहीं कहते, इसीलिए ये काल निधि लोग हैं, इसीलिए हमको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि आदमी नियत को जानता है।
0: रिबटल राउंड में आप दोनों ने बढ़ चढ़कर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, अपनी जगह पर जा सकते हैं। भाई ताली बजा दीजिए, दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई। टॉपिक पे रहिएगा, टॉपिक पर बोलिएगा, एक दूसरे पर और एक दूसरे को देखकर नहीं, सामने देखकर बोलिएगा, ठीक है? आपका इस विषय पर बोलने का अनुराग भदौरिया जी, रिबटल राउंड में 60 सेकंड का समय शुरू होता है।
7: देखिए मुझे लगता है कि इसमें तो मुझे 4 लाइनें याद आती जो मुझे बता देनी चाहिए। कहते हैं ना, इंतहा हो गई भ्रष्टाचार की, आई ना कुछ खबर रोजगार की, पहले था जो यकीन भाजपा वो नहीं, अब जगह ये हुई लूटपाट की, इंतहा हो गई भ्रष्टाचार की। कमाल है भाई। अब इनके देखो, इन पे हमने पकड़ा इनको कि वहां पे चोरी हो रही थी, तो इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि मेरे साथ में आवाज से आवाज मिलाते कि विपक्ष ने प्रभु राम के चढ़ावे में चोरी की बात उजागर की है, तो चलो प्रभु राम की बात है, सनातन की बात है, हम साथ मिलकर इसको सोल्यूशन करते हैं, क्योंकि सनातनियों का मामला है। लेकिन उन्होंने उसको पार्टीबाज बना दिया, प्रभु राम को अपनी तरफ की बात करते हैं कि मंत्र हमने बनाया। अरे आपने नहीं मानी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना, आपने अपने आदि वहां रखे क्यों? चोरी करने के लिए, लूटपाट करने के लिए। ये आस्था का विषय है और आपने आस्था के आस्था में
0: समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। रोहित जी, इस विषय पर रिबटल राउंड का आपका 60 सेकंड का समय शुरू होता है। आप
8: त्रेता काल में अवतरित प्रभु राम के जन्म भूमि पर जाने का फुर्सत विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को उस समय भी नहीं था जब वो सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि थे, आज तो खैर है ही नहीं। लेकिन अभी हमारे एक सम्मानित साथी जो देश के बहुत बड़े जनाधार के नेता हैं, जिन्होंने कई चुनाव लड़ा और सारे चुनावों में विशेष जीत अर्जित कर उत्तर प्रदेश के सदन की शोभा बढ़ाने का काम किया है, ऐसे महान नेता ने सैफई महोत्सव में गीत गायन से प्रेरित होकर एक गाना यहाँ गुनगुनाया। इन लोगों ने रामायण से प्रभावित होने का काम नहीं किया, अयोध्या जाकर दीपावली मनाने का काम नहीं किया, सरयू नदी में जाकर जलाभिषेक करने का काम नहीं किया, राम जी के जन्मभूमि पर जाकर के राम भजन गाने का काम नहीं किया। इन लोगों ने क्या किया? तो बड़े बड़े हीरो हीरोइन, बॉलीवुड हॉलीवुड, जापान उद, चाइना उद, सिंगापुर उद, दुबई उद, यूएई उद, पाकिस्तान उद, अफगानिस्तान उद, खजाकिस्तान उद, और जाकिर नायक के ट्रेनिंग स्कूल से निकलकर खाली देश विरोधी नीतियों को बढ़ाने का काम किया, ये रामद्रोही है।
0: समय समाप्त, माफ नहीं करें। समय समाप्त, आप दोनों का धन्यवाद। त्रिपाठी राउंड में जल्दी से आ जाइए, द्विवेदी जी और सतीश प्रकाश जी,
3: दोनों वक्ताओं का धन्यवाद।
0: हाँ,
3: डिबेट करने के लिए,
0: डिबेट करने के लिए। इस पर बोलने का आप शुरू करेंगे? सतीश जी, आपका 60 सेकंड का रिबटल टाइम शुरू होता है।
2: देखिए, धर्म जो है एक आस्था का विषय है, धर्म धंधा नहीं हो सकता, और अगर धर्म धंधा है तो हर कोई उसमें अंधा है। अगर धर्म धंधा है तो हर कोई उसमें अंधा है, और पीछे मुड़के देखा मैंने, आधा देश भूखा आधा देश नंगा है। जिस देश की 84% आबादी सरकार द्वारा दिए गए अनाज पर आधारित हो, जिस देश की सरकार पेपर लूटती हो, जिस देश की सरकार बेरोजगारों की रोजगार लूटती हो, जिस देश की सरकार इस देश का भाईचारा लूटती हो, जिस देश की सरकार इस देश में कहीं ना कहीं इस देश की एक संस्कृति है उसको लूटती हो, ऐसी सरकार को बना रही रहना चाहिए। मेरा कहना है, आप रामदूत हैं, आप राम के नाम पर राजनीति कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो भ्रष्ट लोग हैं उनको सजा दीजिए। सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, अगर आप चाहो तो CBI जांच करा लो। और एक छोटी सी बात कहूंगा, एक शाइन बोर्ड की तर्ज पर कहीं ना कहीं सरकार का

0: उत्तर प्रदेश को 500 वर्ष पीछे कर दीजिए। आज उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाल है, इसलिए लगातार एनडीए की
1: समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। आप दोनों जाकर बैठ सकते हैं, कम से कम रिपोर्ट लो। हाँ पूछ लीजिए जल्दी से।
2: द्विवेदी जी, आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो ये साधु समाज संत समाज सब लोग कह रहे हैं सीबीआई मांग की जांच होनी चाहिए, तो सीबीआई जांच में क्या दिक्कत है?
0: नहीं बिल्कुल होगा, उसका भी समय है, उसका भी समय है। किसी भी चीज में बहुत जल्दी जल्दबाजी भी ठीक नहीं होता है। अभी अभी समय है, दो चार दिन दस दिन। मैंने कहा ना कि आप एक महीने में देखिए क्या क्या होने जा रहा है।
3: सुनिए मेरी बात।
0: नहीं,
3: एक अगर क्राइम होता है जितना समय निकल जाएगा एविडेंस खत्म हो जाएगी, चीजें भटक जाएगी, सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपकी नीयत में खोट है, आपकी नीयत में खोट है। आप राम के साथ पाक करना चाहते हैं, आप न्याय नहीं देना चाहते, आपका खोट है। सबको बचाओगे,
1: एक प्रश्न मेरा भी है,
3: चोरों को बचाओगे।
1: गुरु जी एक प्रश्न मेरा भी है, एक प्रश्न मेरा भी है। इस मुद्दे को हम लोग लगातार आज तक पर उठा रहे हैं। सीबीआई को आप स्वायत्त एजेंसी मान रहे हैं?
3: बिल्कुल नहीं। देखिए सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल सुनिए सुनिए। आपके पास ऑप्शन क्या है? क्या मैं अमेरिका में रहता हूँ? क्या मैं यूरोप में रहता हूँ? मैं भारत में रहता हूँ?
1: जांच करेगी तो विश्वास होगा ना?
3: अगर वो सही से काम नहीं कर पा रही है तो ये उन एजेंसियों का दोष है। लेकिन हमको विश्वास है, हमको विश्वास है मैम, हमको विश्वास है। दो चीजें
1: आप लोग आरोप सीबीआई
3: का लगा के कार्यक्रम में दो चीजें मांग रहा हूँ। राम भक्तों से दो चीजें मांग रहा हूँ, राम की सरकारों से दो चीजें मांग रहा हूँ। राम मंदिर का जो जो नियंत्रण है, प्रबंधन है, वो कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड की तर्ज पे हो, उसमें सरकार की जिम्मेदारी निश्चित हो। जो साधु संत लोग हैं वो मैनेजमेंट बढ़िया नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं एक आईएएस आदमी हुआ बैठना चाहिए। प्रदेश सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। गलती फिर होगी, चोरी फिर होगी, निश्चित रूप से चोरी होगी, चोरी। और मेरा मानना यह है कि ट्रस्ट का जो
1: बिहेवियर है, ठीक। धन्यवाद
3: जी।
1: आई अब देखिए पिच बदल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, सीबीआई पे हो, नहीं हो,
4: सुप्रीम कोर्ट के जजों पे भी विश्वास नहीं रखते ना, इनसे साइन करवा लीजिए। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज पे सवाल उठाए।
1: तो चलिए वोटिंग के लिए आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं। हमारे तमाम दर्शक जो घर पर भी मौजूद हैं, वो QR कोड स्कैन करके अपना वोट इस मुद्दे पर डाल सकते हैं। चढ़ावा चोरी के मुद्दे से यूपी में विपक्ष को चुनावी फायदा होगा, इस विषय पर आप घर बैठे भी अपना वोट डाल सकते हैं। अच्छा आप लोग स्टूडेंट्स जितने हैं वोटिंग ही नहीं, तब तो फिर वोटिंग कैसे करेंगे? चलिए अब इस विषय में दिक्कत ये हो रही है कि यहां पर वोटिंग करने में एक समस्या आ रही है। अब जजेस इस पर फैसला लें, क्योंकि ये लगभग यहां पर 10 20 25 के करीब लोग हैं जो छात्र संस्कृत विश्वविद्यालय से आए हैं, उनके पास मोबाइल फोन नहीं है, तो क्या किया जाए?
2: देखिए ये वोटिंग का जो फैसला वो है वो हो गया, लेकिन आज की बहस में एक से एक सुंदर तर्क सुनने को मिले और हम तीनों ने ये तय किया था कि अतुल लौंडे पाटिल जो है आज बहसबाजी करके किताब के हाथ
1: बहुत बहुत बहुत मुबारक, बहुत मुबारक अतुल लौंडे पाटिल जी, आपको बहुत बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई। तो आज के बहसबाजीगर बने हैं अतुल लौंडे पाटिल जी, और अच्छा है महाराष्ट्र से आए भी, तो उनके लिए ये सार्थक साबित हुई है बहस। नागपुर से आए हैं। इसी के साथ बहस बस कर इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। इसी के साथ बहस बस कर इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
5: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Akaje.
6: जम्मू कश्मीर के शोपियां से बड़ी खबर आपको देते हैं, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादियों को घेरा है। ये बड़ी खबर शोपियां से, जहां सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में इस समय ये एनकाउंटर चल रहा है। दो आतंकवादियों को घेरा गया है। घिरे हुए आतंकवादियों की जो तस्वीरें वो सामने भी आई, हम आपको तस्वीर भिन्न आतंकवादियों की दिखा रहे हैं। दोनों का चेहरा इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। दोनों पूरी तरह से पैक्ड, हथियारों से लैस, पीछे बैग टंगा हुआ दिखाई दे रहा है और सुरक्षा बलों ने इन्हें घेर लिया है। इस समय एनकाउंटर चल रहा है शोपियां में, इस समय यह एनकाउंटर चल रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अशरफ वानी भी इस खबर पर जुड़ गए। अशरफ, एनकाउंटर से जुड़ा हुआ अपडेट दीजिए, इस समय क्या कुछ वहां पर चल रहा है? क्या जबरदस्त फायरिंग हो रही है?

0: राजीव, दरअसल ये एक बहुत बड़ी सफलता बन सकती है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि काफी सालों से जो इसमें लश्कर का एक टॉप कमांडर फंसने की जो बात सामने आ रही है, जाकिर नायक जिसका नाम है, और उसका नाम पहलगाम आतंकी हमले में भी आया था जब एनआईए उसकी जांच कर रहा था कि शायद वही एक स्थानीय आतंकी था जो पाकिस्तानी आतंकियों के साथ बैसरन वैली में पर्यटकों पर हमले में जिम्मेदार था। उसके बाद जो है काफी समय से तलाश थी, लश्कर का ये टॉप कमांडर है A++ जो कि सबसे बड़ी सूची के आतंकी है, उसमें इनका नाम था। आज तब ये ऑपरेशन शुरू हुआ, पिछले कई घंटों से चल रहा था, यहाँ तक कि पिछले 24 घंटों से ये ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल सुरक्षा बलों की तरफ से और सेना की तरफ से कई इलाकों में कई छुपे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनमें हरकत पर जो भी कोई आतंकी हरकत होती है उस पर नजर रहती है 24 घंटे। तो उसी में ये तस्वीर एक कैद हुई थी, जब उसकी पहचान हुई तो पता चला कि ये जाकिर गनाई है किसी आतंकी के साथ। उसके बाद उस इलाके में पहले सर्वेलेंस रखी गई, उसके बाद आज सुबह जब तलाशी अभियान लिया जा रहा था वहां पर कुछ गोलीबारी हुई और उसके बाद पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी गई है। सेना की राष्ट्रीय राइफल्स के साथ साथ जो है पैराट्रूपर्स, जो भारतीय सेना का विशेष दल
1: ठीक
0: है,
1: है
0: वो भी इस ऑपरेशन में लाए गए
1: अशरफ,
0: हैं, और
1: आप इस
0: कोशिश यही है
1: ऑपरेशन पर
0: कि
1: नजर
0: इन
1: बनाए रखेगा,
0: आतंकियों
1: अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया, क्योंकि लश्कर का टॉप कमांडर बताया जा रहा है और अभी घिरा हुआ है। सुरक्षा बल किसी भी समय उस कामयाबी की जानकारी दे सकते हैं। इस समय लेकिन एनकाउंटर चल रहा है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.
3: TuneIn has all of your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news...
4: After multiple assassination attempts, they can't even get...
5: They're reliable.
6: Always when I need them.
3: To live sports action.
7: One-hand jam by LeBron on the break.
8: That's another three, Steph Curry.
3: And your favorite music.
9: Well, the dawn begins to crack.
3: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
10: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का, और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
11: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना, ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
12: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
13: ये मजबूर हैं, पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
14: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
3: वी आर ओवर जिमी।
4: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
5: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
6: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
7: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
5: मतलब
7: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, ओटीटी सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
5: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
7: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। पीएनबी, मेरा अपना बैंक।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: वी आर ओवर जिमी।
3: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: राम मंदिर के दान में हुए गबन की जांच कर रही एसआईटी एक बार फिर अयोध्या पहुंची है। इस बार जांच का दायरा काफी बड़ा है। दान में हेरफेर की आंच अब बड़े अधिकारियों तक पहुंच गई है। सेकंड राउंड के पहले दिन एसआईटी की टीम ने बंद कमरे में 8 घंटे की मैराथन पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक गोपाल राव, चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा से भी पूछताछ की गई है। हालांकि एसआईटी और ट्रस्ट की ओर से अभी तक पूछताछ की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। एसआईटी टीम का नेतृत्व आईपीएस अधिकारी किरण एस कर रहे हैं। एसआईटी मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था, दान संग्रह की प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की भी बारीकी से जांच कर रही है। इस बीच चंपत राय का बयान सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने अपने करीबी सहयोगियों से कहा है कि अयोध्या में उनकी सेवा पूरी हो चुकी है और चंदे में हेराफेरी के विवाद के बाद वे दाग के साथ काम जारी नहीं रखेंगे। इस बीच मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आगे की पूछताछ के लिए अविनाश शुक्ला को पुलिस ने रिमांड पर लिया है, क्योंकि जांच के दौरान सबसे ज्यादा कैश 20,39,000 अविनाश शुक्ला के घर से बरामद किया गया था। कैश के साथ पुलिस को अमेरिकी डॉलर और सोने चांदी के जेवरात भी मिले हैं। समझ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।

की पूछताछ चिन्नू यादव से भी सवाल जवाब, ममता का सरकार पर तंज, कहा राम का नाम क्या बदनाम। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहले यूपी के दौरे पर नीतीन नवीन का चुनावी मंत्र, पदाधिकारियों से कहा विपक्ष के नकारात्मक राजनीति के जाल में ना फंसे, राज्य के विकास पर करें फोकस। पीएम मोदी ने विपक्ष पर युद्धकाल में देश को डराने का लगाया आरोप, राजस्थान के बालोतरा में बोले संकट में राष्ट्र हित को आगे रखकर फैसला, देश पर नहीं डाला बोझ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी, कैमरे में कैद दोनों दहशतगर्द, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। मूसलाधार बारिश से पानी पानी, मुंबई की ओर और बढ़ सकती है मुश्किलें, कल भारी बरसात का रेड अलर्ट जारी, बीएमसी की लोगों से अपील, जरूरी हो तभी निकलें बाहर।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और वॉर रूम में आपका स्वागत है। वॉर रूम में सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आज किन खबरों पर हमारी नजरें होने वाली हैं। आज हम ईरान अमेरिका तनाव और उससे जुड़े घटनाक्रम पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पड़ोसी देश पाकिस्तान से आ रही एक बड़ी खबर। पीओजेके यानी पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन अब विद्रोह का रूप लेता दिख रहा है। लोग सिर्फ अपने हक की मांग के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान को उसकी हकीकत याद दिलाने के लिए भी सड़कों पर उतर रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान ने प्रतिबंधित ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान को बंटवारे के करीब 78 साल बाद अचानक याद आने लगा है कि उसकी पहचान सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी है। आखिर इसके पीछे पाकिस्तान की क्या रणनीति है, इसका भी विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात उस तस्वीर की जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं।

मौत क्या कर सकती है, ये जानना है तो तेहरान की सड़कों को देखिए। देखिए जो काम जिंदगी न कर सकी वो मौत कर गई।

0: और ये भी देखिए कि पीस डील के मंच पर बैठे एक देश की आवाम का क्या संदेश है। साथ ही ये भी देखिए कि 4 जुलाई यानी अमेरिका के आजादी के ही दिन जनाजे की भीड़ ने क्या पैगाम दिया। युद्ध और शहादत में क्या अंतर है? दोनों के बीच सिर्फ शब्दों का नहीं, सोच का फर्क है। एक हिंसा है, दूसरी मंजिल। युद्ध लड़ा जाता है, शहादत होती है। अली खामेनेई जानते थे कि अमेरिका हमला करेगा, दूसरे देश में जाने का विकल्प था। युद्ध हुआ तो मौत निश्चित है, लेकिन खामेनेई ये भी जानते थे कि मौत अनिश्चित कब थी। यही उनके दिमाग में इमाम हुसैन की वो बातें आई होंगी कि इज्जत और हक के लिए दी गई जान जिल्लत भरी जिंदगी से कहीं बेहतर। मुहर्रम के महीने में हुसैन की शहादत वाले दिनों में खामेनेई के जनाजे का मतलब ईरान के लिए बड़ा हो जाता। 86 साल के अली खामेनेई अपने पीछे कोई घर मकान, जमीन जायदाद या सोना चांदी नहीं छोड़ गए, बल्कि उन्होंने अपने पीछे एक विचारधारा और एक देश छोड़ा है जो आज भी कह रहा है कि हक और इंसाफ के लिए खड़ा होना इंसान होने का पहला नियम है। सुरक्षा, खतरे और सत्ता के बीच इंसान अपने समय को खुद परखता है और तब विचार जन्म लेते हैं। ऐसे ही एक विचार का जन्म हुआ अली खामेनेई की मौत के साथ, जो कहता है कि जुल्म के आगे झुकना नहीं, चाहे जान चली जाए। उधर 28 फरवरी से पहले तक जिस अमेरिका को दुनिया पावर सेंटर कहती थी, अब वही अमेरिका थोड़ा घबराया हुआ दिख रहा है। ट्रंप की बेचैनी अब किसी से छिपी नहीं है, धमकियां अब भी जारी हैं, लेकिन अब वो बेमानी लगती हैं।
1: We knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave him a week off for a funeral because we're nice. It's true.
0: सच है, जुल्म के आगे जो खड़ा रहता है वही जीतता है। खामेनेई कभी मरा नहीं करते, खामेनेई हमेशा जिंदा रहते। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध में 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर की एयर स्ट्राइक में मौत हो गई थी, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते उनका अंतिम संस्कार नहीं हो सका था। कई तरह के सवाल उठने लगे थे कि क्या बमबारी के बाद खामेनेई का पार्थिव शरीर बचा है, अगर हां तो कैसे सुरक्षित रखा गया, कब होगी जनाजे की नमाज, क्या खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई इसमें शामिल होंगे। अब ईरान में उनके अंतिम क्रिया की शुरुआत हो चुकी है। ईरान के सबसे बड़े दुश्मन कहे जाने वाले अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस यानी 4 जुलाई से शुरू होकर 9 जुलाई तक चलने वाले इस अंतिम क्रिया को ईरान का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन कहा जा रहा है, जो सिर्फ जनाजा नहीं बल्कि दुनिया के सामने एक शक्ति प्रदर्शन जैसा भी होगा।

0: ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को सुपुर्द खाक करने की रस्में शुरू हुई तो आखिरकार 4 महीने का इंतजार खत्म हुआ। इसके साथ ही खत्म हुए कई सवाल भी। क्या धमाकों के बावजूद खामेनेई का पार्थिव शरीर सही सलामत रहा? खामेनेई के पार्थिव शरीर को कैसे 4 महीने तक संभाल कर रखा गया? क्या मोजतबा खामेनेई अपने पिता के जनाजे में शामिल होंगे? इतने महत्वपूर्ण आयोजन में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या अंतिम संस्कार में किसी हमले का डर हो सकता है? क्या खुमैनी और सुलेमानी के जनाजों की भगदड़ का डर इस बार भी ईरान को है? आंखों में आंसू, दिलों में मातम, जहन में गुस्सा और जुबान पर एक ही नाम, आयतुल्लाह खामेनेई। ईरान गम में है। ये गम है सुप्रीम लीडर की मौत का। ये गम है उस शख्स की विदाई का जिसने 4 दशक तक ईरान की राजनीति, सत्ता और पश्चिम एशिया की रणनीति की दिशा तय की। ये गम है उस शख्स का जिसने अमेरिका और इजराइल को जीतने नहीं दिया। तेहरान से लेकर मशहद तक लाखों लोग अपने रहबर को आखिरी सलाम देने उमड़े हैं। ग्रैंड मोसल्ला मस्जिद में लोगों की जियारत के लिए 5 ताबूत रखे गए। अली खामेनेई के साथ उनकी बेटी, दामाद, बहू और पोती का ताबूत भी था।
1: और जब ये घटनाक्रम है, उस समय आज तक संवाददाता सुमित चौधरी ईरान में मौजूद हैं। ईरान से सभी लाइव अपडेट्स हमें दे रहे हैं। सुमित, सबके बीच सड़कों पर जो लोग नजर आ रहे हैं, दुख, गुस्सा, क्या है उनका भाव?
2: देखिए, लोगों में एक तरीके का रिस्पेक्ट है, क्योंकि देखिए सुप्रीम लीडर का जनाजा या उनको जो सुर्दे खाक किया जाएगा 125 दिन के बाद किया जाएगा। लोग इस वक्त का इंतजार बहुत लंबे समय से कर रहे थे। कहा जा रहा है कि देखिए ईरान की इतिहास में इससे बड़ा सामूहिक, आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा लोगों का जमावड़ा कभी नहीं हुआ। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के जुटने की आशंका है। जब आपको खुमैनी साहब के 1989 में, जब उनके मारे जाने के बाद, उनके मर जाने के बाद उनका जब सुर्दे खाक किया गया था, तब भी इस तरीके का कियोस, इस तरीके बहुत ही लोगों का जमावड़ा देखा गया था। लोगों ने उनके शव के साथ कई किलोमीटर तक यात्रा की थी। लेकिन अब यहाँ पर हालात दूसरे हैं, क्योंकि इस समय ईरान एक युद्ध के सिचुएशन में है और यहाँ पर इस समय सरकार के साथ साथ, या फिर आप कह सकते हैं सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई, जो उनके बेटे हैं, वो चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया को मैसेज जाए कि यहाँ के लोग एकजुट हैं, रिजिम के साथ हैं। और शायद इसी वजह से लोगों में एक तरीके का, आप कह सकते हैं, एक मातम का माहौल है। ये पूरा का पूरा इवेंट या फिर पूरा का पूरा प्रदर्शन एक मातम को लेकर है कि उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया गया। और शायद इसी वजह से लोग अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि ईरान कंसोलिडेटेड है और ईरान कोई भी बाहर का इंटरफेरेंस यहां के लोगों के लिए, यहां की सरकार में, यहां के रिजिम में बर्दाश्त नहीं करेगा।
0: 28 फरवरी 2026 को इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए आयतुल्लाह अली खामेनेई का जनाजा 4 महीने बाद 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच दफनाने और आम लोगों की जियारत के लिए निकाला जा रहा है। तेहरान से शुरू होकर इराक के नजफ और करबला होते हुए मशहद में दफनाए जाने तक ये 3000 किलोमीटर की अहम यात्रा है। ईरान सरकार के लिए ये सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं, बल्कि तारीख का सबसे बड़ा आयोजन है। लगभग 3000 किलोमीटर लंबी इस अंतिम यात्रा को द सेंड ऑफ टू ईरान्स लीडर ऑफ मार्टर्स का नाम दिया गया है। तय कार्यक्रम के मुताबिक 9 जुलाई को खामेनेई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इससे पहले ईरान और इराक में 5 दिनों तक अंतिम संस्कार से जुड़े धार्मिक और राजकीय कार्यक्रम होंगे।
3: या हुसैन।
0: 2 जुलाई को आधिकारिक कार्यक्रम से पहले ही ईरान के लोगों के लिए अली खामेनेई का ताबूत दर्शन के लिए रख दिया गया। तीन जुलाई से दुनिया के कई देशों से डेलीगेट्स का आना शुरू हो गया था। 3 तारीख को ही एक खास कार्यक्रम में राष्ट्रपति पेजेश्कियन समेत कई बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में खामेनेई को श्रद्धांजलि दी गई। अंतिम विदाई देने के लिए देश के शीर्ष नेता और अधिकारी एक साथ नजर आए।
1: इस शोक समारोह में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिबाफ, विदेश मंत्री अब्बास अरक्ची, मुख्य न्यायाधीश गुलम हुसैन मोसेनी, पहले ईरानी सर्वोच्च नेता रूहुल्ला खुमैनी के पोते हसन खुमैनी और खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई के ससुर समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। वैसे ये पूरा कार्यक्रम 6 दिन चलना है। शुरुआत तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला मस्जिद से हुई, जहां पर खामेनेई का पार्थिव शरीर रखा गया आम जनता के दीदार के लिए। 5 जुलाई को भी ये जारी रहेगा। 6 जुलाई को तेहरान में इमाम हुसैन स्क्वायर से आजादी स्क्वायर तक 10 किलोमीटर लंबा मातमी जुलूस निकाला जाएगा। 7 जुलाई को खामेनेई के शव को ईरान के शहर कौम ले जाया जाएगा, जो शिया उलेमा और मदरसों का सबसे बड़ा केंद्र है। 8 जुलाई को शव यात्रा इराक में नजफ और करबला जाएगी। पहली बार ईरान के किसी सुप्रीम लीडर का जनाजा सरहद पार करके इराक जाएगा। जनाजे को नजफ में हजरत अली और करबला में इमाम हुसैन की दरगाहों पर ले जाया जाएगा। ये शिया समुदाय की सबसे पाक जगह है, जहां पैगंबर मोहम्मद के दामाद हजरत अली और उनके नवासे हजरत इमाम हुसैन की कब्रें हैं। 9 जुलाई को इराक से लौटने के बाद आयतुल्लाह खामनेई को उनके जन्म स्थान मशाद ले जाया जाएगा। यहाँ शिया इस्लाम के 8वें इमाम रजा की मजार में उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। हालांकि अब तक ये साफ नहीं किया गया है कि जनाजे की नमाज की इमामत कौन करेगा। ये अंतिम संस्कार का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। कुछ जानकारों का कहना था कि मुज्तबा खामेनेई स्वयं पिता की नमाजे जनाजा की अगुवाई कर सकते हैं, लेकिन ईरान की तरफ से इनकार कर दिया गया।
4: You are very close to the family.
5: Yes.
4: You are close to. You grew up, in fact, with the Supreme Leader Mujtaba Khamenei.
5: Yes.
4: Is he going to come?
5: Actually, I was in Iran last week, and I visited some of my friends who met him, and they said he wants to come out. Even he wanted to lead people by Salat, because we have to pray on the dead body of Ayatollah Khamenei. But the security doesn't allow him to come. They said it's very dangerous and we cannot provide security for him. And I think he will not come out.
1: ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के करीब 4 महीने बाद उनके अंतिम विदाई की शुरुआत हो चुकी है और आने वाली 9 जुलाई को उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें तेहरान की सुरक्षा व्यवस्था पर भी टिकी हैं। अमेरिकी इजराइल युद्ध के बाद ईरान की सड़कों पर सुरक्षा के ऐसे कड़े इंतजाम देखे जा रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखे, और चप्पे चप्पे पर कमांडोज तैनात कर दिए गए हैं। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से हमारी ये खास रिपोर्ट। ईरान की राजधानी तेहरान इस वक्त पूरी तरह से एक हाई सिक्योरिटी जोन में बदल चुकी है। जनाजे को देखते हुए सेंट्रल तेहरान की सड़कों पर दंगा नियंत्रण पुलिस, आर्मर्ड व्हीकल्स और भारी संख्या में बासिज के सैनिक मुस्तैद किए गए। भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां कोई मौका छोड़ने वाले नहीं है। ईरानी शासन के सामने केवल बाहरी ताकतों का ही खतरा नहीं, बल्कि बड़ी भीड़ जो इस जनाजे में शामिल होने वाली है उसको लेकर भी है, क्योंकि ईरान में जनाजों में भगदड़ का इतिहास रहा है। यही कारण है कि ईरानी सरकारी रेडियो और टीवी चैनलों पर लगातार जनता के लिए सेफ्टी गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं। जनाजे में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए। युद्ध के बाद पहली बार ईरान के कई बड़े सैन्य और राजनीतिक नेता एक साथ नजर आए हैं। इराक, सऊदी अरब, ओमान, आर्मेनिया और ताजिकिस्तान समेत कई देशों के शीर्ष नेता और भारत, चीन, तुर्की, ओमान सहित करीब 100 देशों के प्रतिनिधिमंडल तेहरान में इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी तेहरान पहुंचे हैं। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव भी वहां मौजूद हैं। बड़ी संख्या में विदेशी नेताओं और हमास के प्रतिनिधियों की मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा का घेरा कई स्तरों पर मजबूत किया गया है। युद्ध के साए में खड़े ईरान के अंदर सुरक्षा चिंताओं का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ईरान की मौजूदा सरकार ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि रविवार की सुबह जनाजे की अहम नमाज कौन पढ़ाएगा। ईरान को हमलों का डर है। आईआरजीसी कमांडर मेजर जनरल अहमद वाहिदी ने दुश्मनों को साफ शब्दों में चेतावनी दी, हिमाकत हुई तो बदला विनाशकारी होगा। इशारा और निशाना साफ है, ईरान जानता है कि वो युद्ध के बीच खड़ा है। सुमित, सबसे पहले तो ये बताइए कि बहुत हिसाब से हम देख रहे हैं कि चाहे भगदड़ का डर हो या फिर इस बात को लेकर संशय कि मौजूदा सुप्रीम लीडर पर किसी तरीके का प्रहार ना हो जाए, तो उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता की वजह से ही ये फैसला लिया गया इस जो अंतिम यात्रा है उसको लेकर कि वो इसमें शामिल नहीं रहेंगे, तो सुरक्षा के कैसे इंतजाम आपको दिख रहे हैं वहां पर?
2: श्वेता, जब आप यहाँ पे सुरक्षा के इंतजामों की बात करें तो कहा जा रहा है कि 4 से 5 लोग सुरक्षाकर्मी, अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, बाइकों पर इस तरीके से पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। इसके अलावा अलग अलग जगहों के ऊपर आपको आईआरटीसी या फिर जो उनकी बसेस फोर्स है वो भी नजर आ जाएगी, और लोकल पुलिसिंग के साथ साथ यहाँ पर वॉलंटियर्स भी यहाँ पर मौजूद है। कहा जा रहा है कि करीबन 40,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स इस समय या फिर जो काम कर रहे हैं तेहरान की सड़कों पर और हर जगह पर इस तरीके के कॉर्डन्स कर दिए गए। सुरक्षा के बहुत ज्यादा पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि इसराइल की तरफ से जो धमकी मिली थी उसके बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और भी कर दिए गए, और यहाँ के हालात ऐसे हैं कि हर जगह पर चप्पे चप्पे पर आपको फोर्सेस की मौजूदगी नजर आ जाएगी। हर बिल्डिंग की तलाशी ली गई और हर बिल्डिंग के आसपास भी पुलिस फोर्सेस की तैनाती की है, यानी इस समय पूरा तेहरान का इलाका एक छावनी में तब्दील है, जहाँ पर हर जगह पर पुलिस और उनकी पैरामिलिट्री फोर्सेज और आईआरजीसी की मौजूदगी है।
1: और इसके साथ ही अमेरिका इसराइल के जो हमले चलते रहे, जो युद्ध चलता रहा, उन हमलों के बाद ईरान के हालात कैसे दिख रहे हैं आपको?
2: देखिए, हालात अभी ऐसे हैं, आपको याद होगा कि इससे जब पूरा ये नमाज जनाजा जब किया जा रहा था इसको लेकर अनाउंस किया गया, उसी बीच इसराइल की तरफ से एक बार फिर धमकी आई कि मुस्तफा खामनेई उनके टारगेट पर है, और मुस्तफा खामनेई इसलिए अपने पिता के जो अली खामनेई है उनके जनाजे नमाज जनाजे के अंदर शामिल नहीं हो रहे, सुरद खाक जब उनको मसद में किया जाएगा शायद वो वहां पर भी ना हो। लेकिन यहां पर इस समय सिचुएशन बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि अंदर खाते आप कह सकते जमीन के नीचे क्या चल रहा है, तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही है कि 9 जुलाई को जब ये पूरा समापन होगा उसके बाद ईरान अपना और खड़ा रुख दिखा सकता है। यहाँ की सड़कों पर एक और चीज, अगर आप मेरे पीछे देखें, आपको वो मुट्ठी नुमा चीज, दरअसल वो आपको याद होगा सुप्रीम लीडर यानी इससे पहले जो जो अली खामनेई है उनकी वो हाथ है, और उनके हाथ को प्रदर्शित किया गया हर जगह पर, उनके हाथ को दिखाया गया, अंगूठी उनकी एक पहचान थी उनके हाथ की, जिससे उनके शव की शिनाख्त भी की गई 28 फरवरी के जो एयर स्ट्राइक से, और इसी तरीके के यहाँ पर दिखाया गया उन्होंने, और हर जगह पर लिखा गया वी आर स्टिल अलाइव, और जो उनके कमांडर्स हैं जो मारे गए थे उनके पिक्चर्स को भी हर जगह पर लगाया गया, और शायद ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, वो लगातार लड़ते रहेंगे, और ये लड़ाई उन सैंक्शंस के खिलाफ लगातार उनके एक सिविलाइजेशन के खिलाफ है जो उनको लड़ना उनके लिए मजबूरी है, उनके लिए लड़ना ही पड़ेगा, और शायद यही भावनाएं जो है इस समय तेहरान की सड़कों पर भी नजर आ रही है।
1: शुक्रिया सुमित चौधरी, हमारे संवाददाता सीधे ईरान से, तेहरान की इन सड़कों से वहां की पूरी रिपोर्ट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। अभी के लिए इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: फिलहाल मुसल्ला कॉम्प्लेक्स में ताबूत आम लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जहां परिवार के सदस्य भी मौजूद हैं। तेहरान की सड़कों पर बड़े बड़े बैनरों के जरिए लोगों से एकजुट होने और बच्चों के खून का बदला लेने की अपील की जा रही है। अंतिम यात्रा तेहरान से शुरू होकर शिया धर्म के पवित्र शहरों से गुजरेगी और तय कार्यक्रम के मुताबिक 9 जुलाई को अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगी। इस पूरे दौरान ईरान में हाई अलर्ट रहेगा।
1: वॉर रूम में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात पीओजे के में हो रही बगावत की। आप बने रहिए वॉर रूम में, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
4: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
5: वी आर ओवर जिमी।
6: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा।
6: आप अपना देख लो।
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
10: हमने तब भी सवाल किया था,
11: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
10: हम आज भी सवाल करते हैं,
11: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
10: ऑपरेशन अग्नि,
11: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
10: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई, खबरदार सिर्फ आज तक पर।
12: In association with
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें साथ तक, देखते रहिए आज तक।
14: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमा कुरैशी।
15: ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
16: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अकल नहीं है। इस पे जो बहुत फेमस सीन है वो जो
17: परमिशन लेनी चाहिए ना,
16: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई।
18: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है, लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी,
16: आई फील अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो रुक जाइए।

0: एक ओर एसआईआर की प्रक्रिया कई राज्यों में चल रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। इंडिया ब्लॉक ने सीजेआई सूर्यकांत को पत्र लिखकर ईसीआई और सीईसी के खुले तौर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। 28 जून को लिखे इस खत पर टीएमसी, आप और डीएमके समेत 25 राजनीतिक दलों ने हस्ताक्षर किए हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने खत में लिखा है, विधानसभा चुनावों के एन पहले एसआईआर करना गलत था और इसे गलत तरीके से लागू करना एक बहुत बड़ी विफलता थी, जबकि इलेक्टोरल रोल्स 2002 में डिजिटलाइज होने के बाद से लगातार रिवाइज और अपडेट किए जाते रहे हैं।
1: एसआईआर को लेकर जितनी अनियमितताएं देखने को मिली हैं और खासतौर से एसआईआर के बाद जिस तरह से लोगों के और जिस तादाद में लोगों के नाम कटे हैं, जिस तादाद में लोगों ने इस पर एक नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, तो उसके बाद तो विपक्ष एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ेगा।
2: क्या आपने जिस भाषा शैली में सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखा है, ये वही अहंकारी भाषा शैली नजर आती है जो आपातकाल के समय में दिखाई पड़ती थी।
0: बिहार और बंगाल में बीजेपी विरोधियों के हार के बाद आने वाले यूपी चुनाव के मद्देनजर ये चिट्ठी अहम सियासी मुद्दा बन सकती है। हालांकि जहां चुनाव की निष्पक्षता पर इंडिया अलायंस के ऐसे सवाल हैं, वहीं यूपी में अखिलेश यादव समय से पहले ही चुनाव के लिए तैयार होने का दम भर रहे हैं।
3: अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करेंगे। जो लोग चुनाव नवम्बर में कराना चाहते थे, सितंबर में करा दें, हम लोग तैयार हैं।
0: साफ है एसआईआर पर जारी घमासान के बीच अगला चुनाव यूपी में होना है। ऐसे में विपक्ष अब बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरने की हर कोशिश कर रहा है। आज तक ब्यूरो।

0: जो ई रिक्शा शहरों में सफर का सबसे अहम हिस्सा बन चुके हैं, उन्हें ऐप के जरिए हैक करके वसूली का खेल शुरू हो गया है। चलते चलते शरारती तत्व ई रिक्शा बंद कर देते हैं और मैकेनिक बंद कर पहुंच जाते हैं।
1: ये गाड़ी चालू करी खड़े था तो गाड़ी एकदम बंद हो जाती है टोटल। तो मैंने देखा चालू करके वो चालू नहीं हो रही, चालू नहीं होती। फिर अपन दुकान पे जाते हैं, वे 200 रुपए लेते हैं, चालू कर देते हैं मोबाइल से।
2: अरे बंद हो गई थी हमारी गाड़ी और हमने चालू करवा लिया था।
3: कितने में चालू करवाई?
2: 150 रुपए ले गए थे।
0: ये किसी एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि दिल्ली से लेकर एमपी और यूपी तक के शहरों में ये खेल धड़ल्ले से चल रहा है, जिसकी लगातार शिकायतें की जा रही हैं।
4: पीएटी उसी से वो बराबर में लाकर उसे बटन दबा देते हैं बटन, और वो बंद हो जाती है। और आगे उनके खड़े साथी वो कहते हैं कि लाओ हम इसे चालू कर देंगे, कोई 100 रुपया कोई 200 रुपया लेके, फिर वो उसी ब्लूटूथ से बैट से ऐप से वो चालू कर देता है।
0: कई ऐसे ऐप्स हैं जिनसे ये बैटरी रिक्शा एक क्लिक में बंद किए जा सकते हैं।
5: इस तरीके का ये एक ऐप होता है, जिस ऐप में अगर आप ई रिक्शा के पास कहीं होते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, इसे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन के बाद उन्हें जो है वहाँ पे हैक कर दिया जाता है। और ये आप जो देख रहे हैं, जब हैक हो जाता है तो उसे शुरू करने के नाम पे फिर उनसे पैसे वसूले जाते हैं।
0: तमाम कोशिशों के बाद बैट बीएमएस ऐप पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने बैट बीएमएस, लॉसीजी और इपोच आइकॉन ऐप्स को हटाने के निर्देश दिए हैं। भोपाल से रविश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बीएमएस, लॉसीजी और इपोच आइकॉन ऐप्स को हटाने के निर्देश दिए हैं। भोपाल से रविश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।

0: जनाजे में इस बार ईरान की चिंता सिर्फ खामेनेई की अंतिम विदाई नहीं बल्कि एक ऐसी भगदड़ को रोकना है जो ईरान में बड़े जनाजों की एक पहचान बन गई है। लाखों की तादाद में लोग ऐसे जनाजों में शामिल होते हैं और उनको नियंत्रित करना बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। 1989 में आयतुल्ला खुमैनी के जनाजे में ऐसी अफरा तफरी मची थी कि ताबूत तक भीड़ के बीच फंस गया, कफन फट गया था, शव को हेलीकॉप्टर से निकालना पड़ा था। फिर 2020 में कासिम सुलेमानी के अंतिम क्रिया में मची भगदड़ ने 56 लोगों की जान ले ली। अब इन्हीं दो दर्दनाक हादसों से सबक लेकर ईरान खामेनेई के अंतिम सफर को इतिहास का सबसे सुरक्षित और सबसे बड़ा सुरक्षा अभियान बनाने में जुटा है। करोड़ों समर्थकों की भीड़, कई शीर्ष नेताओं की सुरक्षा और दो देशों के कई शहरों में अंतिम यात्रा का आयोजन, इन सबको देखते हुए इसे ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा सुरक्षा अभियान माना जा रहा है। लेकिन सुरक्षा सिर्फ इजराइल या अमेरिका के हमलों से नहीं बल्कि बात कुछ और भी है। ईरान की मौजूदा तैयारियों के पीछे सबसे बड़ा कारण है उसका जनाजों में भीड़ का इतिहास। तीन जून 1989 को ईरान के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी के अंतिम संस्कार में जो हुआ, ईरान उसको दोहराना नहीं चाहता। जनवरी 2020 को जनरल कासिम सुलेमानी के जनाजे में जो हुआ, ईरान उसको दोहराना नहीं चाहता। दरअसल 3 जून 1989 को खुमैनी का पार्थिव शरीर भी तेहरान के मोसल्ला में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, जहां ग्रैंड आयतुल्ला मोहम्मद रजा गोल पायगानी ने जनाजे की नमाज पढ़ाई थी। लेकिन अगले दिन जब शव को दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था, तब लाखों लोग ताबूत तक पहुंचने और उसे छूने के लिए उमड़ पड़े। हालात इतने बेकाबू हो गए कि सुरक्षा बल भीड़ को नियंत्रित नहीं कर सके। धक्का मुक्की में ताबूत क्षतिग्रस्त हो गया और शव पर लिपटा कफन भी फट गया। आखिरकार प्रशासन को हेलीकॉप्टर से शव को वहां से निकालना पड़ा। दफनाने की प्रक्रिया अगले दिन तक टालनी पड़ी। दावा था कि अंतिम संस्कार में करीब 1 करोड़ लोग शामिल हुए थे। भगदड़ में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए और कई लोगों की मौत हुई। ठीक इसी तरह जनवरी 2020 को बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए कासिम सुलेमानी का अंतिम संस्कार भी भगदड़ का गवाह बना। इराक और ईरान के कई शहरों से गुजरने के बाद जब सुलेमानी का पार्थिव शरीर उनके शहर केरमान पहुंचा, तब भी भीड़ बेकाबू हो गई। भगदड़ और बैरिकेड गिरने से कम 56 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हुए। हालात बिगड़ने के कारण सुलेमानी का अंतिम संस्कार भी टालना पड़ा। इन्हीं दो बड़े हादसों से सबक लेते हुए ईरान इस बार कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता।
1: बात अब पाकिस्तान की होगी वॉर रूम में, क्योंकि पाकिस्तान के पाप का घड़ा भरने लगा है। जनरल आसिम मुनीर की जालिम फौज के पैर उखड़ने शुरू हो गए हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से बलूचिस्तान तक, बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनवा तक, आवाम ने अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। रैलियों के मंचों से आवाजें आ रही हैं, POJK पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये सीधा चैलेंज है उस हुकूमत को जो अब तक बंदूकों के बल पर शासन कर रही थी।
2: ये दहशतगर्द पाकिस्तान से मंगवाए।
1: ये तस्वीरें हैं रावलकोट के ईदगाह मैदान की। 1-2 हजार नहीं, पूरे 80 हजार से ज्यादा लोग सड़कों पर हैं। आंदोलन को करीब महीना भर होने को है। पाकिस्तान सरकार ने इनका राशन रोका, इंटरनेट बंद किया, जिससे इनके दर्द को दुनिया देख ना पाए, लेकिन आवाम झुकी नहीं। जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी के लीडर सरदार अमन खान ने भरे मंच से पाकिस्तान हुक्मरानों की वो पोल खोली है कि इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया।
2: रियासत खाली करो, रियासत खाली करो, आप सबकी मौजूदगी में कहता हूँ, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक पाकिस्तान की फौज ने दी थी, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक दी पाकिस्तान की फौज ने दी, और पूरी पाकिस्तान की फौज ने, और तुम हमें बताते हो डिप्टी कमिश्नर रावलकोट, तुम यहाँ पर रैलियां निकलवाते थे बंदूकों वाली तलवारों वाली, याद है आप सबको, याद है कि नहीं है, सबको याद है, तुम रैलियां निकलवाते थे दहशतगर्दों के खिलाफ, तुम हमारे खिलाफ फतवे जारी करवाते थे, तुम हमें बताओगे कि दहशतगर्द एक्शन कमेटी और ये सारे लोग दहशतगर्द हैं? ये सारे लोग दहशतगर्द नहीं है, ये इस धरती के वारिस है।
1: दरअसल जो गुस्सा लोगों का सड़कों पर दिख रहा है वो पाकिस्तान से अलगाव के नारों के साथ नहीं शुरू हुआ था, बल्कि आवाम अपने हक के लिए और बुनियादी अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरी, लेकिन उसे मिला क्या? मुनीर की फौज की गोलियां। पिछले 2 हफ्तों में कम से कम 22 से 24 बेगुनाह लोग मार दिए गए। फौजी कार्रवाई, पुलिसिया बर्बरता ने आवाम के अंदर का डर खत्म कर दिया है, और इसके साथ पाकिस्तान की सड़कों पर वो सच सुनाई दिया जिसे ISI और पाक सरकार दोनों अब तक नकारते रहे।
2: हम कहना चाहते हैं कि कोई भी जंग हो, उस जंग का आखिरी हाल क्या है? टेबल है। उस हाल का हाल क्या है? मुज़ाकरात है। बैठ के उसूलों की बुनियाद पे, बामी उसूलों की बुनियाद पे, इज्जत की बुनियाद पर, जो जिसका हक है उसकी बुनियाद पर कश्मीरियों से मुज़ाकरात के दरवाजों के साथ खोल के बैठो और बैठ के बात करो, अगर नहीं तो फिर हम इंशाल्लाह ताला रावलकोट के ईदगाह ग्राउंड में हम जम गए हैं, जम गए हैं।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीरियों का ये विरोध अब पाकिस्तान से विद्रोह की राह पर चल निकला। पाकिस्तान के खिलाफ आवाम की आवाज बन चुकी ये मुहिम भारत से मदद मांग रही है।
3: आज एक माह होने को है जिस तरह जिस हसार में है, जिस जबर में है, और जो यहाँ के आवाम को बुनियादी हकूक की मांग पर आवाम के साथ जो जुल्म किया गया, इस इंतहाई मुश्किल मरले में जहाँ हमारे राशन के रास्ते बंद हैं, जहाँ हमारी अद्वियात के रास्ते बंद हैं, जहाँ हमें सांस लेने पर भी हमारे यहाँ के हुक्मरान, यहाँ की फोर्सेज जो है वो इस तैश में हैं कि यहाँ के आवाम सांस क्यों ले रहे हैं। आज इस मुश्किल की घड़ी में हम तमाम आवाम से, उस पार की आवाम से, बिलखसूस पुंछ की आवाम से, मेंढर के आवाम से, राजौरी के आवाम से, जम्मू के आवाम से, वैली के आवाम से, लद्दाख कारगिल के आवाम से हम अपील करते हैं कि 5 जुलाई को हमने प्रोटेस्ट रखा हुआ है और आप सब आवाम की हमें हमारे चाहिए, यकीनन आप वहाँ बाहर निकलिए, हमारे हक में बोलिए, इस जुल्म के खिलाफ, इस ज्यादती के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कीजिए।
1: पाक के कब्जे वाले कश्मीर से उठने वाली बगावत की आग को फौजी बूटों और पुलिसिया कार्रवाई के जरिए दबाने की कोशिश लगातार हो रही। इसमें नया नाम जुड़ गया है जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर के, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। तशद्दुद का ये सिलसिला लगातार चल रहा है।
2: शौकत नवाज मीर जिंदा नहीं बचेगा तो फिर जो यहाँ पे सौदतकार है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचेगा।
1: पाक फौज की जुल्म की दास्तान सिर्फ कब्जे वाले कश्मीर तक नहीं है, बलूचिस्तान को तो इस फौज ने नरक बना दिया है। हक के नाम पर यहाँ भी सिर्फ गोलियां ही मिल रही हैं। डॉक्टर मेहरंग बलोच को आतंकी बताकर जेल में डालना केवल उसकी एक निशानी है। पिछले साल मार्च में यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के सामने हक मांग रहे छात्रों पर सीधी गोलियां चलाई गई, 12 साल के बच्चे समेत 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पाक फौज और हुकूमत की कायरता की हद तो देखिए। आतंक निरोधी मिशन के नाम पर वजीरिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने ही नागरिकों पर JF-17 फाइटर जेट से बम बरसाए गए। इन हमलों में महिलाएं बच्चे समेत 30 बेगुनाह लोग मार दिए गए। वहीं मार्च में भी काटलांग में ड्रोन हमले से 11 नागरिक उड़ा दिए गए थे। और जो पंजाब के लोग खुद को पाकिस्तान का आका समझते हैं, उनके साथ क्या हुआ? मुरीदके में शांतिपूर्ण मार्च पर पाक रेंजर्स ने गोलियां चलाई, 13 लोग मारे गए और 5,500 लोगों को जानवरों की तरह जेल में ठूंस दिया गया। बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा और POJK की ये रोती हुई आंखें, ये इंटरनेट ब्लैकआउट, ये बंदूकों का खौफ अब काम नहीं आने वाला। जब किसी देश की बहन बेटियां और पूरी आवाम सड़कों पर इनकलाब बनकर उतरती हैं, तो बड़े बड़े तानाशाहों के तख्तो ताज हवा में उड़ जाते हैं। पानी की बात करते करते पाकिस्तान को याद आने लगी सभ्यता। जब भारत ने सिंधु नदी के पानी पर सख्ती दिखाई तो पाकिस्तान को अपनी जड़ें याद आने लगी। अचानक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी लगने लगी। हालांकि इससे पहले वो खुद को अरबी, तो कभी तुर्की, कभी ताजिकी, कभी तुर्कमेनी, तो कभी सेंट्रल एशिया का वारिस बताते रहे। खैर, पाकिस्तान के इन बदलते दावों से खुद उसकी आवाम भी उलझन में है कि आखिर वो है क्या।

0: Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there.
1: अब सुनिए पाकिस्तान के आईबी मंत्री अताउल्लाह तर्रार को.
2: When we identify ourselves as Pakistanis, we ask a question as to who we are. And if you go back into history, the Indus water civilization defines us as a people. Whenever I go abroad, I often tell my counterparts that we are the people of the Indus Valley civilization.
1: दो शख्सियतें, दो अलग-अलग बयान. सवाल ये नहीं है कि दोनों में सच कौन बोल रहा है. सवाल है कि पाकिस्तान को अब सिंधु सभ्यता की याद क्यों आ रही. जवाब छुपा है प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण में.
3: भारत का मत एकदम स्पष्ट है. पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता.
1: अब समझिए क्रोनोलॉजी. सबसे पहले आपको ले चलते हैं 16 अप्रैल 2025 इस्लामाबाद. सुनिए ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में बोलते हुए आसिम मुनीर ने क्या कहा था.
4: इंडियन ऑक्यूपेशन
0: बट आवर फोर फादर्स दे थॉट दैट वी आर डिफरेंट फ्रॉम द हिंदूज इन एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. आवर रिलीजन इज डिफरेंट. आवर कस्टम्स आर डिफरेंट. आवर ट्रेडिशंस आर डिफरेंट. आवर थॉट्स आर डिफरेंट. आवर एंबिशंस आर डिफरेंट. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely. And we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it.
1: जानकारों ने इसे डॉग विस्लिंग माना. हुआ भी यही. 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर की बैसरन घाटी में अलग पहचान वाले पाकिस्तान के आतंकियों ने 26 हिंदू मार दिए. और इसके साथ 1964

0: Working backwards, Pakistan must not merely deal with this as an environmental issue and as a diplomatic issue and as a, and also all the other issues that we brought up, but also as an existential assault on Pakistan that requires a collaborative, a military response.
1: इसका एक दूसरा एंगल भी है. पाकिस्तान चाहता है कि एक्सटर्नल खतरा दिखाकर उसकी फौज को लेजिटिमेसी मिल सके, क्योंकि पीओजे के बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा हर जगह फौज की फजीहतें हो रही हैं. जाहिर है आईडब्ल्यूटी के नाम पर पाकिस्तान ऐसे स्वांग रच रहा है. पाकिस्तान ये भूल जाता है कि अगर अमेरिका जेसीपीओए से हट सकता है, रूस आईएनएफ ट्रीटी से बाहर जा सकता है और चीन दक्षिण चीन सागर पर हेग के फैसले को खारिज कर सकता है, तो भारत भी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आई डब्ल्यूटी को अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है. पाकिस्तान फिर बौखलाहट में है. अरब और तुर्की से दूरी बढ़ने के बाद और दुनिया में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रति बढ़ते सम्मान के बीच वो अचानक 5000 साल पुराने इतिहास पर दावा करने लगा है. अब कह रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उसकी सीमा में है, इसीलिए वो उस सभ्यता का असली वारिस है.
2: And as they say, water is life, and Indus has given life to Pakistan. So when we say that Indus is our lifeline and our people, the 240 million people of Pakistan have an inalienable right to the water of Indus, we mean it from the core of our heart.
1: लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वो एक बुनियादी सच से भाग नहीं सकता. सिंधु घाटी सभ्यता इस्लाम से हजारों साल पुरानी थी. वो भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन बहुसांस्कृतिक और स्वदेशी सभ्यता थी. अगर पाकिस्तान इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर ले तो उसकी तथाकथित टू नेशन थ्योरी की नींव खुद ही ढह जाएगी. लेकिन फिर सवाल है कि मुनीर, जो अपने बच्चों और आने वाली नस्लों को ये बताने की बात पिछले साल कर रहे थे, उसका क्या होगा?
3: पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें. Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation.
1: दशकों तक पाकिस्तान कभी अरबों से तो कभी तुर्कों से तो कभी मध्य एशिया की कहानियां गढ़कर भारत के इतिहास को छोटा साबित करने की कोशिश करता रहा है. पाकिस्तान 712 ईस्वी के मोहम्मद बिन कासिम से अपना इतिहास मानता आया है, लेकिन अब उसको बंसत की याद आ रही है. सिंधु घाटी सभ्यता को भूल नहीं पा रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि कैसे बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने एक एक हिंदू चिन्ह को खुद से काट कर अलग कर दिया. पाकिस्तान की सबसे बड़ी त्रासदी उसकी पहचान का संकट है. जिस देश की राजनीति और राष्ट्रीय सोच दशकों तक सिर्फ भारत विरोध पर टिकी रही, उसके सामने आज अपना इतिहास साबित करने का संकट खड़ा है. धर्म के आधार पर देश तो बना लिया, लेकिन संस्कृति, सभ्यता और ऐतिहासिक विरासत की अपनी ठोस कहानी कभी गढ़ नहीं पाया.
4: वॉर रूम में आज के लिए इतना ही. देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक.

0: राम मंदिर चाहवा चोरी में जिस चंपत राय को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, अब जांच की आंच उन्हीं चंपत तक पहुंच रही है। एसआईटी टीम ने फिर ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। टीम ने चढ़ावे के ऑडिट से जुड़े दस्तावेज कब्जे में लिए और पदाधिकारियों से इससे जुड़े सवाल पूछे। सूत्रों के अनुसार पूछताछ में कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले, जिससे आने वाले दिनों में पूछताछ का दायरा और बढ़ेगा। इस बीच 6 जुलाई को होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक अहम होगी। ट्रस्ट सूत्रों के अनुसार महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। दोनों पदाधिकारियों से मामले में लिखित और मौखिक स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। ट्रस्ट उनके अपना पक्ष रखने के बाद आगे की बड़ी कार्रवाई करेगा। उधर विनय कटियार भी इन्हीं राम मंदिर से जुड़े बड़े चेहरों की भूमिका पर सवाल कर रहे हैं।
1: क्या गोपाल राय करते हैं, साउथ से आकर के यहाँ क्या कर रहा है, इसकी क्या जरूरत थी, जमीन की खरीदने की क्या जरूरत थी। ऐसे लोगों को वहां पर रखने की जरूरत नहीं।
0: हालांकि राम मंदिर मामले के खुलासे के करीब 1 महीने बाद संघ ने चुप्पी तोड़ी है।
2: श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। जय श्री राम।
0: अब साधु संतों और कथावाचकों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है।
3: माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम ये निकला कि साफ परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा पक्का है।
4: वर्तमान का युग कलयुग से ज्यादा छल युग चल रहा है, इस छल युग में सावधान रहना। वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। हमें उनसे सावधान रहना होगा, हमें उनसे सजग रहना होगा।
0: बहरहाल एसआईटी की जांच जारी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या बड़े चेहरों की भी जिम्मेदारी तय होगी। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included.
1: Oh, yeah.
0: So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
2: Jack FM, now playing what we want, commercial-free on TuneIn Premium.
3: What about me, Jack? What about me?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
4: Well played, Jack. Well played.
2: Jack FM, playing what we want.
5: We are over, Jimmy.
6: Hey, life mein scratches to aayenge. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
7: ये देश के बिजनेस कैपिटल का हाल है, जहां पाइप फटकर फव्वारा हो गया है, सड़कों पर पेड़ गिर रहे हैं तो लोगों की जान जा रही है, तार गिर रहे हैं तो करंट से मौत हो रही है, अंडरपास डूबे हुए हैं, मैनहोल, गड्ढे सब मौत का इंतजार कर रहे हैं। अब तक सिस्टम की लापरवाही 6 लोगों की जान ले चुकी है। आज मुंबई से सटे मीरा भयंदर में प्रशासन की लापरवाही से एक और शख्स की जान चली गई। नारियल के पेड़ के नीचे दबने से जो स्कूटी सवार घायल हुआ था उसकी मौत हो गई। मानसून की दस्तक के साथ ही मुंबई में इंतजामों के दावों की पोल खुल गई है। वहीं पुणे में भी बारिश के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ। पुणे के लोनी कालभोर गांव में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में गिरने से एक 2 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद से परिवार में मातम पसरा है। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो।
8: चुनावों में कथित धांधली पर इंडिया अलायंस ने अपना त्रुप का पत्ता चल दिया है। 8 जून को इंडिया अलायंस की मीटिंग में हुए फैसले के मुताबिक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से मुख्य न्यायाधीश को एक लेटर लिखा गया है, जिसमें 24 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सांसद के दस्तखत हैं। 28 जून की इस चिट्ठी में मुख्य चुनाव आयुक्त पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए पक्षपात का आरोप है। चिट्ठी में लिखा गया है कि विधानसभा चुनावों के एन पहले SIR करना गलत था और इसे गलत तरीके से लागू करना एक बहुत बड़ी विफलता थी, जबकि इलेक्टोरल रोल्स 2002 में डिजिटाइज होने के बाद से लगातार रिवाइज और अपडेट किए जाते रहे हैं। चिट्ठी में 2027 में होने जा रहे चुनावों के मद्देनजर न सिर्फ इलेक्टोरल रोल्स बल्कि EVM की भूमिका पर भी सवाल है। चिट्ठी में कहा गया है कि अगर संस्थाएं नाकाम होंगी तो लोकतंत्र अराजकता में बदल जाएगा, इसलिए इस पर अदालतों को विचार करना होगा। बिहार और बंगाल में बीजेपी विरोधियों की हार के बाद आने वाले यूपी चुनाव के मद्देनजर ये चिट्ठी अहम सियासी मुद्दा बन सकती है। हालांकि जहां चुनाव की निष्पक्षता पर इंडिया अलायंस के ऐसे सवाल हैं, वहीं यूपी में अखिलेश यादव समय से पहले ही चुनाव के लिए तैयार होने का दम भर रहे हैं।
9: अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करेंगे। जो लोग चुनाव नवंबर में कराना चाहते थे, सितंबर में करा दें, हम लोग तैयार हैं।
8: अखिलेश यादव का ये बयान उन अटकलों के बाद आया है कि यूपी का चुनाव 2027 से पहले ही कराने की तैयारी बीजेपी ने की है। इन अटकलों की एक बड़ी वजह बीजेपी की सक्रियता है। राम मंदिर, चढ़ावा चोरी पर विपक्ष के हमले के बावजूद योगी आदित्यनाथ न सिर्फ अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं बल्कि 2017 से पहले के यूपी का हाल की तस्वीर भी खींच रहे हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हाल में अपनी नई टीम गठित की है। यूपी बीजेपी के 19 उपाध्यक्षों में ओबीसी 8, क्षत्रिय 4, ब्राह्मण 3, वैश्य 2 और 2 दलित चेहरे हैं। बीजेपी कहीं से ये संकेत नहीं देना चाहती कि अगर यूपी में जल्दी चुनाव होंगे तो उसकी तैयारी नहीं है। यूपी का चुनाव जहां विपक्ष के लिए एक चुनौती है, वहीं बीजेपी के लिए भी लिटमस टेस्ट होगा। गौरतलब है कि 2024 के चुनाव में यूपी से लगा झटका ही बीजेपी पर भारी पड़ा था। आज तक ब्यूरो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

चढ़ावा चोरी मामले में अब अयोध्या पुलिस जेल में बंद पांच आरोपियों से कल करेगी पूछताछ। शिन्नू यादव से भी सवाल, ममता का सरकार पर तंज, कहा राम का नाम किया बदनाम। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहले यूपी के दौरे पर नितिन नवीन का चुनावी मंत्र, पदाधिकारियों से कहा विपक्ष के नकारात्मक राजनीति के जाल में न फंसे, राज्य के विकास पर करें फोकस। पीएम मोदी ने विपक्ष पर युद्धकाल में देश को डराने का लगाया आरोप, राजस्थान के बालोतरा में बोले संकट में राष्ट्र हित को आगे रखकर लिया गया फैसला, देश पर बोझ नहीं डाला गया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी, कैमरे में कैद दोनों ही दहशतगर्द, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। मूसलाधार बारिश से पाने पाने मुंबई की ओर और बढ़ सकती है मुसीबतें, कल भारी बरसात का रेड अलर्ट जारी, बीएमसी के लोगों से अपील, जरूरी हो तभी निकले बाहर।

0: नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथा और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। कहते हैं भगवान के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। शायद यही वजह है कि करोड़ों श्रद्धालु अपनी पहली कमाई, अपनी मन्नत, अपना सोना चांदी और अपनी श्रद्धा भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिरों में चढ़ाया गया ये चढ़ावा आखिर जाता कहाँ है? किस मंदिर में सबसे ज्यादा दान आता है? कौन रखता है इस धन का हिसाब? और करोड़ों अरबों रुपए आखिरकार खर्च कहां होते हैं? आज कहानी देश के सबसे समृद्ध मंदिरों के चढ़ावे की।
1: राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभू है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है।
2: पहला नाम भगवान प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है।
3: यात्रा तब कहाँ चले गई थी जब कावड़ यात्रा को आप लोग रोकते थे?
4: उस ट्रस्ट में अगर किसी मुसलमान को रख देते तो ले जाकर गोली मार देते, उसको मामला खत्म हो जाता। गलती उन्होंने की, मुसलमान रखा ही नहीं।
5: देश भर के जनता ने घर घर से 10-10 5-5 रुपया दिया है राम मंदिर के लिए, उनका हिसाब तो मिलना चाहिए। शायद लूट लिया करोड़ों रुपया, कहाँ गया, किसने लिया?
6: ये लोग भगवान रामचंद्र जी को भगवान मानते ही नहीं है। अगर भगवान मानते ये लोग तो कभी चढ़ावे की चोरी नहीं करते।
7: माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है, सोसाइटी पर भरोसा है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा।
8: आज हमारे पर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति तो सब निराधार है।
9: ये प्रकरण पूरे सनातनी जगत को, 100 करोड़ सनातनियों के हृदय को विदीर्ण करने वाला है।
10: किसी भी आरोपी से हमारी कुछ भी सहानुभूति नहीं है, उनको दंड मिलना चाहिए।
11: मैनेजमेंट में चोरी भया है, उनका मैनेजमेंट में अव्यवस्था भया है, जिसके मैनेजमेंट पे भया है वो मैनेजमेंट के हेड इंचार्ज दोषी है।
12: सबको परमपिता परमेश्वर पास जाना, अगर वो ऐसा सोचेंगे तो उनको नरक में भी ठिकान नहीं लगे। जो चोरी हुआ है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
0: रामलला के चरणों में चढ़ाया जाने वाला दान सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक होता है। इसीलिए उससे जुड़ी हर बात लोगों के लिए मायने रखती है। पिछले कुछ दिन से राम मंदिर ट्रस्ट की रामलला के चरणों में चढ़ाया जाने वाला दान सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक होता है। इसीलिए उससे जुड़ी हर बात लोगों के लिए मायने रखती है। पिछले कुछ दिन से राम मंदिर ट्रस्ट की आमदनी, खर्च, सुरक्षा व्यवस्था और कामकाज को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, अगर चढ़ावे में सचमुच कोई गड़बड़ी हुई तो वो कैसे हुई, इतनी कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बीच ऐसा होना कैसे संभव हुआ।
13: जहां हर सुबह सरयू की लहरों के साथ आस्था का नया सूर्योदय होता है, जहां हर गली, हर घाट और हर मंदिर में राम का नाम गूंजता है, जहां करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा हर दिन रामलला के चरणों तक पहुंचती है, जहां इतिहास, आस्था और आधुनिकता एक साथ दिखाई देती है, जहां हर दीप सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि विश्वास की लौ बनकर जलता है, ये वही अयोध्या है जहां त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने जन्म लिया और जहां उनके वनवास से लौटने की खुशी में पहली बार दीपों का सागर उमड़ा। जब 14 वर्ष का वनवास पूरा कर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे तब पूरी नगरी में घी के दीप जलाकर उनका स्वागत किया। उस रात अयोध्या सिर्फ रोशन नहीं हुई थी बल्कि आस्था, प्रेम और विजय के प्रकाश से जगमगा उठी थी। आज भी वही परंपरा हर साल दीपोत्सव में जीवंत उठती है। लेकिन जिस अयोध्या की पहचान सदियों से आस्था, मर्यादा और राम के आदर्शों से रही, आज उसी अयोध्या का नाम एक ऐसे विवाद में है जिसने करोड़ों श्रद्धालुओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ...2024-25 में 327 करोड़ की कमाई, 153 करोड़ का चढ़ावा, हर दिन 42 लाख रुपए, हर घंटे करीब 1,75,000 और हर मिनट करीब 2,912 रुपए। यह रामलला के दरबार में आने वाली उस आस्था की तस्वीर जो हर रोज करोड़ों दिलों से निकलकर अयोध्या पहुंचती है। लेकिन अब इसी आस्था के पैसों पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल हिसाब का, सवाल सुरक्षा का और सवाल भरोसे का।
14: चंपत राय जो सबसे बड़ा चोर है, जिसने जमीनों का घोटाला किया, जिसके नेतृत्व में चढ़ावे का घोटाला हुआ, दान का घोटाला हुआ, उसके खिलाफ FIR है कि नहीं है? अगर कागज हो तो बताइए मुझे।
15: उसमें छोटे छोटे कर्मचारियों को मुकदमा दर्ज किया, उसमें चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए गोपाल राव पर, चंपत राय पर जो सारा माल चंपत कर गए, फिर उस पर अनिल मिश्रा जो उन्होंने कमीशन खाया, रिकॉर्ड में आ गया कितना इतना पैसा कमीशन इन्होंने खाया है, तो ये साबित हो, इन सब चीजों इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
16: उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घपला है, 20,000 करोड़ रुपए का सोना चांदी जेवर लोगों ने 50-50 किलो सोना दिया, करोड़ों रुपया दिया, हीरे के हार दिए करोड़ों रुपए, पता ही नहीं किसी।
17: आप छोटे छोटे मछलियों को फंसाकर बड़े लोगों को बचाना चाहते हो। राष्ट्र अध्यक्ष जी ने बड़े साफ शब्दों में संकेत किया कि इसके तार ऊपर से है जुड़े हुए हैं और कर्नाटक तक गए, ये सब चोरी का पैसा वहां तक जा रहा है, बहुत बड़ा ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है।
13: अयोध्या का राम मंदिर देश की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र, जहां करोड़ों लोगों ने श्रद्धा से दान किया, लेकिन अब यही मंदिर अपने चढ़ावे, खर्च और कथित गड़बड़ियों को लेकर विवादों में है।
18: कि हमारी चांदी सही जगह गई है कि नहीं गई है, अब हमें उसकी रसीद भी चाहिए और ये भी पता करना है कि वो चांदी कहाँ लगाई गई है, सही यूज में ली गई है कि नहीं ली गई है, या उसे गला करके उसका कुछ अकाउंट मेंटेन किया गया है, तो भी हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि राम मंदिर के लिए गया है।
19: पहली बात, एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए और जनता के बीच रखा जाना चाहिए कि भाई कितना पैसा आपके डोनेशन आ रहा है और कहां आप यूज कर रहे हैं, वो भी प्रॉपर बताएं। अगर आप देखेंगे तो इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। मुझे तो अभी न्यूज में आया कि 200 करोड़ का घोटाला, अब ये सोचिए 200 करोड़ का घोटाला है तो आया कितना होगा।
20: कुछ दिनों से जो चोरी का मामला जो हुआ है उसमें बस प्रशासन से मेरा यही गिनती है कि सख्त से सख्त कदम जो है उठाए और लोगों का जो भरोसा है उसे टूटने ना दे।
21: यहाँ का दुर्भाग है, अयोध्या का नाम डुबो दिए, तो ये तो बहुत अच्छा हुआ अभी मालूम हो गया, नहीं तो ये बरसों तक चलता रहता।
13: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सुरक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, CCTV कैमरे लगाए गए, निजी सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए, पूरे परिसर को हाई सिक्योरिटी जोन बनाया गया। इतनी सुरक्षा के बावजूद अगर चढ़ावे की नकदी और कीमती आभूषण चोरी हो जाए तो सवाल उठना लाजमी है। अगर सुरक्षा इतनी मजबूत थी तो चोरी कैसे हुई? अगर कैमरे लगे थे तो किसी को भनक क्यों नहीं लगी? अगर हर व्यवस्था इतनी मजबूत थी तो कथित तौर पर चढ़ावे तक पहुँच किसकी थी?
3: आज राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, उन राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। यह आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है।
2: खबर मिली कि FIR हुई है, अभी और जांच हो और पकड़े जाएंगे, पक्का है और पकड़े जाएंगे।
22: रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम ये निकला कि सात परिवार सहित नाश हुआ, करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा, महादंड पाएगा, ये तो पक्का है, महादंड पाएगा, उसे कोई छोड़ नहीं सका।
13: अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस राम मंदिर के लिए देश भर से लोगों ने दिल खोल कर दान दिया है, क्या उस दान का पूरा और पारदर्शी हिसाब रखा गया? क्या करोड़ों रुपए के चढ़ावे की सुरक्षा में कहीं चूक हुई? क्या ट्रस्ट के भीतर सब कुछ उतना पारदर्शी नहीं था जितना दिखाया गया? या फिर आस्था की सबसे बड़ी तिजोरी में भरोसे की सबसे बड़ी दरार पड़ चुकी है? मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, मामला उस भरोसे का है जो करोड़ों श्रद्धालु हर दिन रामलला के चरणों में रखकर लौटते हैं। और जब सवाल आस्था पर उठते हैं तो जवाब सिर्फ दस्तावेजों से नहीं पूरी पारदर्शिता से देने पड़ते हैं।
0: राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। हर दिन यहाँ हजारों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ चढ़ावा अर्पित करते हैं। विवादों के बीच अब सबके जहन में ये भी सवाल है कि राम मंदिर में सालाना कितना चढ़ावा आता है और ये कहाँ खर्च होता है।

0: अयोध्या, यहाँ हर दिन हजारों कदम रामलला की ओर बढ़ते हैं। कोई हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आता है, कोई अपनी पहली कमाई लेकर, तो कोई सिर्फ एक झलक पाने के लिए। रामलला के दरबार में पहुंचने वाला हर श्रद्धालु अपने साथ सिर्फ एक अर्जी लेकर नहीं आता, वो अपनी आस्था भी साथ लाता है, और उसी आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है चढ़ावा।
1: बहुत एक्साइटेड है, रामलला का दर्शन करेंगे,
2: हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आप लाइन में।
1: हाँ, बहुत एक्साइटेड है।
3: मंदिर भी बहुत अच्छा बना है, हम लोगों का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था अयोध्या में तो, और मंदिर तो इनक्रेडिबल है
4: जी। सुंदर, एकदम भव्य नजारा था। हम लोग सभी दोस्तों के साथ आए थे, हम लोग सभी ने दर्शन किया।
5: जो आज मंदिर बना है पूरे हिंदू जनमानस का सर ऊंचा है।
0: रामलला के चरणों में चढ़ने वाला हर रुपया करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास की निशानी होती है, लेकिन आज यही चढ़ावा सबसे बड़े विवाद के केंद्र में है।
6: जो भक्त होते हैं या जो भी श्रद्धालु है, वो अपनी भावनाओं से दर्शन करते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं एनी अमाउंट, मगर कहीं ना कहीं इस टाइप की कोई खबरें आती है तो वो कहीं ना कहीं अपने मतलब श्रद्धा में आहत करती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
7: जेब से 10 रुपए निकालने में भी सोचना पड़ेगा कि कहीं कोई कौआ आ तो नहीं जाएगा, उठाकर मेरा पैसा ले तो नहीं जाएगा।
8: तो उन सबको बाहर निकाला जाए, उनको सजा दिया जाए, जेल वेल किया जाए, और थोड़ा ज्यादा ही ज्यादा तरीके से नहीं किया, इसमें थोड़ा कार्रवाई किया जाए और थोड़ा स्ट्रिक्ट रखा जाए इसके रूल के लिए। जो परिजनों को, मेरे भाई को, चाचा को जो ऐसे नौकरी दे दे रहे फ्री फुकट में, वो ना की जाए।
0: राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी की जांच अब सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं रह गई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे उन लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं जिनके जिम्मे ट्रस्ट की आर्थिक व्यवस्था थी। ट्रस्ट के खातों से लेकर दान, बैंक लेन देन और वित्तीय व्यवस्था की निगरानी सब कुछ कुछ चेहरे मिलकर तय करते थे, लेकिन जिस दिन से हेरा फेरी सामने आई है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से अब तक करीब 79,85,000 रुपए नकद मिले हैं, 1,121 अमेरिकी डॉलर मिले हैं, सोने की चेन और अंगूठी और चांदी के सामान भी मिले हैं। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि ये रकम कितने समय में इकट्ठी हुई और क्या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा था।
9: जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे।
10: भाई वो भी नहीं है, ये मैं गोल लड़ा है, एक व्यक्ति नहीं लड़ करके चोरी कर सकता है, ये पैसा गिनने के विधि नहीं जानते हैं सब।
11: मतलब जो दान चोरी हुई है, दान की, वो सामूहिक तौर पर हुई है?
10: हाँ, गोल गोल समूह लूटा है। नहीं सर, हाँ, 8 आदमी एक साथ कैसे आ गए चोरी में?
11: चोरी मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि केवल ये सीमित 8 लोगों तक नहीं है बल्कि बड़ा गोल है?
10: हाँ, गोल नहीं, सर्किल है। जैसे फील्ड होता है ना, तो एक सर्किल बना दिया जाता है, ये फील्ड में सबको गेना खेलना है, तो उसे सर्किल है ये।
0: 2024-25 में राम मंदिर ट्रस्ट को कुल 316,57,00,000 रुपए मिले। इसमें दान के 173,86,00,000 रुपए और बैंक ब्याज समेत कुल आय 316,57,00,000 रुपए हुए। 173 करोड़ रुपए में दान खाते में 35 करोड़ रुपए मिले, दान पात्र यानी हुंडी में 94 करोड़ मिले, ऑनलाइन दान में 12 करोड़। यानी राम मंदिर की कहानी सिर्फ करोड़ों रुपए के दान तक सीमित नहीं है। इस मंदिर को देश के कई बड़े उद्योगपतियों, संतों और संस्थाओं ने भी खुलकर सहयोग दिया है। अब सवाल है, इतना पैसा आता है तो खर्च कहां होता है? 2024-25 में मंदिर निर्माण में 452.76 करोड़ रुपए खर्च हुआ, जमीन खरीदने में 105.45 करोड़ रुपए, इंफ्रास्ट्रक्चर में 87.56 करोड़ रुपए और खुदरा खर्च करीब 1.70 करोड़ रुपए। कुल खर्च 652.55 करोड़ रुपए हुए। यानी ट्रस्ट की प्राथमिकता साफ दिखाई देती है, पहले मंदिर निर्माण, फिर सुविधाओं का विस्तार और भविष्य की तैयारियां। अगर पिछले 3 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि मंदिर निर्माण के चलते खर्च लगातार आय से ज्यादा रहा है। 2022-23 में कुल आय लगभग 209 करोड़ रुपए रही, जबकि खर्च 387 करोड़ रुपए हुआ। 2023-24 में आय बढ़कर 363 करोड़ रुपए पहुंची, लेकिन निर्माण कार्य तेज होने की वजह से खर्च 922 करोड़ रुपए ज्यादा हो गया। यानी ट्रस्ट अपनी जमा पूंजी और पहले से उपलब्ध फंड का इस्तेमाल भी मंदिर निर्माण में कर रहा है, और जो राशि तत्काल खर्च नहीं होती उसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखा जाता है, जिससे हर साल करोड़ों रुपए का ब्याज मिलता है।
12: नियंत्रण जो सुपरविजन था, जो बैंक के 2 लोगों को वहां पे रखना था परमानेंटली, और जो ट्रस्ट के 2 लोग वहां पर थे, वह सुपरविजन टोटली लैकिंग था, इनफॉर्मल था। और जब ये बक्से बंद होकर के, काउंटिंग होकर के गड्डियां बैंक जाती थी और बैंक में रिसीव किया जाता था, उसमें भी जिस प्रकार का नियंत्रण होना चाहिए था, डबल लॉक की चाबियां किसके पास रहेंगी, विश्वास नहीं किया जाए, ऐसा तो नहीं है कि अनौपचारिक रूप से एक ही व्यक्ति को दोनों चाबी दे दी गई, ये सब चीजों में कहीं न कहीं निगरानी की कमी थी। तो जो निष्ठा और निगरानी प्रबंधन के 2 पक्ष होते हैं, वो दोनों ही इसमें जो है उनकी हानि हुई है।
0: जनवरी 2024 से लेकर 2026 के जून तक करीब 12 करोड़ श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं। सामान्य दिनों में हर दिन 50 से 60 हजार श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं, जबकि त्योहारों और विशेष अवसरों पर यह संख्या कई गुना बढ़ जाती है। यानी राम मंदिर की कमाई हर साल बढ़ रही है, लेकिन एक बात साफ है, रामलला के दरबार में चढ़ाया गया हर रुपया करोड़ों लोगों की आस्था की अमानत है, और उस अमानत की रक्षा सिर्फ ताले, तिजोरियों और सीसीटीवी नहीं करते, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदार व्यवस्था करती है। क्योंकि जहां भगवान श्री राम का नाम जुड़ा हो, वहां सिर्फ कानून का नहीं, आस्था का भी सबसे बड़ा इम्तिहान होता है।
13: वक्त एक छोटे से ब्रेक का हौसला, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश के उन मंदिरों की कहानी जहां लाखों में नहीं करोड़ों में दान रोजाना आता है।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

पूछताछ सिन्नू यादव से भी सवाल, ममता का सरकार पर तंज कहा, राम का नाम किया बदनाम। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहले यूपी के दौरे पर नितिन नवीन का चुनावी मंत्र, पदाधिकारियों से कहा विपक्ष की नकारात्मक राजनीति के जाल में न फंसे, राज्य के विकास पर करें फोकस। पीएम मोदी ने विपक्ष पर युद्धकाल में देश को डराने का लगाया आरोप, राजस्थान के बालोतरा में बोले संकट में राष्ट्र हित को आगे रखकर फैसला, देश पर नहीं डाला बोझ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को कामयाबी, एनकाउंटर में दो आतंकियों को किया ढेर, कैमरे में दिखे थे दोनों दहशतगर्द। मूसलाधार बारिश से पाने मुंबई की, बढ़ सकती है मुश्किलें, कल भारी बरसात का रेड अलर्ट जारी, बीएमसी के लोगों से अपील, जरूरी हो तभी निकले बाहर।

देश के मंदिर सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के विश्वास और समर्पण की सबसे बड़ी पहचान है। हर साल यहाँ दान के रूप में हजारों करोड़ रुपए पहुंचते हैं और इन्हीं पैसों से मंदिरों का संचालन, विकास और कई धार्मिक सामाजिक काम भी किए जाते हैं। लेकिन अलग अलग मंदिरों की कमाई का तरीका और खर्च का ढंग भी अलग है। कहीं दान सबसे बड़ा सहारा है तो कहीं सदियों पुराना खजाना सबसे बड़ी पहचान।

0: की गूंज, शंख की आवाज, आरती की लौ और भगवान के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। यही है भारत की पहचान, जहां मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। हर दिन देश के अलग अलग मंदिरों में लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने पहुंचते हैं। कोई अपनी मनोकामना पूरी होने पर दान देता है तो कोई सोना चांदी और कीमती गहने भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है।
1: बहुत प्राचीन मंदिर है, आस्था है, हमारी भी बहुत आस्था है यहाँ पे। लोग दूर दूर से आते हैं दर्शन करने।
2: मंदिर के यही महत्व है कि माँ इस दर पे जो भी आता है माँ उसकी मुरादें पूरी करती है। ये श्री बद्री भगदिन भगननाथ जी को सपने में माँ ने दर्शन दिए थे, जिसकी वजह से इस मंदिर की स्थापना हुई और यहाँ पर भक्त दूर दूर से आते हैं। माँ सबको आशीर्वाद देती है, सबकी मनोकामना पूरी करती है। जयकारा झंडे वाली जी का, बोल साचे दरबार की जय।
0: यही वजह है कि भारत के कई मंदिर आज दुनिया के सबसे अमीर धार्मिक संस्थानों में गिने जाते हैं। लेकिन सिर्फ चढ़ावा ही कहानी नहीं है, सवाल ये भी है कि मंदिरों में आने वाले का हिसाब कौन रखता है और आखिर खर्च कहाँ होता है। ये है आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति का वेंकटेश्वर मंदिर। यहाँ हर दिन 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने पहुँचते हैं। त्योहारों और खास मौकों पर यही संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। मंदिर की सबसे बड़ी कमाई हुंडी यानी दान पेटी से होती है। 2026-27 के लिए अनुमान है कि सिर्फ दान पेटी से करीब 1880 करोड़ रुपए की आय होगी। लेकिन कमाई सिर्फ चढ़ावे से नहीं होती, बैंक में जमा रकम के ब्याज से करीब 1205 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। लड्डू प्रसाद की बिक्री से करीब 650 करोड़ रुपए और मुंडन सेवा से करीब हर साल 175 करोड़ रुपए की आय होती है। मंदिर के पास मौजूदा समय में 10,000 किलो सोना, 12,000 करोड़ रुपए की एफडी और 1100 करोड़ से भी ज्यादा की अचल संपत्ति है। यानी तिरुपति मंदिर की कमाई सिर्फ श्रद्धालुओं के दान पर निर्भर नहीं है। यहाँ मंदिर में आने वाले एक एक रुपए का हिसाब बेहद व्यवस्थित तरीके से चलता है और आय के कई अलग अलग स्रोत भी हैं और खर्च भी यहाँ लाखों में नहीं करोड़ों में है। क्योंकि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम सिर्फ मंदिर का संचालन ही नहीं करता बल्कि सामाजिक और धार्मिक काम भी करता है। श्री वेंकटेश्वर अन्नदानम ट्रस्ट के जरिए हर दिन करीब 25,000 से 50,000 लोगों को बिल्कुल मुफ्त भोजन कराया जाता है। वहीं दिव्यांग और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए मुफ्त इलाज, ऑपरेशन और कृत्रिम अंग भी उपलब्ध कराए जाते हैं। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए श्री वेंकटेश्वर वेद परिरक्षण ट्रस्ट काम करता है। इसके अलावा श्री वाणी ट्रस्ट के जरिए देश के दूरदराज और पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कराया जाता है। यानी यहाँ आने वाला दान सिर्फ तिजोरियों में बंद नहीं रहता बल्कि मंदिर चलाने, श्रद्धालुओं की सुविधाएं बढ़ाने और धार्मिक सामाजिक कार्यों में लगाया जाता है। अब बात उस मंदिर की जिसे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। यह है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर अपनी भव्यता, प्राचीन परंपरा और विशाल खजाने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। तिरुपति मंदिर में हर साल हजारों करोड़ का चढ़ावा आता है लेकिन कुल संपत्ति के मामले में पद्मनाभ स्वामी मंदिर सबसे आगे माना जाता है। 2,00,000 करोड़ रुपए या उससे भी अधिक हो सकती है। इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर के खजाने की चर्चा पूरी दुनिया में तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसके तहखानों की सूची बनाई गई थी। सदियों से बंद पड़े तहखानों में जो मिला उसने सभी को हैरान कर दिया था। सोने की मूर्तियां, हीरे जवाहरात से जड़े आभूषण, सोने के मुकुट, प्राचीन स्वर्ण सिक्के, रत्नों से सजी तलवारें, सोने के बर्तन और सैकड़ों साल पुराने दुर्लभ खजाने। विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ एक तहखाने में मौजूद खजाने की कीमत ही 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है, जबकि मंदिर के कुछ तहखाने आज भी पूरी तरह नहीं खोले गए हैं, इसलिए इसकी कुल संपत्ति का सही अनुमान आज भी नहीं लगाया जा सका है। मंदिर को हर साल श्रद्धालुओं से भी दान मिलता है। इस आय का इस्तेमाल पूजा पाठ, रखरखाव, कर्मचारियों के वेतन और मंदिर के संचालन पर किया जाता है। लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर की सबसे बड़ी पहचान उसकी सालाना कमाई नहीं, बल्कि सदियों से सुरक्षित रखा गया वो अनमोल खजाना है, जिसने इसे दुनिया के सबसे समृद्ध धार्मिक स्थलों में सबसे अलग पहचान दिलाई है।
3: अब तक आपने दक्षिण भारत के दो सबसे चर्चित और समृद्ध मंदिरों की कहानी देखी, जहां करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है और उसका इस्तेमाल मंदिर के संचालन से लेकर धार्मिक और सामाजिक कार्यों तक किया जाता है। लेकिन ऐसी व्यवस्था सिर्फ दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, उत्तर से लेकर पश्चिम और पूर्व तक देश के कई बड़े मंदिरों में भी हर साल करोड़ों रुपए का दान आता है, जहां आस्था के साथ चढ़ावे का पूरा हिसाब और उसके खर्च की व्यवस्था भी अपने अपने तरीके से वहां चलती है।

कहीं हर हर महादेव का जय घोष, कहीं गोविंदा गोविंदा का उद्घोष, तो कहीं जय माता दी के जयकारे। हर मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थर से बनी इमारत नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और उम्मीदों का जीवंत धाम है। हर सुबह भगवान की आरती के साथ मंदिरों के द्वार खुलते हैं और फिर शुरू होता है श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला। भारत के कई मंदिर आज दुनिया के सबसे समृद्ध धार्मिक संस्थानों में गिने जाते हैं।

0: चित्रकूट पर्वत की ऊंचाइयों पर बसे माँ वैष्णो देवी के दरबार तक पहुँचने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन चढ़ाई तय करते हैं। कोई पैदल चलता है, कोई घोड़े या पालकी से पहुंचता है, लेकिन हर भक्त अपने साथ सिर्फ श्रद्धा ही नहीं बल्कि माता के चरणों में चढ़ावा भी लेकर आता है।
1: यहाँ आने के बाद जन्नत का एहसास होता है कि सचमुच अगर धरती में अगर कहीं जन्नत है तो माँ भगवती के चरणों में।
2: मुझे तो लगता है कि यहीं रह जाऊँ, मतलब अभी तो मतलब सुबह में मैं दर्शन की, फिर आरती में मैं गई, फिर आरती में भी, फिर दोबारा मैं बोली माता रानी के हमारे ऊपर कुछ ज्यादा ही कृपा दृष्टि है कि दोबारा दर्शन हो गया है।
3: माता रानी से यही मांगेंगे कि सुख समृद्धि बनाए रखें और ऐसे ही अपने दरबार से जोड़े रखें।
4: यही मांगे सबकी खुशियां बनाए रखें, अपने दरबार में सबको बुलाएं, सेवा का मौका दे, बस यही है माता रानी से। बाकी तो माता रानी सब कुछ दे ही रही है।
5: माता जी कृपा हुआ जो हमको इस दरबार में अपने बुलाया है। हम सबसे कहते हैं माता रानी सबके खजाने को भरपूर रखे और सबके साथ हमारा भी भरपूर रखे।
0: 2020-21 में 63,85,00,000 रुपए, 2021-22 में 166,68,00,000 रुपए, 2022-23 में 223,12,00,000 रुपए, 2023-24 में 231,50,00,000 रुपए, 2024-25 में 250,00,000 रुपए मिले। यानी महामारी के बाद जैसे जैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे मंदिर में आने वाला चढ़ावा भी लगातार बढ़ता गया। अब सवाल ये है कि ये पैसा कहाँ खर्च होता है। श्री माता वैष्णो देवी धाम का पूरा प्रबंधन श्रद्धालुओं के दान से चलता है। माता के दरबार में आने वाला चढ़ावा यात्रा को बेहतर और सुरक्षित बनाने में खर्च किया जाता है। इसका बड़ा हिस्सा सड़क, भवन और दूसरी जरूरी सुविधाएं बनाने पर लगाया जाता है। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए यात्री सराय और शेल्टर बनाए जाते हैं। यही नहीं, श्राइन बोर्ड आधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी चलाता है, जहां लोगों को बेहतर इलाज मिलता है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय का संचालन भी इसी बोर्ड की ओर से किया जाता है। सामान्य दिनों में हर साल 80-95 लाख श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेकने पहुंचते हैं। गर्मियों की छुट्टियों, नवरात्रि और दूसरे विशेष मौके पर हर दिन 38,000-45,000 श्रद्धालु माता के दर्शन करते हैं।
6: चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है।
7: हमारी इतनी प्रसन्नता है कि हम हर साल यहाँ आते हैं।
6: चलो बुलावा आया है, माता रानी ने बुलाया है, वो सच्चे दरबार की जय।
0: आस्था का मूल्य कभी रुपयों में नहीं आंका जा सकता, लेकिन आस्था से मिला हर रुपया करोड़ों लोगों की सेवा का आधार जरूर बन सकता है। माता वैष्णो देवी के दरबार में चढ़ाया गया हर दान सिर्फ एक चढ़ावा नहीं बल्कि भक्तों के विश्वास की अमानत है। यही अमानत हर साल लाखों श्रद्धालुओं की यात्रा को आसान बनाती है, समाज की भलाई में काम आती है और इस पवित्र धाम की सेवा परंपरा को लगातार आगे बढ़ाती है।

0: सबका मालिक है। यही संदेश लेकर करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले शिरडी के साईं बाबा आज भी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में शिरडी साईं मंदिर में हर दिन हजारों भक्त देश विदेश से दर्शन करने पहुंचते हैं। कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है तो कोई पूरी हुई मुराद का धन्यवाद देने।
1: को लेके आया है, उसका बहुत बुखार है, फिर भी बुखार लेके हम लोग आया है और साई का दर्शन बहुत अच्छा से हुआ है, बहुत अच्छा से पूजा भी हम लोग कर दिए हैं। साई नाम के कृपा से सब अच्छा रहे, सुखी रहे, शांति रहे, सब अच्छा रहे।
2: पूरा पास रहते हैं, हर चीज में गाइडेंस देते हैं बाबा। आंख बंद करने से पता चल जाता है बाबा के जो बेटियां हैं, जो बेटे हैं, जो भक्त है वो बाबा के बस प्रेजेंस चारों ओर फील कर सकते हैं। शिरडी में ही नहीं, सब जगह में फील कर सकते हैं।
0: कहा जाता है कि साईं बाबा ने कभी जाति, धर्म या ऊंच नीच में फर्क नहीं किया। उन्होंने पूरी जिंदगी सेवा, करुणा और इंसानियत का संदेश दिया। वो एक साधारण फकीर की तरह शिरडी में रहे, लोगों का इलाज किया और हमेशा कहा सबका मालिक एक। 15 अक्टूबर 1918 को उनके महासमाधि लेने के बाद उनकी समाधि पर आज का भव्य मंदिर बना, जहाँ हर साल करोड़ों श्रद्धालु पहुँचते हैं। लगभग हर साल 400 से 500 करोड़ रुपए दान में मिलते हैं। रामनवमी के 3 दिन में औसतन 4 करोड़ रुपए चढ़ावे आते हैं। नए साल पर करीब 15 से 20 करोड़ का दान आता है। इसके अलावा करोड़ों रुपए के सोने के मुकुट और आभूषण भी भेंट में मिलते हैं। श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट के अलग अलग बैंकों में लगभग 3000 करोड़ रुपए नकद जमा है। साई बाबा संस्थान ट्रस्ट के खजाने में लगभग 514 किलो सोना और 6600 किलो चांदी मौजूद है। अब सवाल यह है कि इतना पैसा आखिर जाता कहां है? श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट चढ़ावे का बड़ा हिस्सा श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर खर्च करता है। हर दिन हजारों लोगों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की जाती है। ठहरने के लिए आधुनिक भक्त निवास बनाए गए हैं। इसके अलावा ट्रस्ट अस्पताल, स्कूल और कॉलेज भी चलाता है, जहां लोगों को बेहतर इलाज और शिक्षा मिलती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्यों में मदद, ग्रामीण विकास और जन कल्याण की कई योजनाओं में भी ट्रस्ट आर्थिक सहयोग देता है। शिरडी में साईं बाबा के चरणों में चढ़ाया गया हर रुपया सिर्फ दान नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास का प्रतीक है। यही चढ़ावा हर दिन हजारों लोगों को भोजन देता है, इलाज का सहारा बनता है, शिक्षा को आगे बढ़ाता है और जरूरतमंदों की मदद में काम आता है। यानी शिरडी में आस्था सिर्फ मंदिर की चौखट तक सीमित नहीं रहती और जरूरतमंदों की मदद में काम आता है। यानी शिरडी में आस्था सिर्फ मंदिर की चौखट तक सीमित नहीं रहती बल्कि समाज की सेवा बनकर आगे बढ़ती है। चार धामों में शामिल भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कोई दान पेटी में अपनी श्रद्धा अर्पित करता है तो कोई सोना चांदी चढ़ाता है। सदियों पुराना ये मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि देश के सबसे समृद्ध मंदिरों में भी गिना जाता है। मंदिर की दान पेटी यानी हुंडी में हर साल करीब 18 से 20 करोड़ रुपए नकद जमा होते हैं। इसके अलावा भक्त हर साल लगभग 3 किलो से ज्यादा सोना और 33 किलो से ज्यादा चांदी भी भगवान को अर्पित करते हैं। मंदिर प्रशासन ने करीब 600 करोड़ रुपए बैंकों में फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा कर रखे हैं, जिससे हर साल अच्छा ब्याज भी मिलता है।

पूरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में चढ़ाया गया हर रुपया सिर्फ धन नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और विश्वास की अमानत है। यही चढ़ावा भगवान की नित्य सेवा को निरंतर बनाए रखता है, सदियों पुरानी परंपराओं को जीवित रखता है, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की भव्यता को कायम रखता है और लाखों श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाओं का आधार बनता है।

0: मुंबई में करोड़ों लोगों की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से होती है और इसी शहर के बीचों बीच है प्रभा देवी का श्री सिद्धि विनायक मंदिर, वो दरबार जहां आम श्रद्धालु से लेकर देश के बड़े उद्योगपति, फिल्म सितारे और नेता तक माथा टेकने पहुंचते हैं। हर दिन हजारों श्रद्धालु हाथ जोड़कर अपनी मनोकामनाएं लेकर यहां आते हैं। कोई नौकरी की कामना करता है, कोई कारोबार की, तो कोई अपने परिवार की खुशहाली की, और दर्शन के बाद श्रद्धा के मुताबिक दान भी करता है। कोई 100 रुपए चढ़ाता है, कोई लाखों रुपए, तो कोई सोना चांदी और कीमती आभूषण अर्पित करता है।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, बप्पा के दर्शन हो गए और एक्सपेक्टेड नहीं था, बट हमारे दर्शन तो हो गए।
2: के लिए कामना की है कि हमारा ख्याल रखना, जैसे अगले साल रखा था आगे भी ऐसे कुछ ध्यान रखना। मतलब
0: साल 2024-25 में मंदिर की कुल आय करीब 133 करोड़ रुपए रही। 2023-24 की तुलना में चढ़ावे और आय में लगभग 16% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। मंदिर में आने वाला ये पैसा सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहता। ट्रस्ट इस राशि का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, सामाजिक कल्याण योजनाओं में भी करता है। यानी सिद्धि विनायक मंदिर में चढ़ाया गया हर रुपया सिर्फ भगवान गणेश के चरणों में अर्पित किया गया दान नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास की पूंजी है।
3: फिलहाल कहानी मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
3: जम्मू कश्मीर के शोपियां से बड़ी खबर आपको देते हैं। शोपियां एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, इसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। लश्कर ए तैयबा का जो कमांडर था वो भी इसमें मारा गया। तो एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने इन दो आतंकवादियों को ढेर किया और इन दोनों ही आतंकवादियों के घिरे होने की तस्वीरें भी सामने आई थी। इनकी चहलकदमी वहां सीसीटीवी में कैद हुई थी, इनकी मूवमेंट कैद हुई थी और उसके बाद सुरक्षा बलों ने इस इलाकों के घेरा, काफी देर तक वहां पर फायरिंग हुई और उसके बाद से ये बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। आतंकवादी को ढेर कर दिया गया। इसमें एक जाकिर नाम का आतंकवादी भी बताया जा रहा है कि जो पहलगाम हमले में संलिप्त था। देश के कई हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है लेकिन बारिश की पहली किश्त ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। आपको अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें भी दिखाएंगे लेकिन बात सबसे पहले मुंबई की करेंगे, जहां पर चार दिनों से लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद मुंबई के कई इलाके पानी में डूबे दिख रहे हैं।

0: सड़कों पर सैलाब है, सबवे लहरों के बीच डूब चुका है। एक बार फिर भारी बारिश के चलते मुंबई में हाल बेहद बुरा है। चाहे अंधेरी हो या नाला सोपारा, वसई या विरार, हर ओर मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा है। लगातार हो रही बारिश ने मुंबई के लोगों का जीवन दुभर कर दिया है।
1: चांदीवली विधानसभा नाले सफाई झाली नाही, महापौर म्हणतात नाले सफाई झाली, उपमहापौर म्हणतात नाले सफाई झाली, पण नाले सफाई कुठे झाली? कानुराम कुठे गेला? नाल्याचा कॉन्ट्रॅक्टर कुठे गेला? कानुराम हे बघा, वॉटर किंगडम आहे, वॉटर किंगडम चांदीवली विधानसभा।
0: एक एक तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर मॉनसून की बारिश के बीच मुंबई किस तरह की मुसीबत झेल रही है। गाड़ियां पानी के बीच फंसी हुई हैं, कहीं आना जाना मुश्किल है, बारिश का दौर थम नहीं रहा है, सड़कों पर बढ़ता जलस्तर लोगों का संकट बढ़ा रहा है। सबसे पहले भिवंडी इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। तेज बारिश से पूरा बाजार तालाब बन गया है, दुकानों में पानी भर गया है, गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, घुटनों तक पानी में लोग आ जा रहे हैं। किसी तरह जद्दोजहद कर अपनी दुकानों का सामान बचाने की कोशिश में लोग जुटे हुए हैं। अब नाला सोपारा हाईवे का हाल देखिए। सड़कों पर भरे पानी के चलते कई गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, लोगों को कहीं आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। नाला सोपारा में बढ़ता जलस्तर तेजी से रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ रहा है, जो आने वाले दिनों में मुंबई के लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकता है, क्योंकि नाला सोपारा और उसके आसपास के सभी मार्केट पूरी तरह से पानी में घिरे हुए हैं। गाड़ियों से भी गुजर रहे लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। मुंबई में बीते चार दिनों से बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाके पानी में डूब गए हैं। इस बीच पानी भरने के बाद अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। अब विरार इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। दोनों ओर की सड़क पर सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है, सड़कों पर गाड़ियां फंसी हुई हैं, दूर तक लंबी कतार नजर आ रही है। बांद्रा इलाके में सड़कें लबालब हैं, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। बारिश के बीच मुसीबत का दायरा बढ़ता जा रहा है।
2: मुंबई में सुबह से लगातार बारिश हो रही है और यह बारिश पिछले तीन से चार दिनों से मुंबई में हो रही है। आज भी मौसम विभाग द्वारा मुंबई और मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, रायगढ़, थाने, पालघर, नवी मुंबई, इनके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया है। आप देख सकते हैं हम इस वक्त मुंबई के घाटकोपर इलाके में है, जहां पर 1.5 से 2 फीट तक का पानी जो है वो मुंबई की सड़कों पर जमा हो गया है और सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील होती हुई यहाँ नजर आ रही हैं। लोग कई समय से यहाँ पर बस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो बस है वो नहीं आ रही है। गाड़ियों की आवाजाही थोड़ी यहाँ धीमी होती हुई नजर आ रही है।
0: वसई इलाके का हाल तो और भी ज्यादा बुरा है। पानी इतना ज्यादा भर गया है कि मानो पूरा इलाका टापू बन गया है। इस बीच बिजली न होने से करीब 450 परिवारों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।
3: वसई विरार में लगातार चार दिन से जोरदार बारिश हो रही है, कई निचले इलाकों में पानी भर चुका है। फिलहाल इस वक्त मैं खड़ा हूँ वसई ईस्ट के मिठागर की बस्ती है। यहाँ हम देखेंगे तो ये जो रोड है जहाँ भरा है, इसके नीचे रास्ता है और ये रास्ते से अंदर हम 1.5 से 1.5 किलोमीटर जाए तो ये नमक की खेती करने वालों की बस्ती है। कुल 120 फैमिलीज वहाँ रहती है, 300 से 400 लोग है। हर साल इसी तरह ये रोड जो है पानी के नीचे चला जाता है। ये इन्होंने जानकारी दी जो है कि इनके घर में आसपास कुल कमर के ऊपर तक का पानी भर चुका है, बिजली भी कल से चली गई है और ये वस्ती के आसपास भी ये जो प्लेन इलाका है वहाँ भी ये भी पूरी तरह से भर चुका है। प्रशासन की ओर से इन्हें कोई अभी तक मदद पहुंची नहीं है। फिलहाल इन्हें खाने पीने की चीज़ों की सख्त जरूरत है क्योंकि लाइट कल से है नहीं और यही बारिश अगर लगातार चालू रही तो इनके हाल बेहाल हो सकते
0: हैं। इस बीच बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन की ओर से अब तक लोगों तक कोई मदद नहीं पहुंची है, जिससे लोगों पर आई आफत और ज्यादा बढ़ गई है।
4: हालत खराब है कल से लोगों से, क्योंकि लाइट भी नहीं है, कल से लाइट भी नहीं है और पानी भी जैसे बढ़ते ही जा रहा है और ऊपर से बारिश भी और ज्यादा ही होते जा रहा है, जैसे कि अभी एक दो घंटा और गिरेगा तो घर में भी घुस सकता है पानी।
3: लाइट की क्या समस्या है उधर?
4: लाइट तो कल से ही नहीं है, कल से दोपहर से गई है, अभी तक आई ही नहीं है।
3: अभी अंदर कितना पानी है, कितने फैमिलीज अंदर रहती है?
4: फैमिली रहती है 450 फैमिली रहती है और कंबर के ऊपर पानी है।
3: कि कुछ सुबह से कुछ प्रशासन की हेल्प हुई है?
4: कुछ भी नहीं, किसी ने हेल्प करने के लिए फोन भी नहीं किया, कुछ हेल्प आया ही नहीं।
0: बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा, जगह जगह भारी जलभराव है और लोग बेहद परेशान। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच मौसम विभाग ने भी शहर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इधर प्रशासन ने लोगों को बेहद जरूरी यात्रा करने की सलाह दी है ताकि मौसम की मार किसी की जिंदगी पर संकट न बने। मुंबई में हर साल की यही कहानी है, बारिश हुई और लोगों की जिंदगी आफत के बीच घिर गई। एक बार फिर ऐसी ही तस्वीरें शहर की पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। सैलाब के बीच जिंदगी संकट में घिरी है। मुंबई से प्रवीण नालावड़े के साथ दीपेश त्रिपाठी आज तक।
5: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

चढ़ावा चोरी मामले में अब अयोध्या पुलिस जेल में बंद पांच आरोपियों से करेगी आज पूछताछ। टिन्नू यादव से भी सवाल, ममता का सरकार पर तंज, कहा राम का नाम किया बदनाम। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहले यूपी के दौरे पर नितिन नवीन का चुनावी मंत्र, पदाधिकारियों से कहा विपक्ष की नकारात्मक राजनीति के जाल में न फंसे, राज्य के विकास पर करें फोकस। पीएम मोदी ने विपक्ष पर युद्धकाल में देश को डराने का लगाया आरोप, राजस्थान के बालोतरा में बोले संकट में राष्ट्रहित को आगे रखकर फैसला, देश पर नहीं डाला बोझ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर आतंकवादियों से मुठभेड़, मारे गए दोनों आतंकवादी, कैमरे में कैद दोनों दहशतगर्द। मूसलाधार बारिश से पाने पाने मुंबई, और बढ़ सकती है मुसीबतें, आज भारी बरसात का रेड अलर्ट, बीएमसी के लोगों से अपील, जरूरी हो तभी निकलें बाहर।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 6 जुलाई को होगी बैठक। संपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होगी चर्चा। दान से जुड़े मामलों पर समीक्षा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बिना नाम लिए बोले अखिलेश यादव, इन्हें अयोध्या क्षमा करेगी न देश। इन लोगों ने खजाने को बेरहमी से लूटा है। लखनऊ में विपक्ष पर बरसे बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन, कहा कि जिन लोगों ने अब तक नापाक इरादे रखे वो खुद को राम मंदिर आस्था से न जोड़े। चढ़ावा चोरी मामले में ममता बनर्जी ने भी खोला मोर्चा, कहा कि राम का नाम किया बदनाम। योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राज पर बोले कि जो भी चढ़ावा चोरी में शामिल होगा वो बचेगा नहीं। चढ़ावा चोरी मामले में पूर्व बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह बोले कि यहां पहले ही दिन से चल रहा था कि इसीलिए आज तक मैं दर्शन करने के लिए नहीं गया। आज अयोध्या पुलिस करेगी चढ़ावा चोरी के आरोपियों से जेल में पूछताछ। इससे पहले अविनाश शुक्ला से सवाल जवाब हो चुके हैं। अविनाश शुक्ला को 45 दिनों की चोरी का सीसीटीवी फुटेज पैसा चोरी करते हुए देखकर टूट गया था अविनाश शुक्ला। अयोध्या चढ़ावा चोरी के मामले में शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का बयान, सनातन धर्म प्रोटेक्शन कमेटी बनाने की मांग। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच में 4 सदस्य उच्च स्तरीय जांच समिति गठित, 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। यूपी चुनाव को लेकर एक्शन बोर्ड में बीजेपी 2 दिनों के लखनऊ के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने यूपी के पदाधिकारियों से एक अपील की, कहा कि विपक्ष के नकारात्मक राजनीति के जाल में न फंसे, विकास पर ध्यान करें केंद्र। नितिन नवीन ने यूपी में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने का किया दावा, कहा कि फिर से डबल इंजन की बनेगी सरकार। पीएम मोदी सीएम योगी की जोड़ी ने यूपी को उत्तम प्रदेश बनाया। 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र, केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को दी बधाई, अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर दी बधाई, कहा कि हमारी साझेदारी वैश्विक भलाई की ताकत। पीएम मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट को बड़ी सौगात दी, 480 करोड़ के नए टर्मिनल का किया उद्घाटन। राजस्थान के बालोतरा ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, कहा कि हम सिर्फ शिलान्यास नहीं करते परियोजनाओं को पूरा करते हैं। वैश्विक ऊर्जा संकट पर बोले पीएम मोदी, बड़े बड़े देश ईंधन की लत से जूझ रहे थे लेकिन भारत ने सटीक आकलन किया, सही फैसले लिए। गुजरात के साणंद में पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर प्लांट का किया उद्घाटन, कहा कि 5 साल पहले लिया गया संकल्प पूरा किया। 9 जुलाई के ऑस्ट्रेलिया के दौरे से पहले पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी, जांच में जुटी मेलबर्न पुलिस। इथेनॉल ब्लेंडिंग पर सरकार की तरफ से बैन, इथेनॉल ब्लेंडिंग कई देशों में हो रही है, E20 फ्यूल में कोई समस्या नहीं मिली है। चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम चेहरा बनाने की मांग पर पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष बोले कि मैं सीएम पद की रेस में नहीं हूं, राहुल गांधी जिसे बनाएंगे सीएम का चेहरा उसे समर्थन करते हैं। बिहार के एमएलए राजू सिंह को 4 साल की जेल, दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट का फैसला, पार्टी में फायरिंग मामले में सजा मिली। भोजपुर में भरत तिवारी हत्याकांड में पीड़ित परिवार का अल्टीमेटम, 9 जुलाई तक कार्रवाई नहीं हुई तो भूख हड़ताल करेंगे, आंदोलन होगा बड़ा। बिहार के जहानाबाद में अवैध बालू को लेकर खूनी संघर्ष, ताबड़तोड़ फायरिंग में 7 लोग घायल। बागी नेता पर बोली ममता बनर्जी, बीजेपी से मिले हुए ये बागी नेता पुलिस कार्यकर्ताओं को डरा धमका रही। चंद्रमा भट्टाचार्य के इस्तीफे के बाद से टीएमसी का फैसला, अभिषेक बनर्जी डायरेक्ट नोडल अधिकारी बने। चंद्रमा भट्टाचार्य ने टीएमसी उन्होंने छोड़े सभी पद और टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। चुनाव चिन्ह पर ममता का बयान, हमारे पास ही चुनाव चिन्ह रहेगा, चुनाव चिन्ह छीनने की कोशिश हो रही है। बिहार में बनेंगे 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट, सीएम सम्राट चौधरी का फैसला, तेज न्याय की दिशा में कदम। महाराष्ट्र में प्याज खरीद की दर बढ़ाई गई, 1875 रुपए से अब 2175 प्रति क्विंटल किए गए दाम। केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को भेजा एक नोटिस, ओटीटी पर पायरेटेड कंटेंट हटाने का निर्देश, 15 दिनों में कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। जम्मू कश्मीर के विवादित किताबों पर एलजी का एक्शन, 8 अधिकारी सस्पेंड, हाई लेवल जांच के आदेश। दिल्ली दंगा मामले में शर्जील इमाम उमर खालिद की अर्जी खारिज हुई, कड़कर डूमा कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। दिल्ली में गायक मोहम्मद आसिफ को धमकी मिली, विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांगल ने रंगदारी की मांग की है, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने FIR की दर्ज। शोपियां के सैदपोरा पियान इलाके में मुठभेड़, आतंकी जाकिर और लतीफ भट्ट को सुरक्षा बलों ने मार गिरा। मुजफ्फरनगर फुलत मदरसे में घंटों छानबीन, स्वामी यशवीर महाराज के दावों के बाद से हरकत में आया प्रशासन, धर्मांतरण के आरोपों की जांच तेज। दिल्ली सरकार के फ्लैगशिप स्वास्थ्य सुविधा केंद्र के लिए बहुप्रचारित अब नेक्स्ट जेन ई हॉस्पिटल ऐप की पोल खुल गई है, हाईकोर्ट ने ऐप को प्रस्तावित डेमो तत्काल रद्द करने के भी आदेश दिए। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला, 52 अधिकारियों के तबादले, 19 का प्रमोशन। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की, बिना वैध रजिस्ट्रेशन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने पर भी चिंता जताई। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से सड़कें तालाब बनी, वसई में पानी के बीच में हालांकि मस्ती करते दिखे बच्चे।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कुंगा के पास में भारी बारिश के चलते भूस्खलन, रामनगर उधमपुर रोड बंद, यातायात प्रभावित। लाहौल स्पीति में चंद्रभागा नदी उफान पर है, डूबा जोबरंग पुल, 300 से ज्यादा की आबादी वाले 3 गांवों की आवाजाही से प्रभावित। मध्य प्रदेश के बालाघाट में भारी बारिश के चलते 16 ग्रामीण फंसे, प्रशासन और राहत दल के द्वारा गांव वालों को सफल रेस्क्यू किया गया। गुजरात के बनासकांठा में मानसून की पहली बारिश में जलमग्न हुआ धान्य, कई इलाकों में जलभराव। दूसरी टी20 में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया, 6 गेंद बाकी रहते हासिल के 191 रनों का लक्ष्य। इंग्लैंड की ओर से जेकब मैथिल ने बनाया नाबा 76 रन, कप्तान हैरी ब्रुक ने जड़े ताबड़तोड़ 39 रन। वैभव सूर्यवंशी के नाम एक कीर्तिमान, भारत की ओर से सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करने वाले खिलाड़ी, इंग्लैंड के खिलाफ बनाए सिर्फ 14 रन जिसमें 2 छक्के हालांकि शामिल। दूसरी टी20 में वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलने पर बीसीसीआई ने कहा कि भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक दिन। 5 मैचों की सीरीज में मेजबान 1-0 से आगे, 7 जुलाई को अगला टी20 मुकाबला है। बिहार के समस्तीपुर में बख्तियारपुर ताजपुर गंगा मेला ब्रिज का स्लैब गिर गया, हादसे में 4 मजदूर घायल हो गए। लुधियाना की खन्ना में युवती को 2 गोलियां मारने के बाद से युवक ने खुद को भी मारी गोली, बिना आईडी और रजिस्टर के नाम दर्ज किए गए होटल में कमरा बुक किया था। गुजरात के महिसागर में कार में 2 महिलाओं को टक्कर मार दी, हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, कार छोड़कर चालक फरार। फरीदकोट में लग्जरी कार में करोड़ों के हेरोइन बरामद, 3 ड्रग तस्कर फरार। आगरा बाथरूम मर्डर केस में आरोपी पत्नी रूबी को 14 दिनों की जेल, पैरवी के लिए कोई भी वकील नहीं था। सतारा में सिलेंडर ब्लास्ट से दहला इलाका, टीन शेड वाला मकान तबाह। जयपुर पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से बदले गए साइलेंसर, बम्पर और प्रेशर हॉर्न पर चलाया बुलडोजर, सड़क सुरक्षा और ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए कदम उठाए। लखनऊ के पारा थाना इलाके में 150 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़े दिव्यांग छात्र, कहा कि शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया, 2 महीने के बाद भी आरोपी को पकड़ नहीं पाई पुलिस। रोहतक में 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार, कई मोबाइल फोन बरामद। अलवर में युवक की हत्या के मामले में 24 घंटे के बाद पुलिस का एक्शन, 3 आरोपी गिरफ्तार। पटना के छात्र को मोहम्मद शमशाद आलम नाम के शख्स ने किया अपहरण, और 3 दिन के बाद बदहवास अवस्था में छात्रा मिली। फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी में युवक की गोली मारकर हत्या, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के बीड में मुख्य चौराहे पर एटीएम उखाड़ने की कोशिश हुई है, घटना सीसीटीवी में कैद। धनबाद के निरसा विधायक अरूप चैटर्जी की धमकी देना उनको पड़ा भारी, पाकिस्तान में बैठे प्रिंस खान के वसीपुर घर पर चला बुलडोजर। रेवाड़ी मर्डर मिस्ट्री में पति के मर्डर की सुसाइड को दिखाने की कोशिश की गई थी, डिलीट चैट और 49 कॉल्स ने पत्नी का खौफनाक राज खोल दिया। अमरनाथ यात्रा के दूसरे दिन लगातार यात्रा जारी है, 2 दिन में अब तक 30,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा बर्फानी के किए दर्शन। अमरनाथ यात्रा के बीच में गौरव के पल, पहलगाम में लहराया तिरंगा, चंदनबाड़ी 20 कैंप पर भारतीय सेना ने फहराया ये विशाल तिरंगा। भारत मंडपम में देश के सबसे बड़े टॉय एक्सपो का शुभारंभ, 7 जुलाई तक चलेगा एक्सपो। बीजिंग जू में स्टार पांडा मिंग लान ने मनाया 11वां जन्मदिन, जू प्रशासन ने खास केक काटकर जन्मदिन सेलिब्रेट किया। पूर्वी कांगो में भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से किया गया सम्मानित, 651 शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र का मेडल मिला। रूसी सेना का यूक्रेनी शहरों पर बड़ा हमला, सुमी शहर पर रात भर हुए हमलों में 1 बच्चे समेत 3 लोगों की मौत, 27 लोग घायल। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के एक हिस्से पर कब्जे करने की बात कही, रूसी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बड़ा ऐलान। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको का ऐलान, यूक्रेन को सैन्य सहायता देने से कहा इनकार, कहा कि यूक्रेन में चल रहे संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी की अंतिम यात्रा में शामिल हुए, लाखों लोग हाथों में झंडा लिए हुए नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक नीलसन ने कहा कि अमेरिका अभी भी हमारे देश पर नियंत्रण की कोशिश में लगा, साफ शब्दों में कहा कि ग्रीनलैंड कभी भी बिक्री के लिए तैयार नहीं। ब्रिटेन के निवर्तमान प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का बड़ा बयान, इस्तीफा देने के फैसले पर कहा कि बहुत ही कठिन और कश्मकश भरा रहा। अफ्रीकी देश माली में आर्थिक संकट के बीच में विद्रोही गुट ने फिर से बड़ा हमला किया, सेना के गढ़ एनिफिस शहर में घुसे अलकायदा से जुड़े हुए उग्रवादी, 5 अलग अलग जगहों पर फायरिंग। ईरान के बाद से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का तुर्की दौरा, इस्तांबुल में राष्ट्रपति अर्दोगन से मुलाकात, निवेश और व्यापार को लेकर बातचीत। जर्मनी के एयरपोर्ट शहर में बड़ा विरोध प्रदर्शन, एएफडी पार्टी के सम्मेलन को रोकने के लिए सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी।
यूरोपीय देशों में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी, यूरोप में हीट वेव के चलते अब तक 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में हीट वेव का बड़ा असर।

0: उत्तर प्रदेश राजनीति का वो रणक्षेत्र जहां जीत हार देश की तकदीर भी बदलती रही है। इस बार 2027 का यूपी विधानसभा का चुनाव काफी अहम है। चुनाव अगले साल होने हैं लेकिन सियासत अभी से शुरू है।
1: राजनीति में कई बार संदेश भाषणों से नहीं तस्वीरों से लिखा जाता है। स्वागत केवल सम्मान नहीं होता, वो शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन भी होता है। लखनऊ की सड़कों पर आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखी जब नितिन नवीन पहली बार बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद लखनऊ पहुंचे। तो सवाल यह कि क्या नितिन नवीन का दौरा बीजेपी के 2027 चुनाव अभियान का औपचारिक आगाज है? क्या बीजेपी का संगठन विपक्ष के सामाजिक समीकरणों पर फिर भारी पड़ेगा या इस बार मुकाबला बदल चुका है? क्या यूपी में 2027 की लड़ाई सत्ता बचाने की होगी या सत्ता बदलने की?
2: लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूँ। भगवान प्रभु श्री राम का भूमि हम कह सकते हैं, भोले बाबा काशी विश्वनाथ का नगरी, मथुरा की नगरी, भगवान की नगरी, उस नगरी को नमन करता हूँ और अपने सुधे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करूँगा।
1: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का लखनऊ एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए सीएम योगी खुद मौजूद थे, साथ में बीजेपी के दिग्गज मंत्री और नेता थे।
3: उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। उत्तर प्रदेश का आम जनमानस आज मान रहा है, आज उत्तर प्रदेश का युवा चाह रहा है कि आदरणीय नितिन नवीन जी जिस ढंग से सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरे प्रदेश के युवाओं में, माताओं बहनों में, गरीबों में, आम जनता में भारी उत्साह है।
1: यूपी विधानसभा चुनाव अगले साल के शुरुआती महीनों में होना है लेकिन बीजेपी ने अपनी राजनीतिक घड़ी तेज कर दी है। लखनऊ दौरे पर नितिन नवीन का एजेंडा साफ है। 2024 की समीक्षा, सोशल इंजीनियरिंग, सरकार संगठन में तालमेल, वोटर आउटरीच, 2027 की जीत का ब्लूप्रिंट। बीजेपी अध्यक्ष पद संभालने के बाद नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी ने बंगाल में ऐतिहासिक रूप से सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की, जबकि असम और पुडुचेरी में अपनी सत्ता बरकरार रखी। केरल में भी पार्टी का वोट बैंक तेजी से बढ़ा है। अब इसी विनिंग फॉर्मूले के साथ वो यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव लगातार पीडीए के फॉर्मूले को जीत का मंत्र बताते रहे हैं।
4: हम सबसे अपील करेंगे, जो हम लोगों ने एक आवाज दी है कि पीडीए से सब जुड़ जाएं। मुझे उम्मीद है पीडीए की लड़ाई मजबूत होगी, पीडीए एनडीए को हराएगा और जब हम लोग टिकट बांट रहे हैं, सीटें बांट रहे हैं, तब बीजेपी अपनी टिकट काटने की सोच रही है। सोचो, बीजेपी टिकट काटना चाहती है, हम सीटें बांट करके जनता में पहुंचे।
5: नफरत के सहारे ये सत्ता में आना चाहते हैं लेकिन देश जाग गया है, पीडीए जाग गया है, इस बार मुकाबला पीडीए करेगा एनडीए का।
1: हालांकि जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं उसमें से नितिन नवीन के स्वागत करने पहुंचे यादव समाज के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि यादव समाज को बीजेपी में ही सम्मान और भागीदारी मिली है।
6: यादों की जगह उत्तर प्रदेश के अंदर हो, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में है। 6 केंद्र में मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के बना रखे हैं। हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश में मंत्री, मुझे भाजपा पार्षद दल का उपनेता बनाया गया। हमारे तमाम पद ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण पद यादों के।
7: इस बार
6: अखिलेश जी का जो पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको हमारा समाज पूरी तरीके से जान चुका है।
1: यूपी की राजनीति में हर चुनाव सामाजिक समीकरणों और संगठनात्मक ताकत की नई परीक्षा बनकर आता है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के बाद बीजेपी के लिए अब सबसे बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है जबकि विपक्ष अपनी जीत का दावा ठोक रहा है। ऐसे में लखनऊ में जो बिसात नितिन नवीन बिछाएंगे उसकी गूंज 2027 विधानसभा चुनाव में जरूर सुनाई देगी। आज तक ब्यूरो।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहे हैं, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब जांच में सामने आ रहा है कि पूरा खेल एक गैंग के तौर पर चल रहा था। बाकायदा बैठक होती थी, पैसों का हेर फेर होता था, एक दूसरे को बांटे जाते थे।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अयोध्या पुलिस ने पूछताछ के दौरान अविनाश शुक्ला को पिछले 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाई। जैसे ही उसने खुद को चढ़ावे से पैसे निकालते देखा वो टूट गया और लगातार चोरी करने की बात स्वीकार कर ली। पूछताछ में अविनाश ने बताया कि चोरी की रकम से एक ब्रेजा कार खरीदी थी, ये कार उसने अपने भाई के नाम खरीदी। इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ कि कार चढ़ावा चोरी के पैसे से खरीदी गई है। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आते ही अविनाश ने कार को तुरंत प्रतापगढ़ स्थित घर भेज दिया। इस मामले में अविनाश के भाई अभिषेक शुक्ला से भी पूछताछ की गई है।
7: वहीं अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर एक कार भी बरामद कर ली गई है। ये कार ये पीछे खड़ी है, ये कार अविनाश शुक्ला ने चढ़ावा चोरी की रकम से अपने भाई अभिषेक के नाम पर खरीदी थी।
1: जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। चढ़ावा चोरी गैंग के सभी आरोपी एक दूसरे की गतिविधियों से पूरी तरह वाकिफ थे। कौन कब कैसे चोरी कर रहा है इसकी जानकारी सभी को रहती थी। चढ़ावा चोरी के बाद सभी आरोपी नियमित रूप से बैठक करते थे। उस बैठक में चोरी का माल बांटने और आगे के प्लान पर चर्चा होती थी। इन बैठकों में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा समेत 6 आरोपी शामिल होते थे। जांच में यह भी सामने आया है कि बाद में टिन्नू यादव का भतीजा भी इन बैठकों में शामिल होने लगा था। मई के आखिरी सप्ताह में मामला खुलने से ठीक पहले भी आरोपियों की एक बैठक हुई थी। अब पुलिस चोरी की रकम, उससे खरीदी गई संपत्तियों और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। कल करीब 13 घंटे की पूछताछ के बाद अविनाश शुक्ला को अयोध्या जेल भेज दिया गया है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
0: यूपी चुनाव से पहले हुए राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस खुलासे को विपक्ष छोड़ना नहीं चाहता और अब समाजवादी पार्टी ने गाना जारी किया है, जिसको लेकर बीजेपी पर तंज कसा गया है।

समाजवादी पार्टी की ओर से जारी किया ये नया वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा अगले चुनाव में विपक्ष के लिए बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार होगा। ये वीडियो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में साझा किया है, जिसमें भगवान राम को अयोध्या छोड़कर वापस वनवास जाते दिखाया जा रहा है।

0: समाजवादी पार्टी के इस वीडियो पर सरकार के नेता अखिलेश से सवाल पूछ रहे हैं।
1: जो गाना बजा रहे हैं ना कि राम बन गए कब आएंगे, तो जब अखिलेश यादव जी दर्शन करने जाएंगे तब राम जी आ जाएंगे।
0: राम मंदिर को लेकर पूरे विपक्ष का सुर एक है।
2: राम का नाम आपने बदनाम कर दिया, हिंदुत्व का नाम पे खेला और हिंदुइज्म को आपने फिनिश किया।
3: ये चंदा चोरी बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं जानते थे इन लोगों को? इन्हीं के तो लोग हैं जो बिठाए गए हैं ट्रस्ट में।
0: इस सियासत के बीच एसआईटी सूत्रों की माने तो अयोध्या में प्रतिदिन करीब 6 से 8 लाख रुपए की चोरी हो रही थी। एसआईटी ने एसबीआई बैंक के मैनेजर समेत 10 बैंक कर्मियों से पूछताछ की है। पूछताछ के बाद बैंक के लेन देन से जुड़े दस्तावेज और हिसाब किताब अपने कब्जे में लेकर उनकी जांच की जा रही है। अयोध्या में चोरी का मामला सामने आने से पहले ट्रस्ट के एसबीआई और पीएनबी बैंक खाते में प्रतिदिन करीब 16 से 18 लाख रुपए जमा हो रहे थे। चोरी का खुलासा होने के बाद अब प्रतिदिन जमा होने वाली राशि बढ़कर 24 से 26 लाख रुपए तक पहुँच गयी है। लेकिन सवाल वही, क्या ये जाँच बड़े पदाधिकारियों तक पहुंचेगी? पूरी सियासत अब इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। आज तक ब्यूरो।
4: राम मंदिर पर विवाद अभी बढ़ ही रहा था कि बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ाव और चोरी के आरोप लग रहे हैं, जिसे लेकर अब जांच कमेटी बना दी गई है।
0: सवाल भक्तों की आस्था का है, उनके दान का है, जिसमें गड़बड़ी का विवाद अब बद्रीनाथ धाम तक पहुंच गया है।
5: सबसे पहले ये मामला उजागर हुआ जब भैरव सेना संगठन ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ में तैनात बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष के निजी सचिव ने प्रसाद में चोरी की है और जो चढ़ावा आता है उसमें सेंध मारी है। 2 तारीख का यह मामला बताया जा रहा है, करीब 8:30 से 9:30 के बीच में ये चोरी की घटना हुई, ऐसे आरोप लग रहे हैं।
0: दावा किया जा रहा है कि बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के सचिव ने पेटी खोली और दान के पैसों में हेरा फेरी की। प्रशासन कह रहा है कि सीसीटीवी चेक किए गए हैं और ऐसा कोई मामला सामने नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर सीसीटीवी को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा?
5: 2 तारीख को सुबह 8:30 के आसपास इन्होंने मंदिर गणना समिति के सदस्य रहते हुए बिना किसी स्वीकृति के पेटी को खोल दिया गया। अब इस पेटी में कितनी चोरी हुई है, कब ये चोरी हुई है, ये जांच का विषय है, या फिर ये आरोप बेबुनियाद है, ये भी जांच का विषय है।
0: उधर बीकेटीसी अध्यक्ष ने आरोपी शख्स के सचिव होने से इनकार किया है और जांच के बाद दोषियों पर एक्शन का भरोसा दिया है
6: और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
0: मामले ने उत्तराखंड की सियासत को गर्म कर दिया है, जहां कांग्रेस अब बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है।
7: इस तरह की गतिविधियां और ये प्रकरण सामने आ रहे हैं, उससे न केवल सरकार और मंदिर समिति की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि करोड़ों जो हिंदू श्रद्धालु हैं, आस्थावान हैं, उनकी भावनाएं भी आहत हो रही है।
0: सवाल करोड़ों भक्तों की आस्था का है, उनके दान किए पैसों का है। राम मंदिर के बाद अब बद्रीनाथ से आ रही खबरों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: अब बात यूपी में 2027 को लेकर बीजेपी की तैयारी की, जिसे लेकर नितिन नवीन यूपी के दौरे पर है और अगले कुछ दिनों में वो यूपी में रहकर यूपी के चुनाव को लेकर मंथन करेंगे।
0: यूपी चुनाव की तैयारियों का मंथन करने जब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे तो खुद योगी आदित्यनाथ उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। साथ में बीजेपी के दिग्गज मंत्री और नेता भी थे।
8: लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। भगवान प्रभु श्री राम का भूमि और हम कह सकते हैं भोले बाबा काशी विश्वनाथ का नगरी, मथुरा की नगरी, भगवान की नगरी, उस नगरी को नमन करता हूं और अपने सुधे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करूंगा।
0: लखनऊ के दौरे पर नितिन नवीन की बैठकों का एक लंबा दौर चलेगा, जहां विधायक सांसदों के अलावा सीएम, डिप्टी सीएम और संघ के लोग भी शामिल होंगे।
9: उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। उत्तर प्रदेश का आम जनमानस आज मान रहा है, आज उत्तर प्रदेश का युवा चाह रहा है कि आदरणीय नितिन नवीन जी जिस ढंग से सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरे प्रदेश के युवाओं में, माताओं बहनों में, गरीबों में, आम जनता में भारी उत्साह है।
0: नितिन नवीन के दौरे पर अखिलेश के पीडीए के कार्ड का संदेश भी देखने को मिला। नितिन नवीन का स्वागत करने पहुंचे यादव समाज के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि यादव समाज को बीजेपी में ही सम्मान और भागीदारी मिली है।
10: यादव की जगह उत्तर प्रदेश के अंदर हो, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में है। 6 केंद्र में मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के बना रखे हैं। हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश में मंत्री, मुझे भाजपा पार्षद दल का उप नेता बनाया गया। हमारे तमाम पद ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण पद यादव के।
11: इस बार
10: अखिलेश जी का जो पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको हमारा समाज पूरी तरीके से जान चुका है।
0: यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे झटके और दो बार सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्पेंसी जैसे खतरों को लेकर नितिन नवीन का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आज तक ब्यूरो
4: माधव पंजाब के, जहां पर चुनाव से पहले कांग्रेस की टेंशन बढ़ती दिख रही है। चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में खींचतान अब खुलकर सामने आ रही है।
12: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर के बाहर मचे इस हंगामे ने एक बार फिर दिल्ली में कांग्रेस आला कमान की टेंशन बढ़ा दी है। चन्नी दिल्ली कूच की तैयारी में है, लेकिन सूत्रों की माने तो चन्नी की मांग से आला कमान सहमत नहीं है। पिछले दिनों बनी कांग्रेस ऑब्जर्वर पैनल ने पंजाब कांग्रेस प्रमुख के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी के नाम की सिफारिश की थी। पैनल की सिफारिशों के बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने राजा वडिंग को ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए रखा। ये रिपोर्ट पंजाब कांग्रेस नेताओं के साथ लंबी बातचीत के बाद तैयार की गई थी। जहां राजा वडिंग को लेकर नाराजगी थी, तो वहीं चन्नी को लेकर लोगों का समर्थन था। चन्नी को भरोसा था कि रिपोर्ट के बाद आला कमान पंजाब में नेतृत्व में बदलाव करेगा, लेकिन हाईकमान ने इस रिपोर्ट को नजरअंदाज किया। हालांकि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग किसी भी तक की खींचतान से इनकार कर रहे हैं।
13: चन्नी जी को कोई ऑथराइजेशन की जरूरत है? चन्नी जी जब चाहे, क्योंकि राहुल गांधी जी चन्नी साहब को प्यार करते हैं, कांग्रेस पार्टी उनको प्यार करती है। देखो, मेरी बात है कि चन्नी साहब सीएम फेस बन जाएं, कोई और बन जाए, मैं तो इस रेस में नहीं हूँ।
12: राहुल गांधी 7 जुलाई को विदेश से लौट आएंगे, जिसके बाद चन्नी राहुल से मुलाकात करेंगे। वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल भी इसको लेकर हरकत में आ गए हैं, जो कुछ दिन चंडीगढ़ में बिता सकते हैं, जहां चन्नी और राजा वड्डी के साथ उनकी बातचीत होगी। इस बीच बीजेपी के चन्नी को दिए गए ऑफर ने पंजाब की सियासत को नई हवा दे दी है।
14: ये कांग्रेस का एक कल्चर है, इसमें लोटस का कोई रोल नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी जो है वो चट्टान की तरह खड़ी है, वो लोगों के दिल में बसी है। 22 सूबों में हमारी सरकार चलती है, सब जगह तरक्की हो रही है।
15: हाँ भाई, खुश हो लो जरा, थोड़े 2-4 दिन के लिए दिल बहलाने को, यही ख्याल अच्छा है गालिब।
16: वडिंग साहब, सो
15: मेरी बेनती है, इन्हें बीजेपी वालों नूं बावां भी खुलियां रख लें, भावे लत्तां भी खुलियां रख लें।
12: पिछले चुनाव से पहले सिद्धू और अमरिंदर की खींचतान कांग्रेस को पंजाब में महंगी पड़ी थी। ऐसे में इस बार चुनाव से पहले चन्नी की नाराजगी कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रही है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ असीम बस्सी, चंडीगढ़ आज तक।
4: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: चढ़ावा चोरी मामले में अब अयोध्या पुलिस जेल में बंद पांच आरोपियों से करेगी आज पूछताछ। टिन्नू यादव से भी सवाल, ममता का सरकार पर तंज, कहा राम का नाम किया बदनाम। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहले यूपी के दौरे पर नितिन नवीन का चुनावी मंत्र, पदाधिकारियों से कहा विपक्ष की नकारात्मक राजनीति के जाल में न फंसे, राज्य के विकास पर करें फोकस। पीएम मोदी ने विपक्ष पर युद्धकाल में देश को डराने का लगाया आरोप, राजस्थान के बालोतरा में बोले संकट में राष्ट्रहित को आगे रखकर फैसला, देश पर नहीं डाला बोझ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर आतंकवादियों से मुठभेड़, मारे गए दोनों आतंकवादी, कैमरे में कैद दोनों दहशतगर्द। मूसलाधार बारिश से पाने पाने मुंबई, और बढ़ सकती है मुसीबतें, आज भारी बरसात का रेड अलर्ट, बीएमसी के लोगों से अपील, जरूरी हो तभी निकलें बाहर। उत्तर प्रदेश राजनीति का वो रणक्षेत्र जहां जीत हार देश की तकदीर भी बदलती रही है। इस बार 2027 का यूपी विधानसभा का चुनाव काफी अहम है, चुनाव अगले साल होने हैं लेकिन सियासत अभी से शुरू है।
1: राजनीति में कई बार संदेश भाषणों से नहीं तस्वीरों से लिखा जाता है। स्वागत केवल सम्मान नहीं होता, वो शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन भी होता है। लखनऊ की सड़कों पर आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखी जब नितिन नवीन पहली बार बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद लखनऊ पहुंचे। तो सवाल यह कि क्या नितिन नवीन का दौरा बीजेपी के 2027 चुनाव अभियान का औपचारिक आगाज है? क्या बीजेपी का संगठन विपक्ष के सामाजिक समीकरणों पर फिर भारी पड़ेगा या इस बार मुकाबला बदल चुका है? क्या यूपी में 2027 की लड़ाई सत्ता बचाने की होगी या सत्ता बदलने की?
2: लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं, भगवान प्रभु श्री राम का भूमि, और हम कह सकते हैं भोले बाबा काशी विश्वनाथ का नगरी, मथुरा की नगरी, भगवान की नगरी, उस नगरी को नमन करता हूं और अपने सुधे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करूंगा।
1: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का लखनऊ एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए सीएम योगी खुद मौजूद थे, साथ में बीजेपी के दिग्गज मंत्री और नेता थे।
3: उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, उत्तर प्रदेश का आम जनमानस आज मान रहा है, आज उत्तर प्रदेश का युवा चाह रहा है कि आदरणीय नितिन नवीन जी जिस ढंग से सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरे प्रदेश के युवाओं में, माताओं बहनों में, गरीबों में, आम जनता में भारी उत्साह है।
1: यूपी विधानसभा चुनाव अगले साल के शुरुआती महीनों में होना है लेकिन बीजेपी ने अपनी राजनीतिक घड़ी तेज कर दी है। लखनऊ दौरे पर नितिन नवीन का एजेंडा साफ है, 2024 की समीक्षा, सोशल इंजीनियरिंग, सरकार संगठन में तालमेल, वोटर आउटरीच, 2027 की जीत का ब्लूप्रिंट। बीजेपी अध्यक्ष पद संभालने के बाद नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी ने बंगाल में ऐतिहासिक रूप से सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की, जबकि असम और पुडुचेरी में अपनी सत्ता बरकरार रखी। केरल में भी पार्टी का वोट बैंक तेजी से बढ़ा है। अब इसी विनिंग फॉर्मूले के साथ वो यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने की रणनीति बना रहे हैं लेकिन अखिलेश यादव लगातार पीडीए के फॉर्मूले को जीत का मंत्र बताते रहे हैं।
4: हम सबसे अपील करेंगे, जो हम लोगों ने एक आवाज दी है कि पीडीए से सब जुड़ जाएं, मुझे उम्मीद है पीडीए की लड़ाई मजबूत होगी, पीडीए एनडीए को हराएगा और जब हम लोग टिकट बांट रहे हैं, सीटें बांट रहे हैं, तब बीजेपी अपनी टिकट काटने की सोच रही है। सोचो, बीजेपी टिकट काटना चाहती है, हम सीटें बांट करके जनता में पहुंचे।
5: नफरत के सारे ये सत्ता में आना चाहते हैं लेकिन देश जाग गया है, पीडीए जाग गया है, इस बार मुकाबला पीडीए करेगा एनडीए का।
1: हालांकि जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं उसमें से नितिन नवीन के स्वागत करने पहुंचे यादव समाज के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि यादव समाज को बीजेपी में ही सम्मान और भागीदारी मिली है।
6: यादों की जगह उत्तर प्रदेश के अंदर हो, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में है, 6 केंद्र में मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के बना रखे हैं, हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश में मंत्री, मुझे भाजपा पार्षद दल का उपनेता बनाया गया, हमारे तमाम पद ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण पद यादों के।
7: इस बार
6: अखिलेश जी का जो पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको हमारा समाज पूरी तरीके से जान चुका है।
1: यूपी की राजनीति में हर चुनाव सामाजिक समीकरणों और संगठनात्मक ताकत की नई परीक्षा बनकर आता है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के बाद बीजेपी के लिए अब सबसे बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, जबकि विपक्ष अपनी जीत का दावा ठोक रहा है। ऐसे में लखनऊ में जो बिसात नितिन नवीन बिछाएंगे, उसकी गूंज 2027 विधानसभा चुनाव में जरूर सुनाई देगी। आज तक ब्यूरो।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहे हैं, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब जांच में सामने आ रहा है कि पूरा खेल एक गैंग के तौर पर चल रहा था। बाकायदा बैठक होती थी, पैसों का हेर फेर होता था, एक दूसरे को बांटे जाते थे।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अयोध्या पुलिस ने पूछताछ के दौरान अविनाश शुक्ला को पिछले 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाई। जैसे ही उसने खुद को चढ़ावे से पैसे निकालते देखा, वो टूट गया और लगातार चोरी करने की बात स्वीकार कर ली। पूछताछ में अविनाश ने बताया कि चोरी की रकम से एक ब्रेजा कार खरीदी थी। ये कार उसने अपने भाई के नाम खरीदी, इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ कि कार चढ़ावा चोरी के पैसे से खरीदी गई है। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आते ही अविनाश ने कार को तुरंत प्रतापगढ़ स्थित घर भेज दिया। इस मामले में अविनाश के भाई अभिषेक शुक्ला से भी पूछताछ की गई है।
7: वहीं अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर एक कार भी बरामद कर ली गई है। ये कार ये पीछे खड़ी है, ये कार अविनाश शुक्ला ने चढ़ावा चोरी की रकम से अपने भाई अभिषेक के नाम पर खरीदी थी।
1: जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। चढ़ावा चोरी गैंग के सभी आरोपी एक दूसरे की गतिविधियों से पूरी तरह वाकिफ थे। कौन कब कैसे चोरी कर रहा है, इसकी जानकारी सभी को रहती थी। चढ़ावा चोरी के बाद सभी आरोपी नियमित रूप से बैठक करते थे। उस बैठक में चोरी का माल बांटने और आगे के प्लान पर चर्चा होती थी। इन बैठकों में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा समेत 6 आरोपी शामिल होते थे। जांच में यह भी सामने आया है कि बाद में टिन्नू यादव का भतीजा भी इन बैठकों में शामिल होने लगा था। मई के आखिरी सप्ताह में मामला खुलने से ठीक पहले भी आरोपियों की एक बैठक हुई थी। अब पुलिस चोरी की रकम, उससे खरीदी गई संपत्तियों और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। कल करीब 13 घंटे की पूछताछ के बाद अविनाश शुक्ला को अयोध्या जेल भेज दिया गया है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
0: यूपी चुनाव से पहले हुए राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस खुलासे को विपक्ष छोड़ना नहीं चाहता और अब समाजवादी पार्टी ने गाना जारी किया है, जिसको लेकर बीजेपी पर तंज कसा गया है।

समाजवादी पार्टी की ओर से जारी किया ये नया वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा अगले चुनाव में विपक्ष के लिए बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार होगा। ये वीडियो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में साझा किया है, जिसमें भगवान राम को अयोध्या छोड़कर वापस वनवास जाते दिखाया जा रहा है।

0: समाजवादी पार्टी के इस वीडियो पर सरकार के नेता अखिलेश से सवाल पूछ रहे हैं।
1: जो गाना बजा रहे हैं ना कि राम बन गए कब आएंगे, तो जब अखिलेश यादव जी दर्शन करने जाएंगे तब राम जी आ जाएंगे।
0: राम मंदिर को लेकर पूरे विपक्ष का सुर एक है।
2: राम का नाम आपने बदनाम कर दिया, हिंदुत्व का नाम पे खेला और हिंदुइज्म को आपने फिनिश किया।
3: ये चंदा चोरी बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं जानते थे इन लोगों को? इन्हीं के तो लोग हैं जो बिठाए गए हैं ट्रस्ट में।
0: इस सियासत के बीच एसआईटी सूत्रों की माने तो अयोध्या में प्रतिदिन करीब 6 से 8 लाख रुपए की चोरी हो रही थी। एसआईटी ने एसबीआई बैंक के मैनेजर समेत 10 बैंक कर्मियों से पूछताछ की है। पूछताछ के बाद बैंक के लेन देन से जुड़े दस्तावेज और हिसाब किताब अपने कब्जे में लेकर उनकी जांच की जा रही है। अयोध्या में चोरी का मामला सामने आने से पहले ट्रस्ट के एसबीआई और पीएनबी बैंक खाते में प्रतिदिन करीब 16 से 18 लाख रुपए जमा हो रहे थे। चोरी का खुलासा होने के बाद अब प्रतिदिन जमा होने वाली राशि बढ़कर 24 से 26 लाख रुपए तक पहुँच गयी है। लेकिन सवाल वही, क्या ये जाँच बड़े पदाधिकारियों तक पहुंचेगी? पूरी सियासत अब इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। आज तक ब्यूरो।
4: राम मंदिर पर विवाद अभी बढ़ ही रहा था कि बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ाव और चोरी के आरोप लग रहे हैं, जिसे लेकर अब जांच कमेटी बना दी गई है।
0: सवाल भक्तों की आस्था का है, उनके दान का है, जिसमें गड़बड़ी का विवाद अब बद्रीनाथ धाम तक पहुंच गया है।
5: सबसे पहले ये मामला उजागर हुआ जब भैरव सेना संगठन ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ में तैनात बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष निजी सचिव ने प्रसाद में चोरी की है और जो चढ़ावा आता है उसमें सेंध मारी है। 2 तारीख का यह मामला बताया जा रहा है। करीब 8:30 से 9:30 के बीच में ये चोरी की घटना हुई, ऐसे आरोप लग रहे हैं।
0: दावा किया जा रहा है कि बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के सचिव ने पेटी खोली और दान के पैसों में हेरा फेरी की। प्रशासन कह रहा है कि सीसीटीवी चेक किए गए हैं और ऐसा कोई मामला सामने नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर सीसीटीवी को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा?
5: 2 तारीख को सुबह 8:30 के आसपास इन्होंने मंदिर गणना समिति के सदस्य रहते हुए बिना किसी स्वीकृति के पेटी को खोल दिया गया। अब इस पेटी में कितनी चोरी हुई है, कब ये चोरी हुई है, ये जांच का विषय है या फिर ये आरोप बेबुनियाद है, ये भी जांच का विषय है।
0: उधर बीकेटीसी अध्यक्ष ने आरोपी शख्स के सचिव होने से इनकार किया है और जांच के बाद दोषियों पर एक्शन का भरोसा दिया है
6: और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
0: मामले ने उत्तराखंड की सियासत को गर्म कर दिया है, जहां कांग्रेस अब बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है।
7: इस तरह की गतिविधियां और ये प्रकरण सामने आ रहे हैं, उससे न केवल सरकार और मंदिर समिति की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि करोड़ों जो हिंदू श्रद्धालु हैं, आस्थावान हैं, उनकी भावनाएं भी आहत हो रही है।
0: सवाल करोड़ों भक्तों की आस्था का है, उनके दान किए पैसों का है। राम मंदिर के बाद अब बद्रीनाथ से आ रही खबरों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: अब बात यूपी में 2027 को लेकर बीजेपी की तैयारी की, जिसे लेकर नितिन नवीन यूपी के दौरे पर है और अगले कुछ दिनों में वो यूपी में रहकर यूपी के चुनाव को लेकर मंथन करेंगे।
0: यूपी चुनाव की तैयारियों का मंथन करने जब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे तो खुद योगी आदित्यनाथ उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। साथ में बीजेपी के दिग्गज मंत्री और नेता भी थे।
8: लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। भगवान प्रभु श्री राम का भूमि और हम कह सकते हैं भोले बाबा काशी विश्वनाथ का नगरी, मथुरा की नगरी, भगवान की नगरी, उस नगरी को नमन करता हूं और अपने सुबह अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करूंगा।
0: लखनऊ के दौरे पर नितिन नवीन की बैठकों का एक लंबा दौर चलेगा, जहां विधायक सांसदों के अलावा सीएम, डिप्टी सीएम और संघ के लोग भी शामिल होंगे।
9: उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। उत्तर प्रदेश का आम जनमानस आज मान रहा है, आज उत्तर प्रदेश का युवा चाह रहा है कि आदरणीय नितिन नवीन जी जिस ढंग से सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरे प्रदेश के युवाओं में, माताओं बहनों में, गरीबों में, आम जनता में भारी उत्साह है।
0: नितिन नवीन के दौरे पर अखिलेश के पीडीए के कार्ड का संदेश भी देखने को मिला। नितिन नवीन का स्वागत करने पहुंचे यादव समाज के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि यादव समाज को बीजेपी में ही सम्मान और भागीदारी मिली है।
10: यादव की जगह उत्तर प्रदेश के अंदर हो, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में है। 6 केंद्र में मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के बना रखे हैं। हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश में मंत्री, मुझे भाजपा पार्षद दल का उपनेता बनाया गया। हमारे तमाम पद ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण पद यादव के।
11: इस बार
10: अखिलेश जी का जो पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको हमारा समाज पूरी तरीके से जान चुका है।
0: यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे झटके और दो बार सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्पेंसी जैसे खतरों को लेकर नितिन नवीन का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आज तक ब्यूरो
4: भाजपा पंजाब के, जहां पर चुनाव से पहले कांग्रेस की टेंशन बढ़ती दिख रही है। चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में खींचतान अब खुलकर सामने आ रही है।

0: मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर के बाहर मचे इस हंगामे ने एक बार फिर दिल्ली में कांग्रेस आला कमान की टेंशन बढ़ा दी है। चन्नी दिल्ली कूच की तैयारी में है, लेकिन सूत्रों की माने तो चन्नी की मांग से आला कमान सहमत नहीं है। पिछले दिनों बनी कांग्रेस ऑब्जर्वर पैनल ने पंजाब कांग्रेस प्रमुख के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी के नाम की सिफारिश की थी। पैनल की सिफारिशों के बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने राजा वडिंग को ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए रखा। ये रिपोर्ट पंजाब कांग्रेस नेताओं के साथ लंबी बातचीत के बाद तैयार की गई थी। जहां राजा वडिंग को लेकर नाराजगी थी, तो वहीं चन्नी को लेकर लोगों का समर्थन था। चन्नी को भरोसा था कि रिपोर्ट के बाद आला कमान पंजाब में नेतृत्व में बदलाव करेगा, लेकिन हाईकमान ने इस रिपोर्ट को नजरअंदाज किया। हालांकि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग किसी भी तक की खींचतान से इनकार कर रहे हैं।
1: चन्नी जी को कोई ऑथराइजेशन की जरूरत है? चन्नी जी जब चाहे, क्योंकि राहुल गांधी जी चन्नी साहब को प्यार करते हैं, कांग्रेस पार्टी उनको प्यार करती है। देखो, मेरी बात है कि चन्नी साहब सीएम फेस बन जाएं, कोई और बन जाएं, मैं तो इस रेस में नहीं हूं।
0: राहुल गांधी 7 जुलाई को विदेश से लौट आएंगे, जिसके बाद चन्नी राहुल से मुलाकात करेंगे। वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल भी इसको लेकर हरकत में आ गए हैं, जो कुछ दिन चंडीगढ़ में बिता सकते हैं, जहां चन्नी और राजा वडी के साथ उनकी बातचीत होगी। इस बीच बीजेपी के चन्नी को दिए गए ऑफर ने पंजाब की सियासत को नई हवा दे दी है।
2: ये कांग्रेस का एक कल्चर है, इसमें लोटस का कोई रोल नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी जो है वो चट्टान की तरह खड़ी है, वो लोगों के दिल में बसी है। 22 सूबों में हमारी सरकार चलती है, सब जगह तरक्की हो रही है।
3: हाँ भाई, खुश हो लो जरा, थोड़े 2-4 दिन के लिए दिल बहलाने को, यही ख्याल अच्छा है गाले।
4: सो
3: मेरी बेनती है, इन बीजेपी वाले नु बावा भी खुलियां रख लें, भावे लता भी खुलियां रख लें।
0: पिछले चुनाव से पहले सिद्धू और अमरिंदर की खींचतान कांग्रेस को पंजाब में महंगी पड़ी थी। ऐसे में इस बार चुनाव से पहले चन्नी की नाराजगी कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रही है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ असीम बस्सी, चंडीगढ़ आज तक।
5: देश के कई हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन बारिश की पहली किश्त ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। आपको अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन बात सबसे पहले मुंबई की करेंगे, जहां पर 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद मुंबई के कई इलाके पानी में डूबे दिख रहे हैं।

0: सड़कों पर सैलाब है, सबवे लहरों के बीच डूब चुका है। एक बार फिर भारी बारिश के चलते मुंबई में हाल बेहद बुरा है। चाहे अंधेरी हो या नाला सोपारा, वसई या विरार, हर ओर मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा है। लगातार हो रही बारिश ने मुंबई के लोगों का जीवन दुभर कर दिया है।
1: चांदीवली विधानसभा नाले सफाई झाली नाही, महापौर म्हणतात नाले सफाई झाली, उपमहापौर म्हणतात नाले सफाई झाली, पण नाले सफाई कुठे झाली? कालूराम कुठे गेला? नाल्याचा कॉन्ट्रॅक्टर कुठे गेला? कालूराम, हे बघा, वॉटर किंगडम आहे, वॉटर किंगडम चांदीवली विधानसभा।
0: एक एक तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर मॉनसून की बारिश के बीच मुंबई किस तरह की मुसीबत झेल रही है। गाड़ियां पानी के बीच फंसी हुई हैं, कहीं आना जाना मुश्किल है, बारिश का दौर थम नहीं रहा है, सड़कों पर बढ़ता जलस्तर लोगों का संकट बढ़ा रहा है। सबसे पहले भिवंडी इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। तेज बारिश से पूरा बाजार तालाब बन गया है, दुकानों में पानी भर गया है, गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, घुटनों तक पानी में लोग आ जा रहे हैं। किसी तरह जद्दोजहद कर अपनी दुकानों का सामान बचाने की कोशिश में लोग जुटे हुए हैं। अब नाला सोपारा हाईवे का हाल देखिए। सड़कों पर भरे पानी के चलते कई गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, लोगों को कहीं आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। नाला सोपारा में बढ़ता जलस्तर तेजी से रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ रहा है, जो आने वाले दिनों में मुंबई के लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकता है, क्योंकि नाला सोपारा और उसके आसपास के सभी मार्केट पूरी तरह से पानी में घिरे हुए हैं। गाड़ियों से भी गुजर रहे लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। मुंबई में बीते चार दिनों से बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाके पानी में डूब गए हैं।

0: बीच पानी भरने के बाद अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। अब विरार इलाके की इन तस्वीरों को देखिए, दोनों ओर की सड़क पर सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। सड़कों पर गाड़ियां फंसी हुई हैं, दूर तक लंबी कतार नजर आ रही है। बांद्रा इलाके में सड़कें लबालब हैं, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। बारिश के बीच मुसीबत का दायरा बढ़ता जा रहा है।
1: मुंबई में सुबह से लगातार बारिश हो रही है और यह बारिश पिछले 3 से 4 दिनों से मुंबई में हो रही है। आज भी मौसम विभाग द्वारा मुंबई और मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, रायगढ़, थाने, पालघर, नवी मुंबई, इनके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया है। आप देख सकते हैं, हम इस वक्त मुंबई के घाटकोपर इलाके में हैं, जहां पर 1.5 से 2 फीट तक का पानी जो है वो मुंबई की सड़कों पर जमा हो गया है और सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील होती हुई यहाँ नजर आ रही हैं। लोग कई समय से यहाँ पर बस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो बस है वो नहीं आ रही है। गाड़ियों की आवाजाही थोड़ी यहाँ धीमी होती हुई नजर आ रही है।
0: वसई इलाके का हाल तो और भी ज्यादा बुरा है। पानी इतना ज्यादा भर गया है कि मानो पूरा इलाका टापू बन गया है। इस बीच बिजली न होने से करीब 450 परिवारों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।
2: वसई विरार में लगातार 4 दिन से जोरदार बारिश हो रही है। कई निचले इलाकों में पानी भर चुका है। फिलहाल इस वक्त मैं खड़ा हूँ वसई ईस्ट के मिठागर की बस्ती है। यहाँ हम देखेंगे तो ये जो रोड है जहाँ भरा है, इसके नीचे रास्ता है और ये रास्ते से अंदर हम 1.5 से 1.5 किलोमीटर जाए तो ये नमक की खेती करने वालों की बस्ती है। कुल 120 फैमिलीज वहाँ रहती है, 300 से 400 लोग है। हर साल इसी तरह ये रोड जो है पानी के नीचे चला जाता है। ये इन्होंने जानकारी दी जो है कि इनके घर में आसपास कुल कमर के ऊपर तक का पानी भर चुका है। बिजली भी कल से चली गई है और ये वस्ती के आसपास भी ये जो प्लेन इलाका है वहाँ भी ये भी पूरी तरह से भर चुका है। प्रशासन की ओर से इन्हें कोई अभी तक मदद पहुंची नहीं है। फिलहाल इन्हें खाने पीने की चीजों की सख्त जरूरत है क्योंकि लाइट कल से है नहीं और यही बारिश अगर लगातार चालू रही तो इनके हाल बेहाल हो सकते
0: हैं। इस बीच बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन की ओर से अब तक लोगों तक कोई मदद नहीं पहुंची है, जिससे लोगों पर आई आफत और ज्यादा बढ़ गई है।
3: हालत खराब है कल से लोगों से, क्योंकि लाइट भी नहीं है, कल से लाइट भी नहीं है और पानी भी जैसे बढ़ते ही जा रहा है और ऊपर से बारिश भी और ज्यादा ही होते जा रहा है। जैसे कि अभी 1-2 घंटा और गिरेगा तो घर में भी घुस सकता है बारिश पानी।
2: लाइट की क्या समस्या है उधर?
3: लाइट तो कल से ही नहीं है, कल से दोपहर से गई है, अभी तक आई ही नहीं है।
2: अभी अंदर कितना पानी है, कितने फैमिलीज अंदर रहती है?
3: फैमिली रहती है 450 फैमिली रहती है और कमर के ऊपर पानी है।
2: कि कुछ सुबह से कुछ प्रशासन की हेल्प हुई है?
3: कुछ भी नहीं, किसी ने हेल्प करने के लिए फोन भी नहीं किया, कुछ हेल्प आया ही नहीं।
0: बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा, जगह जगह भारी जल भराव है और लोग बेहद परेशान। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच मौसम विभाग ने भी शहर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर प्रशासन ने लोगों को बेहद जरूरी यात्रा करने की सलाह दी है ताकि मौसम की मार किसी की जिंदगी पर संकट न बने। मुंबई में हर साल की यही कहानी है, बारिश हुई और लोगों की जिंदगी आफत के बीच घिर गई। एक बार फिर ऐसी ही तस्वीरें शहर की पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। सैलाब के बीच जिंदगी संकट में घिरी है। मुंबई से प्रवीण नालावड़े के साथ दीपेश त्रिपाठी आज तक।
4: अब बात ईरान के सर्वोच्च नेता खामिनेई के अंतिम संस्कार की, जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर की हस्तियां पहुंच रहे हैं। आपको आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं।
5: ईरान के सर्वोच्च नेता की अंतिम विदाई में लाखों लोग शामिल होने पहुंच रहे हैं, जहां अली खामिनेई की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है।
6: इस समय मैं मौजूद हूँ ग्रैंड मुसल्ला में और मैं जहाँ मौजूद हूँ उसके ठीक पीछे अगर आप देखें कुछ ही दूरी पर आपको वो कॉफिन नजर आ जाएगा जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के शव को उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। दरअसल अगर आप देखें उनके साथ में चार कॉफिन आपको नजर आ रहे होंगे, चारों कॉफिन में सबसे ऊपर का जो कॉफिन है वो है सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई का। उसके नीचे अगर आप देखें उनके ग्रैंडसन यानी उनके पोते भी जो उसमें मारे गए थे, छोटा कॉफिन, उसके बाद उनके दामाद और उनकी जो कहते हैं कि मुश्तबा खामनेई की वाइफ का भी कॉफिन है, उनकी बेटी का कॉफिन है। और अगर आप देखें कि उनके साथ साथ चार कॉफिन से परिवार के अलग अलग लोगों के बताए जाते हैं कि उनके ये कॉफिन है। हालांकि कुछ लोग और मारे जाने का भी दावा किया गया था लेकिन उसकी पुष्टि अब तक ईरान में नहीं की गई है।
5: दुनिया भर से राजनेता, अधिकारी और धर्मगुरु तेहरान पहुंच चुके हैं और अंतिम यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। अमेरिका और इसराइल से कोई नहीं आया, वहीं लोगों के अंदर गम के साथ गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति इस पर तंज कसते भी नजर आए।
7: Two world wars, the Cold War, left America's enemies in the depths of history. We beat Venezuela in one day, and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice.
5: सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री की अंतिम यात्रा में मौजूदगी ने हर किसी को हैरान कर दिया। ओमान और कतर विदेशी प्रतिनिधियों की सूची में शामिल थे लेकिन सऊदी अरब के किसी भी प्रतिनिधि का नाम नदारद था। उधर सुरक्षा कारणों से नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो रहे हैं।
8: Doesn't allow him to come. They said it's very dangerous and we cannot provide security for him. And I think he will not come out. Do you know they have very, very advanced technology and they can recognize him and they can follow him. Where is he? And it's very dangerous for him. So because of that, he will not come out.
5: इस मौके पर 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों और धर्म गुरुओं को बुलाकर ईरान दुनिया भर को कई संदेश देने की कोशिश भी कर रहा है। अमेरिका और इसराइल के साथ युद्ध के बावजूद वो ये साबित करना चाहता है कि कूटनीतिक स्तर पर अभी वो उतना ही मजबूत है जितना 28 फरवरी से पहले था। तेहरान से गीता मोहन और सुमित चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।
4: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: चढ़ावा चोरी मामले में अब अयोध्या पुलिस जेल में बंद पांच आरोपियों से करेगी आज पूछताछ। तेनू यादव से भी सवाल, ममता का सरकार पर तंज, कहा राम का नाम किया बदनाम। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहले यूपी के दौरे पर नितिन नवीन का चुनावी मंत्र, पदाधिकारियों से कहा विपक्ष की नकारात्मक राजनीति के जाल में न फंसे, राज्य के विकास पर करें फोकस। पीएम मोदी ने विपक्ष पर युद्धकाल में देश को डराने का लगाया आरोप, राजस्थान के बालोतरा में बोले संकट में राष्ट्रहित को आगे रखकर फैसला, देश पर नहीं डाला बोझ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर आतंकवादियों से मुठभेड़, मारे गए दोनों आतंकवादी, कैमरे में कैद दोनों दहशतगर्द। मूसलाधार बारिश से पाने पाने मुंबई, और बढ़ सकती है मुसीबतें, आज भारी बरसात का रेड अलर्ट, बीएमसी के लोगों से अपील, जरूरी हो तभी निकलें बाहर। उत्तर प्रदेश राजनीति का वो रण क्षेत्र जहां जीत हार देश की तकदीर भी बदलती रही है। इस बार 2027 का यूपी विधानसभा का चुनाव काफी अहम है, चुनाव अगले साल होने हैं लेकिन सियासत अभी से शुरू है।
1: राजनीति में कई बार संदेश भाषणों से नहीं तस्वीरों से लिखा जाता है। स्वागत केवल सम्मान नहीं होता, वो शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन भी होता है। लखनऊ की सड़कों पर आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखी जब नितिन नवीन पहली बार बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद लखनऊ पहुंचे। तो सवाल यह कि क्या नितिन नवीन का दौरा बीजेपी के 2027 चुनाव अभियान का औपचारिक आगाज है? क्या बीजेपी का संगठन विपक्ष के सामाजिक समीकरणों पर फिर भारी पड़ेगा या इस बार मुकाबला बदल चुका है? क्या यूपी में 2027 की लड़ाई सत्ता बचाने की होगी या सत्ता बदलने की?
2: लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं, भगवान प्रभु श्री राम का भूमि, और हम कह सकते हैं भोले बाबा काशी विश्वनाथ का नगरी, मथुरा की नगरी, भगवान की नगरी, उस नगरी को नमन करता हूं और अपने सीधे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करूंगा।
1: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का लखनऊ एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए सीएम योगी खुद मौजूद थे, साथ में बीजेपी के दिग्गज मंत्री और नेता थे।
3: उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, उत्तर प्रदेश का आम जनमानस आज मान रहा है, आज उत्तर प्रदेश का युवा चाह रहा है कि आदरणीय नितिन नवीन जी जिस ढंग से सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरे प्रदेश के युवाओं में, माताओं बहनों में, गरीबों में, आम जनता में भारी उत्साह है।
1: यूपी विधानसभा चुनाव अगले साल के शुरुआती महीनों में होना है लेकिन बीजेपी ने अपनी राजनीतिक घड़ी तेज कर दी है। लखनऊ दौरे पर नितिन नवीन का एजेंडा साफ है, 2024 की समीक्षा, सोशल इंजीनियरिंग, सरकार संगठन में तालमेल, वोटर आउटरीच, 2027 की जीत का ब्लूप्रिंट। बीजेपी अध्यक्ष पद संभालने के बाद नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी ने बंगाल में ऐतिहासिक रूप से सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की, जबकि असम और पुडुचेरी में अपनी सत्ता बरकरार रखी। केरल में भी पार्टी का वोट बैंक तेजी से बढ़ा है। अब इसी विनिंग फॉर्मूले के साथ वो यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने की रणनीति बना रहे हैं लेकिन अखिलेश यादव लगातार पीडीए के फॉर्मूले को जीत का मंत्र बताते रहे हैं।
4: हम सबसे अपील करेंगे, जो हम लोगों ने एक आवाज दी है कि पीडीए से सब जुड़ जाएं, मुझे उम्मीद है पीडीए की लड़ाई मजबूत होगी, पीडीए एनडीए को हराएगा और जब हम लोग टिकट बांट रहे हैं, सीटें बांट रहे हैं, तब बीजेपी अपनी टिकट काटने की सोच रही है। सोचो, बीजेपी टिकट काटना चाहती है, हम सीटें बांट करके जनता में पहुंचे।
5: नफरत के सहारे ये सत्ता में आना चाहते हैं लेकिन देश जाग गया है, पीडीए जाग गया है, इस बार मुकाबला पीडीए करेगा एनडीए का।
1: हालांकि जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं उसमें से नितिन नवीन के स्वागत करने पहुंचे यादव समाज के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि यादव समाज को बीजेपी में ही सम्मान और भागीदारी मिली है।
6: यादों की जगह उत्तर प्रदेश के अंदर हो, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में है, 6 केंद्र में मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के बना रखे हैं, हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश में मंत्री, मुझे भाजपा पार्षद दल का उपनेता बनाया गया, हमारे तमाम पद ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण पद यादों के।
7: इस बार
6: अखिलेश जी का जो पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको हमारा समाज पूरी तरीके से जान चुका है।
1: यूपी की राजनीति में हर चुनाव सामाजिक समीकरणों और संगठनात्मक ताकत की नई परीक्षा बनकर आता है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के बाद बीजेपी के लिए अब सबसे बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, जबकि विपक्ष अपनी जीत का दावा ठोक रहा है। ऐसे में लखनऊ में जो बिसात नितिन नवीन बिछाएंगे, उसकी गूंज 2027 विधानसभा चुनाव में जरूर सुनाई देगी। आज तक ब्यूरो।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहे हैं, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब जांच में सामने आ रहा है कि पूरा खेल एक गैंग के तौर पर चल रहा था। बाकायदा बैठक होती थी, पैसों का हेर फेर होता था, एक दूसरे को बांटे जाते थे।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अयोध्या पुलिस ने पूछताछ के दौरान अविनाश शुक्ला को पिछले 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाई। जैसे ही उसने खुद को चढ़ावे से पैसे निकालते देखा, वो टूट गया और लगातार चोरी करने की बात स्वीकार कर ली। पूछताछ में अविनाश ने बताया कि चोरी की रकम से एक ब्रेजा कार खरीदी थी। ये कार उसने अपने भाई के नाम खरीदी, इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ कि कार चढ़ावा चोरी के पैसे से खरीदी गई है। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आते ही अविनाश ने कार को तुरंत प्रतापगढ़ स्थित घर भेज दिया। इस मामले में अविनाश के भाई अभिषेक शुक्ला से भी पूछताछ की गई है।
7: वहीं अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर एक कार भी बरामद कर ली गई है। ये कार ये पीछे खड़ी है, ये कार अविनाश शुक्ला ने चढ़ावा चोरी की रकम से अपने भाई अभिषेक के नाम पर खरीदी थी।
1: जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। चढ़ावा चोरी गैंग के सभी आरोपी एक दूसरे की गतिविधियों से पूरी तरह वाकिफ थे। कौन कब कैसे चोरी कर रहा है, इसकी जानकारी सभी को रहती थी। चढ़ावा चोरी के बाद सभी आरोपी नियमित रूप से बैठक करते थे। उस बैठक में चोरी का माल बांटने और आगे के प्लान पर चर्चा होती थी। इन बैठकों में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा समेत 6 आरोपी शामिल होते थे। जांच में ये भी सामने आया है कि बाद में टिन्नू यादव का भतीजा भी इन बैठकों में शामिल होने लगा था। मई के आखिरी सप्ताह में मामला खुलने से ठीक पहले भी आरोपियों की एक बैठक हुई थी। अब पुलिस चोरी की रकम, उससे खरीदी गई संपत्तियों और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। कल करीब 13 घंटे की पूछताछ के बाद अविनाश शुक्ला को अयोध्या जेल भेज दिया गया है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
0: यूपी चुनाव से पहले हुए राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस खुलासे को विपक्ष छोड़ना नहीं चाहता और अब समाजवादी पार्टी ने गाना जारी किया है, जिसको लेकर बीजेपी पर तंज कसा गया है।

समाजवादी पार्टी की ओर से जारी किया ये नया वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा अगले चुनाव में विपक्ष के लिए बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार होगा। ये वीडियो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में साझा किया है, जिसमें भगवान राम को अयोध्या छोड़कर वापस वनवास जाते दिखाया जा रहा है।

0: समाजवादी पार्टी के इस वीडियो पर सरकार के नेता अखिलेश से सवाल पूछ रहे हैं।
1: जो गाना बजा रहे हैं ना कि राम वन गए कब आएंगे, तो जब अखिलेश यादव जी दर्शन करने जाएंगे तब राम जी आ जाएंगे।
0: राम मंदिर को लेकर पूरे विपक्ष का सुर एक है।
2: राम का नाम आपने बदनाम कर दिया, हिंदुत्व का नाम पे खेला और हिंदूइज्म को आपने फिनिश किया।
3: ये चंदा चोरी बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं जानते थे इन लोगों को? इन्हीं के तो लोग हैं जो बिठाए गए हैं ट्रस्ट में।
0: इस सियासत के बीच एसआईटी सूत्रों की मांग,
3: क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं जानते थे इन लोगों को? इन्हीं के तो लोग हैं जो बिठाए गए हैं ट्रस्ट में।
0: इस सियासत के बीच एसआईटी सूत्रों की माने तो अयोध्या में प्रतिदिन करीब 6 से 8 लाख रुपए की चोरी हो रही थी। एसआईटी ने एसबीआई बैंक के मैनेजर समेत 10 बैंक कर्मियों से पूछताछ की है। पूछताछ के बाद बैंक के लेन देन से जुड़े दस्तावेज और हिसाब किताब अपने कब्जे में लेकर उनकी जांच की जा रही है। अयोध्या में चोरी का मामला सामने आने से पहले ट्रस्ट के एसबीआई और पीएनबी बैंक खाते में प्रतिदिन करीब 16 से 18 लाख रुपए जमा हो रहे थे। चोरी का खुलासा होने के बाद अब प्रतिदिन जमा होने वाली राशि बढ़कर 24 से 26 लाख रुपए तक पहुँच गयी है। लेकिन सवाल वही, क्या ये जाँच बड़े पदाधिकारियों तक पहुंचेगी? पूरी सियासत अब इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। आज तक ब्यूरो।
4: राम मंदिर पर विवाद अभी बढ़ ही रहा था कि बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ाव और चोरी के आरोप लग रहे हैं, जिसे लेकर अब जांच कमेटी बना दी गई है।
0: सवाल भक्तों की आस्था का है, उनके दान का है, जिसमें गड़बड़ी का विवाद अब बद्रीनाथ धाम तक पहुंच गया है।
5: सबसे पहले ये मामला उजागर हुआ जब भैरव सेना संगठन ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ में तैनात बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष के निजी सचिव ने प्रसाद में चोरी की है और जो चढ़ावा आता है उसमें सेंध मारी है। 2 तारीख का यह मामला बताया जा रहा है। करीब 8:30 से 9:30 के बीच में ये चोरी की घटना हुई, ऐसे आरोप लग रहे हैं।
0: दावा किया जा रहा है कि बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के सचिव ने पेटी खोली और दान के पैसों में हेरा फेरी की। प्रशासन कह रहा है कि सीसीटीवी चेक किए गए हैं और ऐसा कोई मामला सामने नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर सीसीटीवी को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा?
5: 2 तारीख को सुबह 8:30 के आसपास इन्होंने मंदिर गणना समिति के सदस्य रहते हुए बिना किसी स्वीकृति के पेटी को खोल दिया गया। अब इस पेटी में कितनी चोरी हुई है, कब ये चोरी हुई है, ये जांच का विषय है या फिर ये आरोप बेबुनियाद है, ये भी जांच का विषय है।
0: उधर बीकेटीसी अध्यक्ष ने आरोपी शख्स के सचिव होने से इनकार किया है और जांच के बाद दोषियों पर एक्शन का भरोसा दिया है
6: और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
0: मामले ने उत्तराखंड की सियासत को गर्म कर दिया है, जहां कांग्रेस अब बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है।
7: इस तरह की गतिविधियां और ये प्रकरण सामने आ रहे हैं, उससे न केवल सरकार और मंदिर समिति की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि करोड़ों जो हिंदू श्रद्धालु हैं, आस्थावान हैं, उनकी भावनाएं भी आहत हो रही है।
0: सवाल करोड़ों भक्तों की आस्था का है, उनके दान किए पैसों का है। राम मंदिर के बाद अब बद्रीनाथ से आ रही खबरों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: अब बात यूपी में 2027 को लेकर बीजेपी की तैयारी की, जिसे लेकर नितिन नवीन यूपी के दौरे पर है और अगले कुछ दिनों में वो यूपी में रहकर यूपी के चुनाव को लेकर मंथन करेंगे।
0: यूपी चुनाव की तैयारियों का मंथन करने जब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे तो खुद योगी आदित्यनाथ उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। साथ में बीजेपी के दिग्गज मंत्री और नेता भी थे।
8: लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। भगवान प्रभु श्री राम का भूमि हम कह सकते हैं, भोले बाबा काशी विश्वनाथ का नगरी, मथुरा की नगरी, भगवान की नगरी, उस नगरी को नमन करता हूं और अपने सुधे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करूंगा।
0: लखनऊ के दौरे पर नितिन नवीन की बैठकों का एक लंबा दौर चलेगा, जहां विधायक सांसदों के अलावा सीएम, डिप्टी सीएम और संघ के लोग भी शामिल होंगे।
9: उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। उत्तर प्रदेश का आम जनमानस आज मान रहा है, आज उत्तर प्रदेश का युवा चाह रहा है कि आदरणीय नितिन नवीन जी जिस ढंग से सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश के युवाओं में, माताओं बहनों में, गरीबों में, आम जनता में भारी उत्साह है।
0: नितिन नवीन के दौरे पर अखिलेश के पीडीए के कार्ड का संदेश भी देखने को मिला। नितिन नवीन का स्वागत करने पहुंचे यादव समाज के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि यादव समाज को बीजेपी में ही सम्मान और भागीदारी मिली है।
10: यादव की जगह उत्तर प्रदेश के अंदर हो, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में है। 6 केंद्र में मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के बना रखे हैं। हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश में मंत्री, मुझे भाजपा पार्षद दल का उपनेता बनाया गया। हमारे तमाम पद ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण पद यादव के।
11: इस बार
10: अखिलेश जी का जो पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको हमारा समाज पूरी तरीके से जान चुका है।
0: यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे झटके और दो बार सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्पेंसी जैसे खतरों को लेकर नितिन नवीन का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
4: बाद अब पंजाब के, जहां पर चुनाव से पहले कांग्रेस की टेंशन बढ़ती दिख रही है। चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में खींचतान अब खुलकर सामने आ रही है।
12: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर के बाहर मचे इस हंगामे ने एक बार फिर दिल्ली में कांग्रेस आला कमान की टेंशन बढ़ा दी है। चन्नी दिल्ली कूच की तैयारी में हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो चन्नी की मांग से आला कमान सहमत नहीं है। पिछले दिनों बनी कांग्रेस ऑब्जर्वर पैनल ने पंजाब कांग्रेस प्रमुख के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी के नाम की सिफारिश की थी। पैनल की सिफारिशों के बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने राजा वडिंग को ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए रखा। ये रिपोर्ट पंजाब कांग्रेस नेताओं के साथ लंबी बातचीत के बाद तैयार की गई थी। जहां राजा वडिंग को लेकर नाराजगी थी तो वहीं चन्नी को लेकर लोगों का समर्थन था। चन्नी को भरोसा था कि रिपोर्ट के बाद आला कमान पंजाब में नेतृत्व में बदलाव करेगा, लेकिन हाईकमान ने इस रिपोर्ट को नजरअंदाज किया। हालांकि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग किसी भी तक की खींचतान से इंकार कर रहे हैं।
13: चन्नी जी को कोई ऑथराइजेशन की जरूरत है? चन्नी जी जब चाहें, क्योंकि राहुल गांधी जी चन्नी साहब को प्यार करते हैं, कांग्रेस पार्टी उनको प्यार करती है। देखो, मेरी बात है कि चन्नी साहब सीएम फेस बन जाएं, कोई और बन जाएं, मैं तो इस रेस में नहीं हूँ।
12: राहुल गांधी 7 जुलाई को विदेश से लौट आएंगे, जिसके बाद चन्नी राहुल से मुलाकात करेंगे। वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल भी इसको लेकर हरकत में आ गए हैं, जो कुछ दिन चंडीगढ़ में बिता सकते हैं, जहां चन्नी और राजा वड्डी के साथ उनकी बातचीत होगी। इस बीच बीजेपी के चन्नी को दिए गए ऑफर ने पंजाब की सियासत को नई हवा दे दी है।
14: ये कांग्रेस का एक कल्चर है, इसमें लोटस का कोई रोल नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब चट्टान की तरह खड़ी है, वो लोगों के दिल में बसी है। 22 सूबों में हमारी सरकार चलती है, सब जगह तरक्की हो रही है।
15: हाँ भाई, खुश हो लो जरा, थोड़े 2-4 दिन के लिए दिल बहलाने को, यही ख्याल अच्छा है गालिब।
16: सो
15: मेरी बेनती है, इन बीजेपी वाले नु बावा भी खुलिया रख लें, ते भावे लता भी खुलिया रख लें।
12: पिछले चुनाव से पहले सिद्धू और अमरिंदर की खींचतान कांग्रेस को पंजाब में महंगी पड़ी थी। ऐसे में इस बार चुनाव से पहले चन्नी की नाराजगी कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रही है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ असीम बस्सी, चंडीगढ़ आज तक।
4: देश के कई हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन बारिश की पहली किश्त ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। आपको अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन बात सबसे पहले मुंबई की करेंगे, जहां पर चार दिनों से लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद मुंबई के कई इलाके पानी में डूबे दिख रहे हैं।

0: सड़कों पर सैलाब है, सबवे लहरों के बीच डूब चुका है। एक बार फिर भारी बारिश के चलते मुंबई में हाल बेहद बुरा है। चाहे अंधेरी हो या नाला सोपारा, वसई या विरार, हर ओर मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा है। लगातार हो रही बारिश ने मुंबई के लोगों का जीवन दुभर कर दिया है।
1: चांदी वाली विधानसभा नाले सफाई झाली नाही, महापौर म्हणतात नाले सफाई झाली, उपमहापौर म्हणतात नाले सफाई झाली, पण नाले सफाई कुठे झाली? कालूराम कुठे गेला? नाल्याचा कॉन्ट्रॅक्टर कुठे गेला? कालूराम, हे बघा, वॉटर किंगडम आहे, वॉटर किंगडम चांदीवली विधानसभा।
0: एक एक तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर मॉनसून की बारिश के बीच मुंबई किस तरह की मुसीबत झेल रही है। गाड़ियां पानी के बीच फंसी हुई हैं, कहीं आना जाना मुश्किल है, बारिश का दौर थम नहीं रहा है, सड़कों पर बढ़ता जलस्तर लोगों का संकट बढ़ा रहा है। सबसे पहले भिवंडी इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। तेज बारिश से पूरा बाजार तालाब बन गया है, दुकानों में पानी भर गया है, गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, घुटनों तक पानी में लोग आ जा रहे हैं। किसी तरह जद्दोजहद कर अपनी दुकानों का सामान बचाने की कोशिश में लोग जुटे हुए हैं। अब नाला सोपारा हाईवे का हाल देखिए। सड़कों पर भरे पानी के चलते कई गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, लोगों को कहीं आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। नाला सोपारा में बढ़ता जलस्तर तेजी से रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ रहा है, जो आने वाले दिनों में मुंबई के लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकता है, क्योंकि नाला सोपारा और उसके आसपास के सभी मार्केट पूरी तरह से पानी में घिरे हुए हैं। गाड़ियों से भी गुजर रहे लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। मुंबई में बीते चार दिनों से बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाके पानी में डूब गए हैं। इस बीच पानी भरने के बाद अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। अब विरार इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। दोनों ओर की सड़क पर सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है, सड़कों पर गाड़ियां फंसी हुई हैं, दूर तक लंबी कतार नजर आ रही है। बांद्रा इलाके में सड़कें लबालब हैं, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। बारिश के बीच मुसीबत का दायरा बढ़ता जा रहा है।
2: मुंबई में सुबह से लगातार बारिश हो रही है और यह बारिश पिछले तीन से चार दिनों से मुंबई में हो रही है। आज भी मौसम विभाग द्वारा मुंबई और मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, रायगढ़, थाने, पालघर, नवी मुंबई, इनके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया है। आप देख सकते हैं, हम इस वक्त मुंबई के घाटकोपर इलाके में है, जहां पर 1.5 से 2 फीट तक का पानी जो है वो मुंबई की सड़कों पर जमा हो गया है और सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील होती हुई यहाँ नजर आ रही हैं। लोग कई समय से यहाँ पर बस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो बस है वो नहीं आ रही है। गाड़ियों की आवाजाही थोड़ी यहाँ धीमी होती हुई नजर आ रही है।
0: वसई इलाके का हाल तो और भी ज्यादा बुरा है। पानी इतना ज्यादा भर गया है कि मानो पूरा इलाका टापू बन गया है। इस बीच बिजली न होने से करीब 450 परिवारों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।
3: वसई विरार में लगातार चार दिन से जोरदार बारिश हो रही है। कई निचले इलाकों में पानी भर चुका है। फिलहाल इस वक्त मैं खड़ा हूँ वसई ईस्ट के मिठागर की बस्ती है। यहाँ हम देखेंगे तो ये जो रोड है जहाँ भरा है, इसके नीचे रास्ता है और ये रास्ते से अंदर हम 1.5 से 1.5 किलोमीटर जाए तो ये नमक की खेती करने वालों की बस्ती है। कुल 120 फैमिलीज वहाँ रहती है, 300 से 400 लोग है। हर साल इसी तरह ये रोड जो है पानी के नीचे चला जाता है। ये इन्होंने जानकारी दी जो है कि इनके घर में आसपास कुल कमर के ऊपर तक का पानी भर चुका है। बिजली भी कल से चली गई है और ये वस्ती के आसपास भी ये जो प्लेन इलाका है वहाँ भी ये भी पूरी तरह से भर चुका है। प्रशासन की ओर से इन्हें कोई अभी तक मदद पहुंची नहीं है। फिलहाल इन्हें खाने पीने की चीजों की सख्त जरूरत है, क्योंकि लाइट कल से है नहीं और यही बारिश अगर लगातार चालू रही तो इनके हाल बेहाल हो सकते
0: हैं। इस बीच बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन की ओर से अब तक लोगों तक कोई मदद नहीं पहुंची है, जिससे लोगों पर आई आफत और ज्यादा बढ़ गई है।
4: हालत खराब है कल से लोगों से, क्योंकि लाइट भी नहीं है, कल से लाइट भी नहीं है और पानी भी जैसे बढ़ते ही जा रहा है और ऊपर से बारिश भी और ज्यादा ही होते जा रहा है। जैसे कि अभी एक दो घंटा और गिरेगा तो घर में भी घुस सकता है बारिश पानी।
3: लाइट की क्या समस्या है उधर?
4: लाइट तो कल से ही नहीं है, कल से दोपहर से गई है, अभी तक आई ही नहीं है।
3: अभी अंदर कितना पानी है, कितने फैमिलीज अंदर रहती है?
4: फैमिली रहती है 450 फैमिली रहती है और कंबर के ऊपर पानी है।
3: कि कुछ सुबह से कुछ प्रशासन की हेल्प हुई है?
4: कुछ भी नहीं, किसी ने हेल्प करने के लिए फोन भी नहीं किया, कुछ हेल्प आया ही नहीं।
0: बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा, जगह जगह भारी जलभराव है और लोग बेहद परेशान। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच मौसम विभाग ने भी शहर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर प्रशासन ने लोगों को बेहद जरूरी यात्रा करने की सलाह दी है ताकि मौसम की मार किसी की जिंदगी पर संकट न बने। मुंबई में हर साल की यही कहानी है, बारिश हुई और लोगों की जिंदगी आफत के बीच घिर गई। एक बार फिर ऐसी ही तस्वीरें शहर की पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। सैलाब के बीच जिंदगी संकट में घिरी है। मुंबई से प्रवीण नालावड़े के साथ दीपेश त्रिपाठी आज तक।
5: अब बात ईरान के सर्वोच्च नेता खामिनेई के अंतिम संस्कार की, जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर की हस्तियां पहुंच रहे हैं। आपको आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं।
6: ईरान के सर्वोच्च नेता की अंतिम विदाई में लाखों लोग शामिल होने पहुंच रहे हैं, जहां अली खामिनेई की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है।
7: इस समय मैं मौजूद हूं ग्रैंड मुसल्ला में, और मैं जहां मौजूद हूं उसके ठीक पीछे अगर आप देखें कुछ ही दूरी पर आपको वो कॉफिन नजर आ जाएगा जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामिनेई के शव को, उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। दरअसल अगर आप देखें उनके साथ में चार कॉफिन आपको नजर आ रहे होंगे। चारों कॉफिन में सबसे ऊपर का जो कॉफिन है वो है सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामिनेई का। उसके नीचे अगर आप देखें उनके ग्रैंडसन यानी उनके पोते भी जो उसमें मारे गए थे, छोटा कॉफिन, उसके बाद उनके दामाद और उनकी जो कहते हैं कि मुश्तबा खामिनेई की वाइफ का भी कॉफिन है, उनकी बेटी का कॉफिन है। और अगर आप देखें कि उनके साथ साथ चार कॉफिन से परिवार के अलग अलग लोगों के बताए जाते हैं कि उनके ये कॉफिन है। हालांकि कुछ लोग और मारे जाने का भी दावा किया गया था लेकिन उसकी पुष्टि अब तक ईरान में नहीं की गई है।
6: दुनिया भर से राजनेता, अधिकारी और धर्मगुरु तेहरान पहुंच चुके हैं और अंतिम यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। अमेरिका और इसराइल से कोई नहीं आया, वहीं लोगों के अंदर गम के साथ गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति इस पर तंज कसते भी नजर आए।
8: Two world wars, the Cold War, left America's enemies in the depths of history. We beat Venezuela in one day, and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice.
6: सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री की अंतिम यात्रा में मौजूदगी ने हर किसी को हैरान कर दिया। ओमान और कतर विदेशी प्रतिनिधियों की सूची में शामिल थे लेकिन सऊदी अरब के किसी भी प्रतिनिधि का नाम नदारद था। उधर सुरक्षा कारणों से नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामिनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो रहे हैं।
9: Doesn't allow him to come. They said it's very dangerous and we cannot provide security for him. And I think he will not come out. Do you know they have very, very advanced technology and they can recognize him and they can follow him. Where is he? And it's very dangerous for him. So because of that, he will not come out.
6: इस मौके पर 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों और धर्म गुरुओं को बुलाकर ईरान दुनिया भर को कई संदेश देने की कोशिश भी कर रहा है। अमेरिका और इसराइल के साथ युद्ध के बावजूद वो ये साबित करना चाहता है कि कूटनीतिक स्तर पर अभी वो उतना ही मजबूत है जितना 28 फरवरी से पहले था। तेहरान से गीता मोहन और सुमित चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।
5: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: चढ़ावा चोरी मामले में अब अयोध्या पुलिस जेल में बंद पांच आरोपियों से करेगी आज पूछताछ। टिन्नू यादव से भी सवाल, ममता का सरकार पर तंज, कहा राम का नाम किया बदनाम। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहले यूपी के दौरे पर नितिन नवीन का चुनावी मंत्र, पदाधिकारियों से कहा विपक्ष की नकारात्मक राजनीति के जाल में न फंसे, राज्य के विकास पर करें फोकस। पीएम मोदी ने विपक्ष पर युद्धकाल में देश को डराने का लगाया आरोप, राजस्थान के बालोतरा में बोले संकट में राष्ट्रहित को आगे रखकर फैसला, देश पर नहीं डाला बोझ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर आतंकवादियों से मुठभेड़, मारे गए दोनों आतंकवादी, कैमरे में कैद दोनों दहशतगर्द। मूसलाधार बारिश से पाने पाने मुंबई और बढ़ सकती है मुसीबतें, आज भारी बरसात का रेड अलर्ट, बीएमसी के लोगों से अपील, जरूरी हो तभी निकलें बाहर। उत्तर प्रदेश राजनीति का वो रणक्षेत्र जहां जीत हार देश की तकदीर भी बदलती रही है। इस बार 2027 का यूपी विधानसभा का चुनाव काफी अहम है, चुनाव अगले साल होने हैं लेकिन सियासत अभी से शुरू है।
1: राजनीति में कई बार संदेश भाषणों से नहीं तस्वीरों से लिखा जाता है। स्वागत केवल सम्मान नहीं होता, वो शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन भी होता है। लखनऊ की सड़कों पर आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखी जब नितिन नवीन पहली बार बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद लखनऊ पहुंचे। तो सवाल ये कि क्या नितिन नवीन का दौरा बीजेपी के 2027 चुनाव अभियान का औपचारिक आगाज है? क्या बीजेपी का संगठन विपक्ष के सामाजिक समीकरणों पर फिर भारी पड़ेगा या इस बार मुकाबला बदल चुका है? क्या यूपी में 2027 की लड़ाई सत्ता बचाने की होगी या सत्ता बदलने की?
2: लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूँ, भगवान प्रभु श्री राम का भूमि, हम कह सकते हैं भोले बाबा काशी विश्वनाथ का नगरी, मथुरा की नगरी, भगवान की नगरी, उस नगरी को नमन करता हूँ और अपने सुधे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करूँगा।
1: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का लखनऊ एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए सीएम योगी खुद मौजूद थे, साथ में बीजेपी के दिग्गज मंत्री और नेता थे।
3: उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, उत्तर प्रदेश का आम जनमानस आज मान रहा है, आज उत्तर प्रदेश का युवा चाह रहा है कि आदरणीय नितिन नवीन जी जिस ढंग से सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरे प्रदेश के युवाओं में, माताओं बहनों में, गरीबों में, आम जनता में भारी उत्साह है।
1: यूपी विधानसभा चुनाव अगले साल के शुरुआती महीनों में होना है लेकिन बीजेपी ने अपनी राजनीतिक घड़ी तेज कर दी है। लखनऊ दौरे पर नितिन नवीन का एजेंडा साफ है, 2024 की समीक्षा, सोशल इंजीनियरिंग, सरकार संगठन में तालमेल, वोटर आउटरीच, 2027 की जीत का ब्लूप्रिंट। बीजेपी अध्यक्ष पद संभालने के बाद नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी ने बंगाल में ऐतिहासिक रूप से सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की, जबकि असम और पुडुचेरी में अपनी सत्ता बरकरार रखी, केरल में भी पार्टी का वोट बैंक तेजी से बढ़ा है। अब इसी विनिंग फॉर्मूले के साथ वो यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने की रणनीति बना रहे हैं लेकिन अखिलेश यादव लगातार पीडीए के फॉर्मूले को जीत का मंत्र बताते रहे हैं।
4: हम सबसे अपील करेंगे, जो हम लोगों ने एक आवाज दी है कि पीडीए से सब जुड़ जाएं, मुझे उम्मीद है पीडीए की लड़ाई मजबूत होगी, पीडीए एनडीए को हराएगा और जब हम लोग टिकट बांट रहे हैं, सीटें बांट रहे हैं, तब बीजेपी अपनी टिकट काटने की सोच रही है। सोचो, बीजेपी टिकट काटना चाहती है, हम सीटें बांट करके जनता में पहुंचे।
5: नफरत के सहारे ये सत्ता में आना चाहते हैं लेकिन देश जाग गया है, पीडीए जाग गया है, इस बार मुकाबला पीडीए करेगा एनडीए का।
1: हालांकि जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं उसमें से नितिन नवीन के स्वागत करने पहुंचे यादव समाज के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि यादव समाज को बीजेपी में ही सम्मान और भागीदारी मिली है।
6: यादव की जगह उत्तर प्रदेश के अंदर हो, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में है, 6 केंद्र में मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के बना रखे हैं, हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश में मंत्री, मुझे भाजपा पार्षद दल का उपनेता बनाया गया, हमारे तमाम पद ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण पद यादव के।
7: इस बार
6: अखिलेश जी का जो पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको हमारा समाज पूरी तरीके से जान चुका है।
1: यूपी की राजनीति में हर चुनाव सामाजिक समीकरणों और संगठनात्मक ताकत की नई परीक्षा बनकर आता है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के बाद बीजेपी के लिए अब सबसे बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, जबकि विपक्ष अपनी जीत का दावा ठोक रहा है। ऐसे में लखनऊ में जो बिसात नितिन नवीन बिछाएंगे, उसकी गूंज 2027 विधानसभा चुनाव में जरूर सुनाई देगी। आज तक ब्यूरो।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहे हैं, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब जांच में सामने आ रहा है कि पूरा खेल एक गैंग के तौर पर चल रहा था। बाकायदा बैठक होती थी, पैसों का हेर फेर होता था, एक दूसरे को बांटे जाते थे।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अयोध्या पुलिस ने पूछताछ के दौरान अविनाश शुक्ला को पिछले 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाई। जैसे ही उसने खुद को चढ़ावे से पैसे निकालते देखा, वो टूट गया और लगातार चोरी करने की बात स्वीकार कर ली। पूछताछ में अविनाश ने बताया कि चोरी की रकम से एक ब्रेजा कार खरीदी थी। ये कार उसने अपने भाई के नाम खरीदी, इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ कि कार चढ़ावा चोरी के पैसे से खरीदी गई है। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आते ही अविनाश ने कार को तुरंत प्रतापगढ़ स्थित घर भेज दिया। इस मामले में अविनाश के भाई अभिषेक शुक्ला से भी पूछताछ की गई है।
7: वहीं अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर एक कार भी बरामद कर ली गई है। ये कार ये पीछे खड़ी है, ये कार अविनाश शुक्ला ने चढ़ावा चोरी की रकम से अपने भाई अभिषेक के नाम पर खरीदी थी।
1: जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। चढ़ावा चोरी गैंग के सभी आरोपी एक दूसरे की गतिविधियों से पूरी तरह वाकिफ थे। कौन कब कैसे चोरी कर रहा है, इसकी जानकारी सभी को रहती थी। चढ़ावा चोरी के बाद सभी आरोपी नियमित रूप से बैठक करते थे। उस बैठक में चोरी का माल बांटने और आगे के प्लान पर चर्चा होती थी। इन बैठकों में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा समेत 6 आरोपी शामिल होते थे। जांच में ये भी सामने आया है कि बाद में टिन्नू यादव का भतीजा भी इन बैठकों में शामिल होने लगा था। मई के आखिरी सप्ताह में मामला खुलने से ठीक पहले भी आरोपियों की एक बैठक हुई थी। अब पुलिस चोरी की रकम, उससे खरीदी गई संपत्तियों और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। कल करीब 13 घंटे की पूछताछ के बाद अविनाश शुक्ला को अयोध्या जेल भेज दिया गया है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
0: यूपी चुनाव से पहले हुए राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस खुलासे को विपक्ष छोड़ना नहीं चाहता और अब समाजवादी पार्टी ने गाना जारी किया है, जिसको लेकर बीजेपी पर तंज कसा गया है।

समाजवादी पार्टी की ओर से जारी किया ये नया वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा अगले चुनाव में विपक्ष के लिए बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार होगा। ये वीडियो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में साझा किया है, जिसमें भगवान राम को अयोध्या छोड़कर वापस वनवास जाते दिखाया जा रहा है।

0: समाजवादी पार्टी के इस वीडियो पर सरकार के नेता अखिलेश से सवाल पूछ रहे हैं।
1: जो गाना बजा रहे हैं ना कि राम बन गए कब आएंगे, तो जब अखिलेश यादव जी दर्शन करने जाएंगे तब राम जी आ जाएंगे।
0: राम मंदिर को लेकर पूरे विपक्ष का सुर एक है।
2: राम का नाम आपने बदनाम कर दिया, हिंदुत्व का नाम पे खेला और हिंदुइज्म को आपने फिनिश किया।
3: ये चंदा चोरी बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं जानते थे इन लोगों को? इन्हीं के तो लोग हैं जो बिठाए गए हैं ट्रस्ट में।
0: इस सियासत के बीच एसआईटी सूत्रों की माने तो अयोध्या में प्रतिदिन करीब 6 से 8 लाख रुपए की चोरी हो रही थी। एसआईटी ने एसबीआई बैंक के मैनेजर समेत 10 बैंक कर्मियों से पूछताछ की है। पूछताछ के बाद बैंक के लेन देन से जुड़े दस्तावेज और हिसाब किताब अपने कब्जे में लेकर उनकी जांच की जा रही है। अयोध्या में चोरी का मामला सामने आने से पहले ट्रस्ट के एसबीआई और पीएनबी बैंक खाते में प्रतिदिन करीब 16 से 18 लाख रुपए जमा हो रहे थे। चोरी का खुलासा होने के बाद अब प्रतिदिन जमा होने वाली राशि बढ़कर 24 से 26 लाख रुपए तक पहुँच गयी है। लेकिन सवाल वही, क्या ये जाँच बड़े पदाधिकारियों तक पहुंचेगी? पूरी सियासत अब इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। आज तक ब्यूरो।
4: राम मंदिर पर विवाद अभी बढ़ ही रहा था कि बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ाव और चोरी के आरोप लग रहे हैं, जिसे लेकर अब जांच कमेटी बना दी गई है।
0: सवाल भक्तों की आस्था का है, उनके दान का है, जिसमें गड़बड़ी का विवाद अब बद्रीनाथ धाम तक पहुंच गया है।
5: सबसे पहले ये मामला उजागर हुआ जब भैरव सेना संगठन ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ में तैनात बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष निजी सचिव ने प्रसाद में चोरी की है और जो चढ़ावा आता है उसमें सेंध मारी है। 2 तारीख का यह मामला बताया जा रहा है। करीब 8:30 से 9:30 के बीच में ये चोरी की घटना हुई, ऐसे आरोप लग रहे हैं।
0: दावा किया जा रहा है कि बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के सचिव ने पेटी खोली और दान के पैसों में हेरा फेरी की। प्रशासन कह रहा है कि सीसीटीवी चेक किए गए हैं और ऐसा कोई मामला सामने नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर सीसीटीवी को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा?
5: 2 तारीख को सुबह 8:30 के आसपास इन्होंने मंदिर गणना समिति के सदस्य रहते हुए बिना किसी स्वीकृति के पेटी को खोल दिया गया। अब इस पेटी में कितनी चोरी हुई है, कब ये चोरी हुई है, ये जांच का विषय है या फिर ये आरोप बेबुनियाद है, ये भी जांच का विषय है।
0: उधर बीकेटीसी अध्यक्ष ने आरोपी शख्स के सचिव होने से इनकार किया है और जांच के बाद दोषियों पर एक्शन का भरोसा दिया है
6: और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
0: मामले ने उत्तराखंड की सियासत को गर्म कर दिया है, जहां कांग्रेस अब बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है।
7: इस तरह की गतिविधियां और ये प्रकरण सामने आ रहे हैं, उससे न केवल सरकार और मंदिर समिति की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि करोड़ों जो हिंदू श्रद्धालु हैं, आस्थावान हैं, उनकी भावनाएं भी आहत हो रही है।
0: सवाल करोड़ों भक्तों की आस्था का है, उनके दान किए पैसों का है। राम मंदिर के बाद अब बद्रीनाथ से आ रही खबरों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: अब बात यूपी में 2027 को लेकर बीजेपी की तैयारी की, जिसे लेकर नितिन नवीन यूपी के दौरे पर है और अगले कुछ दिनों में वो यूपी में रहकर यूपी के चुनाव को लेकर मंथन करेंगे।
0: यूपी चुनाव की तैयारियों का मंथन करने जब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे तो खुद योगी आदित्यनाथ उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। साथ में बीजेपी के दिग्गज मंत्री और नेता भी थे।
8: लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। भगवान प्रभु श्री राम का भूमि हम कह सकते हैं, भोले बाबा काशी विश्वनाथ का नगरी, मथुरा की नगरी, भगवान की नगरी, उस नगरी को नमन करता हूं और अपने सुधे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करूंगा।
0: लखनऊ के दौरे पर नितिन नवीन की बैठकों का एक लंबा दौर चलेगा, जहां विधायक सांसदों के अलावा सीएम, डिप्टी सीएम और संघ के लोग भी शामिल होंगे।
9: उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। उत्तर प्रदेश का आम जनमानस आज मान रहा है, आज उत्तर प्रदेश का युवा चाह रहा है कि आदरणीय नितिन नवीन जी जिस ढंग से सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरे प्रदेश के युवाओं में, माताओं बहनों में, गरीबों में, आम जनता में भारी उत्साह है।
0: नितिन नवीन के दौरे पर अखिलेश के पीडीए के कार्ड का संदेश भी देखने को मिला। नितिन नवीन का स्वागत करने पहुंचे यादव समाज के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि यादव समाज को बीजेपी में ही सम्मान और भागीदारी मिली है।
10: यादव की जगह उत्तर प्रदेश के अंदर हो, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में है। 6 केंद्र में मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के बना रखे हैं। हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश में मंत्री, मुझे भाजपा पार्षद दल का उपनेता बनाया गया। हमारे तमाम पद ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण पद यादव के।
11: इस बार
10: अखिलेश जी का जो पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको हमारा समाज पूरी तरीके से जान चुका है।
0: यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे झटके और दो बार सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्पेंसी जैसे खतरों को लेकर नितिन नवीन का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
4: बाद अब पंजाब के, जहां पर चुनाव से पहले कांग्रेस की टेंशन बढ़ती दिख रही है। चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में खींचतान अब खुलकर सामने आ रही है।
12: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर के बाहर मचे इस हंगामे ने एक बार फिर दिल्ली में कांग्रेस आला कमान की टेंशन बढ़ा दी है। चन्नी दिल्ली कूच की तैयारी में है, लेकिन सूत्रों की माने तो चन्नी की मांग से आला कमान सहमत नहीं है। पिछले दिनों बनी कांग्रेस ऑब्जर्वर पैनल ने पंजाब कांग्रेस प्रमुख के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी के नाम की सिफारिश की थी। पैनल की सिफारिशों के बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने राजा वडिंग को ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए रखा। ये रिपोर्ट पंजाब कांग्रेस नेताओं के साथ लंबी बातचीत के बाद तैयार की गई थी। जहां राजा वडिंग को लेकर नाराजगी थी, तो वहीं चन्नी को लेकर लोगों का समर्थन था। चन्नी को भरोसा था कि रिपोर्ट के बाद आलाकमान पंजाब में नेतृत्व में बदलाव करेगा, लेकिन हाईकमान ने इस रिपोर्ट को नजरअंदाज किया। हालांकि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग किसी भी तक की खींचतान से इनकार कर रहे हैं।

0: इस रेस में नहीं हूँ।
1: राहुल गांधी 7 जुलाई को विदेश से लौट आएंगे, जिसके बाद चन्नी राहुल से मुलाकात करेंगे। वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल भी इसको लेकर हरकत में आ गए हैं, जो कुछ दिन चंडीगढ़ में बिता सकते हैं, जहां चन्नी और राजावाड़ी के साथ उनकी बातचीत होगी। इस बीच बीजेपी के चन्नी को दिए गए ऑफर ने पंजाब की सियासत को नई हवा दे दी है।
2: ये कांग्रेस का एक कल्चर है, इसमें लोटस का कोई रोल नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब चट्टान की तरह खड़ी है, वो लोगों के दिल में बसी है। 22 सूबों में हमारी सरकार चलती है, सब जगह तरक्की हो रही है।
3: हाँ भाई, खुश हो लो जरा थोड़े 2-4 दिन के लिए, दिल बहलाने को यही ख्याल अच्छा है गालिब।
4: सो
3: मेरी बेनती है इन्हें बीजेपी वालों नूं बाहां भी खुलियां रख लैन ते भावें लत्तां भी खुलियां रख लैन।
1: पिछले चुनाव से पहले सिद्धू और अमरिंदर की खींचतान कांग्रेस को पंजाब में महंगी पड़ी थी। ऐसे में इस बार चुनाव से पहले चन्नी की नाराजगी कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रही है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ असीम बस्सी, चंडीगढ़ आज तक।
5: देश के कई हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन बारिश की पहली किश्त ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। आपको अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन बात सबसे पहले मुंबई की करेंगे, जहां पर 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद मुंबई के कई इलाके पानी में डूबे दिख रहे हैं।

0: सड़कों पर सैलाब है, सबवे लहरों के बीच डूब चुका है। एक बार फिर भारी बारिश के चलते मुंबई में हाल बेहद बुरा है। चाहे अंधेरी हो या नाला सोपारा, वसई या विरार, हर ओर मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा है। लगातार हो रही बारिश ने मुंबई के लोगों का जीवन दुभर कर दिया है।
1: चांदीवली विधानसभा नाले सफाई झाली नाही, महापौर म्हणतात नाले सफाई झाली, उपमहापौर म्हणतात नाले सफाई झाली, पण नाले सफाई कुठे झाली? कालूराम कुठे गेला? नाल्याचा कॉन्ट्रॅक्टर कुठे गेला? कालूराम, हे बघा, वॉटर किंगडम आहे, वॉटर किंगडम चांदीवली विधानसभा।
0: एक एक तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर मॉनसून की बारिश के बीच मुंबई किस तरह की मुसीबत झेल रही है। गाड़ियां पानी के बीच फंसी हुई हैं, कहीं आना जाना मुश्किल है, बारिश का दौर थम नहीं रहा है, सड़कों पर बढ़ता जलस्तर लोगों का संकट बढ़ा रहा है। सबसे पहले भिवंडी इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। तेज बारिश से पूरा बाजार तालाब बन गया है, दुकानों में पानी भर गया है, गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, घुटनों तक पानी में लोग आ जा रहे हैं। किसी तरह जद्दोजहद कर अपनी दुकानों का सामान बचाने की कोशिश में लोग जुटे हुए हैं। अब नाला सोपारा हाईवे का हाल देखिए। सड़कों पर भरे पानी के चलते कई गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, लोगों को कहीं आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। नाला सोपारा में बढ़ता जलस्तर तेजी से रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ रहा है, जो आने वाले दिनों में मुंबई के लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकता है, क्योंकि नाला सोपारा और उसके आसपास के सभी मार्केट पूरी तरह से पानी में घिरे हुए हैं। गाड़ियों से भी गुजर रहे लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। मुंबई में बीते चार दिनों से बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाके पानी में डूब गए हैं। इस बीच पानी भरने के बाद अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। अब विरार इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। दोनों ओर की सड़क पर सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है, सड़कों पर गाड़ियां फंसी हुई हैं, दूर तक लंबी कतार नजर आ रही है। बांद्रा इलाके में सड़कें लबालब हैं, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। बारिश के बीच मुसीबत का दायरा बढ़ता जा रहा है।
2: मुंबई में सुबह से लगातार बारिश हो रही है और यह बारिश पिछले तीन से चार दिनों से मुंबई में हो रही है। आज भी मौसम विभाग द्वारा मुंबई और मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, रायगढ़, थाने, पालघर, नवी मुंबई, इनके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया है। आप देख सकते हैं हम इस वक्त मुंबई के घाटकोपर इलाके में है, जहां पर 1.5 से 2 फीट तक का पानी जो है वो मुंबई की सड़कों पर जमा हो गया है और सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील होती हुई यहाँ नजर आ रही हैं। लोग कई समय से यहाँ पर बस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो बस है वो नहीं आ रही है, गाड़ियों की आवाजाही

0: थोड़ी यहाँ धीमी होती हुई नजर आ रही है।
1: वसई इलाके का हाल तो और भी ज्यादा बुरा है। पानी इतना ज्यादा भर गया है कि मानो पूरा इलाका टापू बन गया है। इस बीच बिजली न होने से करीब 450 परिवारों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।
2: वसई विरार में लगातार 4 दिन से जोरदार बारिश हो रही है। कई निचले इलाकों में पानी भर चुका है। फिलहाल इस वक्त में खड़ा हूँ वसई ईस्ट के मिठागर की बस्ती है। यहाँ हम देखेंगे तो ये जो रोड है जहाँ भरा है, इसके नीचे रास्ता है और ये रास्ते से अंदर हम एक से डेढ़ किलोमीटर जाए तो ये नमक की खेती करने वालों की बस्ती है। कुल 120 फैमिलीज वहाँ रहती है, 300 से 400 लोग है। हर साल इसी तरह ये रोड जो है पानी के नीचे चला जाता है। ये इन्होंने जानकारी दी जो है कि इनके घर में आसपास कुल कमर के ऊपर तक का पानी भर चुका है। बिजली भी कल से चली गई है और ये वस्ती के आसपास भी ये जो प्लेन इलाका है वहाँ भी ये भी पूरी तरह से भर चुका है। प्रशासन की ओर से इन्हें कोई अभी तक मदद पहुंची नहीं है। फिलहाल इन्हें खाने पीने की चीज़ों की सख्त ज़रूरत है क्योंकि लाइट कल से है नहीं और यही बारिश अगर लगातार चालू रही तो इनके हाल बेहाल हो सकते
1: हैं। इस बीच बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन की ओर से अब तक लोगों तक कोई मदद नहीं पहुंची है जिससे लोगों पर आई आफत और ज्यादा बढ़ गई है।
3: हालत खराब है कल से लोगों से क्योंकि लाइट भी नहीं है, कल से लाइट भी नहीं है और पानी भी जैसे बढ़ते ही जा रहा है और ऊपर से बारिश भी और ज्यादा ही होते जा रहा है। जैसे कि अभी 1-2 घंटा और गिरेगा तो घर में भी घुस सकता है पानी।
2: लाइट की क्या समस्या है उधर?
3: लाइट तो कल से ही नहीं है, कल से दोपहर से गई है, अभी तक आई नहीं है।
2: अभी अंदर कितना पानी है, कितने फैमिलीज अंदर रहती है?
3: फैमिली रहती है 450 फैमिली रहती है और कंबर के ऊपर पानी है।
2: कि कुछ सुबह से कुछ प्रशासन की हेल्प हुई है?
3: कुछ भी नहीं, किसी ने हेल्प करने के लिए फोन भी नहीं किया, कुछ हेल्प आया ही नहीं।
1: बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा, जगह जगह भारी जलभराव है और लोग बेहद परेशान। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच मौसम विभाग ने भी शहर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इधर प्रशासन ने लोगों को बेहद जरूरी यात्रा करने की सलाह दी है ताकि मौसम की मार किसी की जिंदगी पर संकट न बने। मुंबई में हर साल की यही कहानी है, बारिश हुई और लोगों की जिंदगी आफत के बीच घिर गई। एक बार फिर ऐसी ही तस्वीरें शहर की पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। सैलाब के बीच जिंदगी संकट में घिरी है।
4: मुंबई से प्रवीण नालावड़े के साथ दीपेश त्रिपाठी आज तक।
5: अब बात ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के अंतिम संस्कार की, जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर की हस्तियां पहुंच रहे हैं। आपको आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं।
6: ईरान के सर्वोच्च नेता की अंतिम विदाई में लाखों लोग शामिल होने पहुंच रहे हैं, जहां अली खामेनेई की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है।
7: इस समय मैं मौजूद हूं ग्रैंड मुसल्ला में और मैं जहां मौजूद हूं उसके ठीक पीछे अगर आप देखें कुछ ही दूरी पर आपको वो कॉफिन नजर आ जाएगा जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के शव को, उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। दरअसल अगर आप देखें उनके साथ में 4 कॉफिन आपको नजर आ रहे होंगे। चारों कॉफिन में सबसे ऊपर का जो कॉफिन है वो है सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई का। उसके नीचे अगर आप देखें उनके ग्रैंडसन यानी उनके पोते भी जो उसमें मारे गए थे, छोटा कॉफिन, उसके बाद उनके दामाद और उनकी जो कहते हैं कि मुश्तबा खामेनेई की वाइफ का भी कॉफिन है, उनकी बेटी का कॉफिन है। और अगर आप देखें कि उनके साथ साथ 4 कॉफिन से परिवार के अलग अलग लोगों के बताए जाते हैं कि उनके ये कॉफिन है। हालांकि कुछ लोग और मारे जाने का भी दावा किया गया था लेकिन उसकी पुष्टि अब तक ईरान में नहीं की गई है।
6: दुनिया भर से राजनेता, अधिकारी और धर्मगुरु तेहरान पहुंच चुके हैं और अंतिम यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। अमेरिका और इसराइल से कोई नहीं आया, वहीं लोगों के अंदर गम के साथ गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति इस पर तंज कसते भी नजर आए।
8: Two world wars, the Cold War, left America's enemies in the depths of history. We beat Venezuela in one day, and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly.
9: We gave him a week off for a funeral because we're nice.
6: सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री की अंतिम यात्रा में मौजूदगी ने हर किसी को हैरान कर दिया। ओमान और कतर विदेशी प्रतिनिधियों की सूची में शामिल थे, लेकिन सऊदी अरब के किसी भी प्रतिनिधि का नाम नदारद था। उधर सुरक्षा कारणों से नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो रहे हैं।
10: Doesn't allow him to come. They said it's very dangerous and we cannot provide security for him. And I think he will not come out. Do you know they have very, very advanced technology and they can recognize him and they can follow him. Where is he? And it's very dangerous for him. So because of that, he will not come out. Yeah.
6: इस मौके पर 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों और धर्म गुरुओं को बुलाकर ईरान दुनिया भर को कई संदेश देने की कोशिश भी कर रहा है। अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध के बावजूद वो ये साबित करना चाहता है कि कूटनीतिक स्तर पर अभी वो उतना ही मजबूत है जितना 28 फरवरी से पहले था। तेहरान से गीता मोहन और सुमित चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।
5: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: चढ़ावा चोरी मामले में अब अयोध्या पुलिस जेल में बंद पांच आरोपियों से करेगी आज पूछताछ। तेनू यादव से भी सवाल, ममता का सरकार पर तंज, कहा राम का नाम किया बदनाम। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहले यूपी के दौरे पर नितिन नवीन का चुनावी मंत्र, पदाधिकारियों से कहा विपक्ष की नकारात्मक राजनीति के जाल में न फंसे, राज्य के विकास पर करें फोकस। पीएम मोदी ने विपक्ष पर युद्धकाल में देश को डराने का लगाया आरोप, राजस्थान के बालोतरा में बोले संकट में राष्ट्रहित को आगे रखकर फैसला, देश पर नहीं डाला बोझ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर आतंकवादियों से मुठभेड़, मारे गए दोनों आतंकवादी, कैमरे में कैद दोनों दहशतगर्द। मूसलाधार बारिश से पानी पानी मुंबई, और बढ़ सकती है मुसीबतें, आज भारी बरसात का रेड अलर्ट, बीएमसी के लोगों से अपील, जरूरी हो तभी निकलें बाहर। उत्तर प्रदेश राजनीति का वो रण क्षेत्र जहां जीत हार देश की तकदीर भी बदलती रही है। इस बार 2027 का यूपी विधानसभा का चुनाव काफी अहम है, चुनाव अगले साल होने हैं लेकिन सियासत अभी से शुरू है।
1: राजनीति में कई बार संदेश भाषणों से नहीं तस्वीरों से लिखा जाता है। स्वागत केवल सम्मान नहीं होता, वो शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन भी होता है। लखनऊ की सड़कों पर आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखी जब नितिन नवीन पहली बार बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद लखनऊ पहुंचे। तो सवाल यह कि क्या नितिन नवीन का दौरा बीजेपी के 2027 चुनाव अभियान का औपचारिक आगाज है? क्या बीजेपी का संगठन विपक्ष के सामाजिक समीकरणों पर फिर भारी पड़ेगा या इस बार मुकाबला बदल चुका है? क्या यूपी में 2027 की लड़ाई सत्ता बचाने की होगी या सत्ता बदलने की?
2: लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं, भगवान प्रभु श्री राम का भूमि, और हम कह सकते हैं भोले बाबा काशी विश्वनाथ का नगरी, मथुरा की नगरी, भगवान की नगरी, उस नगरी को नमन करता हूं और अपने सुधे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करूंगा।
1: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का लखनऊ एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए सीएम योगी खुद मौजूद थे, साथ में बीजेपी के दिग्गज मंत्री और नेता थे।
3: उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, उत्तर प्रदेश का आम जनमानस आज मान रहा है, आज उत्तर प्रदेश का युवा चाह रहा है कि आदरणीय नितिन नवीन जी जिस ढंग से सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरे प्रदेश के युवाओं में, माताओं बहनों में, गरीबों में, आम जनता में भारी उत्साह है।
1: यूपी विधानसभा चुनाव अगले साल के शुरुआती महीनों में होना है लेकिन बीजेपी ने अपनी राजनीतिक घड़ी तेज कर दी है। लखनऊ दौरे पर नितिन नवीन का एजेंडा साफ है, 2024 की समीक्षा, सोशल इंजीनियरिंग, सरकार संगठन में तालमेल, वोटर आउटरीच, 2027 की जीत का ब्लूप्रिंट। बीजेपी अध्यक्ष पद संभालने के बाद नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी ने बंगाल में ऐतिहासिक रूप से सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की, जबकि असम और पुडुचेरी में अपनी सत्ता बरकरार रखी। केरल में भी पार्टी का वोट बैंक तेजी से बढ़ा है। अब इसी विनिंग फॉर्मूले के साथ वो यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने की रणनीति बना रहे हैं लेकिन अखिलेश यादव लगातार पीडीए के फॉर्मूले को जीत का मंत्र बताते रहे हैं।
4: हम सबसे अपील करेंगे, जो हम लोगों ने एक आवाज दी है कि पीडीए से सब जुड़ जाएं, मुझे उम्मीद है पीडीए की लड़ाई मजबूत होगी, पीडीए एनडीए को हराएगा और जब हम लोग टिकट बांट रहे हैं, सीटें बांट रहे हैं, तब बीजेपी अपनी टिकट काटने की सोच रही है। सोचो, बीजेपी टिकट काटना चाहती है, हम सीटें बांट करके जनता में पहुंचे।
5: नफरत के सहारे ये सत्ता में आना चाहते हैं लेकिन देश जाग गया है, पीडीए जाग गया है, इस बार मुकाबला पीडीए करेगा एनडीए का।
1: हालांकि जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं उसमें से नितिन नवीन के स्वागत करने पहुंचे यादव समाज के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि यादव समाज को बीजेपी में ही सम्मान और भागीदारी मिली है।
6: यादों की जगह उत्तर प्रदेश के अंदर हो, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में है, 6 केंद्र में मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के बना रखे हैं, हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश में मंत्री, मुझे भाजपा पार्षद दल का उपनेता बनाया गया, हमारे तमाम पद ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण पद यादों के।
7: इस बार
6: अखिलेश जी का जो पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको हमारा समाज पूरी तरीके से जान चुका है।
1: यूपी की राजनीति में हर चुनाव सामाजिक समीकरणों और संगठनात्मक ताकत की नई परीक्षा बनकर आता है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के बाद बीजेपी के लिए अब सबसे बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, जबकि विपक्ष अपनी जीत का दावा ठोक रहा है। ऐसे में लखनऊ में जो बिसात नितिन नवीन बिछाएंगे, उसकी गूंज 2027 विधानसभा चुनाव में जरूर सुनाई देगी। आज तक ब्यूरो।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहे हैं, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब जांच में सामने आ रहा है कि पूरा खेल एक गैंग के तौर पर चल रहा था। बाकायदा बैठक होती थी, पैसों का हेर फेर होता था, एक दूसरे को बांटे जाते थे।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अयोध्या पुलिस ने पूछताछ के दौरान अविनाश शुक्ला को पिछले 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाई। जैसे ही उसने खुद को चढ़ावे से पैसे निकालते देखा, वो टूट गया और लगातार चोरी करने की बात स्वीकार कर ली। पूछताछ में अविनाश ने बताया कि चोरी की रकम से एक ब्रेजा कार खरीदी थी। ये कार उसने अपने भाई के नाम खरीदी, इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ कि कार चढ़ावा चोरी के पैसे से खरीदी गई है। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आते ही अविनाश ने कार को तुरंत प्रतापगढ़ स्थित घर भेज दिया। इस मामले में अविनाश के भाई अभिषेक शुक्ला से भी पूछताछ की गई है।
7: वहीं अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर एक कार भी बरामद कर ली गई है। ये कार ये पीछे खड़ी है, ये कार अविनाश शुक्ला ने चढ़ावा चोरी की रकम से अपने भाई अभिषेक के नाम पर खरीदी थी।
1: जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। चढ़ावा चोरी गैंग के सभी आरोपी एक दूसरे की गतिविधियों से पूरी तरह वाकिफ थे। कौन कब कैसे चोरी कर रहा है, इसकी जानकारी सभी को रहती थी। चढ़ावा चोरी के बाद सभी आरोपी नियमित रूप से बैठक करते थे। उस बैठक में चोरी का माल बांटने और आगे के प्लान पर चर्चा होती थी। इन बैठकों में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा समेत 6 आरोपी शामिल होते थे। जांच में ये भी सामने आया है कि बाद में टिन्नू यादव का भतीजा भी इन बैठकों में शामिल होने लगा था। मई के आखिरी सप्ताह में मामला खुलने से ठीक पहले भी आरोपियों की एक बैठक हुई थी। अब पुलिस चोरी की रकम, उससे खरीदी गई संपत्तियों और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। कल करीब 13 घंटे की पूछताछ के बाद अविनाश शुक्ला को अयोध्या जेल भेज दिया गया है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
0: यूपी चुनाव से पहले हुए राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस खुलासे को विपक्ष छोड़ना नहीं चाहता और अब समाजवादी पार्टी ने गाना जारी किया है, जिसको लेकर बीजेपी पर तंज कसा गया है।

समाजवादी पार्टी की ओर से जारी किया ये नया वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा अगले चुनाव में विपक्ष के लिए बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार होगा। ये वीडियो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में साझा किया है, जिसमें भगवान राम को अयोध्या छोड़कर वापस वनवास जाते दिखाया जा रहा है।

0: समाजवादी पार्टी के इस वीडियो पर सरकार के नेता अखिलेश से सवाल पूछ रहे हैं।
1: जो गाना बजा रहे हैं ना कि राम वन गए कब आएंगे, तो जब अखिलेश यादव जी दर्शन करने जाएंगे तब राम जी आ जाएंगे।
0: राम मंदिर को लेकर पूरे विपक्ष का सुर एक है।
2: राम का नाम आपने बदनाम कर दिया, हिंदुत्व का नाम पे खेला और हिंदुइज्म को आपने फिनिश किया।
3: ये चंदा चोरी बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं जानते थे इन लोगों को? इन्हीं के तो लोग हैं जो बिठाए गए हैं ट्रस्ट में।
0: इस सियासत के बीच एसआईटी सूत्रों की माने तो अयोध्या में प्रतिदिन करीब 6 से 8 लाख रुपए की चोरी हो रही थी। एसआईटी ने एसबीआई बैंक के मैनेजर समेत 10 बैंक कर्मियों से पूछताछ की है। पूछताछ के बाद बैंक के लेन देन से जुड़े दस्तावेज और हिसाब किताब अपने कब्जे में लेकर उनकी जांच की जा रही है। अयोध्या में चोरी का मामला सामने आने से पहले ट्रस्ट के एसबीआई और पीएनबी बैंक खाते में प्रतिदिन करीब 16 से 18 लाख रुपए जमा हो रहे थे। चोरी का खुलासा होने के बाद अब प्रतिदिन जमा होने वाली राशि बढ़कर 24 से 26 लाख रुपए तक पहुँच गयी है। लेकिन सवाल वही, क्या ये जाँच बड़े पदाधिकारियों तक पहुंचेगी? पूरी सियासत अब इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। आज तक ब्यूरो।
4: राम मंदिर पर विवाद अभी बढ़ ही रहा था कि बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ाव और चोरी के आरोप लग रहे हैं, जिसे लेकर अब जांच कमेटी बना दी गई है।
0: सवाल भक्तों की आस्था का है, उनके दान का है, जिसमें गड़बड़ी का विवाद अब बद्रीनाथ धाम तक पहुंच गया है।
5: सबसे पहले ये मामला उजागर हुआ जब भैरव सेना संगठन ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ में तैनात बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष के निजी सचिव ने प्रसाद में चोरी की है और जो चढ़ावा आता है उसमें सेंध मारी है। 2 तारीख का यह मामला बताया जा रहा है। करीब 8:30 से 9:30 के बीच में ये चोरी की घटना हुई, ऐसे आरोप लग रहे हैं।
0: दावा किया जा रहा है कि बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के सचिव ने पेटी खोली और दान के पैसों में हेरा फेरी की। प्रशासन कह रहा है कि सीसीटीवी चेक किए गए हैं और ऐसा कोई मामला सामने नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर सीसीटीवी को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा?
5: 2 तारीख को सुबह 8:30 के आसपास इन्होंने मंदिर गणना समिति के सदस्य रहते हुए बिना किसी स्वीकृति के पेटी को खोल दिया गया। अब इस पेटी में कितनी चोरी हुई है, कब ये चोरी हुई है, ये जांच का विषय है या फिर ये आरोप बेबुनियाद है, ये भी जांच का विषय है।
0: उधर बीकेटीसी अध्यक्ष ने आरोपी शख्स के सचिव होने से इनकार किया है और जांच के बाद दोषियों पर एक्शन का भरोसा दिया है
6: और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
0: मामले ने उत्तराखंड की सियासत को गर्म कर दिया है, जहां कांग्रेस अब बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है।
7: इस तरह की गतिविधियां और ये प्रकरण सामने आ रहे हैं, उससे न केवल सरकार और मंदिर समिति की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि करोड़ों जो हिंदू श्रद्धालु हैं, आस्थावान हैं, उनकी भावनाएं भी आहत हो रही है।
0: सवाल करोड़ों भक्तों की आस्था का है, उनके दान किए पैसों का है। राम मंदिर के बाद अब बद्रीनाथ से आ रही खबरों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: अब बात यूपी में 2027 को लेकर बीजेपी की तैयारी की, जिसे लेकर नितिन नवीन यूपी के दौरे पर है और अगले कुछ दिनों में वो यूपी में रहकर यूपी के चुनाव को लेकर मंथन करेंगे।
0: यूपी चुनाव की तैयारियों का मंथन करने जब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे तो खुद योगी आदित्यनाथ उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। साथ में बीजेपी के दिग्गज मंत्री और नेता भी थे।
8: लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। भगवान प्रभु श्री राम का भूमि हम कह सकते हैं, भोले बाबा काशी विश्वनाथ का नगरी, मथुरा की नगरी, भगवान की नगरी, उस नगरी को नमन करता हूं और अपने सीधे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करूंगा।
0: लखनऊ के दौरे पर नितिन नवीन की बैठकों का एक लंबा दौर चलेगा, जहां विधायक सांसदों के अलावा सीएम, डिप्टी सीएम और संघ के लोग भी शामिल होंगे।
9: उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। उत्तर प्रदेश का आम जनमानस आज मान रहा है, आज उत्तर प्रदेश का युवा चाह रहा है कि आदरणीय नितिन नवीन जी जिस ढंग से सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरे प्रदेश के युवाओं में, माताओं बहनों में, गरीबों में, आम जनता में भारी उत्साह है।
0: नितिन नवीन के दौरे पर अखिलेश के पीडीए के कार्ड का संदेश भी देखने को मिला। नितिन नवीन का स्वागत करने पहुंचे यादव समाज के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि यादव समाज को बीजेपी में ही सम्मान और भागीदारी मिली है।
10: यादव की जगह उत्तर प्रदेश के अंदर हो, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में है। 6 केंद्र में मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के बना रखे हैं। हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश में मंत्री, मुझे भाजपा पार्षद दल का उपनेता बनाया गया। हमारे तमाम पद ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण पद यादव के।
11: इस बार
10: अखिलेश जी का जो पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको हमारा समाज पूरी तरीके से जान चुका है।
0: यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे झटके और 2 बार सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्पेंसी जैसे खतरों को लेकर नितिन नवीन का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
4: बाद अब पंजाब की, जहां पर चुनाव से पहले कांग्रेस की टेंशन बढ़ती दिख रही है। चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में खींचतान अब खुलकर सामने आ रही है।
12: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर के बाहर मचे इस हंगामे ने एक बार फिर दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की टेंशन बढ़ा दी है। चन्नी दिल्ली कूच की तैयारी में है, लेकिन सूत्रों की माने तो चन्नी की मांग से आलाकमान सहमत नहीं है। पिछले दिनों बनी कांग्रेस ऑब्जर्वर पैनल ने पंजाब कांग्रेस प्रमुख के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी के नाम की सिफारिश की थी। पैनल की सिफारिशों के बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने राजा वडिंग को ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए रखा। ये रिपोर्ट पंजाब कांग्रेस नेताओं के साथ लंबी बातचीत के बाद तैयार की गई थी। जहां राजा वडिंग को लेकर नाराजगी थी, तो वहीं चन्नी को लेकर लोगों का समर्थन था। चन्नी को भरोसा था कि रिपोर्ट के बाद आलाकमान पंजाब में नेतृत्व में बदलाव करेगा, लेकिन हाईकमान ने इस रिपोर्ट को नजरअंदाज किया। हालांकि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग किसी भी तक की खींचतान से इंकार कर रहे हैं।
13: चन्नी जी को कोई ऑथराइजेशन की जरूरत है? चन्नी जी जब चाहें, क्योंकि राहुल गांधी जी चन्नी साहब को प्यार करते हैं, कांग्रेस पार्टी उनको प्यार करती है। देखो, मेरी बात है कि चन्नी साहब सीएम फेस बन जाएं, कोई और बन जाएं, मैं तो इस रेस में नहीं हूं।
12: राहुल गांधी 7 जुलाई को विदेश से लौट आएंगे, जिसके बाद चन्नी राहुल से मुलाकात करेंगे। वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल भी इसको लेकर हरकत में आ गए हैं, जो कुछ दिन चंडीगढ़ में बिता सकते हैं, जहां चन्नी और राजा वड्डी के साथ उनकी बातचीत होगी। इस बीच बीजेपी के चन्नी को दिए गए ऑफर ने पंजाब की सियासत को नई हवा दे दी है।
14: ये कांग्रेस का एक कल्चर है, इसमें लोटस का कोई रोल नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी जो है वो चट्टान की तरह खड़ी है, वो लोगों के दिल में बसी है। 22 सूबों में हमारी सरकार चलती है, सब जगह तरक्की हो रही है।
15: हाँ भाई, खुश हो लो जरा, थोड़े 2-4 दिन के लिए दिल बहलाने को, यही ख्याल अच्छा है गालिब।
16: सो
15: मेरी बेनती है, इन बीजेपी वाले नु बावां भी खुलियां रख लें, भावे लत्तां भी खुलियां रख लें।
12: पिछले चुनाव से पहले सिद्धू और अमरिंदर की खींचतान कांग्रेस को पंजाब में महंगी पड़ी थी। ऐसे में इस बार चुनाव से पहले चन्नी की नाराजगी कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रही है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ असीम बस्सी, चंडीगढ़, आज तक।
4: देश के कई हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन बारिश की पहली किश्त ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। आपको अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन बात सबसे पहले मुंबई की करेंगे, जहां पर चार दिनों से लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद मुंबई के कई इलाके पानी में डूबे दिख रहे हैं।

0: सड़कों पर सैलाब है, सबवे लहरों के बीच डूब चुका है। एक बार फिर भारी बारिश के चलते मुंबई में हाल बेहद बुरा है। चाहे अंधेरी हो या नाला सोपारा, वसई या विरार, हर ओर मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा है। लगातार हो रही बारिश ने मुंबई के लोगों का जीवन दुभर कर दिया है।
1: चांदीवली विधानसभा नाले सफाई झाली नाही, महापौर म्हणतात नाले सफाई झाली, उपमहापौर म्हणतात नाले सफाई झाली, पण नाले सफाई कुठे झाली? कालूराम कुठे गेला? नाल्याचा कॉन्ट्रॅक्टर कुठे गेला? कालूराम हे बघा, वॉटर किंगडम आहे, वॉटर किंगडम चांदीवली विधानसभा।
0: एक एक तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर मॉनसून की बारिश के बीच मुंबई किस तरह की मुसीबत झेल रही है। गाड़ियां पानी के बीच फंसी हुई हैं, कहीं आना जाना मुश्किल है, बारिश का दौर थम नहीं रहा है, सड़कों पर बढ़ता जलस्तर लोगों का संकट बढ़ा रहा है। सबसे पहले भिवंडी इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। तेज बारिश से पूरा बाजार तालाब बन गया है, दुकानों में पानी भर गया है, गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, घुटनों तक पानी में लोग आ जा रहे हैं। किसी तरह जद्दोजहद कर अपनी दुकानों का सामान बचाने की कोशिश में लोग जुटे हुए हैं। अब नाला सोपारा हाईवे का हाल देखिए। सड़कों पर भरे पानी के चलते कई गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, लोगों को कहीं आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। नाला सोपारा में बढ़ता जलस्तर तेजी से रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ रहा है, जो आने वाले दिनों में मुंबई के लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकता है, क्योंकि नाला सोपारा और उसके आसपास के सभी मार्केट पूरी तरह से पानी में घिरे हुए हैं। गाड़ियों से भी गुजर रहे लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। मुंबई में बीते चार दिनों से बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाके पानी में डूब गए हैं। इस बीच पानी भरने के बाद अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। अब विरार इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। दोनों ओर की सड़क पर सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है, सड़कों पर गाड़ियां फंसी हुई हैं, दूर तक लंबी कतार नजर आ रही है। बांद्रा इलाके में सड़कें लबालब हैं, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। बारिश के बीच मुसीबत का दायरा बढ़ता जा रहा है।
2: मुंबई में सुबह से लगातार बारिश हो रही है और यह बारिश पिछले तीन से चार दिनों से मुंबई में हो रही है। आज भी मौसम विभाग द्वारा मुंबई और मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, रायगढ़, थाने, पालघर, नवी मुंबई, इनके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया है। आप देख सकते हैं, हम इस वक्त मुंबई के घाटकोपर इलाके में है, जहां पर 1.5 से 2 फीट तक का पानी जो है वो मुंबई की सड़कों पर जमा हो गया है और सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील होती हुई यहाँ नजर आ रही हैं। लोग कई समय से यहाँ पर बस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो बस है वो नहीं आ रही है। गाड़ियों की आवाजाही थोड़ी यहाँ धीमी होती हुई नजर आ रही है।
0: वसई इलाके का हाल तो और भी ज्यादा बुरा है। पानी इतना ज्यादा भर गया है कि मानो पूरा इलाका टापू बन गया है। इस बीच बिजली न होने से करीब 450 परिवारों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।
3: वसई विरार में लगातार चार दिन से जोरदार बारिश हो रही है। कई निचले इलाकों में पानी भर चुका है। फिलहाल इस वक्त मैं खड़ा हूँ वसई ईस्ट के मिठागर की बस्ती है। यहाँ हम देखेंगे तो ये जो रोड है जहाँ भरा है, इसके नीचे रास्ता है और ये रास्ते से अंदर हम 1.5 से 1.5 किलोमीटर जाए तो ये नमक की खेती करने वालों की बस्ती है। कुल 120 फैमिलीज वहाँ रहती है, 300 से 400 लोग है। हर साल इसी तरह ये रोड जो है पानी के नीचे चला जाता है। ये इन्होंने जानकारी दी जो है कि इनके घर में आसपास कुल कमर के ऊपर तक का पानी भर चुका है। बिजली भी कल से चली गई है और ये वस्ती के आसपास भी ये जो प्लेन इलाका है वहाँ भी ये भी पूरी तरह से भर चुका है। प्रशासन की ओर से इन्हें कोई अभी तक मदद पहुंची नहीं है। फिलहाल इन्हें खाने पीने की चीजों की सख्त जरूरत है, क्योंकि लाइट कल से है नहीं और यही बारिश अगर लगातार चालू रही तो इनके हाल बेहाल हो सकते
0: हैं। इस बीच बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन की ओर से अब तक लोगों तक कोई मदद नहीं पहुंची है, जिससे लोगों पर आई आफत और ज्यादा बढ़ गई है।
4: हालत खराब है कल से लोगों से, क्योंकि लाइट भी नहीं है, कल से लाइट भी नहीं है और पानी भी जैसे बढ़ते ही जा रहा है और ऊपर से बारिश भी और ज्यादा ही होते जा रहा है, जैसे कि अभी एक दो घंटा और गिरेगा तो घर में भी घुस सकता है भारी पानी।
3: लाइट की क्या समस्या है उधर?
4: लाइट तो कल से ही नहीं है, कल से दोपहर से गई है, अभी तक आई ही नहीं है।
3: अभी अंदर कितना पानी है, कितने फैमिलीज अंदर रहती है?
4: फैमिली रहती है 450 फैमिली रहती है और कंबर के ऊपर पानी है।
3: कि कुछ सुबह से कुछ प्रशासन की हेल्प हुई है?
4: कुछ भी नहीं, किसी ने हेल्प करने के लिए फोन भी नहीं किया, कुछ हेल्प आया ही नहीं।
0: बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा, जगह जगह भारी जलभराव है और लोग बेहद परेशान। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच मौसम विभाग ने भी शहर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर प्रशासन ने लोगों को बेहद जरूरी यात्रा करने की सलाह दी है ताकि मौसम की मार किसी की जिंदगी पर संकट न बने। मुंबई में हर साल की यही कहानी है, बारिश हुई और लोगों की जिंदगी आफत के बीच घिर गई। एक बार फिर ऐसी ही तस्वीरें शहर की पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। सैलाब के बीच जिंदगी संकट में घिरी है। मुंबई से प्रवीण नालावड़े के साथ दीपेश त्रिपाठी आज तक।
5: अब बात ईरान के सर्वोच्च नेता खामिनेई के अंतिम संस्कार की, जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर की हस्तियां पहुंच रहे हैं। आपको आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं।
6: ईरान के सर्वोच्च नेता की अंतिम विदाई में लाखों लोग शामिल होने पहुंच रहे हैं, जहां अली खामिनेई की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है।
7: इस समय मैं मौजूद हूं ग्रैंड मुसल्ला में, और मैं जहां मौजूद हूं उसके ठीक पीछे अगर आप देखें कुछ ही दूरी पर आपको वो कॉफिन नजर आ जाएगा जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामिनेई के शव को, उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। दरअसल अगर आप देखें उनके साथ में चार कॉफिन आपको नजर आ रहे होंगे। चारों कॉफिन में सबसे ऊपर का जो कॉफिन है वो है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामिनेई का। उसके नीचे अगर आप देखें उनके ग्रैंडसन यानी उनके पोते भी जो उसमें मारे गए थे, छोटा कॉफिन, उसके बाद उनके दामाद और उनकी जो कहते हैं कि मुश्तबा खामिनेई की वाइफ का भी कॉफिन है, उनकी बेटी का कॉफिन है। और अगर आप देखें कि उनके साथ साथ चार कॉफिन से परिवार के अलग अलग लोगों के बताए जाते हैं कि उनके ये कॉफिन है। हालांकि कुछ लोग और मारे जाने का भी दावा किया गया था लेकिन उसकी पुष्टि अब तक ईरान में नहीं की गई है।
6: दुनिया भर से राजनेता, अधिकारी और धर्मगुरु तेहरान पहुंच चुके हैं और अंतिम यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। अमेरिका और इसराइल से कोई नहीं आया, वहीं लोगों के अंदर गम के साथ गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति इस पर तंज कसते भी नजर आए।
8: Two world wars, the Cold War, left America's enemies in the depths of history. We beat Venezuela in one day, and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice.
6: सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री की अंतिम यात्रा में मौजूदगी ने हर किसी को हैरान कर दिया। ओमान और कतर विदेशी प्रतिनिधियों की सूची में शामिल थे लेकिन सऊदी अरब के किसी भी प्रतिनिधि का नाम नदारद था। उधर सुरक्षा कारणों से नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामिनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो रहे हैं।
9: Doesn't allow him to come. They said it's very dangerous and we cannot provide security for him. And I think he will not come out. Do you know they have very, very advanced technology and they can recognize him and they can follow him. Where is he? And it's very dangerous for him. So because of that, he will not come out.
6: इस मौके पर 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों और धर्म गुरुओं को बुलाकर ईरान दुनिया भर को कई संदेश देने की कोशिश भी कर रहा है। अमेरिका और इसराइल के साथ युद्ध के बावजूद वो ये साबित करना चाहता है कि कूटनीतिक स्तर पर अभी वो उतना ही मजबूत है जितना 28 फरवरी से पहले था। तेहरान से गीता मोहन और सुमित चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।
5: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: हवा चोरी मामले में अब अयोध्या पुलिस जेल में बंद पांच आरोपियों से करेगी आज पूछताछ। टिन्नू यादव से भी सवाल, ममता का सरकार पर तंज, कहा राम का नाम किया बदनाम। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहले यूपी के दौरे पर नितिन नवीन का चुनावी मंत्र, पदाधिकारियों से कहा विपक्ष की नकारात्मक राजनीति के जाल में न फंसे, राज्य के विकास पर करें फोकस। पीएम मोदी ने विपक्ष पर युद्धकाल में देश को डराने का लगाया आरोप, राजस्थान के बालोतरा में बोले संकट में राष्ट्रहित को आगे रखकर फैसला, देश पर नहीं डाला बोझ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर आतंकवादियों से मुठभेड़, मारे गए दोनों आतंकवादी, कैमरे में कैद दोनों दहशतगर्द। मूसलाधार बारिश से पानी पाने, मुंबई और बढ़ सकती है मुसीबतें, आज भारी बरसात का रेड अलर्ट, बीएमसी के लोगों से अपील, जरूरी हो तभी निकलें बाहर। उत्तर प्रदेश राजनीति का वो रणक्षेत्र जहां जीत हार देश की तकदीर भी बदलती रही है। इस बार 2027 का यूपी विधानसभा का चुनाव काफी अहम है, चुनाव अगले साल होने हैं लेकिन सियासत अभी से शुरू है।
1: राजनीति में कई बार संदेश भाषणों से नहीं तस्वीरों से लिखा जाता है। स्वागत केवल सम्मान नहीं होता, वो शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन भी होता है। लखनऊ की सड़कों पर आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखी जब नितिन नवीन पहली बार बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद लखनऊ पहुंचे। तो सवाल ये कि क्या नितिन नवीन का दौरा बीजेपी के 2027 चुनाव अभियान का औपचारिक आगाज है? क्या बीजेपी का संगठन विपक्ष के सामाजिक समीकरणों पर फिर भारी पड़ेगा या इस बार मुकाबला बदल चुका है? क्या यूपी में 2027 की लड़ाई सत्ता बचाने की होगी या सत्ता बदलने की?
2: लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूँ। भगवान प्रभु श्री राम का भूमि और हम कह सकते हैं भोले बाबा काशी विश्वनाथ का नगरी, मथुरा की नगरी, भगवान की नगरी, उस नगरी को नमन करता हूँ और अपने सुधे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करूँगा।
1: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का लखनऊ एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए सीएम योगी खुद मौजूद थे, साथ में बीजेपी के दिग्गज मंत्री और नेता थे।
3: उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, उत्तर प्रदेश का आम जनमानस आज मान रहा है, आज उत्तर प्रदेश का युवा चाह रहा है कि आदरणीय नितिन नवीन जी जिस ढंग से सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरे प्रदेश के युवाओं में, माताओं बहनों में, गरीबों में, आम जनता में भारी उत्साह है।
1: यूपी विधानसभा चुनाव अगले साल के शुरुआती महीनों में होना है लेकिन बीजेपी ने अपनी राजनीतिक घड़ी तेज कर दी है। लखनऊ दौरे पर नितिन नवीन का एजेंडा साफ है, 2024 की समीक्षा, सोशल इंजीनियरिंग, सरकार संगठन में तालमेल, वोटर आउटरीच, 2027 की जीत का ब्लूप्रिंट। बीजेपी अध्यक्ष पद संभालने के बाद नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी ने बंगाल में ऐतिहासिक रूप से सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की, जबकि असम और पुडुचेरी में अपनी सत्ता बरकरार रखी। केरल में भी पार्टी का वोट बैंक तेजी से बढ़ा है। अब इसी विनिंग फॉर्मूले के साथ वो यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने की रणनीति बना रहे हैं लेकिन अखिलेश यादव लगातार पीडीए के फॉर्मूले को जीत का मंत्र बताते रहे हैं।
4: हम सबसे अपील करेंगे, जो हम लोगों ने एक आवाज दी है कि पीडीए से सब जुड़ जाएं, मुझे उम्मीद है पीडीए की लड़ाई मजबूत होगी, पीडीए एनडीए को हराएगा और जब हम लोग टिकट बांट रहे हैं, सीटें बांट रहे हैं, तब बीजेपी अपनी टिकट काटने की सोच रही है। सोचो, बीजेपी टिकट काटना चाहती है, हम सीटें बांट करके जनता में पहुंचे।
5: नफरत के सहारे ये सत्ता में आना चाहते हैं लेकिन देश जाग गया है, पीडीए जाग गया है, इस बार मुकाबला पीडीए करेगा एनडीए का।
1: हालांकि जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं उसमें से नितिन नवीन के स्वागत करने पहुंचे यादव समाज के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि यादव समाज को बीजेपी में ही सम्मान और भागीदारी मिली है।
6: यादव की जगह उत्तर प्रदेश के अंदर हो, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में है, 6 केंद्र में मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के बना रखे हैं, हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश में मंत्री, मुझे भाजपा पार्षद दल का उपनेता बनाया गया, हमारे तमाम पद ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण पद यादव के।
7: इस बार
6: अखिलेश जी का जो पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको हमारा समाज पूरी तरीके से जान चुका है।
1: यूपी की राजनीति में हर चुनाव सामाजिक समीकरणों और संगठनात्मक ताकत की नई परीक्षा बनकर आता है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के बाद बीजेपी के लिए अब सबसे बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, जबकि विपक्ष अपनी जीत का दावा ठोक रहा है। ऐसे में लखनऊ में जो बिसात नितिन नवीन बिछाएंगे, उसकी गूंज 2027 विधानसभा चुनाव में जरूर सुनाई देगी। आज तक ब्यूरो।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहे हैं, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब जांच में सामने आ रहा है कि पूरा खेल एक गैंग के तौर पर चल रहा था। बाकायदा बैठक होती थी, पैसों का हेर फेर होता था, एक दूसरे को बांटे जाते थे।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अयोध्या पुलिस ने पूछताछ के दौरान अविनाश शुक्ला को पिछले 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाई। जैसे ही उसने खुद को चढ़ावे से पैसे निकालते देखा, वो टूट गया और लगातार चोरी करने की बात स्वीकार कर ली। पूछताछ में अविनाश ने बताया कि चोरी की रकम से एक ब्रेजा कार खरीदी थी। ये कार उसने अपने भाई के नाम खरीदी, इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ कि कार चढ़ावा चोरी के पैसे से खरीदी गई है। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आते ही अविनाश ने कार को तुरंत प्रतापगढ़ स्थित घर भेज दिया। इस मामले में अविनाश के भाई अभिषेक शुक्ला से भी पूछताछ की गई है।
7: वहीं अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर एक कार भी बरामद कर ली गई है। ये कार ये पीछे खड़ी है, ये कार अविनाश शुक्ला ने चढ़ावा चोरी की रकम से अपने भाई अभिषेक के नाम पर खरीदी थी।
1: जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। चढ़ावा चोरी गैंग के सभी आरोपी एक दूसरे की गतिविधियों से पूरी तरह वाकिफ थे। कौन कब कैसे चोरी कर रहा है, इसकी जानकारी सभी को रहती थी। चढ़ावा चोरी के बाद सभी आरोपी नियमित रूप से बैठक करते थे। उस बैठक में चोरी का माल बांटने और आगे के प्लान पर चर्चा होती थी। इन बैठकों में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा समेत 6 आरोपी शामिल होते थे। जांच में यह भी सामने आया है कि बाद में टिन्नू यादव का भतीजा भी इन बैठकों में शामिल होने लगा था। मई के आखिरी सप्ताह में मामला खुलने से ठीक पहले भी आरोपियों की एक बैठक हुई थी। अब पुलिस चोरी की रकम, उससे खरीदी गई संपत्तियों और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। कल करीब 13 घंटे की पूछताछ के बाद अविनाश शुक्ला को अयोध्या जेल भेज दिया गया है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
0: यूपी चुनाव से पहले हुए राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस खुलासे को विपक्ष छोड़ना नहीं चाहता और अब समाजवादी पार्टी ने गाना जारी किया है, जिसको लेकर बीजेपी पर तंज कसा गया है।

0: समाजवादी पार्टी की ओर से जारी किया ये नया वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा अगले चुनाव में विपक्ष के लिए बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार होगा। ये वीडियो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में साझा किया है, जिसमें भगवान राम को अयोध्या छोड़कर वापस वनवास जाते दिखाया जा रहा है।
1: फिर

0: समाजवादी पार्टी के इस वीडियो पर सरकार के नेता अखिलेश से सवाल पूछ रहे हैं।
1: जो गाना बजा रहे हैं ना कि राम बन गए कब आएंगे, तो जब अखिलेश यादव जी दर्शन करने जाएंगे तब राम जी आ जाएंगे।
0: राम मंदिर को लेकर पूरे विपक्ष का सुर एक है।
2: राम का नाम आपने बदनाम कर दिया, हिंदुत्व का नाम पे खेला और हिंदुइज्म को आपने फिनिश किया।
3: ये चंदा चोरी बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं जानते थे इन लोगों को? इन्हीं के तो लोग हैं जो बिठाए गए हैं ट्रस्ट में।
0: इस सियासत के बीच एसआईटी सूत्रों की माने तो अयोध्या में प्रतिदिन करीब 6 से 8 लाख रुपए की चोरी हो रही थी। एसआईटी ने एसबीआई बैंक के मैनेजर समेत 10 बैंक कर्मियों से पूछताछ की है। पूछताछ के बाद बैंक के लेन देन से जुड़े दस्तावेज और हिसाब किताब अपने कब्जे में लेकर उनकी जांच की जा रही है। अयोध्या में चोरी का मामला सामने आने से पहले ट्रस्ट के एसबीआई और पीएनबी बैंक खाते में प्रतिदिन करीब 16 से 18 लाख रुपए जमा हो रहे थे। चोरी का खुलासा होने के बाद अब प्रतिदिन जमा होने वाली राशि बढ़कर 24 से 26 लाख रुपए तक पहुँच गयी है। लेकिन सवाल वही, क्या ये जाँच बड़े पदाधिकारियों तक पहुंचेगी? पूरी सियासत अब इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। आज तक ब्यूरो।
4: राम मंदिर पर विवाद अभी बढ़ ही रहा था कि बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ाव और चोरी के आरोप लग रहे हैं, जिसे लेकर अब जांच कमेटी बना दी गई है।
0: सवाल भक्तों की आस्था का है, उनके दान का है, जिसमें गड़बड़ी का विवाद अब बद्रीनाथ धाम तक पहुंच गया है।
5: सबसे पहले ये मामला उजागर हुआ जब भैरव सेना संगठन ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ में तैनात बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष निजी सचिव ने प्रसाद में चोरी की है और जो चढ़ावा आता है उसमें सेंध मारी है। 2 तारीख का यह मामला बताया जा रहा है। करीब 8:30 से 9:30 के बीच में ये चोरी की घटना हुई, ऐसे आरोप लग रहे हैं।
0: दावा किया जा रहा है कि बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के सचिव ने पेटी खोली और दान के पैसों में हेरा फेरी की। प्रशासन कह रहा है कि सीसीटीवी चेक किए गए हैं और ऐसा कोई मामला सामने नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर सीसीटीवी को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा?
5: 2 तारीख को सुबह 8:30 के आसपास इन्होंने मंदिर गणना समिति के सदस्य रहते हुए बिना किसी स्वीकृति के पेटी को खोल दिया गया। अब इस पेटी में कितनी चोरी हुई है, कब ये चोरी हुई है, ये जांच का विषय है या फिर ये आरोप बेबुनियाद है, ये भी जांच का विषय है।
0: उधर बीकेटीसी अध्यक्ष ने आरोपी शख्स के सचिव होने से इनकार किया है और जांच के बाद दोषियों पर एक्शन का भरोसा दिया है
6: और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
0: मामले ने उत्तराखंड की सियासत को गर्म कर दिया है, जहां कांग्रेस अब बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है।
7: इस तरह की गतिविधियां और ये प्रकरण सामने आ रहे हैं, उससे न केवल सरकार और मंदिर समिति की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि करोड़ों जो हिंदू श्रद्धालु हैं, आस्थावान हैं, उनकी भावनाएं भी आहत हो रही है।
0: सवाल करोड़ों भक्तों की आस्था का है, उनके दान किए पैसों का है। राम मंदिर के बाद अब बद्रीनाथ से आ रही खबरों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: अब बात यूपी में 2027 को लेकर बीजेपी की तैयारी की, जिसे लेकर नितिन नवीन यूपी के दौरे पर है और अगले कुछ दिनों में वो यूपी में रहकर यूपी के चुनाव को लेकर मंथन करेंगे।
0: यूपी यूपी चुनाव की तैयारियों का मंथन करने जब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे तो खुद योगी आदित्यनाथ उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। साथ में बीजेपी के दिग्गज मंत्री और नेता भी थे।
8: लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। भगवान प्रभु श्री राम का भूमि और हम कह सकते हैं भोले बाबा काशी विश्वनाथ का नगरी, मथुरा की नगरी, भगवान की नगरी, उस नगरी को नमन करता हूं और अपने सुधे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करूंगा।
0: लखनऊ के दौरे पर नितिन नवीन की बैठकों का एक लंबा दौर चलेगा, जहां विधायक सांसदों के अलावा सीएम, डिप्टी सीएम और संघ के लोग भी शामिल होंगे।
9: उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। उत्तर प्रदेश का आम जनमानस आज मान रहा है, आज उत्तर प्रदेश का युवा चाह रहा है कि आदरणीय नितिन नवीन जी जिस ढंग से सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरे प्रदेश के युवाओं में, माताओं बहनों में, गरीबों में, आम जनता में भारी उत्साह है।
0: नितिन नवीन के दौरे पर अखिलेश के पीडीए के कार्ड का संदेश भी देखने को मिला। नितिन नवीन का स्वागत करने पहुंचे यादव समाज के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि यादव समाज को बीजेपी में ही सम्मान और भागीदारी मिली है।
10: यादव की जगह उत्तर प्रदेश के अंदर हो, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में है। 6 केंद्र में मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के बना रखे हैं। हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश में मंत्री, मुझे भाजपा पार्षद दल का उपनेता बनाया गया। हमारे तमाम पद ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण पद यादव के।
11: इस बार
10: अखिलेश जी का जो पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको हमारा समाज पूरी तरीके से जान चुका है।
0: यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे झटके और दो बार सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्पेंसी जैसे खतरों को लेकर नितिन नवीन का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आज तक ब्यूरो
4: माधव पंजाब की, जहां पर चुनाव से पहले कांग्रेस की टेंशन बढ़ती दिख रही है। चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में खींचतान अब खुलकर सामने आ रही है।
12: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर के बाहर मचे इस हंगामे ने एक बार फिर दिल्ली में कांग्रेस आला कमान की टेंशन बढ़ा दी है। चन्नी दिल्ली कूच की तैयारी में है, लेकिन सूत्रों की माने तो चन्नी की मांग से आला कमान सहमत नहीं है। पिछले दिनों बनी कांग्रेस ऑब्जर्वर पैनल ने पंजाब कांग्रेस प्रमुख के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी के नाम की सिफारिश की थी। पैनल की सिफारिशों के बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने राजा वडिंग को ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए रखा। ये रिपोर्ट पंजाब कांग्रेस नेताओं के साथ लंबी बातचीत के बाद तैयार की गई थी। जहां राजा वडिंग को लेकर नाराजगी थी तो वहीं चन्नी को लेकर लोगों का समर्थन था। चन्नी को भरोसा था कि रिपोर्ट के बाद आला कमान पंजाब में नेतृत्व में बदलाव करेगा, लेकिन हाईकमान ने इस रिपोर्ट को नजरअंदाज किया। हालांकि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग किसी भी तक की खींचतान से इनकार कर रहे हैं।
13: चन्नी जी को कोई ऑथराइजेशन की जरूरत है? चन्नी जी जब चाहे, क्योंकि राहुल गांधी जी चन्नी साहब को प्यार करते हैं, कांग्रेस पार्टी उनको प्यार करती है। देखो, मेरी बात है कि चन्नी साहब सीएम फेस बन जाएं, कोई और बन जाए, मैं तो इस रेस में नहीं हूँ।
12: राहुल गांधी 7 जुलाई को विदेश से लौट आएंगे, जिसके बाद चन्नी राहुल से मुलाकात करेंगे। वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल भी इसको लेकर हरकत में आ गए हैं, जो कुछ दिन चंडीगढ़ में बिता सकते हैं, जहां चन्नी और राजा वडी के साथ उनकी बातचीत होगी। इस बीच बीजेपी के चन्नी को दिए गए ऑफर ने पंजाब की सियासत को नई हवा दे दी है।
14: ये कांग्रेस का एक कल्चर है, इसमें लोटस का कोई रोल नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब चट्टान की तरह खड़ी है, वो लोगों के दिल में बसी है। 22 सूबों में हमारी सरकार चलती है, सब जगह तरक्की हो रही है।
15: हाँ भाई, खुश हो लो जरा थोड़े 2-4 दिन के लिए, दिल बहलाने को यही ख्याल अच्छा है गालिब।
16: सो
15: मेरी बेनती है इन्हें बीजेपी वालों नूं बावां भी खुलियां रख लैन ते भावें लत्तां भी खुलियां रख लैन।
12: पिछले चुनाव से पहले सिद्धू और अमरिंदर की खींचतान कांग्रेस को पंजाब में महंगी पड़ी थी। ऐसे में इस बार चुनाव से पहले चन्नी की नाराजगी कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रही है।

कर दिया। आपको अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन बात सबसे पहले मुंबई की करेंगे, जहां पर चार दिनों से लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद मुंबई के कई इलाके पानी में डूबे दिख रहे हैं।

0: सड़कों पर सैलाब है, सबवे लहरों के बीच डूब चुका है। एक बार फिर भारी बारिश के चलते मुंबई में हाल बेहद बुरा है। चाहे अंधेरी हो या नाला सोपारा, वसई या विरार, हर ओर मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा है। लगातार हो रही बारिश ने मुंबई के लोगों का जीवन दुभर कर दिया है।
1: चांदीवली विधानसभा नाले सफाई झाली नाही, महापौर म्हणतात नाले सफाई झाली, उपमहापौर म्हणतात नाले सफाई झाली, पण नाले सफाई कुठे झाली? कानुराम कुठे गेला? नाल्याचा कॉन्ट्रॅक्टर कुठे गेला? कानुराम हे बघा, वॉटर किंगडम आहे, वॉटर किंगडम चांदीवली विधानसभा।
0: एक एक तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर मॉनसून की बारिश के बीच मुंबई किस तरह की मुसीबत झेल रही है। गाड़ियां पानी के बीच फंसी हुई हैं, कहीं आना जाना मुश्किल है, बारिश का दौर थम नहीं रहा है, सड़कों पर बढ़ता जलस्तर लोगों का संकट बढ़ा रहा है। सबसे पहले भिवंडी इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। तेज बारिश से पूरा बाजार तालाब बन गया है, दुकानों में पानी भर गया है, गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, घुटनों तक पानी में लोग आ जा रहे हैं। किसी तरह जद्दोजहद कर अपनी दुकानों का सामान बचाने की कोशिश में लोग जुटे हुए हैं। अब नाला सोपारा हाईवे का हाल देखिए। सड़कों पर भरे पानी के चलते कई गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, लोगों को कहीं आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। नाला सोपारा में बढ़ता जलस्तर तेजी से रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ रहा है, जो आने वाले दिनों में मुंबई के लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकता है, क्योंकि नाला सोपारा और उसके आसपास के सभी मार्केट पूरी तरह से पानी में घिरे हुए हैं। गाड़ियों से भी गुजर रहे लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। मुंबई में बीते चार दिनों से बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाके पानी में डूब गए हैं। इस बीच पानी भरने के बाद अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। अब विरार इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। दोनों ओर की सड़क पर सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है, सड़कों पर गाड़ियां फंसी हुई हैं, दूर तक लंबी कतार नजर आ रही है। बांद्रा इलाके में सड़कें लबालब हैं, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। बारिश के बीच मुसीबत का दायरा बढ़ता जा रहा है।
2: मुंबई में सुबह से लगातार बारिश हो रही है और यह बारिश पिछले तीन से चार दिनों से मुंबई में हो रही है। आज भी मौसम विभाग द्वारा मुंबई और मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, रायगढ़, थाने, पालघर, नवी मुंबई, इनके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया है। आप देख सकते हैं हम इस वक्त मुंबई के घाटकोपर इलाके में है, जहां पर 1.5 से 2 फीट तक का पानी जो है वो मुंबई की सड़कों पर जमा हो गया है और सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील होती हुई यहाँ नजर आ रही हैं। लोग कई समय से यहाँ पर बस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो बस है वो नहीं आ रही है। गाड़ियों की आवाजाही थोड़ी यहाँ धीमी होती हुई नजर आ रही है।
0: वसई इलाके का हाल तो और भी ज्यादा बुरा है। पानी इतना ज्यादा भर गया है कि मानो पूरा इलाका टापू बन गया है। इस बीच बिजली न होने से करीब 450 परिवारों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।
3: वसई विरार में लगातार चार दिन से जोरदार बारिश हो रही है। कई निचले इलाकों में पानी भर चुका है। फिलहाल इस वक्त मैं खड़ा हूँ वसई ईस्ट के मिठागर की बस्ती है। यहाँ हम देखेंगे तो ये जो रोड है जहाँ भरा है, इसके नीचे रास्ता है और ये रास्ते से अंदर हम 1.5 से 1.5 किलोमीटर जाए तो ये नमक की खेती करने वालों की बस्ती है। कुल 120 फैमिलीज वहाँ रहती है, 300 से 400 लोग है। हर साल इसी तरह ये रोड जो है पानी के नीचे चला जाता है। ये इन्होंने जानकारी दी जो है कि इनके घर में आसपास कुल कमर के ऊपर तक का पानी भर चुका है। बिजली भी कल से चली गई है और ये वस्ती के आसपास भी ये जो प्लेन इलाका है वहाँ भी ये भी पूरी तरह से भर चुका है। प्रशासन की ओर से इन्हें कोई अभी तक मदद पहुंची नहीं है। फिलहाल इन्हें खाने पीने की चीज़ों की सख्त जरूरत है, क्योंकि लाइट कल से है नहीं और यही बारिश अगर लगातार

0: चालू रही तो इनके हाल बेहाल हो सकते
1: हैं। इस बीच बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन की ओर से अब तक लोगों तक कोई मदद नहीं पहुंची है, जिससे लोगों पर आई आफत और ज्यादा बढ़ गई है।
2: हालत खराब है कल से लोगों से, क्योंकि लाइट भी नहीं है, कल से लाइट भी नहीं है और पानी भी जैसे बढ़ते ही जा रहा है और ऊपर से बारिश भी और ज्यादा ही होते जा रहा है। जैसे कि अभी एक दो घंटा और गिरेगा तो घर में भी घुस सकता है बारिश पानी।
0: लाइट की क्या समस्या है उधर?
2: लाइट तो कल से ही नहीं है, कल से दोपहर से गई है, अभी तक आई ही नहीं है।
0: अभी अंदर कितना पानी है, कितने फैमिलीज अंदर रहती है?
2: फैमिली रहती है 450 फैमिली रहती है और कंबर के ऊपर पानी है।
0: कि कुछ सुबह से कुछ प्रशासन की हेल्प हुई है?
2: कुछ भी नहीं, किसी ने हेल्प करने के लिए फोन भी नहीं किया, कुछ हेल्प आया ही नहीं।
1: बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा, जगह जगह भारी जलभराव है और लोग बेहद परेशान। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच मौसम विभाग ने भी शहर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर प्रशासन ने लोगों को बेहद जरूरी यात्रा करने की सलाह दी है, ताकि मौसम की मार किसी की जिंदगी पर संकट न बने। मुंबई में हर साल की यही कहानी है, बारिश हुई और लोगों की जिंदगी आफत के बीच घिर गई। एक बार फिर ऐसी ही तस्वीरें शहर की पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। सैलाब के बीच जिंदगी संकट में घिरी है। मुंबई से प्रवीण नालावड़े के साथ दीपेश त्रिपाठी आज तक।
3: अब बात ईरान के सर्वोच्च नेता खामिनेई के अंतिम संस्कार की, जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर की हस्तियां पहुंच रहे हैं। आपको आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं।
4: ईरान के सर्वोच्च नेता की अंतिम विदाई में लाखों लोग शामिल होने पहुंच रहे हैं, जहां अली खामिनेई की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है।
5: इस समय मैं मौजूद हूं ग्रैंड मुसल्ला में, और मैं जहां मौजूद हूं उसके ठीक पीछे अगर आप देखें कुछ ही दूरी पर आपको वो कॉफिन नजर आ जाएगा, जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामिनेई के शव को, उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। दरअसल अगर आप देखें उनके साथ में चार कॉफिन आपको नजर आ रहे होंगे। चारों कॉफिन में सबसे ऊपर का जो कॉफिन है वो है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामिनेई का। उसके नीचे अगर आप देखें उनके ग्रैंडसन यानी उनके पोते भी जो उसमें मारे गए थे, छोटा कॉफिन, उसके बाद उनके दामाद और उनकी जो कहते हैं कि मुश्तबा खामिनेई की वाइफ का भी कॉफिन है, उनकी बेटी का कॉफिन है। और अगर आप देखें कि उनके साथ साथ चार कॉफिन से परिवार के अलग अलग लोगों के बताए जाते हैं कि उनके ये कॉफिन है। हालांकि कुछ लोग और मारे जाने का भी दावा किया गया था, लेकिन उसकी पुष्टि अब तक ईरान में नहीं की गई है।
4: दुनिया भर से राजनेता, अधिकारी और धर्मगुरु तेहरान पहुंच चुके हैं और अंतिम यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। अमेरिका और इसराइल से कोई नहीं आया, वहीं लोगों के अंदर गम के साथ गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति इस पर तंज कसते भी नजर आए।
6: Two world wars, the Cold War, left America's enemies in the depths of history. We beat Venezuela in one day, and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice.
4: सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री की अंतिम यात्रा में मौजूदगी ने हर किसी को हैरान कर दिया। ओमान और कतर विदेशी प्रतिनिधियों की सूची में शामिल थे, लेकिन सऊदी अरब के किसी भी प्रतिनिधि का नाम नदारद था। उधर सुरक्षा कारणों से नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामिनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो रहे हैं।
7: Doesn't allow him to come. They said it's very dangerous and we cannot provide security for him. And I think he will not come out. Do you know they have very, very advanced technology and they can recognize him and they can follow him. Where is he? And it's very dangerous for him. So because of that, he will not come out.
4: इस मौके पर 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों और धर्म गुरुओं को बुलाकर ईरान दुनिया भर को कई संदेश देने की कोशिश भी कर रहा है। अमेरिका और इसराइल के साथ युद्ध के बावजूद वो ये साबित करना चाहता है कि कूटनीतिक स्तर पर अभी वो उतना ही मजबूत है जितना 28 फरवरी से पहले था। तेहरान से गीता मोहन और सुमित चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।
3: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: चढ़ावा चोरी मामले में अब अयोध्या पुलिस जेल में बंद पांच आरोपियों से करेगी आज पूछताछ। तेनू यादव से भी सवाल, ममता का सरकार पर तंज, कहा राम का नाम किया बदनाम। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहले यूपी के दौरे पर नितिन नवीन का चुनावी मंत्र, पदाधिकारियों से कहा विपक्ष की नकारात्मक राजनीति के जाल में न फंसे, राज्य के विकास पर करें फोकस। पीएम मोदी ने विपक्ष पर युद्धकाल में देश को डराने का लगाया आरोप, राजस्थान के बालोतरा में बोले संकट में राष्ट्रहित को आगे रखकर फैसला, देश पर नहीं डाला बोझ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर आतंकवादियों से मुठभेड़, मारे गए दोनों आतंकवादी, कैमरे में कैद दोनों दहशतगर्द। मूसलाधार बारिश से पाने पाने मुंबई, और बढ़ सकती है मुसीबतें, आज भारी बरसात का रेड अलर्ट, बीएमसी के लोगों से अपील, जरूरी हो तभी निकलें बाहर। उत्तर प्रदेश राजनीति का बोरण क्षेत्र, जहां जीत हार देश की तकदीर भी बदलती रही है। इस बार 2027 का यूपी विधानसभा का चुनाव काफी अहम है, चुनाव अगले साल होने हैं लेकिन सियासत अभी से शुरू है।
1: राजनीति में कई बार संदेश भाषणों से नहीं तस्वीरों से लिखा जाता है। स्वागत केवल सम्मान नहीं होता, वो शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन भी होता है। लखनऊ की सड़कों पर आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखी जब नितिन नवीन पहली बार बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद लखनऊ पहुंचे। तो सवाल यह कि क्या नितिन नवीन का दौरा बीजेपी के 2027 चुनाव अभियान का औपचारिक आगाज है? क्या बीजेपी का संगठन विपक्ष के सामाजिक समीकरणों पर फिर भारी पड़ेगा या इस बार मुकाबला बदल चुका है? क्या यूपी में 2027 की लड़ाई सत्ता बचाने की होगी या सत्ता बदलने की?
2: लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूँ। भगवान प्रभु श्री राम का भूमि कह सकते हैं, भोले बाबा काशी विश्वनाथ का नगरी, मथुरा की नगरी, भगवान की नगरी, उस नगरी को नमन करता हूँ और अपने सुधे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करूँगा।
1: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का लखनऊ एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए सीएम योगी खुद मौजूद थे, साथ में बीजेपी के दिग्गज मंत्री और नेता थे।
3: उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, उत्तर प्रदेश का आम जनमानस आज मान रहा है, आज उत्तर प्रदेश का युवा चाह रहा है कि आदरणीय नितिन नवीन जी जिस ढंग से सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरे प्रदेश के युवाओं में, माताओं बहनों में, गरीबों में, आम जनता में भारी उत्साह है।
1: यूपी विधानसभा चुनाव अगले साल के शुरुआती महीनों में होना है लेकिन बीजेपी ने अपनी राजनीतिक घड़ी तेज कर दी है। लखनऊ दौरे पर नितिन नवीन का एजेंडा साफ है, 2024 की समीक्षा, सोशल इंजीनियरिंग, सरकार संगठन में तालमेल, वोटर आउटरीच, 2027 की जीत का ब्लूप्रिंट। बीजेपी अध्यक्ष पद संभालने के बाद नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी ने बंगाल में ऐतिहासिक रूप से सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की, जबकि असम और पुडुचेरी में अपनी सत्ता बरकरार रखी। केरल में भी पार्टी का वोट बैंक तेजी से बढ़ा है। अब इसी विनिंग फॉर्मूले के साथ वो यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव लगातार पीडीए के फॉर्मूले को जीत का मंत्र बताते रहे हैं।
4: हम सबसे अपील करेंगे, जो हम लोगों ने एक आवाज दी है कि पीडीए से सब जुड़ जाएं, मुझे उम्मीद है पीडीए की लड़ाई मजबूत होगी, पीडीए एनडीए को हराएगा और जब हम लोग टिकट बांट रहे हैं, सीटें बांट रहे हैं, तब बीजेपी अपनी टिकट काटने की सोच रही है। सोचो, बीजेपी टिकट काटना चाहती है, हम सीटें बांट करके जनता में पहुंचे।
5: नफरत के सहारे ये सत्ता में आना चाहते हैं लेकिन देश जाग गया है, पीडीए जाग गया है, इस बार मुकाबला पीडीए करेगा एनडीए का।
1: हालांकि जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं उसमें से नितिन नवीन के स्वागत करने पहुंचे यादव समाज के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि यादव समाज को बीजेपी में ही सम्मान और भागीदारी मिली है।
6: यादों की जगह उत्तर प्रदेश के अंदर हो, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में है, 6 केंद्र में मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के बना रखे हैं, हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश में मंत्री, मुझे भाजपा पार्षद दल का उपनेता बनाया गया, हमारे तमाम पद ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण पद यादों के।
7: इस बार
6: अखिलेश जी का जो पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको हमारा समाज पूरी तरीके से जान चुका है।
1: यूपी की राजनीति में हर चुनाव सामाजिक समीकरणों और संगठनात्मक ताकत की नई परीक्षा बनकर आता है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के बाद बीजेपी के लिए अब सबसे बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, जबकि विपक्ष अपनी जीत का दावा ठोक रहा है। ऐसे में लखनऊ में जो बिसात नितिन नवीन बिछाएंगे, उसकी गूंज 2027 विधानसभा चुनाव में जरूर सुनाई देगी। आज तक ब्यूरो।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहे हैं, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब जांच में सामने आ रहा है कि पूरा खेल एक गैंग के तौर पर चल रहा था। बाकायदा बैठक होती थी, पैसों का हेर फेर होता था, एक दूसरे को बांटे जाते थे।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अयोध्या पुलिस ने पूछताछ के दौरान अविनाश शुक्ला को पिछले 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाई। जैसे ही उसने खुद को चढ़ावे से पैसे निकालते देखा, वो टूट गया और लगातार चोरी करने की बात स्वीकार कर ली। पूछताछ में अविनाश ने बताया कि चोरी की रकम से एक ब्रेजा कार खरीदी थी। ये कार उसने अपने भाई के नाम खरीदी, इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ कि कार चढ़ावा चोरी के पैसे से खरीदी गई है। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आते ही अविनाश ने कार को तुरंत प्रतापगढ़ स्थित घर भेज दिया। इस मामले में अविनाश के भाई अभिषेक शुक्ला से भी पूछताछ की गई है।
7: वहीं अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर एक कार भी बरामद कर ली गई है। ये कार ये पीछे खड़ी है, ये कार अविनाश शुक्ला ने चढ़ावा चोरी की रकम से अपने भाई अभिषेक के नाम पर खरीदी थी।
1: जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। चढ़ावा चोरी गैंग के सभी आरोपी एक दूसरे की गतिविधियों से पूरी तरह वाकिफ थे। कौन कब कैसे चोरी कर रहा है, इसकी जानकारी सभी को रहती थी। चढ़ावा चोरी के बाद सभी आरोपी नियमित रूप से बैठक करते थे। उस बैठक में चोरी का माल बांटने और आगे के प्लान पर चर्चा होती थी। इन बैठकों में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा समेत 6 आरोपी शामिल होते थे। जांच में यह भी सामने आया है कि बाद में टिन्नू यादव का भतीजा भी इन बैठकों में शामिल होने लगा था। मई के आखिरी सप्ताह में मामला खुलने से ठीक पहले भी आरोपियों की एक बैठक हुई थी। अब पुलिस चोरी की रकम, उससे खरीदी गई संपत्तियों और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। कल करीब 13 घंटे की पूछताछ के बाद अविनाश शुक्ला को अयोध्या जेल भेज दिया गया है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
0: यूपी चुनाव से पहले हुए राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस खुलासे को विपक्ष छोड़ना नहीं चाहता और अब समाजवादी पार्टी ने गाना जारी किया है, जिसको लेकर बीजेपी पर तंज कसा गया है।

समाजवादी पार्टी की ओर से जारी किया ये नया वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा अगले चुनाव में विपक्ष के लिए बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार होगा। ये वीडियो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में साझा किया है, जिसमें भगवान राम को अयोध्या छोड़कर वापस वनवास जाते दिखाया जा रहा है।

0: समाजवादी पार्टी के इस वीडियो पर सरकार के नेता अखिलेश से सवाल पूछ रहे हैं।
1: जो गाना बजा रहे हैं ना कि राम वन गए कब आएंगे, तो जब अखिलेश यादव जी दर्शन करने जाएंगे तब राम जी आ जाएंगे।
0: राम मंदिर को लेकर पूरे विपक्ष का सुर एक है।
2: राम का नाम आपने बदनाम कर दिया, हिंदुत्व का नाम पे खेला और हिंदुइज्म को आपने फिनिश किया।
3: ये चंदा चोरी बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं जानते थे इन लोगों को? इन्हीं के तो लोग हैं जो बिठाए गए हैं ट्रस्ट में।
0: इस सियासत के बीच एसआईटी सूत्रों की माने तो अयोध्या में प्रतिदिन करीब 6 से 8 लाख रुपए की चोरी हो रही थी। एसआईटी ने एसबीआई बैंक के मैनेजर समेत 10 बैंक कर्मियों से पूछताछ की है। पूछताछ के बाद बैंक के लेन देन से जुड़े दस्तावेज और हिसाब किताब अपने कब्जे में लेकर उनकी जांच की जा रही है। अयोध्या में चोरी का मामला सामने आने से पहले ट्रस्ट के एसबीआई और पीएनबी बैंक खाते में प्रतिदिन करीब 16 से 18 लाख रुपए जमा हो रहे थे। चोरी का खुलासा होने के बाद अब प्रतिदिन जमा होने वाली राशि बढ़कर 24 से 26 लाख रुपए तक पहुँच गयी है। लेकिन सवाल वही, क्या ये जाँच बड़े पदाधिकारियों तक पहुंचेगी? पूरी सियासत अब इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। आज तक ब्यूरो।
4: राम मंदिर पर विवाद अभी बढ़ ही रहा था कि बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ाव और चोरी के आरोप लग रहे हैं, जिसे लेकर अब जांच कमेटी बना दी गई है।
0: सवाल भक्तों की आस्था का है, उनके दान का है, जिसमें गड़बड़ी का विवाद अब बद्रीनाथ धाम तक पहुंच गया है।
5: सबसे पहले ये मामला उजागर हुआ जब भैरव सेना संगठन ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ में तैनात बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष के निजी सचिव ने प्रसाद में चोरी की है और जो चढ़ावा आता है उसमें सेंध मारी है। 2 तारीख का यह मामला बताया जा रहा है। करीब 8:30 से 9:30 के बीच में ये चोरी की घटना हुई, ऐसे आरोप लग रहे हैं।
0: दावा किया जा रहा है कि बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के सचिव ने पेटी खोली और दान के पैसों में हेरा फेरी की। प्रशासन कह रहा है कि सीसीटीवी चेक किए गए हैं और ऐसा कोई मामला सामने नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर सीसीटीवी को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा?
5: 2 तारीख को सुबह 8:30 के आसपास इन्होंने मंदिर गणना समिति के सदस्य रहते हुए बिना किसी स्वीकृति के पेटी को खोल दिया गया। अब इस पेटी में कितनी चोरी हुई है, कब ये चोरी हुई है, ये जांच का विषय है या फिर ये आरोप बेबुनियाद है, ये भी जांच का विषय है।
0: उधर बीकेटीसी अध्यक्ष ने आरोपी शख्स के सचिव होने से इनकार किया है और जांच के बाद दोषियों पर एक्शन का भरोसा दिया है
6: और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
0: मामले ने उत्तराखंड की सियासत को गर्म कर दिया है, जहां कांग्रेस अब बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है।
7: इस तरह की गतिविधियां और ये प्रकरण सामने आ रहे हैं, उससे न केवल सरकार और मंदिर समिति की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि करोड़ों जो हिंदू श्रद्धालु हैं, आस्थावान हैं, उनकी भावनाएं भी आहत हो रही है।
0: सवाल करोड़ों भक्तों की आस्था का है, उनके दान किए पैसों का है। राम मंदिर के बाद अब बद्रीनाथ से आ रही खबरों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: अब बात यूपी में 2027 को लेकर बीजेपी की तैयारी की, जिसे लेकर नितिन नवीन यूपी के दौरे पर है और अगले कुछ दिनों में वो यूपी में रहकर यूपी के चुनाव को लेकर मंथन करेंगे।
0: यूपी यूपी चुनाव की तैयारियों का मंथन करने जब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे तो खुद योगी आदित्यनाथ उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। साथ में बीजेपी के दिग्गज मंत्री और नेता भी थे।
8: लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। भगवान प्रभु श्री राम का भूमि हम कह सकते हैं, भोले बाबा काशी विश्वनाथ का नगरी, मथुरा की नगरी, भगवान की नगरी, उस नगरी को नमन करता हूं और अपने सीधे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करूंगा।
0: लखनऊ के दौरे पर नितिन नवीन की बैठकों का एक लंबा दौर चलेगा, जहां विधायक सांसदों के अलावा सीएम, डिप्टी सीएम और संघ के लोग भी शामिल होंगे।
9: उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। उत्तर प्रदेश का आम जनमानस आज मान रहा है, आज उत्तर प्रदेश का युवा चाह रहा है कि आदरणीय नितिन नवीन जी जिस ढंग से सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरे प्रदेश के युवाओं में, माताओं बहनों में, गरीबों में, आम जनता में भारी उत्साह है।
0: नितिन नवीन के दौरे पर अखिलेश के पीडीए के कार्ड का संदेश भी देखने को मिला। नितिन नवीन का स्वागत करने पहुंचे यादव समाज के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि यादव समाज को बीजेपी में ही सम्मान और भागीदारी मिली है।
10: यादव की जगह उत्तर प्रदेश के अंदर हो, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में है। 6 केंद्र में मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के बना रखे हैं। हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश में मंत्री, मुझे भाजपा पार्षद दल का उपनेता बनाया गया। हमारे तमाम पद ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण पद यादव के।
11: इस बार
10: अखिलेश जी का जो पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको हमारा समाज पूरी तरीके से जान चुका है।
0: यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे झटके और दो बार सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्पेंसी जैसे खतरों को लेकर नितिन नवीन का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आज तक ब्यूरो
4: बाद अब पंजाब के, जहां पर चुनाव से पहले कांग्रेस की टेंशन बढ़ती दिख रही है। चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में खींचतान अब खुलकर सामने आ रही है।
12: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर के बाहर मचे इस हंगामे ने एक बार फिर दिल्ली में कांग्रेस आला कमान की टेंशन बढ़ा दी है। चन्नी दिल्ली कूच की तैयारी में है, लेकिन सूत्रों की माने तो चन्नी की मांग से आला कमान सहमत नहीं है। पिछले दिनों बनी कांग्रेस ऑब्जर्वर पैनल ने पंजाब कांग्रेस प्रमुख के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी के नाम की सिफारिश की थी। पैनल की सिफारिशों के बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने राजा वडिंग को ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए रखा। ये रिपोर्ट पंजाब कांग्रेस नेताओं के साथ लंबी बातचीत के बाद तैयार की गई थी। जहां राजा वडिंग को लेकर नाराजगी थी, तो वहीं चन्नी को लेकर लोगों का समर्थन था। चन्नी को भरोसा था कि रिपोर्ट के बाद आला कमान पंजाब में नेतृत्व में बदलाव करेगा, लेकिन हाईकमान ने इस रिपोर्ट को नजरअंदाज किया। हालांकि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग किसी भी तक की खींचतान से इनकार कर रहे हैं।
13: चन्नी जी को कोई ऑथराइजेशन की जरूरत है? चन्नी जी जब चाहें, क्योंकि राहुल गांधी जी चन्नी साहब को प्यार करते हैं, कांग्रेस पार्टी उनको प्यार करती है। देखो, मेरी बात है कि चन्नी साहब सीएम फेस बन जाएं, कोई और बन जाएं, मैं तो इस रेस में नहीं हूं।
12: राहुल गांधी 7 जुलाई को विदेश से लौट आएंगे, जिसके बाद चन्नी राहुल से मुलाकात करेंगे। वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल भी इसको लेकर हरकत में आ गए हैं, जो कुछ दिन चंडीगढ़ में बिता सकते हैं, जहां चन्नी और राजा वडिंग के साथ उनकी बातचीत होगी। इस बीच बीजेपी के चन्नी को दिए गए ऑफर ने पंजाब की सियासत को नई हवा दे दी है।
14: ये कांग्रेस का एक कल्चर है, इसमें लोटस का कोई रोल नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब चट्टान की तरह खड़ी है, वो लोगों के दिल में बसी है। 22 सूबों में हमारी सरकार चलती है, सब जगह तरक्की हो रही है।
15: हाँ भाई, खुश हो लो जरा, थोड़े 2-4 दिन के लिए दिल बहलाने को यही ख्याल अच्छा है गालिब।
16: सो
15: मेरी बेनती है, इन बीजेपी वालों नु बावा भी खुलियां रख लें, भावे लता भी खुलियां रख लें।
12: पिछले चुनाव से पहले सिद्धू और अमरिंदर की खींचतान कांग्रेस को पंजाब में महंगी पड़ी थी। ऐसे में इस बार चुनाव से पहले चन्नी की नाराजगी कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रही है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ असीम बस्सी, चंडीगढ़ आज तक।
4: देश के कई हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन बारिश की पहली किश्त ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। आपको अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन बात सबसे पहले मुंबई की करेंगे, जहां पर चार दिनों से लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद मुंबई के कई इलाके पानी में डूबे दिख रहे हैं।

0: सड़कों पर सैलाब है, सबवे लहरों के बीच डूब चुका है। एक बार फिर भारी बारिश के चलते मुंबई में हाल बेहद बुरा है। चाहे अंधेरी हो या नाला सोपारा, वसई या विरार, हर ओर मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा है। लगातार हो रही बारिश ने मुंबई के लोगों का जीवन दुभर कर दिया है।
1: गया है आमची चांदी वाली विधानसभा, नाले सफाई झाली नाही, महापौर म्हणतात नाले सफाई झाली, उपमहापौर म्हणतात नाले सफाई झाली, पण नाले सफाई कुठे झाली? कालूराम कुठे गेला? नाल्याचा कॉन्ट्रॅक्टर कुठे गेला? कालूराम हे बघा, वॉटर किंगडम आहे, वॉटर किंगडम चांदीवली विधानसभा।
0: एक एक तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर मॉनसून की बारिश के बीच मुंबई किस तरह की मुसीबत झेल रही है। गाड़ियां पानी के बीच फंसी हुई हैं, कहीं आना जाना मुश्किल है, बारिश का दौर थम नहीं रहा है, सड़कों पर बढ़ता जलस्तर लोगों का संकट बढ़ा रहा है। सबसे पहले भिवंडी इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। तेज बारिश से पूरा बाजार तालाब बन गया है, दुकानों में पानी भर गया है, गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, घुटनों तक पानी में लोग आ जा रहे हैं। किसी तरह जद्दोजहद कर अपनी दुकानों का सामान बचाने की कोशिश में लोग जुटे हुए हैं। अब नाला सोपारा हाईवे का हाल देखिए। सड़कों पर भरे पानी के चलते कई गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, लोगों को कहीं आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। नाला सोपारा में बढ़ता जलस्तर तेजी से रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ रहा है, जो आने वाले दिनों में मुंबई के लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकता है, क्योंकि नाला सोपारा और उसके आसपास के सभी मार्केट पूरी तरह से पानी में घिरे हुए हैं। गाड़ियों से भी गुजर रहे लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। मुंबई में बीते चार दिनों से बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाके पानी में डूब गए हैं। इस बीच पानी भरने के बाद अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। अब विरार इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। दोनों ओर की सड़क पर सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है, सड़कों पर गाड़ियां फंसी हुई हैं, दूर तक लंबी कतार नजर आ रही है। बांद्रा इलाके में सड़कें लबालब हैं, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। बारिश के बीच मुसीबत का दायरा बढ़ता जा रहा है।
2: मुंबई में सुबह से लगातार बारिश हो रही है और यह बारिश पिछले तीन से चार दिनों से मुंबई में हो रही है। आज भी मौसम विभाग द्वारा मुंबई और मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, रायगढ़, थाने, पालघर, नवी मुंबई, इनके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया है। आप देख सकते हैं हम इस वक्त मुंबई के घाटकोपर इलाके में है, जहां पर 1.5 से 2 फीट तक का पानी जो है वो मुंबई की सड़कों पर जमा हो गया है और सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील होती हुई यहाँ नजर आ रही हैं। लोग कई समय से यहाँ पर बस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो बस है वो नहीं आ रही है। गाड़ियों की आवाजाही थोड़ी यहाँ धीमी होती हुई नजर आ रही है।
0: वसई इलाके का हाल तो और भी ज्यादा बुरा है। पानी इतना ज्यादा भर गया है कि मानो पूरा इलाका टापू बन गया है। इस बीच बिजली न होने से करीब 450 परिवारों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।
3: वसई विरार में लगातार चार दिन से जोरदार बारिश हो रही है। कई निचले इलाकों में पानी भर चुका है। फिलहाल इस वक्त मैं खड़ा हूँ वसई ईस्ट के मिठागढ़ की बस्ती है। यहाँ हम देखेंगे तो ये जो रोड है जहाँ भरा है, इसके नीचे रास्ता है और ये रास्ते से अंदर हम 1.5 से 1.5 किलोमीटर जाए तो ये नमक की खेती करने वालों की बस्ती है। कुल 120 फैमिलीज वहाँ रहती है, 300 से 400 लोग है। हर साल इसी तरह ये रोड जो है पानी के नीचे चला जाता है। ये इन्होंने जानकारी दी जो है कि इनके घर में आसपास कुल कमर के ऊपर तक का पानी भर चुका है। बिजली भी कल से चली गई है और ये वस्ती के आसपास भी ये जो प्लेन इलाका है वहाँ भी ये भी पूरी तरह से भर चुका है। प्रशासन की ओर से इन्हें कोई अभी तक मदद पहुंची नहीं है। फिलहाल इन्हें खाने पीने की चीजों की सख्त जरूरत है, क्योंकि लाइट कल से है नहीं और यही बारिश अगर लगातार चालू रही तो इनके हाल बेहाल हो सकते
0: हैं। इस बीच बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन की ओर से अब तक लोगों तक कोई मदद नहीं पहुंची है, जिससे लोगों पर आई आफत और ज्यादा बढ़ गई है।
4: हालत खराब है कल से लोगों से, क्योंकि लाइट भी नहीं है, कल से लाइट भी नहीं है और पानी भी जैसे बढ़ते ही जा रहा है और ऊपर से बारिश भी और ज्यादा ही होते जा रहा है, जैसे कि अभी एक दो घंटा और गिरेगा तो घर में भी घुस सकता है बारिश पानी।
3: लाइट की क्या समस्या है उधर?
4: लाइट तो कल से ही नहीं है, कल से दोपहर से गई है, अभी तक आई ही नहीं है।
3: अभी अंदर कितना पानी है, कितने फैमिलीज अंदर रहती है?
4: फैमिली रहती है 450 फैमिली रहती है और कंबर के ऊपर पानी है।
3: कि कुछ सुबह से कुछ प्रशासन की हेल्प हुई है?
4: कुछ भी नहीं, किसी ने हेल्प करने के लिए फोन भी नहीं किया, कुछ हेल्प आया ही नहीं।
0: बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा, जगह जगह भारी जल भराव है और लोग बेहद परेशान। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच मौसम विभाग ने भी शहर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर प्रशासन ने लोगों को बेहद जरूरी यात्रा करने की सलाह दी है ताकि मौसम की मार किसी की जिंदगी पर संकट न बने। मुंबई में हर साल की यही कहानी है, बारिश हुई और लोगों की जिंदगी आफत के बीच घिर गई। एक बार फिर ऐसी ही तस्वीरें शहर की पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। सैलाब के बीच जिंदगी संकट में घिरी है। मुंबई से प्रवीण नालावड़े के साथ दीपेश त्रिपाठी आज तक।
5: अब बात ईरान के सर्वोच्च नेता खामिनेई के अंतिम संस्कार की, जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर की हस्तियां पहुंच रहे हैं। आपको आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं।
6: ईरान के सर्वोच्च नेता की अंतिम विदाई में लाखों लोग शामिल होने पहुंच रहे हैं, जहां अली खामिनेई की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है।
7: इस समय मैं मौजूद हूं ग्रैंड मुसल्ला में, और मैं जहां मौजूद हूं उसके ठीक पीछे अगर आप देखें कुछ ही दूरी पर आपको वो कॉफिन नजर आ जाएगा जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामिनेई के शव को, उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। दरअसल अगर आप देखें उनके साथ में चार कॉफिन आपको नजर आ रहे होंगे। चारों कॉफिन में सबसे ऊपर का जो कॉफिन है वो है सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामिनेई का। उसके नीचे अगर आप देखें उनके ग्रैंडसन यानी उनके पोते भी जो उसमें मारे गए थे, छोटा कॉफिन, उसके बाद उनके दामाद और उनकी जो कहते हैं कि मुश्तबा खामिनेई की वाइफ का भी कॉफिन है, उनकी बेटी का कॉफिन है। और अगर आप देखें कि उनके साथ साथ चार कॉफिन से परिवार के अलग अलग लोगों के बताए जाते हैं कि उनके ये कॉफिन है। हालांकि कुछ लोग और मारे जाने का भी दावा किया गया था लेकिन उसकी पुष्टि अब तक ईरान में नहीं की गई है।
6: दुनिया भर से राजनेता, अधिकारी और धर्मगुरु तेहरान पहुंच चुके हैं और अंतिम यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। अमेरिका और इसराइल से कोई नहीं आया, वहीं लोगों के अंदर गम के साथ गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति इस पर तंज कसते भी नजर आए।
8: Two world wars, the Cold War, left America's enemies in the depths of history. We beat Venezuela in one day, and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice.
6: सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री की अंतिम यात्रा में मौजूदगी ने हर किसी को हैरान कर दिया। ओमान और कतर विदेशी प्रतिनिधियों की सूची में शामिल थे लेकिन सऊदी अरब के किसी भी प्रतिनिधि का नाम नदारद था। उधर सुरक्षा कारणों से नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामिनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो रहे हैं।
9: Doesn't allow him to come. They said it's very dangerous and we cannot provide security for him. And I think he will not come out. Do you know they have very, very advanced technology and they can recognize him and they can follow him. Where is he? And it's very dangerous for him. So because of that, he will not come out.
6: इस मौके पर 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों और धर्म गुरुओं को बुलाकर ईरान दुनिया भर को कई संदेश देने की कोशिश भी कर रहा है। अमेरिका और इसराइल के साथ युद्ध के बावजूद वो ये साबित करना चाहता है कि कूटनीतिक स्तर पर अभी वो उतना ही मजबूत है जितना 28 फरवरी से पहले था। तेहरान से गीता मोहन और सुमित चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।
5: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: चढ़ावा चोरी मामले में अब अयोध्या पुलिस जेल में बंद पांच आरोपियों से करेगी आज पूछताछ। टिन्नू यादव से भी सवाल, ममता का सरकार पर तंज, कहा राम का नाम किया बदनाम। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहले यूपी के दौरे पर नितिन नवीन का चुनावी मंत्र, पदाधिकारियों से कहा विपक्ष की नकारात्मक राजनीति के जाल में न फंसे, राज्य के विकास पर करें फोकस। पीएम मोदी ने विपक्ष पर युद्धकाल में देश को डराने का लगाया आरोप, राजस्थान के बालोतरा में बोले संकट में राष्ट्रहित को आगे रखकर फैसला, देश पर नहीं डाला बोझ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर आतंकवादियों से मुठभेड़, मारे गए दोनों आतंकवादी, कैमरे में कैद दोनों दहशतगर्द। मूसलाधार बारिश से पाने पाने मुंबई और बढ़ सकती है मुसीबतें, आज भारी बरसात का रेड अलर्ट, बीएमसी के लोगों से अपील, जरूरी हो तभी निकलें बाहर। उत्तर प्रदेश राजनीति का वो रण क्षेत्र जहां जीत हार देश की तकदीर भी बदलती रही है। इस बार 2027 का यूपी विधानसभा का चुनाव काफी अहम है, चुनाव अगले साल होने हैं लेकिन सियासत अभी से शुरू है।
1: राजनीति में कई बार संदेश भाषणों से नहीं तस्वीरों से लिखा जाता है। स्वागत केवल सम्मान नहीं होता, वो शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन भी होता है। लखनऊ की सड़कों पर आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखी जब नितिन नवीन पहली बार बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद लखनऊ पहुंचे। तो सवाल ये कि क्या नितिन नवीन का दौरा बीजेपी के 2027 चुनाव अभियान का औपचारिक आगाज है? क्या बीजेपी का संगठन विपक्ष के सामाजिक समीकरणों पर फिर भारी पड़ेगा या इस बार मुकाबला बदल चुका है? क्या यूपी में 2027 की लड़ाई सत्ता बचाने की होगी या सत्ता बदलने की?
2: लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूँ, भगवान प्रभु श्री राम का भूमि, हम कह सकते हैं भोले बाबा काशी विश्वनाथ का नगरी, मथुरा की नगरी, भगवान की नगरी, उस नगरी को नमन करता हूँ और अपने सुधे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करूँगा।
1: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का लखनऊ एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए सीएम योगी खुद मौजूद थे, साथ में बीजेपी के दिग्गज मंत्री और नेता थे।
3: उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, उत्तर प्रदेश का आम जनमानस आज मान रहा है, आज उत्तर प्रदेश का युवा चाह रहा है कि आदरणीय नितिन नवीन जी जिस ढंग से सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरे प्रदेश के युवाओं में, माताओं बहनों में, गरीबों में, आम जनता में भारी उत्साह है।
1: यूपी विधानसभा चुनाव अगले साल के शुरुआती महीनों में होना है लेकिन बीजेपी ने अपनी राजनीतिक घड़ी तेज कर दी है। लखनऊ दौरे पर नितिन नवीन का एजेंडा साफ है, 2024 की समीक्षा, सोशल इंजीनियरिंग, सरकार संगठन में तालमेल, वोटर आउटरीच, 2027 की जीत का ब्लूप्रिंट। बीजेपी अध्यक्ष पद संभालने के बाद नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी ने बंगाल में ऐतिहासिक रूप से सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की, जबकि असम और पुडुचेरी में अपनी सत्ता बरकरार रखी। केरल में भी पार्टी का वोट बैंक तेजी से बढ़ा है। अब इसी विनिंग फॉर्मूले के साथ वो यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने की रणनीति बना रहे हैं लेकिन अखिलेश यादव लगातार पीडीए के फॉर्मूले को जीत का मंत्र बताते रहे हैं।
4: हम सबसे अपील करेंगे, जो हम लोगों ने एक आवाज दी है कि पीडीए से सब जुड़ जाएं, मुझे उम्मीद है पीडीए की लड़ाई मजबूत होगी, पीडीए एनडीए को हराएगा और जब हम लोग टिकट बांट रहे हैं, सीटें बांट रहे हैं, तब बीजेपी अपनी टिकट काटने की सोच रही है। सोचो, बीजेपी टिकट काटना चाहती है, हम सीटें बांट करके जनता में पहुंचे।
5: नफरत के सहारे ये सत्ता में आना चाहते हैं लेकिन देश जाग गया है, पीडीए जाग गया है, इस बार मुकाबला पीडीए करेगा एनडीए का।
1: हालांकि जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं उसमें से नितिन नवीन के स्वागत करने पहुंचे यादव समाज के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि यादव समाज को बीजेपी में ही सम्मान और भागीदारी मिली है।
6: यादव की जगह उत्तर प्रदेश के अंदर हो, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में है, 6 केंद्र में मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के बना रखे हैं, हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश में मंत्री, मुझे भाजपा पार्षद दल का उपनेता बनाया गया, हमारे तमाम पद ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण पद यादव के।
7: इस बार
6: अखिलेश जी का जो पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको हमारा समाज पूरी तरीके से जान चुका है।
1: यूपी की राजनीति में हर चुनाव सामाजिक समीकरणों और संगठनात्मक ताकत की नई परीक्षा बनकर आता है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के बाद बीजेपी के लिए अब सबसे बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, जबकि विपक्ष अपनी जीत का दावा ठोक रहा है। ऐसे में लखनऊ में जो बिसात नितिन नवीन बिछाएंगे, उसकी गूंज 2027 विधानसभा चुनाव में जरूर सुनाई देगी। आज तक ब्यूरो।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहे हैं, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब जांच में सामने आ रहा है कि पूरा खेल एक गैंग के तौर पर चल रहा था। बाकायदा बैठक होती थी, पैसों का हेर फेर होता था, एक दूसरे को बांटे जाते थे।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अयोध्या पुलिस ने पूछताछ के दौरान अविनाश शुक्ला को पिछले 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाई। जैसे ही उसने खुद को चढ़ावे से पैसे निकालते देखा, वो टूट गया और लगातार चोरी करने की बात स्वीकार कर ली। पूछताछ में अविनाश ने बताया कि चोरी की रकम से एक ब्रेजा कार खरीदी थी। ये कार उसने अपने भाई के नाम खरीदी, इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ कि कार चढ़ावा चोरी के पैसे से खरीदी गई है। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आते ही अविनाश ने कार को तुरंत प्रतापगढ़ स्थित घर भेज दिया। इस मामले में अविनाश के भाई अभिषेक शुक्ला से भी पूछताछ की गई है।
7: वहीं अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर एक कार भी बरामद कर ली गई है। ये कार ये पीछे खड़ी है, ये कार अविनाश शुक्ला ने चढ़ावा चोरी की रकम से अपने भाई अभिषेक के नाम पर खरीदी थी।
1: जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। चढ़ावा चोरी गैंग के सभी आरोपी एक दूसरे की गतिविधियों से पूरी तरह वाकिफ थे। कौन कब कैसे चोरी कर रहा है, इसकी जानकारी सभी को रहती थी। चढ़ावा चोरी के बाद सभी आरोपी नियमित रूप से बैठक करते थे। उस बैठक में चोरी का माल बांटने और आगे के प्लान पर चर्चा होती थी। इन बैठकों में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा समेत 6 आरोपी शामिल होते थे। जांच में ये भी सामने आया है कि बाद में टिन्नू यादव का भतीजा भी इन बैठकों में शामिल होने लगा था। मई के आखिरी सप्ताह में मामला खुलने से ठीक पहले भी आरोपियों की एक बैठक हुई थी। अब पुलिस चोरी की रकम, उससे खरीदी गई संपत्तियों और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। कल करीब 13 घंटे की पूछताछ के बाद अविनाश शुक्ला को अयोध्या जेल भेज दिया गया है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
0: यूपी चुनाव से पहले हुए राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस खुलासे को विपक्ष छोड़ना नहीं चाहता और अब समाजवादी पार्टी ने गाना जारी किया है, जिसको लेकर बीजेपी पर तंज कसा गया है।

समाजवादी पार्टी की ओर से जारी किया ये नया वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा अगले चुनाव में विपक्ष के लिए बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार होगा। ये वीडियो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में साझा किया है, जिसमें भगवान राम को अयोध्या छोड़कर वापस वनवास जाते दिखाया जा रहा है।

0: समाजवादी पार्टी के इस वीडियो पर सरकार के नेता अखिलेश से सवाल पूछ रहे हैं।
1: जो गाना बजा रहे हैं ना कि राम बन गए कब आएंगे, तो जब अखिलेश यादव जी दर्शन करने जाएंगे तब राम जी आ जाएंगे।
0: राम मंदिर को लेकर पूरे विपक्ष का सुर एक है।
2: राम का नाम आपने बदनाम कर दिया, हिंदुत्व का नाम पे खेला और हिंदूइज्म को आपने फिनिश किया।
3: ये चंदा चोरी बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं जानते थे इन लोगों को? इन्हीं के तो लोग हैं जो बिठाए गए हैं ट्रस्ट में।
0: इस सियासत के बीच एसआईटी सूत्रों की माने तो अयोध्या में प्रतिदिन करीब 6 से 8 लाख रुपए की चोरी हो रही थी। एसआईटी ने एसबीआई बैंक के मैनेजर समेत 10 बैंक कर्मियों से पूछताछ की है। पूछताछ के बाद बैंक के लेन देन से जुड़े दस्तावेज और हिसाब किताब अपने कब्जे में लेकर उनकी जांच की जा रही है। अयोध्या में चोरी का मामला सामने आने से पहले ट्रस्ट के एसबीआई और पीएनबी बैंक खाते में प्रतिदिन करीब 16 से 18 लाख रुपए जमा हो रहे थे। चोरी का खुलासा होने के बाद अब प्रतिदिन जमा होने वाली राशि बढ़कर 24 से 26 लाख रुपए तक पहुँच गयी है। लेकिन सवाल वही, क्या ये जाँच बड़े पदाधिकारियों तक पहुंचेगी? पूरी सियासत अब इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। आज तक ब्यूरो।
4: राम मंदिर पर विवाद अभी बढ़ ही रहा था कि बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ाव और चोरी के आरोप लग रहे हैं, जिसे लेकर अब जांच कमेटी बना दी गई है।
0: सवाल भक्तों की आस्था का है, उनके दान का है, जिसमें गड़बड़ी का विवाद अब बद्रीनाथ धाम तक पहुंच गया है।
5: सबसे पहले ये मामला उजागर हुआ जब भैरव सेना संगठन ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ में तैनात बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष निजी सचिव ने प्रसाद में चोरी की है और जो चढ़ावा आता है उसमें सेंध मारी है। 2 तारीख का यह मामला बताया जा रहा है। करीब 8:30 से 9:30 के बीच में ये चोरी की घटना हुई, ऐसे आरोप लग रहे हैं।
0: दावा किया जा रहा है कि बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के सचिव ने पेटी खोली और दान के पैसों में हेरा फेरी की। प्रशासन कह रहा है कि सीसीटीवी चेक किए गए हैं और ऐसा कोई मामला सामने नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर सीसीटीवी को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा?
5: 2 तारीख को सुबह 8:30 के आसपास इन्होंने मंदिर गणना समिति के सदस्य रहते हुए बिना किसी स्वीकृति के पेटी को खोल दिया गया। अब इस पेटी में कितनी चोरी हुई है, कब ये चोरी हुई है, ये जांच का विषय है या फिर ये आरोप बेबुनियाद है, ये भी जांच का विषय है।
0: उधर बीकेटीसी अध्यक्ष ने आरोपी शख्स के सचिव होने से इनकार किया है और जांच के बाद दोषियों पर एक्शन का भरोसा दिया है
6: और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
0: मामले ने उत्तराखंड की सियासत को गर्म कर दिया है, जहां कांग्रेस अब बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है।
7: इस तरह की गतिविधियां और ये प्रकरण सामने आ रहे हैं, उससे न केवल सरकार और मंदिर समिति की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि करोड़ों जो हिंदू श्रद्धालु हैं, आस्थावान हैं, उनकी भावनाएं भी आहत हो रही है।
0: सवाल करोड़ों भक्तों की आस्था का है, उनके दान किए पैसों का है। राम मंदिर के बाद अब बद्रीनाथ से आ रही खबरों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: अब बात यूपी में 2027 को लेकर बीजेपी की तैयारी की, जिसे लेकर नितिन नवीन यूपी के दौरे पर है और अगले कुछ दिनों में वो यूपी में रहकर यूपी के चुनाव को लेकर मंथन करेंगे।
0: यूपी चुनाव की तैयारियों का मंथन करने जब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे तो खुद योगी आदित्यनाथ उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। साथ में बीजेपी के दिग्गज मंत्री और नेता भी थे।
8: लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। भगवान प्रभु श्री राम का भूमि और हम कह सकते हैं भोले बाबा काशी विश्वनाथ का नगरी, मथुरा की नगरी, भगवान की नगरी, उस नगरी को नमन करता हूं और अपने सुधे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करूंगा।
0: लखनऊ के दौरे पर नितिन नवीन की बैठकों का एक लंबा दौर चलेगा, जहां विधायक सांसदों के अलावा सीएम, डिप्टी सीएम और संघ के लोग भी शामिल होंगे।
9: उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। उत्तर प्रदेश का आम जनमानस आज मान रहा है, आज उत्तर प्रदेश का युवा चाह रहा है कि आदरणीय नितिन नवीन जी जिस ढंग से सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरे प्रदेश के युवाओं में, माताओं बहनों में, गरीबों में, आम जनता में भारी उत्साह है।
0: नितिन नवीन के दौरे पर अखिलेश के पीडीए के कार्ड का संदेश भी देखने को मिला। नितिन नवीन का स्वागत करने पहुंचे यादव समाज के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि यादव समाज को बीजेपी में ही सम्मान और भागीदारी मिली है।
10: यादव की जगह उत्तर प्रदेश के अंदर हो, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में है। 6 केंद्र में मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के बना रखे हैं। हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश में मंत्री, मुझे भाजपा पार्षद दल का उपनेता बनाया गया। हमारे तमाम पद ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण पद यादव के।
11: इस बार
10: अखिलेश जी का जो पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको हमारा समाज पूरी तरीके से जान चुका है।
0: यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे झटके और दो बार सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्पेंसी जैसे खतरों को लेकर नितिन नवीन का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आज तक ब्यूरो
4: बाद अब पंजाब की, जहां पर चुनाव से पहले कांग्रेस की टेंशन बढ़ती दिख रही है। चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में खींचतान अब खुलकर सामने आ रही है।
12: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर के बाहर मचे इस हंगामे ने एक बार फिर दिल्ली में कांग्रेस आला कमान की टेंशन बढ़ा दी है। चन्नी दिल्ली कूच की तैयारी में है, लेकिन सूत्रों की माने तो चन्नी की मांग से आला कमान सहमत नहीं है। पिछले दिनों बनी कांग्रेस ऑब्जर्वर पैनल ने पंजाब कांग्रेस प्रमुख के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी के नाम की सिफारिश की थी। पैनल की सिफारिशों के बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने राजा वडिंग को ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए रखा। ये रिपोर्ट पंजाब कांग्रेस नेताओं के साथ लंबी बातचीत के बाद तैयार की गई थी। जहां राजा वडिंग को लेकर नाराजगी थी, तो वहीं चन्नी को लेकर लोगों का समर्थन था। चन्नी को भरोसा था कि रिपोर्ट के बाद आला कमान पंजाब में नेतृत्व में बदलाव करेगा, लेकिन हाईकमान ने इस रिपोर्ट को नजरअंदाज किया। हालांकि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग किसी भी तक की खींचतान से इनकार कर रहे हैं।
13: चन्नी जी को कोई ऑथराइजेशन की जरूरत है? चन्नी जी जब चाहें, क्योंकि राहुल गांधी जी चन्नी साहब को प्यार करते हैं, कांग्रेस पार्टी उनको प्यार करती है। देखो, मेरी बात है कि चन्नी साहब सीएम फेस बन जाएं, कोई और बन जाएं, मैं तो इस रेस में नहीं हूं।
12: राहुल गांधी 7 जुलाई को विदेश से लौट आएंगे, जिसके बाद चन्नी राहुल से मुलाकात करेंगे। वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल भी इसको लेकर हरकत में आ गए हैं, जो कुछ दिन चंडीगढ़ में बिता सकते हैं, जहां चन्नी और राजा वडिंग के साथ उनकी बातचीत होगी। इस बीच बीजेपी के चन्नी को दिए गए ऑफर ने पंजाब की सियासत को नई हवा दे दी है।
14: ये कांग्रेस का एक कल्चर है, इसमें लोटस का कोई रोल नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब चट्टान की तरह खड़ी है, वो लोगों के दिल में बसी है। 22 सूबों में हमारी सरकार चलती है, सब जगह तरक्की हो रही है।
15: हाँ भाई, खुश हो लो जरा थोड़े 2-4 दिन के लिए, दिल बहलाने को यही ख्याल अच्छा है गालिब।
16: सो
15: मेरी बेनती है इन बीजेपी वालों नु बावां भी खुलियां रख लें ते भावे लता भी खुलियां रख लें।
12: पिछले चुनाव से पहले सिद्धू और अमरिंदर की खींचतान कांग्रेस को पंजाब में महंगी पड़ी थी। ऐसे में इस बार चुनाव से पहले चन्नी की नाराजगी कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रही है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ असीम बस्सी, चंडीगढ़ आज तक।
4: देश के कई हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन बारिश की पहली किश्त ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। आपको अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन बात सबसे पहले मुंबई की करेंगे, जहां पर चार दिनों से लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद मुंबई के कई इलाके पानी में डूबे दिख रहे हैं।

0: सड़कों पर सैलाब है, सबवे लहरों के बीच डूब चुका है। एक बार फिर भारी बारिश के चलते मुंबई में हाल बेहद बुरा है। चाहे अंधेरी हो या नाला सोपारा, वसई या विरार, हर ओर मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा है। लगातार हो रही बारिश ने मुंबई के लोगों का जीवन दुभर कर दिया है।
1: चांदी वाली विधानसभा नाले सफाई झाली नाही, महापौर म्हणतात नाले सफाई झाली, उपमहापौर म्हणतात नाले सफाई झाली, पण नाले सफाई कुठे झाली? कालूराम कुठे गेला? नाल्याचा कॉन्ट्रॅक्टर कुठे गेला? कालूराम हे बघा,

0: बारिश के बीच मुंबई किस तरह की मुसीबत झेल रही है। गाड़ियां पानी के बीच फंसी हुई हैं, कहीं आना जाना मुश्किल है। बारिश का दौर थम नहीं रहा है। सड़कों पर बढ़ता जलस्तर लोगों का संकट बढ़ा रहा है। सबसे पहले भिवंडी इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। तेज बारिश से पूरा बाजार तालाब बन गया है। दुकानों में पानी भर गया है, गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, घुटनों तक पानी में लोग आ जा रहे हैं। किसी तरह जद्दोजहद कर अपनी दुकानों का सामान बचाने की कोशिश में लोग जुटे हुए हैं। अब नाला सोपारा हाईवे का हाल देखिए। सड़कों पर भरे पानी के चलते कई गाड़ियां बंद पड़ गई हैं। लोगों को कहीं आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। नाला सोपारा में बढ़ता जलस्तर तेजी से रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ रहा है, जो आने वाले दिनों में मुंबई के लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकता है, क्योंकि नाला सोपारा और उसके आसपास के सभी मार्केट पूरी तरह से पानी में घिरे हुए हैं। गाड़ियों से भी गुजर रहे लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। मुंबई में बीते चार दिनों से बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाके पानी में डूब गए हैं। इस बीच पानी भरने के बाद अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। अब विरार इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। दोनों ओर की सड़क पर सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। सड़कों पर गाड़ियां फंसी हुई हैं, दूर तक लंबी कतार नजर आ रही है। बांद्रा इलाके में सड़कें लबालब हैं, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। बारिश के बीच मुसीबत का दायरा बढ़ता जा रहा है।
1: मुंबई में सुबह से लगातार बारिश हो रही है और यह बारिश पिछले तीन से चार दिनों से मुंबई में हो रही है। आज भी मौसम विभाग द्वारा मुंबई और मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, रायगढ़, थाने, पालघर, नवी मुंबई, इनके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया है। आप देख सकते हैं, हम इस वक्त मुंबई के घाटकोपर इलाके में है, जहां पर 1.5 से 2 फीट तक का पानी जो है वो मुंबई की सड़कों पर जमा हो गया है और सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील होती हुई यहाँ नजर आ रही हैं। लोग कई समय से यहाँ पर बस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो बस है वो नहीं आ रही है। गाड़ियों की आवाजाही थोड़ी यहाँ धीमी होती हुई नजर आ रही है।
0: वसई इलाके का हाल तो और भी ज्यादा बुरा है। पानी इतना ज्यादा भर गया है कि मानो पूरा इलाका टापू बन गया है। इस बीच बिजली न होने से करीब 450 परिवारों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।
2: वसई विरार में लगातार चार दिन से जोरदार बारिश हो रही है। कई निचले इलाकों में पानी भर चुका है। फिलहाल इस वक्त मैं खड़ा हूँ वसई ईस्ट के मिठागर की बस्ती है। यहाँ हम देखेंगे तो ये जो रोड है जहाँ भरा है, इसके नीचे रास्ता है और ये रास्ते से अंदर हम 1.5 से 1.5 किलोमीटर जाए तो ये नमक की खेती करने वालों की बस्ती है। कुल 120 फैमिलीज वहाँ रहती है, 300 से 400 लोग है। हर साल इसी तरह ये रोड जो है पानी के नीचे चला जाता है। ये इन्होंने जानकारी दी जो है कि इनके घर में आसपास कुल कमर के ऊपर तक का पानी भर चुका है। बिजली भी कल से चली गई है और ये वस्ती के आसपास भी ये जो प्लेन इलाका है वहाँ भी ये भी पूरी तरह से भर चुका है। प्रशासन की ओर से इन्हें कोई अभी तक मदद पहुंची नहीं है। फिलहाल इन्हें खाने पीने की चीजों की सख्त जरूरत है, क्योंकि लाइट कल से है नहीं और यही बारिश अगर लगातार चालू रही तो इनके हाल बेहाल हो सकते
0: हैं। इस बीच बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन की ओर से अब तक लोगों तक कोई मदद नहीं पहुंची है, जिससे लोगों पर आई आफत और ज्यादा बढ़ गई है।
3: हालत खराब है कल से लोगों से, क्योंकि लाइट भी नहीं है, कल से लाइट भी नहीं है और पानी भी जैसे बढ़ते ही जा रहा है और ऊपर से बारिश भी और ज्यादा ही होते जा रहा है। जैसे कि अभी 1-2 घंटा और गिरेगा तो घर में भी घुस सकता है बारिश पानी।
2: लाइट की क्या समस्या है उधर?
3: लाइट तो कल से ही नहीं है, कल से दोपहर से गई है, अभी तक आई ही नहीं है।
2: अभी अंदर कितना पानी है, कितने फैमिलीज अंदर रहती है?
3: फैमिली रहती है 450 फैमिली रहती है और कंबर के ऊपर पानी है।
2: कि कुछ सुबह से कुछ प्रशासन की हेल्प हुई है?
3: कुछ भी नहीं, किसी ने हेल्प करने के लिए फोन भी नहीं किया, कुछ हेल्प आया ही नहीं।
0: बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा। जगह जगह भारी जल भराव है और लोग बेहद परेशान। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच मौसम विभाग ने भी शहर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर प्रशासन ने लोगों को बेहद जरूरी यात्रा करने की सलाह

0: होती है ताकि मौसम की मार किसी की जिंदगी पर संकट न बने। मुंबई में हर साल की यही कहानी है, बारिश हुई और लोगों की जिंदगी आफत के बीच घिर गई। एक बार फिर ऐसी ही तस्वीरें शहर की पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। सैलाब के बीच जिंदगी संकट में घिरी है।
1: मुंबई से प्रवीण नालावड़े के साथ दीपेश त्रिपाठी आज तक।
2: अब बात ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के अंतिम संस्कार की, जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर की हस्तियां पहुंच रहे हैं। आपको आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता की अंतिम विदाई में लाखों लोग शामिल होने पहुंच रहे हैं, जहां अली खामेनेई की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है।
4: इस समय मैं मौजूद हूं ग्रैंड मुसल्ला में, और मैं जहां मौजूद हूं उसके ठीक पीछे अगर आप देखें उसी दूरी पर आपको वो कॉफिन नजर आ जाएगा जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के शव को, उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। दरअसल अगर आप देखें उनके साथ में चार कॉफिन आपको नजर आ रहे होंगे। चारों कॉफिन में सबसे ऊपर का जो कॉफिन है वो है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का। उसके नीचे अगर आप देखें उनके ग्रैंडसन यानी उनके पोते भी जो उसमें मारे गए थे, छोटा कॉफिन, उसके बाद उनके दामाद और उनकी जो कहते हैं कि मुश्तबा खामेनेई की वाइफ का भी कॉफिन है, उनकी बेटी का कॉफिन है। और अगर आप देखें कि उनके साथ साथ चार कॉफिन से परिवार के अलग अलग लोगों के बताए जाते हैं कि उनके ये कॉफिन है। हालांकि कुछ लोग और मारे जाने का भी दावा किया गया था, लेकिन उसकी पुष्टि अब तक ईरान में नहीं की गई है।
3: दुनिया भर से राजनेता, अधिकारी और धर्म गुरु तेहरान पहुंच चुके हैं और अंतिम यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। अमेरिका और इसराइल से कोई नहीं आया। वहीं लोगों के अंदर गम के साथ गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति इस पर तंज कसते भी नजर आए।
5: Two world wars, the Cold War, left America's enemies in the depths of history. We beat Venezuela in one day, and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice.
3: सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री की अंतिम यात्रा में मौजूदगी ने हर किसी को हैरान कर दिया। ओमान और कतर विदेशी प्रतिनिधियों की सूची में शामिल थे, लेकिन सऊदी अरब के किसी भी प्रतिनिधि का नाम नदारद था। उधर सुरक्षा कारणों से नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो रहे हैं।
6: Doesn't allow him to come. They said it's very dangerous and we cannot provide security for him. And I think he will not come out. Do you know they have very, very advanced technology and they can recognize him and they can follow him. Where is he? And it's very dangerous for him. So because of that, he will not come out.
3: इस मौके पर 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों और धर्म गुरुओं को बुलाकर ईरान दुनिया भर को कई संदेश देने की कोशिश भी कर रहा है। अमेरिका और इसराइल के साथ युद्ध के बावजूद वो ये साबित करना चाहता है कि कूटनीतिक स्तर पर अभी वो उतना ही मजबूत है जितना 28 फरवरी से पहले था। तेहरान से गीता मोहन और सुमित चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।
2: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: चढ़ावा चोरी मामले में अब अयोध्या पुलिस जेल में बंद पांच आरोपियों से करेगी आज पूछताछ। तेनू यादव से भी सवाल, ममता का सरकार पर तंज, कहा राम का नाम किया बदनाम। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहले यूपी के दौरे पर नितिन नवीन का चुनावी मंत्र, पदाधिकारियों से कहा विपक्ष की नकारात्मक राजनीति के जाल में न फंसे, राज्य के विकास पर करें फोकस। पीएम मोदी ने विपक्ष पर युद्धकाल में देश को डराने का लगाया आरोप, राजस्थान के बालोतरा में बोले संकट में राष्ट्रहित को आगे रखकर फैसला, देश पर नहीं डाला बोझ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर आतंकवादियों से मुठभेड़, मारे गए दोनों आतंकवादी, कैमरे में कैद दोनों दहशतगर्द। मूसलाधार बारिश से पानी पाने, मुंबई और बढ़ सकती है मुसीबतें, आज भारी बरसात का रेड अलर्ट, बीएमसी के लोगों से अपील, जरूरी हो तभी निकलें बाहर। उत्तर प्रदेश राजनीति का वो रणक्षेत्र जहां जीत हार देश की तकदीर भी बदलती रही है। इस बार 2027 का यूपी विधानसभा का चुनाव काफी अहम है, चुनाव अगले साल होने हैं लेकिन सियासत अभी से शुरू है।
1: राजनीति में कई बार संदेश भाषणों से नहीं तस्वीरों से लिखा जाता है। स्वागत केवल सम्मान नहीं होता, वो शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन भी होता है। लखनऊ की सड़कों पर आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखी जब नितिन नवीन पहली बार बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद लखनऊ पहुंचे। तो सवाल यह कि क्या नितिन नवीन का दौरा बीजेपी के 2027 चुनाव अभियान का औपचारिक आगाज है? क्या बीजेपी का संगठन विपक्ष के सामाजिक समीकरणों पर फिर भारी पड़ेगा या इस बार मुकाबला बदल चुका है? क्या यूपी में 2027 की लड़ाई सत्ता बचाने की होगी या सत्ता बदलने की?
2: लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं, भगवान प्रभु श्री राम का भूमि, और हम कह सकते हैं भोले बाबा काशी विश्वनाथ का नगरी, मथुरा की नगरी, भगवान की नगरी, उस नगरी को नमन करता हूं और अपने सुधे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करूंगा।
1: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का लखनऊ एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए सीएम योगी खुद मौजूद थे, साथ में बीजेपी के दिग्गज मंत्री और नेता थे।
3: उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, उत्तर प्रदेश का आम जनमानस आज मान रहा है, आज उत्तर प्रदेश का युवा चाह रहा है कि आदरणीय नितिन नवीन जी जिस ढंग से सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरे प्रदेश के युवाओं में, माताओं बहनों में, गरीबों में, आम जनता में भारी उत्साह है।
1: यूपी विधानसभा चुनाव अगले साल के शुरुआती महीनों में होना है लेकिन बीजेपी ने अपनी राजनीतिक घड़ी तेज कर दी है। लखनऊ दौरे पर नितिन नवीन का एजेंडा साफ है, 2024 की समीक्षा, सोशल इंजीनियरिंग, सरकार संगठन में तालमेल, वोटर आउटरीच, 2027 की जीत का ब्लूप्रिंट। बीजेपी अध्यक्ष पद संभालने के बाद नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी ने बंगाल में ऐतिहासिक रूप से सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की, जबकि असम और पुडुचेरी में अपनी सत्ता बरकरार रखी। केरल में भी पार्टी का वोट बैंक तेजी से बढ़ा है। अब इसी विनिंग फॉर्मूले के साथ वो यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने की रणनीति बना रहे हैं लेकिन अखिलेश यादव लगातार पीडीए के फॉर्मूले को जीत का मंत्र बताते रहे हैं।
4: हम सबसे अपील करेंगे, जो हम लोगों ने एक आवाज दी है कि पीडीए से सब जुड़ जाएं, मुझे उम्मीद है पीडीए की लड़ाई मजबूत होगी, पीडीए एनडीए को हराएगा और जब हम लोग टिकट बांट रहे हैं, सीटें बांट रहे हैं, तब बीजेपी अपनी टिकट काटने की सोच रही है। सोचो, बीजेपी टिकट काटना चाहती है, हम सीटें बांट करके जनता में पहुंचे।
5: नफरत के सहारे ये सत्ता में आना चाहते हैं लेकिन देश जाग गया है, पीडीए जाग गया है, इस बार मुकाबला पीडीए करेगा एनडीए का।
1: हालांकि जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं उसमें से नितिन नवीन के स्वागत करने पहुंचे यादव समाज के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि यादव समाज को बीजेपी में ही सम्मान और भागीदारी मिली है।
6: यादव की जगह उत्तर प्रदेश के अंदर हो, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में है, 6 केंद्र में मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के बना रखे हैं, हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश में मंत्री, मुझे भाजपा पार्षद दल का उपनेता बनाया गया, हमारे तमाम पद ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण पद यादव के।
7: इस बार
6: अखिलेश जी का जो पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको हमारा समाज पूरी तरीके से जान चुका है।
1: यूपी की राजनीति में हर चुनाव सामाजिक समीकरणों और संगठनात्मक ताकत की नई परीक्षा बनकर आता है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के बाद बीजेपी के लिए अब सबसे बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, जबकि विपक्ष अपनी जीत का दावा ठोक रहा है। ऐसे में लखनऊ में जो बिसात नितिन नवीन बिछाएंगे, उसकी गूंज 2027 विधानसभा चुनाव में जरूर सुनाई देगी। आज तक ब्यूरो।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहे हैं, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब जांच में सामने आ रहा है कि पूरा खेल एक गैंग के तौर पर चल रहा था। बाकायदा बैठक होती थी, पैसों का हेर फेर होता था, एक दूसरे को बांटे जाते थे।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अयोध्या पुलिस ने पूछताछ के दौरान अविनाश शुक्ला को पिछले 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाई। जैसे ही उसने खुद को चढ़ावे से पैसे निकालते देखा, वो टूट गया और लगातार चोरी करने की बात स्वीकार कर ली। पूछताछ में अविनाश ने बताया कि चोरी की रकम से एक ब्रेजा कार खरीदी थी। ये कार उसने अपने भाई के नाम खरीदी, इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ कि कार चढ़ावा चोरी के पैसे से खरीदी गई है। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आते ही अविनाश ने कार को तुरंत प्रतापगढ़ स्थित घर भेज दिया। इस मामले में अविनाश के भाई अभिषेक शुक्ला से भी पूछताछ की गई है।
7: वहीं अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर एक कार भी बरामद कर ली गई है। ये कार ये पीछे खड़ी है, ये कार अविनाश शुक्ला ने चढ़ावा चोरी की रकम से अपने भाई अभिषेक के नाम पर खरीदी थी।
1: जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। चढ़ावा चोरी गैंग के सभी आरोपी एक दूसरे की गतिविधियों से पूरी तरह वाकिफ थे। कौन कब कैसे चोरी कर रहा है, इसकी जानकारी सभी को रहती थी। चढ़ावा चोरी के बाद सभी आरोपी नियमित रूप से बैठक करते थे। उस बैठक में चोरी का माल बांटने और आगे के प्लान पर चर्चा होती थी। इन बैठकों में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा समेत 6 आरोपी शामिल होते थे। जांच में यह भी सामने आया है कि बाद में टिन्नू यादव का भतीजा भी इन बैठकों में शामिल होने लगा था। मई के आखिरी सप्ताह में मामला खुलने से ठीक पहले भी आरोपियों की एक बैठक हुई थी। अब पुलिस चोरी की रकम, उससे खरीदी गई संपत्तियों और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। कल करीब 13 घंटे की पूछताछ के बाद अविनाश शुक्ला को अयोध्या जेल भेज दिया गया है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
0: यूपी चुनाव से पहले हुए राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस खुलासे को विपक्ष छोड़ना नहीं चाहता और अब समाजवादी पार्टी ने गाना जारी किया है, जिसको लेकर बीजेपी पर तंज कसा गया है।

समाजवादी पार्टी की ओर से जारी किया ये नया वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा अगले चुनाव में विपक्ष के लिए बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार होगा। ये वीडियो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में साझा किया है, जिसमें भगवान राम को अयोध्या छोड़कर वापस वनवास जाते दिखाया जा रहा है।

0: समाजवादी पार्टी के इस वीडियो पर सरकार के नेता अखिलेश से सवाल पूछ रहे हैं।
1: जो गाना बजा रहे हैं ना कि राम बन गए कब आएंगे, तो जब अखिलेश यादव जी दर्शन करने जाएंगे तब राम जी आ जाएंगे।
0: राम मंदिर को लेकर पूरे विपक्ष का सुर एक है।
2: राम का नाम आपने बदनाम कर दिया, हिंदुत्व का नाम पे खेला और हिंदुइज्म को आपने फिनिश किया।
3: ये चंदा चोरी बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं जानते थे इन लोगों को? इन्हीं के तो लोग हैं जो बिठाए गए हैं ट्रस्ट में।
0: इस सियासत के बीच एसआईटी सूत्रों की माने तो अयोध्या में प्रतिदिन करीब 6 से 8 लाख रुपए की चोरी हो रही थी। एसआईटी ने एसबीआई बैंक के मैनेजर समेत 10 बैंक कर्मियों से पूछताछ की है। पूछताछ के बाद बैंक के लेन देन से जुड़े दस्तावेज और हिसाब किताब अपने कब्जे में लेकर उनकी जांच की जा रही है। अयोध्या में चोरी का मामला सामने आने से पहले ट्रस्ट के एसबीआई और पीएनबी बैंक खाते में प्रतिदिन करीब 16 से 18 लाख रुपए जमा हो रहे थे। चोरी का खुलासा होने के बाद अब प्रतिदिन जमा होने वाली राशि बढ़कर 24 से 26 लाख रुपए तक पहुँच गयी है। लेकिन सवाल वही, क्या ये जाँच बड़े पदाधिकारियों तक पहुंचेगी? पूरी सियासत अब इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। आज तक ब्यूरो।
4: राम मंदिर पर विवाद अभी बढ़ ही रहा था कि बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ाव और चोरी के आरोप लग रहे हैं, जिसे लेकर अब जांच कमेटी बना दी गई है।
0: सवाल भक्तों की आस्था का है, उनके दान का है, जिसमें गड़बड़ी का विवाद अब बद्रीनाथ धाम तक पहुंच गया है।
5: सबसे पहले ये मामला उजागर हुआ जब भैरव सेना संगठन ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ में तैनात बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष निजी सचिव ने प्रसाद में चोरी की है और जो चढ़ावा आता है उसमें सेंध मारी है। 2 तारीख का यह मामला बताया जा रहा है। करीब 8:30 से 9:30 के बीच में ये चोरी की घटना हुई, ऐसे आरोप लग रहे हैं।
0: दावा किया जा रहा है कि बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के सचिव ने पेटी खोली और दान के पैसों में हेरा फेरी की। प्रशासन कह रहा है कि सीसीटीवी चेक किए गए हैं और ऐसा कोई मामला सामने नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर सीसीटीवी को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा?
5: 2 तारीख को सुबह 8:30 के आसपास इन्होंने मंदिर गणना समिति के सदस्य रहते हुए बिना किसी स्वीकृति के पेटी को खोल दिया गया। अब इस पेटी में कितनी चोरी हुई है, कब ये चोरी हुई है, ये जांच का विषय है या फिर ये आरोप बेबुनियाद है, ये भी जांच का विषय है।
0: उधर बीकेटीसी अध्यक्ष ने आरोपी शख्स के सचिव होने से इनकार किया है और जांच के बाद दोषियों पर एक्शन का भरोसा दिया है
6: और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
0: मामले ने उत्तराखंड की सियासत को गर्म कर दिया है, जहां कांग्रेस अब बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है।
7: इस तरह की गतिविधियां और ये प्रकरण सामने आ रहे हैं, उससे न केवल सरकार और मंदिर समिति की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि करोड़ों जो हिंदू श्रद्धालु हैं, आस्थावान हैं, उनकी भावनाएं भी आहत हो रही है।
0: सवाल करोड़ों भक्तों की आस्था का है, उनके दान किए पैसों का है। राम मंदिर के बाद अब बद्रीनाथ से आ रही खबरों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: अब बात यूपी में 2027 को लेकर बीजेपी की तैयारी की, जिसे लेकर नितिन नवीन यूपी के दौरे पर है और अगले कुछ दिनों में वो यूपी में रहकर यूपी के चुनाव को लेकर मंथन करेंगे।
0: यूपी चुनाव की तैयारियों का मंथन करने जब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे तो खुद योगी आदित्यनाथ उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। साथ में बीजेपी के दिग्गज मंत्री और नेता भी थे।
8: लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। भगवान प्रभु श्री राम का भूमि हम कह सकते हैं, भोले बाबा काशी विश्वनाथ का नगरी, मथुरा की नगरी, भगवान की नगरी, उस नगरी को नमन करता हूं और अपने सुबह अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करूंगा।
0: लखनऊ के दौरे पर नितिन नवीन की बैठकों का एक लंबा दौर चलेगा, जहां विधायक सांसदों के अलावा सीएम, डिप्टी सीएम और संघ के लोग भी शामिल होंगे।
9: उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। उत्तर प्रदेश का आम जनमानस आज मान रहा है, आज उत्तर प्रदेश का युवा चाह रहा है कि आदरणीय नितिन नवीन जी जिस ढंग से सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरे प्रदेश के युवाओं में, माताओं बहनों में, गरीबों में, आम जनता में भारी उत्साह है।
0: नितिन नवीन के दौरे पर अखिलेश के पीडीए के कार्ड का संदेश भी देखने को मिला। नितिन नवीन का स्वागत करने पहुंचे यादव समाज के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि यादव समाज को बीजेपी में ही सम्मान और भागीदारी मिली है।
10: यादव की जगह उत्तर प्रदेश के अंदर हो, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में है। 6 केंद्र में मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के बना रखे हैं। हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश में मंत्री, मुझे भाजपा पार्षद दल का उपनेता बनाया गया। हमारे तमाम पद ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण पद यादव के।
11: इस बार
10: अखिलेश जी का जो पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको हमारा समाज पूरी तरीके से जान चुका है।
0: यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे झटके और दो बार सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्पेंसी जैसे खतरों को लेकर नितिन नवीन का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
4: बाद अब पंजाब की, जहां पर चुनाव से पहले कांग्रेस की टेंशन बढ़ती दिख रही है। चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में खींचतान अब खुलकर सामने आ रही है।
12: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर के बाहर मचे इस हंगामे ने एक बार फिर दिल्ली में कांग्रेस आला कमान की टेंशन बढ़ा दी है। चन्नी दिल्ली कूच की तैयारी में है, लेकिन सूत्रों की माने तो चन्नी की मांग से आला कमान सहमत नहीं है। पिछले दिनों बनी कांग्रेस ऑब्जर्वर पैनल ने पंजाब कांग्रेस प्रमुख के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी के नाम की सिफारिश की थी। पैनल की सिफारिशों के बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने राजा वडिंग को ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए रखा। ये रिपोर्ट पंजाब कांग्रेस नेताओं के साथ लंबी बातचीत के बाद तैयार की गई थी। जहां राजा वडिंग को लेकर नाराजगी थी, तो वहीं चन्नी को लेकर लोगों का समर्थन था। चन्नी को भरोसा था कि रिपोर्ट के बाद आला कमान पंजाब में नेतृत्व में बदलाव करेगा, लेकिन हाईकमान ने इस रिपोर्ट को नजरअंदाज किया। हालांकि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग किसी भी तक की खींचतान से इनकार कर रहे हैं।
13: चन्नी जी को कोई ऑथराइजेशन की जरूरत है? चन्नी जी जब चाहें, क्योंकि राहुल गांधी जी चन्नी साहब को प्यार करते हैं, कांग्रेस पार्टी उनको प्यार करती है। देखो, मेरी बात है कि चन्नी साहब सीएम फेस बन जाएं, कोई और बन जाएं, मैं तो इस रेस में नहीं हूं।
12: राहुल गांधी 7 जुलाई को विदेश से लौट आएंगे, जिसके बाद चन्नी राहुल से मुलाकात करेंगे। वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल भी इसको लेकर हरकत में आ गए हैं, जो कुछ दिन चंडीगढ़ में बिता सकते हैं, जहां चन्नी और राजा वडी के साथ उनकी बातचीत होगी। इस बीच बीजेपी के चन्नी को दिए गए ऑफर ने पंजाब की सियासत को नई हवा दे दी है।
14: ये कांग्रेस का एक कल्चर है, इसमें लोटस का कोई रोल नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी जो है वो चट्टान की तरह खड़ी है, वो लोगों के दिल में बसी है। 22 सूबों में हमारी सरकार चलती है, सब जगह तरक्की हो रही है।
15: हाँ भाई, खुश हो लो जरा, थोड़े 2-4 दिन के लिए दिल बहलाने को, यही ख्याल अच्छा है गालिब।
16: सो
15: मेरी बेनती है, इन बीजेपी वाले नु बावां भी खुलियां रख लें, भावे लत्तां भी खुलियां रख लें।
12: पिछले चुनाव से पहले सिद्धू और अमरिंदर की खींचतान कांग्रेस को पंजाब में महंगी पड़ी थी। ऐसे में इस बार चुनाव से पहले चन्नी की नाराजगी कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रही है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ असीम बस्सी, चंडीगढ़ आज तक।
4: देश के कई हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन बारिश की पहली किश्त ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। आपको अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन बात सबसे पहले मुंबई की करेंगे, जहां पर चार दिनों से लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद मुंबई के कई इलाके पानी में डूबे दिख रहे हैं।

0: सड़कों पर सैलाब है, सबवे लहरों के बीच डूब चुका है। एक बार फिर भारी बारिश के चलते मुंबई में हाल बेहद बुरा है। चाहे अंधेरी हो या नाला सोपारा, वसई या विरार, हर ओर मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा है। लगातार हो रही बारिश ने मुंबई के लोगों का जीवन दुभर कर दिया है।
1: चांदीवली विधानसभा नाले सफाई झाली नाही, महापौर म्हणतात नाले सफाई झाली, उपमहापौर म्हणतात नाले सफाई झाली, पण नाले सफाई कुठे झाली? कानुराम कुठे गेला? नाल्याचा कॉन्ट्रॅक्टर कुठे गेला? कानुराम हे बघा, वॉटर किंगडम आहे, वॉटर किंगडम चांदीवली विधानसभा।
0: एक एक तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर मॉनसून की बारिश के बीच मुंबई किस तरह की मुसीबत झेल रही है। गाड़ियां पानी के बीच फंसी हुई हैं, कहीं आना जाना मुश्किल है, बारिश का दौर थम नहीं रहा है, सड़कों पर बढ़ता जलस्तर लोगों का संकट बढ़ा रहा है। सबसे पहले भिवंडी इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। तेज बारिश से पूरा बाजार तालाब बन गया है, दुकानों में पानी भर गया है, गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, घुटनों तक पानी में लोग आ जा रहे हैं। किसी तरह जद्दोजहद कर अपनी दुकानों का सामान बचाने की कोशिश में लोग जुटे हुए हैं। अब नाला सोपारा हाईवे का हाल देखिए। सड़कों पर भरे पानी के चलते कई गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, लोगों को कहीं आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। नाला सोपारा में बढ़ता जलस्तर तेजी से रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ रहा है, जो आने वाले दिनों में मुंबई के लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकता है, क्योंकि नाला सोपारा और उसके आसपास के सभी मार्केट पूरी तरह से पानी में घिरे हुए हैं। गाड़ियों से भी गुजर रहे लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। मुंबई में बीते चार दिनों से बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाके पानी में डूब गए हैं। इस बीच पानी भरने के बाद अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। अब विरार इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। दोनों ओर की सड़क पर सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है, सड़कों पर गाड़ियां फंसी हुई हैं, दूर तक लंबी कतार नजर आ रही है। बांद्रा इलाके में सड़कें लबालब हैं, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। बारिश के बीच मुसीबत का दायरा बढ़ता जा रहा है।
2: मुंबई में सुबह से लगातार बारिश हो रही है और यह बारिश पिछले तीन से चार दिनों से मुंबई में हो रही है। आज भी मौसम विभाग द्वारा मुंबई और मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, रायगढ़, थाने, पालघर, नवी मुंबई, इनके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया है। आप देख सकते हैं, हम इस वक्त मुंबई के घाटकोपर इलाके में है, जहां पर 1.5 से 2 फीट तक का पानी जो है वो मुंबई की सड़कों पर जमा हो गया है और सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील होती हुई यहाँ नजर आ रही हैं। लोग कई समय से यहाँ पर बस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो बस है वो नहीं आ रही है। गाड़ियों की आवाजाही थोड़ी यहाँ धीमी होती हुई नजर आ रही है।
0: वसई इलाके का हाल तो और भी ज्यादा बुरा है। पानी इतना ज्यादा भर गया है कि मानो पूरा इलाका टापू बन गया है। इस बीच बिजली न होने से करीब 450 परिवारों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।
3: वसई विरार में लगातार चार दिन से जोरदार बारिश हो रही है। कई निचले इलाकों में पानी भर चुका है। फिलहाल इस वक्त मैं खड़ा हूँ वसई ईस्ट के मिठागर की बस्ती है। यहाँ हम देखेंगे तो ये जो रोड है जहाँ भरा है, इसके नीचे रास्ता है और ये रास्ते से अंदर हम 1.5 से 1.5 किलोमीटर जाए तो ये नमक की खेती करने वालों की बस्ती है। कुल 120 फैमिलीज वहाँ रहती है, 300 से 400 लोग है। हर साल इसी तरह ये रोड जो है पानी के नीचे चला जाता है। ये इन्होंने जानकारी दी जो है कि इनके घर में आसपास कुल कमर के ऊपर तक का पानी भर चुका है। बिजली भी कल से चली गई है और ये वस्ती के आसपास भी ये जो प्लेन इलाका है वहाँ भी ये भी पूरी तरह से भर चुका है। प्रशासन की ओर से इन्हें कोई अभी तक मदद पहुंची नहीं है। फिलहाल इन्हें खाने पीने की चीजों की सख्त जरूरत है, क्योंकि लाइट कल से है नहीं और यही बारिश अगर लगातार चालू रही तो इनके हाल बेहाल हो सकते हैं।
0: इस बीच बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन की ओर से अब तक लोगों तक कोई मदद नहीं पहुंची है, जिससे लोगों पर आई आफत और ज्यादा बढ़ गई है।
4: हालत खराब है कल से लोगों से, क्योंकि लाइट भी नहीं है, कल से लाइट भी नहीं है और पानी भी जैसे बढ़ते ही जा रहा है और ऊपर से बारिश भी और ज्यादा ही होते जा रहा है, जैसे कि अभी एक दो घंटा और गिरेगा तो घर में भी घुस सकता है बारिश पानी।
3: लाइट की क्या समस्या है उधर?
4: लाइट तो कल से ही नहीं है, कल से दोपहर से गई है, अभी तक आई ही नहीं है।
3: अभी अंदर कितना पानी है, कितने फैमिलीज अंदर रहती है?
4: फैमिली रहती है 450 फैमिली रहती है और कंबर के ऊपर पानी है।
3: कि कुछ सुबह से कुछ प्रशासन की हेल्प हुई है?
4: कुछ भी नहीं, किसी ने हेल्प करने के लिए फोन भी नहीं किया, कुछ हेल्प आया ही नहीं।
0: बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा, जगह जगह भारी जलभराव है और लोग बेहद परेशान। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच मौसम विभाग ने भी शहर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इधर प्रशासन ने लोगों को बेहद जरूरी यात्रा करने की सलाह दी है ताकि मौसम की मार किसी की जिंदगी पर संकट न बने। मुंबई में हर साल की यही कहानी है, बारिश हुई और लोगों की जिंदगी आफत के बीच घिर गई। एक बार फिर ऐसी ही तस्वीरें शहर की पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। सैलाब के बीच जिंदगी संकट में घिरी है। मुंबई से प्रवीण नालावड़े के साथ दीपेश त्रिपाठी आज तक।
5: अब बात ईरान के सर्वोच्च नेता खामिनेई के अंतिम संस्कार की, जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर की हस्तियां पहुंच रहे हैं। आपको आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं।
6: ईरान के सर्वोच्च नेता की अंतिम विदाई में लाखों लोग शामिल होने पहुंच रहे हैं, जहां अली खामिनेई की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है।
7: इस समय मैं मौजूद हूं ग्रैंड मुसल्ला में, और मैं जहां मौजूद हूं उसके ठीक पीछे अगर आप देखें कुछ ही दूरी पर आपको वो कॉफिन नजर आ जाएगा जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामिनेई के शव को, उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। दरअसल अगर आप देखें उनके साथ में चार कॉफिन आपको नजर आ रहे होंगे। चारों कॉफिन में सबसे ऊपर का जो कॉफिन है वो है सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामिनेई का। उसके नीचे अगर आप देखें उनके ग्रैंडसन यानी उनके पोते भी जो उसमें मारे गए थे, छोटा कॉफिन, उसके बाद उनके दामाद और उनकी जो कहते हैं कि मुश्तबा खामिनेई की वाइफ का भी कॉफिन है, उनकी बेटी का कॉफिन है। और अगर आप देखें कि उनके साथ साथ चार कॉफिन से परिवार के अलग अलग लोगों के बताए जाते हैं कि उनके ये कॉफिन है। हालांकि कुछ लोग और मारे जाने का भी दावा किया गया था, लेकिन उसकी पुष्टि अब तक ईरान में नहीं की गई है।
6: दुनिया भर से राजनेता, अधिकारी और धर्मगुरु तेहरान पहुंच चुके हैं और अंतिम यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। अमेरिका और इसराइल से कोई नहीं आया, वहीं लोगों के अंदर गम के साथ गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति इस पर तंज कसते भी नजर आए।
8: Two world wars, the Cold War, left America's enemies in the depths of history. We beat Venezuela in one day, and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice.
6: सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री की अंतिम यात्रा में मौजूदगी ने हर किसी को हैरान कर दिया। ओमान और कतर विदेशी प्रतिनिधियों की सूची में शामिल थे, लेकिन सऊदी अरब के किसी भी प्रतिनिधि का नाम नदारद था। उधर सुरक्षा कारणों से नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामिनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो रहे हैं।
9: Doesn't allow him to come. They said it's very dangerous and we cannot provide security for him. And I think he will not come out. Do you know they have very, very advanced technology and they can recognize him and they can follow him. Where is he? And it's very dangerous for him. So because of that, he will not come out.
6: इस मौके पर 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों और धर्म गुरुओं को बुलाकर ईरान दुनिया भर को कई संदेश देने की कोशिश भी कर रहा है। अमेरिका और इसराइल के साथ युद्ध के बावजूद वो ये साबित करना चाहता है कि कूटनीति। इस मौके पर 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों और धर्म गुरुओं को बुलाकर ईरान दुनिया भर को कई संदेश देने की कोशिश भी कर रहा है। अमेरिका और इसराइल के साथ युद्ध के बावजूद वो ये साबित करना चाहता है कि कूटनीतिक स्तर पर अभी वो उतना ही मजबूत है जितना 28 फरवरी से पहले था। तेहरान से गीता मोहन और सुमित चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।
5: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: चढ़ावा चोरी मामले में अब अयोध्या पुलिस जेल में बंद पांच आरोपियों से करेगी आज पूछताछ। टिन्नू यादव से भी सवाल, ममता का सरकार पर तंज, कहा राम का नाम किया बदनाम। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहले यूपी के दौरे पर नितिन नवीन का चुनावी मंत्र, पदाधिकारियों से कहा विपक्ष की नकारात्मक राजनीति के जाल में न फंसे, राज्य के विकास पर करें फोकस। पीएम मोदी ने विपक्ष पर युद्धकाल में देश को डराने का लगाया आरोप, राजस्थान के बालोतरा में बोले संकट में राष्ट्रहित को आगे रखकर फैसला, देश पर नहीं डाला बोझ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर आतंकवादियों से मुठभेड़, मारे गए दोनों आतंकवादी, कैमरे में कैद दोनों दहशतगर्द। मूसलाधार बारिश से पानी पानी, मुंबई और बढ़ सकती है मुसीबतें, आज भारी बरसात का रेड अलर्ट, बीएमसी के लोगों से अपील, जरूरी हो तभी निकलें बाहर। उत्तर प्रदेश राजनीति का वो रण क्षेत्र जहां जीत हार देश की तकदीर भी बदलती रही है। इस बार 2027 का यूपी विधानसभा का चुनाव काफी अहम है, चुनाव अगले साल होने हैं लेकिन सियासत अभी से शुरू है।
1: राजनीति में कई बार संदेश भाषणों से नहीं तस्वीरों से लिखा जाता है। स्वागत केवल सम्मान नहीं होता, वो शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन भी होता है। लखनऊ की सड़कों पर आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखी जब नितिन नवीन पहली बार बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद लखनऊ पहुंचे। तो सवाल यह कि क्या नितिन नवीन का दौरा बीजेपी के 2027 चुनाव अभियान का औपचारिक आगाज है? क्या बीजेपी का संगठन विपक्ष के सामाजिक समीकरणों पर फिर भारी पड़ेगा या इस बार मुकाबला बदल चुका है? क्या यूपी में 2027 की लड़ाई सत्ता बचाने की होगी या सत्ता बदलने की?
2: लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं, भगवान प्रभु श्री राम का भूमि, और हम कह सकते हैं भोले बाबा काशी विश्वनाथ का नगरी, मथुरा की नगरी, भगवान की नगरी, उस नगरी को नमन करता हूं और अपने सुबह अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करूंगा।
1: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का लखनऊ एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए सीएम योगी खुद मौजूद थे, साथ में बीजेपी के दिग्गज मंत्री और नेता थे।
3: उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, उत्तर प्रदेश का आम जनमानस आज मांग रहा है, आज उत्तर प्रदेश का युवा चाह रहा है कि आदरणीय नितिन नवीन जी जिस ढंग से सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरे प्रदेश के युवाओं में, माताओं बहनों में, गरीबों में, आम जनता में भारी उत्साह है।
1: यूपी विधानसभा चुनाव अगले साल के शुरुआती महीनों में होना है लेकिन बीजेपी ने अपनी राजनीतिक घड़ी तेज कर दी है। लखनऊ दौरे पर नितिन नवीन का एजेंडा साफ है, 2024 की समीक्षा, सोशल इंजीनियरिंग, सरकार संगठन में तालमेल, वोटर आउटरीच, 2027 की जीत का ब्लूप्रिंट। बीजेपी अध्यक्ष पद संभालने के बाद नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी ने बंगाल में ऐतिहासिक रूप से सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की, जबकि असम और पुडुचेरी में अपनी सत्ता बरकरार रखी। केरल में भी पार्टी का वोट बैंक तेजी से बढ़ा है। अब इसी विनिंग फॉर्मूले के साथ वो यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने की रणनीति बना रहे हैं लेकिन अखिलेश यादव लगातार पीडीए के फॉर्मूले को जीत का मंत्र बताते रहे हैं।
4: हम सबसे अपील करेंगे, जो हम लोगों ने एक आवाज दी है कि पीडीए से सब जुड़ जाएं, मुझे उम्मीद है पीडीए की लड़ाई मजबूत होगी, पीडीए एनडीए को हराएगा और जब हम लोग टिकट बांट रहे हैं, सीटें बांट रहे हैं, तब बीजेपी अपनी टिकट काटने की सोच रही है। सोचो, बीजेपी टिकट काटना चाहती है, हम सीटें बांट करके जनता में पहुंचे।
5: नफरत के सहारे ये सत्ता में आना चाहते हैं लेकिन देश जाग गया है, पीडीए जाग गया है, इस बार मुकाबला पीडीए करेगा एनडीए का।
1: हालांकि जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं उसमें से नितिन नवीन के स्वागत करने पहुंचे यादव समाज के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि यादव समाज को बीजेपी में ही सम्मान और भागीदारी मिली है।
6: यादों की जगह उत्तर प्रदेश के अंदर हो, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में है, 6 केंद्र में मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के बना रखे हैं, हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश में मंत्री, मुझे भाजपा पार्षद दल का उपनेता बनाया गया, हमारे तमाम पद ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण पद यादों के।
7: इस बार
6: अखिलेश जी का जो पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको हमारा समाज पूरी तरीके से जान चुका है।
1: यूपी की राजनीति में हर चुनाव सामाजिक समीकरणों और संगठनात्मक ताकत की नई परीक्षा बनकर आता है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के बाद बीजेपी के लिए अब सबसे बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, जबकि विपक्ष अपनी जीत का दावा ठोक रहा है। ऐसे में लखनऊ में जो बिसात नितिन नवीन बिछाएंगे, उसकी गूंज 2027 विधानसभा चुनाव में जरूर सुनाई देगी। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी चुनाव से पहले हुए राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस खुलासे को विपक्ष छोड़ना नहीं चाहता और अब समाजवादी पार्टी ने गाना जारी किया है, जिसको लेकर बीजेपी पर तंज कसा गया है।

0: समाजवादी पार्टी की ओर से जारी किया ये नया वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा अगले चुनाव में विपक्ष के लिए बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार होगा। ये वीडियो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में साझा किया है, जिसमें भगवान राम को अयोध्या छोड़कर वापस वनवास जाते दिखाया जा रहा है।
1: फिर

0: समाजवादी पार्टी के इस वीडियो पर सरकार के नेता अखिलेश से सवाल पूछ रहे हैं।
1: जो गाना बजा रहे हैं ना कि राम बन गए कब आएंगे, तो जब अखिलेश यादव जी दर्शन करने जाएंगे तब राम जी आ जाएंगे।
0: राम मंदिर को लेकर पूरे विपक्ष का सुर एक है।
2: राम का नाम आपने बदनाम कर दिया, हिंदुत्व का नाम पे खेला और हिंदुइज्म को आपने फिनिश किया।
3: ये चंदा चोरी बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं जानते थे इन लोगों को? इन्हीं के तो लोग हैं जो बिठाए गए हैं ट्रस्ट में।
0: इस सियासत के बीच एसआईटी सूत्रों की माने तो अयोध्या में प्रतिदिन करीब 6 से 8 लाख रुपए की चोरी हो रही थी। एसआईटी ने एसबीआई बैंक के मैनेजर समेत 10 बैंक कर्मियों से पूछताछ की है। पूछताछ के बाद बैंक के लेन देन से जुड़े दस्तावेज और हिसाब किताब अपने कब्जे में लेकर उनकी जांच की जा रही है। अयोध्या में चोरी का मामला सामने आने से पहले ट्रस्ट के एसबीआई और पीएनबी बैंक खाते में प्रतिदिन करीब 16 से 18 लाख रुपए जमा हो रहे थे। चोरी का खुलासा होने के बाद अब प्रतिदिन जमा होने वाली राशि बढ़कर 24 से 26 लाख रुपए तक पहुँच गयी है। लेकिन सवाल वही, क्या ये जाँच बड़े पदाधिकारियों तक पहुंचेगी? पूरी सियासत अब इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। आज तक ब्यूरो।
4: राम मंदिर पर विवाद अभी बढ़ ही रहा था कि बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ाव और चोरी के आरोप लग रहे हैं, जिसे लेकर अब जांच कमेटी बना दी गई है।
0: सवाल भक्तों की आस्था का है, उनके दान का है, जिसमें गड़बड़ी का विवाद अब बद्रीनाथ धाम तक पहुंच गया है।
5: सबसे पहले ये मामला उजागर हुआ जब भैरव सेना संगठन ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ में तैनात बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष निजी सचिव ने प्रसाद में चोरी की है और जो चढ़ावा आता है उसमें सेंध मारी है। 2 तारीख का यह मामला बताया जा रहा है। करीब 8:30 से 9:30 के बीच में ये चोरी की घटना हुई, ऐसे आरोप लग रहे हैं।
0: दावा किया जा रहा है कि बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के सचिव ने पेटी खोली और दान के पैसों में हेरा फेरी की। प्रशासन कह रहा है कि सीसीटीवी चेक किए गए हैं और ऐसा कोई मामला सामने नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर सीसीटीवी को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा?
5: 2 तारीख को सुबह 8:30 के आसपास इन्होंने मंदिर गणना समिति के सदस्य रहते हुए बिना किसी स्वीकृति के पेटी को खोल दिया गया। अब इस पेटी में कितनी चोरी हुई है, कब ये चोरी हुई है, ये जांच का विषय है या फिर ये आरोप बेबुनियाद है, ये भी जांच का विषय है।
0: उधर बीकेटीसी अध्यक्ष ने आरोपी शख्स के सचिव होने से इनकार किया है और जांच के बाद दोषियों पर एक्शन का भरोसा दिया है
6: और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
0: मामले ने उत्तराखंड की सियासत को गर्म कर दिया है, जहां कांग्रेस अब बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है।
7: इस तरह की गतिविधियां और ये प्रकरण सामने आ रहे हैं, उससे न केवल सरकार और मंदिर समिति की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि करोड़ों जो हिंदू श्रद्धालु हैं, आस्थावान हैं, उनकी भावनाएं भी आहत हो रही है।
0: सवाल करोड़ों भक्तों की आस्था का है, उनके दान किए पैसों का है। राम मंदिर के बाद अब बद्रीनाथ से आ रही खबरों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: अब बात यूपी में 2027 को लेकर बीजेपी की तैयारी की, जिसे लेकर नितिन नवीन यूपी के दौरे पर है और अगले कुछ दिनों में वो यूपी में रहकर यूपी के चुनाव को लेकर मंथन करेंगे।
0: यूपी चुनाव की तैयारियों का मंथन करने जब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे तो खुद योगी आदित्यनाथ उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। साथ में बीजेपी के दिग्गज मंत्री और नेता भी थे।
8: लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। भगवान प्रभु श्री राम का भूमि और हम कह सकते हैं भोले बाबा काशी विश्वनाथ का नगरी, मथुरा की नगरी, भगवान की नगरी, उस नगरी को नमन करता हूं और अपने सुधे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करूंगा।
0: लखनऊ के दौरे पर नितिन नवीन की बैठकों का एक लंबा दौर चलेगा, जहां विधायक सांसदों के अलावा सीएम, डिप्टी सीएम और संघ के लोग भी शामिल होंगे।
9: उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। उत्तर प्रदेश का आम जनमानस आज मान रहा है, आज उत्तर प्रदेश का युवा चाह रहा है कि आदरणीय नितिन नवीन जी जिस ढंग से सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरे प्रदेश के युवाओं में, माताओं बहनों में, गरीबों में, आम जनता में भारी उत्साह है।
0: नितिन नवीन के दौरे पर अखिलेश के पीडीए के कार्ड का संदेश भी देखने को मिला। नितिन नवीन का स्वागत करने पहुंचे यादव समाज के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि यादव समाज को बीजेपी में ही सम्मान और भागीदारी मिली है।
10: यादव की जगह उत्तर प्रदेश के अंदर हो, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में है। 6 केंद्र में मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के बना रखे हैं। हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश में मंत्री, मुझे भाजपा पार्षद दल का उपनेता बनाया गया। हमारे तमाम पद ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण पद यादव के।
11: इस बार
10: अखिलेश जी का जो पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको हमारा समाज पूरी तरीके से जान चुका है।
0: यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे झटके और दो बार सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्पेंसी जैसे खतरों को लेकर नितिन नवीन का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
4: बाद अब पंजाब की, जहां पर चुनाव से पहले कांग्रेस की टेंशन बढ़ती दिख रही है। चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में खींचतान अब खुलकर सामने आ रही है।
12: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर के बाहर मचे इस हंगामे ने एक बार फिर दिल्ली में कांग्रेस आला कमान की टेंशन बढ़ा दी है। चन्नी दिल्ली कूच की तैयारी में है, लेकिन सूत्रों की माने तो चन्नी की मांग से आला कमान सहमत नहीं है। पिछले दिनों बनी कांग्रेस ऑब्जर्वर पैनल ने पंजाब कांग्रेस प्रमुख के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी के नाम की सिफारिश की थी। पैनल की सिफारिशों के बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने राजा वडिंग को ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए रखा। ये रिपोर्ट पंजाब कांग्रेस नेताओं के साथ लंबी बातचीत के बाद तैयार की गई थी। जहां राजा वडिंग को लेकर नाराजगी थी, तो वहीं चन्नी को लेकर लोगों का समर्थन था। चन्नी को भरोसा था कि रिपोर्ट के बाद आला कमान पंजाब में नेतृत्व में बदलाव करेगा, लेकिन हाईकमान ने इस रिपोर्ट को नजरअंदाज किया। हालांकि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग किसी भी तक की खींचतान से इनकार कर रहे हैं।
13: चन्नी जी को कोई ऑथराइजेशन की जरूरत है? चन्नी जी जब चाहे, क्योंकि राहुल गांधी जी चन्नी साहब को प्यार करते हैं, कांग्रेस पार्टी उनको प्यार करती है। देखो, मेरी बात है कि चन्नी साहब सीएम फेस बन जाएं, कोई और बन जाएं, मैं तो इस रेस में नहीं हूं।
12: राहुल गांधी 7 जुलाई को विदेश से लौट आएंगे, जिसके बाद चन्नी राहुल से मुलाकात करेंगे। वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल भी इसको लेकर हरकत में आ गए हैं, जो कुछ दिन चंडीगढ़ में बिता सकते हैं, जहां चन्नी और राजा वडी के साथ उनकी बातचीत होगी। इस बीच बीजेपी के चन्नी को दिए गए ऑफर ने पंजाब की सियासत को नई हवा दे दी है।
14: ये कांग्रेस का एक कल्चर है, इसमें लोटस का कोई रोल नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब चट्टान की तरह खड़ी है, वो लोगों के दिल में बसी है। 22 सूबों में हमारी सरकार चलती है, सब जगह तरक्की हो रही है।
15: हाँ भाई, खुश हो लो जरा, थोड़े 2-4 दिन के लिए दिल बहलाने को, यही ख्याल अच्छा है गालिब।
16: सो
15: मेरी बेनती है, इन बीजेपी वाले नु बावा भी खुलियां रख लें, भावे लता भी खुलियां रख लें।
12: पिछले चुनाव से पहले सिद्धू और अमरिंदर की खींचतान कांग्रेस को पंजाब में महंगी पड़ी थी। ऐसे में इस बार चुनाव से पहले चन्नी की नाराजगी कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रही है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ असीम बस्सी, चंडीगढ़ आज तक।
4: देश के कई हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन बारिश की पहली किश्त ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। आपको अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन बात सबसे पहले मुंबई की करेंगे, जहां पर चार दिनों से लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद मुंबई के कई इलाके पानी में डूबे दिख रहे हैं।

0: सड़कों पर सैलाब है, सबवे लहरों के बीच डूब चुका है। एक बार फिर भारी बारिश के चलते मुंबई में हाल बेहद बुरा है। चाहे अंधेरी हो या नाला सोपारा, वसई या विरार, हर ओर मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा है। लगातार हो रही बारिश ने मुंबई के लोगों का जीवन दुभर कर दिया है।
1: चांदीवली विधानसभा नाले सफाई झाली नाही, महापौर म्हणतात नाले सफाई झाली, उपमहापौर म्हणतात नाले सफाई झाली, पण नाले सफाई कुठे झाली? कालूराम कुठे गेला? नाल्याचा कॉन्ट्रॅक्टर कुठे गेला? कालूराम हे बघा, वॉटर किंगडम आहे, वॉटर किंगडम चांदीवली विधानसभा।
0: एक एक तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर मॉनसून की बारिश के बीच मुंबई किस तरह की मुसीबत झेल रही है। गाड़ियां पानी के बीच फंसी हुई हैं, कहीं आना जाना मुश्किल है, बारिश का दौर थम नहीं रहा है, सड़कों पर बढ़ता जलस्तर लोगों का संकट बढ़ा रहा है। सबसे पहले भिवंडी इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। तेज बारिश से पूरा बाजार तालाब बन गया है, दुकानों में पानी भर गया है, गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, घुटनों तक पानी में लोग आ जा रहे हैं। किसी तरह जद्दोजहद कर अपनी दुकानों का सामान बचाने की कोशिश में लोग जुटे हुए हैं। अब नाला सोपारा हाईवे का हाल देखिए। सड़कों पर भरे पानी के चलते कई गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, लोगों को कहीं आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। नाला सोपारा में बढ़ता जलस्तर तेजी से रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ रहा है, जो आने वाले दिनों में मुंबई के लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकता है, क्योंकि नाला सोपारा और उसके आसपास के सभी मार्केट पूरी तरह से पानी में घिरे हुए हैं। गाड़ियों से भी गुजर रहे लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। मुंबई में बीते चार दिनों से बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाके पानी में डूब गए हैं। इस बीच पानी भरने के बाद अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। अब विरार इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। दोनों ओर की सड़क पर सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है, सड़कों पर गाड़ियां फंसी हुई हैं, दूर तक लंबी कतार नजर आ रही है। बांद्रा इलाके में सड़कें लबालब हैं, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। बारिश के बीच मुसीबत का दायरा बढ़ता जा रहा है।
2: मुंबई में सुबह से लगातार बारिश हो रही है और यह बारिश पिछले तीन से चार दिनों से मुंबई में हो रही है। आज भी मौसम विभाग द्वारा मुंबई और मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, रायगढ़, थाने, पालघर, नवी मुंबई, इनके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया है। आप देख सकते हैं हम इस वक्त मुंबई के घाटकोपर इलाके में है, जहां पर 1.5 से 2 फीट तक का पानी जो है वो मुंबई की सड़कों पर जमा हो गया है और सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील होती हुई यहाँ नजर आ रही हैं। लोग कई समय से यहाँ पर बस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो बस है वो नहीं आ रही है। गाड़ियों की आवाजाही थोड़ी यहाँ धीमी होती हुई नजर आ रही है।
0: वसई इलाके का हाल तो और भी ज्यादा बुरा है। पानी इतना ज्यादा भर गया है कि मानो पूरा इलाका टापू बन गया है। इस बीच बिजली न होने से करीब 450 परिवारों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।
3: वसई विरार में लगातार चार दिन से जोरदार बारिश हो रही है। कई निचले इलाकों में पानी

0: रोड जो है पानी के नीचे चला जाता है। ये इन्होंने जानकारी दी जो है कि इनके घर में आसपास कुल कमर के ऊपर तक का पानी भर चुका है, बिजली भी कल से चली गई है और ये बस्ती के आसपास भी ये जो प्लेन इलाका है वहाँ भी ये भी पूरी तरह से भर चुका है। प्रशासन की ओर से इन्हें कोई अभी तक मदद पहुंची नहीं है। फिलहाल इन्हें खाने पीने की चीज़ों की सख्त ज़रूरत है क्योंकि लाइट कल से है नहीं और यही बारिश अगर लगातार चालू रही तो इनके हाल बेहाल हो सकते हैं।
1: इस बीच बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन की ओर से अब तक लोगों तक कोई मदद नहीं पहुंची है जिससे लोगों पर आई आफत और ज्यादा बढ़ गई है।
2: हालत खराब है कल से लोगों से क्योंकि लाइट भी नहीं है, कल से लाइट भी नहीं है और पानी भी जैसे बढ़ते ही जा रहा है और ऊपर से बारिश भी और ज्यादा ही होते जा रहा है। जैसे कि अभी एक दो घंटा और गिरेगा तो घर में भी घुस सकता है बारिश पानी।
0: लाइट की क्या समस्या है उधर?
2: लाइट तो कल से ही नहीं है, कल से दोपहर से गई है, अभी तक आई नहीं है।
0: अभी अंदर कितना पानी है, कितने फैमिलीज अंदर रहती है?
2: फैमिली रहती है 450 फैमिली रहती है और कमर के ऊपर पानी है।
0: कि कुछ सुबह से कुछ प्रशासन की हेल्प हुई है?
2: कुछ भी नहीं, किसी ने हेल्प करने के लिए फोन भी नहीं किया, कुछ हेल्प आया ही नहीं।
1: बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा, जगह जगह भारी जल भराव है और लोग बेहद परेशान। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच मौसम विभाग ने भी शहर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इधर प्रशासन ने लोगों को बेहद जरूरी यात्रा करने की सलाह दी है ताकि मौसम की मार किसी की जिंदगी पर संकट न बने। मुंबई में हर साल की यही कहानी है, बारिश हुई और लोगों की जिंदगी आफत के बीच घिर गई। एक बार फिर ऐसी ही तस्वीरें शहर की पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। सैलाब के बीच जिंदगी संकट में घिरी है। मुंबई से प्रवीण नालावड़े के साथ दीपेश त्रिपाठी आज तक।
3: अब बात ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के अंतिम संस्कार की, जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर की हस्तियां पहुंच रहे हैं। आपको आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं।
4: ईरान के सर्वोच्च नेता की अंतिम विदाई में लाखों लोग शामिल होने पहुंच रहे हैं, जहां अली खामेनेई की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है।
5: इस समय मैं मौजूद हूं ग्रैंड मुसल्ला में और मैं जहां मौजूद हूं उसके ठीक पीछे अगर आप देखें कुछ ही दूरी पर आपको वो कॉफिन नजर आ जाएगा जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के शव को, उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। दरअसल अगर आप देखें उनके साथ में चार कॉफिन आपको नजर आ रहे होंगे। चारों कॉफिन में सबसे ऊपर का जो कॉफिन है वो है सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई का। उसके नीचे अगर आप देखें उनके ग्रैंडसन यानी उनके पोते भी जो उसमें मारे गए थे, छोटा कॉफिन, उसके बाद उनके दामाद और उनकी जो कहते हैं कि मुश्तबा खामेनेई की वाइफ का भी कॉफिन है, उनकी बेटी का कॉफिन है। और अगर आप देखें कि उनके साथ साथ चार कॉफिन से परिवार के अलग अलग लोगों के बताए जाते हैं कि उनके ये कॉफिन है। हालांकि कुछ लोग और मारे जाने का भी दावा किया गया था लेकिन उसकी पुष्टि अब तक ईरान में नहीं की गई है।
4: दुनिया भर से राजनेता, अधिकारी और धर्म गुरु तेहरान पहुंच चुके हैं और अंतिम यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। अमेरिका और इसराइल से कोई नहीं आया, वहीं लोगों के अंदर गम के साथ गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति इस पर तंज कसते भी नजर आए।
6: Two world wars, the Cold War, left America's enemies in the depths of history. We beat Venezuela in one day, and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice.
4: सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री की अंतिम यात्रा में मौजूदगी ने हर किसी को हैरान कर दिया। ओमान और कतर विदेशी प्रतिनिधियों की सूची में शामिल थे लेकिन सऊदी अरब के किसी भी प्रतिनिधि का नाम नदारद था। उधर सुरक्षा कारणों से नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो रहे हैं।
7: Doesn't allow him to come. They said it's very dangerous and we cannot provide security for him. And I think he will not come out. Do you know they have very, very advanced technology and they can recognize him and they can follow him. Where is he?

0: and it's very dangerous for him, so because of that he will not come out.
1: इस मौके पर 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों और धर्म गुरुओं को बुलाकर ईरान दुनिया भर को कई संदेश देने की कोशिश भी कर रहा है। अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध के बावजूद वो ये साबित करना चाहता है कि कूटनीतिक स्तर पर अभी वो उतना ही मजबूत है जितना 28 फरवरी से पहले था। तेहरान से गीता मोहन और सुमित चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।
2: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: चढ़ावा चोरी मामले में अब अयोध्या पुलिस जेल में बंद पांच आरोपियों से करेगी आज पूछताछ। टिन्नू यादव से भी सवाल, ममता का सरकार पर तंज, कहा राम का नाम किया बदनाम। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहले यूपी के दौरे पर नितिन नवीन का चुनावी मंत्र, पदाधिकारियों से कहा विपक्ष की नकारात्मक राजनीति के जाल में न फंसे, राज्य के विकास पर करें फोकस। पीएम मोदी ने विपक्ष पर युद्धकाल में देश को डराने का लगाया आरोप, राजस्थान के बालोतरा में बोले संकट में राष्ट्रहित को आगे रखकर फैसला, देश पर नहीं डाला बोझ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर आतंकवादियों से मुठभेड़, मारे गए दोनों आतंकवादी, कैमरे में कैद दोनों दहशतगर्द। मूसलाधार बारिश से पाने पाने मुंबई, और बढ़ सकती है मुसीबतें, आज भारी बरसात का रेड अलर्ट, बीएमसी के लोगों से अपील, जरूरी हो तभी निकलें बाहर। उत्तर प्रदेश राजनीति का वो रणक्षेत्र जहां जीत हार देश की तकदीर भी बदलती रही है। इस बार 2027 का यूपी विधानसभा का चुनाव काफी अहम है, चुनाव अगले साल होने हैं लेकिन सियासत अभी से शुरू है।
1: राजनीति में कई बार संदेश भाषणों से नहीं तस्वीरों से लिखा जाता है। स्वागत केवल सम्मान नहीं होता, वो शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन भी होता है। लखनऊ की सड़कों पर आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखी जब नितिन नवीन पहली बार बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद लखनऊ पहुंचे। तो सवाल यह कि क्या नितिन नवीन का दौरा बीजेपी के 2027 चुनाव अभियान का औपचारिक आगाज है? क्या बीजेपी का संगठन विपक्ष के सामाजिक समीकरणों पर फिर भारी पड़ेगा या इस बार मुकाबला बदल चुका है? क्या यूपी में 2027 की लड़ाई सत्ता बचाने की होगी या सत्ता बदलने की?
2: लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं, भगवान प्रभु श्री राम का भूमि, और हम कह सकते हैं भोले बाबा काशी विश्वनाथ का नगरी, मथुरा की नगरी, भगवान की नगरी, उस नगरी को नमन करता हूं और अपने सुधे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करूंगा।
1: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का लखनऊ एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए सीएम योगी खुद मौजूद थे, साथ में बीजेपी के दिग्गज मंत्री और नेता थे।
3: उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, उत्तर प्रदेश का आम जनमानस आज मान रहा है, आज उत्तर प्रदेश का युवा चाह रहा है कि आदरणीय नितिन नवीन जी जिस ढंग से सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरे प्रदेश के युवाओं में, माताओं बहनों में, गरीबों में, आम जनता में भारी उत्साह है।
1: यूपी विधानसभा चुनाव अगले साल के शुरुआती महीनों में होना है लेकिन बीजेपी ने अपनी राजनीतिक घड़ी तेज कर दी है। लखनऊ दौरे पर नितिन नवीन का एजेंडा साफ है, 2024 की समीक्षा, सोशल इंजीनियरिंग, सरकार संगठन में तालमेल, वोटर आउटरीच, 2027 की जीत का ब्लूप्रिंट। बीजेपी अध्यक्ष पद संभालने के बाद नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी ने बंगाल में ऐतिहासिक रूप से सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की, जबकि असम और पुडुचेरी में अपनी सत्ता बरकरार रखी। केरल में भी पार्टी का वोट बैंक तेजी से बढ़ा है। अब इसी विनिंग फॉर्मूले के साथ वो यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने की रणनीति बना रहे हैं लेकिन अखिलेश यादव लगातार पीडीए के फॉर्मूले को जीत का मंत्र बताते रहे हैं।
4: हम सबसे अपील करेंगे, जो हम लोगों ने एक आवाज दी है कि पीडीए से सब जुड़ जाएं, मुझे उम्मीद है पीडीए की लड़ाई मजबूत होगी, पीडीए एनडीए को हराएगा और जब हम लोग टिकट बांट रहे हैं, सीटें बांट रहे हैं, तब बीजेपी अपनी टिकट काटने की सोच रही है। सोचो, बीजेपी टिकट काटना चाहती है, हम सीटें बांट करके जनता में पहुंचे।
5: नफरत के सारे ये सत्ता में आना चाहते हैं लेकिन देश जाग गया है, पीडीए जाग गया है, इस बार मुकाबला पीडीए करेगा एनडीए का।
1: हालांकि जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं उसमें से नितिन नवीन के स्वागत करने पहुंचे यादव समाज के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि यादव समाज को बीजेपी में ही सम्मान और भागीदारी मिली है।
6: यादों की जगह उत्तर प्रदेश के अंदर हो, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में है, 6 केंद्र में मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के बना रखे हैं, हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश में मंत्री, मुझे भाजपा पार्षद दल का उपनेता बनाया गया, हमारे तमाम पद ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण पद यादों के।
7: इस बार
6: अखिलेश जी का जो पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको हमारा समाज पूरी तरीके से जान चुका है।
1: यूपी की राजनीति में हर चुनाव सामाजिक समीकरणों और संगठनात्मक ताकत की नई परीक्षा बनकर आता है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के बाद बीजेपी के लिए अब सबसे बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, जबकि विपक्ष अपनी जीत का दावा ठोक रहा है। ऐसे में लखनऊ में जो बिसात नितिन नवीन बिछाएंगे, उसकी गूंज 2027 विधानसभा चुनाव में जरूर सुनाई देगी। आज तक ब्यूरो।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहे हैं, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब जांच में सामने आ रहा है कि पूरा खेल एक गैंग के तौर पर चल रहा था। बाकायदा बैठक होती थी, पैसों का हेर फेर होता था, एक दूसरे को बांटे जाते थे।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अयोध्या पुलिस ने पूछताछ के दौरान अविनाश शुक्ला को पिछले 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाई। जैसे ही उसने खुद को चढ़ावे से पैसे निकालते देखा, वो टूट गया और लगातार चोरी करने की बात स्वीकार कर ली। पूछताछ में अविनाश ने बताया कि चोरी की रकम से एक ब्रेजा कार खरीदी थी। ये कार उसने अपने भाई के नाम खरीदी, इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ कि कार चढ़ावा चोरी के पैसे से खरीदी गई है। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आते ही अविनाश ने कार को तुरंत प्रतापगढ़ स्थित घर भेज दिया। इस मामले में अविनाश के भाई अभिषेक शुक्ला से भी पूछताछ की गई है।
7: वहीं अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर एक कार भी बरामद कर ली गई है। ये कार ये पीछे खड़ी है, ये कार अविनाश शुक्ला ने चढ़ावा चोरी की रकम से अपने भाई अभिषेक के नाम पर खरीदी थी।
1: जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। चढ़ावा चोरी गैंग के सभी आरोपी एक दूसरे की गतिविधियों से पूरी तरह वाकिफ थे। कौन कब कैसे चोरी कर रहा है, इसकी जानकारी सभी को रहती थी। चढ़ावा चोरी के बाद सभी आरोपी नियमित रूप से बैठक करते थे। उस बैठक में चोरी का माल बांटने और आगे के प्लान पर चर्चा होती थी। इन बैठकों में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा समेत 6 आरोपी शामिल होते थे। जांच में यह भी सामने आया है कि बाद में टिन्नू यादव का भतीजा भी इन बैठकों में शामिल होने लगा था। मई के आखिरी सप्ताह में मामला खुलने से ठीक पहले भी आरोपियों की एक बैठक हुई थी। अब पुलिस चोरी की रकम, उससे खरीदी गई संपत्तियों और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। कल करीब 13 घंटे की पूछताछ के बाद अविनाश शुक्ला को अयोध्या जेल भेज दिया गया है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
0: यूपी चुनाव से पहले हुए राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस खुलासे को विपक्ष छोड़ना नहीं चाहता और अब समाजवादी पार्टी ने गाना जारी किया है, जिसको लेकर बीजेपी पर तंज कसा गया है।

समाजवादी पार्टी की ओर से जारी किया ये नया वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा अगले चुनाव में विपक्ष के लिए बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार होगा। ये वीडियो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में साझा किया है, जिसमें भगवान राम को अयोध्या छोड़कर वापस वनवास जाते दिखाया जा रहा है।

0: समाजवादी पार्टी के इस वीडियो पर सरकार के नेता अखिलेश से सवाल पूछ रहे हैं।
1: जो गाना बजा रहे हैं ना कि राम बन गए कब आएंगे, तो जब अखिलेश यादव जी दर्शन करने जाएंगे तब राम जी आ जाएंगे।
0: राम मंदिर को लेकर पूरे विपक्ष का सुर एक है।
2: राम का नाम आपने बदनाम कर दिया, हिंदुत्व का नाम पे खेला और हिंदुइज्म को आपने फिनिश किया।
3: ये चंदा चोरी बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं जानते थे इन लोगों को? इन्हीं के तो लोग हैं जो बिठाए गए हैं ट्रस्ट में।
0: इस सियासत के बीच एसआईटी सूत्रों की माने तो अयोध्या में प्रतिदिन करीब 6 से 8 लाख रुपए की चोरी हो रही थी। एसआईटी ने एसबीआई बैंक के मैनेजर समेत 10 बैंक कर्मियों से पूछताछ की है। पूछताछ के बाद बैंक के लेन देन से जुड़े दस्तावेज और हिसाब किताब अपने कब्जे में लेकर उनकी जांच की जा रही है। अयोध्या में चोरी का मामला सामने आने से पहले ट्रस्ट के एसबीआई और पीएनबी बैंक खाते में प्रतिदिन करीब 16 से 18 लाख रुपए जमा हो रहे थे। चोरी का खुलासा होने के बाद अब प्रतिदिन जमा होने वाली राशि बढ़कर 24 से 26 लाख रुपए तक पहुँच गयी है। लेकिन सवाल वही, क्या ये जाँच बड़े पदाधिकारियों तक पहुंचेगी? पूरी सियासत अब इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। आज तक ब्यूरो।
4: राम मंदिर पर विवाद अभी बढ़ ही रहा था कि बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ाव और चोरी के आरोप लग रहे हैं, जिसे लेकर अब जांच कमेटी बना दी गई है।
0: सवाल भक्तों की आस्था का है, उनके दान का है, जिसमें गड़बड़ी का विवाद अब बद्रीनाथ धाम तक पहुंच गया है।
5: सबसे पहले ये मामला उजागर हुआ जब भैरव सेना संगठन ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ में तैनात बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष निजी सचिव ने प्रसाद में चोरी की है और जो चढ़ावा आता है उसमें सेंध मारी है। 2 तारीख का यह मामला बताया जा रहा है। करीब 8:30 से 9:30 के बीच में ये चोरी की घटना हुई, ऐसे आरोप लग रहे हैं।
0: दावा किया जा रहा है कि बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के सचिव ने पेटी खोली और दान के पैसों में हेरा फेरी की। प्रशासन कह रहा है कि सीसीटीवी चेक किए गए हैं और ऐसा कोई मामला सामने नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर सीसीटीवी को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा?
5: 2 तारीख को सुबह 8:30 के आसपास इन्होंने मंदिर गणना समिति के सदस्य रहते हुए बिना किसी स्वीकृति के पेटी को खोल दिया गया। अब इस पेटी में कितनी चोरी हुई है, कब ये चोरी हुई है, ये जांच का विषय है या फिर ये आरोप बेबुनियाद है, ये भी जांच का विषय है।
0: उधर बीकेटीसी अध्यक्ष ने आरोपी शख्स के सचिव होने से इनकार किया है और जांच के बाद दोषियों पर एक्शन का भरोसा दिया है
6: और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
0: मामले ने उत्तराखंड की सियासत को गर्म कर दिया है, जहां कांग्रेस अब बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है।
7: इस तरह की गतिविधियां और ये प्रकरण सामने आ रहे हैं, उससे न केवल सरकार और मंदिर समिति की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि करोड़ों जो हिंदू श्रद्धालु हैं, आस्थावान हैं, उनकी भावनाएं भी आहत हो रही है।
0: सवाल करोड़ों भक्तों की आस्था का है, उनके दान किए पैसों का है। राम मंदिर के बाद अब बद्रीनाथ से आ रही खबरों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: अब बात यूपी में 2027 को लेकर बीजेपी की तैयारी की, जिसे लेकर नितिन नवीन यूपी के दौरे पर है और अगले कुछ दिनों में वो यूपी में रहकर यूपी के चुनाव को लेकर मंथन करेंगे।
0: यूपी चुनाव की तैयारियों का मंथन करने जब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे तो खुद योगी आदित्यनाथ उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। साथ में बीजेपी के दिग्गज मंत्री और नेता भी थे।
8: लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। भगवान प्रभु श्री राम का भूमि और हम कह सकते हैं भोले बाबा काशी विश्वनाथ का नगरी, मथुरा की नगरी, भगवान की नगरी, उस नगरी को नमन करता हूं और अपने सुबह अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करूंगा।
0: लखनऊ के दौरे पर नितिन नवीन की बैठकों का एक लंबा दौर चलेगा, जहां विधायक सांसदों के अलावा सीएम, डिप्टी सीएम और संघ के लोग भी शामिल होंगे।
9: उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। उत्तर प्रदेश का आम जनमानस आज मान रहा है, आज उत्तर प्रदेश का युवा चाह रहा है कि आदरणीय नितिन नवीन जी जिस ढंग से सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरे प्रदेश के युवाओं में, माताओं बहनों में, गरीबों में, आम जनता में भारी उत्साह है।
0: नितिन नवीन के दौरे पर अखिलेश के पीडीए के कार्ड का संदेश भी देखने को मिला। नितिन नवीन का स्वागत करने पहुंचे यादव समाज के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि यादव समाज को बीजेपी में ही सम्मान और भागीदारी मिली है।
10: यादव की जगह उत्तर प्रदेश के अंदर हो, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में है। 6 केंद्र में मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के बना रखे हैं। हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश में मंत्री, मुझे भाजपा पार्षद दल का उपनेता बनाया गया। हमारे तमाम पद ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण पद यादव के।
11: इस बार
10: अखिलेश जी का जो पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको हमारा समाज पूरी तरीके से जान चुका है।
0: यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे झटके और दो बार सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्पेंसी जैसे खतरों को लेकर नितिन नवीन का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आज तक ब्यूरो
4: बाद अब पंजाब की, जहां पर चुनाव से पहले कांग्रेस की टेंशन बढ़ती दिख रही है। चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में खींचतान अब खुलकर सामने आ रही है।
12: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर के बाहर मचे इस हंगामे ने एक बार फिर दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की टेंशन बढ़ा दी है। चन्नी दिल्ली कूच की तैयारी में है, लेकिन सूत्रों की माने तो चन्नी की मांग से आलाकमान सहमत नहीं है। पिछले दिनों बनी कांग्रेस ऑब्जर्वर पैनल ने पंजाब कांग्रेस प्रमुख के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी के नाम की सिफारिश की थी। पैनल की सिफारिशों के बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने राजा वडिंग को ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए रखा। ये रिपोर्ट पंजाब कांग्रेस नेताओं के साथ लंबी बातचीत के बाद तैयार की गई थी। जहां राजा वडिंग को लेकर नाराजगी थी, तो वहीं चन्नी को लेकर लोगों का समर्थन था। चन्नी को भरोसा था कि रिपोर्ट के बाद आलाकमान पंजाब में नेतृत्व में बदलाव करेगा, लेकिन हाईकमान ने इस रिपोर्ट को नजरअंदाज किया। हालांकि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग किसी भी तक की खींचतान से इनकार कर रहे हैं।
13: चन्नी जी को कोई ऑथराइजेशन की जरूरत है? चन्नी जी जब चाहें, क्योंकि राहुल गांधी जी चन्नी साहब को प्यार करते हैं, कांग्रेस पार्टी उनको प्यार करती है। देखो, मेरी बात है कि चन्नी साहब सीएम फेस बन जाएं, कोई और बन जाएं, मैं तो इस रेस में नहीं हूं।
12: राहुल गांधी 7 जुलाई को विदेश से लौट आएंगे, जिसके बाद चन्नी राहुल से मुलाकात करेंगे। वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल भी इसको लेकर हरकत में आ गए हैं, जो कुछ दिन चंडीगढ़ में बिता सकते हैं, जहां चन्नी और राजा वडी के साथ उनकी बातचीत होगी। इस बीच बीजेपी के चन्नी को दिए गए ऑफर ने पंजाब की सियासत को नई हवा दे दी है।
14: ये कांग्रेस का एक कल्चर है, इसमें लोटस का कोई रोल नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी जो है वो चट्टान की तरह खड़ी है, वो लोगों के दिल में बसी है। 22 सूबों में हमारी सरकार चलती है, सब जगह तरक्की हो रही है।
15: हाँ भाई, खुश हो लो जरा, थोड़े 2-4 दिन के लिए दिल बहलाने को, यही ख्याल अच्छा है गालिब।
16: सो मेरी बेनती है, इन बीजेपी वाले नु बावां भी खुलियां रख लें, भावे लत्तां भी खुलियां रख लें।
12: पिछले चुनाव से पहले सिद्धू और अमरिंदर की खींचतान कांग्रेस को पंजाब में महंगी पड़ी थी। ऐसे में इस बार चुनाव से पहले चन्नी की नाराजगी कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रही है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ असीम बस्सी, चंडीगढ़ आज तक।
4: अब बात आगरा से आए हैरान कर देने वाली खबर की, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति का कत्ल करके उसे बाथरूम में गाड़ दिया। 45 दिनों के बाद इस राज पर से पर्दा उठा।
12: आगरा में बाथरूम में हो रही खुदाई में सुरेंद्र शर्मा नाम के शख्स की बॉडी को निकाला जा रहा है, जिसे उसकी पत्नी रूबी ने 45 दिन पहले मार कर गाड़ दिया था। अब पुलिस को सुरेंद्र का सिर्फ कंकाल मिला है।
11: मैंने घर पे कहा बोली बाथरूम में, मैंने बाथरूम में जाके देखा लेकिन मुझे मिला नहीं, तो मैंने कहा बाथरूम में तो है नहीं, मैंने क्या बताना चाहिए, बोली है बाथरूम में लेकिन बाथरूम में जमीन के नीचे है। मैंने की जमीन के नीचे मैंने की गाड़ दिया है, बोली हाँ।
12: रूबी ने परिवार को बताया था कि उसका पति 5,000 रुपए लेकर झगड़ा करके घर छोड़कर कहीं चला गया। रूबी 45 दिनों तक पुलिस और घर वालों को गुमराह करती रही। जांच के दौरान महिला पुलिस के साथ सीसीटीवी फुटेज देखती रही और रोने का नाटक करती रही।
17: इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो यह पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया।
12: जांच में पता चला कि सुरेंद्र शराब पीकर रूबी के साथ मारपीट करता था, इसी वजह से उसने खीर में 18 से ज्यादा नींद की गोलियां मिलाकर पति को खिला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सुरेंद्र के साथ उसकी माँ और दो मासूम बेटियां भी रहती थी। रूबी तीनों को घर से थोड़ी दूर पर एक दुकान में ले गई, वहीं से जेठ के साथ उन्हें भेज दिया।
11: 1.5 महीने से यहाँ पर ये बोलती आ रही है कि मतलब मेरा आदमी मतलब लापता है, कोई पता नहीं है, मगर इनके घर पे रोजाना का यही मैटर था। आई दिन इनके घर में लड़ाइयाँ होती थी, आदमी दारू पीने के चक्कर में अपनी वाइफ में मार वार लगाता था कि पैसे दे मुझे, कहीं से भी ला के पैसे दे, इस चक्कर में इन दोनों में आपस में काफी विवाद होता था।
12: पूछताछ में पता चला है कि पत्नी ने पति को मारने की पहले ही प्लानिंग कर ली थी। बाथरूम में मजदूरों से गड्ढा बनवाया था, फिर मर्डर के बाद पति के शव को कमरे से खींचकर उसी गड्ढे में गाड़ दिया और ऊपर से फर्श बनवा दी। सबसे बड़ी बात, रूबी उसी बाथरूम में रोजाना नहाती रही। आज तक ब्यूरो।
4: देश के कई हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन बारिश की पहली किश्त ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। आपको अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन बात सबसे पहले मुंबई की करेंगे, जहां पर 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद मुंबई के कई इलाके पानी में डूबे दिख रहे हैं।

0: सड़कों पर सैलाब है, सबवे लहरों के बीच डूब चुका है। एक बार फिर भारी बारिश के चलते मुंबई में हाल बेहद बुरा है। चाहे अंधेरी हो या नाला सोपारा, वसई या विरार, हर ओर मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा है। लगातार हो रही बारिश ने मुंबई के लोगों का जीवन दुभर कर दिया है।
1: क्या है आमची चांदीवली विधानसभा, नाले सफाई झाली नाही, महापौर म्हणतात नाले सफाई झाली, उपमहापौर म्हणतात नाले सफाई झाली, पण नाले सफाई कुठे झाली? कालूराम, कालूराम कुठे गेला? नाल्याचा कॉन्ट्रॅक्टर कुठे गेला? कालूराम, हे बघा, वॉटर किंगडम आहे, वॉटर किंगडम चांदीवली विधानसभा।
0: एक एक तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर मॉनसून की बारिश के बीच मुंबई किस तरह की मुसीबत झेल रही है। गाड़ियां पानी के बीच फंसी हुई हैं, कहीं आना जाना मुश्किल है, बारिश का दौर थम नहीं रहा है, सड़कों पर बढ़ता जलस्तर लोगों का संकट बढ़ा रहा है। सबसे पहले भिवंडी इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। तेज बारिश से पूरा बाजार तालाब बन गया है, दुकानों में पानी भर गया है, गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, घुटनों तक पानी में लोग आ जा रहे हैं। किसी तरह जद्दोजहद कर अपनी दुकानों का सामान बचाने की कोशिश में लोग जुटे हुए हैं। अब नाला सोपारा हाईवे का हाल देखिए। सड़कों पर भरे पानी के चलते कई गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, लोगों को कहीं आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। नाला सोपारा में बढ़ता जलस्तर तेजी से रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ रहा है, जो आने वाले दिनों में मुंबई के लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकता है, क्योंकि नाला सोपारा और उसके आसपास के सभी मार्केट पूरी तरह से पानी में घिरे हुए हैं। गाड़ियों से भी गुजर रहे लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। मुंबई में बीते चार दिनों से बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाके पानी में डूब गए हैं। इस बीच पानी भरने के बाद अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। अब विरार इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। दोनों ओर की सड़क पर सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है, सड़कों पर गाड़ियां फंसी हुई हैं, दूर तक लंबी कतार नजर आ रही है। बांद्रा इलाके में सड़कें लबालब हैं, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, बारिश के बीच मुसीबत का दायरा बढ़ता जा रहा है।
2: मुंबई में सुबह से लगातार बारिश हो रही है और यह बारिश पिछले तीन से चार दिनों से मुंबई में हो रही है। आज भी मौसम विभाग द्वारा मुंबई और मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, रायगढ़, थाने, पालघर, नवी मुंबई, इनके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया है। आप देख सकते हैं हम इस वक्त मुंबई के घाटकोपर इलाके में है, जहां पर 1.5 से 2 फीट तक का पानी जो है वो मुंबई की सड़कों पर जमा हो गया है और सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील होती हुई यहाँ नजर आ रही हैं। लोग कई समय से यहाँ पर बस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो बस है वो नहीं आ रही है। गाड़ियों की आवाजाही थोड़ी यहाँ धीमी होती हुई नजर आ रही है।
0: वसई इलाके का हाल तो और भी ज्यादा बुरा है। पानी इतना ज्यादा भर गया है कि मानो पूरा इलाका टापू बन गया है। इस बीच बिजली न होने से करीब 450 परिवारों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।
3: वसई विरार में लगातार चार दिन से जोरदार बारिश हो रही है, कई निचले इलाकों में पानी भर चुका है। फिलहाल इस वक्त मैं खड़ा हूँ वसई ईस्ट के मिठागढ़ की बस्ती है। यहाँ हम देखेंगे तो ये जो रोड है जहाँ भरा है, इसके नीचे रास्ता है और ये रास्ते से अंदर हम 1.5 से 1.5 किलोमीटर जाए तो ये नमक की खेती करने वालों की बस्ती है। कुल 120 फैमिलीज वहाँ रहती है, 300 से 400 लोग है। हर साल इसी तरह ये रोड जो है पानी के नीचे चला जाता है। ये इन्होंने जानकारी दी जो है कि इनके घर में आसपास कुल कमर के ऊपर तक का पानी भर चुका है, बिजली भी कल से चली गई है और ये वस्ती के आसपास भी ये जो प्लेन इलाका है वहाँ भी ये भी पूरी तरह से भर चुका है। प्रशासन की ओर से इन्हें कोई अभी तक मदद पहुंची नहीं है। फिलहाल इन्हें खाने पीने की चीज़ों की सख्त जरूरत है, क्योंकि लाइट कल से है नहीं और यही बारिश अगर लगातार चालू रही तो इनके हाल बेहाल हो सकते
0: हैं। इस बीच बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन की ओर से अब तक लोगों तक कोई मदद नहीं पहुंची है, जिससे लोगों पर आई आफत और ज्यादा बढ़ गई है।
4: हालत खराब है कल से लोगों से, क्योंकि लाइट भी नहीं है, कल से लाइट भी नहीं है और पानी भी जैसे बढ़ते ही जा रहा है और ऊपर से बारिश भी और ज्यादा ही होते जा रहा है, जैसे कि अभी एक दो घंटा और गिरेगा तो घर में भी घुस सकता है भारी पानी।
3: लाइट की क्या समस्या है उधर?
4: लाइट तो कल से ही नहीं है, कल से दोपहर से गई है, अभी तक आई ही नहीं है।
3: अभी अंदर कितना पानी है, कितने फैमिलीज अंदर रहती है?
4: फैमिली रहती है 450 फैमिली रहती है और कंबर के ऊपर पानी है।
3: कि कुछ सुबह से कुछ प्रशासन की हेल्प हुई है?
4: कुछ भी नहीं, किसी ने हेल्प करने के लिए फोन भी नहीं किया, कुछ हेल्प आया ही नहीं।
5: बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा, जगह जगह भारी जलभराव है और लोग बेहद परेशान। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच मौसम विभाग ने भी शहर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर प्रशासन ने लोगों को बेहद जरूरी यात्रा करने की सलाह दी है ताकि मौसम की मार किसी की जिंदगी पर संकट न बने। मुंबई में हर साल की यही कहानी है, बारिश हुई और लोगों की जिंदगी आफत के बीच घिर गई। एक बार फिर ऐसी ही तस्वीरें शहर की पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। सैलाब के बीच जिंदगी संकट में घिरी है।
6: मुंबई से प्रवीण नालावड़े के साथ दीपेश त्रिपाठी आज तक।
7: अब आते ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के अंतिम संस्कार की, जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर की हस्तियां पहुंच रहे हैं। आपको आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं।
8: ईरान के सर्वोच्च नेता की अंतिम विदाई में लाखों लोग शामिल होने पहुंच रहे हैं, जहां अली खामेनेई की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है।
9: इस समय मैं मौजूद हूं ग्रैंड मुसल्ला में, और मैं जहां मौजूद हूं उसके ठीक पीछे अगर आप देखें कुछ ही दूरी पर आपको वो कॉफिन नजर आ जाएगा जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के शव को, उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। दरअसल अगर आप देखें उनके साथ में चार कॉफिन आपको नजर आ रहे होंगे। चारों कॉफिन में सबसे ऊपर का जो कॉफिन है वो है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का। उसके नीचे अगर आप देखें उनके ग्रैंडसन यानी उनके पोते भी जो उसमें मारे गए थे, छोटा कॉफिन, उसके बाद उनके दामाद और उनकी जो कहते हैं कि मुश्तबा खामेनेई की वाइफ का भी कॉफिन है, उनकी बेटी का कॉफिन है। और अगर आप देखें कि उनके साथ साथ चार कॉफिन से परिवार के अलग अलग लोगों के बताए जाते हैं कि उनके ये कॉफिन है। हालांकि कुछ लोग और मारे जाने का भी दावा किया गया था लेकिन उसकी पुष्टि अब तक ईरान में नहीं की गई है।
8: दुनिया भर से राजनेता, अधिकारी और धर्म गुरु तेहरान पहुंच चुके हैं और अंतिम यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। अमेरिका और इसराइल से कोई नहीं आया, वहीं लोगों के अंदर गम के साथ गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति इस पर तंज कसते भी नजर आए।
10: Two world wars, the Cold War, left America's enemies in the depths of history. We beat Venezuela in one day, and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice.
8: सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री की अंतिम यात्रा में मौजूदगी ने हर किसी को हैरान कर दिया। ओमान और कतर विदेशी प्रतिनिधियों की सूची में शामिल थे लेकिन सऊदी अरब के किसी भी प्रतिनिधि का नाम नदारद था। उधर सुरक्षा कारणों से नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो रहे हैं।
11: Doesn't allow him to come. They said it's very dangerous and we cannot provide security for him. And I think he will not come out. Do you know they have very, very advanced technology and they can recognize him and they can follow him. Where is he? And it's very dangerous for him. So because of that, he will not come out.
8: इस मौके पर 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों और धर्म गुरुओं को बुलाकर ईरान दुनिया भर को कई संदेश देने की कोशिश भी कर रहा है। अमेरिका और इसराइल के साथ युद्ध के बावजूद वो ये साबित करना चाहता है कि कूटनीतिक स्तर पर अभी वो उतना ही मजबूत है जितना 28 फरवरी से पहले था। तेहरान से गीता मोहन और सुमित चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।
7: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: चढ़ावा चोरी मामले में अब अयोध्या पुलिस जेल में बंद पांच आरोपियों से करेगी आज पूछताछ। तेनू यादव से भी सवाल, ममता का सरकार पर तंज, कहा राम का नाम किया बदनाम। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहले यूपी के दौरे पर नितिन नवीन का चुनावी मंत्र, पदाधिकारियों से कहा विपक्ष की नकारात्मक राजनीति के जाल में न फंसे, राज्य के विकास पर करें फोकस। पीएम मोदी ने विपक्ष पर युद्धकाल में देश को डराने का लगाया आरोप, राजस्थान के बालोतरा में बोले संकट में राष्ट्रहित को आगे रखकर फैसला, देश पर नहीं डाला बोझ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर आतंकवादियों से मुठभेड़, मारे गए दोनों आतंकवादी, कैमरे में कैद दोनों दहशतगर्द। मूसलाधार बारिश से पाने पाने मुंबई, और बढ़ सकती है मुसीबतें, आज भारी बरसात का रेड अलर्ट, बीएमसी के लोगों से अपील, जरूरी हो तभी निकलें बाहर। उत्तर प्रदेश राजनीति का वो रणक्षेत्र जहां जीत हार देश की तकदीर भी बदलती रही है। इस बार 2027 का यूपी विधानसभा का चुनाव काफी अहम है, चुनाव अगले साल होने हैं लेकिन सियासत अभी से शुरू है।
1: राजनीति में कई बार संदेश भाषणों से नहीं तस्वीरों से लिखा जाता है। स्वागत केवल सम्मान नहीं होता, वो शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन भी होता है। लखनऊ की सड़कों पर आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखी जब नितिन नवीन पहली बार बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद लखनऊ पहुंचे। तो सवाल ये कि क्या नितिन नवीन का दौरा बीजेपी के 2027 चुनाव अभियान का औपचारिक आगाज है? क्या बीजेपी का संगठन विपक्ष के सामाजिक समीकरणों पर फिर भारी पड़ेगा या इस बार मुकाबला बदल चुका है? क्या यूपी में 2027 की लड़ाई सत्ता बचाने की होगी या सत्ता बदलने की?
2: लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। भगवान प्रभु श्री राम का भूमि, हम कह सकते हैं भोले बाबा काशी विश्वनाथ का नगरी, मथुरा की नगरी, भगवान की नगरी, उस नगरी को नमन करता हूं और अपने सुधे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करूंगा।
1: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का लखनऊ एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए सीएम योगी खुद मौजूद थे, साथ में बीजेपी के दिग्गज मंत्री और नेता थे।
3: उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, उत्तर प्रदेश का आम जनमानस आज मान रहा है, आज उत्तर प्रदेश का युवा चाह रहा है कि आदरणीय नितिन नवीन जी जिस ढंग से सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरे प्रदेश के युवाओं में, माताओं बहनों में, गरीबों में, आम जनता में भारी उत्साह है।
1: यूपी विधानसभा चुनाव अगले साल के शुरुआती महीनों में होना है लेकिन बीजेपी ने अपनी राजनीतिक घड़ी तेज कर दी है। लखनऊ दौरे पर नितिन नवीन का एजेंडा साफ है, 2024 की समीक्षा, सोशल इंजीनियरिंग, सरकार संगठन में तालमेल, वोटर आउटरीच, 2027 की जीत का ब्लूप्रिंट। बीजेपी अध्यक्ष पद संभालने के बाद नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी ने बंगाल में ऐतिहासिक रूप से सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की, जबकि असम और पुडुचेरी में अपनी सत्ता बरकरार रखी। केरल में भी पार्टी का वोट बैंक तेजी से बढ़ा है। अब इसी विनिंग फॉर्मूले के साथ वो यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने की रणनीति बना रहे हैं लेकिन अखिलेश यादव लगातार पीडीए के फॉर्मूले को जीत का मंत्र बताते रहे हैं।
4: हम सबसे अपील करेंगे, जो हम लोगों ने एक आवाज दी है कि पीडीए से सब जुड़ जाएं। मुझे उम्मीद है पीडीए की लड़ाई मजबूत होगी, पीडीए एनडीए को हराएगा और जब हम लोग टिकट बांट रहे हैं, सीटें बांट रहे हैं, तब बीजेपी अपनी टिकट काटने की सोच रही है। सोचो, बीजेपी टिकट काटना चाहती है, हम सीटें बांट करके जनता में पहुंचे।
5: नफरत के सहारे ये सत्ता में आना चाहते हैं लेकिन देश जाग गया है, पीडीए जाग गया है, इस बार मुकाबला पीडीए करेगा एनडीए का।
1: हालांकि जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं उसमें से नितिन नवीन के स्वागत करने पहुंचे यादव समाज के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि यादव समाज को बीजेपी में ही सम्मान और भागीदारी मिली है।
6: यादव की जगह उत्तर प्रदेश के अंदर हो, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में है, 6 केंद्र में मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के बना रखे हैं, हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश में मंत्री, मुझे भाजपा पार्षद दल का उपनेता बनाया गया, हमारे तमाम पद ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण पद यादव के।
7: इस बार
6: अखिलेश जी का जो पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको हमारा समाज पूरी तरीके से जान चुका है।
1: यूपी यूपी की राजनीति में हर चुनाव सामाजिक समीकरणों और संगठनात्मक ताकत की नई परीक्षा बनकर आता है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के बाद बीजेपी के लिए अब सबसे बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, जबकि विपक्ष अपनी जीत का दावा ठोक रहा है। ऐसे में लखनऊ में जो बिसात नितिन नवीन बिछाएंगे, उसकी गूंज 2027 विधानसभा चुनाव में जरूर सुनाई देगी। आज तक ब्यूरो।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहे हैं, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब जांच में सामने आ रहा है कि पूरा खेल एक गैंग के तौर पर चल रहा था। बाकायदा बैठक होती थी, पैसों का हेर फेर होता था, एक दूसरे को बांटे जाते थे।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अयोध्या पुलिस ने पूछताछ के दौरान अविनाश शुक्ला को पिछले 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाई। जैसे ही उसने खुद को चढ़ावे से पैसे निकालते देखा, वो टूट गया और लगातार चोरी करने की बात स्वीकार कर ली। पूछताछ में अविनाश ने बताया कि चोरी की रकम से एक ब्रेजा कार खरीदी थी। ये कार उसने अपने भाई के नाम खरीदी, इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ कि कार चढ़ावा चोरी के पैसे से खरीदी गई है। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आते ही अविनाश ने कार को तुरंत प्रतापगढ़ स्थित घर भेज दिया।